0: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: नाग पंचमी के पर्व का महत्व,
7: नाग पंचमी के पर्व का क्या है पूजा विधान और नाग पंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
10: सावन के तीसरे सोमवार के साथ आज नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग, काशी से उज्जैन तक बम बम भोले की जयकार, विधि विधान से खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट। हर हर महादेव के जय घोष के साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज, जम्मू के भगवती नगर कैंप में LG ने दिखाई हरी झंडी, पुंछ के लिए रवाना हुए श्रद्धालु। यूपी के 78,000 राशन विक्रेताओं को CM देंगे तोहफा, ई पॉस के जरिए दर्ज होंगे डीलर्स के फीडबैक, आज लाभांश में 35 रुपए का होगा इजाफा। दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन्स का शुभारंभ, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और दिल्ली के CM ने तिमारपुर में आम लोगों के साथ कैंटीन में भोजन किया। सैलानियों को लुभा रहा चाइना का फुरोंग शहर, झरने और प्राचीन इमारतें बनी आकर्षण का केंद्र, वॉटरफॉल पर बसा है जगमग रोशनी से नहाया फुरोंग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
11: जब कभी भगवान ने प्रकृति बनाई होगी तो परमात्मा ने प्रकृति बनाते बनाते एक नाटक किया था, उस बारे में हम आपको बताना चाहते कि भगवान ने जब संसार बनाया तो संसार बनाते बनाते परमात्मा पहले हर जगह मिल जाता था सबको ही, शुरू शुरू की बात। तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत हुआ करती थी कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, भगवान बड़े परेशान होते थे, ब्रह्मा जी बड़े हैरान हुए, एक तो बनाया ऊपर से अब सब मुसीबतों को झेलो, परेशानियों को दूर करो। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने शंकर जी से उपाय पूछा कि कोई उपाय बताओ, तो भगवान ने उपाय, भगवान महादेव ने उपाय दिया कि एक काम करो, मंदिरों में बैठ जाओ, गांव में एक जगह, ताकि वहीं पर व्यक्ति आके मांग लिया करे। तो पहले कबीले हुआ करते थे, तो मंदिरों में जाकर के परमात्मा बैठ गया तो लोग मंदिरों में लंबी लंबी लाइन लगाने लगे, और मंदिर में भगवान का कोई काम नहीं बचा, पूजा तो बाद में, पहले मनोकामना पूरी करो। ये भी लंबी चाल चली, अब वहां भी थोड़ा परमात्मा को परेशानी हुई, तो परमात्मा फिर भागे भगवान श्री हरि के पास, महादेव के पास श्री हरि, कि हम तो बड़े परेशान हो गए, तो पहले तो चाहे जहां मिल जाते थे तो चलो मिल जाओ, पकड़ जाते थे तो लोग छोड़ते ही नहीं थे, हर 2-3 जन्म की तैयारी कर लेते थे, अब मंदिरों में भी लंबी लंबी लाइन है, लाइन ही खत्म नहीं हो रही। तो भगवान महादेव ने कहा कि एक काम करो, 8-10 गांव के एक गांव में एक मंदिर पे बैठो, हर गांव के हर मंदिर में बैठने की आवश्यकता नहीं। अब वहां भी भीड़ बढ़ गई, वहां भी लाइन बंद ना हो, और ज्यादा जोर पड़ने लगा। तो भगवान महादेव ने कहा कि एक काम करो, दुनिया के एक जगह पर बैठो मात्र। परमात्मा भगवान दुनिया की एकमात्र मंदिर में जाके बैठ गया, वहां भी लंबी लाइन बढ़ गई, लोगों को पता लग गया, खबर लग गया कि ये वाला मंदिर ज्यादा चमत्कारी है, बागेश्वर वाला, यहां जाना चाहिए। तो लंबी लंबी लाइन वहां भी लग गई, और वहां भी परमात्मा को टाइम ना मिला, भगवान को टाइम ना मिला, तो भगवान बड़े परेशान हुए कि अब ऐसे कहां जाया जाए, आदमी से बचपना बड़ा कठिन हो गया है, और आदमी है ही ऐसी खोपड़ मंजन, आदमी का नाम ही है खोपड़िया, जो सिर है उसको खोपड़ी कहते हैं, और खोपड़ी का मतलब ही है खो गई और पड़ी है, इसलिए तो खोपड़ी है, खो गई और पड़ी है, तो खोपड़ी बड़ी खतरनाक है। अब परमात्मा भी हैरान खोपड़ी से, हो ही जाते, परमात्मा क्या? पतियों से पूछो अथवा पत्नियों से पूछो। लंबी लंबी लाइनें इसी बात पे लगती हैं कि हमारे स्वामी की खोपड़ी बेकार है, और पतियों से पूछो क्या है? अरे क्या बताएं महाराज, हमारी घरवाली की खोपड़ी खराब है, खोपड़ी ठीक करो। और सब आदमी पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग एक दूसरे की खोपड़ी ठीक करवाने आते, भाई की खोपड़ी ठीक हो जाए, लुगाई की खोपड़ी ठीक हो जाए, पड़ोसी की खोपड़ी ठीक हो जाए, मित्र की खोपड़ी ठीक हो जाए, नौकर की खोपड़ियां ठीक हो जाए, मालिक की खोपड़ी ठीक हो जाए। तो खोपड़ी बड़ी खतरनाक। तो भगवान एक ही जगह बैठे बैठे परेशान हो गए, भीड़ लंबी लाइन। परमात्मा ने सोचा कि क्या किया जाए कि आदमी से बचा जाए और काम भी हो जाए और आदमी के पास भी रहा जाए। तो भागे भागे गए कि बचाओ, अब तो बड़ी हालत खराब हो गई। बोले हुआ क्या? अरे बोले हालत इतनी खराब हो गई हमारी कि पूछो मत, जगह जगह लंबी लाइन लगी हुई है और आदमी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो भगवान शंकर जी ने उस वक्त कान में एक मंत्र दिया कि हम तुम्हें एक ऐसी जगह बताते हैं जहां रहा जा सकता, और आज तक आदमी खोज रहा है। पता है कान में क्या कहा भगवान शंकर ने? आदमी के मन में जाके बैठ जाओ। मंदिरों में बैठोगे तो ये खोज लेगा, बड़े बड़े तीर्थों पर बैठोगे तो ये खोज लेगा, आदमी के दिल में जाके बैठ जाओ, ये बाहर खोजेगा अंदर नहीं खोजेगा, ये पा नहीं पाएगा, और जो अंदर खोजेगा वो पा जाएगा। आज तक परमात्मा उसके बाद अभी भी बैठा है, अंदर बैठा है, दिल में बैठा है। बस हम लोगों ने बाहर खोजने की जिद की, कोशिश की, और आज तक तुम लगे हुए हो, हम लगे हुए हैं, बाहर खोजने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है, और वो आज तक नहीं मिला। और आपके जीवन में मात्र एक दिन ध्यान की बात घटी, थोड़ी सी, वो भी आपने प्रैक्टिस की, ध्यान की यही कहा, प्रैक्टिस की थी थोड़ी सी, और आपको नए नए अनुभव होने लगे। और विचार करो, जब ये सच में तुम्हारे अंदर ध्यान आ जाएगा तो क्या क्या अनुभव नहीं होगा, क्या क्या नहीं घटेगा, कितना आनंद नहीं आएगा, कितना उत्साह नहीं भरेगा, कितनी प्रसन्नता नहीं भरेगी। लेकिन उसमें भी एक बात है, वो पते की बात है, ये मन तुम्हें फिर चालबाज में फंसाएगा। घर जाते ही कहेगा कि चलो ऊर्जा संचय तक तो ठीक था, अब कौन रोज सुबह सुबह उठे, 3 बजे उठे, फिर ये करे, फिर ये करे, और उससे हो भी क्या जाना है। कुछ चीजें, हर चीजें हो जाने के लिए नहीं की जाती हैं, की जाती हैं करने के लिए। बाली की आधे से ज्यादा भाषा संस्कृत है, यहां पति को स्वामी कहते हैं, हाँ, और प्रारंभ में अंत में मंत्र जाप करते हैं। बाली में 80% से ज्यादा हिंदू, यहां रहने वाले मुसलमान भी, दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते, रिस्पेक्ट करते। बाली की एक अद्भुत बात दूसरी यह है कि ज्यादातर घरों के बाहर गणेश जी की मूर्ति मिलेगी। बाली की एक और सबसे अद्भुत बात है कि कई 100 वर्ष पहले भारत छोड़ दिया, पर सबसे ज्यादा करीब भारत के हैं, आज भी इनके नाम रामा, गणेश, सीता, देवी, दुर्गा, सबसे ज्यादा कॉमन नाम यहां पर आज भी यही रखे जाते। बाली की एक और सबसे खासियत बात है, वो ये है कि जब यहां पर सनातनीय हिंदू अपना वार्षिक त्योहार मनाते हैं तो लगभग 12 से 24 घंटे का मौन व्रत धारण करते हैं, नेपी के रूप में, जब 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है तो मौन धारण करते हैं, तो अद्भुत बात यह है कि लगभग 12 घंटे के लिए एयरपोर्ट की गति भी रुक जाती है ताकि आवाज न आए। होटलों की लाइटें बंद होती हैं और किसी को भी लाइट जलाने की अनुमति नहीं होती है। हिंदुओं के इस त्योहार में हर एक व्यक्ति सम्मिलित होता। और अद्भुत बात यह कि बाली में जिस दिन हिंदुओं का यह नेपी त्योहार होता है, मौन साइलेंस का त्योहार होता है, उस दिन मस्जिदों से पढ़ी जाने वाली अजान का लाउड स्पीकर से नहीं पढ़ी जाती। इतनी यूनिटी है, इतनी एकता है, इतनी अद्भुतता है। यहां लगभग 17,000 से ज्यादा आइलैंड, छोटे छोटे टापू, 17,000 से ज्यादा, जिसमें मात्र 900 टापुओं पर जीवन है, बाकी अभी भी ऐसे ही। और ये लोग अभी भी अपने आप को भारतीय मानते, बड़े स्माइली फेस हैं, उन्मुक्त हैं, आनंदित रहते हैं, संस्कृति को लेकर चलते हैं, हर परिस्थिति में संस्कृति को लेकर चलते हैं। यहां पर प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं, 6वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी आदि आदि के अनेक मंदिर हैं, जिसमें प्रमुख मंदिरों में ब्रह्मा

और इंडोनेशिया और भारत का मधुर संबंध है वो और प्रगाढ़ हुआ और उस मंदिर का संरक्षण भारत को प्राप्त हुआ। और यहाँ भारत से बड़े प्रगाढ़ रिश्ते हैं, भारत के लोगों को ये बहुत प्रेम करते हैं और भारत के लोग भी बाली को और इंडोनेशिया को बहुत प्रेम करते हैं। तो यहाँ के लोगों की एक और सबसे अद्भुत बात है कि अपनी भाषा इन्होंने बचाए रखी और भाषा में भी ज्यादातर शब्दों का प्रयोग ये संस्कृत का ही करते हैं। जैसे हम लोग सिर को खोपड़ी बोलते हैं, ये लोग कपाल बोलते हैं, कपाल। पति को स्वामी, प्रायः पूर्व समय में हमारे भारत में, अब तो हस्बैंड हो गया, अब हस्बैंड ही नहीं बचा, गोलू सोना मोना है? बेबी, बच्चा, बेबी, पति, बेबी, धन्य है देवी, हनी, ओ हनी मनी, अच्छा हनी, वाह, है हनु, हाँ। वाह, हाँ। ये अद्भुत बात है कि बाली की एक और ये सबसे अभूतपूर्व बात कि यहाँ पूर्णमासी का उत्सव मनाया जाता। पूर्णमा का अर्थ है पूर्ण मा, यही पूर्णमा। तो वाह, मतलब पूरे बाली में जितने भी सनातनी हिंदू रहते उनका एक मंदिर होता है, हर घर का एक मंदिर, मध्य में जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। भारत के जो लोग इस वीडियो को देखेंगे बाली के बारे में, हम यही कहेंगे कितनी भी दूरी हो भारत से, दुनिया के जो भी लोग देखें, हमारी प्रार्थना है दूरी कितनी भी हो संस्कारों से नजदीकी इतनी ही बनाए रखनी चाहिए। मन और मकान दोनों को बीच बीच में साफ किया जाना चाहिए। मकान को बार बार साफ नहीं करोगे तो जाले पड़ जाएंगे और मन को बार बार साफ नहीं करोगे तो विचारों के भी जाले पड़ जाएंगे। दोनों जगह रहने जैसी हैं, मन भी और मकान भी। इसलिए मन को साफ किए जाने का सर्वोत्तम उपाय है विचारों की शुद्धि। और जितने बेहतरीन विचारों की शुद्धि आपकी होगी उतने ही परे देखना, बेहतर समझना, बेहतर सुनना और बेहतर जीना, आप जीना सीख पाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो बहुत कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें परिस्थितियों का बहुत फर्क नहीं पड़ता, ना प्रभाव का ना अभाव का, क्योंकि उनके पास एक मंत्र होता है और वो मंत्र आज हम आपको देना चाहते। उनके पास एक जीने का जो मंत्र होता वो ये होता है कि वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या छोड़ना चाहिए, वो इस पर ध्यान देते हैं कि क्या पकड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए ये छोटी सोच के लोगों की बुद्धि की परिस्थिति है, क्या पकड़ना चाहिए ये बेहतर सोच के लोगों की स्थिति है। और इसके ऊपर भी एक स्थिति है, क्या छोड़ना चाहिए और क्या पकड़ना चाहिए, इन दोनों से भी ऊपर उठा जा सकता है कि ना कुछ छोड़ना चाहिए ना कुछ पकड़ना चाहिए। एक आदमी हमारे बहुत अच्छे से सुआ करते थे तो हमारे साथ वो भी बहुत चाय पीते थे,

0: बड़े फुरकेबाज थे चाय के मामले में हमारे जैसे। अभी पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई तो हमारे पास चाय आई, तो हमने इशारा किया अपने चेलों को, जरा भाई इनको भी लाओ, तो उन्होंने मना कर दिया। हम पहली बार चौंके कि लगभग 8-10 साल की दीक्षा हो गई उनकी, उन्होंने चाय को पहली बार मना किया, थोड़े पुराने चेले हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने चाय छोड़ दी। हमें बड़ी खुशी हुई, हम कहा चलो बेहतर हुआ, कम से कम गुरु चेला दोनों एक ही नरक में तो नहीं जाएंगे। अगर चाय पीने से नरक मिलता होगा तो कम से कम दोनों एक ही जगह तो नहीं मिलेंगे, तुम कुछ दिन रहोगे फिर दूसरी जगह जाओगे। लेकिन बाद में खबर आई कि वो दूसरे कप में कुछ पी रहे थे, तो हमें बड़ा अचंबा लगा। तो हम उनके पास पहुंच गए, उनका अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुमने चाय छोड़ दी, बोले नहीं नहीं कॉफी पी रहे हैं। तो चाय छोड़ दी ये बात अलग है, पर कॉफी पकड़ ली ये बात अलग है थोड़ा। अब वो कहो कि आप इसमें भी आपको प्रसन्नता है, ठीक है। हम इन दोनों परिस्थितियों से ऊपर उठने की बात आज करना चाह रहे हैं कि कुछ ना पकड़ा जाए ना कुछ छोड़ा जाए। जीवन में पकड़ना ही है तो केवल परमात्मा को पकड़ा जाए। मन बड़ा जादूगर है, मन में ही सब है, मन ही दुख की स्थिति पर ले जाता हो, मन ही सुख की परिस्थिति पर ले आता। दुख और सुख कुछ नहीं है, मन की अवस्था का नाम दुख है और मन की व्यवस्था का नाम सुख है, मन की स्थिति का नाम ही आनंद है। ठीक अभी आपको पता लगे कि आप जो बाली आए हैं और आपको 1 करोड़ रुपया की लॉटरी लगी, आप बहुत खुश हो जाएंगे, हो सकता पार्टी वार्टी कर दे। लेकिन तब तक अचानक दूसरी न्यूज ब्रेकिंग हो कि तुम्हारे पड़ोसी को 2 करोड़ की लॉटरी लगी, तो जो मन अभी अभी प्रसन्न हुआ था वो तुरंत थोड़ा सा डाउन होगा कि 2 करोड़ की उसे क्यों, वो तो नास्तिक है, अधर्मी है, पापी है। यही मन की परिस्थिति सुख दिखाती है, यही मन की परिस्थिति दुख दिखाती है। और मन के जाल को आपने यदि समझ लिया तो समझो जीवन के जाल को आपने समझ लिया, और मन के जाल को ना समझा तो जीवन का जाल तुम्हें समझना आएगा। ये मन तुम्हें नई नई फैंटेसी देगा, नए नए भाव देगा। जो कर चुके होगे वो कहेगा ये तो कुछ नहीं है और ये बड़ा आलसी है, इसे जब पूजा तुमसे नहीं करवानी होगी तो कहेगा बस 5 मिनट और, 5 मिनट सो लो, क्या बिगड़ जाएगा 5 मिनट में। और तुम अंदाजा करना कि जब भी इसने 5 मिनट को सोने कहा 3 घंटे के पहले नींद ना खोली इसने। इसे पता है कि कोई एक छोटा सा उदाहरण इसके मन में दो, इसके अंदर दो, और ये मान भी जाता है, और तुम इतने कमजोर हो के जल्दी मान जाते। और उसी वक्त कोई व्यक्ति वो 5 मिनट का आशा छोड़कर उठ जाए, मन हार जाएगा और व्यक्ति जीत जाएगा। मन कहता है कहां पड़े हो, कौन पूजा पाठ करे, बार बार जन्म थोड़ी मिलना है, बार बार थोड़ी आना है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो। ये मन की चालें, मन को पता है कि ऐसी बातें बोलने से बार बार नहीं आना है, ये गलतियां करेगा, ये पड़ेगा फंसेगा जाल में। इसलिए मेरे पागलों, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन का प्रभाव जीवन पर होता है, और जीवन का प्रभाव भाग्य पर होता है। आप जो सोचोगे वो शब्द बनेगा, जो शब्द बनेगा वो तुम्हारा कर्म बनेगा, और जो तुम्हारा कर्म बनेगा वो तुम्हारी आदत बनेगी, और जो आदत बनेगी वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। पूरा खेल है सोच का,
1: पूरा खेल है मन का। जीवन को बेहतर करना है, सोच को बेहतर कर लिया जाए। जीवन को प्रसन्न करना है, मन को प्रसन्न कर लिया जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व, नाग पंचमी के पर्व का क्या है पूजा विधान, और नाग पंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: सावन के तीसरे सोमवार के साथ आज नागपंचमी का दुर्लभ संयोग, काशी से लेकर उज्जैन तक बम बम भोले की जयकार, विधि विधान से खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट। हर हर महादेव के जय घोष के साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज, जम्मू के भगवती नगर कैंप में एलजी ने दिखाई हरी झंडी, पुंछ के लिए रवाना हुए श्रद्धालु। यूपी के 78,000 राशन विक्रेताओं को सीएम देंगे तोहफा, ई पास के जरिए दर्ज होंगे डीलर्स के फीडबैक, आज लाभांश में 35,000 रुपए का होगा इजाफा। दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन्स का शुभारंभ, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और दिल्ली के सीएम ने तिमारपुर में आम लोगों के साथ कैंटीन में भोजन किया। सैलानियों को लुभा रहा है चीन का फुरोंग शहर, झरने और प्राचीन इमारतें बनी आकर्षण का केंद्र, वॉटरफॉल पर बसा है जगमग रोशनी से नहाया फुरोंग।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज बड़ा ही खास दिन है। आज सावन मास का तीसरा सोमवार और नागपंचमी का अत्यंत दुर्लभ और पवित्र संयोग एक साथ है और माना जाता है कि इस विशेष दिन पर भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष, पितृ दोष और राहु केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। लिहाजा देश भर के शिव मंदिरों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। आपको बता दें, आज तीसरा सोमवार है सावन का और नागपंचमी है। एक ही दिन ये होने से शहर के प्रमुख शिवालयों में भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। खास तौर से उज्जैन के महाकाल मंदिर में नागचंद्रेश्वर मंदिर भी स्थित है और इसीलिए वहां पर बाबा महाकाल के साथ नागचंद्रेश्वर के दर्शन पूजन के लिए आधी रात के बाद से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। वहीं वाराणसी, देवघर, प्रयागराज, अयोध्या से लेकर दिल्ली, गाजियाबाद और कानपुर सहित तमाम शहरों के शिव मंदिरों में, शिवालयों में श्रद्धा और भक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है। सनातन परंपरा में नागों का संबंध भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से जुड़ा हुआ माना गया है। भगवान शिव के गले में नाग सुशोभित होते हैं जबकि शेषनाग भगवान विष्णु की शैया है और भगवान कृष्ण के जन्म से ही शेषनाग ने वासुदेव की यमुना पार करने में सहायता की थी। समुद्र मंथन में वासुकी नाग की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और इसी वजह से नाग पंचमी को नाग देवताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व माना जाता है। ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर में सावन महीने की तीसरी सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बिहार के सुल्तानगंज से जल उठाकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच रहे हैं और बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पण कर रहे हैं, सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें, यहां आज 4 लाख से ज्यादा कांवड़िए श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, मन में बस एक ही कामना लिए कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, जल अर्पित कर पाएं, एक झलक पा पाएं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं सावन के तीसरे सोमवार पर किस तरह से भक्तों में किस तरह से अत्यंत अपरंपार श्रद्धा देखने को मिल रही है। जल अर्पित करने के लिए लोग किस तरह से आतुर नजर आ रहे हैं, एक झलक को पाने के लिए शिवलिंग की किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, बताती हैं कि आज के दिन लोग भक्ति भाव में लीन हैं पूरी तरह से। एक तरफ पूजा अर्चना की जा रही है, एक तरफ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है। ये तीनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। आज देश भर के अलग अलग शिवालयों से तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आज बेहद ही दुर्लभ संयोग है क्योंकि आज के दिन ही नागपंचमी है और आज के दिन ही सावन का तीसरा सोमवार भी है और इसीलिए नागचंद्रेश्वर की एक तरफ जहां पूजा की जा रही है वहीं दूसरी ओर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लिए हुए लगातार यहां पर दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आरती पूजन सुबह से ही भोर से ही यहां पर शुरू हो चुका है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देश भर के शिवालयों से हम आपके सामने रख रहे हैं। इस दुर्लभ संयोग पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की यहाँ मौजूदगी है और कांवड़ यात्रा भी एक ओर जारी है तो वहीं पैदल कई किलोमीटर की यात्रा श्रद्धालु कर रहे हैं, कांवड़िए कर रहे हैं, जल लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज पहुंचे हुए हैं तमाम शिवालयों में जल अर्पित करने के लिए। तो वहीं तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। एक तरफ पूजा अर्चना जारी है, दुग्ध अभिषेक जारी है, श्रद्धालुओं का जोश, श्रद्धालुओं का उत्साह, उमंग जो दूर दूर से पहुंचे हुए हैं उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर में सावन महीने की तीसरी सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो देखिए, आज नाग पंचमी का दिन है और भगवान शिव के गले में नाग सुशोभित होते हैं इसलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु से उनका जुड़ाव माना जाता है। शेषनाग भगवान विष्णु की शैया हैं और भगवान कृष्ण के जन्म के समय से ही शेषनाग ने वासुदेव की यमुना पार करने में सहायता की थी और वो दिन और आज का दिन है। तब से लेकर आज तक नागचंद्रेश्वर की पूजा होती आ रही है। तो वहीं समुद्र मंथन में वासुकी नाग की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और इसी वजह से नागपंचमी को नाग देवताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व माना जाता है। इसीलिए आज का दिन बेहद खास है। आज नागपंचमी और सावन का तीसरा सोमवार दुर्लभ संयोग बन रहा है और श्रद्धालुओं की यहाँ पर अपार आस्था भक्ति दिखाई दे रही है। खबर बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की। तीसरी सोमवारी और नागपंचमी के अवसर पर आज जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में पूजा अर्चना के बाद तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया और इस दौरान श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के जयकारे लगाए और भरपूर भक्ति भाव के साथ तीर्थयात्रियों को रवाना किया गया। 21वीं श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है और जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बाबा अमरनाथ मंदिर के लिए आयोजित की जाती है ये यात्रा। ये 12 दिवसीय यात्रा होती है जो जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होने वाली है। आपको बता दें ये पवित्र स्थल समुद्र तल से 4600 फीट की ऊंचाई पर है। लोरन घाटी में पुलसत्य नदी के तट पर स्थित है और जम्मू से इसकी दूरी लगभग 290 किलोमीटर है। तो वहीं बूढ़ा अमरनाथ मंदिर मंडी पुंछ के राजपुरा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और पीर पंजाल के सुंदर प्राकृतिक परिवेश में स्थित है। श्रद्धालु यहां पहुंचने से पहले ही घाटी, जलधारा, पर्वतीय वातावरण से एक आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर, शांति लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, सब वो देख के बहुत भीड़ है, सब बहुत सारे जन आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
2: क्या है कि ये यात्रा अलग अलग प्रांत की प्रतिदिन निकलती है। आज पहला जत्था मध्य भारत प्रांत और हमारे दो तीन प्रांतों का इकट्ठा होकर निकल रहा है। ये 27 तारीख तक यात्रा लगातार चलेगी। अलग अलग प्रांतों के लोग इस यात्रा में प्रतिदिन सहभागी बनेंगे। बहुत शानदार, बहुत उत्तम अरेंजमेंट है और मैं तो यही कहूँगा देश के सारे हिंदुओं से जो भी राष्ट्रभक्त हैं उनको एक न एक बार इस यात्रा में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। सुरक्षा का इंतजाम तो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा जितनी सुरक्षा यहाँ पे है। शायद इतनी सुरक्षा भारत में किसी और जगह पे यहाँ होगी। सुरक्षा बलों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ही ये यात्रा बड़े कुशल से हम लोग कर पाते हैं। जय श्री राम।
3: जितने भी राजस्थान के विभिन्न राज्य और भी राज्य है वहाँ से भी बहुत सारी संख्या के अंदर इतने उत्साह से लोग आए हैं यहाँ पे। जो उनके मन में जो उनके उत्साह है वो यहाँ उत्साह आज देखने को मिल रहा है कि विभिन्न राज्य के जो लोग हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। जी, सुरक्षा भी उच्च स्तर की सुरक्षा है यहाँ पे। आपको एक पिन भी है जो यहाँ पे इस यात्री निवास के अंदर भी नहीं लाने दे सकते, इतनी सुरक्षा टाइट है और बहुत ही सुगमता से यहाँ पे यात्रा का साधन है। जी, ये जो दिख रहा है ये देखने से लग रहा है कि आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में अगर इस तरीके की है तो ये जो 27 तारीख तक जो अंतिम रहेगी तब तक यहाँ पे ऐसा रहेगा कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं रहेगी, यहाँ कोई वाहन खड़ा रहने की जगह नहीं रहेगी, जिस तरीके से आज की जो देखने को मिल रहा है।
4: सबके अंदर बहुत अच्छी भावना है, श्रद्धालु है सारे और बहुत भक्तिभाव से भरे हैं और अमरनाथ बाबा की यात्रा के लिए सब रवाना हुए हैं और सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है।
2: किस तरह के
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: सावन की तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लगी कतार। सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ का हुआ भव्य श्रृंगार, बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती के दौरान माहौल में खुली दिव्यता। बाबा विश्वनाथ के दरबार में उमड़े भक्त, जलाभिषेक करने के लिए आए कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा। सावन के तीसरे सोमवार के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम की भव्य सजावट की गई, मंदिर परिसर की खूबसूरती ने मंत्रमुग्ध किया। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता, सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। उज्जैन में नागपंचमी पर रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुले, साल में सिर्फ 24 घंटे मिलने वाले दर्शन के लिए आधी रात से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट। नागपंचमी पर खुले पट आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। इस बार नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का भी शुभ संयोग। आस्था के खास संयोग पर उमड़ी भक्तों की भीड़। नागचंद्रेश्वर के दर्शन और महाकाल की सवारी के लिए बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए अलग अलग रास्तों और सुरक्षा के खास इंतजाम किए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नागचंद्रेश्वर मंदिर में 300 के शीघ्र दर्शन की व्यवस्था, इसके लिए रखे गए हैं ऑनलाइन स्लॉट। आसनसोल के कुलटी से 301 बाल कांवड़ी देवघर के लिए रवाना हुए। सिद्धेश्वरी मंदिर में बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज। बच्चों के साथ उनके माता पिता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। छोटी उम्र में कांवड़ लेकर जाते बच्चों को देखकर लोगों में दिखा उत्साह। बच्चों को भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जोड़ना है उद्देश्य। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे मंत्री डॉक्टर अजय पोदार ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। बाल कांवड़ियों का जत्था झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम जाएगा। वहां बच्चे बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करेंगे और पूजा करेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षित यात्रा की कामना की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 16 अगस्त को नवग्रह मंदिर से भव्य त्रिशूल यात्रा निकाली गई। यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के बीच कैंप कॉलेज ग्राउंड तक पहुंची। त्रिशूल यात्रा को बाबा बूढ़ा अमरनाथ की छड़ी यात्रा से पहले होने वाला धार्मिक कार्यक्रम बताया गया है। इसमें श्रद्धालु भगवान शिव के त्रिशूल के साथ यात्रा में शामिल हुए। त्रिशूल यात्रा नवग्रह मंदिर से बीती शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुई। यात्रा शुरू होने से पहले त्रिशूल की विधिवत पूजा हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। पूरा माहौल भक्तिमय रहा। ये आयोजन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। रामनगरी अयोध्या में दूसरे दिन भी रही झूलन उत्सव की रौनक। दिखा भक्ति और संस्कृति का संगम। भरतनाट्यम में जीवंत हुई संपूर्ण राम कथा। अयोध्या में भरतनाट्यम से हुआ प्रभु का नृत्य अभिषेक। राम जन्म से पट्टाभिषेक तक दिखी राम कथा। 270 कलाकारों ने अयोध्या में भव्य प्रस्तुति दी। नृत्य की मुद्राओं में साकार हुए राम के प्रसंग। नन्हे कलाकारों ने भी मंच पर बांधा समा। श्री राम ऑडिटोरियम में भक्ति भाव से सराबोर हुए दर्शक। दक्षिण की कला में नजर आई भक्ति की झलक। राम जन्मभूमि पर राम कथा सुनाना कलाकारों के लिए खास अनुभव रहा। मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा। कांवड़ियों के लिए विश्राम, गर्म पानी से पैर धोने, दवा और फलाहार समेत कई सुविधाओं की व्यवस्था की गई। महाराष्ट्र के अकोला में पहले श्रावण सोमवार को लेकर शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। राज राजेश्वर शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए रात से ही तैयारियों में जुटे कांवड़धारी। करीब 80 साल पुरानी परंपरा के तहत अकोला से लगभग 20 किलोमीटर दूर पूर्णा नदी के महाकाल घाट पर भरा जल। भगवान राज राजेश्वर का इसी जल से आज होगा जलाभिषेक। दिल्ली के तिमारपुर से पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 25 नई अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। दोनों ने अटल कैंटीन में भोजन किया। छत्तीसगढ़ की रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने कैंसर केयर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस संस्थान से कैंसर के मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज और सुविधाएं। सावन में अमरावती का चिखलदरा बना प्रकृति का स्वर्ग। बादलों और कोहरे में लिपटी सतपुड़ा की पहाड़ियां। चिखलदरा में झरनों का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। बारिश के बाद पहाड़ियों पर झरनों की बहार आई। बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं सैलानी। हरिकेन पॉइंट से दिखती हरी भरी वादियां। पंचबोल पॉइंट पर गूंजती है आवाज। वैराट पॉइंट बना पर्यटकों का खास आकर्षण। मोजरी पॉइंट पर बादलों का मनमोहक नजारा देखने को मिला। भीमकुंड, शक्कर झील और काला झील भी सैलानियों की पसंद। वॉटरफॉल के नीचे मस्ती करते हुए दिखे सैलानी, हवा में रस्सी के सहारे, जिपलाइन का रोमांच, स्पोर्ट्स बाइक और एटीवी से ऑफ रोड राइडिंग का भी मजा लिया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व? नाग पंचमी के पर्व का क्या है पूजा विधान? और नाग पंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे नाग पंचमी के पर्व की और नाग पंचमी के पर्व के पूजा विधान की। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी के पर्व के बारे में। नाग पंचमी का महत्व क्या है और हिंदू धर्म में इसकी महिमा क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। पंचमी तिथि के स्वामी वैसे भी सर्प यानी नाग होते हैं, तो नाग पंचमी की तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है और नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। राहु और केतु को सर्प के समान माना गया है, तो अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करके आप राहु केतु को शांत कर सकते हैं। अगर आपको सर्प के स्वप्न आते हो या सर्प से भय लगता हो तो भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से लाभ होता है। इस बार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को है। 17 अगस्त को पूरे देश में, दुनिया में नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाएगा। देखिए, नाग पंचमी पर पूजा करने का एक तरीका है, तो नाग पंचमी पर सामान्य पूजा कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले भगवान शिव का स्मरण करिए, भगवान शिव को याद करिए। पहले भगवान शिव का अभिषेक करिए, नमः शिवाय कहते हुए उनको बेलपत्र और जल अर्पित करिए और इसके बाद शिव जी के गले में जो नाग विराजमान हैं उन नागों की पूजा करिए। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करिए। इसके बाद जरा सा चना, खील बताशा और बहुत जरा सा कच्चा दूध अर्पित करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाइएगा और आकृति सर्प की बनाने के बाद इसकी भी पूजा करिएगा और इसके बाद हाथ में जल लेकर पूरे घर में छिड़किए और कहते जाइए, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ये कहते हुए जल पूरे घर में छिड़किएगा। तो सामान्य तरीके से नाग पंचमी की पूजा प्रातः काल ही कर लीजिए, प्रातः काल करना अच्छा होगा। और नागों की पूजा करने के पहले भगवान शिव की पूजा कर लेना आवश्यक है। अब आपको बताते हैं कि नाग पंचमी पर जब आप पूजा करेंगे तो किन सावधानियों का पालन करेंगे। देखिए, बिना शिव जी की पूजा किए हुए कभी भी नागों की पूजा मत करिएगा। स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा कभी मत करिए। स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा करने पर आपको नुकसान हो सकता है। नागों की पूजा शिव जी के गले में आभूषण के रूप में करें। जो लोग नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें नाग पंचमी पर जमीन नहीं खोदनी चाहिए और साग यानी लीफी वेजिटेबल्स नहीं काटने चाहिए। साग काटने से भी बचना चाहिए। ये जो नाग शक्ति है ये जीवन में आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसीलिए ये नाग शक्ति कंट्रोल में बनी रहे इसीलिए शिव जी के आभूषण के रूप में नागों की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको सांप से डर लगता हो या सर्प के बहुत ज्यादा सपने आते हो तो क्या करें, चांदी के दो सर्प बनवाइए, एक नाग और एक नागिन। साथ में चांदी का एक स्वस्तिक बनवाइए। एक थाल में रखकर नागों की पूजा करिए और एक थाल में स्वस्तिक रखकर उसकी पूजा करिए। नागों को कच्चा दूध बहुत जरा सा चांदी के नाग के ऊपर गिराइएगा और स्वस्तिक पर बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद कम से कम एक माला या तीन माला एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नागेंद्र हाराय नमः, ओम नागेंद्र हाराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे। नागों को इसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करके भगवान शिव को नमस्कार करेंगे और जो चांदी का स्वस्तिक है इसको लाल या पीले धागे में अपने गले में धारण कर लेंगे। आप इस स्वस्तिक को पहने रहेंगे तो आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। देखिए, नागपंचमी के इसी अवसर पर 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं। अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य देव 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक बना रहेगा। इस राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव, सबसे ज्यादा निगेटिव असर वृषभ, कन्या और मकर राशि पर होगा। इनको अपने स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन मध्यम रहेगा, ये परिवर्तन एवरेज रहेगा, लेकिन इनको बड़े निर्णय लेने में इस समय सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय के बड़े निर्णय इनके लिए गलत हो सकते हैं। आपके नजदीकी रिश्तों में समस्या आ सकती है, रिश्तों की समस्या का भी आपको ध्यान देना होगा। ये परिवर्तन सूर्य का सिंह राशि में जाना मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए अच्छा है। इनको करियर के मामले में लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होते चले जाएंगे। देखिए, काल सर्प योग के नाम से लोग डरते बहुत हैं, बहुत घबराते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि काल सर्प योग कुछ नहीं होता। इसीलिए नाग पंचमी पर काल सर्प योग की जो आप पूजा करवाते हैं, इसका कोई सर पैर नहीं है। कोई भी ऐसी पूजा काल सर्प योग की आपको करवाने की जरूरत नहीं है। कि अगर आप किसी झूठे केस में, किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम एक एक बार दुर्गा कवच का पाठ करिएगा और हर मंगलवार को मां दुर्गा को नींबू की माला पीले धागे में 3 या 9 नींबू लगाकर नींबू की माला बनाएं और ये देवी को अर्पित करें। ऐसा लगातार 3 महीने तक करें, झूठे मुकदमे और झूठे आरोप से आपको मुक्ति मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: सावन के तीसरे सोमवार के साथ आज नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग, काशी से उज्जैन तक बम बम भोले की जयकार, विधि विधान से खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट। सावन के तीसरे सोमवार पर फूलों से सजा काशी विश्वनाथ धाम, बाबा का भी विशेष श्रृंगार, बड़ी संख्या में जलाभिषेक के लिए पहुंचे कांवड़िए। हर हर महादेव के जय घोष के साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज, पुंछ के लिए रवाना हुए श्रद्धालु, LG ने दिखाई हरी झंडी, निकली भव्य त्रिशूल यात्रा। यूपी के 78,000 राशन विक्रेताओं को सीएम देंगे तोहफा, ई पास के जरिए दर्ज होंगे डीलर्स के फीडबैक। सैलानियों को लुभा रहा चाइना का फुरोंग शहर, झरने और प्राचीन इमारतें बनी आकर्षण का केंद्र, वॉटरफॉल पर बसा है जगमग रोशनी से नहाया फुरोंग।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
0: जी नमस्कार।
4: तो आज के शो में हम जानेंगे नागपंचमी का महत्व क्या है और इस दिन पूजा करने के नियम और विधान क्या है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
0: देखिए, काल सर्प योग के नाम से लोग डरते बहुत हैं, बहुत घबराते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि काल सर्प योग कुछ नहीं होता। इसीलिए नाग पंचमी पर काल सर्प योग की जो आप पूजा करवाते हैं, इसका कोई सर पैर नहीं है। कोई भी ऐसी पूजा काल सर्प योग की आपको करवाने की जरूरत नहीं है।
4: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 17 अगस्त 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम के 5 बजे तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 4:19 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: और चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं क्या है नागपंचमी का महत्व और इस दिन नागों की पूजा क्यों की जाती है।
0: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नागपंचमी के पर्व के बारे में। नागपंचमी का महत्व क्या है और हिंदू धर्म में इसकी महिमा क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। पंचमी तिथि के स्वामी वैसे भी सर्प यानी नाग होते हैं, तो नाग पंचमी की तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है और नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। राहु और केतु को सर्प के समान माना गया है, तो अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करके आप राहु केतु को शांत कर सकते हैं। अगर आपको सर्प के स्वप्न आते हो या सर्प से भय लगता हो तो भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से लाभ होता है। इस बार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को है। 17 अगस्त को पूरे देश में दुनिया में नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाएगा।
4: और चलिए अब वक्त हो चला है दैनिक राशिफल जानने का। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है?
0: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
4: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि नाग पंचमी के पर्व पर किस प्रकार से सामान्य रूप से पूजा करनी चाहिए।
0: देखिए, नाग पंचमी पर पूजा करने का एक तरीका है, तो नाग पंचमी पर सामान्य पूजा कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले भगवान शिव का स्मरण करिए, भगवान शिव को याद करिए। पहले भगवान शिव का अभिषेक करिए, नमः शिवाय कहते हुए उनको बेलपत्र और जल अर्पित करिए और इसके बाद शिव जी के गले में जो नाग विराजमान हैं उन नागों की पूजा करिए। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करिए। इसके बाद जरा सा चना, खील बताशा और बहुत जरा सा कच्चा दूध अर्पित करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाइएगा और आकृति सर्प की बनाने के बाद इसकी भी पूजा करिएगा और इसके बाद हाथ में जल लेकर पूरे घर में छिड़किए और कहते जाइए ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ये कहते हुए जल पूरे घर में छिड़किएगा। तो सामान्य तरीके से नाग पंचमी

0: आवश्यक है।
1: और अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल।
0: कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, लेकिन चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ हो सकता है, यात्रा के योग बने हुए हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, आज का पहला प्रश्न हर्षिता ने हमें लिखा है और हर्षिता हमें मेल लिखती हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 7 अप्रैल 1994। जन्म का समय रात में 8:32। जन्म का स्थान है सिरसा, हरियाणा। हर्षिता कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? हर्षिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में। आपके विवाह की संभावनाएं बनती हैं और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। आपका विवाह शीघ्र हो और वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह के समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल किसका लेने वाले हैं।
0: जी, अगला प्रश्न अजय कुमार जी ने हमें कोलकाता से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 15 सितंबर 1979।

6:41, जन्म स्थान है रांची, झारखंड। अजय कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो मुझे कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? अजय कुमार जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज से मुक्ति पाने में 2 साल लगेंगे।

0: 12 पा सकेंगे और 2028 के फरवरी के बाद आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और एक पन्ना बनवा लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि सावधानियां क्या कुछ रखनी चाहिए नागपंचमी पर पूजा के समय।
0: अब आपको बताते हैं कि नागपंचमी पर जब आप पूजा करेंगे तो किन सावधानियों का पालन करेंगे। देखिए, बिना शिव जी की पूजा किए हुए कभी भी नागों की पूजा मत करिएगा। स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा कभी मत करिए। स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा करने पर आपको नुकसान हो सकता है। नागों की पूजा शिव जी के गले में आभूषण के रूप में करें। जो लोग नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें नाग पंचमी पर जमीन नहीं खोदनी चाहिए और साग यानी लीफी वेजिटेबल्स नहीं काटने चाहिए। साग काटने से भी बचना चाहिए। ये जो नाग शक्ति है ये जीवन में आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसीलिए ये नाग शक्ति कंट्रोल में बनी रहे इसीलिए शिव जी के आभूषण के रूप में नागों की पूजा करनी चाहिए।
1: और चलिए अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं कि अगर सांपों से सर्पों से बहुत ज्यादा भय लगता है या फिर सर्प के बहुत ज्यादा सपने आते हैं तो क्या कुछ उपाय करने चाहिए।
0: अगर आपको सांप से डर लगता हो या सर्प के बहुत ज्यादा सपने आते हो तो क्या करें। चांदी के 2 सर्प बनवाइए, एक नाग और एक नागिन। साथ में चांदी का एक स्वस्तिक बनवाइए। एक थाल में रखकर नागों की पूजा करिए और एक थाल में स्वस्तिक रखकर उसकी पूजा करिए। नागों को कच्चा दूध बहुत जरा सा चांदी के नाग के ऊपर गिराइएगा और स्वस्तिक पर बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद कम से कम 1 माला या 3 माला एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नागेंद्र हाराय नमः, ओम नागेंद्र हाराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे। नागों को इसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करके भगवान शिव को नमस्कार करेंगे और जो चांदी का स्वस्तिक है इसको लाल या पीले धागे में अपने गले में धारण कर लेंगे। आप इस स्वस्तिक को पहने रहेंगे तो आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा बनी रहेगी।
1: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों का दैनिक राशि फल जानने का।
0: तुला राशि, व्यर्थ के विवादों से इस समय बचाव करिएगा। धन के खर्चों पर ध्यान दें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में विशेष लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि 17 अगस्त को सूर्य देव अपना राशि बदल रहे हैं, तो इसका तमाम राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है?
0: देखिए, नाग पंचमी के इसी अवसर पर 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं। अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सूर्य देव 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक बना रहेगा। इस राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव, सबसे ज्यादा निगेटिव असर वृषभ, कन्या और मकर राशि पर होगा। इनको अपने स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन मध्यम रहेगा, ये परिवर्तन एवरेज रहेगा। लेकिन इनको बड़े निर्णय लेने में इस समय सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय के बड़े निर्णय इनके लिए गलत हो सकते हैं। आपके नजदीकी रिश्तों में समस्या आ सकती है, रिश्तों की समस्या का भी आपको ध्यान देना होगा। ये परिवर्तन सूर्य का सिंह राशि में जाना मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए अच्छा है। इनको करियर के मामले में लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होते चले जाएंगे।
1: और अब जान लेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, करियर में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, चोट चपेट से सावधान रहें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, अगला प्रश्न मंजरी ने हमें लिखा है, रायपुर छत्तीसगढ़ से लिखती हैं। मंजरी की जन्म तारीख है 21 मई सन 2002, जन्म का समय दोपहर के 1:10, रायपुर छत्तीसगढ़। मंजरी कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलेगी? मंजरी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की तैयारी करें तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। साल 2028 का समय इसके हिसाब से बहुत सही दिखाई दे रहा है। सफलता प्राप्त करने के लिए एक मूंगा बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें, सुबह के समय सूर्य देव को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका चौथा और अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी, आज का चौथा सवाल किसका रहने वाला है?
0: जी, अंतिम प्रश्न कंचन जी ने हमें लिखा है और कंचन जी हमें मेल लिखती हैं इंदौर से। इनकी जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1982 जन्म का समय सुबह के 10:15, जन्म स्थान है उज्जैन, मेल लिखती हैं इंदौर से। कंचन कह रही हैं कि मैं टीचिंग जॉब करती हूं प्राइवेट सेक्टर में और वहां पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मैं नौकरी छोड़ करके अपना शिक्षा का काम करूं तो मेरे लिए कैसा रहेगा? कंचन, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी छोड़ करके अपना काम शिक्षा क्षेत्र में करना चाहिए और अगर आप ऐसा करेंगी तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आप अपने शिक्षा के काम की तरफ जाइए। एक पीला पुखराज लगभग 6 से 8 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 17 अगस्त को है। आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: इन लोगों का जन्मदिन 17 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में किसी तरह का जोखिम ना लें, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो चला है पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा स्थान पर बिजली का बल्ब हमेशा जलाए रखना चाहिए? बहुत सारे लोग पूजा के स्थान पर लाल रंग का बल्ब हमेशा जलाए रखते हैं। देखिए, पूजा के स्थान पर नियमित रूप से दीप प्रज्वलित होना चाहिए, दीपक सुबह शाम जलना चाहिए, परंतु इसके स्थान पर बिजली का बल्ब नहीं जलाना चाहिए। निरंतर बिजली का बल्ब पूजा स्थान पर जलाए रखना किसी प्रकार से उचित नहीं है।
1: तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि 17 अगस्त 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 17 अगस्त सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अंत में पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग शिव जी की पूजा कैसे करें जिससे उनको लाभ हो। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। आपको शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है पंडित जी से जान लेने का कि तमाम जो बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं उसे दूर करने के आज का महा उपाय क्या है।
0: जी,

में बताते हैं कि अगर आप किसी झूठे केस में, किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं तो क्या करेंगे, रोज सुबह और शाम एक एक बार दुर्गा कवच का पाठ करिएगा और हर मंगलवार को माँ दुर्गा को नींबू की माला पीले धागे में 3 या

0: तक करें, झूठे मुकदमे और झूठे आरोप से आपको मुक्ति मिलेगी।
1: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां नागपंचमी से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व, क्या है नाग पंचमी के पर्व का पूजा विधान, और नाग पंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: और अब खबर अयोध्या में चल रहे झूलनोत्सव की। रामनगरी में एक बार फिर से भव्य दिव्य झूलनोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। कल रामलला अपने भाइयों के साथ झूला विहार करने कुबेर टीला पहुंचे और इसके अलावा मणि पर्वत पर भी झूलनोत्सव के शानदार रंग देखने को मिले। आपको दिखाते हैं इस अनोखे उत्सव की तस्वीरें और बताते हैं इसकी परंपरा से जुड़ी कुछ खास बातें।
8: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से दिव्य उत्सव के रंग में रंगी हुई है। सावन के पावन महीने में यहाँ पर भव्य झूलनोत्सव चल रहा है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के अवसर पर झूलनोत्सव का शुभारंभ हुआ। श्री राम जन्मभूमि मंदिरों में फूलों से सजी चांदी की पालकी में श्री राम लला को भाइयों के साथ विराजमान कराया गया। इसके बाद पालकी यात्रा कुबेर टीला पहुंची। यहां करीब 2 घंटे तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और झूलनोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए गए।
9: झूलनोत्सव की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है, शुरू नहीं की गई है। रामलला सरकार भी पहले सूक्ष्म रूप में झूलन झूलते थे पंचमी से पूर्णिमा पर्यंत। इस बार राम जन्मभूमि ट्रस्ट के निर्देशन में और जो संत समिति की बैठक हुई, इसमें निर्णय लिया गया कि जैसे अन्य मंदिरों में श्री रामलला तृतीया से और पूर्णिमा तक झूलते हैं श्रावण शुक्ल में, तो उसी तरह से वहाँ भी झूलन उत्सव हो।
8: श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक बेहद शानदार तरीके से झूलनोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान रामलला फूलों से सजे स्वर्ण जड़ित हिंडोले यानी झूले पर विराजमान होते हैं और श्रद्धालुओं को उनके दिव्य दर्शन करने का अवसर मिलता है। इस बार श्री राम मंदिर परिसर में इस उत्सव के लिए खास व्यवस्था की गई है।
9: नित्य श्रृंगार आरती के बाद प्रातःकालीन सत्र में ठाकुर जी झूलन पर रहेंगे और मध्यान्ह में भोग के उपरांत दोबारा झूलन पर आ जाएंगे, जो शयन आरती तक झूलन पर ही विराजमान रहकर श्रद्धालु भक्तजनों को दर्शन देंगे। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, सबका स्वागत है।
8: इस अवसर पर अयोध्या के प्राचीन मणि पर्वत पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अयोध्या के सभी मंदिरों से श्री राम और सीता जी की झांकियां यहां लाई गई। प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान के विग्रहों को आकर्षक ढंग से सजाकर झूला विहार कराया गया।
9: ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी के विवाहोपरांत इतने मणि माणिक्य मिले थे जो आकर रखे गए, तो वो पर्वत के स्वरूप में हो गए, जिनको मणि पर्वत नाम दिया गया। और ठाकुर जी यहाँ अरण्य हुआ करता रहा, विरहत स्तर पर, अब उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य जगहों की अपेक्षा वृक्ष है यहाँ सुरक्षित है। तो ऐसे खुले जगह में ठाकुर जी विहार करते हैं प्रतिवर्ष आकर, और इसी दिन तृतीया से झूलन उत्सव का प्रारंभ हो जाता है।
8: मणि पर्वत पर झूला विहार से जुड़ी धार्मिक परंपरा भी अद्भुत है, जिसका अनूठा दृश्य यहां श्रद्धालुओं को देखने को मिला है।
10: त्रेता युग में राम जी का विवाह हुआ, जनक जी ने इतना मणि दिया कि ये मणि का पर्वत बन गया। तब से यहां पर सखा सखीगण आकर के भगवान श्री राम को सावन तीज के दिन झूला झूलाए, वही परंपरा चली आ रही है। उसके बाद संतों ने इस कथा को, इस लीला को प्रारंभ किया। ठाकुर जी का विग्रह बना करके ब्राह्मण बालकों को राम सीता प्रतिवर्ष यहाँ झूलाया जाता है, और आज प्रति मंदिर से यहाँ पर ठाकुर जी झूलने के लिए आते हैं। हर जगह से रथ आता है, जितने अयोध्या के मंदिर है।
11: अयोध्या तो वैसे भी धन्य धान से भरपूर है, यहाँ मनियों का ढेर लगने से मणि का पर्वत लग गया, और तब से लेकर के आज तक ये मेला हर वर्ष प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, जिसे आप हरियाली तीज के नाम से जानते हैं, ये मेला लगता है। और जब से रामलला की स्थापना हुई है, अब इस मेले का रौनक भी देख सकते हैं, कुछ अलग तरीके का है, कुछ अलग वाइब आता है। और 500 वर्ष का जो इतिहास है, इस बार 500 वर्ष के बाद श्री राम लला जी अपने मंदिर से बाहर घूमने के लिए निकले, आज के दिन निकले हरियाली तीज के दिन, तो ये बड़ी खुशी की बात है।
8: अयोध्या में नया श्री राम मंदिर बनने के बाद झूलनोत्सव के और भी शानदार आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ है। कुबेर टीला से मणि पर्वत तक इसकी खास झलक देखने को मिल रही है।
12: तो अयोध्या में झूलनोत्सव भव्य और दिव्य आपको नजारा दिखना होगा। ये मणि पर्वत पे हम कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्वत मणियों का था, और यहाँ पे झूलनोत्सव का नजारा ही अलग है। पेड़ों पे वो झूले हैं जिन पे रामलला संग माँ सीता बैठी है, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। और जो भीड़ है, जो उत्साह है, वो उमंग है, वो आपको सीधा याद दिख रहा होगा किस प्रकार से छोटे छोटे बाल अवस्था में बच्चे हैं, वो राम सीता का रूप में बैठे हैं, और यहाँ पे और जो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ पे अपनी श्रद्धा से उनको कुछ ना कुछ अर्पण करते नजर आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, और जो भीड़ है, उत्साह है, वो अलग ही है।
8: श्री राम मंदिर परिसर में कुबेर टीला पर श्रावणी पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन 28 अगस्त तक प्रतिदिन शाम को 2 से 3 घंटे विशेष झूलनोत्सव और दर्शन की व्यवस्था रहेगी। लिहाजा सावन में अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इस बार अधिक समय तक झूलनोत्सव के दर्शन का अवसर मिलेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भक्ति, संस्कृति और कला का ऐसा संगम देखने को मिला जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया। सावन के पावन झूलनोत्सव के बीच श्री राम ऑडिटोरियम में दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा ने राम भक्ति के रंगों को और गहरा कर दिया। बेंगलुरु से पहुंचे करीब 270 कलाकारों ने भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति के जरिए भगवान श्री राम की जीवन गाथा को मंच पर जीवंत किया। श्री राम के जन्म से लेकर बाल्यकाल, वनवास, सीता हरण, रावण वध, अयोध्या वापसी, राज्य अभिषेक तक की कहानी को कलाकारों ने बड़े ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, वैसे वैसे पूरा ऑडिटोरियम भक्ति भाव में डूबता चला गया। इस अनोखी प्रस्तुति की खास बात रही इसमें शामिल नन्हे कलाकार, इन्होंने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। ये महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि साधना और प्रभु श्री राम के चरणों में कला समर्पित करने का अनोखा मौका था। भारत में एक निजी कंपनी ने रक्षा क्षेत्र में कमाल कर दिया है। कंपनी ने स्वदेशी रूप से विकसित जेट पावर्ड प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम दिव्यास्त्र MK3 की सफल उड़ान भरी है और कंपनी ने इसे महज टेस्ट फ्लाइट नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन बताया है।

0: रक्षा क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग, स्वदेशी जेट पावर्ड दिव्यास्त्र MK3 ने भरी पहली सफल उड़ान। भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने भारत में विकसित अगली पीढ़ी के जेट पावर लॉयटरिंग म्यूनिशन दिव्यास्त्र MK3 की पहली सफल उड़ान पूरी की है। कंपनी के मुताबिक ये उड़ान 11 अगस्त 2026 को की गई है। दिव्यास्त्र MK3 बनाने वाली कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने दावा किया कि दिव्यास्त्र MK3 भारत का पहला स्वदेशी जेट पावर्ड लॉयटरिंग म्यूनिशन है। इसमें भारतीय एयर फ्रेम, स्वदेशी जेट इंजन, स्वतंत्र तकनीक और स्वदेशी फायर पावर का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको बताते हैं कि लॉयटरिंग म्यूनिशन क्या है। लॉयटरिंग म्यूनिशन ऐसा हथियार होता है जो लक्ष्य क्षेत्र के आसपास कुछ समय तक मंडराता रहता है और लक्ष्य के मिलने पर उस पर हमला करता है। इस वजह से इसे आम बोलचाल में कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। कंपनी के मुताबिक प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर पहली उड़ान तक दिव्यास्त्र MK3 को महज एक साल में विकसित किया गया। इसमें इस्तेमाल किया गया जेट इंजन भी स्वदेशी है, जिसे DG प्रोपल्शन ने विकसित किया है। कंपनी का कहना है कि इस सिस्टम में ना तो आयातित जेट इंजन इस्तेमाल किया गया है और न ही किसी विदेशी महत्वपूर्ण सब सिस्टम पर निर्भरता रखी गई है। इसे भारत में विकसित करने के बाद भारत में ही उड़ाया गया है। कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ एक परीक्षण उड़ान नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन है। भारत ने इस टेस्ट से ये साबित किया कि वो अपने देश के भीतर ही जेट पावर्ड प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम की परिकल्पना, इंजीनियरिंग और उड़ान परीक्षण कर सकता है। दिव्यास्त्र MK3 की पहली उड़ान को भारत के स्वदेशी एरोस्पेस और रक्षा तकनीक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।
1: मार्क 3 लॉयटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण हुआ है, जो पूरी तरह से पैरामीटर पर खरा उतरा है और एक तरह से अगर इस स्वदेशी क्षेत्र में देखें तो एक बहुत बड़ी उड़ान है दिव्यास मार्क 3 की। और आने वाले दिनों में जिस तरह से भारतीय सेनाओं को इस तरह के म्यूनिशन की बहुत जरूरत है और आने वाले दिनों की जो युद्ध की तैयारियां हैं वो स्वदेशी हथियारों के दम पर लड़ने की बात की जा रही है, ऐसे में दिव्यास मार्क 3 की सफल परीक्षण कई मायनों में खास है।
0: दिव्यास्त्र MK3 अगली पीढ़ी का ड्रोन है जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। इसे किसी तय लक्ष्य पर सटीक हमला करने के लिए बनाया गया है।
2: मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: और अब बात करते हैं मौसम की। बारिश और बादलों की वजह से मौसम आजकल सुहाना बना हुआ है। जैसे ही थोड़ी गर्मी का एहसास होता है, बारिश की फुहारें या ठंडी हवाएं वातावरण को सुहाना बना देती हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि पूरे हफ्ते इसी तरह मौसम की मेहरबानी जारी रहने वाली है।
4: कभी बारिश, कभी धूप और आसमान में बादलों की आवाजाही से दिल्ली का मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन कभी कभी उमस मौसम के सुहावने पर ग्रहण का काम कर रही है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी यह है कि आने वाले 6-7 दिनों तक मौसम सुहाना रहने वाला है। दिल्ली NCR में पूरे हफ्ते हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है। कुल मिलाकर मौसम विभाग का कहना है कि पूरे हफ्ते हल्के बादलों के साथ फुहारे या रुक रुक कर बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि अनुमान यह भी है कि उमस बढ़ सकती है जिससे गर्मी बढ़ सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के आसपास ही रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों में 20 से 21 अगस्त तक भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। हिमाचल के मौसम विभाग का कहना है कि 19 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में मानसूनी बारिश का अनुमान है, जिसके लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
5: 19 अगस्त तक संभावना है कि पूरे प्रदेश में ही बारिश के मौसम दौर देखने को मिलेगा। 18 अगस्त को फिर से जो मानसून की इंटेंसिटी उसमें और मतलब इंक्रीज करेगा, और उस समय प्रदेश में कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसमें विशेषता बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर, यहाँ पे 17 अगस्त के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया। बाकी जो क्षेत्र हमारे जो ट्रेन के क्षेत्र है मध्यवर्ती, वहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया।
4: पहाड़ी राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम या भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल के गंगा वाले इलाके, उत्तरी ओडिशा और झारखंड में भारी से अत्यधिक बारिश हो सकती है। बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी तेज बारिश के आसार है। दरअसल देश के कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है। आईएमडी ने दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पूर्वोत्तर भारत में 21 अगस्त तक मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहने की संभावना है और दक्षिण भारत में भी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात करते हैं अमरावती के चिखलदरा की। सावन की बारिश, घने बादल, कोहरे की चादर और पहाड़ों से गिरते झरते झरने, अमरावती के चिखलदरा में इन दिनों मौसम का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। विदर्भ की गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक चिखलदरा पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के लंबे वीकेंड पर यहाँ हजारों सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा। करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसे चिखलदरा की पहाड़ियां इस वक्त बादलों और कोहरे में छिपी हुई हैं। बारिश के बाद जगह जगह झरने फूट पड़े हैं। हरियाली अपने पूरे शबाब पर है और ठंडी हवाएं पर्यटकों को खूब लुभा रही हैं। चिखलदरा की खूबसूरती के साथ यहाँ की पौराणिक कहानी भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। यानी एक तरफ प्रकृति का नजारा तो दूसरी तरफ पौराणिक इतिहास है, और यही वजह है कि महाराष्ट्र का ये हिल स्टेशन इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। कोई जंगल सफारी का मजा ले रहा है तो कोई झरनों और कोहरे के बीच सेल्फी और वीडियो बनाकर इन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद कर रहा है। एडवेंचर एक्टिविटीज भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और अब एक मजेदार खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ी हुई है। आपको बता दें, AI अब सिर्फ पढ़ाई, नौकरी या तकनीकी कामों तक सीमित नहीं रह गया। इसका ऐसा इस्तेमाल होने लगेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ChatGPT तो रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियों को भी सुलझाने लगा है। इसका एक अनोखा उदाहरण मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर देखने को मिला है, जहां गोवा के एक युवक ने अपनी खोई हुई चप्पलें तलाशने के लिए ChatGPT की मदद ली और उसे कामयाबी भी मिल गई। ChatGPT ने उसकी चप्पल ढूंढकर बता दी। दरअसल शुभांग बोरकर महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे थे। दर्शन के बाद जब वे बाहर आए तो जूते चप्पल रखने वाली जगह पर यहां ढेर लगा हुआ था, जिसमें उनके लिए अपनी चप्पलों की जोड़ी को तलाशना बेहद मुश्किल हो गया था। तब उन्होंने ChatGPT की मदद ली। उन्होंने रैक के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भेजी तो ChatGPT ने खास जोड़ी की ओर इशारा किया और समस्या हल हो गई।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व, क्या है नाग पंचमी के पर्व का पूजा विधान, और नाग पंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर.
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स.
3: सावन की तीसरे सोमवार के साथ आज नागपंचमी का दुर्लभ संयोग. काशी से उज्जैन तक बम बम भोले की जयकार. विधि विधान से खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट. सावन के तीसरे सोमवार पर फूलों से सजा काशी विश्वनाथ धाम. बाबा का भी विशेष श्रृंगार. बड़ी संख्या में जलाभिषेक को पहुंचे कांवड़ी. हरहर महादेव के जय घोष के साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज. पुंछ के लिए रवाना हुए श्रद्धालु. एलजी ने दिखाई हरी झंडी. निकली भव्य त्रिशूल यात्रा.
12: आज से अगले चार दिन तक यूपी के 24 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट. बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण प्रदेश में मॉनसून हुआ सक्रिय.
3: सैलानियों को लुभा रहा चाइना का फुरुंग शहर. झरने और प्राचीन इमारतें बनी आकर्षण का केंद्र. वॉटरफॉल पर बसाया जगमग. रोशनी से नहाया फुरुंग.
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं.
3: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत. सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा. नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर.
12: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा. बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी. लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन पांच खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार.
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को.
3: तो शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं सावन के साथ. आज सावन का तीसरा सोमवार है और साथ ही नागपंचमी का शुभ संयोग भी है. ऐसे में देश भर के शिवालयों में आज आस्था के अद्भुत रंग दिखाई दे रहे हैं. कहीं भोलेनाथ का जलाभिषेक हो रहा है तो कहीं नाग देवता की पूजा अर्चना की जा रही है.
12: वहीं काशी से लेकर उज्जैन तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. सावन के तीसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ धाम को फूलों से सजाया गया. इस दौरान बाबा का भी विशेष श्रृंगार हुआ है.
3: वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल तक शिव भक्तों के भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं. मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं. तो वहीं आसनसोल में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है.
12: उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी शिव भक्ति के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं. जम्मू से जहां पर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ तो वहीं पुंछ में त्रिशूल यात्रा की भव्य छटा बिखरी हुई है. लिहाजा जम्मू कश्मीर में भी आस्था अपार नजर आ रही है.
3: इसके अलावा आपको लिए चलेंगे चाइना, जहां की फुरुंग शहर में भव्य नजारा नजर आया और झरने और प्राचीन इमारतें आकर्षण का केंद्र बनी. वॉटरफॉल पर बसा ये फुरुंग शहर जगमग रोशनी से नहा गया है. तो इस बारे में भी बात होगी आगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का.
12: देशभर में आज तीसरे सोमवार के साथ साथ आज नागपंचमी की रौनक है. देशभर के शिवालयों में महादेव के जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की लंबी कतार देखी जा सकती है. आज काशी से लेकर उज्जैन तक के शिव मंदिर में महादेव की विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है.
3: उज्जैन महाकाल की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुल गए हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना की। और साल में केवल नागपंचमी के दिन ही नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुलता है, जहां पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में भक्त सुबह का मेला लगा हुआ है।
12: सावन के तीसरे सोमवार पर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव भक्तों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर के बाहर लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं और लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए, तो वहीं प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन निगरानी, रूट डायवर्जन की पुख्ता व्यवस्था की है।
3: आसनसोल के कुलटी से सावन के पावन अवसर पर पहली बार अनोखी बाल कांवड़िया यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 2 से 8 साल की आयु के कुल 301 नन्हे कांवड़ियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। वहीं देवघर के लिए रवाना होकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।
12: तो इस सावन महीने के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या में चल रहे ऐतिहासिक झूलन उत्सव के दूसरे दिन भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस दौरान भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति के जरिए संपूर्ण रामकथा को बेहद जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। 270 कलाकारों ने अयोध्या में भव्य प्रस्तुति दी। नृत्य की मुद्राओं में राम के प्रसंग साकार हुए।
3: सावन के महीने में अमरावती जिले का चिखलदरा हिल स्टेशन बादलों और कोहरे के साथ साथ हरी भरी सतपुड़ा पहाड़ियों के साथ प्रकृति का स्वर्ग बन गया है। इस सुहाने मौसम ने झरने, हरी घाटियां और ठंडी हवाएं पर्यटकों का मन मोह लिया है।
12: तो आज से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। भक्तों ने जमकर जयकारे लगाए, साथ ही प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्था पर खुशी जाहिर की।
3: बीजिंग के एक होटल में अब यहां पर रोबोट्स ने कमरा साफ करने, खाना पहुंचाने और मेहमानों का सामान ले जाने का शानदार हुनर दिखाया है। रोबोट्स ने सामान पहुंचाने से हाउसकीपिंग तक चुनौती दी। रोबोट्स को 30 मिनट में 3 काम पूरे किए और इन रोबोट्स ने अपनी सर्विस का टेस्ट बहुत अच्छे अंकों से पास किया।
12: अभिनेता रणवीर सिंह की अगली फिल्म प्रलय की शूटिंग मुंबई में शुरू हो गई है। फिल्म की कहानी मुंबई शहर की पृष्ठभूमि पर सेट है, जिसमें तबाही के बीच इंसानी जिंदगी को बचाने की लड़ाई दिखाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका निभाने के साथ साथ को प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।

0: शुभ समाचार में आपका बहुत स्वागत है। आज सावन का तीसरा सोमवार और आज ही नाग पंचमी का पर्व भी है, यानी महादेव की भक्ति और नाग देवता की आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।
1: आज देशभर के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। काशी से लेकर देवघर तक, प्रयागराज से लेकर देश के तमाम बड़े शिव मंदिरों तक भक्तों का तांता लगा हुआ है।
0: आपको बता दें, वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। वहीं देवघर में भी बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। आज सावन के सोमवार के साथ नागपंचमी होने की वजह से नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं,
1: जहां पर दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं, दूध, बेलपत्र और फूल अर्पित कर भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो चारों तरफ एक ही गूंज है, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो सावन के तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर हम आपको सीधे काशी विश्वनाथ धाम और सोमनाथ धाम लिए चलते हैं। आप इन दोनों धाम के लाइव दर्शन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर काशी विश्वनाथ धाम और सोमनाथ धाम की लाइव तस्वीरें सामने हैं।
0: तो इन दोनों ही तस्वीरों के जरिए आप घर बैठे बाबा विश्वनाथ और श्री सोमनाथ के शुभ दर्शन कर सकते हैं। इन दोनों धामों का शुमार महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में होता है। मान्यता है कि काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान से मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और इसी वजह से बाबा का धाम पूरी दुनिया में विशेष स्थान रखता है।
1: तो वहीं सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महादेव के स्वरूप के दर्शन से साधक को पाप कर्मों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसी जगह चंद्रदेव ने भोलेनाथ की आराधना की थी और उनसे श्राप मुक्त जीवन का वरदान पाया था।
0: सावन का तीसरा सोमवार और साथ ही नागपंचमी का शुभ संयोग, देशभर के शिवालयों में आज आस्था का अद्भुत रंग नजर आ रहा है।
1: कहीं पर भोलेनाथ का जलाभिषेक हो रहा है तो कहीं नाग देवता की पूजा अर्चना की जा रही है। काशी से लेकर उज्जैन तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि उज्जैन के प्राचीन चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट नागपंचमी के दिन साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं।
0: तो आइए आपको दिखाते हैं सावन और नागपंचमी के इस पावन संयोग पर आस्था की ये खास तस्वीरें।

भगवान शिव को समर्पित साल का सबसे पवित्र महीना सावन महीने में बात अगर सोमवार की हो तो भक्तों में भोलेनाथ की भक्ति का उत्साह दो गुना हो जाता है। आज सावन के तीसरे सोमवार के साथ नाग पंचमी का संयोग भी है, जिससे भगवान

0: सनातन परंपरा में नाग देवता की पूजा का विशेष दिन होता है। मान्यता है कि नाग देवता भगवान शिव के प्रिय हैं। महादेव के गले में विराजमान नाग उनकी शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। आज सावन के सोमवार और नाग पंचमी का एक साथ आना भक्तों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। इस पावन मौके पर श्रद्धालु भक्ति भाव से नाग देवता को दूध, पुष्प और जल अर्पित करते हैं और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर आस्था के अनूठे रंग महाकाल की नगरी में भी दिखाई दे रही है। भक्तों के जनसैलाब के बीच उज्जैन के प्राचीन चंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ी मान्यता इसे और खास बनाती है। नाग पंचमी के मौके पर चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक बार श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। भक्तों के लिए ये सिर्फ दर्शन का अवसर नहीं बल्कि साल भर के इंतजार के बाद मिलने वाला एक विशेष आध्यात्मिक क्षण होता है। साल में सिर्फ एक ही दिन दर्शन का अवसर मिलने के चलते यहाँ भक्तों में खास उत्साह देखने को मिलता है। उज्जैन जहाँ स्वयं महाकाल विराजते हैं, वहाँ नाग पंचमी के अवसर पर चंद्रेश्वर मंदिर की ये परंपरा आस्था का एक अलग ही रूप देती है। उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 मंजिलों वाला है। इसमें नीचे महाकालेश्वर, मध्य में ओमकारेश्वर और सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। वैसे तो भगवान शिव के गले में वासुकी नाग लिपटा रहता है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में सर्प शिव जी के गले में लिपटा नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की सर्प शैया पर विराजमान है। इस मंदिर में शिवलिंग पर चंद्रमा और नाग की विशेष प्रतिमा विराजमान है, इसीलिए इसे नाग चंद्रेश्वर कहा जाता है। नाग पंचमी के मौके पर साल में एक बार भक्त यहां पूजा अर्चना कर जीवन में सुख समृद्धि, शांति और निर्भयता का आशीर्वाद मांगते हैं। सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी का यह शुभ संयोग आज का दिन शिव भक्तों के लिए आस्था का महापर्व बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देश भर के शिवालयों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से श्रद्धालुओं का जोश, उनकी उमंग, उनकी आस्था नजर आ रही है। और इसी बीच रोशन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोशन, वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम में, भगवान शिव के सबसे बड़े धाम में आप मौजूद हैं, यहाँ पर क्या कुछ नजारा है?
2: जी देखिये, बिल्कुल आज सुबह से ही भगवान भास्कर ने दर्शन नहीं दिया है और लगातार जो बारिश है वो होती चली आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं के, भक्तों के और आने वाले जो कांवड़िया हैं उनके उत्साह में कहीं पे कमी नजर नहीं आ रही है। लगातार देर रात से ही लोग गंगा स्नान करने के बाद, जल लेने के बाद गंगा से सीधे बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं और काफी इंतजार और थकान के बावजूद उनके उत्साह में कहीं भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। और आज जब मंगला आरती खत्म हुई भोर की, उसके बाद से ही लगातार श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं। और माना जाता है कि चूंकि आज नाग पंचमी भी है और सावन का तीसरा सोमवार भी है, तो ये विशेष संयोग है। और श्रद्धालु का मानना है कि आज के दिन बाबा का जलाभिषेक करने से, दुग्धाभिषेक करने से, उनको बिलपत्र चढ़ाने से उनकी सारी इच्छाएं की पूर्ति होती है। यही वजह है कि न केवल बनारस बल्कि पूरे यूपी और देश, यहाँ तक कि विदेशों से भी जो शिव भक्त है वे आज के दिन यहाँ दर्शन के लिए, बाबा के जलाभिषेक के लिए चले आ रहे हैं। और ये सिलसिला आज बाबा के शयन आरती तक यूं ही चलता रहेगा। जहाँ तक तमाम इंतजामों की बात करें तो मंदिर प्रशासन और वाराणसी पुलिस प्रशासन ने भी बहुत सारे इंतजाम कर रखे हैं। मंदिर प्रशासन ने मंदिर के अंदर जिग-जैग बैरिकेटिंग, क्राउड मैनेजमेंट के लिए, तो वही पेयजल और छाव की व्यवस्था की है, बचाव बारिश से बचाव के लिए छाव की भी व्यवस्था की है। तो वहीं वाराणसी प्रशासन ने भी मंदिर जाने वाले सभी मार्ग को नो व्हीकल जोन कर दिया है, रूट डाइवर्जन किया है। और पुलिस फोर्स, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स की भी अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना न होने पाए। तो वहीं गंगा किनारे भी एनडीआरएफ के अलावा जल पुलिस और पीएसी गोताखोरों की अलग से ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु या स्नानार्थी को दिक्कत न होने पाए या किसी भी मुसीबत का उन्हें सामना न करना पड़े।
1: रोशन, क्योंकि एक तरफ देखिए सावन का सोमवार, दूसरी तरफ नाग पंचमी, तो क्या वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है?
2: जी देखिए, बिल्कुल श्रद्धालुओं की भीड़ का अंदाजा यहाँ मंदिर प्रशासन और

0: वाराणसी प्रशासन को भी था, क्योंकि लगातार छुट्टियां थी और इन छुट्टियों के बाद आज भी सावन का तीसरा सोमवार है, तो भीड़ की अगर श्रद्धालुओं के संख्या की बात करें तो पहले से बाकी जो दो सोमवार बीते हैं उनसे ज्यादा भीड़ आज देखने को मिल रही है। तो यही वजह है कि लगातार पड़ रही छुट्टियां और साथ ही साथ नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का जो संयोग है, ये श्रद्धालुओं को आज, शिव भक्तों को आज काशी विश्वनाथ और जो तमाम शिवालय है वहां खींच लाया है।
1: बहुत शुक्रिया रोशन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए देश भर के शिवालयों में, यहाँ वाराणसी में भी यहाँ श्रद्धालुओं का जत्था उमड़ रहा है। उज्जैन की बात करें तो यहाँ महाकाल मंदिर परिसर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट आज नागपंचमी के पावन अवसर पर खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा अर्चना की गई और दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
2: मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार दूर तक नजर आ रही है। ड्रोन तस्वीरों में भी आस्था का ये सैलाब साफ दिखाई दे रहा है। नागपंचमी के खास मौके पर मंदिर को बेहद ही भव्य तरीके से सजाया गया। चारों तरफ उत्सव भक्ति का माहौल है और हर तरफ गूंज रहा है हर हर महादेव। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं नागपंचमी पर किस तरीके से महाकाल का मंदिर सजा हुआ है। श्रद्धालुओं की संख्या भी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। एक तरफ सावन का सोमवार तीसरा सोमवार आज है, शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं नागपंचमी को देखते हुए भी काफी ज्यादा भीड़ भरी है, तो व्यवस्था को भी और अच्छे तरीके से वहां पर किया गया है।
3: नागपंचमी का पर्व पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी क्रम में भगवान महाकाल के इस दिव्य मंदिर में उज्जैन में बहुत ही अद्भुत स्थान है। भगवान महाकालेश्वर का जो मंदिर है उसके तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं। तो परंपरानुगत तरीके से पंचायती खड़ा महानिर्वाणी के द्वारा महंत जो है नियुक्त होते हैं वो उसकी पट खोलते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो उसी परंपरा का हम सब लोगों ने पालन करते हुए भगवान नागचंद्रेश्वर के मंदिर के पट खोले और भगवान का षोडशोपचार पद्धति का ये जो पूजन पद्धति है उसके अनुसार पूजन करके और त्रिकाल पूजाओं में प्रथम पूजा करके और सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं।
2: तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन आज आधी रात से वहां पर बड़ी तादाद में भक्तों का मेला लगने वाला है। नागपंचमी के पावन अवसर पर आज रात महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट केवल 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे।
1: आपको बता दें नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नागपंचमी के दिन ही खोला जाता है, लिहाजा यहां दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। आपको बताते हैं इस मंदिर की महिमा और इससे जुड़ी खास बातें क्या हैं।

0: प्रदेश में लाखों मंदिर हैं जो अपनी अलग अलग मान्यता और महिमा के कारण देश विदेश में चर्चित हैं, लेकिन उनमें सबसे खास है उज्जैन का ये नागचंद्रेश्वर मंदिर। असल में उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 मंजिलों वाला है। इसमें नीचे महाकालेश्वर, मध्य में ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। वैसे तो भगवान शिव के गले में वासुकी नाग लिपटा रहता है, लेकिन नागचंद्रेश्वर मंदिर में सर्प शिव जी के गले में लिपटा नहीं है, बल्कि भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी सर्प शैया पर विराजमान हैं। ये मूर्ति सबसे अनोखी मानी जाती है। इस मंदिर में शिवलिंग पर चंद्रमा और नाग की विशेष प्रतिमा विराजमान है, इसलिए इसे नागचंद्रेश्वर कहा जाता है।
1: भगवान विष्णु शेष सैया पर, शेष नाग के सैया पर शयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस देवालय में, उस मंदिर पर भगवान चंद्रकेश्वर नाग देवता महादेव जैसे उस शेष सैया के नाग पर जैसे भगवान विष्णु सोते हैं, एकमात्र भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा है जहां उस नाग देवता के अंचल में भगवान शिव विराजे हैं।
0: बताया जाता है कि भगवान नागचंद्रेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की है। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भगवान नागचंद्रेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा करीब 350 साल पहले लाई गई थी। ये मूर्ति सिंधिया राजवंश के शासकों ने नेपाल से लाकर यहाँ स्थापित की थी। मान्यता है कि यहाँ दर्शन पूजन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण के अवंते खंड में नागचंद्रेश्वर का उल्लेख है। इसका संबंध भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए की गई नागराज की घोर तपस्या से माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं नागराज तक्षक विराजते हैं। वे भगवान शिव की तपस्या में लीन रहते हैं। इसी कारण से इस मंदिर को एक दिन छोड़कर पूरे साल बंद रखा जाता है, ताकि उनके एकांत में खलल ना पड़े। कहते हैं कि नागराज तक्षक ने भगवान शिव को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। तक्षक नाग ने शिव जी से अनुरोध किया कि वो उनके सानिध्य में एकांतवास करना चाहते हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया।
1: चंद्रकेश्वर भगवान क्योंकि तपस्या में रत थे, वो निरंतर महाकाल का तपस्या करते थे, और तपस्या करने पर भगवान एक दिन उस नाग देवता को दिव्य दर्शन दिए, और जब वह नाग देवता अपने आप को अपने शरण में रखने के लिए निवेदन करते हैं महादेव से कि हे महादेव, आप हमें इसी स्थान पर स्थान प्रदान करें, तो भगवान शिव के, महाकाल के आशीर्वाद से चंद्रकेश्वर नाग देवता का वहीं पर विग्रह स्थापित किया।
0: नागों को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। खास तौर से नाग पंचमी की तिथि पर नागों की पूजा करने की विशिष्ट परंपरा रही है। मान्यता है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं नागराज तक्षक का निवास है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। अब हम आपको जगह जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं शिवालयों की, किस तरह से यहाँ काशी में जलाभिषेक किया जा रहा है वैदिक मंत्रोच्चार के बीच।
2: ये काशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काशी में भोलेनाथ को जल अर्पित किया गया, पूजा अर्चना की गई है, सारे विधि विधान के साथ वहाँ पर पूजा की गई, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ती नजर आ रही है। वाराणसी में भी दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्तों का फूलों की बरसात की गई। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए कतार में लगे हुए हैं।
0: तो वहीं देश भर के शिवालयों की तस्वीरें आपके सामने हैं, वहीं वाराणसी की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये एरियल व्यू आप देख सकते हैं, भक्तों का तांता किस कदर यहाँ पर लगा हुआ है।
2: ड्रोन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रोन से ली गई तस्वीरें। श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है। दिल्ली से काशी तक हर तरफ भक्तिमय माहौल है। प्रयागराज में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर नाग वासुकी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का मेला उमड़ा हुआ है।
3: तो वहीं श्रद्धालुओं ने विधि विधान से यहां पूजा अर्चना की है। नाग वासुकी मंदिर में नागपंचमी के दिन पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है।
2: देवघर की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जहां पर सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी शिव भक्तों का मेला लगा हुआ है। तमाम तस्वीरें सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर कांवड़ियों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक यहाँ किया।
3: और चलिए अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर नागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने नागदेवता का दुग्धाभिषेक किया। साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से यहां पर पूजा पाठ किया है।
2: अब गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर की ये तस्वीरें, जहां सोमवार और नागपंचमी पर शिव भक्त उमड़ गए। यहाँ पर भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए भक्त ललायत यहाँ पर दिखे हैं।
3: और अब आपके सामने कानपुर के कैलाश मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर नागपंचमी पर सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया है।
2: अब लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की तस्वीरें भी देखें, यहाँ पर भी सावन के तीसरे सोमवार पर भारी भीड़ है। श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मान्यता लेकर श्रद्धालु यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं।
3: तो गुवाहाटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर में महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई और दुग्ध अभिषेक करती हुई शिवलिंग के पास यहां पर बेलपत्र अर्पित करती हुई नजर आ रही हैं। दूध का अभिषेक किया जा रहा है। देश भर के शिवालयों से कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब गिर सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर पूजन हो रहा है, आरती हो रही है और बड़ी संख्या में भक्त यहां मौजूद।
2: गिर सोमनाथ गुजरात की ये तस्वीरें, पूजा अर्चना यहां हो रही है। सुबह सवेरे श्रद्धालुओं का तांता यहां लगा हुआ है। भक्त दूर दूर से आए हैं सिर्फ भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तो आज सावन का तीसरा सोमवार और नागपंचमी का पर्व जो कि काफी उत्साह के साथ मंदिरों में मनाया जा रहा है।
3: अब गोरखपुर के मुक्तेश्वर मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ पर महिलाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी और यहाँ पूजा अर्चना करती हुई, आरती करती हुई, अपनी मनोकामना लिए हुए यहाँ दीपक जलाती हुई महिलाएं आप देख सकते हैं।
2: तो आज भी मंदिरों में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। और ये अगली तस्वीर आप मुंबई की देख रहे हैं, बाबुलनाथ मंदिर की ये तस्वीरें। मुंबई में उसी तरह का उत्साह यहाँ पर भी श्रद्धालुओं में दिख रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है भक्तों को भोलेनाथ के दर्शन के लिए।
3: और अब आपके सामने मुरादाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर भी पूजा अर्चना की जा रही है। यहां पर आशीर्वाद ले रहे हैं श्रद्धालु, दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। भोर से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही पूजा शुरू हो चुकी है। आज बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है, आज नागपंचमी और सावन का तीसरा सोमवार दोनों है, और इसलिए श्रद्धालुओं की अपार आस्था अपार भक्ति नजर आ रही है।
2: तो भोलेनाथ के इस प्रिय महीने में हर कोई चाहता है कि भोलेनाथ के वो दर्शन कर ले। और ये प्रयागराज की वासुकी मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी उस तरीके का ही नज़ारा देखने को मिला। हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे मंदिर परिसर में गूंज रहे हैं। नागपंचमी पर भी खास पूजा अर्चना की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और मंदिरों में क्योंकि इतनी भीड़ है, ऐसे में मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए भी खास व्यवस्था आज के दिन की जा चुकी है।
3: और अब दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। इन लाइव तस्वीरों के जरिए आप जीएनटी के माध्यम से शिव दर्शन कर सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर में और सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह सवेरे यहाँ पर पूजा अर्चना जारी है। सावन के तीसरे सोमवार के दिन यहाँ पर पूजा अर्चना होते हुए ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं और दिव्य दर्शन कर सकते हैं।
2: तो ये शिव दर्शन की लाइव तस्वीरें लगातार जीएनटी के दर्शकों के लिए हम हर बार हर सोमवार को लेकर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर की तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं।
3: और चलिए बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सावन और नागपंचमी पर हमारी विशेष कवरेज आएगी।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: क्या है नागपंचमी के पर्व का महत्व, क्या है नागपंचमी के पर्व का पूजा विधान और नागपंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: सावन के तीसरे सोमवार पर बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय, बड़ी संख्या में रात से ही जलाभिषेक के लिए मंदिर में उमड़ रहे बाबा के भक्त।
2: नागपंचमी पर विधि विधान से खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट, गुवाहाटी के सुरकेश्वर मंदिर से लेकर प्रयागराज से वासुकी मंदिर तक नाग देवता की पूजा करने उमड़े भक्त।
3: सावन के तीसरे सोमवार पर फूलों से सजा काशी विश्वनाथ धाम, बाबा का भी विशेष श्रृंगार किया गया, बड़ी संख्या में जलाभिषेक के लिए पहुंचे कांवड़िए।
2: महादेव के जय घोष के साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज, पुंछ के लिए रवाना हुए श्रद्धालु, एलजी ने दिखाई हरी झंडी, निकली भव्य त्रिशूल यात्रा।
3: आज से अगले चार दिनों तक यूपी के 24 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण प्रदेश में मॉनसून हुआ सक्रिय।
2: सैलानियों को लुभा रहा चीन का फुरोंग शहर, झरने और प्राचीन इमारतें बनी आकर्षण का केंद्र, वाटरफॉल पर बसा है जगमग रोशनी से नहाया फुरोंग।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शुभ समाचार में। आज सावन का तीसरा सोमवार है और नाग पंचमी का महापर्व भी है। उज्जैन में आज आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सावन सोमवार और नाग पंचमी के मौके पर बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है।
1: तो वहीं सुबह भस्म आरती में बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार और अभिषेक हुआ। इसके बाद नित्य पूजा और आरती के दौरान भी श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। वहीं नाग पंचमी के अवसर पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट भी खुले हैं।
0: दर्शन की आस में भक्तों की लंबी कतार मंदिर के बाहर तक पहुंच गई है। हर कोई बस एक झलक पाने को आतुर है और पूरे उज्जैन में हर हर महादेव की जयकारे गूंज रहे हैं।

0: और चलिए अब आपको महाकाल की भव्य और दिव्य आरती के दर्शन भी करवा देते हैं। तस्वीरें उज्जैन महाकाल मंदिर की हैं, जहां पर भव्य रूप से यहां पर दुग्धाभिषेक जलाभिषेक किया जा रहा है, आरती की जा रही है, वैदिक मंत्रोच्चार जारी है,
1: तो भस्म आरती भी यहां पर की गई है और अद्भुत तस्वीरें सुबह सामने आई जब महाकाल का दिव्य अभिषेक किया गया और इस के दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे।
2: आज बाबा को चांदी का पंचमुखी चांदी का नाग चढ़ाया जाता है, साल में भगवान को नाग चढ़ा के पूजा आरती की गई, वो महा आरती की गई। आज लाखों जनता आए उज्जैन में, ये साल में एक दिन नागचंद्र के दर्शन खुलते हैं, तो मैं भगवान को रात को 12 बजे पट खुल गए, वो मैं लाखों जनता माँ भी दर्शन कर रही हो, बाबा महाकाल के भी दर्शन कर रही है।
3: भस्म आरती हमारा बहुत अच्छे से हुआ। आज का जो अनुभव था, लाइफ का पहला अनुभव था मेरा, इतना अच्छा दर्शन हुआ है। मैं चाहती हूँ हर कोई आके ये दर्शन अनुभव ले। बहुत अच्छा भस्म आरती का जो ये रहता है, वो जैसे गूज़बम्प आते हैं, जैसे ही स्टार्ट होता है, जो श्रृंगार होता है, वो बहुत ही अच्छा हुआ और सारे मंदिर परिवार में सब लोगों ने अच्छी तरह से सपोर्ट करा।
1: तो वही महाराष्ट्र में भी भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। गांधीग्राम स्थित पूर्णा नदी से जल भरकर कावड़िए बम बम भोले के जय घोष करते हुए अकोला पहुंच रहे हैं और यहां पर कावड़ लेकर भक्त भगवान राजराजेश्वर को जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं।

0: महाराष्ट्र में कांवड़ यात्रा की दिव्य छटा बिखर रही है। श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद जल भरकर भगवान भोले शंकर को अर्पित करने पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में सावन मास का पहला सोमवार होने के चलते भगवान शिव के जलाभिषेक का बड़ा महत्व माना जाता है। इससे मनोकामना पूर्ति और शुभ फलों की प्राप्ति की मान्यता है। ये तस्वीरें अकोला से लगभग 20 किलोमीटर दूर गांधी ग्राम स्थित पूर्णा नदी के महाकाल घाट की है, जहां सावन मास के प्रथम सोमवार के पहले शिव भक्त जल भरने पहुंचे और फिर कांवड़ लेकर भगवान शिव का जयकारा लगाते और भक्ति भाव में झूमते हुए अकोला के राजराजेश्वर मंदिर के लिए निकल पड़े।
1: हम यहाँ से कांवड़ गांधी ग्राम से कापसी में अपने सूफीनाथ महाराज पे 15 साल से कांवड़ ले जा रहे हैं। 21 कलसिया है, यहाँ से ले जाकर हम वहाँ पर पिंडी पे अर्पण कर।
0: अपनी पूरी तैयारी करने के साथ जल भरकर कांवड़िये रात के समय अकोला के लिए निकल पड़े। भगवान राजराजेश्वर के प्राचीन शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए इन शिव भक्तों ने कांवड़ के साथ 20 किलोमीटर की लंबी यात्रा की। लगभग 80 साल पुरानी परंपरा के तहत पूर्णा नदी के महाकाल घाट पर जल भरने के लिए रविवार को शिव भक्तों का तांता लगा रहा।
2: जो है सावन का पहला सोमवार है और अकोला में जो अकोला की वैभवशाली रही कांवड़ यात्रा पहले दिन से ही जो है वो कांवड़धारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कांवड़ भरकर जो है रात भरे का लगभग 20 किलोमीटर का जो प्रवास है वो कर अकोला के जो आराध्य है राजराजेश्वर शिवलिंग मंदिर को जो है सवेरे जल अर्पित करने की ये परंपरा लगभग 80 साल से निरंतर यहाँ पर चल रही है। और 7 सितंबर को जो है वो सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा जो अकोला का वैभव है और देश और दुनिया में सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा का आयोजन यहाँ पर होता है।
0: पूर्णा नदी से जल भरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी दिखी। घाट से जल भरने को लेकर लाइट समेत हर तरह की व्यवस्था भी विशेष रूप से की गई थी। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और दक्षिण भारत में अमान पंचांग के अनुसार सावन का मास 13 अगस्त से शुरू हुआ। उस हिसाब से 17 अगस्त को भगवान शिव के इस प्रिय महीने का पहला सोमवार है और इसी को लेकर मंदिरों में भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करने के लिए शिव भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। अकोला से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल तक शिव भक्तों के भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िये पहुंच रहे हैं, तो वहीं आसनसोल से बाल कांवड़ियों का एक दल देवघर के बैद्यनाथ धाम के लिए भगवान शिव का जयघोष करते हुए रवाना हुआ।

0: देश के अलग अलग हिस्सों में सावन मास की दिव्य छटा छाई हुई है। कहीं कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है तो कहीं बाल कांवड़ियों की टोली लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पहले बिहार के मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें देखिए, जहां बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए शिव भक्तों का हुजूम बाबा गरीबनाथ धाम पहुंच रहा है। यहां पूरे सावन मास शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। विशेषकर इस मास के सोमवार के महत्व और मान्यताओं को लेकर इस दिन कांवड़ियों की भीड़ उमड़ती है। सावन के तीसरे सोमवार को लेकर यहां बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करने पहुँच रहे कांवड़ियों का फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा है।
1: मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ में जल चढ़ाने वाले कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है और सैकड़ों सेवा दल सेवा शिविर लगाए हुए हैं। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है, आप देख सकते हैं कांवड़िया श्रद्धालुओं पर पुष्प की वर्षा की जा रही है, तो उनके नाथ में चाय पानी की व्यवस्था है,
2: ठंडा पानी, गर्म पानी, चाय, दूध, फल की व्यवस्था की गई है। पूरी व्यवस्था 17 साल से हो रहा है। सम्राट चौधरी जी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। पहली बार मुजफ्फरपुर में गिरिराज सिंह फैंस क्लब द्वारा पुष्प वर्षा किया जा रहा है।
1: क्या सेवा हो रहा है?
2: न्यूरोथेरेपी सेवा हो रहा है। भारतीय वैदिक चिकित्सा का न्यूरोथेरेपी सेवा चल रहा है, बिना दवा बिना मशीन के वैदिक चिकित्सा से तुरंत आ रहा।
0: भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने पहुंच रहे कांवड़ियों के लिए यहां सेवा शिविर भी लगे हुए हैं, जहां उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल के आसनसोल की ये तस्वीरें देखिए, जहां बोल बम का जय घोष करते हुए आगे बढ़ते बाल कांवड़िये आकर्षण का केंद्र बने। आसनसोल के कुलटेत स्थित सिद्धेश्वरी मंदिर से बाल कांवड़ियों का दल झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। 301 बाल कांवड़ियों के इस दल के साथ उनके माता पिता समेत बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में मौजूद थे। बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होने से पहले बच्चों ने सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ भगवान शिव को जल भी अर्पित किया। बाल कांवड़ियों के देवघर रवाना होने के दौरान पूरा मंदिर परिसर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा।
3: इस घाट से कांवड़ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि सिद्धेश्वर नाथ मंदिर जाकर बाबा के चरणों में जल अर्पण कर शेष होगी। बाबा ने बुलाया है, इसीलिए बाल कांवड़िये आए हैं।
0: सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से बच्चों को जोड़े रखने के उद्देश्य से इस यात्रा का आयोजन किया गया। बाल कांवड़ियों के इस दल को डमरू वादन के साथ रविवार को बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए देवघर रवाना किया गया। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा और आसनसोल से अनिल गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी शिव भक्ति के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। दरअसल जम्मू से यहां पर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ, तो वहीं पुंछ में त्रिशूल यात्रा की भव्य छटा बिखरी हुई है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं।
0: जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्थित हिमालयी तीर्थस्थल बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को इस यात्रा समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने यात्रा के महत्व पर अपने विचार भी रखे।
5: केवल पर्वतों और घाटियों को पास करने वाली यात्रा नहीं है, ये हमारे बाहरी पथ से कहीं अधिक हम सबके अंतर्मन की यात्रा है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये तीर्थ यात्रा स्वयं के भीतर से चेतना को पहचानने की भी यात्रा है। यह पावन तीर्थ यात्रा भगवान शिव की ओर अग्रसर होने की भी यात्रा है, जो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थल की दिव्य ऊंचाइयों में विद्यमान है।
0: 12 दिनों तक चलने वाली बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। बाबा बूढ़ा अमरनाथ छड़ी यात्रा से पहले पुंछ जिले में स्थित नवग्रह मंदिर से दिव्य त्रिशूल यात्रा भी निकाली गई। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच त्रिशूल की पूजा की गई। पूजा अर्चना के बाद गाड़ियों के काफिले के साथ त्रिशूल यात्रा शुरू हुई। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष करते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस त्रिशूल यात्रा में शामिल हुए।
6: जो त्रिशूल यात्रा है, आपको पता है हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब यहाँ आती है उससे एक दिन पहले ये जो त्रिशूल यात्रा है ये नवग्रह मंदिर अजोट जो कि देरिया में है वहां से निकलती है और यात्रा ग्राउंड तक पहुंच रही है। आपने देखा होगा भोले का जो त्रिशूल है ये एक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो हमारे पुंछ के वासी हैं, खास करके बिना मजहब मिलत हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पहुँचता है और ये खास करके एक तरह से आयोजन होता है बाबा बूढ़ा अमरनाथ से पहले कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आ रही है जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए सारे पुंछ वासियों को, जिस तरह से वो वेलकम करने के लिए हर बार यात्रियों को यहाँ पहुँचते हैं।
0: पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ गुफा के समान ही आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने मां पार्वती को यहीं से अमर कथा सुनाने की शुरुआत की थी जो बाद में अमरनाथ गुफा में पूरी हुई थी। एक मान्यता ये भी है कि यहां एक महिला को भगवान शिव ने बूढ़े बाबा के रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए इन्हें बूढ़ा अमरनाथ कहा जाता है। ये मंदिर और इस मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग सफेद चकमक पत्थर से बने हैं। मंदिर में विराजमान स्वयंभू शिवलिंग अमरनाथ गुफा की तरह बर्फ का नहीं बल्कि एक ही प्राकृतिक ठोस चट्टान के रूप में प्रकट हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस हफ्ते अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के बड़े हिस्से में मानसूनी बादलों का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यूपी, हरियाणा और पंजाब में इस हफ्ते अच्छी बारिश होने के आसार है। पहाड़ी राज्यों में 20 अगस्त से तेज बारिश हो सकती है।
0: बारिश की रफ्तार पर भले ही ब्रेक लगा हो लेकिन बादलों की आवाजाही ने दिल्ली एनसीआर के मौसम को सुहाना बनाए रखा है। पिछले दो दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हुई लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में आने वाले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल देश में दो मानसून सिस्टम एक्टिव है, इनमें से एक उत्तर में पाकिस्तान के पास है जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल के करीब बना हुआ है। इन्हीं की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस पूरे हफ्ते अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है।
7: ओवरऑल अगर हम बात करें तो पश्चिम हिमालय क्षेत्र में हैवी टू वेरी रेनफॉल और मैदानी क्षेत्रों में भारी वर्षा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में इस सप्ताह होते रहने की संभावना है। और आने वाले 24 घंटे की बात करें तो मुख्य चेतावनी जो है उड़ीसा, झारखंड के लिए और उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए है जो कि डिप्रेशन के प्रभाव में है, और दूसरा जो स्पेल है वो पहाड़ों के लिए है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली इसके आसपास के क्षेत्रों में।
0: मानसून का असर मैदानों में ही नहीं पहाड़ी राज्यों में भी दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 20 अगस्त से भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कुछ पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है।
7: तो खास इसमें बदलाव होने की संभावना नहीं है। मानसून अपनी एक्टिव कंडीशंस खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में बना हुआ है और आने वाले 2-4 दिनों में ये एक्टिविटी बने रहने की संभावना है क्योंकि सिस्टम अभी बना हुआ है।
0: पश्चिम बंगाल के आसपास बने लो प्रेशर एरिया की वजह से ओडिशा, झारखंड, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। यानी अगस्त के महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। ये बारिश एक तरफ लोगों को गर्मी और उमस से राहत देगी वहीं दूसरी तरफ अच्छी बारिश से फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद भी जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं हैं। देखिए कीकू शारदा की फनी इंस्टा स्टोरी।
8: भैया अगर मैं आपके अकाउंट में एक महीने बाद 20,000 रुपए डालूं तो आपको कैसा लगेगा?
9: मुझे अच्छा लगेगा।
8: सोच लीजिए एक महीने बाद।
9: तो क्या हुआ, पैसा आ ही रहा है ना, एक महीने बाद ही सही, लेकिन आ रहा है तो मुझे तो अच्छा लगेगा।
8: तो अभी मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए, अगले महीने आपके अकाउंट में डाल दूंगा।
10: हेलो डॉक्टर साहब।
9: हेलो हेलो
10: डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट आ गई।
9: अरे हाँ, मैं तुम्हारी रिपोर्ट ही देख रहा था। तुम राधेश्याम जी के बेटे हो ना?
10: जी।
9: राधेश्याम जी को मेरा हेलो कहना।
10: लेकिन डॉक्टर साहब उनको गुजरे हुए 3 साल हो गए।
9: खत्म।
11: बाय बाय टाटा गया।
4: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
11: देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
13: क्या है नाग पंचमी के पर्व का महत्व, क्या है नाग पंचमी के पर्व का पूजा विधान और नाग पंचमी के पर्व पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
14: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियाँ तो कहीं हादसा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: सावन के तीसरे सोमवार पर बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय, बड़ी संख्या में रात से ही जलाभिषेक के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं बाबा के भक्त। नाग पंचमी पर विधि विधान से खुले नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट, गुवाहाटी के सुरकेश्वर मंदिर से लेकर प्रयागराज के वासुकी मंदिर तक नाग देवता की पूजा करने उमड़े भक्त। सावन के तीसरे सोमवार पर फूलों से सजा काशी विश्वनाथ धाम, बाबा का विशेष श्रृंगार, बड़ी संख्या में जलाभिषेक को पहुंचे कांवड़िए। हर हर महादेव के जयघोष के साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज, पुंज के लिए रवाना हुए श्रद्धालु, LG ने दिखाई हरी झंडी, निकली भव्य त्रिशूल यात्रा। आज से अगले चार दिन तक यूपी के 24 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण प्रदेश में मॉनसून हुआ सक्रिय। सैलानियों को लुभा रहा चीन का फुरोंग शहर, झरने और प्राचीन इमारतें बनी आकर्षण का केंद्र, वॉटरफॉल पर बसा जगमग रोशनी से नहाया फुरोंग।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे नाग पंचमी के पर्व की और नाग पंचमी के पर्व के पूजा विधान की। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम के 5 बजे तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 4:19 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी के पर्व के बारे में। नाग पंचमी का महत्व क्या है और हिंदू धर्म में इसकी महिमा क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। पंचमी तिथि के स्वामी वैसे भी सर्प यानी नाग होते हैं, तो नाग पंचमी की तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है और नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। राहु और केतु को सर्प के समान माना गया है, तो अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करके आप राहु केतु को शांत कर सकते हैं। अगर आपको सर्प के स्वप्न आते हो या सर्प से भय लगता हो तो भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से लाभ होता है। इस बार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को है। 17 अगस्त को पूरे देश में, दुनिया में नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाएगा। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, लेकिन चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नाग पंचमी पर पूजा करने का एक तरीका है, तो नाग पंचमी पर सामान्य पूजा कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले भगवान शिव का स्मरण करिए, भगवान शिव को याद करिए। पहले भगवान शिव का अभिषेक करिए, नमः शिवाय कहते हुए उनको बेलपत्र और जल अर्पित करिए, और इसके बाद शिव जी के गले में जो नाग विराजमान हैं उन नागों की पूजा करिए। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करिए। इसके बाद जरा सा चना, खील बताशा और बहुत जरा सा कच्चा दूध अर्पित करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाइएगा, और आकृति सर्प की बनाने के बाद इसकी भी पूजा करिएगा, और इसके बाद हाथ में जल लेकर पूरे घर में छिड़किए और कहते जाइए, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, ये कहते हुए जल पूरे घर में छिड़किएगा। तो सामान्य तरीके से नाग पंचमी की पूजा प्रातः काल ही कर लीजिए, प्रातः काल करना अच्छा होगा। और नागों की पूजा करने के पहले भगवान शिव की पूजा कर लेना आवश्यक है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ हो सकता है, यात्रा के योग बने हुए हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ के विवादों से इस समय बचाव करिएगा, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं,
अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि नाग पंचमी पर जब आप पूजा करेंगे तो किन सावधानियों का पालन करेंगे। देखिए, बिना शिव जी की पूजा किए हुए कभी भी नागों की पूजा मत करिएगा। स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा कभी मत करिए। स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा करने पर आपको नुकसान हो सकता है। नागों की पूजा शिव जी के गले में आभूषण के रूप में करें। जो लोग नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें नाग पंचमी पर जमीन नहीं खोदनी चाहिए और साग यानी लीफी वेजिटेबल्स नहीं काटने चाहिए। साग काटने से भी बचना चाहिए। ये जो नाग शक्ति है ये जीवन में आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसीलिए ये नाग शक्ति कंट्रोल में बनी रहे इसीलिए शिव जी के आभूषण के रूप में नागों की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको सांप से डर लगता हो या सर्प के बहुत ज्यादा सपने आते हो तो क्या करें? चांद

के नाग के ऊपर गिराइएगा और स्वस्तिक पर बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद कम से कम एक माला या तीन माला एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नागेंद्र हाराय नमः, ओम नागेंद्र हाराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। नागों को इसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करके भगवान शिव को नमस्कार करेंगे और जो चांदी का स्वस्तिक है इसको लाल या पीले धागे में अपने गले में धारण कर लेंगे। आप इस स्वस्तिक को पहने रहेंगे तो आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। धनु राशि, करियर में विशेष लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नाग पंचमी के इसी अवसर पर 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी राशि बदल रहे हैं। अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सूर्य देव 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक बना रहेगा। इस राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव, सबसे ज्यादा निगेटिव असर वृषभ, कन्या और मकर राशि पर होगा। इनको अपने स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन मध्यम रहेगा, ये परिवर्तन एवरेज रहेगा, लेकिन इनको बड़े निर्णय लेने में इस समय सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय के बड़े निर्णय इनके लिए गलत हो सकते हैं। आपके नजदीकी रिश्तों में समस्या आ सकती है।

का भी आपको ध्यान देना होगा। ये परिवर्तन सूर्य का सिंह राशि में जाना मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए अच्छा है। इनको करियर के मामले में लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होते चले जाएंगे। देखिए, काल सर्प योग के नाम से लोग डरते बहुत हैं, बहुत घबराते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि काल सर्प योग कुछ नहीं होता। इसीलिए नाग पंचमी पर काल सर्प योग की जो आप पूजा करवाते हैं, इसका कोई सर पैर नहीं है। कोई भी ऐसी पूजा काल सर्प योग की आपको करवाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप किसी झूठे केस में, किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम एक एक बार दुर्गा कवच का पाठ करिएगा और हर मंगलवार को माँ दुर्गा को नींबू की माला पीले धागे में 3 या 9 नींबू लगाकर नींबू की माला बनाएं और ये देवी को अर्पित करें। ऐसा लगातार 3 महीने तक करें। झूठे मुकदमे और झूठे आरोप से आपको मुक्ति मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियाँ तो कहीं हादसा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: जब कभी भगवान ने प्रकृति बनाई होगी तो परमात्मा ने प्रकृति बनाते बनाते एक नाटक किया था, उस बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान ने जब संसार बनाया तो संसार बनाते बनाते परमात्मा पहले हर जगह मिल जाता था सबको ही, शुरू शुरू की बात। तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत हुआ करती थी कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। भगवान बड़े परेशान होते थे, ब्रह्मा जी बड़े हैरान हुए, एक तो बनाया ऊपर से अब सब मुसीबतों को झेलो, परेशानियों को दूर करो। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने शंकर जी से उपाय पूछा कि कोई उपाय बताओ। तो भगवान ने उपाय, भगवान महादेव ने उपाय दिया कि एक काम करो, मंदिरों में बैठ जाओ, गांव में एक जगह, ताकि वहीं पर व्यक्ति आके मांग लिया करे। तो पहले कबीले हुआ करते थे, तो मंदिरों में जाकर के परमात्मा बैठ गया, तो लोग मंदिरों में लंबी लंबी लाइन लगाने लगे, और मंदिर में भगवान का कोई काम नहीं बचा, पूजा तो बाद में, पहले मनोकामना पूरी करो। ये भी लंबी चाल चली, अब वहां भी थोड़ा परमात्मा को परेशानी हुई। तो परमात्मा फिर भागे भगवान श्री हरि के पास, महादेव के पास, श्री हरि कि हम तो बड़े परेशान हो गए, तो पहले तो चाहे जहां मिल जाते थे तो चलो मिल जाओ, पकड़ जाते थे तो लोग छोड़ते ही नहीं थे, हर दो तीन जन्म की तैयारी कर लेते थे, अब मंदिरों में भी लंबी लंबी लाइन है, लाइन ही खत्म नहीं हो रही। तो भगवान महादेव ने कहा कि एक काम करो, 8-10 गांव के एक गांव में एक मंदिर पे बैठो, हर गांव के हर मंदिर में बैठने की आवश्यकता नहीं। अब वहां भी भीड़ बढ़ गई, वहां भी लाइन बंद ना हो, और ज्यादा जोर पड़ने लगा। तो भगवान महादेव ने कहा कि एक काम करो, दुनिया के एक जगह पर बैठो मात्र। परमात्मा भगवान दुनिया की एकमात्र मंदिर में जाके बैठ गया, वहां भी लंबी लाइन बढ़ गई, लोगों को पता लग गया, खबर लग गया कि ये वाला मंदिर ज्यादा चमत्कारी है, बागेश्वर वाला, यहां जाना चाहिए। लंबी लंबी लाइन वहां भी लग गई, और वहां भी परमात्मा को टाइम ना मिला, भगवान को टाइम ना मिला। भगवान बड़े परेशान हुए कि अब ऐसे कहां जाया जाए, आदमी से बचपना बड़ा कठिन हो गया है, और आदमी है ही ऐसी खोपड़ मंजन, आदमी का नाम ही है खोपड़िया, जो सिर है उसको खोपड़ी कहते हैं, और खोपड़ी का मतलब ही है खो गई और पड़ी है, इसलिए तो खोपड़ी है, खो गई और पड़ी है, तो खोपड़ी बड़ी खतरनाक है। अब परमात्मा भी हैरान खोपड़ी से, हो ही जाते हैं, परमात्मा क्या, पतियों से पूछो अथवा पत्नियों से पूछो, लंबी लंबी लाइनें इसी बात पे लगती हैं कि हमारे स्वामी की खोपड़ी बेकार है, और पतियों से पूछो क्या है, अरे क्या बताएं महाराज, हमारी घरवाली की खोपड़ी खराब है, खोपड़ी ठीक करो। और सब आदमी पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग एक दूसरे की खोपड़ी ठीक करवाने आते, भाई की खोपड़ी ठीक हो जाए, लुगाई की खोपड़ी ठीक हो जाए, पड़ोसी की खोपड़ी ठीक हो जाए, मित्र की खोपड़ी ठीक हो जाए, नौकर की खोपड़ियां ठीक हो जाए, मालिक की खोपड़ी ठीक हो जाए, तो खोपड़ी बड़ी खतरनाक। तो भगवान एक ही जगह बैठे बैठे परेशान हो गए, भीड़ लंबी लाइन, परमात्मा ने सोचा कि क्या किया जाए कि आदमी से बचा जाए और काम भी हो जाए और आदमी के पास भी रहा जाए। तो भागे भागे गए कि बचाओ, अब तो बड़ी हालत खराब हो गई। बोले हुआ क्या, अरे बोले हालत इतनी खराब हो गई हमारी कि पूछो मत। जगह जगह लंबी लाइन लगी हुई है और आदमी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो भगवान शंकर जी ने उस वक्त कान में एक मंत्र दिया कि हम तुम्हें एक ऐसी जगह बताते हैं जहां रहा जा सकता, और आज तक आदमी खोज रहा है। पता है कान में क्या कहा भगवान शंकर ने? आदमी के मन में जाके बैठ जाओ। मंदिरों में बैठोगे तो ये खोज लेगा, बड़े बड़े तीर्थों पर बैठोगे तो ये खोज लेगा, आदमी के दिल में जाके बैठ जाओ। ये बाहर खोजेगा, अंदर नहीं खोजेगा, ये पा नहीं पाएगा, और जो अंदर खोजेगा वो पा जाएगा। आज तक परमात्मा उसके बाद अभी भी बैठा है, अंदर बैठा है, दिल में बैठा है। बस हम लोगों ने बाहर खोजने की जिद की, कोशिश की, और आज तक तुम लगे हुए हो, हम लगे हुए हैं, बाहर खोजने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है, और वो आज तक नहीं मिला। और आपके जीवन में मात्र एक दिन ध्यान की बात घटी, थोड़ी सी, वो भी आपने प्रैक्टिस की, ध्यान की यही कहा, प्रैक्टिस की थी थोड़ी सी, और आपको नए नए अनुभव होने लगे। और विचार करो कि जब ये सच में तुम्हारे अंदर ध्यान आ जाएगा तो क्या क्या अनुभव नहीं होगा, क्या क्या नहीं घटेगा, कितना आनंद नहीं आएगा, कितना उत्साह नहीं भरेगा, कितनी प्रसन्नता नहीं भरेगी। लेकिन उसमें भी एक बात है, वो पते की बात है, ये मन तुम्हें फिर चालबाज में फंसाएगा। घर जाते ही कहेगा कि चलो ऊर्जा संचय तक तो ठीक था, अब कौन रोज सुबह सुबह उठे, 3 बजे उठे, फिर ये करे, फिर ये करे, और उससे हो भी क्या जाना है। कुछ चीजें, हर चीजें हो जाने के लिए नहीं की जाती हैं, की जाती हैं करने के लिए। बाली की आधे से ज्यादा भाषा संस्कृत है, यहां पति को स्वामी कहते हैं, हाँ, और प्रारंभ में अंत में मंत्र जाप करते हैं। बाली में 80% से ज्यादा हिंदू, यहां रहने वाले मुसलमान भी, दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म का पालन करते, रिस्पेक्ट करते। बाली की एक अद्भुत बात दूसरी यह है कि ज्यादातर घरों के बाहर गणेश जी की मूर्ति मिलेगी। बाली की एक और सबसे अद्भुत बात है कि कई 100 वर्ष पहले भारत छोड़ दिया, पर सबसे ज्यादा करीब भारत के हैं, आज भी इनके नाम रामा, गणेश, सीता, देवी, दुर्गा, सबसे ज्यादा कॉमन नाम यहां पर आज भी यही रखे जाते। बाली की एक और सबसे खासियत बात है, वो ये है कि जब यहां पर सनातनीय हिंदू अपना वार्षिक त्योहार मनाते हैं तो लगभग 12 से 24 घंटे का मौन व्रत धारण करते हैं, नेपी के रूप में जब 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है तो मौन धारण करते हैं। तो अद्भुत बात यह है कि लगभग 12 घंटे के लिए एयरपोर्ट की गति भी रुक जाती है ताकि आवाज न आए। होटलों की लाइटें बंद होती हैं और किसी को भी लाइट जलाने की अनुमति नहीं होती है। हिंदुओं के इस त्योहार में हर एक व्यक्ति सम्मिलित होता, और अद्भुत बात ये कि बाली में जिस दिन हिंदुओं का ये नेपी त्योहार होता है, मौन साइलेंस का त्योहार होता है, उस दिन मस्जिदों से पढ़ी जाने वाली अजान का लाउड स्पीकर से नहीं पढ़ी जाती। इतनी यूनिटी है, इतनी एकता है, इतनी अद्भुतता है। यहां लगभग 17,000 से ज्यादा आइलैंड, छोटे छोटे टापू, 17,000 से ज्यादा, जिसमें मात्र 900 टापुओं पर जीवन है, बाकी अभी भी ऐसे ही। और ये लोग अभी भी अपने आप को भारतीय मानते, बड़े स्माइली फेस हैं, उन्मुक्त हैं, आनंदित रहते हैं, संस्कृति को लेकर चलते हैं, हर परिस्थिति में संस्कृति को लेकर चलते हैं। यहाँ पर प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं, 6वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी आदि आदि के अनेक मंदिर हैं, जिसमें प्रमुख मंदिरों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश, इन मंदिरों की प्रधानता है। अब से ठीक कुछ दिन पहले हम जकार्ता गए थे। जकार्ता के पास भी एक जगह है, उसका नाम है जोग जकार्ता। वहां 11वीं शताब्दी का टेम्पल है। और कुछ दिन पूर्व ही भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां आए थे, और इंडोनेशिया और भारत का मधुर संबंध है वो और प्रगाढ़ हुआ, और उस मंदिर का संरक्षण भारत को प्राप्त हुआ। और यहां भारत से बड़े प्रगाढ़ रिश्ते हैं, भारत के लोगों को ये बहुत प्रेम करते हैं, और भारत के लोग भी बाली को और इंडोनेशिया को बहुत प्रेम करते हैं। तो यहां के लोगों की एक और सबसे अद्भुत बात है कि अपनी भाषा इन्होंने बचाए रखी, और भाषा में भी ज्यादातर शब्दों का प्रयोग ये संस्कृत का ही करते हैं। जैसे हम लोग सिर को खोपड़ी बोलते हैं, ये लोग कपाल बोलते हैं, कपाल। पति को स्वामी, प्रायः पूर्व समय में हमारे भारत में, अब तो हस्बैंड हो गया, अब हस्बैंड ही नहीं बचा, गोलू सोना मोना है? बेबी, बच्चा, बेबी, पति, बेबी, धन्य है देवी, हनी, ओ हनी मनी, अच्छा हनी, वाह, है हनु, हाँ। वाह, हाँ। ये अद्भुत बात है कि बाली की एक और ये सबसे अभूतपूर्व बात कि यहाँ पूर्णमासी का उत्सव मनाया जाता। पूर्णमा का अर्थ है पूर्ण मा, यही पूर्णमा। तो वाह, मतलब पूरे बाली में जितने भी सनातनी हिंदू रहते उनका एक मंदिर होता है, हर घर का एक मंदिर, मध्य में जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। भारत के जो लोग इस वीडियो को देखेंगे बाली के बारे में, हम यही कहेंगे कितनी भी दूरी हो भारत से, दुनिया के जो भी लोग देखें, हमारी प्रार्थना है दूरी कितनी भी हो संस्कारों से नजदीकी इतनी ही बनाए रखनी चाहिए। मन और मकान दोनों को बीच बीच में साफ किया जाना चाहिए। मकान को बार बार साफ नहीं करोगे तो जाले पड़ जाएंगे, और मन को बार बार साफ नहीं करोगे तो विचारों के भी जाले पड़ जाएंगे। दोनों जगह रहने जैसी हैं, मन भी और मकान भी। इसलिए मन को साफ किए जाने का सर्वोत्तम उपाय है विचारों की शुद्धि। और जितने बेहतरीन विचारों की शुद्धि आपकी होगी, उतने ही परे देखना, बेहतर समझना, बेहतर सुनना और बेहतर जीना, आप जीना सीख पाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो बहुत कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें परिस्थितियों का बहुत फर्क नहीं पड़ता, ना प्रभाव का ना अभाव का, क्योंकि उनके पास एक मंत्र होता है, और वो मंत्र आज हम आपको देना चाहते। उनके पास एक जीने का जो मंत्र होता वो ये होता है कि वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या छोड़ना चाहिए, वो इस पर ध्यान देते हैं कि क्या पकड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए, ये छोटी सोच के लोगों की बुद्धि की परिस्थिति है। क्या पकड़ना चाहिए, ये बेहतर सोच के लोगों की स्थिति है। और इसके ऊपर भी एक स्थिति है, क्या छोड़ना चाहिए और क्या पकड़ना चाहिए, इन दोनों से भी ऊपर उठा जा सकता है कि ना कुछ छोड़ना चाहिए ना कुछ पकड़ना चाहिए। एक आदमी हमारे बहुत अच्छे से सुआ करते थे, तो हमारे साथ वो भी बहुत चाय पीते थे, बड़े फुरकेबाज थे चाय के मामले में हमारे जैसे। अभी पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई तो हमारे पास चाय आई, तो हमने इशारा किया अपने चेलों को, जरा भाई इनको भी लाओ, तो उन्होंने मना कर दिया। हम पहली बार चौंके कि लगभग 8-10 साल की दीक्षा हो गई उनकी, उन्होंने चाय को पहली बार मना किया, थोड़े पुराने चेले हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने चाय छोड़ दी, हमें बड़ी खुशी हुई। हम कहा चलो बेहतर हुआ, कम से कम गुरु चेला दोनों एक ही नरक में तो नहीं जाएंगे, अगर चाय पीने से नरक मिलता होगा तो कम से कम दोनों एक ही जगह तो नहीं मिलेंगे, तुम कुछ दिन रहोगे फिर दूसरी जगह जाओगे। लेकिन बाद में खबर आई कि वो दूसरे कप में कुछ पी रहे थे, तो हमें बड़ा अचंबा लगा। तो हम उनके पास पहुंच गए, हमने कहा अभी तो तुम कह रहे थे कि तुमने चाय छोड़ दी, बोले नहीं नहीं कॉफी पी रहे हैं। तो चाय छोड़ दी ये बात अलग है, पर कॉफी पकड़ ली ये बात अलग है थोड़ा। अब वो कहो कि आप इसमें भी आपको प्रसन्नता है, ठीक है, हम इन दोनों परिस्थितियों से ऊपर उठने की बात आज करना चाह रहे हैं कि कुछ ना पकड़ा जाए ना कुछ छोड़ा जाए। जीवन में पकड़ना ही है तो केवल परमात्मा को पकड़ा जाए। मन बड़ा जादूगर है, मन में ही सब है, मन ही दुख की स्थिति पर ले जाता और मन ही सुख की परिस्थिति पर ले आता। दुख और सुख कुछ नहीं है, मन की अवस्था का नाम दुख है और मन की व्यवस्था का नाम सुख है, मन की स्थिति का नाम ही आनंद है। ठीक अभी आपको पता लगे कि आप जो बाली आए हैं और आपको 1 करोड़ रुपया की लॉटरी लगी, आप बहुत खुश हो जाएंगे, हो सकता पार्टी वार्टी कर दे। लेकिन तब तक अचानक दूसरी न्यूज ब्रेकिंग हो कि तुम्हारे पड़ोसी को 2 करोड़ की लॉटरी लगी, तो जो मन अभी अभी प्रसन्न हुआ था वो तुरंत थोड़ा सा डाउन होगा कि 2 करोड़ की उसे क्यों, वो तो नास्तिक है, अधर्मी है, पापी है। यही मन की परिस्थिति सुख दिखाती है, यही मन की परिस्थिति दुख दिखाती है। और मन के जाल को आपने यदि समझ लिया तो समझो जीवन के जाल को आपने समझ लिया, मन के जाल को ना समझा तो जीवन का जाल तुम्हें समझना आएगा। ये मन तुम्हें नई नई फैंटेसी देगा, नए नए भाव देगा, जो कर चुके होगे वो कहेगा ये तो कुछ नहीं है और ये बड़ा आलसी है, इसे जब पूजा तुमसे नहीं करवानी होगी तो कहेगा बस 5 मिनट और, 5 मिनट सो लो, क्या बिगड़ जाएगा 5 मिनट में। और तुम अंदाजा करना कि जब भी इसने 5 मिनट को सोने कहा 3 घंटे के पहले नींद ना खोली इसने। इसे पता है कि कोई एक छोटा सा उदाहरण इसके मन में दो, इसके अंदर दो, और ये मान भी जाता है और तुम इतने कमजोर हो के जल्दी मान जाते। और उसी वक्त कोई व्यक्ति वो 5 मिनट का आशा छोड़कर उठ जाए, मन हार जाएगा और व्यक्ति जीत जाएगा। मन कहता है कहां पड़े हो, कौन पूजा पाठ करे, बार बार जन्म थोड़ी मिलना है, बार बार थोड़ी आना है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो। ये मन की चालें, मन को पता है कि ऐसी बातें बोलने से बार बार नहीं आना है, ये गलतियां करेगा, ये पड़ेगा फंसेगा जाल में। इसलिए मेरे पागलो सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन का प्रभाव जीवन पर होता है, और जीवन का प्रभाव भाग्य पर होता है। आप जो सोचोगे वो शब्द बनेगा, जो शब्द बनेगा वो तुम्हारा कर्म बनेगा, और जो तुम्हारा कर्म बनेगा वो तुम्हारी आदत बनेगी, और जो आदत बनेगी वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। पूरा खेल है सोच का, पूरा खेल है मन का। जीवन को बेहतर करना है, सोच को बेहतर कर लिया जाए। जीवन को प्रसन्न करना है, मन को प्रसन्न कर लिया जाए।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था,
11: सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
13: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
14: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
15: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
16: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
17: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
18: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
19: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
20: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
21: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं हादसा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: सावन के तीसरे सोमवार पर बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय, बड़ी संख्या में रात से ही जलाभिषेक के लिए मंदिर में उमड़ रहे बाबा के भक्त। नाग पंचमी पर विधि विधान से खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट, गुवाहाटी के सुरकेश्वर मंदिर से लेकर प्रयागराज के वासुकी मंदिर तक नाग देवता की पूजा करने के लिए उमड़े भक्त। सावन के तीसरे सोमवार पर फूलों से सजा काशी विश्वनाथ धाम, बाबा का भी विशेष श्रृंगार, बड़ी संख्या में जलाभिषेक के लिए पहुंचे कांवड़िए। हर हर महादेव के जय घोष के साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज, पुंछ के लिए रवाना हुए श्रद्धालु, LG ने दिखाई हरी झंडी, निकली भव्य त्रिशूल यात्रा। आज से अगले 4 दिनों तक यूपी के 24 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण प्रदेश में मॉनसून हुआ सक्रिय। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लगी कतार। सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ का हुआ भव्य श्रृंगार, बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती के दौरान माहौल में खुली दिव्यता। बाबा विश्वनाथ के दरबार में उमड़े भक्त जलाभिषेक करने के लिए आए, कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा। सावन के तीसरे सोमवार के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम की भव्य सजावट, मंदिर परिसर की खूबसूरती ने मंत्रमुग्ध किया। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लगा शिव भक्तों का मेला, सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। उज्जैन में नाग पंचमी पर रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुले, साल में सिर्फ 24 घंटे मिलने वाले दर्शन के लिए आधी रात से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, नागपंचमी पर खुले पट आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। इस बार नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का भी शुभ संयोग, आस्था के खास संयोग पर उमड़ी भक्तों की भीड़। नागचंद्रेश्वर के दर्शन और महाकाल की सवारी के लिए बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए अलग अलग रास्तों और सुरक्षा के खास इंतजाम किए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नागचंद्रेश्वर मंदिर में 300 के शीघ्र दर्शन की व्यवस्था, इसके लिए रखे गए हैं ऑनलाइन स्लॉट। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ, सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती हुई, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंज उठी। सबसे दिव्य और अद्भुत थे वो पल जब महाकाल की भस्म आरती हुई, भक्त झूमते हुए नजर आए। उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और क्रिकेटर उमेश यादव, विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा की। प्रयागराज में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर नागवासुकी मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का मेला, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा की। नागवासुकी मंदिर में नागपंचमी के दिन पूजा करने से काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। नागपंचमी पर नागवासुकी मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मंदिर परिसर में तैनात किए गए जवान। अयोध्या में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर नागेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। शेषनाग मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया नाग देवता का दुग्ध अभिषेक, सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार के बागों वाले बागेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया नाग देवता का दुग्ध अभिषेक। मान्यता के अनुसार बागेश्वर नाग देवता की पूजा करने से मनोकामना होती है पूरी, काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। गाजियाबाद के बाबा दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में उमड़े शिव भक्त, भोलेनाथ की एक झलक को पाने के लिए ललायत हुए भक्त। नागपंचमी पर बाबा दूधेश्वर नाथ के भक्तों ने किया जलाभिषेक, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। कानपुर में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर कैलाश मंदिर में भक्तों का तांता लगा, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। सोमनाथ में पहले सोमवार पर सोमनाथ मंदिर में की गई भव्य सजावट, भोलेनाथ की उतारी गई आरती। गुवाहाटी में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर सुरकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा, भक्तों ने विधि विधान से बाबा भोलेनाथ की पूजा की। मुजफ्फरपुर में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर बाबा गरीबनाथ धाम में सुबह से लगा भक्तों का मेला, भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ के दर्शन। नागपंचमी पर गरीबनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बाराबंकी में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर लोधेश्वर महादेव धाम में भक्तों का मेला लगा, भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ के अभिषेक। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार की शुरुआत, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को लेकर भीड़ को देखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, करीब 600 जवानों को किया गया तैनात। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने सावन को लेकर वीआईपी दर्शन पर लगाई रोक, एक महीने तक नहीं वीआईपी दर्शन। वाराणसी में नागपंचमी पर नाग कुआ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने किए नाग देवता के जल अभिषेक। गोरखपुर में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उजाला होने से पहले ही दर्शन पूजन के लिए पहुंचे भक्त, सभी भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मधेपुरा में सिंहेश्वर धाम में सुबह से लगा भक्तों का तांता, भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। मुंबई में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर बाबुलनाथ में सुबह से भक्तों का मेला लगा, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक। लखनऊ में नागपंचमी में नागेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा, भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। मुरादाबाद के तीसरे सोमवार को प्राचीन गंगा मंदिर में भक्तों का मेला लगा, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा का जलाभिषेक। वाराणसी में सावन के सोमवार पर कांवड़ियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया, हर हर महादेव के जयकारे लगाए। पीलीभीत में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया, एसपी सुकीर्ति माधव ने कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की। पीलीभीत में कांवड़ियों के लिए विशेष कैंप तैयार किए गए, कांवड़ियों को कराया गया भोजन। हरिद्वार में श्री गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद के तत्वाधान में कनखल क्षेत्र में चार महामंडलेश्वर का किया गया पट्टाभिषेक। इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंड टेबल का आगाज हुआ, सीएम विजय ने लॉन्च किया इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल।

चेन्नई में आयोजित इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंड टेबल कार्यक्रम में सीएम विजय बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मंच पर साथ में इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री विजय ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सच को और मुखर होने कर और बोलने का दिया संदेश। इस कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नेता, नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और मनोरंजन क्षेत्र की हस्तियां होंगी शामिल। तमिलनाडु के भविष्य और सरकार के कामकाज की समीक्षा, मुद्दों पर चर्चा।

0: महादेव के जयकारे लगाए। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा 12 दिनों तक चलेगी, 28 अगस्त को होगा यात्रा का समापन। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, यात्रियों की सुविधा में इस बार इजाफा किया गया है। बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल तैनात, तो वहीं चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 16 अगस्त को नवग्रह मंदिर से भव्य त्रिशूल यात्रा निकाली गई। यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप कॉलेज ग्राउंड तक पहुंची। त्रिशूल यात्रा को बाबा बूढ़ा अमरनाथ की छड़ी यात्रा से पहले होने वाला धार्मिक कार्यक्रम बताया गया। इसमें श्रद्धालु भगवान शिव के त्रिशूल के साथ यात्रा में शामिल हुए। त्रिशूल यात्रा नवग्रह मंदिर में बीती शाम करीब 4:20 पर शुरू हुई। यात्रा शुरू होने से पहले त्रिशूल की हुई विधिवत पूजा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं हादसा। 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए।

0: अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है, और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियाँ तो कहीं हादसा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: सावन के तीसरे सोमवार पर बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय, हर हर महादेव के जय घोष के साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज। नागपंचमी पर विधि विधान से खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट, गुवाहाटी के सुरकेश्वर मंदिर से लेकर प्रयागराज के वासुकी मंदिर तक नाग देवता की पूजा करने के लिए उमड़े भक्त। आईआईटी कानपुर के छात्रों ने निकाली कांवड़ यात्रा, सरसैया घाट से गंगा जल लेकर पैदल आनंदेश्वर मंदिर पहुंचे, भगवान भोले का किया जल अभिषेक। मूर्छल के ढाबों पर अब इंसान नहीं रोबोट्स परोस रहे हैं खाना, एक बार चार्ज होने पर 2 घंटे तक सर्विस मिलेगी, सॉफ्टवेयर चिप से होती है कंट्रोलिंग। आज से अगले 4 दिनों तक यूपी के 24 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण प्रदेश में मॉनसून हुआ सक्रिय। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। वैसे तो पूरा सावन ही शिव भक्तों के लिए विशेष होता है, लेकिन आज तीसरा सोमवार होने के साथ साथ नाग पंचमी का पर्व भी है। खासतौर पर उज्जैन में आज भक्तों के लिए एक बेहद खास सौगात का दिन होता है। नाग पंचमी के मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट 24 घंटों के लिए खोल दिए जाते हैं। आपको बता दें, ये परंपरा है कि इस बार भी मंदिर के पट खोल दिए गए हैं इसके मुताबिक, और सिर्फ आज भर के लिए ये मंदिर खुला है। गुड न्यूज टुडे पर आज हम आपको इस दिव्य मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं, जहां नाग शैया पर भगवान विष्णु नहीं भगवान शिव अपने परिवार सहित विराजे हैं, और आज मध्य रात्रि तक उनके अलौकिक दर्शन हो सकेंगे। ये बेहद ही दुर्लभ दृश्य है, दुर्लभ नजारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नाग चंद्रेश्वर मंदिर जो कि महाकाल मंदिर में स्थित है, उसकी तीसरी मंजिल पर है, वो एक दिन के लिए खुला है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज बहुत ही बड़ा और बहुत ही खास दिन है। यहाँ पर शिव भक्तों और श्रद्धालुओं की अपनी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि आज लोगों को यहाँ डबल आध्यात्मिक लाभ हो रहा है। श्रद्धालु आज यहाँ पर बाबा महाकाल के साथ साथ नाग चंद्रेश्वर महादेव के भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि पूरे साल में एक ही बार नाग चंद्रेश्वर के दर्शन का अवसर मिलता है। आपको दिखाते हैं मध्यरात्रि में जब मंदिर के कपाट खोले गए तो श्रद्धा और भक्ति का कैसा उत्साह देखने को मिला।
1: मंदिर में अपार भीड़ है, श्रद्धा और भक्ति का उत्साह देखने लायक है। नाग पंचमी के पावन अवसर पर आज उज्जैन में भगवान नागेश्वर के दर्शन पूजन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि साल में एक ही बार ये खास मौका आता है जब देश और दुनिया के लोगों को भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन होते हैं। तो आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका श्रद्धालुओं को पूरे बरस इंतजार था। मध्य रात्रि को विधि विधान के साथ भगवान नाग चंद्रेश्वर के मंदिर के कपाट खोल दिए गए। महान निर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरिजी महाराज ने हर हर महादेव की गूंज के बीच नारियल फोड़कर मंदिर के कपाट खोले, तो तमाम श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इसके बाद पारंपरिक विधान के अनुसार भगवान नाग चंद्रेश्वर की विशेष त्रिकाल पूजा और आरती की गई।
2: नाग पंचमी का पर्व पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी क्रम में भगवान महाकाल के इस दिव्य मंदिर में उज्जैन में बहुत ही अद्भुत स्थान है। भगवान महाकालेश्वर का जो मंदिर है उसके तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं। परंपरानुगत तरीके से पंचायती खड़ा महानिर्वाणी के द्वारा महंत जो है नियुक्त होते हैं, वो उसकी पट खोलते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उसी परंपरा का हम सब लोगों ने पालन करते हुए भगवान नागचंद्रेश्वर के मंदिर के पट खोले और भगवान का षोडशोपचार पद्धति का ये जो पूजन पद्धति है उसके अनुसार पूजन करके और त्रिकाल पूजाओं में प्रथम पूजा करके और सभी श्रद्धालु दर्शन करते हैं।
1: इसके साथ ही इस साल पहली और अंतिम बार भगवान नाग चंद्रेश्वर के अद्भुत और अलौकिक दर्शन की श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो रही है। सावन के महीने में उज्जैन में जब नाग चंद्रेश्वर भगवान के मंदिर के कपाट खुले हैं, तो शिव भक्तों और श्रद्धालुओं को एक ही दिन एक ही साल बाबा महाकाल और भगवान नाग चंद्रेश्वर दोनों की उपासना का अवसर मिल रहा है। मध्य रात्रि से ही 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन पूजन के लिए महाकाल मंदिर परिसर में मौजूद रहे, और आज मध्य रात्रि तक इनकी संख्या लाखों तक पहुंच सकती है, क्योंकि नाग चंद्रेश्वर के दर्शन और उनकी उपासना का अवसर साल भर में एक ही बार मिलता है। तो इस मंदिर की महिमा के बारे में जानने वाले श्रद्धालु ये मौका नहीं चूकना चाहते। क्या आम और क्या खास तमाम श्रद्धालु और शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं ताकि भगवान के दर्शन का अपना मनोरथ पूरा कर सके और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सके।
3: कामना मुझे लगता है कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भोले बाबा को सब पता है अंदर का, पर मेरे लिए काफी महत्व का दिन है क्योंकि नाग पंचमी और साथ में सावन सोमवार भी है, और नाग चंद्रेश्वर जी के दर्शन साल में एक बार होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो खुशी और वो उत्साह है, क्योंकि साल में एक बार दर्शन करना और ये साल एक बार आना और मंदिर का खुलना और सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत ही कहते ना कि कम मंदिर है जहाँ पे ऐसे मंदिर है जिनका गेट साल में एक बार खुलता है, और मुझे लगता है वो एक नाथ चंद्रेश्वर है। तो मुझे लगता है इसी वजह से सारे श्रद्धालु चाहते हैं कि उनको दर्शन करने का मौका मिले, और हम भी यही चाहेंगे, पर भोले बाबा भी चाहते हैं सबके दर्शन हो, सब अच्छे से दर्शन करें और हंसी खुशी अपने जीवन व्यतीत करें। जय श्री माँ का।
1: आपको बता दें कि भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट हर साल नागपंचमी के अवसर पर केवल 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो आज मध्य रात्रि तक यानी रात 12 बजे तक श्रद्धालु यहां दर्शन पूजन कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार आज शाम 7:30 बजे पुजारी पुरोहित यहां विशेष पूजन करेंगे। फिर रात 12 बजे महानिर्वाणी अखाड़े की पूजा के बाद मंदिर के पट अगले साल नागपंचमी तक के लिए दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। चूंकि ये मंदिर उज्जैन के महाकाल मंदिर में ही स्थित है, तो आज नागपंचमी के साथ साथ सावन का तीसरा सोमवार होने के कारण यहां पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भी जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। भगवान महाकाल और नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: तो नाग पंचमी के दिन भगवान नाग चंद्रेश्वर की पूजा कैसे करें, इसके बारे में बता रही हैं ज्योतिषाचार्य स्वाति आलूवालिया, सुनिए।
4: नाग पंचमी के दिन भगवान नाग चंद्रेश्वर की पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल पर चौकी रखकर भगवान शिव पार्वती तथा नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कच्चा दूध, हल्दी, चंदन, अक्षत पुष्प और धतूरा अर्पित करके भगवान नाग चंद्रेश्वर की पूजा करें। भगवान शिव को दूध और दही से अभिषेक करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। साथ ही साथ चांदी के नाग नागिन का जोड़ा या शमी के पत्ते अर्पित किए जा सकते हैं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना शुभ माना जाता है।
0: और अब ये भी जान लीजिए कि नाग पंचमी पर नाग चंद्रेश्वर के दर्शन से क्या लाभ होता है, और ये भी जान लीजिए कि नाग चंद्रेश्वर को क्या कुछ अर्पित करें।
4: मान्यता है कि वर्ष में केवल एक बार जब नाग पंचमी के अवसर पर भगवान नाग चंद्रेश्वर के कपाट खुलते हैं, तो इसी दिन उनके दर्शन करने का काल सर्पदोष, सर्पदोष और सर्प भय से जुड़ी बाधाओं में से शांति मिलती है। साथ ही परिवार में सुख शांति, आरोग्य और समृद्धि भी बनी रहती है। नाग पंचमी के दिन भगवान नाग चंद्रेश्वर की पूजा में जल, दूध, पुष्प, चंदन और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा मानी जाती है, और भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। पूजा करते समय नाग देवता का भी श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया जाता है, क्योंकि यहाँ शिव और नाग तत्व दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरे अनुसार पूजा में केवल सामग्री महत्वपूर्ण नहीं होती, सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका भाव और आपका संकल्प। यदि कोई व्यक्ति नाग पंचमी के दिन नाग चंद्रेश्वर की आराधना कर रहा है, तो वो भगवान शिव से अपने जीवन में भय, मानसिक अशांति, बाधाओं, नकारात्मकता और अस्थिरता से मुक्ति की प्रार्थना कर रहा है। और ज्योतिषीय दृष्टि से भी नाग पंचमी का संबंध नाग तत्व के साथ साथ राहु केतु से भी जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इस दिन शिव आराधना के साथ साथ नाग देवता का स्मरण करना विशेष माना जाता है। पूजा करते समय व्यक्ति अपने मन में यह संकल्प ले सकता है कि उसके जीवन में जो भी भय, भ्रम, अनिश्चितता या नकारात्मक ऊर्जा है, वो शिव तत्व की चेतना से शांत हो और उसे सही दिशा मिले। इस दिन इनके दर्शनों का विशेष महत्व है। अगर नवग्रह की शांति की बात करें, तो नाग पंचमी की रात्रि में एक विशेष नाग शिव महाप्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए तांबे के लोटे में जल, अक्षत और थोड़ा सा दूध मिलाकर भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान करें। मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं और जल अर्पित करें। इस प्रयोग का विशेष रूप से राहु, केतु और शनि से जुड़ी अशुभता तथा बाधाओं की शांति के लिए किया जाता है।
0: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए तो हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन बीती आधी रात से वहां और भी बड़ी तादाद में भक्तों का मेला लगा हुआ है। महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नागपंचमी पर खुलता है, लिहाजा यहां दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थित प्रतिमा भी अपने आप में बेहद खास है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के साथ सात फनों वाले नाग के छत्र के बीच विराजमान हैं। आपको बताते हैं इस मंदिर की महिमा और इससे जुड़ी खास बातें क्या हैं।

0: नाग चंद्रेश्वर का ये पावन स्थान महाकाल मंदिर में ही स्थित है। बताया जाता है कि महाकाल मंदिर में नाग चंद्रेश्वर का ये ऐसा मंदिर है जिसके पट पूरे साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं। ये मंदिर साल में सिर्फ एक बार श्रावण शुक्ल पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन खुलता है, वो भी केवल और केवल 24 घंटे के लिए। लिहाजा इस पावन अवसर पर बाबा महाकाल के साथ साथ नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन का खास महत्व माना जा रहा है। यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। वैसे तो देश में लाखों मंदिर हैं जो अपनी अलग अलग मान्यता और महिमा के कारण देश विदेश में चर्चित हैं, लेकिन उनमें सबसे खास है उज्जैन का ये नाग चंद्रेश्वर मंदिर। असल में उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 मंजिलों वाला है। इसमें नीचे महाकालेश्वर, मध्य में ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। वैसे तो भगवान शिव के गले में वासुकी नाग लिपटा रहता है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में सर्प शिव जी के गले में लिपटा नहीं है, बल्कि भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी सर्प शैया पर विराजमान हैं। ये मूर्ति सबसे अनोखी मानी जाती है। इस मंदिर में शिवलिंग पर चंद्रमा और नाग की विशेष प्रतिमा विराजमान है, इसलिए इसे नाग चंद्रेश्वर कहा जाता है।
1: भगवान विष्णु शेष सैया पर, शेष नाग के सैया पर शयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस देवालय में, उस मंदिर पर भगवान चंद्रकेश्वर नाग देवता महादेव जैसे उस शेष सैया के नाग पर जैसे भगवान विष्णु सोते हैं, एकमात्र भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा है जहां उस नाग देवता के अंचल में भगवान शिव विराजे हैं।
0: बताया जाता है कि भगवान नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की है। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भगवान नाग चंद्रेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा करीब 350 साल पहले लाई गई थी। ये मूर्ति सिंधिया राजवंश के शासकों ने नेपाल से लाकर यहां स्थापित की थी। मान्यता है कि यहां दर्शन पूजन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है।
1: महाकाल यानी काल सर्प दोष के निवारण का एकमात्र शास्त्रों में वर्णित उपाय है कि नाग पंचमी के दिन चंद्रकेश्वर महादेव का सविधि पूजन करने पर उस प्राणी का काल सर्प दोष की निवृत्ति होती है और काल सर्प दोष जीवन में सुख शांति समृद्धि का हरण करने वाला योग होता है। इसलिए शास्त्रीय मतों के अनुसार महाकाल मंदिर में चंद्रकेश्वर भगवान आशुतोष शिव का वो दिव्य दरबार है जिस स्थान पर जाकर के प्राणी अपने कल्याण के लिए भगवान शिव के साथ अनंतादि नव नाग देवता का पूजन करके अपने जीवन में शांति पाए।
0: स्कंद पुराण के अवंते खंड में नाग चंद्रेश्वर का उल्लेख है। इसका संबंध भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए की गई नागराज की घोर तपस्या से माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं नागराज तक्षक विराजते हैं। वे भगवान शिव की तपस्या में लीन रहते हैं। इसी कारण से इस मंदिर को एक दिन छोड़कर पूरे साल बंद रखा जाता है ताकि उनके एकांत में खलल ना पड़े। कहते हैं कि नागराज तक्षक ने भगवान शिव को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। तक्षक नाग ने शिव जी से अनुरोध किया कि वो उनके सानिध्य में एकांतवास करना चाहते हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया।
1: चंद्रकेश्वर भगवान क्योंकि तपस्या में रत थे, वो निरंतर महाकाल का तपस्या करते थे और तपस्या करने पर भगवान एक दिन उस नाग देवता को दिव्य दर्शन दिए और जब वह नाग देवता अपने आप को अपने शरण में रखने के लिए निवेदन करते हैं महादेव से कि हे महादेव, आप हमें इसी स्थान पर स्थान प्रदान करें, तो भगवान शिव के, महाकाल के आशीर्वाद से चंद्रकेश्वर नाग देवता का वहीं पर विग्रह स्थापित किया।
0: नागों को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। खास तौर से नाग पंचमी की तिथि पर नागों की पूजा करने की विशिष्ट परंपरा रही है। मान्यता है कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं नागराज तक्षक का निवास है, इसलिए वर्ष में एक दिन जब मंदिर के पट खुलते हैं तो भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं, ताकि उनके दर्शन कर सकें और उनकी आराधना का लाभ उठा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में एक बार खुलता है। इस परंपरा के बारे में और खास जानकारी दे रही हैं ज्योतिषी स्वाति आलूवालिया, सुनिए।
2: नागचंद्रेश्वर मंदिर के वर्ष में केवल एक बार खुलने की परंपरा ही है इसे इतना विशेष और रहस्यमय बनाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नागराज तक्षक भगवान शिव की आराधना और एकांत साधना में लीन रहते हैं, इसलिए सामान्य दिनों में मंदिर के कृपाट बंद रखे जाते हैं ताकि उनकी साधना और एकांतवास में किसी प्रकार का भी विघ्न ना पड़े। लेकिन नाग पंचमी की तिथि नाग तत्व और नाग देवता की उपासना के लिए विशेष मानी जाती है, इसलिए इसी दिन वर्ष में एक बार भक्तों को भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन का अवसर मिलता है। इसे आप इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरे साल जहां भक्त महाकाल के दर्शन करते हैं, वहीं महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए उन्हें पूरे वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है। नाग पंचमी के दिन जब कपाट खुलते हैं तो इस दुर्लभ दर्शन का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो साल में केवल एक बार कपाट खुलने की यह परंपरा यही बताती है कि हर आध्यात्मिक अनुभव रोजमर्रा की सामान्य चेतना से नहीं मिलता, कुछ अनुभव विशेष समय, विशेष तिथि और विशेष साधना से जुड़े हुए होते हैं।
0: सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन अवसर पर दर्शन पूजन के लिए महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। चूंकि नागचंद्रेश्वर मंदिर भी महाकाल मंजिल के तीसरे तल पर है, आपको बता दें यहां पर खास तौर से आज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नागपंचमी के अवसर पर आज बाबा महाकाल का खास श्रृंगार किया गया है। तड़के 2:30 बजे मंदिर के पट खुले, सबसे पहले भगवान को हरिओम जल चढ़ाया गया, इसके बाद भस्म आरती की शुरुआत हुई। दूध, दही, घी, शहद और फलों के साथ भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक पूजन के बाद मंदिर के पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहरी श्रृंगार किया। श्रृंगार की प्रक्रिया के बाद भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। महानिर्वाणी अखाड़े के महंतों ने भगवान महाकाल को भस्म चढ़ाई। सावन में इस बार एक पखवाड़े में 50 लाख श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन कर चुके हैं। शिव को प्रिय इस महीने में देश विदेश से भक्तजन दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। आज 4 बजे भगवान महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें आज दुर्लभ संयोग बन रहा है आज के दिन नागपंचमी और सावन का तीसरा सोमवार, और ये तस्वीरें खास इसलिए भी हैं क्योंकि आज के दिन ही साल में एक लौता ऐसा दिन है जब नागचंद्रेश्वर मंदिर खोला जाता है, जो कि उज्जैन में है। महाकाल मंदिर के ही तीसरे तल पर स्थित है ये मंदिर और सिर्फ आज के दिन ही इसे खोला गया है। आज यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दूर दूर से श्रद्धालु इस दुर्लभ संयोग पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी का क्या महत्व है और खास तौर से महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज का दिन कितना खास है, इसके बारे में बता रहे हैं महाकाल मंदिर के पुजारी, सुनिए।
3: बाबा महाकाल के दरबार के अंदर तीसरा सोमवार अर्थात भगवान महाकाल के साथ में आज नागचंद्रेश्वर के दर्शन, भक्त लोगों को बाबा के दरबार के अंदर दोगुना लाभ प्राप्त हो रहा है। बाबा महाकाल के दर्शन के साथ साथ में भगवान का जो वासुकी नाग है उनके भी दर्शन का पुण्य प्राप्त हो रहा है। बाबा महाकाल की प्रातः काल की भस्म आरती में भगवान महाकाल ने स्वयं रजत का वासुकी नाग धारण किया है, जो साल में एक बारी बाबा महाकाल करते हैं, और वही नाग का स्वरूप ऊपर नागचंद्रेश्वर महादेव के रूप में भक्त लोग दर्शन करते हैं। आज का ये अलौकिक दृश्य, अलौकिक दिन और काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि आज के दिन भगवान महादेव ने स्वयं गले के अंदर नाग धारण किया था, और नाग धारण करने का मतलब है भगवान ने ज़्यादा आसक्ति ही बंधन का कारण बनती है, इसका बोधक बताया था कि वो सर्व बनकर डस सकती है, जिससे ज़्यादा आसक्ति जीवन में रखना नहीं चाहिए। इसलिए बाबा महाकाल के दरबार की अनादिकाल की परंपरा है कि बाबा महाकाल आज नागचंद्रेश्वर के रूप में भी भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। बहुत वर्षों के बाद में ऐसा योग बना है कि नाग पंचमी और भगवान महाकाल के सोमवार का दिन एक साथ पड़ा है, ये काफ़ी दुर्लभ योग है, इसीलिए भक्त लोगों को जो लाभ है वो भी दोगुना लाभ प्राप्त हो रहा है।
4: और इसी के साथ इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को देखने के लिए बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियाँ तो कहीं हादसा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में इस हफ्ते अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के बड़े हिस्से में मानसूनी बादलों का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यूपी, हरियाणा और पंजाब में इस हफ्ते अच्छी बारिश होने के आसार हैं। पहाड़ी राज्यों में 20 अगस्त से तेज बारिश हो सकती है।
2: बारिश की रफ्तार पर भले ही ब्रेक लगा हो, लेकिन बादलों की आवाजाही ने दिल्ली एनसीआर के मौसम को सुहाना बनाए रखा है। पिछले दो दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में आने वाले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल देश में दो मानसून सिस्टम एक्टिव है। इनमें से एक उत्तर में पाकिस्तान के पास है, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल के करीब बना हुआ है। इन्हीं की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस पूरे हफ्ते अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है।
3: ओवरऑल अगर हम बात करें तो पश्चिम हिमालय क्षेत्र में हैवी टू वेरी रेनफॉल और मैदानी क्षेत्रों में भारी वर्षा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में इस सप्ताह होते रहने की संभावना है। और आने वाले 24 घंटे की बात करें तो मुख्य चेतावनी जो है उड़ीसा, झारखंड के लिए और उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए है, जो कि डिप्रेशन के प्रभाव में है। और दूसरा जो स्पेल है वो पहाड़ों के लिए है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली इसके आसपास के क्षेत्रों में।
2: मानसून का असर मैदानों में ही नहीं पहाड़ी राज्यों में भी दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 20 अगस्त से भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कुछ पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है।
3: तो खास इसमें बदलाव होने की संभावना नहीं है। मॉनसून अपनी एक्टिव कंडीशंस खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में बना हुआ है और आने वाले 2-4 दिनों में ये एक्टिविटी बने रहने की संभावना है, क्योंकि सिस्टम अभी बना हुआ है।
2: पश्चिम बंगाल के आसपास बने लो प्रेशर एरिया की वजह से ओडिशा, झारखंड, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। यानी अगस्त के महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। ये बारिश एक तरफ लोगों को गर्मी और उमस से राहत देगी, वहीं दूसरी तरफ अच्छी बारिश से फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद भी जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: सावन के तीसरे सोमवार पर बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय, हर हर महादेव के जय घोष के साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज।
8: मनोज सिन्हा ने रवि।
7: नागपंचमी पर विधि विधान से खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर की कपाट, गुवाहाटी के सुरकेश्वर मंदिर में प्रयागराज के वासुकी मंदिर तक नाग देवता की पूजा करने उमड़े भक्त। IIT कानपुर के छात्रों ने निकाली कांवड़ यात्रा, सरसैया घाट से गंगा जल लेकर पैदल आनंदेश्वर मंदिर में पहुंचे भगवान भोले का किया जलाभिषेक।
9: रोहतास में महिलाओं ने मनाया कजरी महोत्सव, जमकर गाए सावन के गीत, कला और संस्कृति का दिखा अनूठा संगम।
7: मूर्थल के ढाबों पर अब इंसान नहीं, रोबोट परोस रहे खाना, एक बार चार्ज होने पर 2 घंटे तक सर्विस, सॉफ्टवेयर चिप से होती है कंट्रोलिंग।
9: इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव।
9: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 सच्ची खबरों के साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा सका सैलाब, जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लगी कतारें। सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ का हुआ भव्य श्रृंगार, बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती के दौरान माहौल में खुली दिव्यता। उज्जैन में नागपंचमी पर रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुल गए, साल में सिर्फ 24 घंटे मिलने वाले दर्शन के लिए आधी रात से ही भक्तों की कतारें लगी। साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, नागपंचमी पर खुले पट आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में लगा शिव भक्तों का मेला, सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक।
9: प्रयागराज में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर नाग वासुकी मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का मेला, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। नाग वासुकी मंदिर में नागपंचमी के दिन पूजा करने से काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ, सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता। अयोध्या में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर नागेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना।
7: हरिद्वार के बागों वाले बागेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नाग देवता का दुग्ध अभिषेक किया।
0: सोमनाथ में पहले सोमवार पर तीसरे सोमवार पर सोमनाथ मंदिर में की गई भव्य सजावट, भोलेनाथ की उतारी गई आरती। गुवाहाटी में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर शुक्रेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा, भक्तों ने विधि विधान के साथ की बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना। मुजफ्फरपुर में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर बाबा गरीबनाथ धाम में सुबह से लगा भक्तों का मेला, भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। नागपंचमी पर गरीबनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बाराबंकी में तीसरे सोमवार नागपंचमी पर लोधेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का मेला लगा, भक्तों ने किए बाबा के दर्शन।
7: बूढ़ा अमरनाथ की पवित्र यात्रा की आज से शुरुआत, एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर किया पहले जत्थे को रवाना। जम्मू से 2000 से अधिक श्रद्धालु हुए रवाना, श्रद्धालु ने बम बम भोले हर हर महादेव के लगाए जयकार। इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंड टेबल का आगाज, सीएम विजय ने लॉन्च किया इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। मुख्यमंत्री विजय ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सच को और मुखर होकर बोलने दे का संदेश दिया। मूर्तल के ढाबों पर अब इंसान नहीं रोबोट परोस रहे हैं खाना, एक बार चार्ज होने पर 2 घंटे तक सर्विस, सॉफ्टवेयर चिप से होती है कंट्रोल।
0: रणवीर सिंह ने शुरू की प्रलय की शूटिंग, फिल्म में कल्याणी प्रदर्शन भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। मालामाल वीकली 2 का ऐलान, फिल्म में परेश रावल, रितेश देशमुख, राजपाल यादव, रवीना टंडन, परिणीति चोपड़ा, शिल्पा शिरोडकर आपको नजर आएंगे। इमरान हाशमी के आवारापन 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, फिल्म ने 3 दिनों में की 82 करोड़ से ज्यादा की कमाई। हैवान स्टाइल में अक्षय कुमार ने सैफ अली खान को किया बर्थडे विश, लिखा जन्मदिन मुबारक हो सैफ। सनी देओल ने पान मसाला विज्ञापनों को किया साफ इनकार, कहा मेरा जमीर नहीं मानता।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
7: बच्चे सच्ची खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
7: आज सावन का तीसरा सोमवार, देशभर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त।
0: हर हर महादेव के जय घोष के साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज, पुंछ के लिए रवाना हुए श्रद्धालु, एलजी ने दिखाई हरी झंडी, निकली भव्य त्रिशूल यात्रा।
7: नागपंचमी पर विधि विधान से खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट, गुवाहाटी के सुरकेश्वर मंदिर के लेकर प्रयागराज के वासुकी मंदिर तक नाग देवता की पूजा करते उमड़े भक्त।
0: रोहतास में महिलाओं ने मनाया कजरी महोत्सव, जमकर गाए सावन के गीत, कला और संस्कृति का दिखा अनूठा संगम।
7: पूर्तल में ढाबे पर सेवक बने रोबोट, ऑर्डर लेने से लेकर खाना परोसने तक का कर रहे हैं काम, ढाबे में आने वालों का कर रहे हैं स्वागत।

0: और चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। आज सावन का तीसरा सोमवार है, यानी महादेव की कृपा पाने का एक और विशेष दिन है। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। भक्ति की अविरल धारा आपको दिखाई देगी। शिव भक्त भोले बाबा का जलाभिषेक करते हुए नजर आएंगे
1: और बाबा को प्रिय भांग धतूरा बेलपत्र दूध चढ़ाकर अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। दरअसल भक्ति की ये रसधार जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बह रही है, जहां शिव भक्ति के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। जम्मू से जहां बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ, तो वहीं पुंछ में त्रिशूल यात्रा की भव्य छठा बिखरी हुई है।
0: और देखिए, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। पहले दिन जम्मू बेस कैंप से 2041 यात्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुए। वहीं आज नागपंचमी का पर्व भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन का प्रसिद्ध नागचंद्रेश्वर मंदिर, उसके कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं, जहां दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी है।
1: महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नागपंचमी पर खुलता है, लिहाजा यहां दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से लोग आते रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं शिव भक्ति की। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर और दिखाते हैं शिव भक्ति के अनूठे रंग। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं।
0: और देखिए, आज से शुरू हुई ये यात्रा 12 दिन तक चलेगी और रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।

0: जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्थित हिमालय तीर्थस्थल बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को इस यात्रा समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने यात्रा के महत्व पर अपने विचार भी रखे।
1: आयोजित की जा रही यात्रा केवल पर्वतों और घाटियों को पास करने वाली यात्रा नहीं है, ये हमारे बाहरी पथ से

0: que visité de cerca. Si están acompañando ni que día trae. Y a para un tercio atrás, me lo van a decir que yo le doy su nombre ni que día trae. Yo soy Baba Burhan Manaj Ji, pues tal que dipe ochayo me vidyamán hai.
1: 12 दिनों तक चलने वाली बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। बाबा बूढ़ा अमरनाथ छड़ी यात्रा से पहले पुंछ जिले में स्थित नवग्रह मंदिर से दिव्य त्रिशूल यात्रा भी निकाली गई। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच त्रिशूल की पूजा की गई। पूजा अर्चना के बाद गाड़ियों के काफिले के साथ त्रिशूल यात्रा शुरू हुई। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष करते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस त्रिशूल यात्रा में शामिल हुए।
2: जो त्रिशूल यात्रा है, आपको पता है हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब यहाँ आती है उससे एक दिन पहले ये जो त्रिशूल यात्रा है ये नवग्रह मंदिर अजोट जो कि देरिया में है वहाँ से निकलती है और यात्रा ग्राउंड तक पहुँचती है। आपने देखा होगा भोले का जो त्रिशूल है ये एक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो हमारे पुंछ के वासी हैं, खास करके बिना मजहब मिलत हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पहुँचता है और ये खास करके एक तरह से आयोजन होता है बाबा बूढ़ा अमरनाथ से पहले कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आ रही है जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए सारे पुंछ वासियों को, जिस तरह से वो वेलकम करने के लिए हर बार यात्रियों को यहाँ पहुँचते हैं।
1: पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ गुफा के समान ही आस्था का प्रमुख केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और देखिए जम्मू से पुंछ के लिए आज सुबह जब बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ उस वक्त गुड न्यूज टुडे की टीम भी इस पवित्र यात्रा के आगाज की साक्षी बनी। हमारे सहयोगी राही कपूर ने तीर्थ यात्रियों के साथ बातचीत की जो कि इस यात्रा को लेकर पूरे जोश और उत्साह से भरे हुए दिखाई दिए।
4: बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे थे आज पहला जत्था बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का यहां से रवाना हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा यहां पर जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया इस पहले जत्थे को यहां से रवाना किया और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है उत्साहित होकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन था यहाँ पे। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जयघोष के साथ जो है वो यात्री यहाँ पर उत्साहित है और बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जत्था जो है वो रवाना हुआ है। और मैं इस तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि आप देखिएगा कि कितने उत्साहित हैं यात्री और जय श्री राम के जयघोष के साथ जो है ये यात्रा रवाना हो रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मैं गोकुल से कहूंगा कि वो आगे आएंगे और आपको दिखाना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रा को जो है वो फ्लैग ऑफ किया है और देखिएगा दूर दूर तक ये बसेस जो है वो अब यहां से रवाना हुई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के जो है वो दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना हुई है और ख़ास तौर पर इस यात्रा का मकसद है कि पुंछ जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसे देश के जो विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं वो वहां पर दर्शनों के लिए पहुंचे, क्योंकि 10 दिन की ये यात्रा रहती है और इस पहले जत्थे का हर एक डिस्ट्रिक्ट जहां से भी ये यात्रा एंटर करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका भव्य स्वागत होगा। जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन यहाँ पर, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के साथ कई टुकड़ियां जो है इस यात्रा की सुरक्षा में तैनात हैं और जम्मू पुंछ हाईवे को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो रखा गया है और बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये पावन यात्रा जो है वो 10 दिन के लिए यानी आज 17 तारीख से लेके 28 तारीख तक जो है वो यात्रा ये चलेगी और इस यात्रा में देश भर से आने वाले श्रद्धालु बेहद खुश है और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राही कपूर, गुड न्यूज टुडे, जम्मू।
5: कहाँ से आए हैं?
6: बुदरी जिले से, मध्य भारत प्रांत।
5: पहली बार आए या हर बार आते हैं?
6: सेकंड बार आए हैं।
5: सेकंड बार, तो पहले से कितना बदलाव लग रहा है इस बार का?
6: काफी बदलाव है।
5: तो क्या क्या मैसेज रहेगा पूरे देश भर के लिए आज दर्शनों के लिए जा रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के?
6: ये मैसेज रहेगा कि जो अन्य लोग नहीं आ पाए हैं वो भी आए और इस यात्रा का हिस्सा बने और बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करें।
5: ठीक है सर, कहाँ से आए?
7: हम मध्य भारत प्रांत से आए हैं, भोपाल के पास में बुदरी जिला है। और मैं दूसरी बार आया हूँ। यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था, यहाँ के स्थानीय लोगों की व्यवस्था।

0: संगठन की व्यवस्था बहुत ही उच्च क्वालिटी की व्यवस्था है, और मैं सभी हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनसे निवेदन करता हूं कि कितना अच्छा स्थान है जिससे हम लोग वंचित रह रहे हैं। बूढ़ा अमरनाथ, इस यात्रा में सभी लोगों को शामिल होना चाहिए।
1: मध्य भारत से
2: तो कितने उत्साहित हैं, कितनी खुशी हो रही है दर्शनों के लिए जा रहे हैं?
3: नहीं, सभी लोगों को बढ़िया खुशी हो रही है और आने की भी इच्छा हो रहती है, हर समय आते हैं।
2: क्या कहेंगे देशभर के लिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे
4: आप? सभी आइए यहाँ पर और बाबा के दर्शन करिए, यही है।
5: तो वही बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शिव भक्तों के लिए कितनी पावन है, इसका अंदाजा इसी मान्यता से लगाया जा सकता है कि बूढ़ा अमरनाथ के दर पर जाए बिना अमरनाथ यात्रा अधूरी मानी जाती है।
6: और देखिए, मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि भगवान शिव ने कश्मीर में स्थित अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को जो अमरता की कहानी सुनाई थी, उसकी शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ के स्थान से ही हुई थी।

0: जम्मू कश्मीर के मंडी में पहाड़ों की तलहटी में बसा एक ऐसा मंदिर जिसकी भव्यता और दिव्यता हर साल भक्तों को यहां खींच लाती है। भगवान शिव से जुड़ा एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां हर साल लगता है आस्था का मेला। कहते हैं जिसके दर पर जाए बिना बाबा अमरनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। श्रीनगर से करीब 170 किलोमीटर दूर पुंछ जिले में मंडी में मौजूद है ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ। कहते हैं कि बाबा चट्टानी या फिर बूढ़ा अमरनाथ का ये मंदिर जितना ऐतिहासिक है उतना ही अलौकिक भी है। दूसरे शिव मंदिरों से अलग इस धाम की चार दीवारी पर लकड़ी के काम की नक्काशी है जो सदियों पुरानी बताई जाती है। इस मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग सफेद चमकदार पत्थर से बने हैं। मंदिर में विराजमान स्वयंभू शिवलिंग अमरनाथ गुफा की तरह बर्फ का नहीं बल्कि एक प्राकृतिक ठोस चट्टान के रूप में प्रकट हुआ है। बाकी सभी शिव मंदिरों की तरह यहाँ शिवलिंग जमीन के स्तर से ऊपर नहीं है। सफेद पत्थरों से बना प्राकृतिक शिवलिंग करीब 5.5 फुट है लेकिन इसका कुछ ही हिस्सा ऊपर दिखाई देता है। शिवलिंग का ज्यादातर हिस्सा जमीन के स्तर से नीचे मौजूद है जहां श्रद्धालु झुककर बाबा के दर्शन करते हैं। मंदिर के पास ही बहने वाले लोरन या फिर पुलस्ते दरिया की महिमा भी अनूठी है। इसका पानी जितना ठंडा है उतना ही चमत्कारी भी है। इस मंदिर और वार्षिक उत्सव के साथ कई कथाएं जुड़ी है। एक मान्यता कहती है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को यहीं से अमर कथा सुनाने की शुरुआत की थी जो बाद में अमरनाथ गुफा में पूरी हुई थी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव अमरनाथ की पवित्र गुफा की ओर माता के साथ बढ़ रहे थे तो थोड़ी देर के लिए वे मंडी के उस स्थान पर रुके थे जहां आज बूढ़ा अमरनाथ जी का मंदिर है। कथा के मुताबिक सर्दी की वजह से उन्होंने चमक पत्थर का निर्माण कर आग जलाई थी और जो कथा माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अमरता के बारे में बताई थी उसकी शुरुआत भी इसी स्थान से की गयी थी। इसलिए इस स्थान को उतना ही पवित्र तथा धार्मिक माना जाता है जितना अमरनाथ गुफा को। तीर्थयात्री पवित्र मंदिर जाने से पहले पुलस्ते नदी में स्नान करते हैं जो इस मंदिर के पास से बहती है। कहते हैं प्राचीन काल में रावण के दादा पुलस्ते ऋषि ने इसी सुरम्य स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। एक मान्यता ये भी है कि भगवान की परम भक्त लोरन चंद्रिका की महारानी किसी वजह से महादेव के दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा नहीं जा पाए तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और भगवान शिव की तपस्या में मग्न हो गई। बताया जाता है कि खाना पीना छोड़ देने की वजह से महिला की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद भगवान ने उन्हें बूढ़े साधु के रूप में दर्शन दिए थे। रक्षाबंधन वाले दिन महारानी ने बूढ़े साधु के नेतृत्व में मंडी की यात्रा की जहां उन्हें चमक पत्थर के रूप में शिवलिंग नजर आया लेकिन बूढ़े साधु कहीं नजर नहीं आए। आकाशवाणी हुई कि वो बूढ़े साधु ही भगवान शिव थे, तभी से इसे बूढ़ा अमरनाथ कहा जाने लगा। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शनों के बिना अमरनाथ की कथा ही नहीं बल्कि अमरनाथ की यात्रा भी अधूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और देखिए आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज ही नाग पंचमी का पर्व भी है, यानी महादेव की भक्ति और नाग देवता की आस्था का अद्भुत संगम। आज देश भर के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं।
2: काशी से लेकर देवघर तक, प्रयागराज से लेकर देश के तमाम बड़े शिव मंदिरों तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो वहीं देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दरबार में भी आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है।
1: और देखिए आज सावन के सोमवार के साथ नागपंचमी होने की वजह से नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लगी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूध, बेलपत्र, फूल अर्पित कर भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना की जा रही है और चारों तरफ एक ही गूंज है और वो गूंज है हर हर महादेव की।
2: अब चलिए आपको सीधा मुंबई लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाबुलनाथ मंदिर से। धर्मेंद्र, तस्वीरें दिखाईगा कैसा नजारा वहां पर देख पा रहे हैं आज सावन का तीसरा सोमवार, इसी के साथ नागपंचमी भी है आज।
3: बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको हम आप बता दें कि ओम नमः पार्वते हर हर महादेव के नाम से पूरा मंदिर गूंज रहा है। जो कोई भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो सभी हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सीधे शिवलिंग का दर्शन कर लेना चाहते हैं। मुंबई का एकमात्र ऐसा बाबुलनाथ मंदिर है, न केवल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बल्कि इनकी मिन्नतें भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा लोग इन्हें मानते हैं, जो कुछ भी चाहिए होता है बड़े ही सच्चे दिल से मांगा जाता है और वो सारी चीजें पूरी हो जाती है। देखिए, एक अच्छी खासी कतार में खड़े होने के बाद मंदिर परिसर में पहुंचा जाता है। लगभग 2 से 3 का घंटा जो है आज लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं और उसके बाद मंदिर प्रांगण में पहुंच पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर को इस समय सजाया गया है। शाम के दृश्य और भी ज्यादा अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं, लाइटिंग लगी होती है, लेकिन अभी फिलहाल टेंट फूलहार से ये पूरे मंदिर के प्रांगण को सजाया गया। आप देखें, पौराणिक कहानी है इस मंदिर की और सालों पुराना इतिहास रहा है। जहां भी आपकी नजरें जाएं, हर जगह अलग अलग कतारें लगी हुई हैं। बकायदा यहां जो मंदिर के ट्रस्ट द्वारा सुरक्षा दी जाती है लोगों को, वो सारे सभी तैनात हैं। साथ ही साथ मुंबई पुलिस भी एक बड़ी संख्या में मंदिर में यहां पर तैनात हुए हैं। आपको बताएं कि आम खास ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी और बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी यहां पर आकर के स्पेशली श्रावण और शिवरात्रि और नागपंचमी के मौके पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये मंदिर का प्रांगण सिर्फ इधर ही समाप्त नहीं होता है, जहां तक आपकी नजरें जाएं वहां तक अलग अलग दूसरे जो ईश्वर हैं शिव भगवान के अलावा, उन्हें भी यहां पर स्थापित किया गया है। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से सोनेली यानी कि गोल्डन कलर में गणपति बप्पा भी यहां पर विराजमान हैं और लोग यहां पर सबसे पहले गणपति बप्पा का दर्शन करते हैं, उसके बाद नंदी तक पहुंचा जाता है। नंदी से अपनी मिन्नतें शिवजी तक पहुंचाने की पूरी लोग कोशिश करते हैं और मंदिर के भीतर जाने से पहले हनुमान जी की भी यहां पर मूर्ति है, उसका भी लोग दर्शन करते हैं और भी दूसरे जो ईश्वर हैं वो सभी यहां पर विराजमान कराए गए हैं। आपको बता दें कि ये टीले पर मंदिर है, 108 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहुंचा जाता है और जो कोई दिव्यांग होता है जिनमें चढ़ने की क्षमता नहीं होती वो भी यहां पर लिफ्ट के द्वारा पहुंच जाया करते हैं। ये शिवलिंग का दृश्य है, तस्वीर है और कुछ देर बाद ही अब साफ सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद में स्नान कराया जाएगा शिव बाबा को और स्नान के साथ साथ फिर उनका श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद अभिषेक किया जाएगा। फिर आधे घंटे की आरती होगी जो तकरीबन 1:30 बजे तक समाप्त हो जाएगी, यानी कि आधे घंटे के लिए बाबा का दर्शन करने के लिए जो लोग भी यहां पहुंच रहे हैं यानी कि श्रद्धालु बाबा भक्त, उन सभी को रोका जाएगा। एक तस्वीर यहाँ की ये भी है, देखें एक बड़ी कतार में जो है लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और आपको बताएं कि अच्छा खासा लोग कलश भी लेते हैं। खास बात यह है कि रुद्राभिषेक और जलाभिषेक का बहुत अच्छा खासा मौका यहाँ मिलता है। ये देखिए, तो ये आप अपने घर से लाए हैं?
4: जी जी, घर से लाया हूँ मैं और पानी भी घर से लाया हूँ। हाँ। क्योंकि मतलब मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, तो भगवान बोलेंगे कि हम ही आपके घर पे आ जाते, तो हम घर से लाते।
3: अच्छा, कितना आज तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हम नागपंचमी भी है।
4: मैं बहुत लंबे से चल के आया हूँ, मेरी श्रद्धा है, हर श्रावण सोमवार में मैं आता हूँ। जी
3: अच्छा, तो आज तो जलाभिषेक करने का भी आपको मौका मिलेगा, नागपंचमी भी है तो बहुत ज्यादा खास दिन है आज क्या?
4: जी आज जो बहुत शुभ दिन है।
3: जी, तो इस तरीके से देखिए, एक तमाम श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के पहुंचते हैं। एक तस्वीर यहाँ भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कतार आखिर किस तरीके से मंदिर के भीतर प्रवेश करती है। वो सामने आप टेंट देख रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी श्रद्धालु और लोग जो हैं जो बाबा से मिलने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। बड़ी है शांति भाई यहाँ पर, हर हर हर हर ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माता जी कहाँ से आई हैं आप?
5: वसई
3: से आई हैं। तो कैसा लगता है इस प्रांगण में आने के बाद? काफी देर से खड़ी है, मुझे लगता है आप थकावट नहीं होगी?
5: नहीं होगी, भोलेनाथ के दर्शन करने।
3: तो आज कितनी ज्यादा खुश हैं? आज तो नागपंचमी भी है, आज तो और भी ईश्वर बहुत ज्यादा खुश रहेंगे।
5: अच्छा, दर्शन पहला सोमवार का दर्शन हो जाए सही है।
3: क्या लगता है आपको, क्या चढ़ा दें आज तो बाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे?
5: दिल से बोलो खुश हो जाते हैं, उसको कुछ चढ़ाने की भी जरूरत नहीं, दिल से बोलो सही हो जाते हैं।
3: अच्छा, आपका भी यही कहना है?
6: हाँ, बस यही कहना है। मैं तो बॉम्बे से ही आया है, लोअर परल से आया।
3: हर श्रावण हर सोमवार पहुंचते
6: हैं। हर सोमवार पहुंचते
3: हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी लंबी कतार जो है बाबा को ईश्वर देने के लिए, बाबा से प्रसाद लेने के लिए, बाबा की श्रद्धा में शामिल होने के लिए, बाबा के लिए भक्ति के लिए तमाम लोग जो हैं पहुंचते हैं मंदिर प्रांगण में और कुछ इस तरीके का नज़ारा होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से माहौल बना दिया जाता है और साथ ही साथ खास बात यह है कि जल और मग का भी यहाँ पर कलश भी यहाँ पर रखा गया है। कलश में आप बाकायदा जल ले करके बाबा को जाकर समर्पित कर सकते हैं, उनके साथ में रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। यहाँ पर एक परिसर भी है जहाँ पर यहाँ के महंतों द्वारा आप चाहें तो अपने परिवार संग जो है अभिषेक भी करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं।
1: और एक और खास बात धर्मेंद्र ये कि यहाँ प्रकट हुआ शिवलिंग जो है वो स्वयंभू उसको कहा जाता है, जिसकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए, ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। और देखिए उज्जैन में आज आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सावन सोमवार और नागपंचमी के इस खास मौके पर बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है।
2: सुबह भस्म आरती में बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार और अभिषेक हुआ, इसके बाद नित्य पूजा और साथ ही आरती के दौरान भी श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। तो वहीं नागपंचमी के अवसर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट भी खुले हैं। दर्शन की आस में भक्तों की लंबी कतार मंदिर के बाहर पहुंच गई है। हर कोई बस एक झलक पाने को आतुर है और पूरे उज्जैन में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है।
1: और चलिए अलग अलग तस्वीरें तो आ ही रही हैं, अब आपको महाकाल की भव्य और दिव्य आरती के दर्शन करवाते हैं।

0: है दवा को, चांदी का पंचमुखी, चांदी का नाग चढ़ाया जाता है साल में, भगवान को नाग चढ़ा के पूजा आरती की गई, वो महाआरती की गई। आज लाखों जनता आज उज्जैन में ही है, साल में एक दिन नागचंद्र के दर्शन खुलते हैं। तो माँ भगवान को रात को 12 बजे से पट खुल गए, उमा लाखों जनता माँ भी दर्शन कर रही है, बाबा महाकाल के भी दर्शन कर रही है।
1: भस्म आरती हमारा बहुत अच्छे से हुआ। आज का जो अनुभव था, लाइफ का पहला अनुभव था मेरा, इतना अच्छा दर्शन हुआ है। मैं चाहती हूँ हर कोई आके ये दर्शन अनुभव ले। बहुत अच्छा भस्म आरती का जो ये रहता है, वो जैसे गूज़बम्प आते हैं, जैसे ही स्टार्ट होता है जो श्रृंगार होता है वो बहुत ही अच्छा हुआ, और सारे मंदिर परिवार में सब लोगों ने अच्छे तरह से सपोर्ट करा।
2: तो महाराष्ट्र में भी भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। गांधीग्राम स्थित पूर्णा नदी से जल भर कर कांवड़िए बम बम भोले के जय घोष करते हुए अकोला पहुंच रहे हैं, और यहां पर कांवड़ लेकर भक्त भगवान राजराजेश्वर को जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए

0: महाराष्ट्र में कांवड़ यात्रा की दिव्य छटा बिखर रही है। श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद जल भरकर भगवान भोले शंकर को अर्पित करने पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में सावन मास का पहला सोमवार होने के चलते भगवान शिव के जलाभिषेक का बड़ा महत्व माना जाता है। इससे मनोकामना पूर्ति और शुभ फलों की प्राप्ति की मान्यता है। ये तस्वीरें अकोला से लगभग 20 किलोमीटर दूर गांधी ग्राम स्थित पूर्णा नदी के महाकाल घाट की है, जहां सावन मास के प्रथम सोमवार के पहले शिव भक्त जल भरने पहुंचे और फिर कांवड़ लेकर भगवान शिव का जयकारा लगाते और भक्ति भाव में झूमते हुए अकोला के राजराजेश्वर मंदिर के लिए निकल पड़े।
1: यहाँ से कांवड़ गांधी ग्राम से कापसी में अपने सुफीनाथ महाराज पे 15 साल से कांवड़ ले जा रहे हैं। 21 कलसिया है, यहाँ से ले जाकर हम वहाँ पर पिंडी पे अर्पण करते हैं।
0: अपनी पूरी तैयारी करने के साथ जल भरकर कांवड़िये रात के समय अकोला के लिए निकल पड़े। भगवान राजराजेश्वर के प्राचीन शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए इन शिव भक्तों ने कांवड़ के साथ 20 किलोमीटर की लंबी यात्रा की। लगभग 80 साल पुरानी परंपरा के तहत पूर्णा नदी के महाकाल घाट पर जल भरने के लिए रविवार को शिव भक्तों का तांता लगा रहा।
2: जो है सावन का पहला सोमवार है और अकोला में जो अकोला की वैभवशाली रही कांवड़ यात्रा पहले दिन से ही जो है वो कांवड़धारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कांवड़ भरकर जो है रात भरे का लगभग 20 किलोमीटर का जो प्रवास है वो कर अकोला के जो आराध्य है राजराजेश्वर शिवलिंग मंदिर को जो है सवेरे जल अर्पित करने की ये परंपरा लगभग 80 साल से निरंतर यहाँ पर चल रही है। और 7 सितंबर को जो है वो सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा जो अकोला का वैभव है और देश और दुनिया में सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा का आयोजन यहाँ पर होता है।
0: पूर्णा नदी से जल भरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी दिखी। घाट से जल भरने को लेकर लाइट समेत हर तरह की व्यवस्था भी विशेष रूप से की गई थी। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और दक्षिण भारत में अमान पंचांग के अनुसार सावन का मास 13 अगस्त से शुरू हुआ। उस हिसाब से 17 अगस्त को भगवान शिव के इस प्रिय महीने का पहला सोमवार है और इसी को लेकर मंदिरों में भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करने के लिए शिव भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। अकोला से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो एक छोटे से ब्रेक का आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नाग चंद्रेश्वर के दर्शन।

बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है खुशियां तो कहीं हादसा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: सावन के तीसरे सोमवार पर बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय, हर हर महादेव के जयघोष के साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज।
3: नागपंचमी पर विधि विधान से खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट, गुवाहाटी के सुरकेश्वर मंदिर से लेकर प्रयागराज के वासुकी मंदिर तक नाग देवता की पूजा करने उमड़े भक्त।
2: आईआईटी कानपुर के छात्रों ने निकाली कांवड़ यात्रा, सरसैया घाट से गंगा जल लेकर पैदल आनंदेश्वर मंदिर पहुंचे, भगवान भोले का किया जलाभिषेक।
3: रोहतास में महिलाओं ने मनाया कजरी महोत्सव, जमकर गाए सावन के गीत, कला और संस्कृति का दिखा अनूठा संगम।
2: मूर्थल के ढाबों पर अब इंसान नहीं, रोबोट परोस रहे खाना, एक बार चार्ज होने पर दो घंटे तक सर्विस, सॉफ्टवेयर चिप से होती है कंट्रोलिंग।
3: इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।

0: और देखिए सावन का तीसरा सोमवार और साथ ही नागपंचमी का शुभ संयोग भी। देश भर के शिवालयों में आज आस्था के अद्भुत रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं भोलेनाथ का जल अभिषेक हो रहा है तो कहीं नाग देवता की पूजा अर्चना की जा रही है।
1: काशी से लेकर उज्जैन तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि उज्जैन के प्राचीन चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट नागपंचमी के दिन साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं सावन और नागपंचमी के इस पावन संयोग पर आस्था की कैसी हैं तस्वीरें।

0: भगवान शिव को समर्पित साल का सबसे पवित्र महीना सावन महीने में बात अगर सोमवार की हो तो भक्तों में भोलेनाथ की भक्ति का उत्साह दो गुना हो जाता है। आज सावन के तीसरे सोमवार के साथ नाग पंचमी का संयोग भी है, जिससे भगवान शिव की आराधना का ये पावन अवसर और खास बन गया है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार से लेकर देश के तमाम शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें उमड़ रही हैं। जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों के जल से महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सनातन परंपरा में नाग देवता की पूजा का विशेष दिन होता है। मान्यता है कि नाग देवता भगवान शिव के प्रिय हैं। महादेव के गले में विराजमान नाग उनकी शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। आज सावन के सोमवार और नाग पंचमी का एक साथ आना भक्तों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। इस पावन मौके पर श्रद्धालु भक्ति भाव से नाग देवता को दूध, पुष्प और जल अर्पित करते हैं और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर आस्था के अनूठे रंग महाकाल की नगरी में भी दिखाई दे रही है। भक्तों के जनसैलाब के बीच उज्जैन के प्राचीन चंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ी मान्यता इसे और खास बनाती है। नाग पंचमी के मौके पर चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक बार श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। भक्तों के लिए ये सिर्फ दर्शन का अवसर नहीं बल्कि साल भर के इंतजार के बाद मिलने वाला एक विशेष आध्यात्मिक क्षण होता है। साल में सिर्फ एक ही दिन दर्शन का अवसर मिलने के चलते यहाँ भक्तों में खास उत्साह देखने को मिलता है। उज्जैन जहाँ स्वयं महाकाल विराजते हैं, वहाँ नाग पंचमी के अवसर पर चंद्रेश्वर मंदिर की ये परंपरा आस्था का एक अलग ही रूप देती है। उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 मंजिलों वाला है। इसमें नीचे महाकालेश्वर, मध्य में ओमकारेश्वर और सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। वैसे तो भगवान शिव के गले में वासुकी नाग लिपटा रहता है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में सर्प शिव जी के गले में लिपटा नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की सर्प शैया पर विराजमान है। इस मंदिर में शिवलिंग पर चंद्रमा और नाग की विशेष प्रतिमा विराजमान है, इसीलिए इसे नाग चंद्रेश्वर कहा जाता है। नाग पंचमी के मौके पर साल में एक बार भक्त यहाँ पूजा अर्चना कर जीवन में सुख समृद्धि, शांति और निर्भयता का आशीर्वाद मांगते हैं। सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी का यह शुभ संयोग आज का दिन शिव भक्तों के लिए आस्था का महापर्व बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो जैन के महाकाल मंदिर परिसर में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर खोल दिए गए हैं। ऐसे में कपाट खुलते ही भगवान नाग चंद्रेश्वर की पूजा अर्चना की गई और दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली। मंदिर के बाहर श्रद्धालु की लंबी कतार नजर आ रही है।
2: और देखिए, ड्रोन तस्वीरों में आस्था का ये सैलाब साफ नजर आ रहा है। नाग पंचमी के खास मौके पर मंदिर को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया। चारों तरफ उत्सव और भक्ति का माहौल है। हर तरफ गूंज रहा है हर हर महादेव।
3: नाग पंचमी का पर्व पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी क्रम में भगवान महाकाल के इस दिव्य मंदिर में उज्जैन में बहुत ही अद्भुत स्थान है। भगवान महाकालेश्वर का जो मंदिर है उसके तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं। परंपरानुगत तरीके से पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा महंत जो है नियुक्त होते हैं, वो उसकी पट खोलते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उसी परंपरा का हम सब लोगों ने पालन करते हुए भगवान नागचंद्रेश्वर के मंदिर के पट खोले और भगवान का षोडशोपचार पद्धति का ये जो पूजन पद्धति है उसके अनुसार पूजन करके और त्रिकाल पूजाओं में प्रथम पूजा करके और सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं।
2: और देखिए, नाग पंचमी पर प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है। मंदिर में पूरे साल यहाँ पर पूजा अनुष्ठान चलते रहते हैं,
1: लेकिन नाग पंचमी पर मंदिर में दर्शन पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से कुंडली से कालसर्प दोष भी मिट जाते हैं।

0: प्रयागराज में नागों के राजा भगवान वासुकी के इस मंदिर में नाग पंचमी पर हर साल उमड़ती है आस्था। संगम और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध तीर्थराज प्रयागराज में भगवान वासुकी को समर्पित ये मंदिर देश के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल है।
1: नागवासुकी मंदिर में भक्त सारे वर्ष यहाँ पर काल सर्व की शांति के लिए यहाँ पे आते हैं और नागवासुकी प्रयाग के साथ तीर्थ नायकों में एक नायक भी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर असी माधव जी और दत्तात्रेय और हनुमान जी ये सारे लोग यहाँ विराजमान हैं। और इसके साथ ही साथ ये नाग पंचमी पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला यहाँ पे लगता है जिसमें लाखों लाख की भीड़ सुबह से लेकर रात तक जो है नागवासुकी बाबा का दर्शन करती है, अभिषेक पूजन अर्चन करती है और भी जो भी वर्ष भर की लोगों की मान्यताएं और मान्यता होती है उसको भी पूरा करने के लिए लोग आते हैं।
0: गंगा तट पर दारागंज में इस मंदिर में आमतौर पर पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन, नाग पंचमी, माघ मेला और कुंभ के विशेष अवसर पर तो यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में पूरी श्रद्धा से पूजन करने से काल सर्प दोष और जीवन की तमाम बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है।
2: आज में नागों के राजा का एक अनोखा मंदिर है जिसे नागवासुकी मंदिर कहा जाता है और सावन में जब नागपंचमी का दिन होता है तो लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर दर्शन के लिए आती है और यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है और नागों के राजा की एक मूर्ति लगी हुई जिसके दर्शन करते हैं। लोग यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं और यहाँ पर जलाभिषेक भी किया जाता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि मंदिर जो है जो बना हुआ है यहीं पर भगवान नागवासुकी की जो तस्वीर है और फोटो है यहीं पर है और इसी मंदिर में लाखों लोगों की भीड़ आती है, दर्शन करती है, पूजा पाठ करती है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो काल सर्प दोष है उसकी पूजा की जा रही है और यहाँ जो भक्त आए हैं किसी भी प्रकार का दोष हो उससे निवारण यहाँ पर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा भी यहाँ पर की जाती है। तमाम भक्त यहाँ आते हैं, किसी भी प्रकार का दोष हो उससे निवारण के लिए यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। हमारे साथ पंडित जी, पंडित जी ये बताइए किस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ काल सर्प दोष के लिए होता है।
3: जैसे किसी के जन्म कुंडली में राहु केतु के मध्य में सब जितने भी ग्रह होते हैं नवग्रह वो आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है और काल सर्प योग हो जाने के कारण जो है किसी का जैसे विवाह की बाधा रुक रही हो, किसी की नौकरी की बाधा जैसे रुक रही हो, संतान के दोष में उत्पन्न हो रहा है, संतान नहीं हो रही, उसके लिए अगर काल सर्प की पूजा कराया जाए तो निश्चित ही सफलता प्राप्त।
0: नागराज वासुकी के इस मंदिर का जिक्र पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। इन कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन में नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत पर रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। लंबे समय से मंथन से नागराज वासुकी घायल हो गए। भगवान विष्णु ने नागराज को प्रयागराज में विश्राम करने का आदेश दिया। त्रिवेणी संगम पर पवित्र भूमि में विश्राम करने से उनके घाव भर गए। देवताओं के आग्रह पर भगवान वासुकी यहीं विराजमान हो गए। यही स्थान नाग वासुकी मंदिर के तौर पर स्थापित हुआ।
4: दिख रहे बहुत अच्छी तरह से देखा, नजीक से देखे हम लोग ने और बहुत अच्छा लग रहा है और आज सावन महीना का दिन में हम लोग आए ना उसके लिए ज्यादा हम लोग को खुशी हो रही है, इतना हो रहा है। हाँ, नाग देवता की तस्वीर है और बहुत हम लोग का दर्शन अच्छा हुआ। ऐसा दोबारा हम लोग को आने के लिए भगवान को बोलो, दुआ करके वापस आए हम लोग यहाँ।
0: प्रयागराज में संगम स्नान के बाद श्रद्धालु नागराज वासुकी के मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। यहाँ दर्शन के बाद ही तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इस मंदिर में नागराज वासुकी की फन फैलाए हुए प्रतिमाएं विराजमान है। इस मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से भक्तों की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है और कुंडली में काल सर्प दोष भी खत्म हो जाते हैं। प्रयागराज का नाग वासुकी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था और पौराणिक परंपराओं का अद्भुत संगम है। नाग पंचमी के पावन अवसर पर संगम स्नान के बाद नागराज वासुकी के दर्शन करने वाले भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। इस मंदिर में दर्शन के साथ ही श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा भी संपन्न हो जाती है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे।
5: काशी की गलियों में आस्था और रहस्य से जुड़ी कई ऐसी प्राचीन धरोहरें मौजूद हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों में आकर्षण पैदा करती हैं। दरअसल जैतपुरा का नागकूप भी वाराणसी में ऐसी ही एक जगह माना गया है।
6: और देखिए, इसे नागलोक और महर्षि पतंजलि की तपस्थली से जोड़कर देखा जाता है। नागपंचमी पर यहां श्रद्धालुओं की खास आस्था देखने को मिलती है। काशी के इस रहस्य पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
0: भगवान भोले की नगरी काशी, यहां गंगा की पवित्र लहरों में भक्ति की अविरल धारा बहती है। काशी जहां मंदिर की घंटियों से आध्यात्म की अनंत ऊर्जा का संचार होता है, यहां संतों की वाणी में ज्ञान और यहां की मिट्टी के कण कण में महादेव का वास है। दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत शहरों में एक पावन नगरी पर भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद है। हजारों साल की इस समय यात्रा में यहाँ की हर गली अपने आप में ऐतिहासिक और हजारों रहस्यों को समेटे हुए है, और इन्हीं रहस्यों में से एक है जैतपुरा का प्राचीन नागकूप। ऊपर से देखने पर ये एक सामान्य कुआं जैसा नजर आता है, लेकिन इससे जुड़ी मान्यताएं इसे बेहद खास और रहस्यमय बनाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस नागकूप का संबंध नागलोक से है, और यहाँ महर्षि पतंजलि ने लंबी तपस्या की थी।
7: समय राजा परीक्षित को नागदंश हुआ था, तो उनके पुत्र जनमेजय ने सभी नागों का यज्ञ किए थे, सर्प विनाशक यज्ञ। उस यज्ञ के समय कारकोटक नाग जो थे, वो सभी नाग जाति को बचाने के लिए, जीवन रक्षा के लिए उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी इसी स्थान पे, जिस तपस्या का नाम था पंच अग्नि तपस्या। और भगवान प्रसन्न होके उनको वरदान दिए, और इसी स्थान पे भगवान प्रकट हुए थे, जो कि एक स्वयंभू शिवलिंग भी है, और उनको वरदान दिए कि जो हमारे में समाहित होते हैं उनका न आदि होता है न तो अंत होता है। फिर कारकोटक नाग सभी नाग जाति को लेके, नाग वंश को लेके इसी मार्ग से पाताल लोक चले गए थे।
0: इस नागकूप की सबसे खास मान्यता इसके भीतर विराजमान प्राचीन शिवलिंग को लेकर है। कहा जाता है कि जमीन के करीब 100 फीट नीचे भगवान शिव का शिवलिंग मौजूद है। साल में एक बार कूप की सफाई के समय पुजारी नीचे उतरते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा के बाद कूप में फिर पानी भर जाता है और श्रद्धालुओं के लिए अंदर जाना संभव नहीं रहता। लोक कथा है कि महर्षि पतंजलि इन्हीं रास्तों से नागलोक तक जाते थे। हर साल नागपंचमी अवसर पर नागकूप पर आस्था का विशेष रंग दिखाई देता है। नाग देवता की पूजा के लिए यहां दूर दूर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि यहां पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और सर्प दंश भय से राहत मिलती है। कई श्रद्धालु इस कुएं के पवित्र जल को आस्था के साथ अपने घर ले जाते हैं।
7: इस समय राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय यज्ञ कर रहे थे, तो उसी समय यज्ञ में जिनकी नाग लोक का, जिनका नाग देवता का नाम लेते थे, वो अग्निकुंड में आ जाते थे। तो उस यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिक मुनि वहां पहुंचे और उनको समझा बुझा कर यज्ञ को वहीं पर विराम करने के लिए उनको समझाएं, और उसके बाद जितने नाग राज झुलस चुके थे, जल चुके थे, उनको दूध चढ़ाकर, उनको लावा लगाकर, उनको घाव को ठीक किए, भरे। इसीलिए उस तिथि भी थी श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, इसीलिए नाग पंचमी के नाम से उसको मनाया जाता है।
0: काशी में धर्म और आध्यात्म जीवन का हिस्सा है। यहाँ नागकूप से जुड़ी कथाएं और मान्यताएं भी इसी आस्था की एक ऐसी कड़ी है जो रहस्य और परंपरा को आज तक अपने साथ संजोए हुए है। वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता, गुड न्यूज टुडे।
6: चलिए इसी के साथ लंच टाइम रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियाँ तो कहीं हादसा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस हफ्ते अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, तो मौसम विभाग के मुताबिक देश के बड़े हिस्से में मानसूनी बादलों का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यूपी, हरियाणा, पंजाब में इस हफ्ते अच्छी बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में 20 अगस्त से तेज बारिश हो सकती है।
7: बारिश की रफ्तार पर भले ही ब्रेक लगा हो, लेकिन बादलों की आवाजाही ने दिल्ली एनसीआर के मौसम को सुहाना बनाए रखा है। पिछले दो दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में आने वाले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल देश में दो मानसून सिस्टम एक्टिव है, इनमें से एक उत्तर में पाकिस्तान के पास है, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल के करीब बना हुआ है। इन्हीं की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस पूरे हफ्ते अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है।
8: कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो पश्चिम हिमालय क्षेत्र में हैवी टू वेरी रेनफॉल और मैदानी क्षेत्रों में भारी वर्षा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में इस सप्ताह होते रहने की संभावना है। और आने वाले 24 घंटे की बात करें तो मुख्य चेतावनी जो है उड़ीसा, झारखंड के लिए और उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए है, जो कि डिप्रेशन के प्रभाव में है। और दूसरा जो स्पेल है वो पहाड़ों के लिए है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में।
7: मानसून का असर मैदानों में ही नहीं पहाड़ी राज्यों में भी दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 20 अगस्त से भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कुछ पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है।
8: तो खास इसमें बदलाव होने की संभावना नहीं है। मानसून अपनी एक्टिव कंडीशंस खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में बना हुआ है, और आने वाले 2 से 4 दिनों में ये एक्टिविटी बने रहने की संभावना है, क्योंकि सिस्टम अभी बना हुआ है।
7: पश्चिम बंगाल के आसपास बने लो प्रेशर एरिया की वजह से ओडिशा, झारखंड, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। यानी अगस्त के महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। ये बारिश एक तरफ लोगों को गर्मी और उमस से राहत देगी, वहीं दूसरी तरफ अच्छी बारिश से फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद भी जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम मैच के लिए बस इतना ही,
2: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएनटी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
5: सावन के तीसरे सोमवार पर पम्पम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय, हर हर महादेव के जय घोष के साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज हुआ। नागपंचमी पर विधि विधान से खुले नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट, गुवाहाटी के सुरकेश्वर मंदिर से लेकर प्रयागराज के वासुकी मंदिर तक नाग देवता की पूजा करने के लिए उमड़े भक्त। IIT कानपुर के छात्रों ने निकाली कांवड़ यात्रा, तो वहीं सरसैया घाट से गंगा जल लेकर पैदल आनंदेश्वर मंदिर पहुंचे भगवान भोले का किया जलाभिषेक। रोहतास में महिलाओं ने मनाया कजरी महोत्सव, जमकर किए गायन, सावन के गीत गाए, कला और संस्कृति का दिखा अनूठा संगम। मूर्थल के ढाबों पर अब इंसान नहीं, रोबोट्स परोस रहे हैं खाना, एक बार चार्ज होने पर 2 घंटे तक सर्विस सॉफ्टवेयर चिप से होती है कंट्रोलिंग। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
5: सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लगी कतार। सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ का हुआ भव्य श्रृंगार, बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती के दौरान माहौल में खुली दिव्यता। बाबा विश्वनाथ के दरबार में उमड़े भक्त, जलाभिषेक करने आए कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा। सावन के तीसरे सोमवार के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम की भव्य सजावट की गई, मंदिर परिसर की खूबसूरती ने मंत्रमुग्ध किया। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लगा शिव भक्तों का मेला, सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर कांवड़ियों ने गाया किया जलाभिषेक। उज्जैन में नागपंचमी पर रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुले, साल में सिर्फ 24 घंटे मिलने वाले दर्शन के लिए आधी रात से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, नागपंचमी पर खुले पट आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। इस बार नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का भी शुभ संयोग, आस्था के साथ खास सहयोग पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। नागचंद्रेश्वर के दर्शन और महाकाल की सवारी के लिए बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए अलग अलग रास्तों और सुरक्षा के खास इंतजाम किए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नागचंद्रेश्वर मंदिर में 300 रुपए के शीघ्र दर्शन की व्यवस्था, इसके लिए रखे गए ऑनलाइन स्लॉट। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ। सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का लगातार। भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंज उठी।

उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और क्रिकेटर उमेश यादव, विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा की। प्रयागराज में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर नाग वासुकी मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का मेला, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा की। नाग वासुकी मंदिर में नागपंचमी के दिन पूजा करने से काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। नागपंचमी पर नाग वासुकी मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मंदिर परिसर में तैनात किए गए जवान। अयोध्या में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर नागेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। शेषनाग मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया नाग देवता का दुग्ध अभिषेक, सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार के बागों वाले बागेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया नाग देवता का दुग्ध अभिषेक। मान्यता के अनुसार बागेश्वर नाग देवता की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। गाजियाबाद के बाबा दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर में उमड़े शिव भक्त भोलेनाथ की एक झलक को पाने के लिए ललाहित दिखे भक्त। नागपंचमी पर बाबा दूधेश्वरनाथ का भक्तों ने किया जलाभिषेक, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। कानपुर में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर कैलाश मंदिर में भक्तों का तांता लगा, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। सोमनाथ में पहले सोमवार पर सोमनाथ मंदिर में की गई भव्य सजावट, भोलेनाथ की उतारी गई आरती।

गुवाहाटी में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर सुरकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा। भक्तों ने विधि विधान से बाबा भोलेनाथ की पूजा की। मुजफ्फरपुर में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर बाबा गरीबनाथ धाम में सुबह से लगा भक्तों का मेला। भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। नागपंचमी पर गरीबनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जल अभिषेक। बाराबंकी में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर लोधेश्वर महादेव धाम में भक्तों का मेला लगा। भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ के अभिषेक। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भीड़ को देखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। करीब 600 जवानों को किया गया तैनात। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने सावन को लेकर वीआईपी दर्शन पर लगाई रोक। 1 महीने तक नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। वाराणसी में नागपंचमी पर नाग कुआं मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने किए नाग देवता के दर्शन। गोरखपुर में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में उजाला होने से पहले ही दर्शन पूजन के लिए पहुंचे भक्त। सभी भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मधेपुरा में सिंहेश्वर धाम में सुबह से लगा भक्तों का तांता। भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। मुंबई में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर बाबुलनाथ में सुबह से भक्तों का मेला लगा। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक। लखनऊ में नागपंचमी में नागेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक। मुरादाबाद के तीसरे सोमवार को प्राचीन गंगा मंदिर में भक्तों का मेला लगा। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा का जलाभिषेक। वाराणसी में सावन के सोमवार पर कांवड़ियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के जयकारे लगाए। पीलीभीत में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। एसपी सुकीर्ति माधव ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की। पीलीभीत में कांवड़ियों के लिए विशेष कैंप लगाए गए। कांवड़ियों का कराया गया भोजन। हरिद्वार में श्री गुरु गोरखनाथ अलक अखाड़ा परिषद के तत्वाधान में कनकल क्षेत्र में 4 महामंडलेश्वर का किया गया पट्टाभिषेक। बूढ़ा अमरनाथ की पवित्र यात्रा की आज से शुरुआत। एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया। जम्मू से 2000 से ज्यादा श्रद्धालु हुए रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा 12 दिनों तक चलेगी। 28 अगस्त को होगा यात्रा का समापन। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा में इस बार इजाफा किया गया है। बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के बाहर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल तैनात हुए। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है पैनी नजर।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में 16 अगस्त को नवग्रह मंदिर से भव्य त्रिशूल यात्रा निकाली गई। यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप कॉलेज ग्राउंड तक पहुंची। त्रिशूल यात्रा को बाबा बूढ़ा अमरनाथ की छड़ी यात्रा से पहले होने वाले धार्मिक कार्यक्रम बताया गया है। इसमें श्रद्धालु भगवान शिव के त्रिशूल के साथ यात्रा में शामिल हुए। त्रिशूल यात्रा नवग्रह मंदिर में बीती शाम करीब 4:20 से शुरू हुई। यात्रा शुरू होने से पहले त्रिशूल की हुई विधिवत पूजा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरा माहौल भक्तिमय रहा। यह आयोजन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक

0: इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंड टेबल का हुआ आगाज, सीएम विजय हुए शामिल। सीएम विजय ने लॉन्च किया इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। मंच पर साथ में इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन एंड एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ करीब
1: लाउडर फॉर एवरी जर्नलिस्ट।
0: मुख्यमंत्री विजय ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सच को और मुखर होकर बोलने दें का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नेता, नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और मनोरंजन क्षेत्र की हस्तियां शामिल होंगी। तमिलनाडु के भविष्य और सरकार के कामकाज की समीक्षा मुद्दों पर होगी चर्चा। तमिलनाडु की आर्थिक संभावनाओं और निवेश के माहौल के साथ साथ भ्रष्टाचार, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त, स्वास्थ्य जैसी राज्य की प्रमुख नीतिगत चुनौतियों पर विचार विमर्श। गुरेज में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल 1.0 का शानदार समापन हुआ। खेल को लेकर युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत अभियान और पौधारोपण अभियान में शामिल हुए। रामनाथपुरम में योग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। मामलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम हवाई अड्डे पर पहली उड़ान शुरू हुई। यात्रियों में खुशी की लहर। बेल्जियम में बाथटब रेस का अनोखा रोमांच देखने को मिला। म्यूज नदी में बाथटब राफ्ट लेकर उतरे लोग। डूबते, तैरते और नाचते हुए दिखे प्रतिभागी। रंग बिरंगे राफ्ट ने खींचा सभी का ध्यान। दोस्तों और परिवारों ने मिलकर लिया हिस्सा। 1 किलोमीटर लंबी नदी में हुई अनोखी रेस। राफ्ट में कम से कम एक बार टब जरूरी। 1982 से चली आ रही है यह अनोखी परंपरा। 25वीं बार रेस में शामिल हुआ एक परिवार। पानी में मस्ती के साथ जमकर हुआ रोमांच। वाटरफॉल पर बसा चाइना का सदियों पुराना शहर। फुरोंग शहर बना विदेशी पर्यटकों की पसंद। झरने और प्राचीन इमारतों ने खींचा सभी का ध्यान। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया फुरोंग शहर। हर तरफ झरने और हरियाली का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। दिन में प्रकृति, रात में रोशनी का जादू। रात में झरनों की खूबसूरती पर लगे चार चांद। पानी की चमक और रोशनी ने मोहा मन। रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी चाइना में। वीजा फ्री यात्रा से बढ़ा विदेशी पर्यटकों का रुझान। इंग्लैंड में समुद्र के बीच अनोखा क्रिकेट मैच हुआ। ब्रैम्बल बैंक पर रेत में खेला गया मैच, तो वहीं रेत पर बनी क्रिकेट पिच। नाव से पहुंचे खिलाड़ियों ने जमाया खेल। लहरों के बीच क्रिकेट का रोमांच देखने को मिला। खिलाड़ियों ने समुद्र और रेत का सामना किया। बढ़ते ज्वार ने बढ़ाई मुश्किल। पानी बढ़ा तो मैदान ही डूबने लगा। सिर्फ 36 मिनट चला अनोखा क्रिकेट मैच। नाव से पहुंचे क्रिकेट के खिलाड़ी, बल्ला, गेंद और स्टैम्प भी साथ लाए। समुद्र ने निगल लिया क्रिकेट का मैदान। 70 साल पुरानी क्रिकेट परंपरा कायम। रॉयल सदर्न यॉट क्लब बना विजेता। अनोखे मुकाबले में दर्ज की जीत। बीजिंग में रोबोट्स ने दिखाया हॉस्पिटैलिटी हुनर। होटल में रोबोट्स ने सर्विस का टेस्ट दिया। सामान पहुंचाने से हाउसकीपिंग तक चुनौती। रोबोट्स को 30 मिनट में 3 काम पूरे करने थे। सूटकेस, पानी और चप्पल पहुंचाने की चुनौती। बेडशीट ठीक करने का भी टास्क दिया गया। 10 से ज्यादा रोबोट टीमों ने हिस्सा लिया। विजन और कंप्यूटिंग सिस्टम की कड़ी परीक्षा हुई।

0: ऑटोनोमस रोबोट्स को बढ़ावा देने पर जोर, प्रतियोगिता में रोबोट्स की दक्षता परखी गई। चाइना में एक घंटे में 202 कप कॉफी बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। बीजिंग में रोबोट ने संभाली पूरी कॉफी शॉप, 24 घंटे चलती रही ये रोबोटिक कॉफी शॉप। रोबोट 30 सेकंड से कम में बनाता है कॉफी, बीन्स पीसने में सर्व करता है, सारा काम को करता है रोबोट। ग्राहक खुद चुन सकते हैं कॉफी की मिठास। कॉफी की कड़वाहट भी ग्राहक अपनी पसंद से चुनते हैं। शॉप खुलते ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, बीजिंग की रोबोट कॉफी शॉप बनी आकर्षण का केंद्र। चाइना ने मिनरल खोज के लिए जियो एआई मॉडल लॉन्च किया। काशगर में कॉलिंग एआई मॉडल पेश किया गया, मुश्किल इलाकों में मिनरल खोज से मिलेगी मदद। दशकों के जियोलॉजिकल डेटा से तैयार हुआ मॉडल चट्टानों और मिनरल्स की पहचान कर सकेगा एआई। धरती की सतह से मिनरल संकेत भी पहुंचाने में सक्षम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियाँ तो कहीं हादसा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: सावन के तीसरे सोमवार पर बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय, हर हर महादेव के जय घोष के साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज। IIT कानपुर के छात्रों ने निकाली कांवड़ यात्रा, सरसैया घाट से गंगा जल लेकर पैदल आनंदेश्वर मंदिर पहुंचे, भगवान भोले का किया जलाभिषेक। रोहतास महिलाओं ने मनाया कजरी महोत्सव, जमकर गाए सावन के गीत, कला और संस्कृति का दिखा अनूठा संगम। मूर्थल के ढाबों पर अब इंसान नहीं, रोबोट्स परोस रहे हैं खाना, एक बार चार्ज होने पर 2 घंटे तक सर्विस सॉफ्टवेयर चिप से होती है कंट्रोलिंग। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज हुआ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
5: खुशियां छोटी हो या बड़ी हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देती हैं। कभी कभी अपनों के चेहरे पर जब मुस्कान आती है उससे हम खुश हो जाते हैं, कभी कभी छोटी छोटी कामयाबी पे, तो कभी कोई वजह नहीं होती लेकिन अचानक दिल खुश हो जाता है। वो कहते हैं ना कि खुशियां तो बांटने से बढ़ती हैं, तो आज तो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने इस एपिसोड में उन तमाम पलों को जो हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आती हैं, और उसके साथ साथ लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। जी हाँ, यहाँ तो है हमारे पास एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट, तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला हेडलाइंस के साथ।
6: बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, खतरे में पड़ेगी विहान की जान, आरंभी और ध्रुव होंगे परेशान। शुरू होगा मन्नत और विक्रांत का रोमांस, रोमांस पर लगेगा हादसे का ब्रेक। फहमियों के चलते होगा बंटी और काव्या का रोका।
7: माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना, मेरे सोनिया सोनिया।
6: सीरियल मन सुंदर में होगा तमाशा, रुचिता पर लगेंगे इल्जाम।
8: आप एक नातिन की आड़ में दूसरी नातिन को हमारे पोते के गले में बांधना चाह रही हैं। यही इरादा है।
6: कृष्कन्या के कब्जे में होगा प्रथम, राध्या बनेगी रक्षक।

कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी होती है खुलकर हंसना। कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी ईशा। बस ईशा और सूरज, हम तो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी इसी तरह हो, ढेर सारी खुशियां, थोड़ी सी नोकझोंक, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा छेड़ना, थोड़ा सा तंग करना, लेकिन ना आए कोई ऐसा ट्विस्ट जो लेकर आए आपकी आंखों में आंसू। लेकिन क्या करें, आपकी कहानी में तो अचानक आ जाते हैं ऐसे ऐसे ट्विस्ट कि हम भी सोच में पड़ जाते हैं। लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर।

0: शुरू होंगी शादी की तैयारियाँ। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में वही चुनने जा रहा है एक नया रिश्ता, लेकिन ये रिश्ता प्यार की नहीं बल्कि गलत फहमियों के बुनियाद पर है। जी हाँ, वही ईशा और सूरज को ये गलत फहमी हो गई है कि बंटी काव्या से मोहब्बत करता है, लेकिन असल बात तो ये है कि बंटी और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन इसी कश्मकश के बीच वही सूरज ने अपने घर रखी है रोका सेरेमनी, वो भी काव्या और बंटी की। ऐसे में देखिए कैसे पूरे परिवार वाले सज धज कर तैयार हैं। वही दूल्हे वाले भी आ चुके हैं रोके के इस रस्म को पूरा करने के लिए। लेकिन जैसे ही बंटी काव्या को दुल्हन के रूप में देखता है वही उसे लगता है 440 वोल्ट का झटका। लेकिन ये बात ना ही ईशा समझ पाती है और ना ही सूरज। तभी तो देखिए कैसे वो बड़े ही प्यार से कर रहे हैं इनका वेलकम।
1: क्या ठीक हो? रोकी की रस्म में खड़े खड़े करोगे? आओ चुपचाप आकर बैठो। आओ।
0: में जब घर पे बंटी की एंट्री होती है उसी के पीछे रिया भी आ जाती है। और देखिए कैसे रिया का तो दिल बेहद ही बुरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि उसे तो ऐसा लगा था कि भाई उसकी और बंटी की शादी होगी, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ उल्टा है। तभी तो देखिए कैसे बंटी रिया को देखकर सदमे में है।
1: तुम अपने जीजू के लिए सरप्राइज देने गई थी ना, क्या कोई प्रैंकमैन करने का इरादा है?
2: अरे कुछ ही दिनों में शादी के भूल भुलैयों में गुम होने वाला है ना बेचारा, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा है। पता है बंटी, हम पति लोग अक्सर खोए खोए से क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हम सपने में भी अपनी पत्नी के चैन और आराम के बारे में सोचते हैं। हमेशा अपने ख्यालों में उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो इसलिए सोचते हैं। चल बैठ। Yes, yes.

0: हो चुका है क्योंकि सर ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी, उस वजह से भैया ने कुछ और समझ लिया कि वो काव्या की बात कर रहा है और फिर ये सब बात यहाँ तक पहुँच गई। मैं सुबह से भाग रही हूँ वंडी के पीछे इधर उधर पर वंडिया मेरी बात ही नहीं हो पा रही है और फिर इनको रोके में मिलता है सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज।
1: बट पहली चीज़ हार्ट ब्रेक सिर्फ रिया का नहीं बंटी का भी, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है कि बंटी को भी टाइम नहीं मिल रहा है, वो इधर जा रहा है, सूरज भाई उसको सीधा टेलर के पास लेके आ गए, वहाँ उसका नया कॉस्ट्यूम आ गया, वो फ़ोन उठा नहीं पा रहा है, फ़ोन साइड में रखा है, तो सिचुएशन उसको तो पता ही नहीं है कि सूरज भैया ने गलत समझा।
2: ऐसे में जब पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, देखिए कैसे सभी लोग रस्मों की तैयारी करने लगते हैं और आज एक भाई अपनी बहन का हाथ अपने जीजा के हाथ में देते हुए देखिए कैसे इमोशनल भरी बातें कर रहा है।
3: तो मेरे होने वाले जीजू, आज तक मैंने तुझे जितना डांटा फटकारा पिटाई की, हालांकि तेरे भाई की यही थी सभी के लिए दिल से नहीं बोलने दे, जो बोल रहा हूँ दिल से। आज तो मैंने मेरी बहन को अपना जीवन साथी चुन लिया, हम सभी का दिल जीत लिया। बस एक बात का ख्याल,
2: इन्हीं सब रस्मों के बीच भाई लाइट भी चली जाती है, लेकिन फिर भी रस्में तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कंफ्यूजन के साथ ऐसे में अब देखना होगा कि क्या रिया इस कंफ्यूजन को दूर करेगी या फिर बंटी और काव्या की शादी हो जाएगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: खुशी तो हमारे चेहरे की खूबसूरती को भी बढ़ा देती है, लेकिन देखे असल खुशी तो तभी होती है जब आपका मन भी खुश हो। कुछ ऐसा ही कह रही है आज हमसे हमारी राध्या। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको राध्या और प्रथम के पास और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में आज, क्योंकि कहानी का लेखक लेकर आता है इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड जिससे हम इस कहानी से बंधे रहते हैं। लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर।
5: कन्या के जाल में फंसा प्रथम, राध्या बचाएगी प्रथम की जान, विश्वकन्या का खतरनाक खेल, दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में घर वाले काफी परेशान हैं। असल में विश्वकन्या ने राध्या को तो छोड़ दिया है, लेकिन वो प्रथम के पीछे पड़ गई है। तभी तो अपना माया जाल बिछाकर अपनी गुफाओं में विश्वकन्या ने प्रथम को बुला लिया है। यानी कि अब इस तांत्रिक महिला का भी जादू काम नहीं करेगा।
6: अब राध्या के अंदर से विश्वकन्या जा चुकी है, जब तक ये मोली धागा दरवाजा पर बंधा रहेगा तब तक उस विश्वकन्या की आत्मा इस घर में नहीं आएगी।
7: आखिर तुम्हारे दिल ने मुझे पहचान ही लिया, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी।
5: ऐसे में अब राध्या काफी परेशान हो गई है और वो पहुंच गई है तांत्रिक के पास ये पता लगाने कि वो प्रथम को कैसे बचा पाएगी। ऐसे में राध्या को अब ये तांत्रिक बताती है कि उसे विश्वकन्या की गुफा में जाना होगा ताकि वो अपने सुहाग यानी प्रथम को बचा सके, और राध्या प्रथम के लिए कुछ भी करने को तैयार है और वो हो जाती है तैयार विश्वकन्या से लड़ने के लिए। भाई अब राध्या की प्रतिज्ञा है कि वो प्रथम को सही सलामत विश्वकन्या के चंगुल से बचाकर लेकर आएगी, लेकिन ये सफर काफी मुश्किल है क्योंकि इसमें आएंगी कई मुश्किलें। अब देखना होगा कि एक पत्नी अपने पति के लिए क्या कुछ कर गुजरती है।
8: अभी क्या कह रही है, उस विश्वकन्या ने हमारे प्रथम सर को अपने कब्जे में कर रखा है, पर क्यों?
9: विश्वकन्या एक इंसान को तो अपना पति नहीं बना सकती,
10: इसलिए
9: पहले वो प्रथम को अपने जैसा विश्व पुरुष बनाने की प्रक्रिया कर रही है। तुम्हारे शरीर के नहीं, तुम्हारे सुहाग के पीछे पड़ी है। अगर उसकी ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो तुम अपने सुहाग को हमेशा के लिए खो दोगी। तुमने सावित्री और सत्यवान की कहानी तो सुनी होगी। जब यमराज सत्यवान का प्राण हरण करने आए थे तो सावित्री भी बिना डरे उसके पीछे पीछे आई थी। उनके रास्ते में अनेक कठिनाई खड़ी की, लेकिन सावित्री का संकल्प जरा भी नहीं डगमगाया।
8: हम इसका सामना जरूर करेंगे अपने पति के लिए। हम भी अपने सत्यवान को इस विश्वकन्या के चंदन से बचा कर ही रहेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी ही जान दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। अपने सत्यवान के लिए, अपने प्रथम सर के लिए हम ये जरूर करेंगे और उन्हें बचा कर वापस लेकर आएंगे।
5: ऐसे में अब ये पोटली ही है जो बन गई है राध्या का सहारा, जो इस तांत्रिक ने दी है यही करेगी राध्या की रक्षा। लेकिन अब देखना होगा कि कैसे राध्या विश्वकन्या के जाल से प्रथम को बचा पाती है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ घर में मचा है अलग ही बवाल। सभी लोग हो रहे हैं काफी परेशान, खासकर दादी, क्योंकि राध्या घर में नहीं है। सभी लोग राध्या को घर में ढूंढते हैं लेकिन राध्या कहीं नहीं मिलती। भाई उसे कहा गया था कि वो घर से बाहर ना निकले, लेकिन प्रथम के लिए वो घर से बाहर निकल तो चुकी है, लेकिन यहाँ घर वाले काफी टेंशन में हैं। होगा कि कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, क्या प्रथम को राध्या बचा पाएगी या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: कभी कभी प्यार वाली वो छोटी सी खुशी हमारे दिन को और भी खूबसूरत बना देती है, लेकिन प्यार में क्या होना चाहिए? बैलेंस, क्योंकि खुशी तभी खूबसूरत लगती है जब उसमें सुकून हो। वो कहते हैं ना कि जब भी आप हो अपने स्पेशल वन के साथ, आपको फील होना चाहिए एब्सोल्युटली एट होम, एट पीस। उसी को तो कहते हैं असली रिलेशनशिप। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इस जुनूनी के सेट पर और देखते हैं कैसा है यहाँ पर इनके इश्क का जुनून। लेकर चलते हैं आपको गुरु और रूहानी के पास,
11: जिसे

0: से रूठी रूहानी,
1: जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ।
0: बीवी को मनाने की गुरु की कोशिश।
2: हेलो एआई, कंपाउंडर को कैसे मनाएं? अरे हाँ, हमारा मतलब अपनी बीवी को कैसे मनाएं?
0: गुरु ने लिया एआई का सहारा।
3: लव लेटर दे दीजिए।
2: अनपढ़ है हम, पढ़ना लिखना नहीं जानते।
0: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आज देखने को मिला एक अलग ही नजारा, जहां पर बंदूक चलाने वाले गुरु आज अपनी बीवी रूहानी को मनाते नजर आए। जी हाँ, रूहानी गुरु से नाराज है। ऐसे में वो कमरे का दरवाजा तो गुरु के मुंह पर बंद कर ही देती है, लेकिन खिड़की खुली है, जिससे गुरु कोशिश कर रहे हैं रूहानी को मनाने की। कभी वो फूल फेंकते तो कभी ये पेपर फेंक कर उसे छेड़ते और मनाते, लेकिन रूहानी वो तो मानने को तैयार नहीं। रूहानी का गुस्सा तो सातवें आसमान पर है।
2: कंपाउंडर, कंपाउंडर, दरवाजा तो खोलो।

0: में तो रूहानी ने गुरु के मुंह पर खिड़की भी बंद कर दी और अब गुरु हो गए हैं काफी परेशान।
1: अरे यार, दरवाजे भी साथ साथ खिड़की भी बंद कर दी तुझने, तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गया।
0: ऐसे में वहाँ पर पहुँचता है गुरु का दोस्त, जो उसे देता है आइडिया कि वो एआई से मदद ले कि वो अपनी बीवी को किस तरह से मनाया जाए। और लगता है एआई ने गुरु को आइडिया दे ही दिया।
2: हवा खा रहे हो क्या डैड?
3: ए, तुमको कोई काम नहीं है का? जब देखो हमारी टांग खींचने चलाता।
2: ए, काम से ही आए थे। खैर वो सब छोड़ो, तुम एक बात बताओ, भाभी रूठ गई है? उनको मनाने का तरीका फोन से काहे नहीं पूछते तुम?
1: फोन से?
2: अरे वो आजकल आया ना, कहा है वो, तू आई? कहा था मैं आई। अरे मैं कौन आई? ओ AI आया ना आजकल।
3: क्या होता है?
2: अरे आजकल मैं मार्केट में आया कि देखो हम दिखाते हैं तुमका। हेलो AI, पूछ भाभी को मनाने का तरीका पूछो यार।
3: कंपाउंडर को कैसे मनाए? अरे हाँ, हमारा मतलब अपनी बीवी को कैसे मनाए?
4: अरे गो,
3: अरे वो तो दे चुके हैं हम, और कुछ बताओ।
5: लव लेटर दे दीजिए।
3: अनपढ़ है हम, पढ़ना लिखना नहीं जानते।
5: तो जिस वजह से रूठी है ये, उसी कॉल कर दीजिए।
3: समझ गए, शुक्रिया
2: यार। वो रूहानी ना गुस्सा हो गया गुरु से, और फिर मैं जाता हूँ ऐसे थोड़ी फिरकी लेता हूँ उसकी, तो मैं उसको AI दिखाता हूँ कि AI इससे पूछ ले क्या करना है, फिर ये उसको तकलीफ बताता है, तो फिर कुछ ज्यादा रूहानी को मनाता है तो मान जाता है।
0: लगता है गुरु ने तैयारी भी कर दी है रूहानी को मनाने की। वैसे आपको बता दे कि अब जल्द ही कहानी में ट्विस्ट भी आएगा, जहां पर गुरु को अपने पिता और रूहानी के बीच किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि नागेश्वर और रूहानी में लगी है ये शर्त।
6: अरे आप बाहुबलियों का खून है गुरु में, बंदूक उठाएगा भी और दागेगा भी।
7: कभी नहीं।
6: दो वचन, यदि तुम्हारी, तुमको अपना और डॉक्टरी वाला कोट और वो डिग्री भी जलानी पड़ेगी।
7: मंजूर, पर अगर आप हार गए तो
6: सारे घर की बंदूकों को हम दरिया में बहा देंगे।
0: तो भाई अब देखना होगा कैसे गुरु रिश्तों को संभाल कर सही फैसला लेता है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: किसी खास का साथ जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन सकता है, जब वो खुशियों में आपका साथ हो और मुश्किलों में भी आपका हाथ थामे। और बिल्कुल ऐसी है प्राजिता और रक्षित की ये कहानी, ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इन दोनों के पास और देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रंग, क्योंकि कहानी में फिर से आया है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट।
9: कुछ तो हुआ है।
0: फिर साथ आए अपराजिता और रक्षित।

बिजनेस डील में हुई प्रॉब्लम। क्या हो पाएगी डील या नहीं? स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डील होने वाली है, लेकिन उसी बीच देखिए कैसे अपराजिता रक्षित को अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर ईरा और बाकी के कलीग्स हो रहे हैं परेशान क्योंकि मीटिंग काफी जरूरी है।

0: फोन रक्षित उठाओ, रक्षित फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मोहित भैया आप प्लीज बोर्ड मेंबर्स के पास जाइए ना, कहीं वो चले ना जाए।
1: डोंट वरी अलेना,

0: कारीगरती की थी। मुझे पता होना चाहिए था कि ललित सी मौत उसने कुछ गलत करने की कोशिश करेगी मेरे परिवार के साथ।
1: भाई मीटिंग काफी जरूरी है, ऐसे में देखिए कैसे बिजनेस डील करने वाले हो रहे हैं गुस्सा।
2: जैसे ही रक्षित आएगा वो जरूर आपको एक्सप्लेन करेगा। प्लीज अब रुक जाइए ना।
3: ये हम पिछले दो घंटे सुन रहे हैं, अब वो आए या ना आए ये मानसून कलेक्शन आपके यहाँ से गया।
0: क्या
4: सर? I'm sorry, we are extremely sorry, sir.
5: Mr. Bharadwaj, there you are. You know, आपके पिता की सबसे बड़ी पहचान थी उनका डिसिप्लिन और उनकी कमिटमेंट।
4: Yep.
5: अफसोस, आपको देख के लगता है कि वो विरासत अब सिर्फ नाम की रह गई है। यू बीच मीटिंग में उठ के चले जाना, हम लोगों को जलील करना, हमारा वक्त जाया करना, ये काम नहीं, हमारी बेइज्जती है। एंड माइंड यू, ये सिर्फ हमारी बेइज्जती नहीं है, ये बेइज्जती आपके पिता ने जो नाम कमाया है उसकी भी है, जिसे आप संभाल रहे हैं।
1: लेकिन फिर जब रक्षित सारा सच इन्हें बताता है कि वो किसी की जान बचाने गए थे, तो ऐसे में उन्हें समझ आता है और ये डील क्रैक हो जाती है, यानी कि बन जाती है बात।
6: हमने रक्षित जी की सारी बातें सुनी और सुनने के बाद हमें नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया। देखिए, हमने बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग रखी और ज्यादातर लोगों को अपने फायदे के लिए चापलूसी करते देखा, लेकिन आज पहली बार एक ऐसी लड़की देखी जिसने इतना बड़ा इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन किसी की जान बचाने के लिए छोड़ा। सॉरी अगर
7: इसलिए हमने फैसला लिया है कि आपको एक चांस और दें।
6: गलदाना पराजिता जी, विदा।
2: मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि रक्षित हमेशा अपने आप को प्रॉब्लम में डालता है अपराजिता की वजह से, और इस बार भी हमारी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचते बचते रह गया, क्योंकि अपराजिता रक्षित को लेके चली गई थी कहीं और बीच प्रेजेंटेशन के, तो मैं तो बहुत गुस्से में हुई। और अभी तक ऐसा लग रहा था कि रक्षित और अपराजिता के बीच में वैसा कुछ नहीं रहा, लेकिन अभी वापस से ईरा को लग रहा है कि शिट, इतनी मुश्किल से तो अलग होने की कोशिश कर रहे थे, अभी वापस से साथ में हो गए, तो देखते हैं अभी कुछ ना कुछ तो करेगी ईरा ताकि वो लोग दूर हो पाए एक दूसरे से।
8: मान ले मेरी बात, शादी कर ली। ईरा हर लिहाज से भारद्वाज खानदान की बहू बनने के लिए लायक है।
1: वैसे इसी के साथ कहानी में नया ट्विस्ट भी आने वाला है, जहाँ पर रक्षित करेगा ईरा से सगाई और फिर क्या करेगी अपराजिता ये देखना होगा। से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: आप ऐसा नहीं कर सकते।
9: हर सितारे की सफलता के पीछे उनकी एक अपनी कहानी होती है और उस कहानी में छिपी होती है उनकी खुशी। अब क्या ये खुशी परिवार की वजह से है, उनके करियर की वजह से है, छोटे छोटे पलों से है या फिर किसी और चीज से है, तो आइए जानते हैं आपके फेवरेट सितारे के बारे में, जिनसे की है हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने ये खास मुलाकात। आज तो हमने जाना है इन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन है ये, चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास।

0: ये डांस की दीवानी है, बेहद अच्छी एक्टर है, डायरेक्ट भी करती है, अपनी मम्मी पापा की लाडी बिटिया है और है इनका खूबसूरत आशियाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भावना पानी की, जिन्हें आप हाल फिलहाल में देख चुके हैं वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो में, जिसमें उन्होंने आना का किरदार निभाया था। इसके अलावा वो कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी है, जैसे कि भूत बंगला, जिसमें था उनका एक स्पेशल डांस नंबर। इसके अलावा फिल्म तेरे लिए, कई और वेब सीरीज में ये नजर आ चुकी है। साउथ की फिल्में भी इन्होंने की है, यानी कि भावना एक है और इनके टैलेंट अनेक है। वैसे आपको बता दे कि अब वो जल्द ही नजर आने वाली है सैफ और अक्षय की आने वाली फिल्म हैवान में। तो आज सास बहू और बेटिया में ये हैं हमारी खास मेहमान, यानी कि भावना पानी, जिनके साथ हम पूरा एक दिन बिताने वाले हैं। वह ये ट्रेन डांसर है, ऐसे में इनका डांसिंग टैलेंट तो हम देखेंगे ही, साथ ही साथ भावना के बारे में कई और बातें जानेंगे, मिलेंगे भावना के मम्मी पापा से, करेंगे इनके घर की सैर, स्टूडियो में जाकर इनका ट्रेन क्लासिकल डांस टैलेंट भी देखेंगे और होगी ढेर सारी मस्ती। तो बिना देर किए सीधा चलते हैं भावना के पास और करते हैं इस टैलेंट भरे डे आउट की शुरुआत।
1: सास बहू बेटा की आज की खास मेहमान है भावना पानी। और भावना, क्या चल रहा है बंगले से निकल के बाहर?
2: प्रीतम पेड्रो के साथ बंगले से निकल,
1: कितनी कॉन्स्पिरेसी सॉल्व कर ली है अब तक, कितनी चीजें पकड़ ली है?
2: अब मैं हैवानियत की तरफ बढ़ रही हूँ आस्ते आस्ते।
1: हैवानियत जो है वो सरप्राइज होने वाला है या शूट मतलब ऑन
2: प्रोसेस? नहीं, हो चुका है शूट, बस रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुका है, तो अच्छी बात है। लेट्स सी, सितंबर आल्सो लुक्स लाइक अ गुड मंथ। ये साल कुछ बहुत खास रहा है।
1: तो चलिए और भी इस दिन को हम खास बनाते हैं, क्योंकि आज हम आपके साथ रहने वाले हैं, क्या क्या आप करते हो। और फर्स्ट सरप्राइज जो है, हम कहेंगे कि लोगों के लिए तो सरप्राइज नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑल नोज कि भावना इज अ गुड डांसर और पैशनेट अबाउट डांस। तो ये जो पैशन है आज हमारे साथ शेयर होने वाला है, तो कितनी डांस मस्ती होने वाली?
2: एब्सोल्युटली नो, पर जैसे कि आपने कहा कि डांस थिएटर और स्टेज, और बचपन से रही हूँ मैं स्टेज पे, 5 साल की उम्र से, तो मेरे लिए मेरा दिन अधूरा रहता है अगर मैं डांस ना करूं और रियाज ना करूं, क्योंकि आप जानते हैं क्लासिकल आर्टिस्ट के लिए रियाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेली रियाज। तो हम एक मेरे दोस्त के स्टूडियो में जाएंगे, उसने नया नया स्टूडियो खोला है और मैं पहली बार उस स्टूडियो में जा रही हूं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलते त्रिनेत्र।
1: चलिए, मतलब आज भी भावना के का दिल धबाक होता ही रहता है अभी तक?
2: जी हाँ, तेरे लिए से दिल धबाक ऑलवेज।
0: तो भाई, सबसे पहले हम चलेंगे भावना के डांसिंग स्टूडियो में, जहाँ वो अपनी डांस प्रैक्टिस करती है। वैसे भावना खुद ही ड्राइव करती है इस मुंबई के ट्रैफिक में, और साथ ही साथ ड्राइव करते करते इन्होंने हमसे की ढेर सारी बातें, गुनगुनाए गाने।
2: So let's be environmental conscious and drive an electric vehicle. चलिए। This car is another very essential part of my day, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना बहुत ही मेडिटेटिव और बहुत ही सुकूनदायक लगता है।
1: इस मुंबई के ट्रैफिक में भी?
2: जी हाँ, खास करके इस मुंबई के ट्रैफिक में। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि प्लीज आप जस्ट ड्राइव विद कंपैशन। लोगों को आजकल बहुत गुस्सा आता है एंड उनको लगता है कि सामने वाला स्लो जा रहा है, उसके पास बहुत टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम नहीं है इस शहर में, किसी के भी पास टाइम नहीं है। तो प्लीज़ आप समझिए, अगर कोई जा रहा है तो समझिए, स्लो जा रहा है सामने तो बुज़ुर्ग होगा या कोई तकलीफ़ होगी उससे। तो हमको एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और थोड़े काइंडनेस और थोड़े कंपैशन के साथ ड्राइव करना चाहिए।

हाँ, ड्राइव करना मुझे बहुत पसंद है. मेरे लिए तो बहुत ही मेडिटेटिव प्रोसेस है. हालांकि सब हंसते हैं जब मैं ये बात कहती हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है बम्बई जैसे शहर में आपको कैसे सुकून मिल सकता है ड्राइविंग में. पर हाँ, मैं ढूंढ लेती हूँ. अभी आफ्टर ऑल मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूँ, वहां से ज्यादा केओस कहाँ होगा. तो केओस में सुकून ढूंढना हमारी आदत बन चुकी है, इसीलिए हम यहाँ भी ट्रैफिक में भी सुकून ढूंढ लेते हैं. ओके, ये ना जगजीत सिंह का एक गजल है और मेरा बहुत बहुत पसंदीदा गाना गजल. झुकी झुकी सी नजर सुना तो होगा आपने. वार्म अप ही नहीं किया मैंने तो, एकदम आपने मुझे बाय सरप्राइज ले लिया. देखते हैं ट्रेनिंग कितनी काम आती है. झुकी झुकी सी नजर

0: झुकी झुकी सी नजर
1: देख लख लख पर
2: करते करते हम पहुंच गए हैं भावना के स्टूडियो में जहां पर वो डांस प्रैक्टिस करती हैं और आज हम देखेंगे इनका ये हुनर जहां वो क्लासिकल डांस करेंगी और साथ ही बताएंगी अपने डांसिंग टैलेंट के बारे में कई और बातें।
0: हेलो, तो हम त्रिनेत्र स्टूडियो पहुंच गए हैं। मेरे दोस्त अभिनव मुखर्जी का स्टूडियो है, वो एक बहुत ही उम्दा कथक डांसर है और मैंने भी उनके साथ बहुत शोज किए हैं। तो ये है उनका स्टूडियो त्रिनेत्र बाय AM, दैट्स अभिनव मुखर्जी। अब अभिनव सिंगापुर में है अपने शोज के लिए, तो हम आए हैं यहाँ पर। हमारा एक और दोस्त है जयेश। हाय जयेश, एंड ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। यू नो एज डांसर्स हमको अच्छे स्टूडियोज की तलाश होती है जहाँ पर हम अपना रियाज कर सकें, क्योंकि घर पे पॉसिबल नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक आप घर से काम करते तो अलग होता है, लेकिन जब ऑफिस जाके काम करते तो अलग होता है। सो दिस इज़ आवर वर्क प्लेस, दिस इज़ आवर मंदिर, एंड ये मेरे दोस्त अभिनव मुखर्जी ने बनाया है। आप देख सकते हैं त्रिनेत्र बाय AM। वो फिलहाल सिंगापुर में है, अपने शोज कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, वर्कशॉप्स ले रहे हैं, तो वो इस वक्त हमारे साथ है नहीं, बट ही इज़ अ लवली फ्रेंड, अ ग्रेट डांस पार्टनर। आप देख सकते हैं कि हर डांस स्टूडियो के लिए मिरर का होना बहुत ज़रूरी है। एक एक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए भी मिरर का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नो हम करते की विद्या कहते हैं इसे, विद्या को करना पड़ता है, और जब हम करते हैं सो वी नीड टू नो व्हाट वी लुक लाइक, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट हाउ टू परफेक्ट व्हाट वी आर डूइंग, वो हमें मिरर हेल्प करता है करने में।

मैं एक्चुअली दो क्लासिकल डांस फॉर्म्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के, उसमें से मैं दो शैलियों में विद्या ले चुकी हूँ, विच इज़ ओडिसी जो उड़ीसा से है, और कथक जो नॉर्थ ऑफ इंडिया से है. मैं दोनों में ट्रेन करती हूँ. ऑफकोर्स मैं खुद उड़िया हूँ, तो माँ बाप ने मुझे ओडिसी डांस सिखाया था ताकि मैं अपने रूट्स से कनेक्टेड रहूँ. लेकिन मुझे बहुत जल्दी अपना हॉबी प्रोफेशन बनाना है, ऐसा नॉलेज मुझे आ गया था. आई थिंक मैं 11 या 12 साल की थी, तब से मुझे पता था कि मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन बनने वाला है. और ज़्यादा लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं बतौर क्लासिकल प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर भी हूँ, और मैंने पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स किए हैं, ऑल्सो इंडिया में एक्सटेंसिवली परफॉर्म किया है, बहुत बड़े बड़े डांस फेस्टिवल्स और मंचों पर, जापान, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन जगहों पर भी मैंने क्लासिकल डांस परफॉर्मेंसेस दिए हैं. मेरे गुरु बहुत ही दिग्गज गुरु हैं दोनों डांस फॉर्म्स में, तो उनकी वजह से उनके ट्रूप में ऑल्सो एंड एज अ सोलो आर्टिस्ट ऑल्सो मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ.

तो अभी मैंने थोड़ा सा कथक प्रैक्टिस किया है जिसमें आपने थोड़ा चमकदार फुटवर्क, चक्कर्स और थोड़े मूवमेंट्स, तिहाइयाँ वगैरह देखी. मैंने नीलिमा अजीम जी से सीखा है जो पंडित बिरजू महाराज की बहुत उम्दा शागिर्द रही हैं और आप सब जानते भी होंगे बहुत अच्छी अभिनेत्री है और बहुत ही अमेजिंग डांसर है. उनके बेटों को तो आप जानते ही हैं. तो उनके साथ मैंने फ्रॉम द एज ऑफ 15 सीखा हुआ है तो उस बात को भी 20 साल से ऊपर हो गया है. यस, टेरेंस के साथ तो मैं एक्चुअली कंपनी में डांस करती थी टेरेंस के, एज अ बतौर डांसर ट्रूप में डांस करती थी मैं, लाइक या शाहिद शामा के में करता था मैं टेरेंस के यहाँ करती थी. एंड या बहुत एक्सपीरियंस मिलता है जब आप एक ग्रुप डांसर से उभर कर एक सोलो कलाकार बनते हैं. आप में जो मेहनत करने की क्षमता होती है और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, आपको सब का रिस्पेक्ट करना आता है फिर, बिकॉज कोई बड़ा छोटा होता नहीं है. एंड तो हाँ, आपको मेहनत की असल वैल्यू पता चलती है.

0: मेहनत बहुत और रिटर्न्स बहुत कम, जितना कि एक जितनी कमाई एक फिल्म एक्टर या थिएटर एक्टर, नॉट थिएटर एक्टर बट फिल्म एक्टर या टीवी एक्टर या मॉडल कमाता है, डांसर उतना नहीं कमा पाता। इसीलिए डांस को अपना मेन प्रोफेशन बनाए रखने के लिए आपको बहुत या तो बैकअप्स करने पड़ते हैं, मतलब बी प्रोफेशन सी प्रोफेशन बना के रखना पड़ता है, प्लान बी सी, या तो फिर आप फिर बहुत बड़ा नाम बनिए और इस कंट्री में सबको इतना सेम इक्वल पैसा नाम शोहरत कमाने का मौका नहीं मिलता।
1: भाई ये बेहद अच्छी डांसर तो है ही, लेकिन डांसिंग के साथ साथ बेहद अच्छी एक्ट्रेस भी है, इसलिए ये दोनों चीजें बखूबी संभालती है। इसी के साथ आज भावना ने अपने दिल की कई सारी बातें कही, बताई अपने सफर की कहानी, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की और कैसे वो डांस से एक्टिंग में आई। इतना ही नहीं, वो तो एक्टिंग के साथ साथ म्यूजिकल डायरेक्शन भी करती है। भाई डायरेक्शन तो इनके खून में है, क्योंकि इनके पापा डायरेक्टर जो रह चुके हैं।
0: स्टेज टू तो शुरुआत, जैसे आपको पता है, बचपन से मैं स्टेज पर परफॉर्म किया है, और फिर मैं आई थिंक 16 साल की थी, कॉलेज में ही थी, मतलब स्कूल से जस्ट पास आउट किया था, मुझे पता चला एक ऑडिशन हो रहा है तेरे लिए फिल्म के लिए, और संजय गढ़वी डायरेक्टर थे। मैंने बस ऑडिशन दिया और मुझे फिल्म मिल गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इसका मतलब भगवान चाहते हैं, मैं तो डांसर बनना चाहती थी, एक्ट्रेस कैसे बन गई। तो मैं भगवान चाहते हैं कि मैं एक्ट्रेस बनूँ, ठीक है ओके चलो एक्टिंग करते हैं। फिर मुझे धड़ाधड़ साउथ की फिल्में मिलने लगी। मेरी पहली फिल्म थी एक कन्नड़ा पिक्चर विद सुपरस्टार शिवराज कुमार जी, और पुरी जगन्नाथ ने उसको डायरेक्ट किया था। तेरे लिए तो आप जानते ही हैं, प्रीतम दार, जीत प्रीतम ने म्यूजिक दिया था, बड़े बड़े सिंगर्स ने गाया था उसमें, संजय गढ़वी डायरेक्टर थे जिन्होंने आगे चल के धूम और धूम टू बनाई, और राजू हिरानी जी मेरे एडिटर थे, और अब्बास टायर वाले लिरिसिस्ट थे। सो ऑल दीज बिग नेम्स वर देयर इन माय फर्स्ट फिल्म। फिर इवन साउथ की फिल्मों में बड़े बड़े डायरेक्टर्स, जैसे मैंने कहा कन्नड़ा फिल्म पुरी जगन्नाथ के साथ, फिर मलयालम फिल्म प्रियदर्शन जी के साथ जिसमें दिलीप जी सुपरस्टार अगेन ऑफ मलयालम सिनेमा वो थे, और कन्नड़ा में और दो तीन फिल्में भी की, तमिल में भी की, तेलुगु में नीनू चड़क नीनू अंडलेनू भी किया। लेकिन फिर ये सब फिल्में करते करते मुझे एक ऑफर आया ऑफ कमिंग बैक टू स्टेज, विच वॉज अ शो कॉल्ड भारती द वंडर दैट इज इंडिया। इट वॉज अ ब्रॉडवे स्टाइल म्यूजिकल, और पूरा शो बेस्ड था इस सेंट्रल कैरेक्टर पे, जिसका मौका मुझे मिला था। मुझे याद है उस वक्त मैं फिल्में भी कर रही थी, टेरेंस के कंपनी में डांस भी करती थी, और बहुत एड्स भी बहुत शुरू कर दिए थे मैंने, कम से कम 100 से ऊपर एड्स शूट किए थे 5 साल में। तो ये करते करते जब ये ऑप्शन ये ऑफर आया मुझे, तो मैंने कहा कि इज दिस द राइट थिंग टू, मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने सोचा कि इतनी मेहनत, 5 साल, 2000 से 2005 मैंने इतनी कम से कम 15-16 फिल्में कर ली थी बतौर हीरोइन उस वक्त मैंने, और 100 एड्स, और हिंदी फिल्में भी की थी 4-5, तेरे लिए, दिल विल प्यार व्यार, तेज, फास्ट फॉरवर्ड। मैं क्या करना चाहिए, ये सब करियर छोड़ के मुझे वर्ल्ड टूर पे चले जाना चाहिए, कौन याद रखेगा मुझे यहाँ पर। पर ऑफ कोर्स मेरे अंदर का डांसर जाग गया और कहा कि चलो छोड़ो, ये मौका मिल रहा है पूरी दुनिया घूमने का और वो एक काम करने का जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, विच इज़ डांस फॉर द वर्ल्ड ऑडियंस, नॉट जस्ट फॉर इंडिया। टेकिंग यू, आई फेल लाइक एम्बेसडर ऑफ इंडिया, बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट इंडियन कल्चर एंड इंडिया। एक्चुअली मैंने 2016 में एक बहुत स्मॉल स्टिंट मैंने टीवी में भी बिताया था, बहुत मज़ा आया था मुझे। इट वॉज अ शो कॉल्ड क्वींस हैं हम, यस, एंड टीवी के लिए, यस। तो उसमें मैं मेन लीड थी, बट वो अनफॉर्चुनेटली शो ज़्यादा दिन चला नहीं, बहुत आई थिंक 3 या 4 महीने या 6 महीने चला होगा एट द मोस्ट। जी हाँ, अब तो मैं बिहाइंड द सीन्स आ चुकी हूँ, और लास्ट दो सालों में मैंने तीन म्यूजिकल्स डायरेक्ट की हैं. वन इज देवदास द म्यूजिकल, विच इज ऑफ कोर्स अबाउट देवदास, नॉट बेस्ड ऑन द फिल्म बट बेस्ड ऑन द नॉवल. एंड इसके हमारे 55 शोज हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और बहुत ही पसंदीदा, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और इट्स बिन सक्सेसफुल, गॉड इज ग्रेट. एंड उसके अलावा रिसेंटली बॉम्बे में चलते हैं इसके शोज, तो प्लीज़ आप मैरी गो राउंड इस शो का नाम है, विच इज़ अबाउट द, इट्स अ कॉमेडी अबाउट इंडियन वेडिंग्स और वेडिंग्स में क्या क्योस होता है और कैसे सब जो हमारे रिच वेडिंग्स होते हैं वो कैसे पूरे पागलपंती से भरे हुए होते हैं, तो उसके बारे में है मैरी गो राउंड, लेट्स ब्लेम इट ऑन बॉलीवुड. ये है मेरा सेकेंड डायरेक्शन म्यूजिकल, डायरेक्टेड म्यूजिकल. और एक और मैंने किया था, उसके शोज इंडिया में नहीं हुए हैं, इट इज़ राधा अ लव स्टोरी, वो भी होपफुली इंडिया में बहुत जल्द होगा. और यस, देर आर मैनी अदर म्यूजिकल्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड. एंड बतौर डायरेक्टर मुझे, क्योंकि मेरे पापा डायरेक्टर रह चुके हैं, तो बचपन से उनकी गोद पे बैठ के मॉनिटर चेक किया है मैंने, तो आई थिंक वो थोड़ा सा खून में आ ही जाता है.
1: भाई भावना के बारे में हमने ढेर सारी बातें जान ली, इनके टैलेंट्स भी देख लिए, अब बारी है इनके घर जाने की और देखने की.

0: ये मॉम डैड का घर है और फिलहाल तो यही मेरा घर है, तो आइए वेलकम होम। ये है मेरे पापा, द ग्रेट मिस्टर उदय शंकर पानी। आइए देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स जो मेरी मम्मा बहुत प्यार से रखती है, ये पूरा घर। और अरे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये मेरे पापा की पेंटिंग्स। मेरे पापा एक बहुत बड़े पेंटर हैं और ये उनके सारे पेंटिंग्स हैं। ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये है द ग्रेट मिस्टर पानीज पेंटिंग्स। मेरे पापा बचपन से ही, वो भी आर्टिस्ट ही रहे हैं। उन्होंने बचपन में पॉकेट मनी के लिए कार्टूनिंग करते थे, न्यूज़पेपर्स के लिए, मैगजीन्स के लिए बुक्स इलस्ट्रेशन करते थे। और
1: 5 रुपीज़ फॉर ईच ईच इलस्ट्रेशन एंड टोटल्स
0: या फॉर अ चाइल्ड दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। सो यू नो दैट्स हाउ, सो या दैट्स वाई हिज किड्स ऑल्सो आर सो आर्टिस्टिक, ऑल ऑफ देम। मेरी बहन भी एक्ट्रेस है और मॉडल है और फैशन डिज़ाइनर है, और मेरा भाई म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर एंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। एंड मेरी मम्मी, अभी आप मिलेंगे उनसे, योगा टीचर है और बहुत ही विद्वान, और शी इज़ अ ग्रेट वुमन। हाँ, अब डायरेक्शन का कीड़ा तो मुझे मेरे डीएनए में, मेरे खून में इन्हीं की गलती से आया है, इन्हीं की वजह से आया है।
1: एल्डर डॉटर इज ऑलवेज द फीमेल वर्जन ऑफ डैड, सो दैट्स व्हाट शी
0: दैट्स ट्रू
1: स्टार्टेड लुकिंग लाइक मी, यू नो। पहले मम्मी की तरह लगती थी, अब मेरे जैसा लगती है बिल्कुल।
2: वैसे भावना के पापा बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, इसीलिए तो सारा घर सजा है इनके हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स के साथ। तो चलिए इसी के साथ कर लेते हैं भावना के घर की सैर भी।
0: और ये मेरे मम्मी का, मम्मी के दूसरे बच्चे, देखिए इनको, मिलिए इनसे प्लीज। ये हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लांट्स, यहाँ भी आइए देखिए। ये है हमारा एक छोटा सा ऑफिस, और ये है हमारा किचन, एंड ये है बस जस्ट योगा रूम, या फिर हम यहाँ चिल आउट करते हैं, योगा स्टूडियो। एंड यहाँ पर भी बहुत सारे पेंटिंग्स, आई कॉल इट द आर्टिस्टिक रूम। अगर आप देखें तो यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर है, और पापा के पेंटिंग्स भी लगे हुए हैं।

ये मेरी मम्मा. मम्मा वी वांट सम टी. या मसाला टी. चलिए मसाला टी पीते और बातें करते. पापा ने कहा पापा का रूम कैसे नहीं देखा है. पापा का रूम देखते हैं बिकॉज इट इज फुल ऑफ पेंटिंग. फुल ऑफ पेंटिंग्स. ये मेरे पापा का स्टेशन है, वर्क स्टेशन है. एंड दीज आर ऑल. ओ इस तरफ भी दिखा सकते हैं, बहुत सुंदर पेंटिंग्स है. इट्स फुल ऑफ पेंटिंग्स पेंटिंग्स पेंटिंग्स पेंटिंग्स. मम्मी जो मेरी हैं वो बहुत ही क्विंटेसेंशियल होम मेकर हैं, लेकिन सबसे पावरफुल वही हैं क्योंकि शी इज़ अ योगा मास्टर, नॉट अ गुरु, नॉट अ टीचर. आई कॉल हर अ योगा मास्टर क्योंकि वो सिर्फ योगा सिखाती नहीं है बट योगा को पढ़ती हैं, उसका एक्चुअल जो योग होता है उसको समझती हैं, किताबें पढ़ती हैं और उनके सारे स्टूडेंट्स उनके बारे में बहुत

0: Color Magician.
1: Yeah, they call her a magician. Yeah. चलो आई थिंक वील नॉट हैव हर मेक द टी बिकॉज मुझे तो आती है नहीं तो
2: वैसे भावना है अपने पापा की लाडली बिटिया रानी और देखिए कैसे पापा बेटी मिलकर ढेर सारी बातें कर रहे हैं और गाना भी गुनगुना रहे हैं।
3: एक बारी बेटिया ने मेरे को बोला कि पापा आप क्या डांस जानते हैं, मैंने कहा मैंने कथक भी सीखा है और भांगड़ा भी 4-5 साल तक किया जाके, तो शी सेज नो वंडर आई एम ऑल्सो अ गुड डांसर because of that. So anyway, she is born apna 13th August, birth date of Shridevi, Vijayanti Mala. So all the great dancers are born on 13th August. So Bhavna is also born on 13th August. No wonder. Maybe that's the reason.
1: हाँ, मैं अपना बर्थडे शेयर करती हूँ श्रीदेवी जी और Vijayanti Mala जी के साथ. तो पापा इज राइट, मे बी डेट में कुछ मैजिक है. ये चाहते हैं कि आप कुछ गा के सुनाएं.
3: मैं रेडी रहता हूँ, आप नचा लो गवा लो. बच्चे लोग बोलते हैं पापा गाना गाओ, मैं गाना यूं शुरू कर देता हूँ. आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसी गगन के तले जहाँ हम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले. आ चल के तुझे मैं लेके चलूं.
1: पापा जब भी शूट करते थे और बच्चे अवेलेबल नहीं होते थे हमें को खड़ा कर देते थे.
3: मैं क्या करूं, मेरे घर में अगर खूबसूरत बच्चियां तो उठा के ले जाता था मैं यहाँ से.
1: यस, हम बहुत फेमिलियर थे इंडस्ट्री से, लेकिन एक चीज एक दांत पापा को देनी पड़ेगी इज दैट वो कभी काम को घर में नहीं लेकर आए, कभी काम के फ्रस्ट्रेशंस को घर नहीं लेकर आए और ना हमको वो जो भी क्या कह सकते हैं उसे ग्लैमरस साइड वो नहीं. हमेशा हमने क्या देखा कि दिस इज आर्ट, हमने देखा कि दिस इज हार्ड वर्क, दिस इज वर्क, दिस इज बिजनेस. ये आपका मंदिर है, ये आपका यहाँ पर मेहनत के अलावा और कोई सबसे बड़ी भक्ति मेहनत होती है और फिर प्रसाद उसी जितनी मेहनत उतना बड़ा प्रसाद. चलिए चेक करते हैं. ओहो हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरी मामा ने यहाँ पर. वाओ.
2: तो भाई अब बारी मम्मी पापा संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, और चाय और नाश्ता हो तो ऐसे में फैमिली टाइम बन जाता है और भी ज्यादा फन टाइम.

तो इनको मैं मिला 6 जुलाई को, 14 जुलाई को एंगेजमेंट, उसके बाद इमीडिएटली शादी, और फिर भावना मैडम आ गई एकदम। लेकिन ये है, तब मैं एक गोरेपन की एक क्रीम कर रहा था, गोरेपन की एक क्रीम कर रहा था, और जब मैं पहली बार इनके घर गया तो ये पकोड़े और चाय लेके आई, दरवाजे के अंदर एंट्री मारी इन्होंने, वो जैसे ही आए तो मेरे वो एड फिल्म का एक सीन आ गया, माने मेरे मन में वही आ गया, कितनी गोरी कितनी प्यारी, गोरेपन की सुकुमल तरकीब। अभी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा।

0: तो इस तरह जब भी मुझे मौका मिलता है मैं मम्मी पापा के घर आ जाती हूँ और मम्मी को इरिटेट करती हूँ, मुझे खाना खाने को दो, मुझे चाय दो, मुझे, और मुझे एकदम आराम से पैर लंबे करके पापा पैर दबाते हैं और मम्मा चाय लाती है, खाना आते जाता है, आते जाता है, आते जाता है। तो जब भी मैं पैम्पर होना चाहती हूँ, रिलैक्स होना चाहती हूँ, मैं मॉम डैड के घर आती हूँ एंड आई फील लाइक दैट लिटिल गर्ल अगेन।
1: बट इस घर का सबसे खासियत यही है कि इस घर के ऊपर बहुत मेहनत की भावना ने और घर का एक एक कोना भावना की कंट्रीब्यूशन है। भावना, मैं तो कुछ भी देखता हूँ अच्छा तो मुझे भावना की याद आ जाती है।

0: इसी के साथ भावना ने बताया अपने आने वाले नए प्रोजेक्ट हैवान के बारे में कि वो कितनी एक्साइटेड है।
1: हाँ, हैवान जो सैफ सर और अक्षय सर के साथ अगली फिल्म आ रही है मेरी, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अलग तरह की फिल्म है। बिकॉज प्रियदर्शन सर से हम हमेशा कॉमेडी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही उम्दा थ्रिलर है। और सैफ सर और अक्षय सर को हम देखेंगे मैं अनाड़ी मैं तू खिलाड़ी के बाद पहली बार टुगेदर, सो वो एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ होगी। और मेरा किरदार भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखेंगे। सितंबर में रिलीज़ हो रही है, सो मिलते हैं अब थिएटर में हैवान के साथ।
0: तो भाई भावना तो अपनी उड़ान भरती ही जा रही है, और हम तो यही कहेंगे कि यूं ही भावना अपने दर्शकों को अपने टैलेंट से एंटरटेन करती रहे। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का।
1: थैंक यू सो मच सास बहू बेटिया, आज मेरा दिन बहुत ही स्पेशल रहा। आपकी वजह से मैंने पहली बार अपना कैमरे के सामने अपना रियाज किया है, जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। मैंने दर्शकों के साथ शेयर किया, ये बहुत ही स्पेशल और सेक्रेड मोमेंट। उसके अलावा मम्मी पापा के पास आए हम लोग और हंसी मजाक किया, गप्पे हांके, चाय पी। ये भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मुझे हमेशा मौका नहीं मिलता अपने बिजी शेड्यूल में अपने लव्ड वंस के साथ वक्त बिताने के लिए।
0: मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अब हम सब की कोई ना कोई मन्नतें होती हैं, और जब कोई इच्छा हो जाती है ना पूरी, तो बस खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वैसे हम तो यहाँ पर चाहते हैं कि मन्नत की हर मन्नत भी हो पूरी, और ना आए इनकी कहानी में कोई भी ट्विस्ट। लेकिन अगर ट्विस्ट ही नहीं आएगा तो हमें मजा कैसे आएगा, क्योंकि ट्विस्ट ही लेकर आते हैं कहानी में ड्रामा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
0: मन्नत विक्रांत की आशिकी। धैर्य का जानलेवा खेल।

0: एस टीवी के सीरियल मन्नत में भाई मन्नत और विक्रांत दोनों ही जल्द से जल्द धैर्य का पर्दाफाश करना चाहते हैं। लेकिन भाई जरा देखिए तो इन सब काम के बीच भी उन्होंने रोमांस करने का मौका नहीं छोड़ा और आज कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं।
1: मारने क्यों नहीं, क्योंकि क्या है ना, अच्छे काम में ना देरी नहीं करनी चाहिए, राइट?
2: अच्छा।
1: इट्स लाइक क्या
2: सो नहीं रहे थे, नाटक कर रहे थे?
1: मैं सो रहा था।
2: नाटक कर रहे?
1: मैं नाटक नहीं कर रहा।
2: कोई किस नहीं मिलेगा, कोई किस
1: नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अभी अभी मेरी वाइफ ने कहा है कि उन यू नो मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती और फिर वो मुझसे बहुत प्यार करेगी, तो फिर मैंने सोचा ऐसा झूठा थोड़ी करते साबित यार अपनी वाइफ को।
0: तो वहीं दूसरी ओर धैर्य ने फिर एक बार विक्रांत पर हमला करने का फैसला कर लिया है। तभी तो देखिए कैसे वो उसके गाड़ी के ब्रेक्स खुद अपने हाथों से खराब कर रहा है ताकि ब्रेक फेल हो जाए और इसी के बाद फिर एक बार विक्रांत का एक्सीडेंट हो जाए।

0: सबको लग रहा होगा कि मैं कितना कमीना हूं, मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। अरे करूं ना तो क्या करूं फिर, हाँ तो करना ही थे ना, और आओ बीच में। अब क्या होगा, अब विक्रांत जी जाएंगे ऊपर अपनी मम्मी जी के पास, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी।
1: और भाई होने भी कुछ ऐसा ही वाला होता है, क्योंकि विक्रांत उसी गाड़ी में बैठ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई आज विक्रांत के साथ मन्नत भी है, और ये देखकर धैर्य घबरा जाता है। और देखिए तभी तो कैसे वो उस गाड़ी का पीछा करने लगता है ताकि मन्नत को नुकसान न पहुंचे, और इसी के चलते उसे विक्रांत की जान भी बचानी पड़ती है। और उसी के बाद फिर शुरू हो जाती है इनके बीच बहसबाजी, क्योंकि मन्नत उठाती है धैर्य पर सवाल।
2: मैं जानती हूँ ना, वो मान्यता विक्रांत को वापस आने नहीं देगी।
3: और बैलेंस नहीं हो रही है यार गाड़ी।
4: अच्छा है, ठंड नहीं रखना था ना तेनू, अब मर मेरे नाल।
2: अब किसा जी नहीं, तो क्या हुआ, मर सकती हूँ, तैयार हूँ मरने के लिए।

0: अब ठीक है?
1: हाँ? अब ठीक है?
0: मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे आपको कहा था ना कि मत बैठिए आप।
1: आपको कैसे पता चला गाड़ी के ब्रेक का?
0: अरे पाजी साहब, तेनू पता है गड्डी बिगड़ी हुई है, गाड़ी की चाबी क्यों नहीं मैनू?
2: यार मैंने तेरी जान बचाई है भाई, थैंक यू बोलने की बजाय तुम लोग मुझे सवाल पूछ रहे हो। अगर तुझे मालूम होता कि गाड़ी खराब होने में तो चाबी लेता,
0: तो चाबी तो मैं अपने दुश्मन को ले दूँ, मेरे फिर भी मेरा भाई, तो माने या ना माने।
2: कमाल कर रहे हैं वो तो। मैं अमन जी, मैं आप लोगों को पीछे आ रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि मान्यता आपको देख के कैसे रिएक्ट करेगी। जैसे उसने पहले आपको चाकू पे लिया, मुझे लगा शायद वो रिएक्ट करेगी, इसलिए मैं आपको पीछे आया।
0: और पीछे आया तो ये शराबियों की तरफ तुम्हारी गाड़ी तोड़ रही थी,
2: क्योंकि तुम्हारे से कंट्रोल ही नहीं हो रही थी गाड़ी, इसलिए मेरे को पता लगा कि शायद ब्रेक फेल हो गए होंगे, आके ब्रेक मारी तो फिर
3: हमारे जैसी।
1: मतलब क्या है आपका?
0: ओए मतलब सतलब ना, समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास। अगर तुम लोगों के चक्कर में ना माने थाने में अपनी नस सच में काट दी ना, तो मैं छड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, अब से बता रहा हूँ।
1: अब कहना क्या चाहते हैं? और मैं भी जाने दूंगी
3: आप। ओए तुझे जो समझना समझ, मैं जा रहा हूँ अपनी मामू के पास।
0: ओए ओए क्या आ गया?
1: आप ऐसे नहीं जा सकते।
0: ओए चुप कर,
2: मेरी ये गाड़ी ले जा।
0: ओ ना जी ना।
4: जिसके बाद विक्रांत गुस्सा होने का नाटक कर ऑटो में बैठकर निकल जाता है।
0: सुन ले, मैं अपनी जबान का पक्का हूँ, वापस आऊंगा। चलो चल सीधा चल। ओए निकाल यार, मार दे दो दो लोग को।
5: धैर्य जी ने ब्रेक फेल करे थे, हमें पता चल गया था, हमने ब्रेक ठीक कर ली और उनको थ्रेट किया कि हमारे तो गाड़ी के ब्रेक फेल है, तो वो अपनी गाड़ी लगा देते हैं, क्योंकि वो मन्नत को तो कभी भी नहीं चाहते कि कुछ हो। तो बट हाँ, हम उनको थोड़ा सबक सिखाने के लिए करते हैं।
6: सबको लग रहा होगा मैं कितना कमीना हूँ, मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल कर लिए।
4: ऐसे में अब देखना होगा कि भाई कैसे विक्रांत और मन्नत धैर्य को उनकी नाकाम चालों पर मात देते हैं।
7: किसने लिखा है केक पे, कैसा मजाक है,
8: क्या हो रहा है सब? आपके बर्थडे केक पर कोई खूनी कुमार क्यों लिखेगा? आपने किसी का खून किया है क्या? किसके कातिल हैं?
4: मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
9: अच्छी सेहत से बड़ी खुशी शायद और है ही नहीं, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन शांत होता है और हम अपनी हर खुशी को एंजॉय कर पाते हैं। कुछ ऐसा ही कह रही हैं हमसे हमारी डॉक्टर आरंभी। वैसे डॉक्टर आरंभी, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, क्योंकि जैसे ही हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वही बन जाती है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर आरंभी के पास और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इनकी कहानी में आज।
10: खतरे में व्यान, आरंभी और ध्रुव हुए परेशान।

0: मुश्किल घड़ी में ध्रुव बना आरंभी का सहारा। कलर्स टीवी के सीरियल डॉक्टर आरंभी में विहान घर से कहीं चला गया है और ऐसे में वो मुश्किलों में फंसता जा रहा है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां विहान इस गड्ढे में गिरने वाला होता है, लेकिन प्लस तो यही है कि वो इस गड्ढे में गिरा या बच गया। खैर उसी जगह पर आ जाते हैं ध्रुव और आरंभी भी। आरंभी हताश हो चुकी है, विहान उसे कहीं मिल नहीं रहा। ऐसे में आरंभी को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। और इस परेशानी में ध्रुव आरंभी के साथ डटकर खड़ा हुआ है और उसे समझाने की और दिलासा देने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उसे ये बता रहा है कि दोनों मिलकर विहान को ढूंढ ही लेंगे।
1: क्या कर रही हो?
2: मैं सच में मर जाऊंगी अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो। मैं सच में मर जाऊंगी डीसी सर।
1: कुछ नहीं होगा विहान को, तुम प्लीज हिम्मत मत हारो।
2: की चीजें मिल रही हैं, ये मिल रहा है पर वो नहीं मिल रहा। मैं आवाज भी दे रही हूँ, मुझे पता है कि वो यही है लेकिन वो आवाज नहीं दे रहा है मुझे।
1: आरंभी काम डाउन, प्लीज काम डाउन। कर क्या रही हो तुम? तुम्हें आइडिया भी है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो विहान जिंदगी भर अपनी मम्मा से नहीं मिल पाता। सोचा है तुमने एक बार भी? जानता हूं विहान तुम्हारे लिए सब कुछ है, अपनी जान से भरकर प्यार करती हो तुम विहान से। कुछ नहीं होगा उसे, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, हम ढूंढ लेंगे अपने विहान को। तो प्लीज हिम्मत मत हारो, प्लीज हिम्मत मत हारो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा हमारे बहन को, वो बहुत जल्द अपनी मम्मा के पास होगा। आई प्रॉमिस।

0: Lavoro. Riesco a suggerire il cibo. Tuttavia, non ho capito che spanchi a me non scusa. E quando mi dà, non ho scusato che classe ne ho l'ho. उसको बोलने वाला हूँ कि उसकी वजह से मेरी मेरी डीसी की ड्यूटी स्लिप खराब हुई है. यहाँ पे दौड़ रहा हूँ मैं पागलों की तरह. मेरी मेरी तबीयत खराब हो गई. मुझे कुछ हो गया तो वैसे भी उसकी मम्मा को तो बहाना चाहिए होता है किसी भी तरह मुझे इरिटेट करने का. इंजेक्शन लेकर आ गई तो
1: कभी कभी सब कुछ मिला.

0: बस फिर क्या, ध्रुव और आरंभी निकल पड़े विहान को ढूंढने के लिए। देखिए कैसे विहान को आवाज लगाकर वो उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन विहान कहीं मिल नहीं रहा।
1: मुझे नहीं लगता यहाँ पे है, हमें कहीं और लगे चेक करना चाहिए, यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। प्लीज जल्दी चलो।

0: तो भाई अब देखना होगा कि क्या ध्रुव और आरंभी की ये मेहनत रंग लाएगी, क्या उन्हें ध्यान मिलेगा या फिर कहानी में आएगा बोरवेल वाला ट्विस्ट। खैर ये तो ट्विस्ट की बात रही, लेकिन बात करें बिहाइंड द सीन की तो देखिए सेट पर कौन आया है। जी हाँ, अपने दोस्तों से मिलने पहुंची है अपराजिता यानी कि श्रुति झा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: दूसरों को खुश करने से पहले खुद को प्यार करना भी बहुत ही जरूरी है। ऐसे में खुद के लिए कुछ वक्त निकालना, खुद की पसंद की चीजें करना और खुद को एक्सेप्ट करना, यही सबसे बड़ी खुशी है। और कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी रुचिका। वैसे नए सिरे से शुरू हो गई है ये कहानी मन सुंदर, और रुचिका और नहल की ये कहानी भी लेकर आएगी हमारे लिए ढेर सारा मनोरंजन। तो चलिए फिर जानकर आते हैं इस कहानी का अपडेट, लेकर चलते हैं आपको मन सुंदर के सेट पर।
0: जानवी के लिए निहाल का रिश्ता लेकर आई सुभद्रा। पूनम दादी पर फूटा सुभद्रा दादी का गुस्सा। शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में आज तमाशा हो रहा है। असल में निहाल का रिश्ता लेकर सभी घर वाले पहुँचे हैं पूनम के घर पर, लेकिन यहाँ पर चाय लेकर पहुँची जानवी नहीं बल्कि रुचिता। और रुचिता को देखते ही सुभद्रा का गुस्सा फूट गया, क्योंकि वो तो निहाल का रिश्ता जानवी से करना चाहती है, क्योंकि जानवी काफी खूबसूरत है और सुभद्रा दादी करती है रुचिता से नफरत। ऐसे में देखिए कैसे वो पूनम पर भड़क रही है।
2: ऐसी बात नहीं है, आपको आपको गलतफहमी। क्या बात कर रही हैं आप, हमको गलतफहमी हुई है। सामने वो सामने चाय की ट्रे लेकर खड़ी हुई है और आप हमसे कह रही हैं कि हमको गलतफहमी हुई है। सच तो ये है पूनम जी कि आप हमको धोखा दे रही हैं। नहीं, धोखा दे रही है। आप एक नातिन की आड़ में दूसरी नातिन को हमारे पोते के गले में बांधना चाह रही हैं। यही इरादा है ना?
3: ऐसा नहीं।
2: यही इरादा है?
3: नहीं।
2: तो कैसा है?
3: मैं जो कर रही थी मतलब मेरा इरादा बिल्कुल सही था।
0: ऐसे में पूनम सुभद्रा को समझाने की कोशिश कर रही है कि जानवी को ही वो सुभद्रा के घर की बहू बनाना चाहती है, लेकिन जानवी किसी काम से बाहर गई है इसीलिए रुचिता चाय लेकर यहाँ आई है। लेकिन सुभद्रा तो कुछ सुनने को तैयार नहीं, उसे लग रहा है कि पूनम ने उसे और उसके घर वालों को धोखा दिया है।
3: मेरा कोई इरादा नहीं था आप लोगों को धोखा देने, भला मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी। मैं तो जानवी को ही तैयार करके आप सबके सामने लाना चाहती थी।
2: अच्छा,
3: मेरी जान भी पार्लर चलाती है, तो पार्लर में ना एक इमरजेंसी काम आ गया था, तो उस वजह से उसको जाना ही पड़ा मजबूरन, नहीं तो वो तो यही थी।
2: कमाल है, मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए आप दूसरा झूठ बोल रहे हैं और दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा, मतलब झूठ का सिलसिला शुरू कर दिया आपने। नहीं, मतलब क्या है ये? क्या है? आप हमें धोखा दे रही हैं। जानवी के नाम पे आपके घर का ये जो अंधेरा है ना, आपका अंधेरा, इस अंधेरे से आप हमारे घर में अंधेरा करना चाहती हैं। यही करना चाहती है ना?
3: नहीं,
2: आप अच्छी तरह से जानती है कि हमारा पोता क्या करता है। हमारा पोता बहुत बड़ी ब्यूटी कंपनी का मालिक है और उसका मूल काम ये है कि वो खूबसूरती को बढ़ाता है, उसे निखारता है। इसीलिए आपने ये सोचा, आपने सोचा कि ये सांस से ढली हुई जो लड़की है इसे सूरज की रोशनी कैसे बनाए, इसे सूरज की रोशनी बनाना चाहती थी ना, इसीलिए आपने ये सब झूठ बोला। लेकिन आपने हमें ये बताइए कि आपने इतना बड़ा मतलब सोचा भी कैसे? ये लड़की सूरत देखी है, मतलब रंग देखा इसका, ये हमारे मतलब मेरे पोते, हमारे पोते की बहू बनेगी, पत्नी बनेगी, सोच भी कैसे लिया आपने
0: भाई? इसी बात पर देखिए इनकी बहसबाजी शुरू हो चुकी है, जहाँ पूनम समझा रही है और सुभद्रा सुनने को तैयार नहीं है। वैसे असल बात तो ये है कि जानवी निहाल से शादी ही नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो घर से भाग गई है। लेकिन ये बात पूनम दादी छुपा रही है और इन सब का इल्जाम भी रुचिता पर ही आ गया है।
2: क्या लगता है तुमको कि चाय की ट्रे लेकर हमारे सामने आ जाओगी और हम तुमको पसंद कर लेंगे? अरे तुम्हारी जैसी लड़की हमारे घर की बहू तो क्या किसी भी घर की बहू बनने के लायक नहीं है। अच्छे खानदान के जो लोग होते हैं ना, वो तुम जैसी लड़कियों की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखना चाहते हैं।
0: ऐसे में सुभद्रा भी रुचिता के लिए काफी खरी खोटी बातें बोलती है और ऐसे में रुचिता का भाई रोहन सुभद्रा दादी को बातें सुना देता है और गुस्सा होकर सुभद्रा अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकल जाती है।
4: बेटी के लिए ऐसी घटिया बातें करने से पहले इतना याद कर लीजिए कि आप भी एक औरत हैं। आपकी बातों से साफ पता चलता है कि आपके सिर्फ दिल दिमाग में नहीं बल्कि जुबान पर भी गंदगी चिपकी हुई है। ये लोग जो एक लड़की की इज्जत तक नहीं करना चाहते, भाई ऐसे घर में कैसे खुश रहेगी मेरी बहन?
5: मैं जानवी को देखने के लिए, क्योंकि जानवी के लिए रिश्ता आया है और ये चाह भी रही है कि पूनम जानवी की हो जाए शादी, तो उसी के चलते इतना कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों बहनों में कुछ झांड गांठ हुई है। इसमें बेचारी रुचिता की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ब्लास्ट हुई है सब पूरा परिवार, सब में तू तू मैं मैं एकदम एक तरह से दंगल हो गया दंगल में।
0: ऐसे में देखिए कैसे दादी का गुस्सा रोहन पर फूटता है, लेकिन यहाँ तो रोहन और बाकी के घर वाले रुचिता का ही स्टैंड लेते हैं और दादी को गलत कहते हैं।
3: क्या ये क्या किया तुमने? घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? इतना बड़ा हो गया तू कि अपनी तमीज अपने संस्कार सब भूल गया?
4: मेरे संस्कारों की बात कर रही हैं आप? और वो लोग कुचल रहे थे, उनके संस्कार नहीं दिखे आपको? ऐसे घर में चाहे रुचिता हो या जानवी, मैं किसी की भी शादी नहीं करवाऊंगा। शादी से दो लोगों का रिश्ता नहीं है बड़ी, दो परिवारों की सोच का जुड़ना। पर जिस परिवार की सोच इतनी छोटी हो, हाँ मेरी बहन की जिंदगी कैसे बड़ी होगी?
3: दुनिया ऐसे ही चलती है रोहन, ऐसे ही चलती है दुनिया। तुझे कुछ पता भी है, कुछ खबर है?
6: लेकिन दादी आप ये जानती थी ना कि जानवी रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार थी? सुबह तो वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसने अपनी जान लेने की बात तक की, लेकिन फिर भी आप ये रिश्ता लेकर आ गई। अब वो घर से नहीं भागती तो और क्या करती? और अब उसका डर और उसके कारण आप रुचिता को क्यों चिल्ला रही है, उस पर गुस्सा क्यों निकाल रही है?
5: जबरदस्त इस समय ड्रामा हो रहा है, रॉयल हाउस में हो रहा है, तो परिवार में जो है रिश्ते की बात चल रही है और उसी से रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जिसके चलते जो है लोग भड़क रहे हैं घर के अंदर, बम पटाके फूट रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला जो अभी एपिसोड आएगा, आप लोगों को बहुत दिलचस्प लगेगा क्योंकि बहुत सारा ड्रामा है इसमें।
7: बहुत ही गुणी सीधी सादी सर्वगुण संपन्न है मेरी जानवी, मैं लेकर के आती हूँ उसे।
0: तो भाई फिलहाल तो रिश्ते की बात बिगड़ चुकी है, अब देखना होगा कि कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आता है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: जिंदगी कितनी भी बिजी हो लेकिन अपने परिवार के साथ कुछ वक्त जरूर बिताइए, क्योंकि देखिए जिंदगी तो बीत जाती है लेकिन ये जो यादें होती हैं ना, ये हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और यहाँ पर हम भी आपके लिए लेकर आए हैं मुस्कुराने के अनेक कारण, क्योंकि लेकर हाजिर हैं आपके लिए आपकी फेवरेट कहानी का एक क्विक अपडेट। कहानी का लेखक लेकर आया है इसमें नया मोड़, जो लेकर आ रहा है इसमें भी ड्रामा। कैसे? ऐसे।
0: स्वाति की मम्मी का वृंदा पर अत्याचार, वृंदा को धमकाती माधवी, वृंदा का हुआ हाल बेहाल। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में वृंदा किचन में कुछ काम करने आई थी और ऐसे में देखिए वहाँ पहुँच गई स्वाति की मम्मी यानी कि माधवी, जो उस पर अत्याचार कर रही है। भाई अवन में उसने वृंदा का हाथ फंसा दिया और उसे धमकाने लगी। असल में स्वाति और संजय की सगाई होने वाली है और माधवी नहीं चाहती कि उस सगाई के फंक्शन में वृंदा मौजूद हो, इसीलिए तो देखिए कैसे वो उसे वार्निंग दे रही है। अपने दिल की नफरत भी आज माधवी ने वृंदा पर उगल दी। ऐसे में वृंदा तो बस रोई जा रही है क्योंकि वृंदा के दर्द से माधवी को कोई लेना देना नहीं है। उसे तो बस चाहिए कि वृंदा स्वाति और संजय की एंगेजमेंट में शामिल ना हो।
8: 20 साल से मैं एक भी केस नहीं हारी। बाहर जितने की आदत हो गई, घर में भी जितने की आदत हो गई। मेरे बेटी ने मेरे पति के मुंह से मेरे खिलाफ कभी कुछ सुनाई नहीं, कभी कुछ बोल ही नहीं पाए। बोलो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। समझ रही थी मुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई टोक नहीं। फिर आई तुम लगी। हाँ गुड, कहाँ थे मैं? हाँ फिर आई तुम गाँव की चुटा सी छोटी सी लड़की, फिर भी अपने जैसे उनके मुंह में जबान आ गई। मेरी खिलाफ बोल रही है तुझसे बहुत प्यार करती है। देख प्यार वो मुझसे भी करती है, लेकिन फिलहाल तेरा प्यार मेरे प्यार पे हावी हो रहा है, तो क्या करें? डील है बेटी, डील मतलब समझौता। देख कर उसकी एंगेजमेंट है, उसके लिए खुशी का दिन, स्पेशल दिन, बहुत ही प्यारा दिन। मेरे सामने तेरा चेहरा देखूंगी, तुझे देखते ही ना मेरा माथा ठलकने लगता है, गुस्सा होने लगता है, और ना चाहते हुए भी पर मैं कुछ ना कुछ कर ही देता हूँ, क्योंकि तेरे लिए इतनी नफरत है ना अंदर। सो कल तेरे हाथ में सब कुछ, अपनी स्वाति दीदी का स्पेशल डे कैसे खराब ना करे ये तेरे हाथ में है, तो वो कर। कहीं जा, अपनी शक्ल मुझे मत दिखा, पूरे घर में कहीं पर भी मत दिखना। क्या करेगी कैसे करेगी, तू बहुत होशियार है। वो मेरी बेटी को लगता है तू भोली वाली, लेकिन तू है नहीं भोली, मैं जानती हूँ ये बात। सो समझ गए ना, जैसे भी करना है कर। पानी में थोड़ा अदरक काली मिर्च और अजवाइन उबाल के देना, बहुत ज्यादा हो गया ना, तो काम डाउन हो जाऊंगी, नींद अच्छा है कि मुझको।
0: वहीं दूसरी तरफ संजय के घर में भी सगाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी घर वाले रेडी हैं और सज रहे हैं गिफ्ट्स और शगुन की थाली। ऐसे में शगुन की थाली लेकर आती है संजय की मम्मी, लेकिन कंगन भूल जाती है और बा हो जाती है संजय की मम्मी पर गुस्सा। भाई यहाँ पर भी कुछ है दुश्मन जो नहीं चाहते कि संजय की माँ शामिल हो सगाई में। तभी तो कविता और बा मिलकर रच रहे हैं कुछ षड्यंत्र।
9: देखा हमारी सरिता ने सारे काम कर दिए हैं, है ना, बस सिर्फ कंगन रखना भूल गई। बच्चा
3: सोच में कुछ तो बोल रही हूँ, मैं अभी लेकर आती
9: हूँ। कोई बात नहीं बेटा।
0: पर यहाँ पर कविता खूनी खेल खेलने वाली है क्योंकि वो मिलाने वाली है संजय की माँ की चाय में जहर।
10: बहुत खुश शगन की थाली लाने पे बा और कविता खुश नहीं है, और उनके हिसाब से तो मैं अब शुकुन हूँ, मुझे कोई भी शुभ कार्य में होना नहीं चाहिए, तो ये हमेशा से रहा है। तो यहाँ भी उनको लगता है कि संजीव के शुभ कार्य में सरिता को नहीं आना चाहिए, तो इस सीन का भी यही है कि वो कोशिश करेंगे कि मैं ना किसी भी फंक्शन में ना आए। तो अभी यहाँ भी उसकी प्लानिंग है कि वो मेरी चाय में जहर डालेगी, कर चुकी है, वो कैसे प्लान होता है क्या होता है, और वो चाय का कप मेरे तक पहुँचता भी है, मैं पीती भी हूँ, अब आगे क्या होता है सच बताओ मैं भी नहीं जानती।
0: तो भाई अब देखना होगा कि क्या संजय की सगाई में और भी ट्विस्ट आने वाले हैं या फिर हो जाएगा ऑल इज वेल। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सरप्राइज हमेशा चेहरे पर खुशी लेकर आता है, लेकिन कभी कभी सरप्राइज इतना बड़ा हो जाता है कि लिटरली हमें शॉक लग जाता है, और बिल्कुल ऐसा ही है हमारा यह अगला सेगमेंट जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग। क्योंकि देखिए हमारी जिंदगी की तरह ये जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है ये भी नहीं होती है एक जैसी। लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
11: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। भाई सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिर एक बार आ गया है 2 सालों का लीप, और एक बार फिर बदल गए हैं शो में किरदार। भाई आदित्य गुप्ता जो कबीर का किरदार निभा रहे थे उन्हें रिप्लेस किया है जेम्स गार्गे ने। सहर होने को है फेम पार्थ संथान ने ले लिया है अपना नया आशियाना अपने होम टाउन पुणे में, ऐसे में उन्होंने किया गृह प्रवेश वो भी अपने परिवार के साथ।
12: समर्पयामि

0: पता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ।
1: गौरव खन्ना ने की अपने को कंटेस्टेंट यानी कि शहबाज बदेशा से खास मुलाकात। देख लीजिए इनका मस्ती भरा अंदाज।
0: लेकिन एक शख्स है जिसको मैंने जैसा बिग बॉस से पहले देखा था वैसे ही आज भी है, बिल्कुल नहीं बदला। पता क्या, पहले भी नहीं नहाता था, अब भी नहीं नहाया।
2: हेलो, ओए आज ही नहा के।
1: शुरू हो चुकी है रणवीर सिंह की द मोस्ट अवेटेड एंटिसिपेटेड फिल्म प्रलय की, जिसमें उनके साथ नजर आने वाली है कल्याणी प्रियदर्शन।

0: आज का हमारा ये खुशियों वाला सफर यही समाप्त होता है। लेकिन याद रखिए, खुश रहने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं है। कभी कभी फैमिली के साथ बिताए गए कुछ खूबसूरत पल, दोस्तों की हंसी या फिर अपनों की छोटी सी जीत, ये भी हमारे लिए खुशी का कारण बन जाती है। ये जो खुशी की दौलत है ना, इसे आप जितना बांटेंगे ये उतनी ही बढ़ेगी। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराइए और बस इसी तरह देखते रहिए सास बहू और बेटियां। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। टेक केयर, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स.
0: सावन के तीसरे सोमवार पर सोमनाथ महादेव की नगरी में दिख रहे भक्ति के रंग. निकाली गई बाबा की पालकी यात्रा, दर्शन को मड़े भक्त. रोहतास में महिलाओं ने मनाया कजरी महोत्सव, जमकर गाए सावन के गीत. कला और संस्कृति का दिखा अनूठा संगम. अमेरिकी कंपनी के साथ भारत में 2 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन लीज पर लेने के लिए किया करार. समंदर में बढ़ेगी नौसेना की निगरानी और वॉरफार. नेपाल दौरे पर सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ. नेपाल सेना प्रमुख के साथ औपचारिक द्विपक्षीय बैठक. रक्षा और सैन्य संबंधों पर हुई चर्चा. सेना प्रमुख को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर. भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 15वें संस्करण में थाईलैंड पहुंची भारतीय सेना. 18 से 31 अगस्त तक चलेगा अभियान. इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार. चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल. राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम
0: सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब. जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लगी कतारें. सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ का हुआ भव्य श्रृंगार. बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती के दौरान माहौल में खुली दिव्यता. बाबा विश्वनाथ के दरबार में उमड़े भक्त. जलाभिषेक करने आए कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा. सावन के तीसरे सोमवार के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम की भव्य सजावट. मंदिर परिसर की खूबसूरती ने किया मंत्रमुग्ध. देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में लगा शिव भक्तों का मेला. सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक. उज्जैन में नागपंचमी पर रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुल गए. साल में सिर्फ 24 घंटे मिलने वाले दर्शन के लिए आधी रात से भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी. साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट. नागपंचमी पर खुले पट आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे. इस बार नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का भी शुभ संयोग. आस्था के खास संयोग पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़. नागचंद्रेश्वर के दर्शन और महाकाल की सवारी के लिए बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंच रहे श्रद्धालु. प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए अलग रास्तों और सुरक्षा के खास इंतजाम किए. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नागचंद्रेश्वर मंदिर में 300 रुपए के शीघ्र दर्शन की व्यवस्था. इसके लिए रखे गए हैं ऑनलाइन स्लॉट्स. सावन के तीसरे सोमवार नागपंचमी पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ. सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा. भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य और दिव्य श्रृंगार. बड़ी संख्या में भक्त बने इसके साक्षी. महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती हुई, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंज उठी। सबसे दिव्य और अद्भुत थे वो पल जब महाकाल की भस्म आरती हुई, भक्त झूम कर नाचे। उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार नागपंचमी पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और क्रिकेटर उमेश यादव विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा की। प्रयागराज में तीसरे सोमवार नागपंचमी पर नागवासुकी मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का मेला, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। नागवासुकी मंदिर में नागपंचमी के दिन पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। नागपंचमी पर नागवासुकी मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मंदिर परिसर में तैनात किए गए जवान। अयोध्या में तीसरे सोमवार नागपंचमी पर नागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। शेषनाग मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया नाग देवता का दूधाभिषेक, सरयू नदी में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। हरिद्वार के बागों वाले बागेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए नाग देवता के दर्शन। मान्यता के अनुसार बागेश्वर नाग देवता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। गाजियाबाद के बाबा दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में उमड़े शिव भक्त, भोलेनाथ की एक झलक पाने को लालायित नजर आए। नागपंचमी पर बाबा दुधेश्वर नाथ का भक्तों ने किया जलाभिषेक, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। कानपुर में तीसरे सोमवार नागपंचमी पर कैलाश मंदिर में भक्तों का तांता लगा, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। सोमनाथ में पहले सोमवार पर सोमनाथ मंदिर में की गई भव्य सजावट, भोलेनाथ की उतारी गई आरती। गुवाहाटी में सावन के तीसरे सोमवार नागपंचमी पर शुक्रेश्वर मंदिर में भक्तों का लगा तांता, भक्तों ने विधि विधान के साथ बाबा भोलेनाथ की पूजा की। मुजफ्फरपुर में तीसरे सोमवार नागपंचमी पर बाबा गरीबनाथ धाम में सुबह से लगा भक्तों का मेला, भक्तों ने किए दर्शन। नागपंचमी के मौके पर गरीबनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बाराबंकी में तीसरे सोमवार नागपंचमी पर लोधेश्वर महादेव भक्तों का लगा यहां पर तांता, भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार की शुरुआत हुई, आज तीसरे सोमवार पर भक्तों का यहां पर तांता लगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को लेकर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, करीब 600 जवानों को तैनात किया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने सावन को लेकर वीआईपी दर्शन पर लगाई रोक, 1 महीने तक नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। वाराणसी में नागपंचमी पर नागकुआ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की भारी भीड़, भक्तों ने किए नाग देवता का जलाभिषेक। गोरखपुर में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उजाला होने से पहले ही दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे भक्त, सभी भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मधेपुरा में सिंहेश्वर धाम में सुबह से लगा भक्तों का तांता, भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। मुंबई में सावन के तीसरे सोमवार नागपंचमी पर बाबुलनाथ मंदिर में सुबह से भक्तों का लगा मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक। लखनऊ में नागपंचमी में नागेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का सैलाब, भक्तों ने किए बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। मुरादाबाद के तीसरे सोमवार को प्राचीन गंगा मंदिर में भक्तों का लगा मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। वाराणसी में सावन के सोमवार पर कांवड़ियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक, हर हर महादेव के जयकारे लगाए। पीलीभीत में कांवड़ियों का भव्य स्वागत हुआ, एसपी सुप्रीति माधव ने कांवड़ियों पर की फूलों की वर्षा। पीलीभीत में कांवड़ियों के लिए विशेष कैंप लगाया गया, कांवड़ियों का भोजन भी उनको करवाया गया। हरिद्वार में श्री गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद के तत्वाधान में कनखल क्षेत्र में चार महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक हुआ। बूढ़ा अमरनाथ की पवित्र यात्रा की आज से शुरुआत। एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। जम्मू से 2000 से ज्यादा श्रद्धालु हुए रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारे लगाए। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा 12 दिन तक चलेगी। 28 अगस्त को होगा इस यात्रा का समापन। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यात्रियों की सुविधा में इस बार इजाफा किया। बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के बाहर पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 16 अगस्त को नवग्रह मंदिर से भव्य त्रिशूल यात्रा निकाली गई। यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप कॉलेज ग्राउंड तक पहुंची। त्रिशूल यात्रा को बाबा बूढ़ा अमरनाथ की छड़ी यात्रा से पहले होने वाला धार्मिक कार्यक्रम बताया गया। इसमें श्रद्धालु भगवान शिव के त्रिशूल के साथ यात्रा में शामिल हुए। त्रिशूल यात्रा नवग्रह मंदिर से बीती शाम करीब 4:20 पर शुरू हुई। यात्रा शुरू होने से पहले त्रिशूल की हुई विधिवत पूजा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने के लिए मिला। पूरा माहौल भक्तिमय रहा। यह आयोजन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ा। पुरी में नए आंतरिक डीजीपी विनय तोष मिश्रा के कार्यभार संभालने के बाद जगन्नाथ मंदिर में पूजा। भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा।

साथ दर्द बढ़ रहा है या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है या फिर पानी भर गया है। समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रविगिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं, इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे, और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है? जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है, बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम

0: खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है, क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र। ये गंधपुरा पत्र में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है, जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है। ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: सावन के तीसरे सोमवार पर सोमनाथ महादेव की नगरी में दिख रहे भक्तों के रंग, निकाली गई बाबा की पालकी यात्रा, दर्शन को उमड़े भक्त। रोहतास में महिलाओं ने मनाया कजरी महोत्सव, जमकर गाए सावन के गीत, कला और संस्कृति का दिखा अनूठा संगम। अमेरिकी कंपनी के साथ भारत ने 2 MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन लीज पर लेने के लिए किया करार, समंदर में बढ़ेगी नौसेना की निगरानी और वॉर पार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आज नाग पंचमी है, पूरी दुनिया में आज नागों की पूजा हो रही है। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां बना है भगवान नाग चंद्रेश्वर का मंदिर। माना जाता है कि ये मंदिर सिर्फ नाग पंचमी की तिथि पर ही खुलता है, जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इस मंदिर के कपाट 365 दिन में सिर्फ एक ही दिन खुलते हैं, और वो भी नाग पंचमी के दिन। कहते हैं कि इस दिन जो भी शिव भक्त इस मंदिर में नागदेव की प्रतिमा के दर्शन करता है, उसके जीवन की सारे संकट, सारी परेशानियों को नागदेव हर लेते हैं। तो चलिए करते हैं महाकाल के दर पर स्थापित भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन।
6: आस्था का अद्भुत दरबार। 364 दिन बंद रहता है नाग चंद्रेश्वर का द्वार। क्यों नाग पंचमी पर ही होता है भगवान का दीदार। यहां आकर दूर होते हैं कुंडली के सारे विकार। महाकाल की नगरी में सदियों से हो रहा है चमत्कार। नाग पंचमी की तिथि पर मिलता है नागराज से उपहार। जी हाँ, यह अद्भुत मंदिर बना है महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहाँ भगवान नाग चंद्रेश्वर भक्तों की सभी बाधाओं का अंत कर रहे हैं। आखिर इस मंदिर से रहस्य क्यों जुड़े हैं? क्यों इस मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक ही बार खोले जाते हैं? दावा किया जाता है कि यहाँ स्वयं त्रिलोकीनाथ सर्पों के शैया पर विराजमान है।
10: उज्जैन का नाग चंद्रेश्वर मंदिर भगवान महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित एक अत्यंत विशिष्ट और रहस्यमय मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके कपाट वर्ष में केवल एक बार नाग पंचमी की तिथि पर लगभग 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं, और बाकी पूरे वर्ष मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की एक अद्भुत प्रतिमा विराजमान है, जिसमें दोनों को 10 फनों वाले नाग की शैया पर विराजमान दिखाया गया है।
6: हम सब उज्जैन को बाबा महाकाल की नगरी और मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर लगने वाले कुंभ के तौर पर जानते हैं। उज्जैन को सप्तपुरियों में से एक माना जाता है, जहां शक्तिपीठ मां हरसिद्धि का मंदिर है, तो साथ ही उज्जैन के रक्षक बाबा काल भैरव भी है। लेकिन सावन में आने वाली शुक्ल पक्ष की पंचमी को यहाँ नाग चंद्रेश्वर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं।
10: नाग चंद्रेश्वर मंदिर के वर्ष में केवल एक बार खुलने की परंपरा ही है, इसे इतना विशेष और रहस्यमय बनाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नागराज तक्षक भगवान शिव की आराधना और एकांत साधना में लीन रहते हैं, इसलिए सामान्य दिनों में मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं, ताकि उनकी साधना और एकांतवास में किसी प्रकार का भी विघ्न ना पड़े। लेकिन नाग पंचमी की तिथि नाग तत्व और नाग देवता की उपासना के लिए विशेष मानी जाती है, इसलिए इसी दिन वर्ष में एक बार भक्तों को भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन का अवसर मिलता है।
6: बहुत ही सिद्ध और ख्याति प्राप्त है नाग चंद्रेश्वर का ये मंदिर। मान्यता है कि इस मंदिर के पट खुलते ही नाग पंचमी के दिन है। दावा किया जाता है कि साल में सिर्फ एक दिन भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन होने के कारण सबको इनके दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए भक्त कई दिनों पहले से यहाँ आने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ निवारण होता है कुंडली के प्रतिकूल कहे जाने वाले ग्रह शनि, राहु, केतु का। इसके साथ ही यहाँ काल सर्प योग और सर्प बाधा के नाश का भी उपाय किए जाने की मान्यता है। भगवान शिव भोलेनाथ के इस मंदिर में एक नहीं कई रहस्य जुड़े हैं। जानकार दावा करते हैं कि भगवान शंकर के इस मंदिर में पिछले 900 साल से नाग चंद्रेश्वर प्रतिमा की पूजा आराधना होती आ रही है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि नाग पंचमी पर नागों को पूजने की परंपरा हिंदू धर्म में सदियों से रही है, और इसीलिए स्थिति पर उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर का महत्व काफी बढ़ जाता है।
10: नाग को शक्ति, ऊर्जा, परिवर्तन, भय, मृत्यु और उस भय पर नियंत्रण के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, और भगवान शिव अपने कंठ में नाग को धारण करते हैं, यानी जिस शक्ति को सामान्य मनुष्य भय के रूप में देखता है, शिव उसी शक्ति को अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए नाग चंद्रेश्वर मंदिर केवल नाग देवता की पूजा का स्थान नहीं, बल्कि शिव तत्व और नाग तत्व के एक अद्भुत संगम का प्रतीक माना जाता है और उज्जैन स्वयं महाकाल की नगरी है, जहां काल, मृत्यु और समय से जुड़े शिव स्वरूप की उपासना होती है। इसलिए नागचंद्रेश्वर का ये स्वरूप अपने आप में और अपने गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है।
6: अपने आप में कई रहस्यों को समेटे ये मंदिर महाकाल के दर के ठीक ऊपर बना है। दावा किया जाता है कि मंदिर में स्थापित भगवान नागचंद्रेश्वर की मूर्ति 11 शताब्दी की है। कहते हैं इस मूर्ति को नेपाल से लाया गया था। यही नहीं, पूरे विश्व में यही एक मंदिर है जिसमें नाग की शैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार लेटा है। कहते हैं कि यहाँ नाग पंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा की परंपरा है। चलिए आपको बताते हैं भगवान नागचंद्रेश्वर के पूजन का अद्भुत विधान। श्री नागचंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा। त्रिकाल यानी कि तीन अलग अलग समय पर होने वाली पूजा। प्रथम पूजा नाग पंचमी की मध्य रात्रि 12 बजे पट खुलने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा की जाती है। दूसरी पूजा नाग पंचमी पर दोपहर 12 बजे शासन की ओर से की जाती है। ये पूजा रियासत काल से चली आ रही है। तीसरी पूजा नाग पंचमी पर शाम को 7:30 बजे की जाती है। ये पूजा भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद की जाती है। भगवान नागचंद्रेश्वर की तृतीय पूजा महाकाल मंदिर के पुजारी करते हैं। 12 बजे आरती के बाद मंदिर के कपाट फिर एक साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। उज्जैन में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर 3 तल में बना हुआ है। गर्भगृह यानी कि सबसे नीचे वाले तल में भगवान महाकालेश्वर विराजित हैं। प्रथम तल पर भगवान ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर के तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं। आगे हम आपको इस अलौकिक कहे जा रहे मंदिर से जुड़ी वो पौराणिक कथा भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सा कारण है कि भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर साल के सिर्फ एक ही दिन के लिए अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
9: भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन से न सिर्फ काल सर्प दोष की बाधा का नाश होता है, बल्कि इस मंदिर में दर्शन भर कर लेने से गृह संबंधी दोष भी दूर हो जाते हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर की ये मूर्ति काफी पुरानी है और इसे नेपाल से लाया गया है। मान्यता है कि मंदिर में शेष नाग की जागृत अवस्था है। नागराज के इस मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं, दिखाते हैं आप।
6: सृष्टि के सृजन के समय से ही नाग धरती का संतुलन साधते रहे हैं। नागराज को प्रकृति, जल, ऊर्जा और पाताल लोक के स्वामी के रूप में देखा जाता है। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों में नागों का महत्व मिलता है। मान्यता है कि सागर मंथन में वासुकी नाग को मथानी बनाकर मंदार पर्वत पर मथा गया था। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की कुंडलियों पर शयन करते हैं। इन्हें पूरी पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने वाला माना गया है। महाभारत काल में तक्षक नाग की कथा मिलती है, जिसने राजा परीक्षित को डसा था, जिसके बाद जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। कथा है कि इस यज्ञ में तक्षक नाग की आहुति तय थी, लेकिन आस्तिक मुनि ने अपनी तपस्या से तक्षक नाग की रक्षा की और उसी तक्षक नाग के इस मंदिर में वास करने की मान्यता है। चलिए आपको तक्षक नाग से जुड़ी वो कथा भी सुनाते हैं कि आखिर क्यों इस मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक बार ही खुलते हैं।
10: मान्यता है कि नागराज तक्षक ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया और अपने सानिध्य में रहने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद नागराज तक्षक ने भगवान शिव के साथ इसी स्थान पर निवास किया। इसी जगह से यह स्थान नागराज तक्षक के निवास और साधना से जुड़ा हुआ माना जाता है।
6: कथा है कि सर्पराज तक्षक ने शिव शंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमृतत्व का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद से तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया, लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी ये मंशा थी कि उनके एकांत में विघ्न ना हो। इसीलिए वर्षों से यही प्रथा है कि मात्र नाग पंचमी पर ही वो दर्शन के लिए उपलब्ध होते हैं। शेष समय उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर बंद रहता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान नाग चंदेश्वर के आसपास तक्षक नाग का पहरा रहता है। तक्षक नाग किसी को दिखाई नहीं देते। नाग चंदेश्वर मंदिर के पट साल भर बंद रहते हैं। साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर पट खोलने और पूजा अर्चना की परंपरा है।
10: नाग पंचमी के दिन भगवान नाग चंद्रेश्वर की पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल पर चौकी रखकर भगवान शिव पार्वती तथा नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कच्चा दूध, हल्दी, चंदन, अक्षत पुष्प और धतूरा अर्पित करके भगवान नाग चंद्रेश्वर की पूजा करें। भगवान शिव को दूध और दही से अभिषेक करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। साथ ही साथ चांदी के नाग नागिन का जोड़ा या शमी के पत्ते अर्पित किए जा सकते हैं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना शुभ माना जाता है।
6: उज्जैन का भगवान नाग चंद्रेश्वर का ये मंदिर काफी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के करीब इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराजा रानोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ था। कहते हैं महाकाल मंदिर के ऊपरी तल पर विराजे भगवान नाग चंदेश्वर जागृत अवस्था में हैं। इसीलिए उनकी मूर्ति को साल भर कपड़े से ढककर रखा जाता है और मंदिर भी बंद रहता है। पुजारी को भी यहाँ जाने की अनुमति नहीं होती। इसीलिए तो सभी की यही मनोकामना रहती है कि नागराज पर विराजे शिव शंभु की एक झलक मिल जाए। नाग पंचमी पर मंदिर में भक्त इस अलौकिक दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं।
10: यदि कोई व्यक्ति नाग पंचमी के दिन नाग चंद्रेश्वर की आराधना कर रहा है तो वो भगवान शिव से अपने जीवन में भय, मानसिक अशांति, बाधाओं, नकारात्मकता और अस्थिरता से मुक्ति की प्रार्थना कर रहा है। और ज्योतिषीय दृष्टि से भी नाग पंचमी का संबंध नाग तत्व के साथ साथ राहु केतु से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए इस दिन शिव आराधना के साथ साथ नाग देवता का स्मरण करना विशेष माना जाता है।
6: भगवान नाग चंदेश्वर के इस मंदिर में गर्भगृह से पहले भगवान शंकर के शेषनाग पर शयन अवस्था यानी लेटी हुई प्रतिमा दिखती है, जबकि मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान नाग चंदेश्वर के नागों से लिपटे शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिनको यहां जागृत अवस्था में माना जाता है। इसीलिए इस मंदिर में कपाट बंद होने के बाद पूरे साल मंदिर के पुजारी को भी पूजा करने का अवसर नहीं मिलता है।
9: कथाओं में तक्षक नाग को नागों का राजा माना गया है जो पाताल लोक में रहते हैं। महाभारत काल में राजा परीक्षित से बदला लेने की कथा में इनका नाम सामने आता है। कहते हैं कि इस मंदिर में तक्षक नाग स्वयं विराजमान होते हैं। नाग पंचमी पर वासुकी के भाई तक्षक नाग देंगे वरदान। महाकाल की कृपा से नागराज करेंगे कल्याण। नाग पंचमी का पर्व और सावन का तीसरा सोमवार। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। महाकाल के दर पर भी भक्तों की आस्था का जयकारा लग रहा है। अद्भुत है उज्जैन का नाग चंद्रेश्वर मंदिर। अचंभित करने वाली हैं इस मंदिर की मान्यताएं। माना जाता है कि संसार में ऐसा कोई मंदिर नहीं जो सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए ही खुलता हो। इसीलिए भक्त सिर्फ एक दिन में किसी तरीके से भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन कर लेना चाहते हैं, ताकि उनकी समस्याओं का निदान मिल सके,
11: क्योंकि यहाँ आकर उनको मिलता है कुंडली के दोष से छुटकारा, जिसका निवारण नाग पंचमी पर भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन से हो जाता है।
10: अगर नवग्रहों की शांति की बात करें तो नाग पंचमी की रात्रि में एक विशेष नाग शिव महाप्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए तांबे के लोटे में जल, अक्षत और थोड़ा सा दूध मिलाकर भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान करें। मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं और जल अर्पित करें। इस प्रयोग का विशेष रूप से राहु, केतु और शनि से जुड़ी अशुभता तथा बाधाओं की शांति के लिए किया जाता है। इसी दिन उनके दर्शन करने का काल सर्प दोष, सर्प दोष और सर्प भय से जुड़ी बाधाओं में से शांति मिलती है। साथ ही परिवार में सुख शांति, आरोग्य और समृद्धि भी बनी रहती है।
11: नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की परंपरा है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में साक्षात तक्षक नाग मौजूद हैं, जो भगवान शिव के गले के आभूषण वासुकी नाग के छोटे भाई हैं। हमने आपको पहले बताया कि महाकाल के दर पर तक्षक नाग के पहरा देने की मान्यता है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कौन है तक्षक नाग। तक्षक की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें नाग वंश की उत्पत्ति तक जाना होगा। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थी, कद्रु और विंता। महाभारत के आदि पर्व में उल्लेख है कि कद्रु के हजारों पुत्र हुए, जो सभी नाग थे। कथा है कि तक्षक नाम का जन्म महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु के गर्भ से हुआ था। कहते हैं कि कद्रु ने ऐसे हजार सांपों को जन्म दिया था। अथर्ववेद में तक्षक का उल्लेख एक भयंकर सर्प के रूप में आता है। महाभारत के आदि पर्व में तक्षक को खांडव वन का निवासी बताया गया है। मान्यता है कि तक्षक नाग ने ही राजा परीक्षित को काटा था और जिससे उनकी जान चली गई। मान्यता है कि उसी दिन से कलयुग का आरंभ हो गया। धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि ये प्रसंग भागवत पुराण के प्रथम और द्वितीय स्कंध में विस्तार से दिया गया है। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र थे। वे हस्तिनापुर के धर्मनिष्ठ राजा थे, जिन्होंने द्वापर युग के अंत में धर्म की रक्षा की। कथा कहती है कि एक दिन वे शिकार के लिए वन में गए। थके प्यासे से व्याकुल होकर परीक्षित महर्षि शमिक के आश्रम में पहुँचे और उनसे पीने के लिए पानी मांगा, किंतु शमिक मुनि उस समय समाधि में थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कथा है कि प्रतीक्षा से व्याकुल होकर परीक्षित ने एक मृत सर्प उठाकर मुनि के गले में डाल दिया। कहते हैं कि इस घटना से शमिक मुनि के पुत्र आहत हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन के भीतर तक्षक नाग तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। कथा है कि फलों की टोकरी में छिपकर तक्षक नाग परीक्षित के पास पहुंचा। जब परीक्षित एक फल को उठाकर देखने लगे, उसमें से एक छोटे से कीड़े के रूप में तक्षक प्रकट हुआ और उसने परीक्षित को डस लिया। क्षण भर में ही राजा परीक्षित अग्नि में भस्म हो गए। नाग पंचमी को हम सभी नाग देवता का पूजन करते हैं, लेकिन उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में तक्षक सहित अन्य प्रमुख नागों की पूजा करने से सर्प से अभय मिलने की मान्यता है। चलिए आपको बताते हैं शास्त्रों में लिखी तक्षक नाग की विशेषताओं के बारे में। तक्षक एक दिव्य नाग है जो मायावी शक्तियों से संपन्न है। तक्षक माया द्वारा अपना रूप बदल सकता था। परीक्षित के वध की कथा में उसने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया था। वो आकाश में उड़ सकता था और अदृश्य रह सकता था। उसे नागलोक के प्रमुख शासकों में गिना जाता है। नाग पंचमी पर लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। वे मानते हैं कि इससे पितृ दोष और काल सर्प दोष का नाश होता है। तो आप भी नाग पंचमी पर विधि विधान से कीजिए भगवान नाग चंद्रेश्वर का ध्यान, जिससे होगा आपका कल्याण।
9: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज़ टुडे।

0: काशी की गलियों में आस्था और रहस्य से जुड़ी कई ऐसी प्राचीन धरोहरें मौजूद हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों में आकर्षण पैदा करती हैं। जैतपुरा का नागकूप भी वाराणसी में ऐसा ही एक जगह है जिसे नागलोक और महर्षि पतंजलि की तपस्थली के साथ जोड़कर देखा जाता है। नागपंचमी पर यहां श्रद्धालुओं की खास आस्था देखने को मिलती है। काशी के इस रहस्य पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
1: भगवान भोले की नगरी काशी, यहाँ गंगा की पवित्र लहरों में भक्ति की अविरल धारा बहती है। काशी जहाँ मंदिर की घंटियों से आध्यात्म की अनंत ऊर्जा का संचार होता है, यहाँ संतों की वाणी में ज्ञान और यहाँ की मिट्टी के कण कण में महादेव का वास है। दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत शहरों में एक पावन नगरी पर भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद है। हजारों साल की इस समय यात्रा में यहाँ की हर गली अपने आप में ऐतिहासिक और हजारों रहस्यों को समेटे हुए है, और इन्हीं रहस्यों में से एक है जैतपुरा का प्राचीन नागकूप। ऊपर से देखने पर ये एक सामान्य कुआं जैसा नजर आता है, लेकिन इससे जुड़ी मान्यताएं इसे बेहद खास और रहस्यमय बनाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस नागकूप का संबंध नागलोक से है, और यहाँ महर्षि पतंजलि ने लंबी तपस्या की थी।
2: समय राजा परीक्षित को नागदंश हुआ था, तो उनके पुत्र जनमेजय ने सभी नागों का यज्ञ किए थे, सर्प विनाशक यज्ञ। उस यज्ञ के समय कारकोटक नाग जो थे, वो सभी नाग जाति को बचाने के लिए, जीवन रक्षा के लिए उन्होंने शिवजी की तपस्या की थी इसी स्थान पे, जिस तपस्या का नाम था पंच अग्नि तपस्या। और भगवान प्रसन्न होकर उनको वरदान दिए, और इसी स्थान पे भगवान प्रकट हुए थे, जो कि एक स्वयंभू शिवलिंग भी है, और उनको वरदान दिए कि जो हमारे में समाहित होते हैं उनका न आदि होता है न तो अंत होता है। फिर कारकोटक नाग सभी नाग जाति को लेके, नाग वंश को लेके इसी मार्ग से पाताल लोक चले गए थे।
1: इस नागकूप की सबसे खास मान्यता इसके भीतर विराजमान प्राचीन शिवलिंग को लेकर है। कहा जाता है कि जमीन के करीब 100 फीट नीचे भगवान शिव का शिवलिंग मौजूद है। साल में एक बार कूप की सफाई के समय पुजारी नीचे उतरते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा के बाद कूप में फिर पानी भर जाता है और श्रद्धालुओं के लिए अंदर जाना संभव नहीं रहता। लोक कथा है कि महर्षि पतंजलि इन्हीं रास्तों से नागलोक तक जाते थे। हर साल नागपंचमी अवसर पर नागकूप पर आस्था का विशेष रंग दिखाई देता है। नाग देवता की पूजा के लिए यहाँ दूर दूर से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और सर्प दंश भय से राहत मिलती है। कई श्रद्धालु इस कुएं के पवित्र जल को आस्था के साथ अपने घर ले जाते हैं।
2: इस समय राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय यज्ञ कर रहे थे, तो उसी समय यज्ञ में जिनकी नाग लोक का, जिनका नाग देवता का नाम लेते थे, वो अग्निकुंड में आ जाते थे। तो उस यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिक मुनि वहाँ पहुँचे और उनको समझा बुझा कर यज्ञ को वहीं पर विराम करने के लिए उनको समझाएं, और उसके बाद जितने नाग राज झुलस चुके थे, जल चुके थे, उनको दूध चढ़ाकर, उनको लावा लगाकर, उनको घाव को ठीक किए, भरे। इसीलिए उस तिथि भी थी श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, इसीलिए नाग पंचमी के नाम से उसको मनाया जाता है।
1: काशी में धर्म और अध्यात्म जीवन का हिस्सा है। यहाँ नागकूप से जुड़ी कथाएं और मान्यताएं भी इसी आस्था की एक ऐसी कड़ी है जो रहस्य और परंपरा को आज तक अपने साथ संजोए हुए है। वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता, गुड न्यूज टुडे।
0: सावन का तीसरा सोमवार और साथ ही नागपंचमी का शुभ संयोग, देश भर के शिवालयों में आज आस्था का अद्भुत रंग दिखाई दे रहा है। कहीं भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है तो कहीं नाग देवता की पूजा अर्चना। काशी से लेकर उज्जैन तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि उज्जैन के प्राचीन चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट नागपंचमी के दिन साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं सावन और नागपंचमी के इस पावन संयोग पर आस्था की ये खास तस्वीरें।

भगवान शिव को समर्पित साल का सबसे पवित्र महीना सावन महीने में बात अगर सोमवार की हो तो भक्तों में भोलेनाथ की भक्ति का उत्साह दो गुना हो जाता है। आज सावन के तीसरे सोमवार के साथ नाग पंचमी का संयोग भी है, जिससे भगवान शिव की आराधना का ये पावन अवसर और खास बन गया है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार से लेकर देश के तमाम शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें उमड़ रही हैं। जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों के जल से महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सनातन परंपरा में नाग देवता की पूजा का विशेष दिन होता है। मान्यता है कि नाग देवता भगवान शिव के प्रिय हैं। महादेव के गले में विराजमान नाग उनकी शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। आज सावन के सोमवार और नाग पंचमी का एक साथ आना भक्तों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। इस पावन मौके पर श्रद्धालु भक्ति भाव से नाग देवता को दूध, पुष्प और जल अर्पित करते हैं और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर आस्था के अनूठे रंग महाकाल की नगरी में भी दिखाई दे रही है। भक्तों के जनसैलाब के बीच उज्जैन के प्राचीन चंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ी मान्यता इसे और खास बनाती है। नाग पंचमी के मौके पर चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक बार श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। भक्तों के लिए ये सिर्फ दर्शन का अवसर नहीं बल्कि साल भर के इंतजार के बाद मिलने वाला एक विशेष आध्यात्मिक क्षण होता है। साल में सिर्फ एक ही दिन दर्शन का अवसर मिलने के चलते यहाँ भक्तों में खास उत्साह देखने को मिलता है। उज्जैन जहाँ स्वयं महाकाल विराजते हैं, वहाँ नाग पंचमी के अवसर पर चंद्रेश्वर मंदिर की ये परंपरा आस्था का एक अलग ही रूप देती है। उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 मंजिलों वाला है। इसमें नीचे महाकालेश्वर, मध्य में ओमकारेश्वर और सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। वैसे तो भगवान शिव के गले में वासुकी नाग लिपटा रहता है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में सर्प शिव जी के गले में लिपटा नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की सर्प शैया पर विराजमान है। इस मंदिर में शिवलिंग पर चंद्रमा और नाग की विशेष प्रतिमा विराजमान है, इसीलिए इसे नाग चंद्रेश्वर कहा जाता है। नाग पंचमी के मौके पर साल में एक बार भक्त यहाँ पूजा अर्चना कर जीवन में सुख समृद्धि, शांति और निर्भयता का आशीर्वाद मांगते हैं। सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी का यह शुभ संयोग आज का दिन शिव भक्तों के लिए आस्था का महापर्व बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
0: तीसरे सोमवार पर सोमनाथ महादेव की नगरी में दिख रही भक्तों की भीड़, निकाली गई बाबा की पालकी यात्रा, दर्शन को उमड़े भक्त,

नाग पंचमी के पावन दिन उज्जैन में आस्था का मेला, नाग चंद्रेश्वर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना। सिर्फ नाग पंचमी पर खुलते हैं कपाट।

समंदर में बढ़ेगी भारत की शक्ति, नौसेना के लिए आएंगे 2 MQ-9B गार्जियन ड्रोन, अमेरिका के साथ करीब 1943 करोड़ का सौदा। नेपाल दौरे पर सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नेपाल सेना प्रमुख के साथ औपचारिक द्विपक्षीय बैठक, रक्षा और सैन्य संबंधों पर चर्चा।

इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार। चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज़।

महाराज इसी को लेकर चर्चा होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत चंधावा। आज उस सावन का तीसरा सोमवार है और आज ही सूर्य अपनी राशि सिंह में गोचर भी हो रहे हैं। साथ ही साथ आज नागपंचमी का पर्व भी है। देश भर के शिवालयों में आस्था के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया जा रहा है, तो कहीं नाग देवता की पूजा अर्चना हो रही है। काशी से लेकर उज्जैन तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं। तो नागपंचमी का महत्व क्या है, क्या है काल सर्प दोष और कैसे काल सर्प योग हो सकता है दूर, इसका नागपंचमी से क्या है ताल्लुक, सूर्य के नए गोचर के क्या है मायने से क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य मौजूद रहेंगे।

0: तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज ही नागपंचमी का पर्व भी है, यानी कि महादेव की भक्ति और नाग देवता की आस्था का अद्भुत संगम। आज सुबह से देशभर के शिव मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। काशी से लेकर देवघर तक, प्रयागराज से लेकर देश के तमाम बड़े शिव मंदिरों तक भक्तों का तांता लगा हुआ। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। वहीं देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दरबार में भी आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। आज सावन सोमवार के साथ नाग पंचमी होने की वजह से नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं, जहां दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए तो लगातार तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं, दूध बेलपत्र और फूल अर्पित कर रहे हैं, भगवान शिव को सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वैसे आज ही सूर्य का अपनी राशि सिंह में गोचर भी हो रहा है, तो ऐसे में आज के दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है।
1: देखिए, नागपंचमी का पर्व पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी क्रम में भगवान महाकाल के इस दिव्य मंदिर में उज्जैन में बहुत ही अद्भुत स्थान है। भगवान महाकालेश्वर का जो मंदिर है उसके तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं। परंपरानुगत तरीके से पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा महंत जो है नियुक्त होते हैं, वो उसकी पट खोलते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो उसी परंपरा का हम सब लोगों ने पालन करते हुए भगवान नागचंद्रेश्वर के मंदिर के पट खोले और भगवान का षोडशोपचार पद्धति का ये जो पूजन पद्धति है उसके अनुसार पूजन करके और त्रिकाल पूजाओं में प्रथम पूजा करके और सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं।
0: तो नाग पंचमी पर आज महासंयोग भी बन रहे हैं, कौन से हैं वो भी आपको बताते चलते हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज ही नाग पंचमी का पर्व भी है, तो ऐसे में नाग पंचमी पर देश भर के मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हुआ था जो कि 28 अगस्त तक चलेगा और इस बार चार सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त को था, फिर उसके बाद 10 अगस्त, फिर आज तीसरा सोमवार है यानी कि 17 अगस्त और इसके बाद 24 अगस्त को चौथा सोमवार होगा। लिहाजा सावन में नाग पंचमी पर काशी से लेकर प्रयागराज तक तमाम शिव मंदिरों में भीड़ है। आज नाग पंचमी पर खास पूजा का संयोग भी है। नाग पंचमी को काल सर्प दोष दूर करने का दिन माना जाता है, तो कैसे आपको हम आगे बताएंगे। देश के कुछ हिस्सों में किस तरीके से अब भी कांवड़ यात्रा के रंग दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ सावन भोलेनाथ का प्रिय महीना है, तो ऐसे में भक्ति के रंग हर ओर बिखरे हुए हैं और इसमें शिव जी की पूजा का काफी महत्व है। और इसी बीच आज ही नाग पंचमी के दिन सूर्य का अपनी राशि सिंह में गोचर हो रहा है, तो ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त आचार्य राज मिश्रा, हमारे साथ हैं नंदिता पांडे जी, हमारे साथ पंडित संजय शर्मा और श्रुति खरबंदा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो तस्वीरें जो हम लगातार देख रहे हैं, राज मिश्रा जी शुरुआत आपसे करती हूं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, तमाम शिवालयों में आज आस्था का रंग भी देखने को मिल रहा है, नाग पंचमी का पर्व भी है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को समझाइए आप क्या इस बार क्यों खास है नाग पंचमी का पर्व और किन मायनों में आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दिन।
2: देखा जाए चंद्रमा दो राशियों के अंतर्गत परिवर्तन करेंगे। प्रातः जब दिन का प्रारंभ हुआ तो चंद्रमा कन्या राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, लेकिन अंत तक शाम होते होते चंद्रमा तुला राशि के अंतर्गत परिवर्तन कर जाएंगे और दोनों ही परिस्थितियां बड़ी शानदार होंगी। ज्योतिष के अंदर चंद्रमा को समुद्र का कारक प्लैनेट और स्पेशली माता पार्वती से संबंधित प्लैनेट कहा गया है और शुक्र के साथ जब कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी और माता पार्वती का जो सुंदर संयोग है उसको दर्शाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो बृहस्पति से चतुर्थ भाव यानी तुला राशि के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वो बृहस्पति से चतुर्थ भाव में होने के कारण गजकेसरी योग का स्पष्ट निर्माण करते हैं। तो चंद्रमा का इस प्रकार से गजकेसरी योग का आज निर्माण करना और शुक्र के साथ जाकर के गोचर करना, ये दोनों ही परिस्थितियां आपके जीवन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती हैं। बुध और बृहस्पति दोनों महत्वपूर्ण प्लैनेट, हंस नामक योग का इस समय निर्माण है, बृहस्पति ऑलरेडी उदय हो चुके हैं, उच्चस्थ होकर के अपने राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। ये समय धर्म करके और अपने जीवन को सफल बनाने का समय है। ये समय अच्छी चीजें श्रवण करके ये समय अच्छी चीजों को देख करके, इस समय ये बहुत स्पष्ट नियम है कि जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, उसी प्रकार का हमारा, हमारे ब्रेन के अंदर जो केमिकल है वो उसी प्रकार का केमिकल जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसी प्रकार का केमिकल तैयार होता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारी ऊर्जा उसी प्रकार का होती है और वो ब्रह्मांड को उसी प्रकार का सिग्नल भेजती है, उसी प्रकार की चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो जब पंच महापुरुष जैसा हंस नामक राजयोग बना हो, चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में पहुंच जाए या शुक्र के साथ जाकर के विराजमान हो जाए, इस समय पर भगवान की आराधना करने से, भगवान का स्मरण करने से और सुंदर दृश्य को देखने से, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जब भी हम लोग स्क्रीन पर होते हैं और स्क्रीन पर होते हुए भगवान के सुंदर सुंदर अलग अलग धाम का दर्शन आपके माध्यम से हो रहा होता है, आपके चैनल के माध्यम से हो रहा होता है, भगवान के द्वादश जो ज्योतिर्लिंग है, जो अलग अलग आप त्र्यंबकेश्वर का नाम और भगवान सभी जो अलग अलग ज्योतिर्लिंग है उनका नाम जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो जनरल सी बात है कि हमारा जो ब्रेन है वो परमात्मा से, हमारा आत्मा जो है वो परमात्मा से कनेक्ट हो रहा होता है और हमारे जीवन के अंदर सुंदर परिवर्तन लाने का ये एक संकेत होता है। तो आज की अगर नागपंचमी को देखा जाए, नागपंचमी हमेशा के लिए शानदार है, भागवत के अंदर इसकी कथा आती है, लेकिन आज का विशेष है और भगवान की कृपा करें सबके लिए बेहतर हो।
0: मैं आपसे वो कथा आगे सुनूंगी, नंदिता जी को इंक्लूड कर लेती हूँ। नंदिता जी, नागपंचमी है, तीसरा सोमवार है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि कहा जाता है इसका सीधा संबंध काल सर्प दोष से भी होता है, पहले तो ये लिंग क्या है ये भी समझाइए और पूजा कितनी जरूरी हो जाती है आज के दिन।
3: जी, बहुत ही सुंदर।
0: और काल सर्प दोष होता क्या है, क्योंकि मैं, क्योंकि यहाँ पर हम इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दें कि बहुत सारे मिथ भी इसको लेकर हैं, लोग बहुत ज्यादा डरते भी हैं, डराया भी जाता है। बिल्कुल क्लियरली साफ शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए सरल भाषा में समझाइएगा कि ये होता क्या, क्या इसे डरने की जरूरत है या नहीं।
3: जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न, लेकिन सर्वप्रथम जीएनटी के समस्त दर्शकों को नागपंचमी की और श्रावण सोमवार की अनंत शुभकामनाएं, आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, ये हम सभी की प्रार्थना रहती है और जीएनटी के माध्यम से कहने को मौका मिलता है तो और सुंदर हो जाता है। अब प्रश्न है काल सर्प का, और देखिए ये राहु और केतु के ट्रांजिशन से बनता है। जब राहु और केतु के एक साइड में बहुत सारे ग्रह हो जाते हैं, इसके दो मत हैं। एक मत ये कहता है कि हमारे किसी भी लेख में जो भी टेक्स्ट है, वैदिक टेक्स्ट या एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है, वहां पे काल सर्प का विवरण नहीं है, लेकिन हमेशा हम रिसर्च बेस बात करते हैं, ये शास्त्रों की बात होती है, जब शास्त्र हमेशा आपस में एक दूसरे से यहाँ पे शास्त्रार्थ होते हैं उसके बाद निकलता है, तो उसका एक नाम दे दिया कि राहु और केतु के एक साइड में अगर जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो एक तरह से बंधन में बच जाते हैं राहु और केतु के, इसलिए उनको काल सर्प दोष कहा गया। तो काल सर्प दोष एक तरह से विपरीत राजयोग होता है, ऐसा नहीं कि डरना चाहिए इससे, ये आपके 45 इयर्स के बाद आप अमूमन जो स्टडी की गई है देखा गया है कि उसके बाद बेहतर परिणाम देता है और अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि ये माना जाता है कि उसके बाद राहु और केतु की जो एनर्जीज होती है थोड़ा सा क्षणिक हो जाती है और बाकी ग्रह अपनी एनर्जी ज्यादा एक्टिवेट कर लेते हैं। ये जो समय होता है, जैसे विष दोष है, विष दोष होता है शनि और चंद्रमा के एक साथ आने से, और जब विष दोष होता है, इन सारी चीजों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कुंडली में सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में विष दोष है, इस समय आप चांदी से बने नाग नागिन, अगर वो भी संभव नहीं है, तांबे से बने वो भी संभव नहीं है, तो आटे की लोई से आप थोड़ा सा ऐसे रब करके एक नाग का और नागिन का शेप बना के आप उसको भी अगर शिवलिंग में अर्पित कर देते हैं, और मीठे दूध से जो नाग देवता है उसके साथ आप भोलेनाथ के ऊपर उनका आवाहन करते हैं और आप चढ़ाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी ये जो ग्रहण की जैसी स्थिति बनती है, बंधन की स्थिति बनती है, वो आपकी काफी हद तक खत्म हो जाती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। देखिए, ये मानना चाहिए कि ये विपरीत राजयोग है, अब इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अमूमन ये प्रचलित ज्यादा काल सर्प दोष के नाम से प्रचलित है, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई सर्प आके आपको डस जाए, और आज के दिन तो आपको ज्यादा वो है तो केवल एक सिंपल ओम नाग देवता है नमः का आप पाठ कर सकते हैं, शिव जी के गले में तो वैसे ही वासुकी बैठे हुए हैं जो समुद्र मंथन में उन्होंने पूरा अपने शरीर को दिया था कि उस रस्सी बनकर के मंथन हो रही थी। और दूसरा ये होता है कि काल सर्प में बहुत ज्यादा पीड़ित है तो एक उपाय होता है कि आप रस्सी ले सकते हैं या कोई भी डोरी ले सकते हैं, काली डोरी हो या रस्सी हो, उसमें आप 7 गांठें बांधें, उन गांठों को बांधते वक्त आप महामृत्युंजय का पाठ करें और फिर उसको शिव जी के ऊपर शिवलिंग पे चढ़ा दें, और उसके बाद उसी रस्सी को लेकर के एक एक गांठ खोलते हुए महामृत्युंजय का मंत्र बोलते हुए गांठ खोले, ये एफर्मेशन के साथ कि मेरी जो भी बाधाएं हैं उन बाधाएं

0: होना और उसी के साथ साथ सूर्य की संक्रांति होना बहुत ही अद्भुत दिन है। दिन आप अगर छोटे छोटे पूजा पाठ करते हैं, छोटे
1: हाँ
0: छोटे निवारण करते हैं, देखेंगे आपके जीवन के कष्ट हर
1: चलिए,
0: जाएंगे।
1: उपाय और छोटे छोटे से निवारण क्या करने, आगे पूछूंगी। श्रुति खरबंदा जी आपके पास आती हूँ। हम लोग जब भी किसी दोष की बात करते हैं ना श्रुति जी, देखिए आज हम काल सर्प दोष की मैं वापस इसलिए इस पर स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं डरते हुए, और बहुत से लोग डरा भी देते हैं कि तुम्हारी कुंडली में तो काल सर्प दोष है। कुछ एक दोष होते हैं जिनके ट्रेड्स पता चल जाते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको ये फला दोष हो सकता है, ये हो सकता है, क्या काल सर्प दोष, क्योंकि नॉर्मली जिनको ना तो कुंडली देखनी आती ना ग्रहों के बारे में कुछ ज्यादा पता है, तो कैसे पता लगाया जाए कि हम पे काल सर्प दोष है, क्या कुछ
2: ये तो आपने
1: साइंस होते
2: बहुत सुंदर
1: हैं?
2: प्रश्न पूछा जी। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, देखें जब भी जीवन में संघर्ष होता है तो जिस तरह के, जिस प्रकार के वो संघर्ष होते हैं, ज्योतिष गण भी जो है उन संघर्षों को देख के उनकी मैपिंग करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बहुत सिमिलर टू सैटर्न भी हो सकते हैं, क्योंकि काल सर्प युग की जब हम बात आती है ना, तो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ ज्यादातर ज्यादा स्ट्रगल से हम होता है, तो जब जीवन का दूसरा भाग होता है, या तो एक उम्र के बाद या शादी के बाद, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, उसके बाद जो है स्थितियां बेहतर होती हैं। सिम्टम्स की बात करें तो अक्सर ये होता है कि बच्चा या जातक जो है वो बहुत भय में जीता है, चीजें उसके लिए उस तरह से काम नहीं करती हैं जैसे करनी चाहिए, या संघर्ष जो है जरूरत से ज्यादा करना पड़ जाता है, पढ़ाई में जो है बहुत ज्यादा वो बेहतर नहीं कर पाते, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं। देखें, काल सर्प दोष की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले ये समझ लेते हैं कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए एक साइड ऑफ कुंडली में, है ना, कुंडली के 12 भाव होते हैं, तो अगर राहु केतु आमने सामने है तो बाकी के जो 6 भाव है वहीं पे सिमट के रह गए, इसलिए कहते हैं कि वहीं से बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन ये हर बार भी जरूरी नहीं होता, बहुत बार जो है वो फर्स्ट हाफ आपका बहुत अच्छा चला जाता है, तो चूंकि सिम्टम्स है, लेकिन मैं कहूंगी कि किसी अच्छे एक्सपर्ट को अगर आप दिखा के पता लगाएं तो ये चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं। दूसरा जो यहाँ पर नोटिस करने की बात है, वो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो है ये काल सर्प योग होता है, तो जो पंचमी तिथि 5 नंबर जो बुध है, बुध का अश्लेषा नक्षत्र, उसका जो सिंबल है वो भी सर्प ही है, तो सांप दिखाया गया है। आपने देखा होगा ना कि हमेशा ट्रेजर की रक्षा सुरक्षा जो है वो सर्प करते हैं, और शिव ने जो है समुद्र मंथन के समय जब विष अपने गले में धारण किया तो वहीं पे सर्प भी है, तो कहते हैं बहुत सोच समझ के बोले वाणी, क्योंकि वो काट सकती है, किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो जब भी हम इस तरह के सिम्टम्स देखते हैं तो हम कहते हैं चुप रहिए, शांत रहिए, बहुत सोच समझ के बोलिए, ना बोलना पड़े तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर हम अभी फिलहाल ग्रहों की अगर हम बात कर लें, उसको समझने की कोशिश करें, तो मैं कहूंगी कि कई लोगों के लिए जो है बहुत मोक्ष के तरफ बढ़ने वाले, अध्यात्म की तरफ जाने वाले ग्रह योग भी हैं फिलहाल गोचर में, लेकिन शत्रु के दमन की, शत्रु का खत्म हो जाना, या यहाँ से आपकी बेहतरी का जो है वो समय शुरू होना, वो भी जो है फिलहाल इस तरह फिलहाल योग बने हुए हैं। जब भी हम इस तरह के सिम्टम्स पाएं तो आज के दिन को तो बिल्कुल हमें लगता है कि रामबाण की तरह, एक अचूक उपाय की तरह, नाग देवता की पूजा या नागों को, सर्पों को जो है दूध जरूर पिलाया जाता है, ताकि वो जो नेगेटिविटी है, बुध ग्रह के भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं या राहु केतु के बीच में आने की वजह से जो भय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो जो है वो मिटिगेट हो जाए, वो वहां से चले जाए, हम भय से बाहर आएंगे तो संतुलित बुद्धि से जो है हम काम कर सकें, क्योंकि सर्प को भी, जो सर्प का मुख होता है वो राहु, और जो पूंछ होता है उसको केतु के समान जो है ज्योतिष में माना गया है, तो इसलिए सबसे पहले तो भय, और जो व्याकुलता बेचैनी बहुत भरी रहती है ना अकारण, जो भय होता है वो भी बहुत बताता है कि ये काल सर्प योग है, या बुद्धि, जिसे बुद्ध से हम जोड़ के जब हम देखते हैं, क्योंकि पंचमी तिथि है, ये कनेक्टेड है छोटी छोटी चीजें, तो कौन सा ग्रह ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है उस हिसाब से उसके अनुरूप जो है हम ज्यादा उपाय बताते हैं। लेकिन फिर भी आज के दिन मैं बस इतना जरूर कहना चाहूंगी, आप कुछ ना कर सके तो शिव पंचाक्षरी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय का 108 बार जरूर जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र का जरूर जाप करें।
1: बिल्कुल, चलिए लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त संजय शर्मा जी भी मौजूद है। संजय जी क्या बताएंगे आज के दिन के लिए, बहुत सारे योग, बहुत सारे संयोग बन रहे हैं।
3: जी, बड़ा अच्छे से सुना मैंने सबको और समझा। देखो, सबसे पहले काल सर्प जो है, काल सर्प का अर्थ क्या है वो समझें। काल सर्प जो

0: शब्द बनाए, काल और शर्क, कालकूट जो विष है उसको समझें। और कुंडली के अंदर कालसर्प जो है वो 288 प्रकार का होता है, पर मेन जो 12 राशियों के हिसाब से 12 प्रकार का माना जाता है। पहला कालसर्प होता है अनंत, जिसका अंत नहीं होता उसको अनंत कहते हैं, जो फर्स्ट हाउस से सेवंथ हाउस तक होता है। दूसरा कालसर्प होता है आपका कुलिक नामक कालसर्प, वो दूसरे घर से होता है। उसके बाद में वासुकी नाम है, जो भगवान शिव के गले में विराजमान है। इसी प्रकार से पद्म है, महापद्म है, कर्कोटक है, तक्षक है, शंखचूड़ है, घातक है और विषधर है। तो ये 12 प्रकार के जो कालसर्प योग हैं, ये हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि नाग को जो है प्रकृति और नेचर की सुरक्षा के लिए माना गया है। आप देखिए, भगवान शंकर ने अगर गले में नाग को धारण किया है, तो आप सोचिए कि संतुलन वाली बात है। और ये आज का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन सर्पों की पूजा की जाती है और सर्पों को मुक्ति कराया जाता है। आज के दिन कहते हैं कि नागों को जो है छोड़ दिया जाता है। आज के दिन जो भी आप बंधन में नाग रख लेते हैं या सपेरे नाग को पकड़ के रखते हैं, कुछ वर्षों पे उनकी मियाद होती है, आज के दिन छोड़ दिया जाता है। सर्प दोष कुंडली में जब लगातार हमारी जन्म कुंडली के अंदर 5 घर लगातार अगर खाली हैं, तो काल सर्प नामक योग बनता है। और उस योग में अगर कहते हैं कि अगर उनको 27 नक्षत्रों को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 243 बनेगा, परंतु क्या 288 प्रकार का कालसर्प ज्योतिष में माना गया है। और उसके विधान है, उनमें मंत्र विशेष करके जो मंत्र है, ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो येकेश्च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षो दिवितेभ्य सर्पेभ्यो देवेभ्यो नागेभ्यो नमः, तो इस प्रकार से मंत्र का जाप करें। या फिर ओम नवकुलाय विद्महे विष दंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात। तो काल सर्प के बहुत सारे मंत्र हैं, जिसके कुंडली में जो काल सर्प है, मान के चलो अनंत है, तो अनंताय नमः बोल सकते हैं, तक्षेश्वराय नमः बोल सकते हैं, विषधाराय बोल सकते हैं। तो ये क्या है, काल सर्प बड़ा महत्वपूर्ण है। और कुंडली के अंदर क्या है कि अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ले जाने वाला होता है, जीवन में हमेशा ऊपर नीचे जीवन को कर देता है। तो कहते हैं कि डरना और भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प ज्यादातर होता है, उनकी उन्नति में बाधाएं कुछ समय के लिए आती हैं, परंतु जैसा नंदिता जी ने भी बताया, राज जी ने भी बताया और अखरबिंदा जी ने बताया, कि कालसर्प जो है क्या है कि क्या करता है कि आपके जीवन में अगर आपको उत्थान की आवश्यकता है, तो आप सर्प की जब भी पूजा करते हैं, कि सर्प को पितरों के रूप में भी माना गया है, बुद्धि हमारी बुद्धि को विकसित करने वाला है। तो ऐसा जब योग बने या कुंडली में इस प्रकार के योग जब होते हैं, तो उनमें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और सर्पों को दूध पिलाना चाहिए और प्रकृति नेचर की जो रक्षा करते हैं, कहते हैं कि जीव जंतु जो है, हमारे जो भी पौधे होते हैं या हमारी फसलें होती हैं, उनकी भी जो है नाग रक्षा करते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाने में नागों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो और हमारे जीवन को आनंद में देने वाला। और कहते हैं राहु और केतु जो है धन अचानक से देते हैं, तो इन ग्रहों की स्थिति अगर कभी भी खराब हो, तो कहते हैं खराब में भी अच्छा फल देते हैं। छठे घर का राहु शत्रुहंता योग बना देता है, इसी प्रकार से 12वें घर का केतु मोक्ष करा देता है। तो कालसर्प योग कभी भी खराब नहीं होता, जीवन में सुख देने वाला है, आनंद देने वाला
1: यानी
0: है,
1: सीधी सी बात है कि इससे डरना
0: उसको।
1: नहीं चाहिए, कुछ छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं। अब मैं राज मिश्रा जी आपके पास आती हूँ। जब हम उपायों की बात करते हैं, बहुत लोग और अभी खुद संजय जी भी ये बता रहे थे कि नागों की पूजा करनी चाहिए, दूध पिलाना चाहिए। सर, प्रैक्टिकली आज की तारीख में कितना ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है कि नाग को दूध पिला दिया जाए? उपाय इसका क्या हो सकता है?
2: देखिए, ये पॉसिबल जनरली ये पॉसिबल नहीं है। मैं दो तीन बातों पर आपके आना चाहूंगा, और दूध पिलाने की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुआ, अगर पॉसिबल है तो मैं उस पर भी जाना चाहूंगा। आपका जी थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, कई बार हम लोग लंबे समय तक बोल जाते हैं और आपके जी को हम लोग
1: नहीं,
2: सुनते
1: नहीं
2: नहीं है।
1: इसका
2: चलिए,
1: इसका जवाब मैं नंदिता जी से भी आगे जानूंगी। नंदिता जी, यही सवाल का जवाब
2: ठीक है।
1: आपको भी देना होगा।
2: अब ये कहां से ये परंपरा प्रारंभ हुई, आप सब लोगों ने भागवत के उस विषय को सुना होगा जहां पर राजा परीक्षित, भागवत के पहले प्रारंभ होता है, महाराज परीक्षित जाते हैं और वहां पर उनको श्राप प्राप्त होता है, शम्मिक ऋषि के जो गले में है वो सर्प डाल देते हैं और फिर उनके पुत्र जो है वो आकर के श्रृंगेरी से श्राप देते हैं कि तक्षक नाग 7 दिन बाद राजा परीक्षित को काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी आकर के उनको भागवत सुनाते हैं और उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद उनके पुत्र जो बड़े जन्मेजय हैं वो यज्ञ का आयोजन करते हैं और वो सभी सर्पों को बुला करके उनको पूरी तरीके से भस्म कर दे, मैं सर्पहीन कर दूंगा, इस धरती को छोड़ूंगा ही नहीं। उस परिस्थिति के अंतर्गत तक्षक जो है वो इंद्र के सिंहासन से जाकर के चिपक जाता है। अब क्योंकि यज्ञ इस प्रकार से चल रहा था और वास्तविकता में सर्प जल जल करके भस्म हो रहे थे अग्नि के अंतर्गत, वहां पर आस्तिक मुनि आकर के और जन्मेजय को समझाते हैं कि ये ठीक नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधियात, सबके अंत समय का अंत का जो है वो पहले से निर्धारण है, आपको प्रकृति के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। और वहां पर यज्ञ होता है और वहां पर जो आस्तिक मुनि है वो गौ दुग्ध से जो सर्प जले थे उन पर छिड़क करके उनको दोबारा जीवित करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, व्यक्ति कितना भी जल गया हो और अगर उसके ऊपर दुग्ध डाला जाए, स्पेशली अगर गाय का दूध, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गुण मौजूद होते हैं, तो वो जो जलने का निशान है, जलन तो उसकी खत्म हो ही जाएगी, प्लस जलने का निशान उसका नहीं बचेगा। तो आस्तिक मुनि ने वहां पर जो जल का छीटा है वो जो दुग्ध का छीटा है वो नागों पर लगाया और वहीं से नाग को दूर चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो वास्तविकता में प्रारंभ हुई। हम सभी लोग जानते हैं कि नाग एक्चुअल में दूध पीता ही नहीं है, वास्तविकता में यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि नाग दूध नहीं पीता है। तो जनरली हम नाग को दूध ना अर्पण करके भगवान शंकर को अगर हम जाकर के दूध अर्पण करते हैं, भगवान शिव उसको स्वीकार करते हैं। एक सिंबॉलिक है कि इस प्रकार हम जाकर के भगवान शंकर को अर्पण करें तो भगवान शिव उसको निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। अच्छा, काल सर्प का बार बार वर्णन आ रहा था कि भाई अगर काल सर्प योग क्यों, काल सर्प योग क्यों। श्री रामचरित मानस के अंतर्गत एक बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी थी, संशय सर्प। गोस्वामी जी जो सर्प का है उसको संशय का स्वरूप कहते हैं। क्यों? अगर मैं 1970 से पहले जाने का प्रयास करूं या 1980 से पहले जाने का प्रयास करूं तो काल सर्प योग नामक किसी भी प्रकार का कोई वर्णन किसी भी ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजिकल बुक में नहीं है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र इत्यादि अगर उठा करके देख लिया जाए तो वर्णन नहीं रहा। फिर हमारे जो आधुनिक एस्ट्रोलॉजर्स आए वो उसको लेकर के आए, उसका रीजन क्या रहा? उन्होंने गोस्वामी जी ने कहा है संशय सर्प गहो उर्गादा, जो हमारे मन का भ्रम है, जो हमारे मन की शंका है उसको सर्प कहा गया है। राहु को ज्योतिष में एंजाइटी का कारक, फोबिया का कारक, भ्रम का कारक, डिस्ट्रैक्शन का कारक, चीजों से अलग शंका उत्पन्न कर देने का जो कारक है वो राहु को कहा गया है। उसी प्रकार का रहस्यमयी प्लैनेट केतु को कहा गया है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारे आधुनिक एस्ट्रोलॉजर रहे वो उन्होंने उसको उस चौपाई के माध्यम से या जो भी विचार उनके अंतर्गत आया उसके माध्यम से, क्योंकि वो संशय उत्पन्न करता है राहु, इसलिए उसका जो नेचर है वो सर्प जैसा है, इसलिए उसको काल सर्प के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया। मेरे दृष्टि से क्या उपाय हो सकता है? भगवान शंकर की आराधना हम सभी लोग जानते हैं कि काल सर्प दोष हो तो किसके आराधना की राय दी जाती है? साहब भगवान शिव की आराधना कीजिए, क्योंकि उनके सर पर भी सर्प है, गले के अंदर भी सर्प है। एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है, किसी ने हनुमान जी से प्रार्थना किया था कि भगवान राम से मिला दीजिए, तो प्रार्थना में क्या कहता है, हे हर हार आहार सुत तुम्हें विनय करो कर जोर, और गौर बैरिन पति के सुतन सर सुरत करायो मोर। इसका अर्थ बड़ा बहुत ही जटिल है। वो कहता है हे जो गले में भगवान शिव के हार बने हुए हैं उनका जो आहार है उसके पुत्र यानी पवन के पुत्र, सर्प का वास्तविक जो भोजन है वो हवा है, सर्प वायु को पीता है, इसलिए कहा गया हे हर हार आहार सुत, यानी वायु के पवन के पुत्र हे हनुमान जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं बैरिन पति के, जिसने अपने पति को इस प्रकार का वरदान मांग करके मार डाला, यानी कैकेयी के पति महाराज दशरथ के पुत्र से मेरी मुलाकात करा दीजिए। तो भगवान शंकर के गले में सर्प सदैव विराजमान है, उनके मस्तिष्क पर विराजमान है। भगवान शंकर की आराधना कर लेने से एक तो हमारे जीवन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और किसी प्रकार का भी, आज आधुनिक ज्योतिषी कालसर्प दोष कहते हैं, मैं उसका उस पर कोई बहस करने नहीं जाऊंगा, मेरे दृष्टि से कालसर्प किसी प्रकार का भी कोई प्रॉब्लमेटिक विषय नहीं है और वैदिक ज्योतिष में इसका कोई वर्णन नहीं है, इसलिए इस प्रकार की चीजों पर कभी डरना चाहिए नहीं किसी व्यक्ति को। और गुड न्यूज पर इसीलिए हम लोग इस विषय को लेकर के चर्चा करते हैं, लेकिन यदि जीवन में किसी जी जी
1: जी कंटिन्यू कर लीजिए
2: मैं इसीलिए कहूंगा कि यदि जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो भगवान शिव की शरण में जाइए, भावी उम्मीद सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर अपने भाग्य को बदल देते हैं और शंकर जी का दर्शन हम लोग जयंती के स्क्रीन पर कर भी रहे हैं। धन्यवाद।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए इसी का जवाब नंता जी मैं आपसे भी लूंगी कि डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए। प्रैक्टिकली कहा जाता है कि नाग देवता की पूजा कीजिए, उनको दूध पिलाइए, कितना ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है और फिर इसका ऑप्शन और क्या क्या होता है, इस पर भी विचार आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक आप रही है हमारे साथ।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: सावन शिव और सूर्य, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले समझने की कोशिश कर रहे थे नाग पंचमी क्या है और नाग पंचमी के दिन एक्चुअली पूजा किसकी करनी चाहिए। कुछ ऐसे मिथ्स भी हैं कि आप नाग देवता को दूध पिला दीजिए या फिर उनकी पूजा कीजिए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं, तो फिर ऐसे उपाय बताए क्यों जाते हैं। तो इस दिन उपाय क्या करना है, अनंता जी इसको क्लियर करते चलिए जरा।
1: प्रश्न इसमें पंडित राज मिश्रा जी ने काफी डिटेल्स में आपको आंसर दिया है, और जो दूध चढ़ाने या उनको ऑफर करने का था वो बिल्कुल सही है कि यज्ञ हुआ था और यज्ञ के बाद जब वो सर्प जले तो उनके ऊपर गाय का दूध छिड़का गया था कि वो शांति मिले, बिकॉज दूध में वो प्रॉपर्टीज होती है कि एंटी हीट, एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज होती है, तो आपके शरीर को शांत करती है, तो इसलिए वो दूध ऑफर किया जाता है। फिर एक कथा भी है जहाँ पे एक लड़की थी, मतलब जो भी अपने ससुराल में गई उसका कोई मायका नहीं था, तो ये लोग सब जंगल में जा रहे थे और वहां पे उसने सांप को अपना भाई माना और फिर उसके लिए दूध लेके गई, तो वो एक कंटिन्यूएशन में। बट आइडियली प्रैक्टिकली साइंटिफिकली स्पीकिंग ये बोला जाता है कि सांप को दूध पिलाना एक तरह से जहर पिलाने की तरह है, क्योंकि उनके अंदर लैक्टोज डाइजेशन नहीं होता, प्लस उनकी टंग स्प्लिटेड होती है, तो स्प्लिटेड टंग से वो दूध नहीं ले सकते। पर इसी में आई गो बैक टू माई चाइल्डहुड मेमोरीज, और मुझे याद है कि मेरे डैड अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड थे तब, और वहां पे ना स्नेक्स ऐसे आते रहते थे और मैंने खुद अपनी आंखों से सांप को दूध पीते हुए देखा। दैट्स ऑल्सो अ वेरी मिस्ट्री, क्योंकि ऐसा होता नहीं, मेरी मदर रख लेती थी एक कटोरी में दूध रख के, एक अगरबत्ती जला करके, और नाग आता था बड़ा सा ह्यूज 6 feet एंड ही वुड ड्रिंक, वो थोड़ा सा ही भले वो डैब करता होगा उसमें क्या करता होगा, पर वो एक मैंने देखा उस चीज को। पर कमिंग टू साइंटिफिक रीजंस, ये सांप के लिए बोलते हैं कि सांप उसको ड्रिंक नहीं कर सकता क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है। अब जो हम दूध छिड़कने की बात करते हैं, जो उस जहां से चली आई ये प्रथा, तो आप उसको सिम्बॉलिक तरीके से आप कर सकते हैं। आप जैसे प्रथा होती है गाँव में, चित्र बनाए जाते हैं, पेपर में बनाए जाते हैं, पूरी अपनी दिल्ली में या दीवारों पे भी सांप के हल्दी से चित्र बनाए जाते हैं और कुमकुम आदि अर्पित करके उन्हीं पे दूध और लावा वगैरह उनको अर्पित किया जाता है, तो सिंबॉलिक तरीके से आप यूज कर सकते हैं और ऑफर कर सकते हैं। लेकिन हमेशा सर्पों की पूजा महादेव की पूजा के पश्चात की जाती है, पहले महादेव की पूजा होती है फिर होता है। वह काल सर्प दोष की बात, तो काल सर्प दोष नहीं है ये, तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इनडायरेक्टली विपरीत राजयोग है, एक सर्टेन उम्र के बाद आपको राजयोग देता है। और मैं कुछ सेलिब्रिटीज और पर्सनालिटीज की बात करूंगी जिनके पास, जिनके ऊपर बिल्कुल घोर कालसर्प दोष था। सबसे पहले तो हमारे पंडित नेहरू जी हैं, उनके ऊपर कालसर्प दोष है, लता मंगेशकर जी का कालसर्प दोष है, महात्मा गांधी जी का कालसर्प दोष है, अभी अंबानी जी का आप ले लीजिए, मुकेश अंबानी जी की कुंडली में कालसर्प दोष है। आप देखिए इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं या बड़े बड़े लोग जिन्होंने, सचिन तेंदुलकर जी, उनके कुंडली में कालसर्प दोष है। अब ये बताइए कि ये कालसर्प दोष अगर उनकी कुंडली में है तो वो इतने फेमस और इतने राजा तुल्य, बिल्कुल अपनी अपने अपने फील्ड में जो सम्मानजनक स्थिति होती है वो स्थितियां उनको मिली है। तो कालसर्प दोष का एक प्रोविजन होता है, बहुत प्रकार के बोले गए, अब वो पहले कभी हमारे वैदिक टेक्स्ट में रहा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर रिसर्च की जा रही है या बात की जा रही है या कोई संभावना देखी जा रही है कि एक सर्टेन प्लैनेटरी पोजीशंस के तौर पे ऐसी चीजें होती हैं, तो उसको भी मान्यता देनी चाहिए कि हाँ कठिनाई होती है। कालसर्प दोष अगर बहुत ज्यादा आपको लगता है और आप साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो बेस्ट होता है कि ज्योतिर्लिंग में जाकर के त्र्यंबकेश्वर में विशेषकर कालसर्प दोष की पूजा होती है और बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, एंड एकदम से उसका रिजल्ट भी मैंने होते हुए देखा है। मेरे मतलब मेरी खुद की कुंडली में कालसर्प दोष है, लेकिन मैंने जब देखा कि त्र्यंबकेश्वर में हमने पूजा करवाई थी उसके बाद निकला, उसके बाद से एकदम से इतना प्रोफाउंड तरीके से जीवन में तरक्की हुई या जीवन में उछाल आया, तो वो भी एक है। तो आई कांट डिनाई दैट कि पूजा पाठ करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, कालसर्प दोष शांत नहीं होगा या नहीं होगा, आप जरूर करिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है, कालसर्प की शांति हो जाती है, आप भोलेनाथ के पास जाएं, शिवलिंग में सर्प अर्पित कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आटे की लोई से भी आप पतले से नागिन बना करके जोड़ावा अर्पित कर सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं, नाग देवताओं के मंत्र पढ़ सकते हैं, उनका गायत्री मंत्र है ओम नव कुलाय विद्महे विष दंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या ओम नाग देवताय नमः या शिव जी का ओम नागेंद्राय नमः उसका भी आप जाप करें तो भी आपको इन सारे दोषों से शांति मिल जाती है।
0: बिल्कुल, एक बार संजय जी आपसे मैं चाहूंगी एक और छोटा सा उपाय बताएं कि अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर इस तरह की कुछ नेगेटिव चीजें हो रही हैं, काम नहीं बन रहे या राहु केतु परेशान कर रहे हैं, तो आज के दिन क्या करें वो?
2: जी देखो, चांदी का बना बनाया नागनागिन का जोड़ा ले लें, या फिर आप अगर ज्यादा धनी नहीं है तो आप जो है गेरू ले लें, थोड़ा सा चंदन ले लें, हल्दी ले लें, और इसका जो है तिलक बना करके और अपने घर के दोनों तरफ एक सर्प का चित्र बनाए, एक स्वास्तिक बनाए, तो उससे विशेष लाभ मिल सकता है। क्योंकि सर्प को प्रकृति और नेचर का बैलेंसिंग माना गया है, और सर्प जैसे आप हम लोग देखते हैं, सर्प जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अगर आप उसको हाथ में लोगे तो मैं खुद पकड़ सकता हूँ सर्प को, तो इसलिए मुझे पता है और मैंने सर्पों के बारे में काफी स्टडी किया, तो मैं नाक को पकड़ सकता हूँ हाथ में, क्योंकि नाक को जब तक आप जोर से नहीं पकड़ोगे काटेगा नहीं, या उसको कोई कष्ट नहीं दोगे। और सांप ना बहुत ठंडा होता है। जब मैं नीलकंठ गया पहली बार तो मैंने सपेरे से दो नाग नागिन का जोड़ा लिया और उसको जो है जंगल में छोड़ दिया, तो वो आदमी कहता है आपको डर नहीं लगता नाग से? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं जो है सांपों के बारे में समझता हूँ इस वजह से। तो क्या है कि सांप जो है हमेशा, अगर आपको कालसर्प योग है कुंडली के अंदर, तो आप अवश्य भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर जो है आप देखें कि शिवलिंग के ऊपर हमेशा सर्प जो है चढ़ा होता है, और उसी प्रकार से आप उनके चरणों में जो है दूध दही शहद गंगा जल पंचामृत से शिव के ऊपर जो है उस सर्प को अर्पित कर दें। और नंदिता जी ने जो मंत्र बोला है गायत्री नवकुलाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात, या फिर मेन मंत्र है ओम सर्पेभ्यो देवेभ्यो नागेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो स्वादिभ्यो नमः, पर पितृभ्यो दुर्नमः सर्प पितृभ्यो दुर्नमः, इसमें पितरों का भी ध्यान कर लेना चाहिए। और जो मेन मंत्र है ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो यज्ञेश्वर प्रथमं यंत्रिक्षो दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो देवेभ्यो नागेभ्यो नमः, तो इन मंत्रों का जो है सर्प काल सर्प योग मान्यता है, और बहुत सारे ज्योतिषों ने लिखा भी है इसके ऊपर। चाहे हम वैदिक ज्योतिष की बात करें, वहां चाहे नहीं लिखा हुआ, कहीं कुछ चीजें पॉसिबल नहीं होती, और हर चैप्टर हर जगह पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए जो है कालसर्प नामक जो योग है वो कुंडली में होता है। और उसका सैद्धांतिक ये है कि जब व्यक्ति अपनी पूजा पाठ करा लेता है कालसर्प की कभी भी जीवन में, तो उसको शांति जरूर मिलती है और उसको शारीरिक मानसिक भौतिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और सर्प की पूजा मैं कहूंगा कि सबको करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके पूर्वजों का रूप भी है, तो इसलिए नेचर को प्रकृति को बैलेंस करने वाला है, तो आपके धन की रक्षा करने वाला है। सपेरे क्या कहते थे पहले कि जो है धन को जमीन में धन जहां होता है वो सर्प सर्प होते हैं, क्योंकि धन की भी रक्षा जो है सर्प ही करता है। तो नाग को बड़ा शुभ माना जाता है शास्त्रों के अंदर, क्योंकि हर चीज की रक्षा जो है नाग ही माने गए हैं, तो इसलिए धन का प्रकृति का नेचर का बैलेंस बनाने के लिए सर्पों की सेवा, सर्पों की पूजा, नाग को दूध पिलाने वाली बात जो है वो बिल्कुल सत्य है। और सांप जो है अपने आप देखें कि जो सपेरे होते हैं वो सांप को दूध पिलाते हैं, मैंने देखा अपनी आंखों से। और यहाँ पे फरीदाबाद के पास एक सांपों का गांव है और एक बच्चे की डेथ हो गई काटने से, और वो बच्चा पानी में बहता हुआ आ रहा था और एक सपेरे ने जो है उसका जो है विष निकालकर उसको जीवित कर दिया, और उनके पेरेंट्स ने सोचा कि मर चुका है बच्चा, तो किसी ने देख लिया उस बच्चे को और वो गए सपेरों के पास कि भाई हमारा बच्चा है। तो क्या प्रकृति में जो सर्प है भक्षक भी है और रक्षक भी है, तो रक्षा बिल्कुल करने वाली भी है।
0: मैं संजय जी लौटती हूँ, श्रुति करबंदा अब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए आज नाग पंचमी भी है, सूर्य का गोचर भी हो रहा है, तो ऐसे में जरा राशियों के बारे में जल्दी से बता दीजिए कितना शुभ रहने वाला है समय।
3: देखिए ये तो हम जरूर जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले चंद सेकंड में लूंगी ये बात, बिल्कुल सभी ज्ञानी जनों ने गुणी जनों ने ये जो बताई कि कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखिए हम देखते हैं अक्सर चांदी या तांबे की नाग के आकार की भी हम अंगूठी पहन लेते हैं, और सब ना साइकोलॉजिकली जो है ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे हम कहते हैं ना, आहार व्यवहार विचार ग्रहों का प्रभाव कैसे होगा, हमारे जो विचार होते हैं वो ऐसी ग्रह दशा लग जाती है, ऐसे योग होते हैं। तभी कहते हैं ना कि हर इंसान की अपनी प्रवृत्ति होती है, तो वो हम उसकी कुंडली में देखकर जानने की कोशिश करते हैं, झांकने की कि इनकी प्रवृत्ति क्या है, माइंडसेट क्या है, उनके डिसीजंस खराब हो जाते हैं, उनके हालात जो होते हैं मतलब आसपास का एनवायरनमेंट है थोड़ा सा गलत समय पे गलत जगह होना, तो वो चीजें उनके लिए फ्रूक्टिफाई नहीं होती है, जो प्रोस्पेरिटी जिसको हम कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कम से कम आहार के लेवल पे और विचारों के लेवल पे व्यवहार के लेवल पे हम उसे जो है मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिविटी चली जाए। और बाकी कुछ चीजें बहुत सिंबॉलिक भी होती हैं, लेकिन आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देती हैं कि आप नेगेटिविटी से दूर हैं, अब सब सही हो जाएगा, ईश्वर की कृपा है। तो उस नजरिए से भी हम देखते हैं राशियों की अगर हम बात कर लें तो देखें फिलहाल सूर्य का गोचर जो है वो सिंह राशि से हो रहा है, जो कि इस समय केतु के साथ ही विराजमान है, तो कहीं ना कहीं केतु बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, और आज नागपंचमी का दिन भी है। इस अनुरूप मैं कहूंगी कि आप शिव जी की पूजा जरूर करें और सांकेतिक रूप से जो है वो जल जरूर चढ़ाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं धन लाभ का भी योग है, लेकिन भाई या भ्राता से भी जो है आपको संबंध अपने आसपास जो है वो देखकर चल रहे होंगे, क्योंकि मंगल और राहु की जो पोजीशन है वो भी इस तरह से है कि कुछ बड़े बदलाव आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तो देखिए वृषभ राशि वालों की अगर हम बात करें तो उनको थोड़ा सा कुछ भाई या भ्राता समान किसी व्यक्ति से अलगाव की स्थिति है, लेकिन अगेन उनके लिए भी जो है फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जो है ट्रैवल जो है उनके लिए वो फ्रूटफुल रहेंगे। कर्क राशि वालों की अगर बात करें तो परिवार में कुछ ऐसा समस्या या अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है कि मानसिक रूप से या मनस से, जब कभी कभी क्या होता है ना, डिसअपॉइंटमेंट इतनी परिवार में बढ़ जाती है कि हम अलग हो जाते हैं। दूसरा ये कि संचित धन का इनको ख्याल रखने की जरूरत रहेगी, जो फिजूल खर्च है या रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है उनसे इन जातकों को, कर्क राशि वालों को जो है बचने की जरूरत होगी। अब बात हम करें सिंह राशि के जातकों की, तो देखिए सूर्य गोचर कर रहे हैं फिलहाल, सेहत पे ध्यान देने की जरूरत है, किसी भी प्रकार के भ्रम से बचें और वाणी पर जरूर जो है संयम रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके लिए भी कहीं ना कहीं मुझे जो है धन लाभ की स्थिति दिख रही है, क्योंकि शुक्र इनके परिवार के कुटुंब के स्थान से जो है वो गोचर कर रहे हैं, और जिस वजह से कहीं ना कहीं वो गोचर करके वहां बैठ ही गए हैं। मैं कहूंगी कि बहुत जल्दी जो है वो वक्री भी होने वाले हैं, तो इनको धन लाभ की स्थिति निश्चित रूप से रह सकती है। कन्या राशि वालों की बात करें तो अध्यात्म में जो है इनका ध्यान ज्यादा लगेगा, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य और केतु है, तो कहीं ना कहीं मोक्ष प्राप्ति या कहते हैं ना कि लिबरेशन, मेंटल लिबरेशन का भी टाइम होता है कि यू फील मोर डिटैच और अपनी जो समस्याओं से है ऊपर उठकर आप आगे जा सकेंगे। मैं कहूंगी कि शिव पूजन जरूर करें। तुला राशि के जातकों की बात कर लें तो देखें इनके लिए भी कहीं ना कहीं धन लाभ की स्थिति है, बाहर घूमने जा सकते हैं, घूमने के जो योग हैं और उससे जो ट्रैवल है उससे इनको फायदा हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज इनको मिल सके, इस प्रकार के रोग तुला राशि वालों के लिए जो है बने हुए हैं। बात कर ले हम यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों की, तो देखिए वृश्चिक राशि के जो है 10वें भाव में सूर्य केतु गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग से थोड़ा सा कार्यस्थल पे वहां बना के चलें, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलें। अगर आज के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो ये उनके लिए जो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, डेफिमेशन है, उससे उनको थोड़ी सी दूरी दिला सकता है। मन साफ करके चले ये वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। दे विल हैव टू लेट गो अ लॉट ऑफ थिंग्स। बात करें यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए, तो इनके लिए भी जो है धन लाभ के रोग हैं, कहीं ना योग बने हुए हैं, कहीं ना कहीं स्थितियां जो है इन्हीं के अनुकूल हो रही है। कितना भी जो सिचुएशन खराब हो कहीं ना कहीं वो इस तरह से फिट बैठ जा रही है कि इनको जो है लाभ करा रही है, मान सम्मान में वृद्धि और धन से जुड़े भी जो है अवसर बेहतर होते हुए इनके लिए दिखाई देते हैं। अब बात करें हम अगर मकर राशि वालों के लिए, तो देखें इनको अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन से ये अलग होते हैं, हो सकता है कोई इनका ट्रिप प्लान होने वाला हो या कहीं ये रोज जा रहे हो वहां से वो कैंसिल हो जाए, तो कुछ कैंसिलेशंस आर ऑन द वे, बट ओवरऑल इट इज अ गुड टाइम, हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इन लोगों के लिए भी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति से बाहर अगर ट्रैवल करेंगे, स्पेशली अगर मंदिर अगर हुआ है, एक स्पिरिचुअल ट्रैवल वो ले लें, तो वो इनके लिए जो है काफी फलदायी रह सकता है। अगर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, इनको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है, किसी भी प्रकार के मानसिक अवसाद या अलगाव से इनको थोड़ा सा बचने की जरूरत रहेगी। और पार्टनरशिप में, खास तौर पे मैरिटल पार्टनरशिप में जो है वहां से थोड़ा सा अपने पार्टनर की सेहत पे ध्यान दें और किसी भी प्रकार के अलगाव से जो है वो थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। और अगर हम बात कर लें अब आखिरी राशि जो है मीन राशि के लिए, तो इनके लिए भी निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं ट्रैवल्स के योग है, फाइनेंशियल जो प्रोस्पेरिटी है उसके कई योग है और ट्रैवल के योग है। मोर और लेस अगर इनकी जो सेहत की स्थिति जो है या परिवार में किसी की सेहत की जो स्थिति है अगर वो खराब है, तो उसके लिए मैं कहूंगी कि ये जरूर शिव पूजन करें, शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, अज्ञात शत्रुओं से थोड़ा सा बच के चलेंगे, अधिकारी वर्ग से बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैवल से इनको गेन्स होते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह के जो है ग्रह बने हुए हैं।
0: बिल्कुल। चलिए राजमिश्रा जी, आपके पास आते हुए कुछ सरल सा उपाय बताते चलिए, वो लोग जो कि आज के दिन पूजा नहीं कर पाए, शिवालय में ना जा पाए, क्या कर सकते हैं उपाय?
4: बहुत सुंदर है। अगर आज के दिन शिवालय में नहीं जा पाए हैं और क्या करना चाहिए, मैंने बार बार इस शब्द को कहा है और मैं दोबारा इस शब्द को कहना चाहूंगा, भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, श्री रामचरित मानस बहुत स्पष्ट कहता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने बार बार ये शब्द कहा है कि आप जो भी अपने मन से जो स्मरण करते हैं परमात्मा उसको स्वीकार करते हैं। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि कर से कर्म करो विदिनाना मन राखो जा कृपा निदाना, आप कुछ भी करें आपका मन परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं कि अपने घर में बैठ जाइए, अपने मन को एकाग्र कीजिए और मन से ये विचार कीजिए कि मैं भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूं, भगवान शंकर के सुंदर नाम का स्मरण, सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का यदि आप स्मरण कर लेंगे तो जो फल आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में प्राप्त होगा। मैं दोबारा दोबारा भगवान की उस नवधा भक्ति का वर्णन करूं जिसको भक्त प्रहलाद ने कहा था, श्रवणम कृष्णम स्मरणम पाद सेवनम। भगवान शंकर के बारे में श्रवण करना, किसी देवता का दर्शन करना, किसी देवता का स्मरण करना पूजा का फल प्रदान करने वाला होता है। अगर घर में मंदिर है भगवान की आराधना करें, नहीं है तो मैं दोबारा कहूंगा कि ऐसे चैनल खास करके जीएनटी की बात करूंगा जहां पर घर में बैठे बैठे आप द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं और यहीं से बैठ करके भगवान को अगर प्रणाम करते हैं हृदय से, तो क्योंकि मन से ही हम सब चीजों को प्राप्त करते हैं तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे और जीवन बेहतर होगा। जी
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। शिव सावन और सूर्य जिसको लेकर चर्चा कर रहे थे, यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: सावन के मंगलवार भी बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं। सावन के मंगलवार का क्या माता गौरी के साथ कोई संबंध है? क्या है सावन के मंगलवार का पूजा विधान और सावन के मंगलवार को मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: हमारी जिम्मेदारी है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चले बात करते हैं शिवभक्ति के रंगों की, जो बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल तक नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं, तो वहीं आसनसोल से बाल कांवड़ियों का एक दल देवघर के बैद्यनाथ धाम के लिए भगवान शिव का जय घोष करते हुए रवाना हुआ।

0: देश के अलग अलग हिस्सों में सावन मास की दिव्य छटा छाई हुई है। कहीं कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है तो कहीं बाल कांवड़ियों की टोली लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पहले बिहार के मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें देखिए, जहां बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए शिव भक्तों का हुजूम बाबा गरीबनाथ धाम पहुंच रहा है। यहां पूरे सावन मास शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। विशेषकर इस मास के सोमवार के महत्व और मान्यताओं को लेकर इस दिन कांवड़ियों की भीड़ उमड़ती है। सावन के तीसरे सोमवार को लेकर यहाँ बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करने पहुँच रहे कांवड़ियों का फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा है।
1: मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ में जल चढ़ाने वाले कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है और सैकड़ों सेवा दल सेवा शिविर लगाए हुए हैं। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है, आप देख सकते हैं कांवड़िया श्रद्धालुओं पर पुष्प की वर्षा की जा रही है, तो उनके नाक में चाय पानी की व्यवस्था है,
2: ठंडा पानी गर्म पानी चाय दूध फल की व्यवस्था की गई है। पूरी व्यवस्था 17 साल से हो रहा है,
1: पुष्प वर्षा की जा रही है।
2: सम्राट चौधरी जी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, पहली बार मुजफ्फरपुर में गिरिराज सिंह फैंस क्लब द्वारा पुष्प वर्षा किया जा रहा है।
1: क्या सेवा हो रहा है?
3: न्यूरोथेरेपी सेवा हो रहा है, भारतीय वैदिक चिकित्सा का न्यूरोथेरेपी सेवा चल रहा है, बिना दवा बिना मशीन के वैदिक चिकित्सा से तुरंत आराम।
0: भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने पहुंच रहे कांवड़ियों के लिए यहां सेवा शिविर भी लगे हुए हैं, जहां उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल के आसनसोल की ये तस्वीरें देखिए, जहां बोल बम का जय घोष करते हुए आगे बढ़ते बाल कांवड़िये आकर्षण का केंद्र बने। आसनसोल के कुलटेत स्थित सिद्धेश्वरी मंदिर से बाल कांवड़ियों का दल झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। 301 बाल कांवड़ियों के इस दल के साथ उनके माता पिता समेत बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में मौजूद थे। बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होने से पहले बच्चों ने सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ भगवान शिव को जल भी अर्पित किया। बाल कांवड़ियों के देवघर रवाना होने के दौरान पूरा मंदिर परिसर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा।
4: उस घाट से कांवड़ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि सिद्धेश्वर नाथ मंदिर जाकर बाबा के चरणों में जल अर्पण कर शेष होगी। बाबा ने बुलाया है, इसीलिए बाल कांवड़िया आए हैं।
0: सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से बच्चों को जोड़े रखने के उद्देश्य से इस यात्रा का आयोजन किया गया। बाल कांवड़ियों के इस दल को डमरू वादन के साथ रविवार को बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए देवघर रवाना किया गया। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा और आसनसोल से अनिल गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: महाराष्ट्र में भी भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा। पूर्णा नदी से जल भरकर कांवड़िये बम भोले के जय घोष करते हुए अकोला पहुंच रहे हैं। यहां कांवड़ लेकर भक्त भगवान राजराजेश्वर को जल अर्पित कर रहे हैं।

0: महाराष्ट्र में कांवड़ यात्रा की दिव्य छटा बिखर रही है। श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद जल भरकर भगवान भोले शंकर को अर्पित करने पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में सावन मास का पहला सोमवार होने के चलते भगवान शिव के जलाभिषेक का बड़ा महत्व माना जाता है। इससे मनोकामना पूर्ति और शुभ फलों की प्राप्ति की मान्यता है। ये तस्वीरें अकोला से लगभग 20 किलोमीटर दूर गांधी ग्राम स्थित पूर्णा नदी के महाकाल घाट की है, जहां सावन मास के प्रथम सोमवार के पहले शिव भक्त जल भरने पहुंचे और फिर कांवड़ लेकर भगवान शिव का जयकारा लगाते और भक्ति भाव में झूमते हुए अकोला के राजराजेश्वर मंदिर के लिए निकल पड़े।
1: यहाँ से कांवड़ गांधी ग्राम से कापसी में अपने सूफीनाथ महाराज पे 15 साल से कांवड़ ले जा रहे हैं। 21 कलशिया है, यहाँ से ले जाकर हम वहाँ पर पिंडी पे अर्पण कर
0: अपनी पूरी तैयारी करने के साथ जल भरकर कांवड़िए रात के समय अकोला के लिए निकल पड़े। भगवान राजराजेश्वर के प्राचीन शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए इन शिव भक्तों ने कांवड़ के साथ 20 किलोमीटर की लंबी यात्रा की। लगभग 80 साल पुरानी परंपरा के तहत पूर्णा नदी के महाकाल घाट पर जल भरने के लिए रविवार को शिव भक्तों का तांता लगा रहा।
2: जो है सावन का पहला सोमवार है और अकोला में जो अकोला की वैभवशाली रही कांवड़ यात्रा पहले दिन से ही जो है वो कांवड़धारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कांवड़ भरकर जो है रात भरे का लगभग 20 किलोमीटर का जो प्रवास है वो कर अकोला के जो आराध्य है राजराजेश्वर शिवलिंग मंदिर को जो है सवेरे जल अर्पित करने की ये परंपरा लगभग 80 साल से निरंतर यहाँ पर चल रही है और 7 सितंबर को जो है वो सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा जो अकोला का वैभव है और देश और दुनिया में सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा का आयोजन यहाँ पर होता है।
0: पूर्णा नदी से जल भरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी दिखी। घाट से जल भरने को लेकर लाइट समेत हर तरह की व्यवस्था भी विशेष रूप से की गई थी। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और दक्षिण भारत में अमान पंचांग के अनुसार सावन का मास 13 अगस्त से शुरू हुआ। उस हिसाब से 17 अगस्त को भगवान शिव के इस प्रिय महीने का पहला सोमवार है और इसी को लेकर मंदिरों में भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करने के लिए शिव भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। अकोला से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: क्या सावन के मंगलवार भी बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं? सावन के मंगलवार का क्या माता गौरी के साथ कोई संबंध है? क्या है सावन के मंगलवार का पूजा विधान? और सावन के मंगलवार को मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। देखिए सावन का आज तीसरा सोमवार है, साथ ही साथ नाग पंचमी की आस्था भी अपार है, तो देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव गूंज रहा है। महादेव की भक्ति और नाग देवता की आस्था के अद्भुत संगम की तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, साथ ही साल भर में नाग पंचमी पर एक बार खोले जाने वाले नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन भी आपको करवाएंगे।
8: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता छादे। के बाद हम रणबीर कपूर स्टार फिल्म रामायण की भी करेंगे। 4000 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनाई जा रही ये फिल्म इस साल 6 नवंबर को सिनेमाघरों में आ रही है, तो आखिर मेकर्स का फिल्म की दीपावली पर बम्पर ओपनिंग को लेकर क्या है खास प्लान, और किस फिल्म से रामायण को मिलेगी ग्लोबली टक्कर, इसकी इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे।
2: नमस्कार, मैं श्री गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। देखिए जिस उमस ने पसीना पसीना किया हुआ है, उस उमस को गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। भले ही कई राज्यों में सूखी हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन मॉनसून की पिक्चर अभी बाकी है, तो आने वाले दिनों में उत्तर भारत समेत बाकी देश में मॉनसून का हाल कैसा रहने वाला है, इसकी तफसील से जानकारी आपको देंगे।
8: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। कैसे एक शख्स ने चैट जीपीटी की मदद से खोज निकाली खोई हुई चप्पल, और कैसे बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने रास्ते के गड्ढों की समस्या का गजब सा एआई सॉल्यूशन दिया है, ये सब कुछ आपको बारी बारी बताएंगे, साथ ही कई ऐसी गुड न्यूज भी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की कतार, सोमनाथ में निकली बाबा की पालकी यात्रा, मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन। नागपंचमी के पावन दिन उज्जैन में आस्था का मेला, नाग चंद्रेश्वर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना, सिर्फ नागपंचमी पर खुलते हैं कपाट। नागपंचमी पर काशी के अखाड़ों में उतरे विदेशी पहलवान, धूमधाम से निभाई गई सैकड़ों साल पुरानी कुश्ती की परंपरा, अगले 2 से 3 महीने चलता है दंगल। राजस्थान के धौलपुर में पर्यावरण संरक्षण के संदेश वाली कांवड़ यात्रा, 11,000 पौधे लेकर निकले स्कूली बच्चे, 5,100 छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीण भी शामिल। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार चेन्नई में। सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
8: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और बात आज देखिए, दो दो खास दिन है। एक तो सावन का तीसरा सोमवार है और साथ ही साथ नागपंचमी भी है। और जैसा कि हमारे यहाँ देखिए इतनी पौराणिक कथाएं प्रचलित है, मुझे तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगती है और रहस्यमय एक तरह से लगती है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर जो उज्जैन में है, जहां महाकाल के दर्शन भी करने आप जाते हैं, वहां पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है और साल के एक ही दिन 24 घंटे के लिए कपाट खुलते हैं और पूजा पाठ होती है। अद्भुत है ना?
11: नहीं बिल्कुल अपने आप में, क्योंकि देखिए लोग भी इंतजार करते हैं कि कब वो एक दिन के लिए खुलेगा, कब हम लोग दर्शन करेंगे, और बहुत भीड़ भी रहती है वहां पर,
8: बहुत ज्यादा।
12: पहले से ही आज की ही तस्वीरें अभी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से कल रात से ही लोगों की लंबी कतारें वहां पर लग गई थी दर्शन करने के लिए, तो पहुंचते हैं बड़ी संख्या में।
13: मुझे पढ़ा भी है और कई लोगों का जिनका काल सर्प दोष है उसका भी निवारण करने के लिए आई थिंक बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं लोग। और चलिए आज सावन का चूंकि तीसरा सोमवार है और भोलेनाथ की कृपा पाने का भी दिन है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए एक तरफ आप देख सकते हैं शिवमय हो चले हैं तमाम शिवालय। सुबह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का भी आज से आगाज हो गया है। यहां पर भी भारी भीड़ है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तीसरी तस्वीर नागपंचमी का आज पावन मौका है, उस मौके पर भी किस तरह से तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं वो भी तस्वीरें आपके सामने। उज्जैन के महाकाल मंदिर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट आज विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं और आज से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी और हर कोई नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस करने लगा।

0: देश भर में हर छोटा बड़ा शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है, जहां आज उत्तर भारत समेत कुछ राज्यों में सावन के तीसरे सोमवार पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ा हुआ है। तो वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में 13 अगस्त से आरंभ हुए सावन का आज पहला सोमवार है। ऐसे में सबसे पहले उन शिवलिंग के दर्शन आपको कराते हैं जिन पर प्रकृति ही आस्था का जल अर्पित करती आ रही है। अरब सागर किनारे जहां समंदर की लहरें ही चट्टानों से टकराकर भोले बाबा का जलाभिषेक करती है, ये है गंगेश्वर महादेव मंदिर।
1: और सावन मास में पूरी सभी लोग यहाँ पे आते और गंगेश्वर मंदिर की आस्था का आशीर्वाद लेते हैं।
2: इनकी एक विशेषता ये है कि सब शिवलिंग पे हमें पानी चढ़ाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुदरती खुद पानी चढ़ाती है शिव भगवान पे।
3: जो भी भक्तजन है, दूर है, पास में है, यहाँ पे एक बार आके आपको दर्शन जरूर करना चाहिए और महाकाल की और भगवान शिव शंकर की, भोले शंकर की, सभी के ऊपर कृपा बनी रहे।
0: यहाँ विराजमान 5 शिवलिंग को लेकर कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ आए, उन्होंने ही भगवान शिव की आराधना कर ये 5 शिवलिंग स्थापित किए जो 5 के कद के हिसाब से बनाए गए। इसी मंदिर के बराबर में है पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर। आस्था की बयार आज सुबह से यहाँ खूब बह रही है। पूरा मंदिर परिसर ही हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गूंज रहा है।
4: श्रावण मास के प्रथम सोमवार पे देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के दर्शन कर आज धन्य धन्य हो गए हम।
5: मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ सोमनाथ जी में, और मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मेरे सावन के सोमवार को ही जाना है, और भोले बाबा ने मेरी सुन ली। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा वेदर है, आई एम ब्लेस्ड टू हियर।
0: वहीं मुंबई के श्री बाबुलनाथ मंदिर में भी श्रावण मास के दौरान श्रद्धालु सुबह से ही भोले बाबा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। उज्जैन में महाकाल का दरबार हमेशा से ही आस्था और भक्ति की बयार से महकता रहा है। ऐसे में सावन की तीसरी सोमवारी पर तड़के 2:30 बजे मंदिर के कपाट खुले, भोलेनाथ को हरिओम जल चढ़ाकर भस्म आरती हुई, फिर दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से पंचामृत अभिषेक हुआ। इसके बाद भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार भी हुआ। महाकाल के इसी अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालु आज मंदिर पहुँचे। संगम नगरी प्रयागराज में भी आज सावन के तीसरे सोमवार पर नाग वासुकी मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा नजर आया। उधर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी आज सावन के तीसरे सोमवार पर आम शिव भक्त हो या कांवड़िए, आवाजाही लगी ही रही। यहां भी मंगला आरती के बाद से ही बाबा के दर्शन दिन भर होते रहे। सावन के तीसरे सोमवार पर श्रद्धा के सैलाब की ये तस्वीर बिहार के रोहतास से है, जहां सासाराम के एक आश्रम में बने सोमनाथ मंदिर में स्थापित 2.5 फीट से ऊंची स्फटिक शिवलिंग की आज विशेष पूजा अर्चना हुई। यहां भी श्रद्धालुओं ने भोले बाबा से अपने मनोरथ पूरी होने की कामना की। आज तीसरी सोमवारी और पंचमी के संयोग पर मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ धाम में भी अपार श्रद्धा उमड़ी। इस दिन बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक के साथ धान के लावा चढ़ाने की भी विशेष परंपरा है। कहते हैं कि भोले बाबा सावन के पूरे महीने हरिद्वार में अपनी ससुराल कनखल स्थित दक्षेश्वर प्रजापति में ही निवास करते हैं। ऐसे में ये जगह श्रद्धालुओं के लिए बेहद पावन रही है। आज सावन के तीसरे सोमवार पर दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर समेत कई दूसरे शिवालयों में भी खूब श्रद्धा उमड़ी। सावन के पावन मास में भोले बाबा का आह्वान हो रहा है। ऐसे में दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर भी शिव के जयकारों से गूंज रहा है। आज तीसरे सोमवार और पंचमी के संयोग में भोले बाबा की यहां भी पूजा अर्चना हुई। इसके साथ ही गुवाहाटी के सुक्रेश्वर मंदिर समेत देश के कई और शिवालयों में आज श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ पूजा अर्चना की और उनसे शुभाशीष लिया। सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, प्रयागराज से आनंद राज पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल, रोहतास से रंजन कुमार, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: तो अद्भुत संयोग है, देखिए सावन का सोमवार है और उसी दिन नागपंचमी, तो फिर आस्था का रंग कितना गहरा होगा इसका अंदाजा आप उज्जैन से आई इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। महाकाल की नगरी में रविवार रात से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा और हजारों श्रद्धालु उस मंदिर के बाहर कतार में खड़े रहे जिसके कपाट साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं। बातम कर रहे हैं भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर की, रात 12 बजे जैसे ही मंदिर के कपाट खुले विधि विधान से पूजा और आरती शुरू हो गई।
7: और देखिए महाकाल मंदिर के शिखर पर बने नागचंद्रेश्वर मंदिर की खासियत ही इसे बेहद खास बनाती है क्योंकि इसके कपाट पूरे साल बंद रहते हैं और नाग पंचमी पर सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलते हैं। मान्यता ये है कि यहाँ दर्शन करने से काल सर्प दोष समेत कई दोषों से मुक्ति मिलती है। इस आस्था के चलते रविवार रात 9 बजे से ही भक्त लाइन में लगना शुरू हो गए थे। भक्तों की इसी भीड़ में भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव भी बाबा महाकाल के दर्शन के साथ नाग चंद्रेश्वर मंदिर के में पहुंचे, दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे।
8: कहते ना कि कम मंदिर हैं जहां पे ऐसे मंदिर है जिनका गेट साल में एक बार खुलता है और मुझे लगता है वो एक नागचंद्रेश्वर है। तो मुझे लगता है इसकी वजह से सारे श्रद्धालु चाहते हैं कि उनको दर्शन करने का मौका मिले और हम भी यही चाहेंगे, पर भोले बाबा भी चाहते हैं सबके दर्शन हो, सब अच्छे से दर्शन करें और हंसी खुशी अपने जीवन व्यतीत करें।
9: हम भगवान महाकाल के इस दिव्य मंदिर में उज्जैन में बहुत ही अद्भुत स्थान है। भगवान महाकालेश्वर का जो मंदिर है उसके तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं। परंपरानुगत तरीके से पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा महंत जो है नियुक्त होते हैं वो उसकी पट खोलते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो उसी परंपरा का हम सब लोगों ने पालन करते हुए भगवान नागचंद्रेश्वर के मंदिर के पट खोले और भगवान का षोडशोपचार पद्धति का ये जो पूजन पद्धति है उसके अनुसार पूजन करके और त्रिकाल पूजाओं में प्रथम पूजा करके और सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं।
10: तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां इन दिनों शिव भक्ति का अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। आज से शुरू हुई ये पवित्र यात्रा पूरे 12 दिनों तक चलेगी, यानी कि अगले 12 दिन भोलेनाथ के जयकारों और आस्था के रंग में रंगे नजर आएंगे और रक्षाबंधन के पावन दिन इस यात्रा का समापन होगा।
6: बिल्कुल, लेकिन बूढ़ा अमरनाथ की ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था विश्वास और भक्ति का वो सफर है जिसमें हर कदम के साथ महादेव का नाम है और देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्तों के लिए ये यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं। रास्ते मुश्किल हैं लेकिन भोलेनाथ की भक्ति में ये मुश्किलें भी आसान लगती हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं बूढ़ा अमरनाथ में शिव भक्ति के अनूठे रंग।
11: जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्थित हिमालय तीर्थ स्थल बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को इस यात्रा समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने यात्रा के महत्व पर अपने विचार भी रखे।
12: केवल पर्वतों और घाटियों को पास करने वाली यात्रा नहीं है, ये हमारे बाहरी पथ से कहीं अधिक हम सबके अंतर्मन की यात्रा है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये तीर्थ यात्रा स्वयं के भीतर स्थित चेतना को पहचानने की भी यात्रा है। यह पावन तीर्थ यात्रा भगवान शिव की ओर अग्रसर होने की भी यात्रा है जो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थल की दिव्य ऊंचाइयों में विद्यमान है।
11: 12 दिनों तक चलने वाली बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। बाबा बूढ़ा अमरनाथ छड़ी यात्रा से पहले पुंछ जिले में स्थित नवग्रह मंदिर से दिव्य त्रिशूल यात्रा भी निकाली गई। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच त्रिशूल की पूजा की गई। पूजा अर्चना के बाद गाड़ियों के काफिले के साथ त्रिशूल यात्रा शुरू हुई। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष करते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस त्रिशूल यात्रा में शामिल हुए।
13: जो त्रिशूल यात्रा है आपको पता है हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब यहाँ आती है उससे एक दिन पहले ये जो त्रिशूल यात्रा है ये नवग्रह मंदिर अजोट जो कि देरिया में है वहां से निकलती है और यात्रा ग्राउंड तक पहुंचती है। आपने देखा होगा भोले का जो त्रिशूल है ये एक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो हमारे पुंछ के वासी हैं खास करके बिना मजहब मिलत हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पहुँचता है और ये खास करके एक तरह से आयोजन होता है बाबा बूढ़ा अमरनाथ से पहले कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आ रही है जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए सारे पुंछ वासियों को जिस तरह से वो वेलकम करने के लिए हर बार यात्रियों को यहाँ पहुँचते हैं।
11: पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ गुफा के समान ही आस्था का प्रमुख केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और चलिए अब बात उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों को है। हम बात कर रहे हैं नमित मल्होत्रा की रामायण की। दो पार्ट्स में बन रही इस फिल्म का बजट है 4,000 करोड़ रुपए, यानी फिल्म का पैमाना जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी इसकी प्लानिंग भी है। अब मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान किया है और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी कहानी, क्योंकि रामायण 6 नवंबर को इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज होगी जबकि भारत में दिवाली पर दस्तक देगी।
10: बिल्कुल, अब सवाल ये है कि आखिर दिवाली के आसपास रिलीज करने की इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी क्यों बनाई गई है, क्योंकि दिवाली यानी कि छुट्टियां, परिवार और सिनेमा घरों तक पहुंचने वाला बड़ा दर्शक वर्ग, ऐसे में रामायण जैसी फिल्म के लिए ये टाइमिंग कमाई का बड़ा मौका बन सकता है और मेकर्स सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को भी ध्यान में रखकर चल रहे हैं।

0: भारतीय सिनेमा के सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट में से एक रामायण, जिसने रिलीज से अरसे पहले ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, आम जन से लेकर खास तक, समाज के हर तबके, हर वर्ग तक रामायण पहुंच पाए, इसके लिए मेकर्स एक खास प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं।
1: जब जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की।
0: मेकर्स की प्लानिंग का एक ही अहम हिस्सा है फिल्म के रिलीज डेट। रामायण पार्ट 1 दीपावली पर रिलीज होनी है, ये तय है, लेकिन किस तारीख को रिलीज होगी ये अब तक पुख्ता तौर पर तय नहीं था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में रामायण की रिलीज डेट 30 अक्टूबर बताई जा रही थी, लेकिन कन्फर्म कुछ भी नहीं था।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार।
0: अब रामायण के मेकर्स ने काफी सोच समझ कर रामायण की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है।
2: निर्णय मैं ले चुका हूं, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
3: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास।
0: 6 नवंबर यानी दिवाली से 2 दिन पहले रामायण पार्ट 1 वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। इससे मेकर्स को 2 हफ्ते का दमदार रिलीज पैसेज मिलने जा रहा है। इसे जानने के लिए इस तारीख की क्रोनोलॉजी समझनी होगी।
3: एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।
0: 6 नवंबर को शुक्रवार है और इसी दिन धनतेरस भी है। 7 नवंबर को शनिवार है यानी वीकेंड, छुट्टी का दिन होने से इसे भरपूर दर्शक भी मिलेंगे। 8 नवंबर को रविवार है और दीपावली भी है, जिसका फायदा फिल्म को फैमिली ऑडियंस के तौर पर मिल सकता है। 9 नवंबर को सोमवार है। 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, कई दफ्तरों में उस दिन छुट्टी होती है। और 11 नवंबर यानी बुधवार को भाई दूज का त्योहार है। 13 नवंबर यानी शुक्रवार से दूसरे हफ्ते से वीकेंड शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि रामायण को न सिर्फ बम्पर ओपनिंग मिल पाएगी बल्कि 2 दमदार वीकेंड भी। यानी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए अच्छा खासा वक्त मिलने जा रहा है।
3: सूट न खाओ, वो मोहित हो गई है आप पे।
4: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूर्पणखा।
0: हालांकि ओवरसीज में रामायण की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। 5 नवंबर हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो रिलीज होगी, मतलब 6 नवंबर को इसका सामना रामायण से होगा। गॉडजिला एक पॉपुलर फ्रेंचाइज है, इसलिए रामायण को क्लैश झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत में रामायण को एक छत्र राज मिल सकेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: बात मौसम की, क्योंकि बहुत दिनों से उमस और चिपचिपे मौसम ने दिल्ली और एनसीआर से लेकर पंजाब हरियाणा तक के लोगों को परेशान कर रखा है। हाल यह है कि घर से बाहर निकलते ही पसीना और बेचैनी दोनों महसूस होते हैं। लेकिन अब इस उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से अब सूखी हवाओं ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और इन हवाओं के असर से मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों में बदलता नजर आ सकता है।
6: यानी जिस चिपचिपे मौसम से आप अभी तक परेशान थे उससे फिलहाल थोड़ी राहत मिलने वाली है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में मौसम के सूखा होने का अनुमान है। सूखी हवाओं के पहुंचने से नमी में कमी आएगी और उमस भी कुछ कम महसूस हो सकती है।

कहते हैं हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी मौसम की ताल पर थिरकती है। मानसून पूरे देश को जी भर कर भिगो रहा है, तो वहीं जैसे जैसे अगस्त गुजर रहा है, बरसते बादल बारिश की भरपाई भी कर रहे हैं। खबर ये है कि बादलों की आवाजाही के बीच मौसम फिर से चाल बदलने वाला है। बारिश के बाद जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, अब उस

0: क्रिसमस के विदाई की गुड न्यूज आने वाली है। हवा की बदली चाल के बीच उम्मीद तो यही है कि अगले दो दिन दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा के लोगों को उमस से कुछ राहत मिल सकती है। उमस से राहत का ये सीन यूं ही नहीं बना है। हाल फिलहाल हवाओं ने रुख बदला है और उत्तर पश्चिम से आ रही सूखी हवाओं ने नमी को कम कर दिया है। लिहाजा और जैसे जैसे नमी घट रही है, वैसे वैसे चिपचिपी गर्मी का असर भी कम हो रहा है। मौसम में इस बदलाव के पीछे मानसून ट्रफ भी एक वजह बताई जा रही है। मानसून ट्रफ अब हिमालय की तलहटी की तरफ खिसक गया है और इसी के साथ बारिश का पैटर्न भी बदल गया है। फिलहाल मानसून की मेहरबानी पूर्वी और मध्य भारत पर ज्यादा है, जबकि दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में आसमान अपेक्षाकृत साफ है। एक दिन पहले की सैटेलाइट तस्वीरें भी मौसम का बदला रुख बयां कर रही है। पूर्वी यूपी से बिहार और बंगाल की खाड़ी तक मानसूनी बादलों की आवाजाही है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में बादलों की मौजूदगी कम है। आज की बात करें तो दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा में बारिश के आसार कम है। हालांकि कुछ इलाकों में शाम के वक्त हल्की फुल्की और छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन बादलों का खेल अभी थमा रही है क्योंकि मानसून कब करवट ले ले कहा नहीं जा सकता। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 20 अगस्त के बीच बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके असर से मानसून ट्रफ दोबारा दक्षिण की ओर खिसक सकता है और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर फिर लौट सकता है। फिलहाल अभी के लिए खबर इतनी है कि जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, उस उमस के गुजरने का दौर शुरू हो चुका है। सूखी हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी वजह से मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। लेकिन मानसून ने अभी मैदान छोड़ा नहीं है, उसकी अगली करवट जल्द फिर से बारिश की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: राजस्थान में मॉनसून की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लगता नजर आ रहा है, यानी बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को अभी थोड़ी और उमस झेलनी पड़ सकती है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में मॉनसून की गतिविधियां कमजोर पड़ सकती हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश पूरी तरह थम जाएगी।
2: बिल्कुल, आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन मॉनसून की चाल थोड़ी धीमी रह सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि यह सुस्ती कितने दिन रहेगी और क्या राजस्थान में फिर से मॉनसून जोर पकड़ेगा, बता रही हैं हमारी सहयोगी रिदम जार।
3: ये मॉनसून सरप्राइजेस से भरा जा रहा है, जहां देखने को मिल रहा है कभी बारिश तो कभी बिल्कुल सूखी जमीन। आसमान में उम्मीदें ऐसी जगी हुई हैं जैसे बारिश होगी, पर राजस्थान का हाल कुछ ऐसा है कि पिछले 24 घंटों में आसमान में बादल नजर आ रहे हैं, पर बारिश का कोई आसार नहीं है और ना ही कोई ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 18 अगस्त से जो मॉनसून है वो एक बार फिर एक्टिव होगा, बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ेंगी और वो अगले 3 से 4 दिन तक उसी तरीके से बारिश का सिलसिला जो है वो पश्चिमी राजस्थान में कम और पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ऐसे में 8 जिलों में 18 तारीख से येलो अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। पर ऐसे में क्या हो गया है कि मॉनसून ने हाल कुछ ऐसा किया है कि उमस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ह्यूमिडिटी की वजह से जयपुर वासी समय पे परेशान होते नज़र आ रहे हैं। टेम्परेचर्स में खासा फर्क अभी नहीं देखा गया है क्योंकि ये टेम्परेचर्स मिनिमम जहाँ 25 से 26 है वहीं मैक्सिमम 32 से 33 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर्स हैं ये चल रहे हैं। आसमान एक बार फिर मैं दिखाऊंगी किस तरीके से काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का यही कहना है कि इसी तरीके से अगले 24 घंटों में भी बादल छाए रहेंगे, पर बारिश का कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। कुछ जगह फिर भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। ऐसे में पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो करौली में दर्ज की गई, जो कि करीब करीब 49 mm बारिश है। ये सर्वाधिक बारिश जो है वो राजस्थान में दर्ज की गई है। इससे कम छुटपुट बारिश जो है वो अलग अलग जिलों में अभी देखी जा रही है, पर कोई खास अलर्ट अब तक जारी नहीं किया गया है। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, कुंडली स्टूडियो, जयपुर।
4: चलिए आपको कराते हैं पश्चिम भारत के कश्मीर की सर। कश्मीर को धरती की जन्नत कहा जाता है, लेकिन अपने देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पहुंचकर आपको बिल्कुल कश्मीर जैसा ही एहसास होगा। आज आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की ऐसी ही एक हिल स्टेशन चिखलदरा, जहां सावन के मौसम में कुदरत ने जैसे हर तरफ हरियाली की चादर बिछा दी है।
5: वहां देखिए पहाड़, बादल, हरियाली और बादल की फुहारें। चिखलदरा में सावन ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया है। यहां पहुंचने वाले सैलानियों को हर मोड़ पर कुदरत का नया रंग देखने को मिलता है। कहीं बादल पहाड़ों को छूते हैं तो कहीं झरने अपनी पूरी रफ्तार के साथ बहते हैं।
6: झरझर झरता झरना, ऊंचाई से गिरता पानी, आसमान में छाए बादल और घने कोहरे जैसे हालात के बीच दिन में ही अंधेरे जैसा माहौल। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के हिल स्टेशन चिखलदरा की हैं। सावन की झमाझम बारिश ने यहाँ मौसम का मिजाज इस कदर बदल दिया कि सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बादलों ने डेरा डाल लिया और माहौल बेहद खूबसूरत हो गया।
7: पीछे का नजारा जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो विदर्भ के अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा का जो है। इस वक्त बारिश के बाद इस जगह का माहौल इतना सुहाना और इतना सुंदर होता है कि पर्यटक जो है बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं। आप देख सकते हो कि चारों तरफ जो है ये कोहरा नहीं तो ये बादलों से जो है, बारिश के बादलों से होने वाला जो है कोहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
6: देश के कोने कोने से आए सैलानी यहाँ मौसम का मजा ले रहे हैं। पहाड़ों से गिरते झरने की मधुर आवाज के साथ ही सुहावनी ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही हैं। मौसम में बदलाव के साथ साथ 15 अगस्त के मौके पर लंबे वीकेंड के चलते चिखलदरा में हजारों पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। तमाम लोग इस शानदार माहौल का लुत्फ उठाते नजर आए।
8: बहुत मस्त, इतना अच्छा वेदर है बारिश में। यहाँ हमेशा गर्मी रहती है लेकिन चिखलदरा आके नहीं लगता कि यहाँ गर्मी रहती होगी। बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे मानो कश्मीर है। बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ।
9: कोहरा तो बहुत दिखाई जा रहे हैं भाई लोग, अगर आपको आना है तो अभी आओ क्योंकि बाद में मजा नहीं आने वाला। हम इधर इसीलिए आए ताकि हम मजा लूट पाए। हम अभी अभी आए है इनके साथ ही, बहुत मजेदार है। अगर आप कश्मीर को नहीं जा पा रहे हो तब चिखलदरा एक बार जरूर विजिट करना।
6: अमरावती जिले का चिखलदरा समुद्र तल से करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा विदर्भ का खूबसूरत हिल स्टेशन है। आमतौर पर विदर्भ में काफी गर्मी पड़ती है लेकिन सावन की बारिश ने इन दिनों यहाँ की सूरत ही बदल दी है और इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं।
10: सर हम मध्य प्रदेश पांडुना जिला छिंदवाड़ा। सर
7: कैसा मौसम है यहाँ का?
10: बहुत बढ़िया वेदर है सर यहाँ का, बहुत सुहाना मौसम है सर।
6: चिखलदरा में पहाड़ियाँ हैं, हरियाली है, झरना है, तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी मस्ती देखते ही बन रही है। साथ ही साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ शानदार इंतजाम किए गए हैं।

0: यानी सैलानियों के लिए छुट्टियां बिताने का फुल बंदोबस्त, और यही कारण है कि यहां पर भारी तादाद में सैलानी उमड़ते हैं। इसके कारण यहां टूरिज्म के कारोबार में पंख लग गए हैं। पर्यटकों की भीड़ से स्थानीय कारोबारियों के काम में तेजी आ गई है।
1: यहां पर ठंडी के बचने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या खाते हैं लोग?
2: ज्यादा रबड़ी और कलाकंद चलता है।
1: रबड़ी और कलाकंद अच्छा बिक रहा है?
2: हाँ अच्छा।
0: पिछले वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी खास व्यवस्था की थी, ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही सैलानियों से भी नियमों का पालन और एहतियात बरतने की अपील की गई है।
3: बहुत ही बढ़िया मौसम हुआ है, लेकिन आते वक्त सबने यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। शराब पीकर या फिर बिना हेलमेट के कोई भी ड्राइव नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसी के साथ ही ऊपर आने के बाद सारे लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं, तो अपनी वजह से किसी और को परेशानी हो ऐसा बिहेवियर कोई भी नहीं रखेगा। ये हमारी अपील रहेगी। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमने ऑलरेडी हमारा चिकलदरा कंट्रोल का हेल्पलाइन नंबर पब्लिक किया है, और 112 नंबर जो है उसको भी वाइड पब्लिसिटी दी है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो।
0: चिकलदरा से धनंजय सांबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे महज 4 सेकंड में सड़क के गड्ढों का कच्चा चट्टा खोलेगा AI।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की कतार, सोमनाथ में निकली बाबा की पालकी यात्रा, मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में दर्शन पूजन। नागपंचमी के पावन दिन उज्जैन में आस्था का मेला, नागचंद्रेश्वर मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, सिर्फ नागपंचमी पर खुलते हैं कपाट। नागपंचमी पर काशी के अखाड़ों में उतरे विदेशी पहलवान, धूमधाम से निभाई गई सैकड़ों साल पुरानी कुश्ती की परंपरा, अगले 2 से 3 महीने चलता है दंगल। राजस्थान के धौलपुर में पर्यावरण संरक्षण के संदेश वाली कांवड़ यात्रा, 11,000 पौधे लेकर निकले स्कूली बच्चे, 5100 छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीण भी शामिल। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: देखिए हम में से सभी जो है ऑलमोस्ट गाड़ी चलाते हैं या फिर गाड़ी से जब भी हम सफर कर रहे होते हैं, और खास करके ये जो खबर है ना बारिश के टाइम के लिए बहुत ही सटीक है, क्योंकि बारिश में गड्ढे और गड्ढे में पानी भरा हो उसमें अगर गाड़ी चली जाए तो फिर लिटरली बहुत गुस्सा आता है, नहीं इरिटेशन कितना होता है
5: उसके। अगर आप साइड पे चल रहे हैं ना और कोई गाड़ी निकली उसके बाद
6: वो एक
2: अलग ही परेशानी है,
5: मतलब बोथ वेज है ना।
7: और कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत सी गाड़ियां फंस जाती है, इतना लंबा ट्रैफिक हो जाता है कि आपका सारा टाइम वेस्ट, आप किसी भी जगह पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमारे देश में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम,
5: स्पेशली मुंबई में मुझे याद है कि हम ये खबरें अक्सर मानसून सीजन में पढ़ा करते थे कि मानसून सीजन में मुंबई की सड़कों पर इतने गड्ढे हो गए, जिस ट्रैफिक की बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा ट्रैफिक उसी की वजह से,
7: इंसानों से ज्यादा गड्ढे नजर आते हैं।
2: और कई बार ये होता है ना कि आप मतलब जो ड्राइव भी कर रहा है आप कितने गड्ढों को बचा लेंगे, आप ये भी नहीं कर सकते, एकाद को आप किसी तरह से बचाएंगे लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा है तो उसमें अगर सड़क के बजाय गड्ढे ज्यादा हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन शगुफ्ता किसी ने बड़ा अच्छा हल ढूंढा है इसके लिए,
5: ये इंजीनियर साहब है बंगलुरु के, इनको वैसे सलाम करना चाहिए क्योंकि ऐसा सिस्टम इन्होंने यूनिक सा तैयार कर दिया है ना कि महज 4 सेकंड्स में गड्ढों की पहचान हो पाएगी और जो शख्स वहां पर मौजूद है उसके पास भी तुरंत ये जानकारी पहुंचा दी जाएगी।
8: सड़कों पर ये गड्ढे अखिल भारतीय समस्या बन चुके हैं। ये गड्ढे न केवल आपका सफर बर्बाद करते हैं बल्कि गाड़ियों को खासा नुकसान भी पहुंचाते हैं, और फिर शुरू होती है शिकायतों की एक अनंत कथा जिसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने समस्या का एक गजब का AI सॉल्यूशन खोज निकाला है। बेंगलुरु के इंजीनियर गौरव सैन ने ऐसा AI सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए न केवल गड्ढों की पहचान संभव है बल्कि इन गड्ढों की मरम्मत के जिम्मेदारों तक पहुंचना भी आसान हो गया है। दरअसल ये सिस्टम सड़क पर चलते हुए गड्ढों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करता है। कार में लगे डैश कैम, GPS और एक्सेलरेटर मीटर से सड़क की जानकारी जुटाई जाती है, जिसके बाद AI विजन मॉडल तस्वीरों और वीडियो को स्कैन करके अलग अलग आकार के गड्ढों की पहचान करता है। खास बात ये है कि सिस्टम उन गड्ढों को भी पहचान सकता है जिन्हें दूर से देखना मुश्किल हो, क्योंकि कई बार सड़क का गड्ढा स्पीड ब्रेकर जैसा दिखाई देता है। गौरव सैन ने कोडेक्स की मदद से ये ऐप तैयार किया जो इस पूरे डेटा को रिकॉर्ड करके OpenAI तक भेजता है। लेकिन कहानी सिर्फ गड्ढे की पहचान तक सीमित नहीं है, सबसे बड़ा सवाल होता है गड्ढा मिला है तो इसे ठीक कौन करेगा। इसके लिए ऐप को करीब 2,900 सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ा गया। सिस्टम सड़क के किसी खास हिस्से की पहचान करके ये पता लगा सकता है कि उस सड़क का ठेका किस कंपनी या ठेकेदार के पास है। यानी अगर कोई सड़क वारंटी पीरियड में है तो ठेकेदार को बिना सरकार पर अतिरिक्त खर्च डाले सड़क की मरम्मत करनी पड़ सकती है और ये पूरा रिकॉर्ड महज 4 सेकंड में तैयार हो सकता है, जिसमें गड्ढे की तस्वीर, उसकी सटीक लोकेशन, टेंडर नंबर और सड़क से जुड़े अधिकारी की जानकारी शामिल होती है। गौरव ने सिस्टम का टेस्ट ऑफिस जाते वक्त किया। एक सफर में एआई ने उसकी राह में मौजूद 12 गड्ढों को पहचान लिया। गौरव सैन का ये प्रयोग अब बेंगलुरु से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। लोग गौरव के इस एआई मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ यूजर उसे ऐसा ऐप बता रहे हैं जो समस्या के साथ आपको सही समाधान तक ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुल न्यूज टुडे।
9: बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चैट जीपीटी ने खोई हुई चप्पल मिला दी। दिस इज वेरी, ये सुन के आपको लगा नहीं है कैसे पॉसिबल है?
7: फनी नहीं, मतलब पहली बार भी हुआ है।
5: मेरे दिमाग में जो पहला थॉट आया वो यही आया कि जो भी चप्पल जिस शख्स की गुम हुई है उसने वो ब्रांड बता दिया होगा कि तुम्हारी चप्पल सेम यहाँ पे मिल जाएगी, दिस इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट।
7: नहीं, लेकिन चैट जीपीटी से ना, ये जैसे मैं भी, अगर आपने कोई ड्रेस देखी है तो आप उससे सर्च कर लो, आप अपनी कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, लेकिन आपकी चप्पल खो गई है वो उससे ढूंढवाना, तो ये तो पहली बार।
5: मेरी चप्पल खो गई, दीपिका ने पहन ली, दीपिका आ गई वहां पे, चैट जीपीटी में पहनी हुई है ना,
10: सीसीटीवी सीसीटीवी का भी काम कर दिया फिर तो उसने, है ना। लेकिन पता है आप लोग तो ये बात कर रहे हैं, मुझे ये ना लगता है कि थैंक गॉड, क्योंकि मंदिर में चप्पल चोरी होना ये हमने बहुत खबरें सुनी है, और वहीं पे अगर आपको चप्पल खोई भी मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी।
9: और सोचिए मंदिर में कितने लोग, कितनी दुनिया होगी, और उस बीच चैट जीपीटी ने चप्पल खोज निकाली। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी।
11: अगर आप मंदिर जाएं और आपके फुटवेयर न मिले तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार एआई ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि अब वहां से आपको अपने फुटवेयर ढूंढने में मदद जरूर मिलेगी। दरअसल शुभांग बोरकर वो शख्स है जिन्होंने एआई की मदद से ऐसा कर भी दिखाया है। ये एआई वाली ट्रिक शुभांग के खोए फुटवेयर ढूंढने में खूब मददगार साबित हुई है। शुभांग ने मिनटों में एआई की मदद से अपने जूते ढूंढ निकाले। गोवा बेस्ड शुभांग बोरकर पेशे से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है। उन्होंने दरअसल उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर से ये वीडियो शूट किया, जिसमें जहां नजर डालिए जूते चप्पल ही दिख रहे हैं। जाहिर है इन फुटवेयर में से अपने वाला पहचानना शुभांग के लिए इतना आसान टास्क नहीं था। वो एक एक करके फुटवेयर देखते तब जाकर उनको अपना फुटवेयर मिलता। लेकिन देखिए चैट जीपीटी का कमाल, जिसकी मदद से शुभांग ने फुटवेयर्स की भीड़ में अपने वाला क्लॉग्स ढूंढ ही निकाला। शुभांग ने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो का नाम यूज्ड चैट जीपीटी टू फाइंड माय लॉस्ट क्लॉग्स रखा। इसके लिए सबसे पहले मंदिर के बाहर जहां जूते चप्पल रखे थे वहां से रैक और फुटवेयर एरिया की तस्वीरें ली। इसके बाद शुभांग ने अपने फुटवेयर क्लॉग्स की तस्वीर चैट जीपीटी पर अपलोड की। शुभांग ने एआई से वो तस्वीर देखकर उनकी जोड़ी पहचानने में मदद करने और फिर फुटवेयर के बीच उनके क्लॉग्स को ढूंढने के लिए कहा। हालांकि एक तस्वीर से बात साफ नहीं हुई तो शुभांग ने फुटवेयर एरिया के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। वो एक के बाद एक तस्वीरें चैट जीपीटी को भेजते रहे, जिनमें सैकड़ों जूते चप्पल दिखाई दे रहे थे। चैट जीपीटी ने तस्वीरों को देखकर उनमें मौजूद जोड़ियों को शुभांग की भेजी हुई क्लॉग्स की तस्वीर से मिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे अपनी खोई हुई चप्पल ढूंढने का ये मामला एक छोटे से रियल वर्ल्ड एआई एक्सपेरिमेंट जैसा बन गया। कई तस्वीरें देखने और उनका विश्लेषण करने के बाद चैट जीपीटी ने एक ऐसी जोड़ी की तरफ इशारा किया जो शुभांग के क्लॉक से मिलती जुलती दिखाई दी। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर फुटवेयर खोजने की शुभांग की ये एआई ट्रिक लोगों को पसंद भी आ रही है। यानी जिस क्लॉक्स को शुभांग खुद सैकड़ों जूते चप्पलों के बीच तलाश रहे थे उसे उनके साथी बने एआई ने ढूंढ निकाला। यानी इस काम में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किसी बड़ी रिसर्च या तकनीकी काम में नहीं, बल्कि बेहद सामान्य सी परेशानी को सुलझाने में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: मूर्थल का देखिए नाम जब भी सुनते हैं ना तो परांठे सामने आते हैं, व्हाइट मक्खन आता है, बड़ा सा चाय का मग आता है। अगर ये थाली परोस के दी जाए तो आई एम श्योर कि आप में से कोई डिनाई करने वाला है नहीं।
9: लेकिन ये हमें सर्व कौन कर रहा है?
5: सर्व कर रहे हैं ये रोबोट जी, ये है,
10: दिस इज अच्छा, ये खबर है। हाँ,
5: मतलब कितनी देर में आएंगे, दैट्स अनदर स्टोरी आपके पास।
10: अच्छा, ये है,
5: ये देखिए,
10: तो इस तरह से सर्व किया जा रहा है।
7: तो कौन इंटरेस्टेड है जाने में और ये ऐसे खाने में?
9: मेरे ख्याल से ऐसा शायद एक नोएडा में भी सेम रेस्टोरेंट है, लेकिन अब मूर्थल में जाके इस तरह आई मीन एक्सप्लोर किया जा सकता है, इंटरेस्टिंग है।
10: देखिए मुझे लग रहा है बच्चे सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, बार बार जाके उसके सामने हाय हेलो कर रहे हैं। लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंट है अपने आप में, क्योंकि कई बार आपने भी देखा होगा मूर्थल, जाहिर सी बात है कि जब हम कहीं हरिद्वार वगैरह उस तरफ कहीं जा रहे होते हैं तो बीच में ये पड़ता है, तो खाने के लिए आप यहाँ रुकते हैं। अक्सर क्या होता है कि भीड़ भाड़ जब ज्यादा होती है तो आपको वेट करना पड़ता है बहुत देर देर तक कि भाई आपके ऑर्डर किए हुए पराठे कब आएंगे। ऐसे में अगर मान लीजिए रोबो भी आपकी सेवा में हो तो चलिए मे भी शायद थोड़ा फास्ट हो जाए,
7: आपको टाइम सेविंग बस इतना होगा कि वाद विवाद नहीं कर पाएंगे हम लोग। इतना टाइम क्यों लगा
9: ये भैया, थोड़ा अचार और ला दीजिए, थोड़ा भैया मक्खन और ला दीजिए।
10: आई थिंक भारत के हिसाब से थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की जरूरत है, और उसमें हाँ और उसमें ये भी हो कि भाई दोनों तरफ से संवाद हो सके।
7: हाँ ऐसा होना चाहिए।
12: बहुत अच्छा था वो, बहुत ही अच्छा था वो, हमारे लिए फर्स्ट टाइम था और बहुत ही अच्छा था हमारे।
13: रोबोट से ही खाना मंगवाया?
12: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
13: कैसा लगा?
12: बहुत ही अच्छा फील था वो।
13: पहले आपने कभी कहीं देखा है?
12: नहीं नहीं ये नहीं देखा हमने।
14: ये आइडिया देखो, हमने मूर्थल में सभी रेस्टोरेंट और ढाबे सभी खाना खिला रहे हैं, हमने सोचा कुछ यूनिक भी चीज लाई जाए, खाने के स्वाद के साथ साथ है ना एक यूनिक चीज अगर पूरे मूर्थल में दी जाए तो बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। तो ये हम बेंगलोर से कॉन्सेप्ट लाए। इनको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है सर, इसके लिए एक स्पेशल एक बंदा है जो इनको प्रॉपर रिमोट से इसको कंट्रोल करते हैं।
13: सर कोई वगैरह भी लगी है मान लो कोई अगर कस्टमर इसके सामने
7: पंजाब की धरती को गुरुओं की धरती कहा जाता है, और यही वजह है कि पंजाब में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहां लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है। पंजाब में कई ऐसे प्राचीन श्री गुरुद्वारा साहिब भी हैं जहां लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं
9: और मनोकामना पूरी होने पर वो यहाँ पर विशेष सेवा भी करते हैं। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही गुरुद्वारा साहिब के बारे में बताएंगे जहाँ पर अनोखी परंपरा है। क्या है परंपरा देखिए।

0: गुरुद्वारे के बाहर सजी दुकानों की रौनक और इन दुकानों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोई मत्था टेक कर लौट रहा है तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने की खुशी में चढ़ावे की तैयारी कर रहा है। इन दुकानों पर खिलौनों की कई वैरायटीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर खींचते हैं खिलौने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज।
1: हाँ जी, मन्नतें पूरी हो गई। अगले अगले नेक्स्ट ईयर शायद जाइए न्यूजीलैंड का नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, मन्नतें है बाहर फॉरन।
0: असल में विदेश जाने की मन्नत लेकर यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर हवाई जहाज चढ़ाते हैं, और यही वजह है कि ये गुरुद्वारा साहिब श्रद्धालुओं के बीच हवाई जहाज वाला गुरुद्वारा के नाम से मशहूर है। जलंधर शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा श्री तलहन साहिब, मान्यता यह है कि पासपोर्ट या वीजा बनाने में कोई भी अड़चन आ रही हो तो खिलौने वाला हवाई जहाज चढ़ाकर अरदास करने से विदेश जाने की राह में आ रही तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं।
2: बहुत टाइम हो गया इतने मत्था टेकन आंदे, चार पाँच छह साल हो चले यार।
0: खास बात यह है कि इन खिलौनों को आसपास के बच्चों में ही बांट दिया जाता है।
3: यात्रा सफल होती है, लोगों को वीजा लगते हैं, बाहर जाके लोग सेटल भी होते हैं।
0: किसी के लिए विदेश जाने की उम्मीद है तो किसी के लिए मन्नत पूरी होने की खुशी। जब यही मन्नत के खिलौने बच्चों के हाथों में पहुँचते हैं तो फिर इस आस्था में खुशियों के रंग घुल जाते हैं। जलंधर से देवेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्यों काशी में लगा है विदेशी पहलवानों का मेला।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: क्या सावन के मंगलवार भी बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं? सावन के मंगलवार का क्या माता गौरी के साथ कोई संबंध है? क्या है सावन के मंगलवार का पूजा विधान, और सावन के मंगलवार को मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: चलिए काशी की बात कर लेते हैं, जहां लोग धर्म और आस्था को समझने के लिए खींचे चले आते हैं। लेकिन नाग पंचमी के मौके पर यहां कुछ विदेशी मेहमान अपने दमखम को परखने पहुंचे। जी हां, काशी के अखाड़ों में आज के दिन कुश्ती के साथ जोड़ी, गदा और डंबल का ऐसा रंग जमता है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। इस बार स्पेन और नीदरलैंड से आए पहलवानों ने जब देसी अखाड़े में जोर आजमाई शुरू की तो वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। आखिर इन विदेशी मेहमानों को काशी के अखाड़ों ने इतना कैसे अपना लिया? आप नाग पंचमी पर काशी के अखाड़ों में उस खुशी को महसूस करने वाले इन विदेशी पहलवानों को देखकर समझ सकते हैं। देखिए, स्पेन के सैंटियागो, जिन्हें लोग प्यार से सेंटी या शांति भी बुलाते हैं, और नीदरलैंड के हर्बर्ट हर साल नागपंचमी पर काशी का रुख करते हैं। सैंटियागो अपने देश में मेस्फ्लो खेल के खिलाड़ी और प्रशिक्षक हैं, और कहते हैं कि इसका रिश्ता भारतीय अखाड़ों की जोड़ी और गदा से काफ़ी मिलता जुलता है। उन्हें काशी के अखाड़ों की मिट्टी, यहाँ का माहौल और पहलवानों का भाईचारा पश्चिमी जिम से कहीं ज़्यादा पसंद आता है।
11: केवल धर्म और आध्यात्म की नगरी है बल्कि खेल का बहुत बड़ा मैदान और केंद्र भी है। खेल का ऐसा नज़ारा नागपंचमी के पर्व पर दिखाई पड़ता है जिसमें न केवल काशीवासी यहाँ के अखाड़ों में जोर आजमाइश करते हैं, अपने शक्ति का परीक्षण करते, अपने बल का परीक्षण करते, बल्कि सात समंदर पार से आए हुए जो विदेशी मेहमान हैं वे भी यहाँ पर अपनी शक्ति का परीक्षण करते हैं, जोर आजमाइश करते हैं। देख सकते हैं अखाड़े के ठीक बाहर डंबल, जोड़ी, गदा और तमाम तरह से ये अपने शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं। सैंटियागो जो स्पेन से आए हुए हैं पिछले दो बार से लगातार काशी आ रहे हैं, तो नीदरलैंड से हमारे साथ एक और मेहमान आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। और यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काशी की जो कुश्ती की कला है, दंगल की कला है, उसको पहुँचाने वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेयर यू आर एंड फ्रॉम हाउ लॉन्ग टाइम यू हैव बीन हियर?
12: वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम स्पेन एंड द फर्स्ट टाइम दैट आई केम हियर वाज इन 2023 एंड आफ्टर दैट आई एम कमिंग इन ईयर बाय ईयर एवरी ईयर। यस,
11: अ लॉन्ग टाइम यू हैव बीन इन हियर कमिंग वाराणसी।
12: द फर्स्ट टाइम वाज 2017 2017. I remember coming here and asking in the tuk-tuk, saying, can you find me some akara? Can you find me some place that I can find training? And he said, there's lots of places here in Varanasi. And from that moment, I fell in love with the city.
13: सबसे पहले तो बात ये है कि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं वो सभी जोड़ी, गदा, मुगदर, नाल, इन सब चीज़ों को कर भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की वजह से तमाम जो इंडियन हैं, चाहे वो साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, हर तरफ के लोग अब मुदगर व्यायाम, गदा व्यायाम, ये सारी चीज़ें करने लगे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अब ये सैलानी भी आकर के इस तरह के वर्कआउट करते हैं।
11: तो जहां एक और मॉडर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर पूरे देश में हावी होता चला जा रहा है जिम के रूप में, तो वहीं जो विदेशी मेहमान हैं सात समंदर पार से आकर खासकर इस नाग पंचमी के पर्व पर अपनी शक्ति की आजमाइश करते हैं और तमाम जो खेल हैं अखाड़ों में उसको खेलकर प्रतिस्पर्धा में भी भाग लेते हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
0: फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: सोचे चौराहे पर ट्रैफिक संभालने के लिए पुलिस कर्मी नहीं बल्कि एक रोबोट खड़ा हो। चीन के वुहान शहर में अब ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। यहाँ पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट ट्रैफिक पुलिस के साथ सड़क पर ड्यूटी करता नजर आता है। सिग्नल के हिसाब से इशारे करना हो, ट्रैफिक को गाइड करना हो या फिर नियम तोड़ने पर नजर रखना हो, ये रोबोट सब कुछ कर सकता है। खास बात यह है इसकी नजर से बिना हेलमेट या रेड लाइट जंप करने वाले भी नहीं बच पाते।
2: और देखिए, अगर किसी ने गलत जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी तो रोबोट कैमरे से उसकी तस्वीर भी ले सकता है। बिना हेलमेट चलने वाले ई स्कूटर सवारों के ये तुरंत आवाज के जरिए चेतावनी भी देता है। यानी ट्रैफिक पुलिस के काम में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की एंट्री हो चुकी है। ये रोबोट 24 घंटे काम कर सकता है, खासकर भीड़ भाड़ या खराब मौसम में पुलिस कर्मियों का बोझ कम कर सकता है। और सड़क ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में लोगों को रास्ता और जरूरी जानकारी देने का काम भी कर रहा है।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे चाय पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: नेपाल में मुस्लिम होना गुनाह, कावड़ियों ने सीआरपीएफ जवान को पीटा, मोरक्को से तैर कर एक युवक स्पेन पहुंचा, टीचर का जुगाड़ केमिस्ट्री में कमाल, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: क्या सावन के मंगलवार भी बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं? सावन के मंगलवार का क्या माता गौरी के साथ कोई संबंध है? क्या है सावन के मंगलवार का पूजा विधान और सावन के मंगलवार को मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की कतार, सोमनाथ में निकली बाबा की पालकी यात्रा, मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन। नागपंचमी के पावन दिन उज्जैन में आस्था का मेला, नागचंद्रेश्वर मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, सिर्फ नागपंचमी पर ही खुलते हैं कपाट। नागपंचमी पर काशी के अखाड़ों में उतरे विदेशी पहलवान, धूमधाम से निभाई गई सैकड़ों साल पुरानी कुश्ती की परंपरा, अगले 2 से 3 महीने तक चलता है दंगल। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में दिखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी नागपंचमी की और सावन के सोमवार के महत्व की। एक तो शिव का महीना, उस पर से उनके प्रिय नाग देवता का दिन, आस्थावानों के लिए किसी उपहार से कम बिल्कुल नहीं। आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख सकते हैं, एक शिवालयों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दूसरी देखिए तस्वीर नागपंचमी पर नाग देवता के मंदिर में उमड़ते श्रद्धालुओं की ये तस्वीर है। उज्जैन से प्रयागराज तक आस्था हिलोरे मार रही है। जीएनटी पर आज हम आपको महादेव के उन धामों के दर्शन करवाएंगे जहां या तो नागराज या फिर नागरूप में देवादि देव स्वयं विराजे हैं। सबसे पहले बात उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की, जहां बाबा महाकाल के दर्शन के लिए हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन बीती आधी रात से वहां और भी बड़ी तादाद में भक्तों का मेला लगा हुआ है। महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नागपंचमी पर खुलता है, लिहाजा यहां दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थित प्रतिमा भी अपने आप में बहुत खास है।

0: pawan savan ka somwar आया नाग पंचमी का त्योहार, शहर शहर मंदिर मंदिर लग रहा नागेश्वर की जयकार। नाग पंचमी का पावन अवसर अगर सावन के सोमवार को होता है तो इसकी महत्ता काफी बढ़ जाती है। उज्जैन में भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर का नजारा आज देखने लायक है। दर्शन पूजन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर में अपार भीड़ है। श्रद्धा और भक्ति का उत्साह महोत्सव में बदल गया है। दरअसल साल में एक ही बार ऐसा खास मौका आता है जब देश दुनिया के लोगों को भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन होते हैं और वो घड़ी देर रात 12 बजे से शुरू हो गई है। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए, महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी महाराज ने हर हर महादेव की गूंज के बीच नारियल फोड़कर मंदिर के पट खोले। मध्य रात्रि में विधि विधान से भगवान नाग चंद्रेश्वर की पूजा अर्चना की गई, जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं को पूरे बरस भर इंतजार करना पड़ता है। मंदिर कपाट का खुलना था कि दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद पारंपरिक विधि विधान के अनुसार भगवान नाग चंद्रेश्वर की विशेष त्रिकाल पूजा और आरती की गई।
1: देखिए, नागपंचमी का पर्व पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी क्रम में भगवान महाकाल के इस दिव्य मंदिर में उज्जैन में बहुत ही अद्भुत स्थान है। भगवान महाकालेश्वर का जो मंदिर है उसके तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं। परंपरानुगत तरीके से पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा महंत जो यहाँ नियुक्त होते हैं वो उसकी पट खोलते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो उसी परंपरा का हम सब लोगों ने पालन करते हुए भगवान नागचंद्रेश्वर के मंदिर के पट खोले और भगवान का षोडशोपचार पद्धति का ये जो पूजन पद्धति है उसके अनुसार पूजन करके और त्रिकाल पूजाओं में प्रथम पूजा करके और सभी श्रद्धालु दर्शन।
0: साल भर के इंतजार के बाद 2026 में पहली और अंतिम बार भगवान नाग चंद्रेश्वर के अद्भुत और अलौकिक दर्शन की श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। सावन के महीने में उज्जैन में जब नाग चंद्रेश्वर भगवान के मंदिर के पट खुले हैं तो शिव भक्तों और श्रद्धालुओं को एक ही दिन एक ही साथ बाबा महाकाल और भगवान नाग चंद्रेश्वर दोनों की उपासना का अवसर मिल रहा है। मध्य रात्रि से ही हजारों श्रद्धालु भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन पूजन के लिए महाकाल मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं और आज मध्य रात्रि तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि नाग चंद्रेश्वर के दर्शन और उनकी उपासना का अवसर साल भर में एक ही बार जो मिलता है। तो इस मंदिर की महिमा के बारे में जानने वाले श्रद्धालु ये मौका नहीं चूकना चाहते हैं। क्या आम क्या खास, तमाम श्रद्धालु और शिव भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि भगवान के दर्शन का अपना मनोरथ पूरा कर सकें और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकें।
1: कामना मुझे लगता है कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि भोले बाबा को सब पता है अंदर का, पर मेरे लिए काफी महत्व का दिन है क्योंकि नागपंचमी और साथ में सावन सोमवार भी है और नाग चंद्रेश्वर जी के दर्शन साल में एक बार होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो खुशी और वो उत्साह है क्योंकि साल में एक बार दर्शन करना और ये साल एक बार आना और मंदिर का खुलना और सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत ही कहते ना कि कम मंदिर है जहाँ पे ऐसे मंदिर है जिनका गेट साल में एक बार खुलता है और मुझे लगता है वो एक नाग चंद्रेश्वर है। तो मुझे लगता है इसी वजह से सारे श्रद्धालु चाहते हैं कि उनको दर्शन करने का मौका मिले और हम भी यही चाहेंगे, पर भोले बाबा भी चाहते हैं सबके दर्शन हो, सब अच्छे से दर्शन करें और हंसी खुशी अपने जीवन व्यतीत करें। जय श्री महाकाल।
2: ये एक साल में एक ही बार खुलता है ये पट और मैंने आज नागेश्वर जी का दर्शन कर लिया है। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है और सब बहुत अच्छे से उनका मैनेजमेंट सब है, मंदिर का शासन का बहुत अच्छे से सब है। मैं मुंबई से आया, बहुत अच्छा तृप्त हो गया मन और बॉडी।
0: आपको बता दें कि भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट हर साल नाग पंचमी के अवसर पर केवल 24 घंटों के लिए खोले जाते हैं, तो आज मध्य रात्रि तक यानी रात 12 बजे तक श्रद्धालु यहां दर्शन पूजन कर सकेंगे। नाग पंचमी पर भगवान नाग चंद्रेश्वर की त्रिकाल पूजा की परंपरा है। पहली पूजा रविवार मध्य रात्रि पट खुलने के बाद हुई। दूसरी विशेष पूजा आज दोपहर 12 बजे श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से की गई। शाम को भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी और पुरोहित भगवान नाग चंद्रेश्वर की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। फिर रात 12 बजे महानिर्वाणी अखाड़े की पूजा के बाद मंदिर के पट अगले साल नाग पंचमी तक के लिए दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। सनातन धर्म में सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी को समर्पित है। वो भी अगर सावन के सोमवार को पड़ता है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव के गण माने जाने वाले नाग देवता की पूजा का विधान है। माना यह भी जाता है कि नागों से महादेव का खास रिश्ता है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव को नागों का देवता भी कहा जाता है। तभी तो भगवान शिव के सहस्त्र नामों में से एक नाम नागेश्वर भी है। महादेव हमेशा अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि वासुकी नाम के प्रयास से ही सागर मंथन संभव हो सका था। पौराणिक कथा के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हमेशा उनकी पूजा करने में लीन रहते थे। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी ने रस्सी का काम किया था। भोलेनाथ नागराज की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने वासुकी नाग को अपने गले से लिपटे रहने का वरदान दिया था। सिंध पुराण में उल्लेख मिलता है कि वासुकी नाग महादेव के लिए पुत्र समान है। वैसे मान्यता है कि सिर्फ वासुकी नाग ही नहीं बल्कि पूरी नाग और सर्प प्रजाति के लिए महादेव के मन में विशेष प्रेम है। तभी तो महादेव के प्रिय माह सावन में उनके आभूषण नागों की उपासना का भी विधान है। वैसे तो महाकाल मंदिर में विराजित भगवान नाग चंद्रेश्वर की महिमा बेहद अनोखी है। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कहानी बताती है कि नागों के राजा तक्षक ने महादेव को मनाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमरत्व का वरदान दिया था। मान्यता है कि उसके बाद से तक्षक राजा ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया। लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी ये कामना थी कि उनके एकांत में विघ्न न हो, इसलिए वो पूरे साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही दर्शन देते हैं। परंपरा के मुताबिक साल के बाकी दिन उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए मंदिर बंद रहता है।
3: नाग चंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथा नागराज तक्षक की है। मान्यता है कि नागराज तक्षक ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया और अपने सानिध्य में रहने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद नागराज तक्षक ने भगवान शिव के साथ इसी स्थान पर निवास किया। इसी जगह से यह स्थान नागराज तक्षक के निवास और साधना से जुड़ा हुआ माना जाता है।
0: कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन ही श्रद्धालुओं को भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन का अवसर मिलता है। मान्यता है कि भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन पूजन से किसी भी तरह के सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ी एक कहानी इस मंदिर को रामायण काल से भी जोड़ती है। कहते हैं भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ के तर्पण के लिए उज्जैन आए थे, तो रामघाट के राम सीढ़ियों पर गए थे। तब शेष नाग उनके दर्शन के लिए पहुंचे थे। तब से राम सीढ़ी के ऊपर ये महोत्सव मनाने की परंपरा शुरू हो गई। लेकिन वक्त के साथ परंपरा बदली और ये उत्सव उज्जैन के महाकाल मंदिर में होने लगा। यही वजह है कि नाग पंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। महाकाल मंदिर के शिखर के तीसरे खंड में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बेहद खास है। यहाँ विराजित प्रतिमा को करीब 11वीं शताब्दी यानी 1050 ईस्वी का माना जाता है। प्रतिमा में भगवान शिव और माता पार्वती सात फनों वाले नाग के छत्र के नीचे विराजमान हैं। भगवान शिव के गले और भुजाओं में नाग लिपटे हुए हैं। प्रतिमा में भगवान गणेश, नंदी और सिंह की आकृतियां भी उकेरी गई हैं। मान्यता है कि ये दुर्लभ प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी।
3: यहाँ भगवान शिव, और माता पार्वती की एक अद्भुत प्रतिमा विराजमान है, जिसमें दोनों को 10 फनों वाले नाग की शैया पर विराजमान दिखाया गया है। ये प्रतिमा लगभग 11वीं शताब्दी की मानी जाती है और अपने स्वरूप के कारण बहुत विशेष है। आमतौर पर हम भगवान विष्णु को शेष नाग पर विराजमान देखते हैं, लेकिन यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का नाग की शैया पर विराजमान होना अपने में एक अनोखा स्वरूप है। अगर हम इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझे तो भगवान शिव के साथ नाग का संबंध केवल एक आभूषण या प्रतीक का तक सीमित नहीं है। नाग को शक्ति, ऊर्जा, परिवर्तन, भय, मृत्यु और उस भय पर नियंत्रण के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। और भगवान शिव अपने कंठ में नाग को धारण करते हैं, यानी जिस शक्ति को सामान्य मनुष्य भय के रूप में देखता है, शिव उसी शक्ति को अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए नागचंद्रेश्वर मंदिर केवल नाग देवता की पूजा का स्थान नहीं, बल्कि शिव तत्व और नाग तत्व के एक अद्भुत संगम का प्रतीक माना जाता है।
0: देश में ऐसे लाखों मंदिर हैं जो अपनी अलग अलग मान्यता और महिमा के कारण देश विदेश में चर्चित हैं, लेकिन उनमें से सबसे खास है उज्जैन का ये नागचंद्रेश्वर मंदिर। असल में उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 मंजिलों वाला है। इसमें नीचे महाकालेश्वर, मध्य में ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। वैसे तो भगवान शिव के गले में वासुकी नाग लिपटे रहते हैं, लेकिन नागचंद्रेश्वर मंदिर में सर्प शिव जी के गले में लिपटा नहीं है, बल्कि भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी सर्प शैया पर विराजमान हैं। इसलिए ये मूर्ति अनोखी मानी जाती है। इस मंदिर में शिवलिंग पर चंद्रमा और नाग की विशेष प्रतिमा विराजमान है, इसलिए इसे नागचंद्रेश्वर कहा जाता है।
4: भगवान का वो जैसे भगवान विष्णु शेष सैया पर, शेष नाग के सैया पर शयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस देवालय में, उस मंदिर पर भगवान चंद्रकेश्वर नाग देवता महादेव जैसे उस शेष सैया के नाग पर जैसे भगवान विष्णु सोते हैं, एकमात्र भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा है जहां उस नाग देवता के अंचल में भगवान शिव विराजे हैं।
0: मान्यता है कि महाकाल मंदिर के ऊपरी तल पर विराजे भगवान नाग चंद्रेश्वर जागृत अवस्था में हैं, इसलिए उनकी मूर्ति को साल भर कपड़े से ढक कर रखा जाता है और मंदिर भी बंद रहता है। पुजारी को भी यहाँ जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपने आराध्य की झलक पाने के लिए उमड़ते हैं। नाग चंद्रेश्वर में भगवान मूर्ति के साथ साथ मंदिर का इतिहास भी काफी प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के करीब इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने 1732 में जब महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, तो उसके साथ ही इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ था। चूंकि ये मंदिर उज्जैन के महाकाल मंदिर में स्थित है, तो आज नाग पंचमी के साथ साथ सावन का तीसरा सोमवार होने के कारण यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भी जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। आज सावन का तीसरा सोमवार होने की वजह से भगवान महाकाल की पारंपरिक सवारी भी नगर भ्रमण पर निकल रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं को एक ही दिन भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन और बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन का पुण्य अवसर मिल रहा है। इस दुर्लभ धार्मिक संयोग को देखते हुए उज्जैन में भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए अलग अलग प्रवेश और निकासी मार्ग निर्धारित किए हैं।
5: इसके लिए करीब 2400 पुलिस कर्मियों का बल हमने डिप्लॉय किया है, जो पूरे 36 घंटे अभी से लगातार अपनी ड्यूटी में, पिछले 6 घंटे से 6 बजे से लगा हुआ है और अभी लगातार ड्यूटी में रहेगा। मेरा सभी श्रद्धालुओं से जो अनुरोध है कि जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था, ग्लो साइन बोर्ड्स और डायरेक्शन बोर्ड्स की व्यवस्था की गई है, कृपया उसके सभी निर्देशों का पालन करें, जिससे सभी को सुगमता से दर्शन व्यवस्थित तौर पर कराया जा सके। पूरे तीनों मार्गों पे सभी जगह पृथक पृथक करीब 200 CCTV कैमरे और 3 ड्रोन लगाए गए हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और कोई भी व्यक्ति अगर किसी नियम को उल्लंघन करता है या बैरिकेड कूदने का प्रयास करता है, तो उसको चिन्हित कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
0: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह खास व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि रात से ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: बात नागपंचमी की हो रही है तो नागपंचमी पर प्रयागराज के प्राचीन नागवासुकी मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है। मंदिर में पूरे साल पूजा अनुष्ठान चलते रहते हैं, लेकिन नागपंचमी के मौके पर इस मंदिर में दर्शन पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता यह है कि इस मंदिर में पूजा करने से कुंडली से काल सर्प दोष मिट जाते हैं।

0: सांपों के राजा वासुकी नाग को समर्पित प्राचीन मंदिर, जहां हर साल नाग पंचमी के दिन उमड़ती है आस्था। तीन नदियों के संगम और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध तीर्थराज प्रयागराज में भगवान वासुकी को समर्पित ये मंदिर देश के सबसे पौराणिक और प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल है। सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी के एक साथ होने से प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही भक्त हाथ में गंगा जल और दूध और साथ ही लावा लेकर पहुंच रहे हैं।
1: सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का तीसरा सोमवार है। यहाँ पर नागवासुकी मंदिर में भक्तों की जो भीड़ है सुबह से लगी हुई, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु हाथों में जल लेकर के और बेलपत्र लेकर के यहाँ आए हैं। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें नागों के राजा यानी नागवासुकी का वास है और यहाँ पर नाग के रूप में विराजमान देवता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए हैं। आप हमारे पीछे यहाँ पर

0: नागपंचमी, माघ मेला और कुंभ के विशेष अवसर पर तो यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में पूरी श्रद्धा से पूजन करने से काल सर्प दोष और जीवन की तमाम बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है।
1: ये भगवान वाजपेयी जी का मुख्य पर्व है जो वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब प्राचीन काल से ये पर्व होता चला आ रहा है और सभी श्रद्धालु भोर से ही भगवान वाजपेयी को जो है फूल प्रसाद, दूध लावा, गंगा जल, बेलपत्र और पुष्पों से जो भगवान वाजपेयी का पूजा करते हैं, धूप दीप करके प्रार्थना करते हैं, घर के सब समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान वाजपेयी का मनोकामना पूर्ण करते हैं।
2: यहाँ पर नागपंचमी के दिन भगवान नाग देवता जी का दर्शन करने लोग आते हैं, बड़ी अपार भीड़ होती है। यहाँ पे बड़े श्रद्धालु आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दशाश्वमेध घाट से जल लेकर के आते हैं, बड़ी अपरंपार भीड़ होती है और बड़ी महिमा है नाग वाजपेयी जी।
0: प्रयागराज के इस मंदिर में नाग वासुकी 8 नागों के साथ विराजमान है। नागराज वासुकी के इस मंदिर का जिक्र भी पौराणिक कथाओं में मिलता है। इन कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन में नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत पर रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। लंबे समय तक मंथन से नागराज वासुकी घायल हो गए। भगवान विष्णु ने नागराज को प्रयागराज में विश्राम करने का आदेश दिया। त्रिवेणी संगम पर पवित्र भूमि में विश्राम करने से उनके घाव भर गए। देवताओं के आग्रह पर भगवान वासुकी यही विराजमान हो गए और यही स्थान नाग वासुकी मंदिर के तौर पर स्थापित हुआ।
1: ये भगवान वाजपेयी नाग है जिन्हें जो है सागर मंथन में डोर बना के सागर मंथन किया गया था, वही भगवान वाजपेयी यहाँ पर विराज रहे हैं। तो सागर मंथन के बाद से यहाँ भी भगवान वाजपेयी विराज रहे हैं। ताकि सागर मंथन इतना लंबा चला, इनको बहुत ज्यादा पीड़ा थी, इनको इतना ज्यादा कष्ट था सागर मंथन के बाद कि इनको आराम की आवश्यकता थी। इन्होंने विष्णु भगवान से कहा कोई ऐसा उचित स्थान बताइए जहाँ पे हम आराम कर सकें। भगवान विष्णु ने कहा कि तीर्थों का राजा प्रयागराज है, वहीं व्यार निवास कर लिया। इनका ब्रह्मा के आलस पुत्रों द्वारा स्थापना हुई तब से भगवान वाजपेयी यहाँ निवास कर।
0: सामान्य दिनों में भी प्रयागराज में संगम स्नान के बाद श्रद्धालु नागराज वासुकी के मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। यहाँ दर्शन के बाद ही तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी गई है। इस मंदिर में नागराज वासुकी की फन फैलाए हुए प्रतिमा विराजमान है।
3: नाग वासुकी प्रयाग के साथ तीर्थ नायकों में एक नायक भी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर असीमाधो जी और दत्तात्रेय और हनुमान जी, ये सारे लोग यहाँ विराजमान है। और इसके साथ ही साथ ये नाग पंचमी पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला यहाँ पे लगता है, जिसमें लाखों लाख की भीड़ सुबह से लेकर रात तक जो है नाग वासुकी बाबा का दर्शन करती है, अभिषेक पूजन अर्चन करती है। और भी जो भी वर्ष भर की लोगों की मान्यताएं और मान्यता होती है उसको भी पूरा करने के लिए लोग आते हैं।
0: मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी होती है और कुंडली से काल सर्प दोष भी खत्म हो जाते हैं।
1: काल सर्प दोष की प्रथम पूजा यही है, इसके बाद किसी भी शिवालय में या शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग में करा लें। कहा कि भोलेनाथ के गले में यही नाग विराजते हैं, इस वजह से ज्योतिर्लिंग में भी इसकी पूजा होती है, शिवालय में भी होती है, मगर यहाँ पे इनके स्वयं की प्रतिमा इसका प्रथम महत्व है।
0: प्रयागराज का नाग वासुकी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल भर नहीं बल्कि आस्था और पौराणिक परंपराओं का अद्भुत संगम है। नाग पंचमी के पावन अवसर पर संगम स्नान के बाद नागराज वासुकी के दर्शन करने वाले भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। इस मंदिर में दर्शन के साथ ही श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा भी संपन्न हो जाती है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: काशी की गलियों में आस्था और रहस्य से जुड़ी एक ऐसी प्राचीन धरोहरें मौजूद हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों में आकर्षण पैदा करती हैं। जैतपुरा का नागकूप भी वाराणसी में एक ऐसी ही जगह है जिसे नागलोक और महर्षि पतंजलि की तपस्थली के साथ जोड़कर देखा जाता है। नागपंचमी के खास मौके पर यहां श्रद्धालुओं की खास आस्था देखने को मिलती है। काशी के इस रहस्य पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: भगवान भोले की नगरी काशी। यहाँ गंगा की पवित्र लहरों में भक्ति की अविरल धारा बहती है। काशी जहाँ मंदिर की घंटियों से अध्यात्म की अनंत ऊर्जा का संचार होता है, यहाँ संतों की वाणी में ज्ञान और यहाँ की मिट्टी के कण कण में महादेव का वास है। दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत शहरों में एक पावन नगरी पर भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद है। हजारों साल की इस समय यात्रा में यहाँ की हर गली अपने आप में ऐतिहासिक और हजारों रहस्यों को समेटे हुए है, और इन्हीं रहस्यों में से एक है जैतपुरा का प्राचीन नागकूप। ऊपर से देखने पर ये एक सामान्य कुआं जैसा नजर आता है, लेकिन इससे जुड़ी मान्यताएं इसे बेहद खास और रहस्यमयी बनाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस नागकूप का संबंध नागलोक से है, और यहाँ महर्षि पतंजलि ने लंबी तपस्या की थी।
1: समय राजा परीक्षित को नागदंश हुआ था, तो उनके पुत्र जनमेजय ने सभी नागों का यज्ञ किए थे, सर्प विनाशक यज्ञ। उस यज्ञ के समय कारकोटक नाग जो थे, वो सभी नाग जाति को बचाने के लिए, जीवन रक्षा के लिए उन्होंने शिवजी की तपस्या की थी इसी स्थान पे, जिस तपस्या का नाम था पंच अग्नि तपस्या। और भगवान प्रसन्न होके उनको वरदान दिए, और इसी स्थान पे भगवान प्रकट हुए थे, जो कि एक स्वयंभू शिवलिंग भी है, और उनको वरदान दिए कि जो हमारे में समाहित होते हैं उनका न आदि होता है न तो अंत होता है। फिर कारकोटक नाग सभी नाग जाति को लेके, नाग वंश को लेके इसी मार्ग से पाताल लोक चले गए थे।
0: इस नागकूप की सबसे खास मान्यता इसके भीतर विराजमान प्राचीन शिवलिंग को लेकर है। कहा जाता है कि जमीन के करीब 100 फीट नीचे भगवान शिव का शिवलिंग मौजूद है। साल में एक बार कूप की सफाई के समय पुजारी नीचे उतरते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा के बाद कूप में फिर पानी भर जाता है और श्रद्धालुओं के लिए अंदर जाना संभव नहीं रहता। लोक कथा है कि महर्षि पतंजलि इन्हीं रास्तों से नागलोक तक जाते थे। हर साल नागपंचमी अवसर पर नागकूप पर आस्था का विशेष रंग दिखाई देता है। नाग देवता की पूजा के लिए यहाँ दूर दूर से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और सर्प दंश भय से राहत मिलती है। कई श्रद्धालु इस कुएं के पवित्र जल को आस्था के साथ अपने घर ले जाते हैं।
1: इस समय राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय यज्ञ कर रहे थे, तो उसी समय यज्ञ में जिनकी नाग लोक का, जिनका नाग देवता का नाम लेते थे, वो अग्निकुंड में आ जाते थे। तो उस यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिक मुनि वहाँ पहुँचे और उनको समझा बुझा कर यज्ञ को वहीं पर विराम करने के लिए उनको समझाएं, और उसके बाद जितने नाग राज झुलस चुके थे, जल चुके थे, उनको दूध चढ़ाकर, उनको लावा लगाकर, उनको घाव को ठीक किए, भरे। इसीलिए उस तिथि भी थी श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, इसीलिए नाग पंचमी के नाम से उसको मनाया जाता है।
0: काशी में धर्म और अध्यात्म जीवन का हिस्सा है। यहाँ नागकूप से जुड़ी कथाएं और मान्यताएं भी इसी आस्था की एक ऐसी कड़ी है जो रहस्य और परंपरा को आज तक अपने साथ संजोए हुए है। वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनडी स्पेशल की आज के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।

0: क्या सावन के मंगलवार भी बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं? सावन के मंगलवार का क्या माता गौरी के साथ कोई संबंध है? क्या है सावन के मंगलवार का पूजा विधान? और सावन के मंगलवार को मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की कतार, सोमनाथ में निकली बाबा की पालकी यात्रा, मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन। नागपंचमी के पावन दिन उज्जैन में आस्था का मेला, नागचंद्रेश्वर मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, सिर्फ नागपंचमी पर खुलते हैं कपाट। नागपंचमी पर काशी के अखाड़ों में उतरे विदेशी पहलवान, धूमधाम से निभाई गई सैकड़ों साल पुरानी कुश्ती की परंपरा, अगले 2 से 3 महीने चलता है दंगल। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में देखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। राजस्थान के धौलपुर में पर्यावरण संरक्षण के संदेश वाली कांवड़ यात्रा, 11,000 पौधे लेकर निकले स्कूली बच्चे, 5,100 छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीण भी शामिल हुए। पहाड़ों पर फिर बदल गया मौसम का मिजाज, उत्तराखंड में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, देहरादून में लोगों को उमस से राहत। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: नागपंचमी पर काशी में विदेशी पहलवानों का दम, स्पेन और नेदरलैंड्स के पहलवानों ने खींचा सबका ध्यान। विदेशी पहलवान सेंटियागो और हार्वर्ड बने आकर्षण के मुख्य केंद्र, अखाड़े में फेरी गदा। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच विदेशी पहलवानों का जोरदार शक्ति प्रदर्शन, अखाड़ों का भी माहौल रहा जोशीला। स्थानीय लोगों ने भी दिखाया जबरदस्त उत्साह, परंपरागत खेलों का जमकर आनंद उठाया। विदेशी पहलवानों ने इसे बताया कि यादगार अनुभव, स्थानीय पहलवानों की जमकर तारीफ की। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, श्रावण सोमवार पर उमड़े भक्त, नागपंचमी पर खास रौनक। श्रावण सोमवार और नागपंचमी का अद्भुत संयोग, शिव दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु, शिव भक्ति से हुआ माहौल। भक्तों ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिए, मंदिरों में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे। बौलाद मंदिर की फूलों से भव्य सजावट की गई, दिखा अद्भुत नजारा, श्रद्धालुओं के विशेष इंतजाम। बाबुलनाथ मंदिर में दिखी खास रौनक, श्रद्धालुओं में दिख रहा जबरदस्त उत्साह, आस्था के रंग में रंगी नजर आई मुंबई। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालय में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार, बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती के दौरान माहौल खुली दिव्यता। बाबा विश्वनाथ के दरबार में उमड़े भक्त, जलाभिषेक करने के लिए आए कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हुई। सावन के तीसरे सोमवार के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम की भव्य सजावट। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लगा शिव भक्तों का मेला, सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। उज्जैन में नागपंचमी पर रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर में पट खोले गए, साल में सिर्फ 24 घंटे के लिए मिलते हैं दर्शन। साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट नागपंचमी पर खुले जाते हैं, 12 बजे तक खुले रहते हैं पट। इस बार नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का भी शुभ संयोग, आस्था के खास संयोग पर उमड़ी भक्तों की भीड़। नागचंद्रेश्वर के दर्शन और महाकाल की सवारी के लिए बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंच रहे श्रद्धालु, प्रशासन ने भीड़ को संभालने के लिए अलग अलग रास्तों सुरक्षा के इंतजाम किए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नागचंद्रेश्वर मंदिर में 300 के शीघ्र दर्शन की भी व्यवस्था। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ, सुबह से दर्शन करने के लिए लंबी कतारें। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया, बड़ी संख्या में भक्त साक्षी बने। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती की गई, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गुंजायमान। सबसे दिव्य और अद्भुत पल जब महाकाल की भस्म आरती की गई, झूमते नजर आए भक्त। उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, क्रिकेटर उमेश यादव। प्रयागराज में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर नागवासुकी मंदिर में सुबह से भक्तों का मेला, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। नागवासुकी मंदिर में नागपंचमी के दिन पूजा करने के बाद काल सर्पदोष से मिलती मुक्ति। नागपंचमी पर नागवासुकी मंदिर में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम, मंदिर परिसर में तैनात नजर आए जवान। अयोध्या में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर नागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, शेषनाग मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया नाग देवता का दुग्धाभिषेक, सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार के बागो वाले बागेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, मान्यता के अनुसार बागेश्वर नाग देवता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। गाजियाबाद के बाबा दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में उमड़े शिव भक्त, भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए लालाहित। नागपंचमी पर बाबा दूधेश्वर नाथ का भक्तों ने किया जलाभिषेक, हर हर महादेव के जयकारे लगे। कानपुर में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर कैलाश मंदिर में भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे भक्त। सोमनाथ में सावन के पहले सोमवार पर सोमनाथ मंदिर में की गई भव्य सजावट, भोलेनाथ की आरती उतारी गई। गुवाहाटी में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर शुक्रेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ, भक्तों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मुजफ्फरपुर में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर बाबा करीमनाथ धाम में सुबह से भक्तों का मेला लगा हुआ, भक्तों ने दर्शन किए। नागपंचमी पर करीमनाथ मंदिर में बड़ा आस्था का जनसैलाब, 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। बाराबंकी में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर लोधेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर शुरुआत हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को लेकर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने सावन को लेकर वीआईपी दर्शन पर लगा दी रोक, एक माह तक नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। वाराणसी में नागपंचमी पर नाग कुआ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने दर्शन किए। गोरखपुर में तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर उमड़ा आस्था का जलसा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में उजाला होने से पहले ही दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे भक्त, सभी भक्त लाइन में लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। मधेपुरा में संघेश्वर धाम में पहुंचे सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंबई में सावन के तीसरे और सोमवार नागपंचमी पर बाबुलनाथ में सुबह से भक्तों की लंबी कतारें। लखनऊ में नागपंचमी में नागेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ास्था का जनसला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता, भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। अमृतसर के शिवाला बाग का भैया में उमड़ी भक्तों की भीड़, दर्शन करने के लिए सुबह से कतारें। भक्तों ने किए भोलेनाथ के दिव्य दर्शन, दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त मंदिर में, हर हर महादेव के जयघोष। सावन सोमवार नागपंचमी संक्रांति तीनों के एक साथ पड़ने से पूजा जलाभिषेक के लिए आशीर्वाद। धौलपुर में अनोखी पहल, 11,000 पौधों की अनोखी कांवड़ यात्रा, हरियाली पर संदेश। 5100 छात्राओं ने हिस्सा लिया, ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बूढ़ा अमरनाथ की पवित्र यात्रा की शुभारंभ हो गया, एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू से 2,000 से ज्यादा श्रद्धालु रवाना हुए, श्रद्धालु ने बम बम बोले, हर हर महादेव के जयकारे लगाए। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा 12 दिनों तक चलेगी, 28 अगस्त को होगा यात्रा का समापन। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए, यात्रियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बूढ़ा अमरनाथ में मंदिर के बाहर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंड टेबल का आगाज, मुख्यमंत्री विजय शामिल हुए। मुख्यमंत्री विजय ने लॉन्च किया इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, मंच पर साथ में इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन एंड एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी भी नजर आई। मुख्यमंत्री विजय ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सच को और मुखर होकर बोलने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नेता, नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और मनोरंजन क्षेत्र की हस्तियां भी शामिल हुई। तमिलनाडु की आर्थिक संभावना और निवेश के माहौल के साथ साथ भ्रष्टाचार, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त और स्वास्थ्य जैसी राज्य की प्रमुख नीतिगत चुनौतियों पर भी विचार विमर्श हुआ। रोहतास में कजरी महोत्सव भी धूम, बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। कजरी महोत्सव में कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला, महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में नृत्य किया। आईआईटी कानपुर के छात्रों ने निकाली कांवड़ यात्रा, सर्रा सैया घाट से गंगा जल लेकर पैदल आनंदेश्वर मंदिर पहुंचे। देशभर मशहूर मूर्थल के रेशम ढाबे में रोबोट वेटर की एंट्री, रोबोट परोस रहे पराठे। रोबोट को खाना सर्व करने के लिए ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है, एक बार चार्ज होने पर 2 घंटे तक सर्विस। पुरेज में इंटर रॉ विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल 1.0 का शानदार समापन। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, स्वास्थ्य भारत अभियान और पौधारोपण अभियान में शामिल हुए। रामनाथपुरम में योग प्रतियोगिता का बड़ा आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम हवाई अड्डे पर पहली उड़ान हुई शुरू। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया। अयोध्या में लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी। प्रयागराज में भी लगातार बढ़ रहा है संगम का पानी, निचले इलाकों में जल जमाव। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, गोंडा और बहराइच के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य तेज। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी गई सहायता राशि, अधिकारी पल पल की कर रहे हैं निगरानी। रणवीर ने शुरू कर दी प्रलय की शूटिंग, फिल्में कल्याणी प्रियदर्शन भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। मालामाल वीकली 2 का ऐलान, फिल्में परेश रावल, रितेश देशमुख, राजपाल यादव, रवीना टंडन, परिणीति चोपड़ा, शिल्पा भी नजर आएंगी। इमरान हाशमी की आवारापन 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, फिल्म ने 3 दिनों में कमा लिए 82 करोड़। हैवान स्टाइल में अक्षय कुमार ने सैफ अली खान को किया बर्थडे विश, लिखा जन्मदिन मुबारक हो सैफ। सनी देओल ने पान मसाला विज्ञापनों को लेकर साफ इनकार कर दिया, कहा मेरा जमीर नहीं मानता। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में ब्राजील ने रच दिया इतिहास, रिदमिक जिमनास्टिक्स में ब्राजील ने एक ही दिन में जीते 2 गोल्ड। ब्राजील की डिवास का धमाल, 5 बॉल्स फाइनल में शानदार जीत। ब्राजील की टीम ने पहला वर्ल्ड टाइटल जीता, गोल्डन डबल जीत ब्राजीलियन टीम के लिए यादगार। यूक्रेन की ओनो फ्रीचुक बनी चैंपियन। जर्मनी की वार फोलोमिव का 14वां वर्ल्ड टाइटल, बुल्गारिया की निकोलोवा को क्लब्स इवेंट में गोल्ड और रिबन में सिल्वर। शेडोंग में खुला चीन का पहला एआई होम रोबोट सेंटर, लोगों को मिलेगा रोबोट का लाइव अनुभव। सफाई और कपड़े धोने में मदद करेगा एआई रोबोट को, खाना बनाने में भी जिम्मा दिया गया है। एक्सोस्केलेटन रोबोट बनाकर शृणगमों के केंद्र, सिर्फ 2.25 किलो का है वजन। चीन के जेजियांग में रोबोट ने मचाया तहलका, यूनिट 3 के सुपरमैन ने 2 मीटर जंप लगाई। सुपरमैन रोबोट का जबरदस्त प्रदर्शन, इंसानी रिकॉर्ड को दी कड़ी चुनौती, 12.66 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड। चीन में रोबोट प्रोडक्शन बढ़ा, जनवरी से जुलाई के बीच 28.5% हुई बढ़ोतरी। प्रिंटिंग का इक्विपमेंट का उत्पादन भी बढ़ा, हाई टेक सेक्टर में तेजी, लिथियम बैटरी प्रोडक्शन में हुई तेजी। बटरफ्लाई से प्रेरित चीन की नई टेक्नोलॉजी, तितली से प्रेरित हवा सैंपलिंग तकनीक तैयार, नाम है फेस। फेस को बिजली की जरूरत नहीं होती, किसी पंप की भी आवश्यकता नहीं होती, सीधी हवा से सैंपल लेता है। सिर्फ 12 सेंट में डिस्पोजेबल यूरिन, प्रदूषण की निगरानी और बीमारियों पर नजर रख सकता है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: नेपाल में मुस्लिम होना गुनाह, कावड़ियों ने सीआरपीएफ जवान को पीटा, मोरक्को से तैर कर एक युवक स्पेन पहुंचा, टीचर का जुगाड़ केमिस्ट्री में कमाल, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: काशी जहां लोग धर्म और आस्था को समझने के लिए खिंचे चले आते हैं, लेकिन नागपंचमी पर यहां कुछ विदेशी मेहमान अपने दमखम को परखने भी पहुंचते हैं। जी हां, काशी के अखाड़ों में आज के दिन कुश्ती के साथ साथ जोड़ी, गदा और टंबल का ऐसा रंग जमता है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। इस बार स्पेन और नेदरलैंड से आए पहलवानों ने जब देसी अखाड़े में जोर आजमाइश शुरू कर दी तो वहाँ मौजूद लोग भी हैरान रह गए। आखिर इन विदेशी मेहमानों को काशी के अखाड़ों ने इतना कैसे अपना बना लिया? आप नागपंचमी पर काशी के अखाड़ों में उस खुशी को महसूस करने वाले इन विदेशी पहलवानों को देखकर समझ सकते हैं। स्पेन के सेंटियागो, जिन्हें लोग प्यार से सेंटी या शांति भी बुलाते हैं, और नेदरलैंड्स के हर्बर्ट हर साल नागपंचमी पर काशी का रुख करते हैं। सेंटियागो अपने देश में मैस्ट्रो खेल के लिए जाने जाते हैं, खिलाड़ी हैं और प्रशिक्षक हैं, और कहते हैं कि इसका रिश्ता भारतीय अखाड़ों की जोड़ी और गदा से काफ़ी मिलता जुलता है। उन्हें काशी के अखाड़ों की मिट्टी, यहाँ का माहौल और पहलवानों का भाईचारा पश्चिमी जिम से कहीं ज़्यादा बेहतर लगता है। बात करेंगे उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों को है। हम बात कर रहे हैं नमित मल्होत्रा की रामायण की। दो पार्ट में बन रही इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताया जा रहा है, यानी फिल्म का पैमाना जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसकी प्लानिंग भी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिवाली के आसपास रिलीज करने की इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी क्यों बनाई गई है, क्योंकि दिवाली यानी छुट्टियां, परिवार और सिनेमाघरों तक पहुंचने वाला बड़ा दर्शक वर्ग।
2: तुम्हारा नया राजा

0: भारतीय सिनेमा के सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट में से एक रामायण, जिसने रिलीज से अरसे पहले ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, आम जन से लेकर खास तक, समाज के हर तबके, हर वर्ग तक रामायण पहुंच पाए, इसके लिए मेकर्स एक खास प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं।
1: जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की।
0: मेकर्स की प्लानिंग का एक ही अहम हिस्सा है फिल्म की रिलीज डेट। रामायण पार्ट 1 दीपावली पर रिलीज होनी है, ये तय है, लेकिन किस तारीख को रिलीज होगी ये अब तक पुख्ता तौर पर तय नहीं था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में रामायण की रिलीज डेट 30 अक्टूबर बताई जा रही थी, लेकिन कन्फर्म कुछ भी नहीं था।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार।
0: अब रामायण के मेकर्स ने काफी सोच समझ कर रामायण की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है।
2: निर्णय मैं ले चुका हूं, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
3: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास।
0: 6 नवंबर यानी दिवाली से 2 दिन पहले रामायण पार्ट 1 वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। इससे मेकर्स को 2 हफ्ते का दमदार रिलीज पैसेज मिलने जा रहा है। इसे जानने के लिए इस तारीख की क्रोनोलॉजी समझनी होगी।
3: एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।
0: 6 नवंबर को शुक्रवार है और इसी दिन धनतेरस भी है। 7 नवंबर को शनिवार है यानी वीकेंड, छुट्टी का दिन होने से इसे भरपूर दर्शक भी मिलेंगे। 8 नवंबर को रविवार है और दीपावली भी है, जिसका फायदा फिल्म को फैमिली ऑडियंस के तौर पर मिल सकता है। 9 नवंबर को सोमवार है। 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, कई दफ्तरों में उस दिन छुट्टी होती है। और 11 नवंबर यानी बुधवार को भाई दूज का त्योहार है। 13 नवंबर यानी शुक्रवार से दूसरे हफ्ते से वीकेंड शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि रामायण को न सिर्फ बम्पर ओपनिंग मिल पाएगी बल्कि 2 दमदार वीकेंड भी, यानी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए अच्छा खासा वक्त मिलने जा रहा है।
3: सूर्यनखा, वो मोहित हो गई है आप पे।
4: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूर्यनखा।
0: हालांकि ओवरसीज में रामायण की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। 5 नवंबर हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो रिलीज होगी, मतलब 6 नवंबर को इसका सामना रामायण से होगा। गॉडजिला एक पॉपुलर फ्रेंचाइज है, इसलिए रामायण को क्लैश झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत में रामायण को एक छत्र राज मिल सकेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: क्या सावन के मंगलवार भी बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं? सावन के मंगलवार का क्या माता गौरी के साथ कोई संबंध है? क्या है सावन के मंगलवार का पूजा विधान और सावन के मंगलवार को मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की कतार, सोमनाथ में निकली बाबा की पालकी यात्रा, मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन। नागपंचमी पर काशी के अखाड़ों में उतरे विदेशी पहलवान, धूमधाम से निभाई गई सैकड़ों साल पुरानी कुश्ती की परंपरा, अगले 2 से 3 महीने चलता है दंगल। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में दिखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, गालब ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। पहाड़ से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम सुहाना, मुंबई में भी जमकर बरस रहे बादल। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। काशी से लेकर देवघर तक, प्रयागराज से लेकर देश के तमाम बड़े शिव मंदिरों तक भक्तों का तांता लगा है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। सावन का तीसरा सोमवार, मंदिरों में श्रद्धा अपार। जी हां, आपको बता दें कि आज देश भर के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के कार्य गूंज रहे हैं। काशी से लेकर देवघर तक, प्रयागराज से लेकर देश के तमाम बड़े शिव मंदिरों तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं, वहीं देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में भी आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का जत्था शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंच रहा है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई समेत देश के अलग अलग हिस्सों में भी भक्त जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं, दूध बेलपत्र और फूल अर्पित कर भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। चारों तरफ आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और सब ओर बस एक ही गूंज है, हर हर महादेव और जय भोलेनाथ की। सावन का तीसरे सोमवार इस साल नागपंचमी का महासंयोग भी लेकर आया है। आज नागपंचमी का महापर्व भी है। धर्मनगरी उज्जैन में नागपंचमी के शुभ अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है नागपंचमी पर खुला उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर। जी हां, बाबा महाकाल की नगरी में देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौका है साल में सिर्फ एक बार खुलने वाले भगवान नागचंद्रेश्वर के दरबार के दर्शन। आधी रात से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। हर तरफ हर हर महादेव और जय नागचंद्रेश्वर के जयकारे गूंज रहे हैं।

0: भगवान नागचंद्रेश्वर का ये मंदिर अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इस मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी के शुभ दिन ही खुलते हैं। सावन के पावन महीने में आने वाली नाग पंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने और उनके दर्शन करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि साल में सिर्फ एक दिन मिलने वाले इस दुर्लभ दर्शन के लिए भक्त घंटों लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। रात 12 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। पट खुलने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजन आरती की। इसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर खोल दिए गए, जो रात 12 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। महाकालेश्वर धाम में मौजूद ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्प शैया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिवजी, गणेश जी और माँ पार्वती के साथ दशमुखी सर्प शैया पर विराजित हैं। शिव शंभु के गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हुए हैं।
1: नाग पंचमी का त्योहार है और नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन पूरे वर्ष भर में 24 घंटे के लिए पट खुलते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने आते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं 12 बजे विधिवत पूजन के साथ दर्शन व्यवस्था शुरू हो गई है। श्रद्धालु जो है नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करके वापिस हो रहे हैं और पूरे दिन ये तांता लगा रहेगा। विगत वर्ष 9 से 10 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, इस वर्ष वो आंकड़ा भी क्रॉस होने की उम्मीद है।
0: मौका नाग पंचमी का है तो बाबा महाकाल का श्रृंगार भी बेहद भव्य और दिव्य किया गया। नाग पंचमी के पावन अवसर पर महादेव का विशेष श्रृंगार हुआ, जिसमें भगवान शिव के मस्तक पर नाग वासुकी विराजमान नजर आए। भस्म, पुष्प और आभूषणों से सजे बाबा महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया।
2: भक्त लोगों को बाबा के दरबार के अंदर दोगुना लाभ प्राप्त हो रहा है। बाबा महाकाल के दर्शन के साथ साथ में भगवान का जो वासुकी नाग है उनके भी दर्शन का पुण्य प्राप्त हो रहा है। बाबा महाकाल की प्रातः काल की भस्म आरती में भगवान महाकाल ने स्वयं रजत का वासुकी नाग धारण किया है, जो साल में एक बारी बाबा महाकाल करते हैं और वही नाग का स्वरूप ऊपर नागचंद्रेश्वर महादेव के रूप में भक्त लोग दर्शन करते हैं।
0: मान्यता है कि नाग वासुकी भगवान शिव के परम भक्त हैं और महादेव के गले में नाग का विराजमान होना उनके नागों के प्रति विशेष संबंध को दर्शाता है। नाग पंचमी पर बाबा महाकाल का ये स्वरूप भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना।
3: और आज का क्राउड बहुत बढ़ गया है, बट वो जो श्रृंगार है इसके लिए बहुत जनता आई हुई है इस त्योहार में, और हमें भी बहुत अच्छा मौका मिला और हम लोग भी उस मौके का एक अच्छा पार्टिसिपेंट हुए। इसके लिए महाकाल की जय श्री महाकाल।
4: क्योंकि आज नाग पंचमी के दिन में इतनी भीड़ में दर्शन करने मिला बहुत बड़ी बात थी, और जो दर्शन हुए वो बहुत बहुत खूबसूरत थे, आरती बहुत खूबसूरत थी और बहुत बहुत आनंद आया।
0: उज्जैन ही नहीं देश भर के तमाम मंदिर हैं जहां महादेव के भक्त नाग पंचमी के मौके पर नाग देवता की पूजा कर रहे हैं। प्रयागराज के प्रसिद्ध नाग वासुकी मंदिर में भी नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। गंगा किनारे स्थित ये प्राचीन मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है। वैसे तो यहां पूरे साल पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लेकिन नाग पंचमी के दिन दर्शन और पूजन का विशेष महत्व माना जाता है।
5: यहाँ पर नाग वासुकी मंदिर में भक्तों की जो भीड़ है सुबह से लगी हुई, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु हाथों में जल लेकर के और बेलपत्र लेकर के यहाँ आए हैं। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें नागों के राजा यानी नाग वासुकी का वास है और यहाँ पर नाग के रूप में विराजमान देवता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए हैं। आप हमारे पीछे यहाँ पर लंबी लाइन श्रद्धालुओं को देख सकते हैं, हाथों में लावा और दूध यहाँ पर चढ़ाया जाता है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर अपने हाथों में जल लेकर के आए हैं और भगवान नागवासुकी के दर्शनों के लिए लंबी लाइन सुबह से लगी हुई है।
0: मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग वासुकी की विधि विधान से पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यही वजह है कि इस दिन हर श्रद्धालु यहां पहुंचकर नाग देवता का जलाभिषेक करना चाहता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की वार्षिक यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच जम्मू से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है, तीसरी गुड न्यूज है, वो इसी से जुड़ी हुई है। वो है बम बम भोले के जय घोष से शुरू बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। जी हाँ, आपको बता दें कि आज सुबह करीब 6:30 बजे जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से श्रद्धालुओं के जत्थे को पुंछ के लिए रवाना किया गया। करीब 230 किलोमीटर लंबी इस 12 दिवसीय यात्रा का समापन रक्षाबंधन के दिन होगा।

0: जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्थित हिमालय तीर्थ स्थल बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को इस यात्रा समारोह का उद्घाटन किया।
1: 2005 आयोजित की जा रही यात्रा केवल पर्वतों और घाटियों को पार करने वाली यात्रा नहीं है, ये हमारे बाहरी पथ से कहीं अधिक हम सबके अंतर्मन की यात्रा है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये तीर्थ यात्रा स्वयं के भीतर स्थित चेतना को पहचानने की भी यात्रा है। यह पावन तीर्थ यात्रा भगवान शिव की ओर अग्रसर होने की भी यात्रा है, जो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थल की दिव्य ऊंचाइयों में विद्यमान है।
0: 12 दिनों तक चलने वाली बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी
2: और 2005 से ये निर्विघ्न आज तक यात्रा चलती आ रही है और हर साल ये जो श्रावण के लास्ट 10 दिन हैं उस दिन बजरंग दल के जत्थे जो है पूरे भारतवर्ष से अलग अलग प्रांतों से यहाँ आते हैं। आज पहला जत्था यहाँ से रवाना हो रहा है और अंतिम दर्शन जो इन जत्थों के है वो रक्षाबंधन के दिन होंगे और उस दिन ये यात्रा संपन्न होगी।
0: बाबा बूढ़ा अमरनाथ छड़ी यात्रा से पहले पुंछ जिले में स्थित नवग्रह मंदिर से दिव्य त्रिशूल यात्रा भी निकाली गई। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच त्रिशूल की पूजा की गई। पूजा अर्चना के बाद गाड़ियों के काफिले के साथ त्रिशूल यात्रा शुरू हुई। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष करते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस त्रिशूल यात्रा में शामिल हुए।
3: जो त्रिशूल यात्रा है आपको पता है हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब यहाँ आती है उससे एक दिन पहले ये जो त्रिशूल यात्रा है ये नवग्रह मंदिर अजोट जो कि देरिया में है वहाँ से निकलती है और यात्रा ग्राउंड तक पहुँच रही है। आपने देखा होगा भोले का जो त्रिशूल है ये एक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर बढ़ चढ़ कर जो हमारे पुंछ के वासी हैं खास करके बिना मजहब मिलत हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पहुँचता है और ये खास करके एक तरह से आयोजन होता है बाबा बूढ़ा अमरनाथ से पहले कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आ रही है जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए सारे पुंछ वासियों को जिस तरह से वो वेलकम करने के लिए हर बार यात्रियों को यहाँ पहुँचते हैं।
0: पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ गुफा के समान ही आस्था का प्रमुख केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में संस्कृति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने के लिए मिला। रामनगरी में झूलन उत्सव के दौरान भरतनाट्यम की भावभंगिमाओं के साथ संपूर्ण रामकथा जीवंत हुई। श्रीराम ऑडिटोरियम में बेंगलुरु से करीब 270 कलाकार पहुंचे और भरतनाट्यम के माध्यम से भगवान श्रीराम की संपूर्ण जीवन गाथा को मंच पर साकार कर दिया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है अयोध्या में झूलन उत्सव पर भरतनाट्यम का आयोजन। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रस्तुति के दौरान कलाकार श्रीराम जन्म से लेकर बाल्यकाल वनवास सीताहरण रावण वध अयोध्या वापसी और सीताराम कल्याण तक के प्रसंगों को जीवंत किया। मंच पर जब रामकथा के अलग अलग प्रसंग साकार हुए तो पूरा सभागार भक्तिभाव से सराबोर नजर आया। इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन की खास बात ये रही कि इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी कलाकारों के साथ शामिल रहे। नन्हे कलाकारों ने अपनी भाव भंगिमाओं और अनुशासित नृत्य प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। भरतनाट्यम के पारंपरिक पच्चाप मुद्राओं और भाव भक्ति के साथ रामकथा के प्रसंगों ने ऐसा वातावरण बनाया कि दर्शक स्वयं को कथा का हिस्सा महसूस करने लगे। कलाकारों के मुताबिक अयोध्या में आकर श्री राम के जीवन और आदर्शों को भरतनाट्यम के माध्यम से अभिव्यक्त करना उनके लिए किसी साधना से कम नहीं। सावन के झूलनोत्सव के बीच आयोजित इस कार्यक्रम ने अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक छटा को और भव्य बना दिया। दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा और उत्तर भारत की राम भक्ति का यह संगम रामनगरी की उस कृतिक विरासत को दर्शाता है जहां देश के अलग अलग हिस्सों की परंपराएं आकर श्री राम के चरणों में एकाकार हो

0: भगवान को भगवान की जगह में नृत्य का समर्पण होना है, इसी बात से हमने प्रोग्राम शुरू किया था। इसी मूल उद्देश्य है चिगरो संस्था का। सो बहुत बहुत ऐसी प्रसिद्ध स्थल में हम बच्चे लोगों को लेके जाएंगे, वहाँ पे परफॉर्मेंस कराएंगे। ये पूरी भगवान की लीला है, हम कुछ नहीं है इसमें, बट ये हमारा सालों का, मेरे परदादा लोगों का ड्रीम था शायद, तो रामलला का इस जन्मों में ये सब लोगों को लेके आना, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। वो कोई पीछे से कुछ करवा रहा है, भाई आप देख रहे हो ना, वही करवा रहा है और कुछ नहीं। मैंने रामलला को टीवी में देखा था तो ऐसे सोचा हाँ रामलला ऐसे होंगे, जब वो सामने से देखा तो हम तो शौक में शौक ही है अभी तक, और एक दो साल लगेगा वो शौक से बाहर आने के लिए। तो रामलला ये है जो मैंने फील किया है, उसी उनका ही लीला है। तो इतने सब लोग उनके लिए डांस से समर्पित करने के लिए हम लोग आए बस।
1: और दिल्ली से सटे सोनीपत के मशहूर मुरथल के ढाबे अब सिर्फ अपने स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी को लेकर भी चर्चा में है। मुरथल के रेशम ढाबे पर अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट वेटर ग्राहकों के टेबल तक खाना पहुंचा रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि छठी पांचवी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें मुरथल में ढाबे पर रोबोट परोस रहा भोजन। जी हाँ, ढाबे पर रोबोट को खाना सर्व करते देखकर ग्राहक भी हैरत में पड़ जा रहे हैं। कई बार तो ग्राहक मोबाइल निकालकर वीडियो और सेल्फी लेते नजर आते हैं। दरअसल ये रोबोट नेविगेशन सिस्टम की मदद से खुद तय रास्ते पर चलते हुए सीधे ग्राहक के टेबल तक पहुंचकर उन्हें खाना सर्व करते हैं। दरअसल जिस मुरथल का नाम सुनते ही आंखों के सामने गर्मा गर्म पराठे और देसी ढाबे आते हैं, अब उसी मुरथल में खाना परोसने का अंदाज बदल गया है। मुरथल के रेशम ढाबे पर अब वेटर की जगह रोबोट ग्राहकों के टेबल तक खाना पहुंचा रहे हैं। ऑर्डर तैयार होते ही फूड ट्रे रोबोट पर रखी जाती है और नेविगेशन सिस्टम की मदद से रोबोट खुद तय रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं।
2: बहुत अच्छा था वो, बहुत ही अच्छा था वो, हमारे लिए फर्स्ट टाइम था और बहुत ही अच्छा था हमारे।
3: रोबोट से ही खाना मंगवाया?
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
3: कैसा लगा?
2: बहुत ही अच्छा फील था वो।
3: पहले आपने कभी कहीं देखा है?
2: नहीं नहीं, ये नहीं देखा हमने।
4: ये आइडिया देखो, हमने मुरथल में सभी रेस्टोरेंट और ढाबे सभी खाना खिला रहे हैं, हमने सोचा कुछ यूनिक भी चीज लाई जाए खाने के स्वाद के साथ साथ, है ना, एक यूनिक चीज अगर पूरे मुरथल में दी जाए तो बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। तो ये हम बेंगलोर से
3: अप्लाई कैसे किया जाता है?
4: इनको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है सर, इसके लिए एक स्पेशल एक बंदा है जो इनको प्रॉपर रिमोट से इसको कंट्रोल करते हैं।
3: सर कोई वगैरह भी लगी है?
4: चिप लगी है और जो कंट्रोल हो रखा है पूरी निगरानी रखता है कि कोई गेस्ट या किसी के ऊपर ऐसी टच ना हो तो उसको तुरंत कंट्रोल कर लिया जाता है।
1: पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया। वैसे तो रविवार को 25 नए अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एम्स के पास खुले अटल कैंटीन की रही। यहां पर अटल कैंटीन के खुलने से मरीजों के परिजन को सस्ता और पौष्टिक खाना मिलने लगा। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है अस्पतालों के पास खुले अटल कैंटीन, मिल रहा 5 रुपए में खाना। जी हाँ, आपको बता दें कि सफदरजंग और एम्स अस्पताल के पास शुरू हुई कैंटीन में महज 5 रुपए में लोगों को चावल दाल रोटी सब्जी और अचार जैसे पौष्टिक खाना मिल रहा है।

0: उन लोगों के पास इलाज कराने के पैसे बहुत कम होते हैं। ऐसे में लोगों को यहाँ भोजन सस्ते में मिलेगा तो उनकी बचत होगी और उन्हें पौष्टिक भोजन भी मिल पाएगा।
1: राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल के पास अटल कैंटीन खोला गया है, जहां पर लोगों को 5 रुपए में भोजन मिलेगा। अभी हम उसी अटल कैंटीन में मौजूद हैं, जहां पर इसकी शुरुआत हो गई है और उसके बाद लोग यहां पर खाना खाना शुरू कर चुके हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में लोग यहां पर जो है खाना आपको खाते हुए नजर आएंगे और ये पूरी कैंटीन जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है, जिसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि 16 अगस्त के मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश सहाय सिंह वर्मा के द्वारा उद्घाटन किया गया है।
0: ये कैंटीन एम्स अस्पताल के गेट नंबर 5 के पास खोली गई है। इस सड़क के दूसरी तरफ सफदरजंग अस्पताल है, जहां हर रोज बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। यहां पर इलाज के लिए पहुंचे लोगों ने इस कैंटीन के खुलने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इस कैंटीन के खुलने से उनके जैसे लोगों को आसानी से खाना मिल पाएगा।
2: मेरा बच्चा एडमिट है, ब्लड कैंसर है उसे एम्स में जी। हाँ, तो ये योजना है, बहुत बढ़िया योजना है। इससे क्या होगा, कभी मैं मेरे लिए 4 महीने हो गए हैं, कभी कभी मैं ऐसे ही लेट गया था भूखा और कोई खाना बांटने आ जाता था तो मिल जाता था। अब इससे ये होगा कि हम जो हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए कुछ दवाई के पैसे भी बच जाएंगे, खाना मोल नहीं लेना पड़ेगा, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। वैसे तो महंगा खाना पड़ता था, उस पैसे बच जाएंगे तो दवाई में काम आएंगे। ये बहुत अच्छी योजना है।
0: रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर दिल्ली में इस कैंटीन की शुरुआत की गई। इस कैंटीन के शुरू होने के साथ ही दिल्ली में अटल कैंटीनों की संख्या 100 हो गई है। इन कैंटीनों में जरूरतमंद लोगों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। उन्हें केवल 5 रुपए में रोटी, चावल, दाल, सब्जी और अचार मिलेगा।
3: इसकी जो लोकेशन है ये एम्स
4: गेट नंबर 2
3: और ये सफदरजंग हॉस्पिटल के बीच में है, तो यहाँ पे अटेंडेंट जो आते हैं मरीजों के उनको भी भोजन मिलेगा, आसपास के लोगों का भी। और इतना अच्छा पौष्टिक आहार है कि हर व्यक्ति खा सकता है, तो बहुत ही खुशी की बात है कि सरकार ने हर रोज हर दिन एक अपना नया वादा हम लोग पूरा कर रहे हैं।
0: अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती वर्ष में दिल्ली में 100 अटल कैंटीन स्थापित करने की घोषणा सरकार ने की थी, जहां साल के 365 दिन बिना किसी अवकाश के प्रतिदिन प्रत्येक कैंटीन में हजारों लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। रविवार को खुले 25 अटल कैंटीनों से दिल्ली में इन कैंटीनों की संख्या 100 हो गई है, जहां गरीबों, जरूरतमंद और श्रमिक वर्ग के लोगों को केवल 5 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आशुतोष कुमार, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
5: जम्मू कश्मीर के गुरेज में खेल इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने युवाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। यहां पर बगतौर के हाई ग्राउंड में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्थानीय लोगों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, गुरेज में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भव्य समापन। जी हां, आपको बता दें कि समापन समारोह में यहां का पारंपरिक पोलो खेल खेला गया, जिसने आयोजन में रोमांच का रंग भर दिया। कार्यक्रम के बाद विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। We'll be right back.

0: घाटी के युवाओं में ये उत्साह, ये उमंग नए कश्मीर की तस्वीर है। घाटी के युवाओं में खेल के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा साफ नजर आ रहा है। युवाओं में आत्मविश्वास से लबरेज ये तस्वीरें गुरेज घाटी की हैं, जहां इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भव्य समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच मिला, जहां खेल के साथ साथ टीम वर्क, अनुशासन और आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। गुरेज में सेना की तरफ से आयोजित खेल महोत्सव में आसपास के सभी गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। युवाओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन आयोजन सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं रहा। स्वच्छ भारत अभियान और पौधरोपण जैसी सामुदायिक गतिविधियों में भी गाँव की भागीदारी सुनिश्चित की गयी।
1: भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज इलाके में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जो अब समाप्त हुआ है। इस विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद नियंत्रण रेखा पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए खेल की सुविधाएं न सिर्फ

0: बढ़ाना, बल्कि साथ ही साथ उनके बीच में एक भावना खेल और मुकाबलों को लेकर पैदा करना।
1: खेल के मैदान में युवा खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया और सबसे खास आकर्षण रहा पारंपरिक पोलो का मुकाबला, जहां घोड़ों की रफ्तार और खिलाड़ियों के शानदार तालमेल ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। गुरेज की पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक खेल भावना का ये संगम लोगों के लिए खास अनुभव रहा।
0: असल गुरेज घाटी की अगर बात की जाए, यहाँ पर सदियों से पोलो खेला जा रहा है। ये अलग तरीके का पोलो है जो अंतर्राष्ट्रीय पोलो से अलग है, क्योंकि इसमें जो घोड़े इस्तेमाल होते हैं वो कम कद के होते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस भी अलग होती है। दरअसल लद्दाख क्षेत्र और गुरेज घाटी के साथ साथ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का पोलो खेला जाता है। भारतीय सेना को उम्मीद है कि यह रिवायती खेल यानी पोलो जो है उसको दोबारा सीमावर्ती इलाकों खासतौर से गुरेज घाटी में बहाल भी किया जाएगा और विकसित भी।
1: भारतीय सेना की ओर से आयोजित इस पहल का मकसद गुरेज के युवाओं को खेलों और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है, ताकि युवा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपनी प्रतिभा को निखारें और भविष्य में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें।
2: से क्या है कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हुए और या खासकर इसमें यहाँ की बच्चियों को मौका मिला अपने आप को आगे लाने के लिए, और ये एक अच्छा प्लेटफार्म हम यूँ कहेंगे कि इंडियन आर्मी का एक अच्छा इनिशिएटिव, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गेमों में हिस्सा लिया।
1: दरअसल खेल से जुड़े ऐसे आयोजन घाटी के युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा पहचानने, उसे निखारने और बड़े मंच तक पहुंचाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। खेलों के जरिए युवाओं को सकारात्मक दिशा मिल रही है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है और भविष्य के लिए नए सपने देखने का हौसला भी पैदा हो रहा है, जिसकी खुशी स्थानीय लोगों में देखने को मिल रही है।
3: और इंडियन आर्मी से यही रिक्वेस्ट है कि जो 1.0 इस साल हुआ है, तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को अपना टैलेंट शोकेस करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सके।
1: गुरेज घाटी में चल रहे इस खेल महोत्सव में खेल के मैदान से लेकर स्वच्छता अभियान और पौधरोपण तक युवाओं को समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भी जोड़ा गया। ऐसे आयोजनों से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानने और निखारने का मौका मिलता है। गुरेज से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
4: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
6: नेपाल में मुस्लिम होना गुनाह, कावड़ियों ने सीआरपीएफ जवान को पीटा, मोरक्को से तैर कर एक युवक स्पेन पहुंचा, टीचर का जुगाड़ केमिस्ट्री में कमाल, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हुई आरंभ, आशीर्वाद पाने के 12 दिन, तीसरा सोमवार और नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग। देसी ढाबे का हाईटेक वेटर, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की कतार, सोमनाथ में निकली बाबा की पालकी यात्रा, मुंबई में बाबुलनाथ मंदिर में भी पूजा दर्शन। नागपंचमी पर काशी के अखाड़ों में उतरे विदेशी पहलवान, धूमधाम से निभाई गई सैकड़ों साल पुरानी कुश्ती की परंपरा, अगले 2 से 3 महीने चलता है दंगल। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में दिखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, गलव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम।

मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम। देहरादून में बारिश से मौसम सुहावना। मुंबई में जमकर बरसे बादल। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ। इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरफ फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की इस धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए कहा जा रहा है कि नेपाल में धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या इसकी सच्चाई आगे जानिए, हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि कांवड़ियों के ग्रुप ने सीआरपीएफ के जवान को पीट दिया। वायरल दावे की सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि नेपाल का ये वीडियो है जहां पर धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, इस रिपोर्ट में जानिए।
2: नेपाल के सुनसरी में 26 जुलाई की रात दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। यह झड़प कांवड़ यात्रा की तैयारी के दौरान दूसरे समुदाय के गांव के सामने बिजली के खंभों पर झंडे लगाने को लेकर हुई थी। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति पेड़ में बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान वहां मौजूद कुछ बच्चे उसकी दाढ़ी खींचते हैं और उसके साथ मारपीट करते नजर आते हैं। वीडियो में लोकेशन के तौर पर नेपाल लिखा हुआ है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस टाइम नेपाल में मुस्लिम होना कितना मुश्किल है, मुसलमानों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक व्यक्ति को पेड़ से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति जहां पर मौजूद कुछ बच्चे उसकी दाढ़ी खींचते हैं, उसके साथ मारपीट करते नजर आते हैं। वीडियो में लोकेशन के तौर पर नेपाल लिखा हुआ है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। दावा इसमें यह किया जा रहा है कि धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और से सुना भी। इस दौरान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये बांग्ला भाषा लगी। अब वीडियो अगर नेपाल का है तो जाहिर सी बात है कि इसमें बांग्ला आवाजें क्यों आ रही हैं, यह हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। वीडियो में कुछ ऑटो रिक्शा भी हमें दिखाई दिए और जब हमने इनके नंबर प्लेट्स को जूम करके देखा और यहां भी बांग्ला में ही शब्द लिखे नजर आए। साथ ही साथ वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने से हमें वहां मौजूद बिल्डिंग पर भी बांग्ला भाषा ही नजर आई। ऐसे में यह इशारा मिल रहा है कि वायरल हो रहा वीडियो नेपाल का तो नहीं हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यह कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो नेपाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर किसी और घटना से संबंधित किसी पुराने वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक इंस्टाग्राम अकाउंट का वाटरमार्क दिखाई दिया। उक्त इंस्टाग्राम को खंगालने पर हमें ये वीडियो 15 जुलाई को अपलोड किया गया मिला। हालांकि वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने पर हमें वहां मौजूद बिल्डिंग पर बांग्ला भाषा में दक्षिण विंगलाबाड़ी केंद्रीय जामे मस्जिद लिखा दिखाई दिया। विंगलाबाड़ी बांग्लादेश के कोमिला जिले के देवीद्वार उपजिले में स्थित एक गाँव है। इसके बाद सर्च के दौरान हमें गूगल मैप्स पर भी बिल्कुल यही जगह मिल गई। मैप पर वही मस्जिद देखी जा सकती है जो वायरल वीडियो में नजर आ रही है। इसके अलावा जिस पेड़ से आदमी बंधा हुआ है वो भी गूगल मैप के स्ट्रीट व्यू पर देखा जा सकता है। इसके बाद हमने बिल्डिंग पर बांग्ला भाषा में लिखे दक्षिण विंगला बाड़ी केंद्रीय जामे मस्जिद को गूगल मैप्स पर सर्च किया तो कुमिला जिले के विंगला बाड़ी इलाके की कई मस्जिदों के आसपास स्ट्रीट व्यू को खंगालने पर उक्त स्थान मिला। यह स्थान हमें बाखराबाद पन्नारपुल सड़क पर मिला। इस वीडियो में आदमी को क्यों मारा जा रहा था पुख्ता तौर पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो नेपाल का नहीं बांग्लादेश का है। रिधीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में भगवा कपड़े पहने कई लोग सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि कावड़ियों ने फौजी जवान को पीटा है। क्या है सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
2: सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भगवा कपड़े पहने कई लोग एक सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि कांवड़ियों ने फौजी जवान को पीटा। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि कांवड़ियों ने फौजी भाई को पीटा जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। वह इन अंधभक्तों से सुरक्षित नहीं है और अभी 15 अगस्त को इनके अंदर देशभक्ति जाग जाएगी और नारा लगाएंगे इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय। और अभी देखो पुण्य कमाने गए थे पाप कमा रहे हैं। वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लगातार शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में भगवा कपड़े पहने कई लोग एक सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि कांवड़ियों ने एक सीआरपीएफ जवान को पीटा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि यह किसी रेलवे स्टेशन का वीडियो है क्योंकि यहां पर टिकट खिड़की भी नजर आ रही है और वीडियो को ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहासुनी की वजह से मारपीट हुई है, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर यह हालिया वीडियो होता तो फिर कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी जरूर मिलती, लेकिन हमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यह कि अगर दावा सही है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कहां का है। दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। सच और झूठ आप इस रिपोर्ट में देखिए।
2: सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इसी वीडियो के दृश्य 19 जुलाई 2025 को एक फेसबुक पेज पर प्रकाशित रिपोर्ट में दिखाई दिए। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों के एक समूह ने एक सीआरपीएफ जवान के साथ मारपीट की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि जवान और कांवड़ियों के बीच ट्रेन का टिकट खरीदने को लेकर विवाद हुआ था। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा और मामले की कार्रवाई की गई। इस मामले में 7 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया था। सर्च के दौरान हमें 20 जुलाई 2025 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट में इसी घटना के दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों ने सीआरपीएफ जवान गौतम के साथ मारपीट की थी। जवान के साथ उनका बेटा भी मौजूद था। बेटे की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया था और 4 नाबालिगों का चालान किया था। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि सीआरपीएफ जवान के साथ मारपीट का ये वीडियो हालिया नहीं बल्कि 1 साल पुराना है। अब कई सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को वर्तमान में चल रही कांवड़ यात्रा से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हुई आरंभ, आशीर्वाद पाने के 12 दिन, तीसरा सोमवार और नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग। देसी ढाबे का हाईटेक वेटर, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त हो चला है फैक्ट चेक के लिए, आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। यूजर्स इस वीडियो पर फनी कमेंट्स करते हुए ये कह रहे हैं कि किसी को कम आंकना भारी पड़ सकता है। वीडियो में एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर दो छोटे लड़के और दो लड़कियां ग्लव्स पहनकर आमने सामने नजर आते हैं। मुकाबला शुरू होने से पहले दोनों लड़के इशारा करते हैं कि इनका तो चंद सेकंड में ही काम खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होता है दोनों बच्चियां बिना डरे लड़कों पर मुक्कों की बरसात कर देती हैं। बच्चियों के आक्रामक हमले और लगातार पड़ते पंचों के आगे लड़के खुद को बचा नहीं पाते और रिंग में ही रोने लगते हैं। लोग इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं। रोज रोज एलिमेंट्स रट कर याद करना बच्चों को भला कितना पसंद आता है, लेकिन इस साइंस टीचर ने इसका ऐसा मजेदार जुगाड़ निकाला कि अटेंडेंस ही केमिस्ट्री की क्लास बन गई। अब टीचर का ये अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है।
7: 13,
2: वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लास में जैसे ही टीचर ने नंबर पुकारने शुरू किए बच्चों की तरफ से जवाब आने लगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट मैम, हीलियम प्रेजेंट मैम, लिथियम प्रेजेंट मैम, और फिर आगे भी इसी अंदाज में अटेंडेंस चलती रही।
7: हाइड्रोजन प्रेजेंट 2, हीलियम प्रेजेंट 3, लिथियम प्रेजेंट 4, बेरिलियम अब्सेंट 5, बोरॉन अब्सेंट 6, कार्बन प्रेजेंट 7, नाइट्रोजन प्रेजेंट।
2: बच्चों ने अटेंडेंस के बहाने पीरियोडिक टेबल के शुरुआती एलिमेंट्स के नाम और क्रम को दोहराया। आमतौर पर छात्रों को एलिमेंट्स के नाम याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है, खासकर जब सिंबल और एटॉमिक नंबर एक साथ याद करने हो, लेकिन इस टीचर ने पढ़ाई को रटने के बजाय रोजमर्रा की क्लासरूम एक्टिविटी से जोड़ दिया। इस तरीके की खास बात यह है कि बच्चों को अलग से बैठकर नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अटेंडेंस के दौरान बार बार नाम सुनने और बोलने से एलिमेंट्स का क्रम दिमाग में आसानी से बैठ सकता है।
8: मैं तो नहीं करती प्यार, तुम्हारे ए मुंह बंद करो, मैं तो नहीं करती प्यार, जबरदस्ती प्यार करती हूँ।
5: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में छोटा बच्चा स्कूल में अपनी टीचर से बेहद मासूम अंदाज में बात करता नजर आ रहा है। बच्चे की प्यारी बातें और उसकी मासूमियत को देखकर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। टीचर के प्रति इस बच्चे के लगाव को देखकर लोग इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो ने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।
8: चलिए ये बताओ कि जब से नाम लिखवाया तब से प्यार करती हूँ, अब नहीं करती। चाहिए तुमको, चलो तुम्हारे बर्थडे पे मैं बाइक खरीद के दूंगी। ओके,
7: ये माँ बाप अपना नाम खुद क्यों नहीं रोशन करते, कि बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुम हमारा नाम रोशन करो, तुम हमारा नाम रोशन करो।
5: सोशल मीडिया पर एक प्यारी बच्ची का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची बड़े मासूम अंदाज में कहती है कि ये माँ बाप अपना नाम खुद क्यों नहीं रोशन करते, बच्चों पर प्रेशर क्यों डालते हैं। बच्ची की मासूम बात और बेबाक अंदाज ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है। कई यूजर्स इसे जेन अल्फा की बेबाक सोच बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे मजेदार अंदाज में शेयर कर रहे हैं। वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बच्चों पर जरूरत से ज्यादा उम्मीदों का दबाव सही नहीं है, उन्हें अपनी पसंद से आगे बढ़ने देना चाहिए। जरा सोचिए, आपका बच्चा अगर चॉकलेट टॉफी या आइसक्रीम के लिए जिद करे तो आप क्या करेंगे? प्यार से समझाएंगे, थोड़ा डांटेंगे या फिर साफ साफ मना कर देंगे? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही रोक टोक आपके बच्चे को इतनी नाराज कर सकती है कि वो सीधे पुलिस के पास पहुंच जाएं? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मजेदार वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। महज 3 साल का मासूम अपनी माँ से इस कदर खफा हुआ कि उसने शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन का हेरुक कर लिया। बच्चे का अंदाज और उसकी मासूमियत देखकर वहाँ मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस 3 साल के बच्चे को उसकी माँ ने ज्यादा चॉकलेट खाने से रोक दिया। सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि उनकी पहुँच से दूर करने के लिए उनकी चॉकलेट भी जब्त कर ली। बस फिर क्या था, इस नाइंसाफी से गुस्सा होकर मासूम अपने पापा के साथ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। बच्चे की मासूमियत देखकर पुलिस वालों ने भी पेशेवर रुख अपनाया। महिला अधिकारी ने बच्चे की बात को उतनी ही गंभीरता से सुना जितनी गंभीरता से बड़े बड़े मामलों की सुनवाई होती है।

0: एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ जाने की जिद में चुपचाप ट्रॉली के पीछे बैठ जाता है। पिता को जब इसकी भनक लगती है और वह मुड़कर देखते हैं तो बेटे को वहां बैठा देख भावुक हो उठते हैं। बेटे के मासूम जिद और पिता का संघर्ष भरा जीवन, यह दृश्य हर किसी के दिल को छू रहा है। लोग इस वीडियो को साझा करते हुए इसे मेहनतकश परिवारों के प्यार और रिश्तों की सच्ची तस्वीर बता रहे हैं। बेटी का जन्म हुआ है, सुनने के बाद अब कई परिवारों ने सामाजिक सोच को बदलते हुए नया नजरिया दुनिया को दिखाया है। अब परिवार बेटी के जन्म पर खुशी जताते हैं, इतनी खुशी मानो उन्हें दुनिया मिल गई हो। इस खुशी से उन परिवारों की सोच बदली जा सकती है जो आज भी लड़की की पैदाइश पर खुश नहीं होते हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि घर में बेटी के आई, पूरा मोहल्ला सेलिब्रेशन मूड में आ गया। ये बात पूरे वीडियो में दिखाई भी देती है। वीडियो के शुरू में दुल्हन की तरह सजा हुआ घर नजर आता है, ठीक इसके बाद कारें दिखती हैं जिनसे बेटी को घर लाया जा रहा था। इन कारों को भी गुब्बारों से सजाया गया था और लग रहा था कि परिवार बेटी को शान से घर ला रहा है। फिर घर के बाहर बेटी के आते ही अलग लेवल का सेलिब्रेशन शुरू हो गया। सजे हुए घर के बाहर पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा मोहल्ला डांस करता दिख रहा है। इस वीडियो को देखने वाले परिवार की खुशी को महसूस कर पा रहे हैं। यूजर्स इस वीडियो को बार बार देख रहे हैं और जमकर इस पर कॉमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का चारपाई पर लेटकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी एक बंदर आकर उसके पास बैठ गया और स्क्रीन पर चल रहे गेम को बड़े ध्यान से देखने लगा। लड़के ने भी बिना घबराए अपना गेम खेलना जारी रखा। बंदर का यह अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। इन दिनों दो विशाल कछुओं का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बड़े जाइंट टॉर्टोइज एक दूसरे को धक्का देते और पलटने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें चिड़ियाघर का कर्मचारी दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। वीडियो में दोनों की लड़ाई देखने में काफी मजेदार लगती है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों कछुए आमने सामने हैं। दोनों अपने सिर को आगे कर एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। कभी एक कछुआ दूसरे को पलटने की कोशिश करता है तो कभी दूसरा पलट कर जवाब देता है। कछुओं की यह लड़ाई देखकर लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इतने भारी और धीमे दिखने वाले जानवर इतने आक्रामक भी हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहे कछुए, जिन्हें अफ्रीकन स्पर टॉर्टोइज भी कहा जाता है, ये कछुए काफी बड़े होते हैं और इनका व्यवहार कई बार बेहद आक्रामक हो सकता है। खासकर नर कछुए के बीच इलाके और प्रभुत्व को लेकर टकराव देखने को मिलता है। वे अपने मजबूत शरीर और गले के नीचे मौजूद सख्त हिस्से की मदद से दूसरे कछुए को धक्का देते हैं। कई बार उनका मकसद सामने वाले को पलट देना होता है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हुई आरंभ, आशीर्वाद पाने के 12 दिन, तीसरा सोमवार और नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग। देसी ढाबे का हाईटेक वेटर, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: मंगलवार भी बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं। सावन के मंगलवार का क्या माता गौरी के साथ कोई संबंध है? क्या है सावन के मंगलवार का पूजा विधान और सावन के मंगलवार को मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। भोलेनाथ से आशीर्वाद पाने के 12 दिन बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। तीसरा सोमवार और नागपंचमी का दुर्लभ संयम, दर्शन पूजन से दूर होते हैं काल सर्प दोष। और रोबोट परोस रहे हैं सफेद मक्खन वाले पराठे, मुरथल के मशहूर ढाबे में बैटरी से चलने वाले वेटर से भी मिली, लेकिन शुरुआत है टाइम्स के साथ।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: में सावन के तीसरे सोमवार की रौनक, सोमनाथ में निकली बाबा की पालकी, मुंबई के बाबूनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन। नागपंचमी पर काशी के अखाड़ों में उतरे विदेशी पहलवान, धूमधाम से निभाई गई सैकड़ों साल पुरानी कुश्ती की परंपरा, अगले 2 से 3 महीने चलता रहेगा दंगल। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में दिखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, गलव ऋषि की तपस्थली है गलता धाम। पहाड़ से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम सुहावना, मुंबई में जमकर बरस रहे हैं बादल। इंडिया टुडे ग्रुप की एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज। शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की, सबसे पहले बात बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के बाद सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया और इसके साथ ही जम्मू से पुंछ जिले के मंडी क्षेत्र में मौजूद भगवान शिव के प्राचीन मंदिर तक जाने वाली धार्मिक यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंचे हैं।

हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंजता जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप। जहां से ये आस्थावान श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए तो पूरा माहौल शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आया।

0: क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई इस पवित्र यात्रा के लिए उत्साहित नजर आया। यात्रा की शुरुआत सुबह सवेरे पूजा पाठ के बाद हुई। इस यात्रा के शुभारंभ के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भगवती नगर बेस कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा पाठ के बाद यात्रियों के पहले जत्थे को झंडा दिखाकर आगे की ओर रवाना किया। इसी के साथ जम्मू के पुंछ जिले के मंडी क्षेत्र में मौजूद भगवान शिव के प्राचीन मंदिर तक जाने वाली इस यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है।
1: बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो आज से शुरू होने जा रही है। पहला जत्था जो है वो जम्मू से निकल रहा है और तस्वीरों में देखिएगा कि हम एक बस में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और खासा उत्साह है। पहली बार आए या हर बार आते हैं?
2: सेकेंड बार आए।
1: सेकेंड बार, तो पहले से कितना बदलाव लग रहा है इस बार का?
2: काफी बदलाव है।
1: बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे थे, आज पहला जत्था बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का यहां से रवाना हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा यहां पर, जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया इस पहले जत्थे को, यहां से रवाना किया और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है उत्साहित होकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं।
0: बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हिंदुओं की एक सालाना तीर्थ यात्रा है, जो मॉनसून के पवित्र महीने श्रावण मास में होती है, जिसके लिए हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्री देश भर से जम्मू आते हैं। इन तीर्थयात्रियों के आने जाने, ठहरने, खाने पीने, स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा जिम्मा प्रशासन उठाता है, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। प्रशासन की कोशिश है कि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के बाबा के दर्शन कर सकें और सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सकें।
1: बम बम बोले, बम बम बोले। देखिएगा भक्तों में कितना जोश है, कितना उत्साह है बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा में जाने के लिए, क्योंकि इससे पहले अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू हुई थी और ठीक उसके साथ आज पुंछ की ओर जो है वो यात्रा जाने वाली है। कैसा लग रहा है इस बार की व्यवस्था, ये सब चीजें यहाँ?
3: बहुत अच्छी, ये देख के बिल्कुल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि यहाँ की जो सनातन धर्म के जो हिंदू जो जागे हैं, अपन ये चाहते हैं कि पूरा देश आए।
1: कब से आ रही है यात्रा में?
2: मैं अभी, मुझे 2 साल हो चुके हैं।
1: अच्छा, कैसा लग रहा है कि एक बॉर्डर में महादेव का वहाँ पर वास होना, पुंछ और अपने आप में ही आपको पता है और कितना बदलाव हुआ है। आप यहाँ पर पूरे अपने सब मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पहुँचे, तो क्या कहना चाहेंगे?
2: मेरे को यहाँ पे मतलब जब भी सेकेंड बार, थर्ड बार आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। मैं चाहती हूँ कि मैं हर बार आऊँ यहाँ पे देखने, और पिछले साल की तुलना में जो जब पहले गए हुए हैं उसकी तुलना में इस बार की संख्या बहुत अच्छी है।
1: इन यात्रियों के लिए जो बीआरओ ने एक बड़ा उपहार दिया है कि जिस टनल की एक लंबे समय से मांग थी और यात्रा के लिए उस टनल को खोल दिया गया है, और ताकि इनकी यात्रा आसान और सुगम हो और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो यात्रा पुंछ जो है पहुंचे।
0: बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो जम्मू संभाग के पुंछ जिले के मंडी तहसील के राजपुरा गाँव में है। देवादिदेव महादेव को समर्पित ये मंदिर श्री अमरनाथ गुफा के सामने ही आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाने की शुरुआत यहीं से की थी, जो बाद में अमरनाथ गुफा में पूरी हुई थी। जबकि दूसरी मान्यता ये भी है कि यहां एक महिला को भगवान शिव ने बूढ़े बाबा के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए इन्हें बूढ़ा अमरनाथ कहा जाता है। मंदिर के अंदर सफेद पत्थर के रूप में प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसके दर्शन और पूजन के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं।
4: 2005 से ये निर्विघ्न आज तक यात्रा चलती आ रही है, और हर साल ये जो श्रावण के लास्ट 10 दिन हैं, उस दिन बजरंग दल के जत्थे जो है पूरे भारतवर्ष से अलग अलग प्रांतों से यहाँ आते हैं। आज पहला जत्था यहाँ से रवाना हो रहा है और अंतिम दर्शन जो इन जत्थों के है वो रक्षाबंधन के दिन होंगे और उस दिन ये यात्रा संपन्न होगी। जो हम देख रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स हैं और पिछले सालों के बजाय इस बार डबल से भी ज़्यादा नंबर्स हो गए हैं, तो ये उत्साह भी दर्शाता है पूरे भारतवर्ष से आने वाले तीर्थयात्रियों का। जम्मू कश्मीर के समाज की एक कमिटमेंट भी दर्शाता है कि वो हॉस्पिटेबल हैं। जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस यात्रा की तैयारियों में जुटी है, उनकी भी जो कमिटमेंट है यात्रा के प्रति, ये सबका एक मिला जुला परिणाम।
0: बाबा बूढ़ा अमरनाथ की ये सालाना यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी, जिसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल रिकॉर्ड संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और अगली खबर है, सावन महीने से जुड़ी आज तीसरा सोमवार है और सावन के तीसरे सोमवार पर नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना एक ही दिन होने से इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ गया है। मान्यता यह है कि आज के दिन विधि विधान से पूजा करने से काल सर्प दोष, भय और जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। वहीं इस खास मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले गए।

0: सावन का सोमवार और नाग पंचमी एक साथ पड़े तो देश के तमाम शिव मंदिरों में आस्था और भक्ति का अनंत सैलाब उमड़ आया। हरिद्वार से लेकर उज्जैन तक, प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक, अयोध्या से लेकर देवघर तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के आस्थावान भक्तों की कतार देखने को मिली। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आई ये ड्रोन तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं, जहां भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शनों के लिए लोग रात से ही लाइन में लग गए। परंपरा के मुताबिक रात 12 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। पट खुलने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने भगवान नाग चंद्रेश्वर की पूजा की। इसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया।
1: मंदिर भगवान नाग चंद्रेश्वर को समर्पित है और नाग पंचमी को पट खोलने की परंपरा रही है। पूर्व काल से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के जो महंत होते हैं उनके द्वारा वो पट खोले जाते हैं, तो उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए हम लोगों ने आज रात्रि को अभी पट खोले हैं। जो पूजा की परंपरा, त्रिकाल पूजा की परंपरा है, उसका पालन करते हुए षोडशोपचार पद्धति से भगवान नाग चंद्रेश्वर का पूजन किया, उनका अर्चन किया, उनका अभिषेक किया और अब सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। बस भगवान नाग चंद्रेश्वर से यही एक प्रार्थना है कि जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हैं या जो लोग नहीं आ पाए हैं, घर में बैठ करके भगवान के प्रति अपना भाव समर्पित कर रहे हैं, चूँकि हम मानस पूजा को मानने वाले लोग हैं, तो भगवान नाग चंद्रेश्वर से बस यही प्रार्थना है कि उन सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करें।
2: अब मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि नाग पंचमी और एक तीसरा सावन जो है एक साथ आए हुए हैं, तो सारे श्रद्धालु इस वजह से आए क्योंकि आज काफी शुभ दिन माना जाता है सावन सोमवार और साथ में नाग पंचमी है, तो कहते हैं कि दो चीजें एक साथ आई हैं, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा दिन है। और मैं हर साल ही आता हूं भस्म आरती के लिए और जब भी बाबा का बुलावा आता है तो काफी काफी खुशी है।
0: ये मंदिर साल में बस एक दिन नाग पंचमी पर खुलता है, वो भी केवल 24 घंटे के लिए। ये मंदिर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के शिखर पर है। श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक दुर्लभ प्रतिमा है। इस प्रतिमा में शिव के साथ माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी, सात फन के नागराज, सिंह और सूर्य चंद्रमा बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है।
1: हमारे यहाँ पौराणिक काल से नाग पंचमी का पावन पर्व बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। वर्ष में एक दिन आता है जब हम नाग देवता की पूजा करते हैं, देवादेव महादेव की उनके रूप में पूजा करते हैं, तो उसी क्रम में नाग पंचमी के पावन पर्व पर ये महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब बात हम उज्जैन की करते हैं, क्योंकि उज्जैनी के इस पावन धरा पर भगवान महाकालेश्वर का जो प्रमुख मंदिर है उसके तृतीय तल पर भगवान नाग चंद्रेश्वर विराजित हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अप्रतिम और बड़ी दुर्लभ वो विग्रह है, जहाँ पर एकमात्र विग्रह है जहां पर सर्प सैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार है। ऐसा विग्रह अन्यत्र कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है।
0: नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुलने के बाद तड़के 2:30 बजे महाकाल मंदिर के कपाट खोले गए। सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और फूलों के रस से भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक पूजन के बाद मंदिर के पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया। आरती पूजन का यह अद्भुत नजारा देखकर वहां मौजूद तमाम भक्त अभिभूत हो उठे। इसके बाद भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। भगवान के भस्मीभूत होने पर घंटे, घड़ियाल, झांझ, मंजीरों से भगवान की आरती की गई।
3: जो श्रृंगार है इसके लिए बहुत जनता आई हुई है इस त्यौहार में और हमें भी बहुत अच्छा मौका मिला और हम लोग भी उस मौके का एक अच्छा एक पार्टिसिपेंट हुए। इसके लिए महाकाल की जय, जय श्री महाकाल।
4: आज भस्म आरती अटेंड करने का पहली बात तो बहुत सौभाग्य था क्योंकि आज नाग पंचमी के दिन में इतनी भीड़ में दर्शन करने मिला बहुत बड़ी बात थी और जो दर्शन हुए वो बहुत बहुत खूबसूरत थे, आरती बहुत खूबसूरत थी।
0: सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर ऐसा ही भक्तिमय माहौल प्रयागराज के नागवासुकी मंदिर में भी दिन भर देखने को मिला। लोग आते गए और कतार में लगकर दर्शन और पूजन किया। इसमें कोई जल और बेल पत्र लेकर आया और कोई फल फूल और घर से प्रसाद बनाकर लाया।
5: सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का तीसरा सोमवार है। यहाँ पर नागवासुकी मंदिर में भक्तों की जो भीड़ है सुबह से लगी हुई, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु हाथों में जल लेकर के और बेल पत्र लेकर के यहाँ आए हैं। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें नागों के राजा यानी नागवासुकी का वास है और यहाँ पर नाग के रूप में विराजमान देवता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए हैं। आप हमारे पीछे यहाँ पर लंबी लाइन श्रद्धालुओं को देख सकते हैं, हाथों में लावा और दूध यहाँ पर चढ़ाया जाता है।
6: मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं यही कामना करने आई हूँ कि मेरे नंबर अच्छे हैं और अगले साल मुझे कॉलेज मिल जाए।
7: नाग देवता जी का दर्शन करने लोग आते हैं, बड़ी अपार भीड़ होती है यहाँ पे, बड़े श्रद्धालु आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दशाश्वमेध घाट से जल लेकर के आते हैं, बड़ी अपरंपार भीड़ होती है और बड़ी महिमा है नागवासुकी की।
0: प्रयागराज के दारागंज इलाके में गंगा तट पर मौजूद ये नागवासुकी मंदिर नागों के राजा भगवान वासुकी को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाए जाने से उनके शरीर पर हुए घाव यही त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में स्नान करने से ठीक हुए थे। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो यहाँ विशेष पूजा और अभिषेक कराते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उन्हें काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है।
8: यह काल सर्प योग जिसके कुंडली में होती उसके लिए मुख्य स्थान है।
9: यहाँ पर पूजा भी होगी
8: काल सर्प दोष की, प्रथम पूजा यही है।
0: उधर काशी और देवघर धाम भी श्रावणी मास के तीसरे सोमवार पर आस्था के महासागर में बदल गया। ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पवित्र जल से जलाभिषेक करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु काशी और देवघर पहुंचे। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोग रात से ही जलाभिषेक के लिए कतार में लग गए। जैसे जैसे दिन चढ़ा श्रद्धालुओं की कतार बढ़ती चली गई। घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद इन आस्थावान श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: और बात एक ऐसे वेटर की जो इंसानों के साथ मिलकर हरियाणा के सोनीपत के मूर्थल में एक ढाबे में खाना परोस रहा है। आपको ये बात थोड़ी सी बेतुकी लग सकती है कि वेटर का काम वो भी रोबोट्स। खास बात इसमें क्या है वो आपको जाननी चाहिए। दरअसल वेटर अपने खास अंदाज के लिए पहचाना जा रहा है क्योंकि ये इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जो देसी ढाबे में हाईटेक वेटर के तौर पर सफेद मक्खन वाले पराठे परोस रहा है। मूर्थल के मशहूर ढाबे में बैटरी से चलने वाले इस वेटर को आप भी देखिए।

0: दिल्ली NCR के लोगों के लिए पसंदीदा फूड डेस्टिनेशन और नाइट आउट पॉइंट मुरथल का एक पुराना ढाबा सुर्खियों में है। साल 1960 से ये ढाबा घर जैसे खाने का स्वाद परोसने का दावा करता है। बड़े आकार वाले रेशम द पराठा और रात भर धीमी आंच पर पकने वाली दाल मखनी के लिए मशहूर ये ढाबा इस बार सिर्फ अपने स्वाद के लिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए भी मशहूर हो रहा है। इस ढाबे में इंसानी वेटर के साथ अब रोबोट वेटर भी दिख रहे हैं, जो इंसानों की तरह ही ग्राहकों की टेबल तक उनका मन पसंद ऑर्डर लेकर जा रहे हैं, ताकि उनके साथ मौजूद वेटर उनको परोस सके। ग्राहकों की तरफ से खाने का ऑर्डर करने के बाद तैयार होते ही उसे रोबोट की फूड ट्रे में रखा जाता है, जिस पर रोबोट नेविगेशन सिस्टम की मदद से पहले से तय रास्ते पर चलते हुए सीधे ग्राहक की टेबल तक पहुंचता है। फिर रोबोट के हाथों में फिक्स की गई फूड ट्रे से खाना ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। इंसानी वेटरों की तरह काम कर रहे रोबोट्स को देखकर ग्राहक भी बेहद उत्साहित हैं। उनके लिए ये एक नए तरह का एक्सपीरियंस है। रोबोट के साथ मोबाइल से तस्वीर, सेल्फी और यहाँ तक वीडियो बनाने का वो कोई मौका नहीं चूकना चाहते। ग्राहकों के लिए एक खास तरह का अनुभव है। रोबोट से खाना सर्व करवाने के लिए उनसे किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। यानी मुरथल के इस पारंपरिक ढाबे में स्वाद वही है, लेकिन खाना परोसने का अंदाज बिल्कुल बदल गया है।
1: बहुत अच्छा था वो, बहुत ही अच्छा था वो, हमारे लिए फर्स्ट टाइम था और बहुत ही अच्छा था हमारे।
2: रोबोट से ही खाना मंगवाया?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
2: कैसा लगा
1: सर? बहुत ही अच्छा फील था वो।
2: पहले आपने कभी कहीं देखा है?
1: नहीं नहीं, ये नहीं देखा हमने पहले।
2: कहाँ से आए हो सर आप?
1: दिल्ली से।
0: अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सेवा देने वाले रोबोट वेटर को रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इस रोबोट को बेंगलुरु की एक कंपनी ने तैयार किया।

0: के ऊपर ऐसी टच ना हो तो उसको तुरंत कंट्रोल कर लिया जाता है।
1: हरियाणा के सोनीपत जिले में मौजूद मुरथल अपने शानदार ढाबों और आलू गोभी और पनीर से बने तंदूरी पराठों के लिए देश भर में मशहूर है। दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने की वजह से यात्रा करने वाले लोगों के लिए खाने पीने के लिए पसंदीदा स्टॉप ओवर है, जहां अब रुकने वाले ग्राहकों को स्वाद के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का भी अनुभव मिल रहा है। कुमार के साथ वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: पंजाब की धरती को गुरुओं की धरती कहा जाता है और यही वजह है कि पंजाब में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहां पर लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है। पंजाब में कई ऐसे प्राचीन गुरुद्वारा साहब भी हैं जहां पर लोग अपनी मन्नत मांगने और मनोकामना पूरी होने के बाद यहां विशेष सेवा करते हैं। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही एक गुरुद्वारा साहिब के बारे में बताएंगे जहां पर एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। आपको लिए चलते हैं जालंधर के तलहन साहिब गुरुद्वारा साहिब में।

0: गुरुद्वारे के बाहर सजी दुकानों की रौनक और इन दुकानों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोई मत्था टेक कर लौट रहा है तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने की खुशी में चढ़ावे की तैयारी कर रहा है। इन दुकानों पर खिलौनों की कई वैरायटीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर खींचते हैं खिलौने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज।
1: हाँ जी, मन्नतें पूरी हो गई। अगले अगले नेक्स्ट ईयर शायद जाइए न्यूजीलैंड का नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, मन्नतें है बाहर फॉरन।
0: असल में विदेश जाने की मन्नत लेकर यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर हवाई जहाज चढ़ाते हैं, और यही वजह है कि ये गुरुद्वारा साहिब श्रद्धालुओं के बीच हवाई जहाज वाला गुरुद्वारा के नाम से मशहूर है। जलंधर शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा श्री तलहन साहिब, मान्यता यह है कि पासपोर्ट या वीजा बनाने में कोई भी अड़चन आ रही हो तो खिलौने वाला हवाई जहाज चढ़ाकर अरदास करने से विदेश जाने की राह में आ रही तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं।
2: बहुत टाइम हो गया इतने मत्था टेकन आने, चार पाँच छह साल हो चले हैं।
0: खास बात यह है कि इन खिलौनों को आसपास के बच्चों में ही बांट दिया जाता है।
3: यात्रा सफल होंगी,
0: किसी के लिए विदेश जाने की उम्मीद है तो किसी के लिए मन्नत पूरी होने की खुशी। जब यही मन्नत के खिलौने बच्चों के हाथों में पहुँचते हैं तो फिर इस आस्था में खुशियों के रंग घुल जाते हैं। जलंधर से देवेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
5: क्या सावन के मंगलवार भी बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं? सावन के मंगलवार का क्या माता गौरी के साथ कोई संबंध है? क्या है सावन के मंगलवार का पूजा विधान, और सावन के मंगलवार को मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने का हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार, शनिवार और मंगलवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज आपको बताएंगे सावन के मंगलवार की महिमा क्या है और सावन में मंगला गौरी माता की पूजा का विधान क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 5:50 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 3:04 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, सूर्य और केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन के मंगलवार की और माता मंगला गौरी की। माता मंगला गौरी की पूजा का महत्व क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव के अलावा माता गौरी की विशेष कृपा भी आपको मिल सकती है। इसके लिए सावन के मंगलवार को माता गौरी की उपासना की जाती है। इस पूजा से चूंकि जीवन में हर प्रकार का मंगल होता है, इसीलिए इसको मंगला गौरी कहा जाता है। सावन के मंगलवार को माता गौरी की उपासना से शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है और वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। अगर मंगल दोष आपके जीवन में समस्या दे रहा हो तो सावन के मंगलवार पर माता मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए, मंगल दोष का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, खान पान में सावधानी रखें,

कर्क राशि क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आते हैं उपायों पर। जिन कन्याओं का विवाह तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं हो पा रहा है, ऐसी महिलाएं सावन के मंगलवार पर माता मंगला गौरी की पूजा कैसे करेंगी? सावन के मंगलवार को प्रातः काल या शाम के समय में माता गौरी की पूजा करिएगा। उनके सामने घी का एक बड़ा सा चौमुखी दीपक जलाइए और इसके बाद मां को 16 फूल चढ़ाएं या 16 तरीके के फूल चढ़ाएं, उसमें लाल रंग का फूल जरूर चढ़ाएं। माता को लाल रंग की चुनरी और लौंग समर्पित करें और इसके बाद 3 माला या 11 माला माता के मंत्र का जप करेंगी। मंत्र होगा ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ओम ह्रीं गौर्ये नमः, इस मंत्र का जप करेंगी और जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगी। सावन में किसी भी मंगलवार को अगर आप ऐसा कर लेती हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अगर विवाह हो चुका है और पति पत्नी के बीच तालमेल खराब है, तमाम प्रयास के बावजूद तालमेल अच्छा नहीं रह पाता हो तो क्या करेंगे? शाम के समय में सावन के मंगलवार पर माता गौरी की पूजा करेंगे। माता गौरी के सामने घी के 3 दीपक जलाएंगे और इसके बाद माता के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। मां को इत्र समर्पित करिए और इसके बाद 16 इलायची चढ़ाइएगा और इसके बाद जो मां का नवारण मंत्र है उसका 11 माला जप करिएगा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 11 माला जप करिए और प्रार्थना करिए कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहे। इलायची को अपने पास रख लें और प्रसाद की तरह इलायची को खाते रहिएगा। अगर ये उपाय सावन के किसी भी मंगलवार को कोई विवाहिता महिला करती है तो उसका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कार्यक्रम में चर्चा हमारी जारी है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि,
रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन

काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग हैं, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, मित्र के साथ संबंध का ध्यान रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं काफी बढ़ चुकी हों, शादी टूटने की नौबत आ गई हो और रिश्ता दोबारा जुड़ नहीं पा रहा हो, तो क्या करेंगे?

करिएगा, भगवान शंकर और माता गौरी की संयुक्त पूजा करिएगा, भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें, अगर पीला वस्त्र हो तो बहुत उत्तम होगा, माता गौरी को सुहाग की सामग्री सिंदूर चूड़ी बिंदी आभूषण मेहंदी काजल शीशा आलता ये सब अर्पित करिए, और इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा, और जप करने के बाद ये प्रार्थना करिए कि वैवाहिक जीवन सुधर जाए, वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन का लाभ होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन

की समस्या हो सकती है। करियर में जोखिम ना लें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की सावन के मंगलवार की और माता मंगला गौरी की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपके घर में धन की बचत नहीं हो पा रही हो तो पूजा स्थान पर या पूजा स्थान वाले कमरे में या पूजा स्थान के पास धन रखना आरंभ कर दें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। सुबह के समय भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय वो फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को,
6: पंजाब के लोगों को पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के रोमांच के लिए गोवा का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पठानकोट की खूबसूरत वादियों में तैयार हो रहा है पंजाब का अपना मिनी गोवा। रणजीत सागर डैम की झील और शाहपुरखंडी बैराज को इंटरनेशनल टूरिज्म हब बनाने की दिशा में डैम प्रशासन ने कदम बढ़ाया है। यहां स्पीड बोट के बाद अब पैरासेलिंग की शुरुआत कर दी गई है, यानी कि आसमान में उड़ान और नीचे पानी का रोमांच दोनों एक ही जगह है। रावी दरिया का नीला पानी, चारों तरफ हरे भरे पहाड़। अब तक यहां आने वाले सैलानी झील की लहरों पर स्पीड बोट का मजा लेते थे, लेकिन अब पैरासेलिंग शुरू होने से एडवेंचर टूरिज्म को भी नए पंख लग गए हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: कौन से ग्रह व्यक्ति को क्रोधी बना देते हैं? कौन से ग्रहों की वजह से व्यक्ति क्रोध में नुकसान कर बैठता है? क्या है क्रोध आने के ज्योतिषीय कारण और क्या है क्रोध कम करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
8: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: नागपंचमी पर काशी के अखाड़ों में उतरे विदेशी पहलवान, धूमधाम से निभाई गई सैकड़ों साल पुरानी कुश्ती की परंपरा, अगले 2 से 3 महीने तक चलता है दंगल। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में दिखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। पंजाब के पठानकोट में एडवेंचर टूरिज्म बढ़ाने की पहल, स्पीड बोट के बाद अब पैरासेलिंग की शुरुआत, सैलानियों की बड़ी संख्या।

हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम सुहाना, मुंबई में भी जमकर बरस रहे बादल। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज़।

0: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा काशी के अखाड़े में उतरे विदेशी पहलवानों की भी है। देखिए
1: पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग से भूस्खलन का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें मलबे के गिरने की डरावनी रफ्तार और वहां से गुजरने वाले लोगों के बाल बाल बचने का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि दृश्य कितना भयावह है। सड़कों से वाहन गुजर रहे थे, किसी को अंदेशा नहीं था। तभी अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा भर भर आकर तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। गनीमत रही कि गाड़ियां पहले ही सड़क को छोड़कर दूसरी तरफ निकल आईं। हालांकि एक बाइक सवार इसकी चपेट में आ गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और बाइक वहीं छोड़कर जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। तस्वीरें गोरुबाथान ब्लॉक के बिंदु इलाके की बताई जा रही है। लोग काशी केवल धर्म और आस्था की वजह से ही नहीं आते, पहलवानी के लिए भी आते हैं। ये नज़ारा देखिए, काशी की ही है जहां नाग पंचमी पर दंगल का आयोजन होता है और इसमें हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमान भी पहुंचते हैं। स्पेन के मेस्क्लो खिलाड़ी सेंटियागो और नीदरलैंड के हर्बर्ट भी इस मौके पर हर साल यहां पहुंचते हैं और इसी तरह से दंगल में अपना हाथ आजमाते हैं। स्पेन के सेंटियागो अपने देश में मेस्क्लो के खिलाड़ी और प्रशिक्षक हैं। ये खेल भारतीय अखाड़ों के जोड़ी और गदा से मिलता जुलता है। उनके मुताबिक देसी अखाड़े और प्रकृति की खुली छांव में दंगल का अपना ही आनंद है और फिर यहाँ इन्हें अपनेपन का एहसास भी मिलता है। गोरी मेहमानों द्वारा देसी अखाड़ों में जोर आजमाइश लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। राजस्थान के धौलपुर में 11,000 पौधों की अनूठी कांवड़ यात्रा निकाली गई। इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देना था। गायत्री परिवार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए बैंड बाजे के साथ निकाली गई इस अनूठी कांवड़ यात्रा में 51 छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने हरियाली बचाने का संकल्प भी लिया। हिमाचल में कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी के किनारे घूमने पहुंचे 4 सैलानियों की जान उस वक्त खतरे में आ गई जब अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। चारों युवक नदी के बीच एक चट्टान पर बैठे थे और देखते ही देखते पानी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जब तक वो खतरे को भांप पाते तब तक नदी से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। ऐसे में करीब आधे घंटे तक चारों युवक मदद का इंतजार करते रहे। फिर जब लोगों की नजर उन पर पड़ी तो आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मोर्चा संभाला और प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद आपदा मित्र ने अपनी टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी की मदद से नदी के बीच तक पहुंचने का रास्ता बनाया गया। इसके बाद एक एक कर चारों पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चारों सैलानी दिल्ली से यहां घूमने पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक वीडियो खूब चर्चा में है। इसमें वो लोगों के साथ खेतों में हल चलाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो हाल ही में चशपुर में अपने गांव बगिया पहुंचे थे, वहीं उन्होंने दूसरे किसानों के साथ खेतों में हल चलाया।
0: और अब बात करते हैं नाग पंचमी की। आज देश भर के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। काशी से लेकर प्रयागराज तक, देवघर से लेकर उज्जैन तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का जत्था शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंच रहा है। महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नाग पंचमी पर खुलता है, लिहाजा यहां दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वहीं प्रयागराज के प्राचीन नाग वासुकी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और ये मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है, जबकि वाराणसी के नागकूप में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है।

0: पावन सावन का सोमवार, शहर शहर मंदिर मंदिर लग रहा नागेश्वर की जयकार। आज सावन का तीसरा सोमवार है और नाग पंचमी का महापर्व भी है। नाग पंचमी का पावन पर्व अगर सावन के सोमवार को होता है तो इसकी महत्ता काफी बढ़ जाती है। उज्जैन में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सावन सोमवार और नाग पंचमी के मौके पर बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह भस्म आरती में बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार और अभिषेक हुआ। इसके बाद नित्य पूजा और आरती के दौरान भी श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए।
1: बाबा महाकाल के दरबार के अंदर तीसरा सोमवार अर्थात भगवान महाकाल के साथ में आज नाग चंद्रेश्वर के दर्शन, भक्त लोगों को बाबा के दरबार के अंदर दोगुना लाभ प्राप्त हो रहा है। बाबा महाकाल के दर्शन के साथ साथ में भगवान का जो वासुकी नाग है उनके भी दर्शन का पुण्य प्राप्त हो रहा है। बाबा महाकाल की प्रातः काल की भस्म आरती में भगवान महाकाल ने स्वयं रजत का वासुकी नाग धारण किया है, जो साल में एक बारी बाबा महाकाल करते हैं और वही नाग का स्वरूप ऊपर नाग चंद्रेश्वर महादेव के रूप में भक्त लोग दर्शन करते हैं। आज का ये अलौकिक दृश्य, अलौकिक दिन और काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि आज के दिन भगवान महादेव ने स्वयं गले के अंदर नाग धारण किया था और नाग धारण करने का मतलब है भगवान ने ज़्यादा आसक्ति ही बंधन का कारण बनती है, इसका बोधक बताया था कि वो सर्व बनकर डस सकती है, जिसे ज़्यादा आसक्ति जीवन में रखना नहीं चाहिए। इसलिए बाबा महाकाल के दरबार की अनादिकाल की परंपरा है कि बाबा महाकाल आज नाग चंद्रेश्वर के रूप में भी भक्त लोगों को दर्शन देते हैं।
0: वहीं नाग पंचमी के इस खास मौके पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट भी खुले हैं। दर्शन की आस में भक्तों की लंबी कतार मंदिर के बाहर देखने को मिली। जैसे घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए, महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरिजी महाराज ने हर हर महादेव की गूंज के बीच नारियल फोड़कर मंदिर के पट खोले। मध्यरात्रि में विधि विधान से भगवान नाग चंद्रेश्वर की पूजा अर्चना की गई। भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन पूजन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर में अपार भीड़ है। श्रद्धा और भक्ति का उत्साह महोत्सव में बदल गया। भगवान नाग चंद्रेश्वर का ये मंदिर अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इस मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी के शुभ दिन ही खुलते हैं। साल भर के इंतजार के बाद 2026 में पहली और अंतिम बार भगवान नाग चंद्रेश्वर के अद्भुत और अलौकिक दर्शन की श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो रही है। सावन के महीने में उज्जैन में जब नाग चंद्रेश्वर भगवान के मंदिर के पट खुले हैं, तो शिव भक्तों और श्रद्धालुओं को एक ही दिन एक ही साथ बाबा महाकाल और भगवान नाग चंद्रेश्वर दोनों की उपासना का अवसर मिल रहा है।
1: ये बहुत वर्षों के बाद में ऐसा योग बना है कि नाग पंचमी और भगवान महाकाल के सोमवार का दिन एक साथ पड़ा है। ये काफी दुर्लभ योग है, इसीलिए भक्त लोगों को जो लाभ है वो भी दोगुना लाभ प्राप्त हो रहा है।
0: सावन के पावन महीने में आने वाली नाग पंचमी पर भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुँचते हैं। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने और उनके दर्शन करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि साल में सिर्फ एक दिन मिलने वाले इस दुर्लभ दर्शन के लिए भक्त घंटों लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं।
2: आज का दिन इतना पावन पर्व दिन है कि नाग पंचमी सोमवार, एक तो श्रावण मास का सोमवार का तृतीय सोमवार है और इस शुभ अवसर पर सोमवार के दिन नाग पंचमी का महापर्व पड़ा है, तो बड़ा ही एक उत्सव या योग संयोग कहा जाए। ये मैं समस्त देशवासियों पर, प्रदेशवासियों पर भोलेनाथ की शिव की कृपा, असीम कृपा बनी रहे।
3: आज का क्राउड बहुत बढ़ गया है, बट वो जो श्रृंगार है इसके लिए बहुत जनता आई हुई है इस त्यौहार में, और हमें भी बहुत अच्छा मौका मिला और हम लोग भी उस मौके का एक अच्छा एक पार्टिसिपेंट हुए। इसके लिए महाकाल की जय, जय श्री महाकाल।
4: आज नाग पंचमी के दिन में इतनी भीड़ में दर्शन करने मिला बहुत बड़ी बात थी, और जो दर्शन हुए वो बहुत बहुत खूबसूरत थे, आरती बहुत खूबसूरत थी और बहुत बहुत आनंद है।
0: उज्जैन ही नहीं, देश भर में तमाम मंदिरों में शिव भक्त नाग पंचमी के मौके पर नाग देवता की पूजा कर रहे हैं। प्रयागराज के प्रसिद्ध नाग वासुकी मंदिर में भी नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा तट पर दारागंज में इस मंदिर में आमतौर पर पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन, नाग पंचमी, माघ मेला और कुंभ के विशेष अवसर पर तो यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में पूरी श्रद्धा से पूजन करने से काल सर्प दोष और जीवन की तमाम बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है।
5: सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का तीसरा सोमवार है। यहाँ पर नागवासुकी मंदिर में भक्तों की जो भीड़ है सुबह से लगी हुई, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु हाथों में जल लेकर के और बेलपत्र लेकर के यहाँ आए हैं। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें नागों के राजा यानी नागवासुकी का वास है और यहाँ पर नाग के रूप में विराजमान देवता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए हैं। आप हमारे पीछे यहाँ पर लंबी लाइन श्रद्धालुओं को देख सकते हैं, हाथों में लावा और दूध यहाँ पर चढ़ाया जाता है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर अपने हाथों में जल लेकर के आए हैं और भगवान नागवासुकी के दर्शनों के लिए लंबी लाइन सुबह से लगी हुई है। हालांकि बारिश का समय है और बारिश लगातार हो रही है, इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगी हुई है। और ये कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था तो इसी नागवासुकी भगवान का यहाँ पर जो प्रयोग है वो किया गया था रस्से के रूप में, जिसमें यहाँ पर अमृत निकला था और अमृत देवताओं में बांटा गया। इसके बाद विष निकला, विष भगवान भोलेनाथ ने पी लिया था। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे हम जानेंगे यहाँ पर आए हैं नागवासुकी के दर्शन के लिए किस तरह से यहाँ पर दर्शन होते हैं और क्या कामना की जाती है।
6: अपने सुहाग घर वालों को कामना की जाती है, अपने घर वालों के लिए कि नागवासुकी महाराज हमारे सबके घर की अच्छी मनोकामना पूर्ण करें।
5: क्या क्या चढ़ाया जाता है भगवान नागवासुकी?
6: दूध, लावा, चना, मटर, बतासा, आज फूल माला।
5: यहाँ पर भगवान नाग के रूप में विराजमान?
6: जी हाँ, यहाँ नाग रूप में विराजमान है। बोलो,
5: आप कहाँ से आए?
6: अल्लाहपुर से।
5: बिल्कुल, आप यहाँ पर आइए, क्या कहीं क्या चढ़ा रही है?
7: दूध लावा चढ़ा रही
5: है। क्या कामना कर रहे हैं भगवान?
7: बस अपने परिवार और देश के लिए।
0: संगम और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध तीर्थराज प्रयागराज में भगवान वासुकी को समर्पित यह मंदिर देश के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल है।
8: ये भगवान वासुकी जी का मुख्य पर्व है जो वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब प्राचीन काल से ये पर्व होता चला आ रहा है और सभी श्रद्धालु भोर से ही भगवान वासुकी को जो है फूल प्रसाद, दूध लावा, गंगा जल, बेलपत्र और पुष्पों से जो भगवान वासुकी का पूजा करते हैं, धूप दीप करके प्रार्थना करते हैं, घर के सब समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान वासुकी का मनोकामना पूर्ण करते हैं।
0: मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग वासुकी की विधि विधान से पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यही वजह है कि इस दिन हर श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर नाग देवता का जलाभिषेक करना चाहता है। भगवान भोले की नगरी काशी, जहाँ गंगा की पवित्र लहरों में भक्ति की अविरल धारा बहती है, हर साल नाग पंचमी के अवसर पर काशी के नागकूप में आस्था का विशेष रंग दिखाई देता है। नाग देवता की पूजा के लिए यहाँ दूर दूर से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और सर्प दंश भय से राहत मिलती है। कई श्रद्धालु इस कुएं के पवित्र जल को आस्था के साथ अपने घर भी ले जाते हैं।
9: जिस समय राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय यज्ञ कर रहे थे तो उसी समय यज्ञ में जिनकी नाग लोक का जिनका नाग देवता का नाम लेते थे वो अग्निकुंड में आ जाते थे, तो उस यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिक मुनि वहाँ पहुँचे और उनको समझा बुझा कर यज्ञ को वहीं पर विराम करने के लिए उनको समझाएं और उसके बाद जितने नाग राज झुलस चुके थे, जल चुके थे, उनको दूध चढ़ाकर, उनको लावा लगाकर उनको घाव को ठीक किए भरे। इसीलिए उस तिथि भी थी श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, इसीलिए नाग पंचमी के नाम से उसको मनाया जाता है।
0: दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत शहरों में से एक इस पावन नगरी पर भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद है। हजारों साल की यात्रा में यहाँ के हर गली अपने आप में इतिहास और हजारों रहस्यों को समेटे हुए है और इन्हीं रहस्यों में से एक है जैतपुरा का प्राचीन नागकूप। ऊपर से देखने पर ये एक सामान्य कुआं जैसा नजर आता है, लेकिन इससे जुड़ी मान्यताएं इसे बेहद खास और रहस्यमय बनाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस नागकूप का संबंध नागलोक से है और यहाँ महर्षि पतंजलि ने लंबी तपस्या की थी।
9: जिस समय राजा परीक्षित को नागदंश हुआ था तो उनके पुत्र जनमेजय ने सभी नागों का यज्ञ किए थे, सर्प विनाशक यज्ञ। उस यज्ञ के समय कारकोटक नाग जो थे वो सभी नाग जाति को बचाने के लिए, जीवन रक्षा के लिए उन्होंने शिवजी की तपस्या की थी इसी स्थान पे, जिस तपस्या का नाम था पंच अग्नि तपस्या। और भगवान प्रसन्न होके उनको वरदान दिए और इसी स्थान पे भगवान प्रकट हुए थे जो कि एक स्वयंभू शिवलिंग भी है और उनको वरदान दिए कि जो हमारे में समाहित होते हैं उनका न आदि होता है न तो अंत होता है। फिर कारकोटक नाग सभी नाग जाति को लेके नाग वंश को लेके इसी मार्ग से पाताल लोक चले गए थे।
0: काशी में धर्म और अध्यात्म जीवन का हिस्सा है। यहाँ नागकूप से जुड़ी कथाएं और मान्यताएं भी इसी आस्था की एक ऐसी कड़ी है जो रहस्य और परंपरा को अपने साथ संजोए हुए हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता के साथ प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे।
10: जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई बाबा बूढ़ानाथ अमरनाथ यात्रा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अब ऑटो और ई रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्ग पुलिस ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत सड़कों पर चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा में QR कोड लगाए जाएंगे। इसके लिए ऑटो रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्रत्येक ऑटो और ई रिक्शा को एक QR कोड उपलब्ध कराया जाएगा। इस QR कोड के जरिए वाहन और उसके चालक से संबंधित आवश्यक जानकारी पुलिस के पास सुरक्षित रहेगी। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंचे और पूरे उत्साह, श्रद्धा और धार्मिक आस्था के साथ इस पवित्र यात्रा में शामिल हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के यात्री निवास से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना के जवानों की तैनाती की गई है। अब पंजाब के लोगों को पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए गोवा जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बन चुके पठानकोट के रावी दरिया पर बने डैम की चमरोड़ झील में अब ये सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। मिनी गोवा के नाम से मशहूर यहां के चमरोड़ में सैलानियों के लिए पैरासेलिंग की सुविधा शुरू की गई है। जयपुर के ऐतिहासिक दलता तीर्थ धाम में आस्था और भक्ति का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। गालव ऋषि की तपोस्थली गलता धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं का फूलों से खास अंदाज में स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से हुई इस पुष्प वर्षा के बीच श्रद्धालुओं ने जमकर जयकारे लगाए और पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया।
10: और अब बात गुरेज घाटी में खेल महोत्सव की। जम्मू कश्मीर के गुरेज में खेल इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने युवाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्थानीय लोगों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस ऐतिहासिक खेल महोत्सव का समापन पारंपरिक पोलो मैच के साथ हुआ। भारतीय सेना और स्थानीय सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में खेलों के साथ महिला भागीदारी, स्वच्छता अभियान और पौधारोपण जैसी सामुदायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

0: घाटी में घुड़सवारी, युवाओं की रेस, लड़कियों की एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ और ट्रॉफी उठाए खुशी से झूमते युवा, ये तस्वीरें कश्मीर घाटी में युवाओं का जोश और जज्बा बता रही हैं। ये बदलते कश्मीर की नई तस्वीर है। यहाँ के युवाओं में खेल के मैदान में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। युवाओं में जोश और जज्बे की ये तस्वीरें गुरेज घाटी से आई हैं, जहां इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। इसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का एक मंच मिला, जहां खेल के साथ साथ टीम वर्क, अनुशासन और आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। गुरेज में सेना की तरफ से खेल महोत्सव का ये आयोजन किया गया। इसमें आसपास के गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। खेल के मैदान में युवा खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया और पारंपरिक पोलो का मुकाबला इस खेल आयोजन का सबसे खास आकर्षण रहा, जहां घोड़ों की रफ्तार और खिलाड़ियों के शानदार तालमेल ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। गुरेज की पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक खेल भावना का ये संगम लोगों के लिए खास अनुभव रहा।
1: गुरेज में स्थानीय टीमों के बीच पोलो था। दरअसल गुरेज घाटी की अगर बात की जाए, यहाँ पर सदियों से पोलो खेला जा रहा है। ये अलग तरीके का पोलो है जो अंतर्राष्ट्रीय पोलो से अलग है, क्योंकि इसमें जो घोड़े इस्तेमाल होते हैं वो कम कद के होते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस भी अलग होती है। दरअसल लद्दाख क्षेत्र और गुरेज घाटी के साथ साथ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का पोलो खेला जाता है। भारतीय सेना को उम्मीद है कि यह रिवायती खेल यानी पोलो जो है उसको दोबारा सीमावर्ती इलाकों खासतौर से गुरेज घाटी में बहाल भी किया जाएगा और विकसित भी।
0: युवाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन ये आयोजन सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान और पौधारोपण जागरूकता की भी जानकारी दी गई।
1: भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज इलाके में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जो अब समाप्त हुआ है। इस विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद नियंत्रण रेखा पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए खेल की सुविधाएं न सिर्फ बढ़ाना, बल्कि साथ ही साथ उनके बीच में एक भावना खेल और मुकाबलों को लेकर पैदा करना।
2: गाँव की सफाई और प्लांटेशन का भी जो लक्ष्य रखा था कि कौन सा गांव ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, उसमें भी इस मार्ग नंबर वन पे आ गया है। तो हम इंडियन आर्मी की तरफ से और पूरे बगदौर ब्लॉक की तरफ से गांव इस मार्ग को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हर प्रकार की खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लड़कियों के साथ साथ इनकी लड़कियों ने भी काफी गेम्स में मैदान मार लिया है।
0: भारतीय सेना की ओर से आयोजित इस खेल महोत्सव का मकसद गुरेज के युवाओं को खेलों और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है, ताकि युवा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपनी

0: प्रतिभा पहचानने, उसे निखारने और बड़े मंच तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। खेलों के जरिए युवाओं को सकारात्मक दिशा मिल रही है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है और भविष्य की तैयारी का मौका भी मिल रहा है। इससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।
1: इंडियन आर्मी से यही रिक्वेस्ट है कि जो 1.0 इस साल हुआ है, तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए ताकि यहाँ के बच्चों को अपना टैलेंट शोकेस करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सके।
0: जाहिर है गुरेज घाटी में चले इस खेल महोत्सव में खेल के मैदान से लेकर स्वच्छता अभियान और पौधारोपण तक युवाओं को समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भी जोड़ा गया। ऐसे आयोजनों से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानने और निखारने का मौका भी मिलता है। जम्मू कश्मीर के गुरेज से अशोपानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और वेस्ट एशिया में तनावपूर्ण माहौल के बीच कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सोमवार 17 अगस्त को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 281 अंकों की गिरावट के साथ 77,728 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 78 अंकों की गिरावट के साथ 24,287 पर बंद हुआ। मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स के बीच 17 अगस्त को गोल्ड की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 600 रुपए बढ़कर 1,56,800 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए पर स्थिर रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बीच 17 अगस्त को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 19 पैसे गिरकर 95.61 के स्तर पर बंद हुआ।
2: धुरंधर द रिवेंज के बाद अब प्रलय में नजर आएंगे अभिनेता रणवीर सिंह। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
0: फिल्म प्रेम कीटाणु का टीजर जारी हो गया। अपूर्व सिंह काकी के निर्देशन में बनी ये फिल्म कॉलेज, रैगिंग, दोस्तों के साथ यारी दोस्ती और इश्क मोहब्बत की मजेदार कहानी से भरपूर नजर आती है। इसमें वीर पहाड़िया कॉलेज के बैकबेंचर छात्र के रूप में नजर आए हैं। फिल्म में उनके अलावा पराशक्ति खुराना, आफिया और राकेश बेदी अहम रोल में है। प्रेम कीटाणु 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
3: मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, तुम्हें इस कॉलेज में अगले 4 साल तक कोई लड़की नहीं मिलेगी।
0: मिर्जापुर के फैंस के लिए अच्छी खबर है। इस शो का सबसे पॉपुलर गाना वारू को फिल्म में भी रखा गया है। वारू सॉन्ग मिर्जापुर वेब सीरीज के पहले सीजन का अहम हिस्सा था। अब इसे मिर्जापुर द मूवी के लिए फिर से रिकॉर्ड किया जा रहा है। वारू फॉरएवर नाम के इस गाने में श्रेया घोषाल और ओरिजिनल सिंगर रोमी की आवाज होगी। कॉमेडी फिल्म मालामाल वीकली के सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर है कि मालामाल वीकली 2 को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए 2 दिग्गजों ने आपसी सहयोग का ऐलान किया है। ये दिग्गज हैं जाने माने फिल्म फाइनेंसर और प्रोड्यूसर एस चंद्र प्रकाश जैन और कैमरा टेक फिल्म्स के ओनर सुभाष काले। दोनों मिलकर फिल्म बनाएंगे और इस फिल्म के निर्देशन की कमान अमित जोशी संभालेंगे। कॉमेडी के दिग्गज कलाकारों परेश रावल, ओम पुरी, असरानी, राजपाल यादव, शक्ति कपूर और रितेश देशमुख के अभिनय से सजी ये फिल्म 2006 में आई थी, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म गन मास्टर G9 की रिलीज डेट आ गई है। फिल्म 27 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त कर रहे हैं, जबकि म्यूजिक हिमेश रेशमिया का होगा। इमरान हाशमी, आदित्य दत्त और हिमेश रेशमिया की ये तिकड़ी करीब 2 दशक बाद साथ आ रही है। इस फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना अहम रोल में है। ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में तहलका मचाने के बाद अभिनेता रणवीर सिंह अब फिल्म प्रलय में नजर आएंगे। मुंबई में इसकी शूटिंग भी शुरू हो गई है। इस फिल्म का निर्देशन जय मेहता कर रहे हैं। प्रलय में रणवीर सिंह के साथ लुक ऑफ एम एक्ट्रेस कल्याणी प्रदर्शन नजर आएंगे। आपको बता दें कि इसी साल आई रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।
2: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार।

0: भरोसा।
1: बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था पहुंचा पुंछ, कल विधि विधान से करेंगे दर्शन, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। महाराष्ट्र के जालना में कांवड़ यात्रा की रौनक, हर उम्र के शिव भक्त पवित्र यात्रा में शामिल, हर हर महादेव और बम बम भोले का जय घोष। नागपंचमी पर काशी के अखाड़ों में उतरे विदेशी पहलवान, धूमधाम से निभाई गई सैकड़ों साल पुरानी कुश्ती की परंपरा, अगले 2 से 3 महीने तक चलता है दंगल। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में दिखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम।

0: मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम। देहरादून में बारिश से मौसम सुहाना, मुंबई में भी जमकर बरस रहे बादल। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में सीएम विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज। चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहां, यानी कि वायरल चौक पर। यहां देख लेते हैं उन खबरों को जो कि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। इनमें से कुछ खबरें ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगी और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: एक बॉल है जिसे सब तक पहुंचनी है, लेकिन एक एक कर जिसके हाथ में गेंद आएगी उसे अपने सामने वाले को पास करना है, लेकिन उछाल कर नहीं, जाकर उसके हाथों में सौंपना है, वो भी खास तरीके से। बच्चे जिस तरह से मेंढक की तरह कूद कूद कर अपना टास्क पूरा कर रहे हैं, वो देखना दिलचस्प है। दाद तो देनी पड़ेगी, आसान नहीं है, पर देखिए कैसे जीत के लिए एक दूसरे का साथ दिया जा रहा है। संभवतः आटा है या फिर कोई पाउडर जैसी चीज, मुंह में फंसाए मोटे कागज पर बिना हाथ लगाए उठाना है और उसे अपने साथी को पास करना है। आखिरी छोर तक पहुंचने के बाद वही प्रक्रिया दोहराते हुए वापस लौटना है। अब पाउडर जैसी चीज को बिना हाथ लगाए संभालना आसान तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। जिस तालमेल और संतुलन के साथ सबने अपने अपने हिस्से का काम किया, वो देखकर लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। यूं ही नहीं कहते कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। अब इन्हें ही देखिए, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, ना ही एक दूसरे की भाषा बोलते समझते हैं, लेकिन दोस्ती पक्की वाली लग रही है। जिस तरह से डॉगी और बतख रेस लगा रहे हैं, उससे तो लगता है ये दोनों का नियमित खेल है। जो भी हो, दोनों की ये दोस्ती वाली दौड़ लोगों को खूब पसंद आ रही है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी हो जाए तो स्कूल में मन लगा रहता है। अब इन बच्चियों को ही देखिए, कैसे एंजॉय कर रही हैं इस खेल को। वैसे ये जो कर रहे हैं वो देखने में बड़ा ही आसान सा स्टेप लग रहा है, पर जो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि अभ्यास तो इसके लिए भी चाहिए, वरना कदम गलत खांचे में भी पड़ सकता है और एक बार गलती हुई तो खेल से आउट। लेकिन ये बच्चियाँ होशियार हैं।
2: बात क्यों कर रहे?
1: सुना आपने, ये बस इन्हें ही बर्थडे में बुलाएंगे।
2: क्यों?
1: क्योंकि यही टीचर हैं जो इनको सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, इन्हें काम देती हैं। मतलब इस छोटी सी उम्र में भी इनको पता है कि अच्छे टीचर का मतलब क्या है। स्कूल पढ़ने ही तो आते हैं, और यही वो टीचर हैं जो पढ़ाई के दौरान इन पर खास नजर रखती हैं। टीचर बार बार जताती हैं कि वो उससे प्यार नहीं करती।
2: मैं तो नहीं करती प्यार, जबरदस्ती प्यार करती हूँ,
1: बल्कि वो तो सभी बच्चों की तरह ही उसे ट्रीट करती है। इस पर बच्चा जिस तरह से रुआंसा होकर टीचर से अपनी बर्थडे में आने की रिक्वेस्ट करता है, वो देखकर लोग उसकी मासूमियत पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।
2: मैं पूछ रही हूँ तो ढंग से बोलो, रो नहीं, मैं मारी हूँ कि रो रहे हो।
0: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र के FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, जो खाने पीने की खराब चीजों के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा में है। महाराष्ट्र FDA ने फिल्म स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस तीनों अभिनेताओं को विमल इलायची का विज्ञापन करने के लिए जारी किया गया है। FDA का आरोप है कि विमल इलायची विज्ञापन के जरिए राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक FDA ने 11 अगस्त को तीनों अभिनेताओं को नोटिस भेजकर विज्ञापन में उनकी भूमिका पर 15 दिन में जवाब मांगा है। FDA का कहना है कि विज्ञापन में विमल नाम, प्रोडक्ट और डायलॉग इस तरह इस्तेमाल किए गए हैं कि इससे विमल ब्रांड का प्रचार होता दिखता है। चूंकि विमल ब्रांड पान मसाला से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए FDA को शक है कि विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाले का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। ऐसे विज्ञापन को सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है, जिसमें किसी ऐसे प्रोडक्ट का सीधे विज्ञापन ना करके उसी ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट का विज्ञापन किया जाता है जिस पर रोक लगी है। महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटिन वाले गुटखा और पान मसाला पर 2012 से रोक है। ये रोक हर साल बढ़ाई जाती है। महाराष्ट्र में अभी ये रोक 13 जुलाई 2026 से एक साल के लिए लागू है। इसके तहत राज्य में पान मसाला बनाने, रखने, लाने, ले जाने और बेचने पर पाबंदी है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संगठित गुटखा और तंबाकू नेटवर्क के मामले में पुलिस के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई की जाए। एक पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था कि अगर किसी तरह का कोई प्रोडक्ट लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है तो सरकार को उसे तुरंत बैन कर देना चाहिए। जाहिर है ये मुद्दा आम लोगों की सेहत से जुड़ा है। ऐसे में फिल्मी सितारों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल जनता का हित देखकर करें। इस मामले पर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
3: करनी चाहिए मतलब फिर लाइक लोग इन्फ्लुएंस होती हैं कहीं ना कहीं, लाइक ऐसे बस लोग बोल देते हैं कि मूवी ही है, बट लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, हर कोई इतना एजुकेटेड नहीं होता, तो लाइक वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखते हैं कुछ भी करते हुए तो वो फॉलो करते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए, ऐसे मॉरली गलत है वो चीज़, तो नहीं ही करना चाहिए।
4: आई थिंक उन्हें इस चीज़ की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए क्योंकि मेनी पीपल स्पेशली यंगस्टर्स लुक अप टू देम, तो चाहे इवन दो उन्हें पता हो कि ये चीज़ ख़राब है, बट अगर वो उनको उनके लिए वो आइडल्स हैं या इफ दे आर लुकिंग अप टू देम तो ऑफकोर्स वो उस चीज़ से इंस्पायर होंगे या उस चीज़ से मोटिवेट होंगे कि हमें ऐसा बनना है तो हमें भी ये सब करना पड़ेगा। तो आई थिंक उनकी भी यहाँ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि वो अकाउंटेबिलिटी लें और ऐसी चीज़ें प्रमोट ना करें।
5: मैं तो मानूंगा कि मतलब हर किसी की लाइफ में स्टूडेंट या बड़े भी जो एक्टर्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब लोग उन्हें कुछ तो भगवान मानते हैं, बहुत मतलब अलग अलग फैन बेसिस है, तो उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ हमें बहुत लोग देखते हैं तो हमें कुछ अच्छी चीज़ प्रमोट करें जिससे वेलफेयर हो पब्लिक का और प्रोग्रेस करे पूरी कंट्री एज अ होल। तो या मैं तो अगेंस्ट हूँ पूरा, जो भी ऐसे उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए और देन उन्हें ना डिसीजन मेक करना चाहिए।
6: देखिए ये सेलिब्रिटी एक अलग चीज़ है, पिक्चरों में आते हैं, किस भी आते हैं, आप लोग पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, आगे आपके प्रपोजल भी मिलते हैं, बहुत बड़े लेकिन नाम भी होता है सोसाइटी में, भाई फलाना हीरो की फलानी फिल्म अच्छी है। बाकी रही अगर ये कोई ब्रांड चल रहा है तंबाकू का वगैरह का, ये किस इसके लिए, तो वो भी आप किस भी होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि तंबाकू है, तंबाकू में क्या गवर्नमेंट का भी तो रेवेन्यू मिलता ही है ना, तो आपको भी आपको सजेशन क्या, वो तो गवर्नमेंट जानती है क्या ऐसा करना है क्या नहीं करना, क्या बैन करना है ये क्या क्या नहीं करना है, तो वो तो गवर्नमेंट के ऊपर वाली बात है, तो आप देट नॉट सजेशन। तो जबकि पैसा आप कमाते हैं, गवर्नमेंट भी कमाती है, एक्साइज ड्यूटी आती है, GST आता है, तो बहुत सी चीज़ का काफ़ी बेनिफिट प्रॉफिट होती है।
0: खराब सड़क पर गाड़ी चलाते हुए गुस्सा तो हम सभी को आ जाता है, कहीं गड्ढा बचाने के चक्कर में गाड़ी डगमगाती है तो कहीं ये गड्ढे हादसे की वजह बन जाते हैं, लेकिन गुस्सा करने के बाद हम अक्सर यही सोचकर चुप हो जाते हैं कि आखिर हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने इसी सोच को बदलने की कोशिश की और उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो कि सड़क के गड्ढों को खुद पहचान सकता है और जिम्मेदार या फिर लापरवाह तक आपको पहुंचा सकता है, यानी कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर जिम्मेदार व्यक्ति तक गड्ढों की जानकारी पहुंचाने का काम काफी आसान हो गया है।

0: सड़कों पर ये गड्ढे अखिल भारतीय समस्या बन चुके हैं। ये गड्ढे न केवल आपका सफर बर्बाद करते हैं बल्कि गाड़ियों को खासा नुकसान भी पहुंचाते हैं। और फिर शुरू होती है शिकायतों की कभी न खत्म होने वाली कथा, जिसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने समस्या का एक गजब का AI सॉल्यूशन खोज निकाला है। बेंगलुरु के इंजीनियर गौरव सेन ने ऐसा AI सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए न केवल गड्ढों की पहचान संभव है बल्कि इन गड्ढों की मरम्मत के जिम्मेदारों तक पहुंचना भी आसान हो गया है। दरअसल ये सिस्टम सड़क पर चलते हुए गड्ढों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करता है। कार में लगे डैश कैम, GPS और एक्सेलेरोमीटर से सड़क की जानकारी जुटाई जाती है, जिसके बाद AI विजन मॉडल तस्वीरों और वीडियो को स्कैन करके अलग अलग आकार के गड्ढों की पहचान करता है। खास बात यह कि सिस्टम उन गड्ढों को भी पहचान सकता है जिन्हें दूर से देखना मुश्किल हो, क्योंकि कई बार सड़क का गड्ढा स्पीड ब्रेकर जैसा दिखाई देता है। गौरव सेन ने कोडेक्स की मदद से ये ऐप तैयार किया है जो इस पूरे डेटा को रिकॉर्ड करके OpenAI तक भेजता है। लेकिन कहानी सिर्फ गड्ढे की पहचान तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल होता है, गड्ढा मिला है तो इसे ठीक कौन करेगा। इसके लिए ऐप को करीब 2900 सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स से जोड़ा गया। सिस्टम सड़क के किसी खास हिस्से की पहचान करके ये पता लगा सकता है कि उस सड़क का ठेका किस कंपनी या ठेकेदार के पास है। यानी अगर कोई सड़क वारंटी पीरियड में है तो ठेकेदार को बिना सरकार पर अतिरिक्त खर्च डाले सड़क की मरम्मत करनी पड़ सकती है। और ये पूरा रिकॉर्ड महज 4 सेकंड में तैयार हो सकता है, जिसमें गड्ढे की तस्वीर, उसकी सटीक लोकेशन, टेंडर नंबर और सड़क से जुड़े अधिकारी की जानकारी शामिल होती है। गौरव ने इस सिस्टम का टेस्ट ऑफिस जाते वक्त किया। एक सफर में AI ने उनकी राह में मौजूद 12 गड्ढों को पहचान लिया। गौरव सेन का ये प्रयोग अब बेंगलुरु से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। लोग गौरव के इस AI मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ यूजर उसे ऐसा ऐप बता रहे हैं जो समस्या के साथ आपको सही समाधान तक ले जाता है। सड़क के गड्ढों के लिए AI से खोजा गया ये सॉल्यूशन बड़े काम का हो सकता है, क्योंकि देश में हर साल सड़क दुर्घटना में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनकी बड़ी वजह सड़क के गड्ढे भी होते हैं। हाल ही में लोकसभा में सड़क परिवहन मंत्रालय से सड़क हादसों को लेकर सवाल पूछे गए थे। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने जो जवाब दिया है वो वाकई चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों के आंकड़ों के आधार पर बताया कि हर साल सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही ये जानकारी भी दी कि किस उम्र के लोग सड़क पर बने गड्ढों के कारण सबसे ज्यादा हादसों का शिकार हो रहे हैं। इन आंकड़ों में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले 25 से 35 साल के लोग होते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में गड्ढों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 53% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में जहां 3,564 लोगों की मौत सड़कों पर बने गड्ढे की वजह से हुई, वहीं साल 2021 में 3,625 लोगों की मौत का जिम्मेदार सड़क के गड्ढे बने। वहीं साल 2022 में 4,446 लोगों की मौत सड़क पर बने गड्ढे की वजह से हुई। इनमें से 54% से ज्यादा मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में हुई, जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बनकर उभरा है। मंत्रालय को सौंपी गई राज्य पुलिस रिपोर्ट से लिए गए डेटा से पता चला कि आंध्र प्रदेश, बिहार और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने 5 साल के समय में गड्ढों से जुड़ी कोई दुर्घटना या मौत की सूचना नहीं दी। ये आंकड़ा ये भी दिखाता है कि साल दर साल सड़क पर बने गड्ढों की वजह से लोगों की मौत हो रही है। लेकिन
1: जस्ट मामला सामने आया है, एक शख्स मंदिर गया था, पूजा की और GPT की मदद ली और फिर क्या हुआ देखिए।
2: अगर आप मंदिर जाएं और आपके फुटवेयर न मिले तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार AI ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि अब वहां से आपको अपने फुटवेयर ढूंढने में मदद जरूर मिलेगी। दरअसल शुभांग बोरकर वो शख्स है जिन्होंने AI की मदद से ऐसा कर भी दिखाया है। ये AI वाली ट्रिक शुभांग के खोए फुटवेयर ढूंढने में खूब मददगार साबित हुई है। शुभांग ने मिनटों में AI की मदद से अपने जूते ढूंढ निकाले। गोवा बेस्ड शुभांग बोरकर पेशे से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं। उन्होंने दरअसल उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर से ये वीडियो शूट किया, जिसमें जहां नजर डालिए जूते चप्पल ही दिख रहे हैं। जाहिर है इन फुटवेयर में से अपने वाला पहचानना शुभांग के लिए इतना आसान टास्क नहीं था। वो एक एक करके फुटवेयर देखते तब जाकर उनको अपना फुटवेयर मिलता। लेकिन देखिए ChatGPT का कमाल, जिसकी मदद से शुभांग ने फुटवेयर्स की भीड़ में अपने वाला क्लॉग्स ढूंढ ही निकाला। शुभांग ने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो का नाम यूज्ड ChatGPT टू फाइंड माई लॉस्ट क्लॉग्स रखा। इसके लिए सबसे पहले मंदिर के बाहर जहाँ जूते चप्पल रखे थे

0: वहाँ से रैक और फुटवेयर एरिया की तस्वीरें ली। इसके बाद शुभांग ने अपने फुटवेयर क्लॉक्स की तस्वीर चैट जीपीटी पर अपलोड की। शुभांग ने एआई से वो तस्वीर देखकर उनकी जोड़ी पहचानने में मदद करने और फिर फुटवेयर के बीच उनके क्लॉक्स को ढूंढने के लिए कहा। हालांकि एक तस्वीर से बात साफ नहीं हुई तो शुभांग ने फुटवेयर एरिया के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। वो एक के बाद एक तस्वीरें चैट जीपीटी को भेजते रहे जिनमें सैकड़ों जूते चप्पल दिखाई दे रहे थे। चैट जीपीटी ने तस्वीरों को देखकर उनमें मौजूद जोड़ियों को शुभांग की भेजी हुई क्लॉक्स की तस्वीर से मिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे अपनी खोई हुई चप्पल ढूंढने का ये मामला एक छोटे से रियल वर्ल्ड एआई एक्सपेरिमेंट जैसा बन गया। कई तस्वीरें देखने और उनका विश्लेषण करने के बाद चैट जीपीटी ने एक ऐसी जोड़ी की तरफ इशारा किया जो शुभांग के क्लॉक से मिलती जुलती दिखाई दी। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर फुटवेयर खोजने की शुभांग की ये एआई ट्रिक लोगों को पसंद भी आ रही है। यानी जिस क्लॉक्स को शुभांग खुद सैकड़ों जूते चप्पलों के बीच तलाश रहे थे उसे उनके साथी बने एआई ने ढूंढ निकाला। यानी इस काम में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किसी बड़ी रिसर्च या तकनीकी काम में नहीं बल्कि बेहद सामान्य सी परेशानी को सुलझाने में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और अब बात उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों को है। हम बात कर रहे हैं नमित मल्होत्रा की रामायण की। दो पार्ट में बन रही इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यानी कि फिल्म का पैमाना जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी है इसकी प्लानिंग भी। अब मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी कहानी, क्योंकि रामायण 6 नवम्बर को इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज होगी जबकि भारत में दिवाली पर दस्तक देगी।
2: तुम्हारा नया राजा।
0: भारतीय सिनेमा के सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट में से एक रामायण, जिसने रिलीज से अरसे पहले ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, आम जन से लेकर खास तक, समाज के हर तबके, हर वर्ग तक रामायण पहुंच पाए इसके लिए मेकर्स एक खास प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं।
3: जब जब सृष्टि पर संकट आया भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की।
0: मेकर्स की प्लानिंग का एक ही अहम हिस्सा है फिल्म के रिलीज डेट। रामायण पार्ट 1 दीपावली पर रिलीज होनी है ये तय है, लेकिन किस तारीख को रिलीज होगी ये अब तक पुख्ता तौर पर तय नहीं था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में रामायण की रिलीज डेट 30 अक्टूबर बताई जा रही थी, लेकिन कन्फर्म कुछ भी नहीं था।
4: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार।
0: अब रामायण के मेकर्स ने काफी सोच समझ कर रामायण की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है।
4: निर्णय मैं ले चुका हूँ। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
5: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास।
0: 6 नवंबर यानी दिवाली से 2 दिन पहले रामायण पार्ट 1 वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। इससे मेकर्स को 2 हफ्ते का दमदार रिलीज पैसेज मिलने जा रहा है। इसे जानने के लिए इस तारीख की क्रोनोलॉजी समझनी होगी।
5: एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।
0: 6 नवंबर को शुक्रवार है और इसी दिन धनतेरस भी है। 7 नवंबर को शनिवार है यानी वीकेंड, छुट्टी का दिन होने से इसे भरपूर दर्शक भी मिलेंगे। 8 नवंबर को रविवार है और दीपावली भी है, जिसका फायदा फिल्म को फैमिली ऑडियंस के तौर पर मिल सकता है। 9 नवंबर को सोमवार है। 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, कई दफ्तरों में उस दिन छुट्टी होती है। और 11 नवंबर यानी बुधवार को भाई दूज का त्योहार है। 13 नवंबर यानी शुक्रवार से दूसरे हफ्ते से वीकेंड शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि रामायण को न सिर्फ बम्पर ओपनिंग मिल पाएगी बल्कि 2 दमदार वीकेंड भी। यानी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए अच्छा खासा वक्त मिलने जा रहा है।
5: सूट नखा, वो मोहित हो गई है आप पे।
6: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूर्पणखा।
0: हालांकि ओवरसीज में रामायण की राह इतनी आसान

0: पाकिस्तान नहीं रहने वाली। 5 नवंबर हॉलीवुड फिल्म गॉडज़िला माइनस जीरो रिलीज होगी, मतलब 6 नवंबर को इसका सामना रामायण से होगा। गॉडज़िला एक पॉपुलर फ्रेंचाइज है, इसलिए रामायण को क्लैश झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत में रामायण को एक छत्र राज मिल सकेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजाएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: गोल टेस्ट में भारत ने श्रीलंका पर बनाई मजबूत बढ़त। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
2: गोल टेस्ट पर भारत ने मजबूत पकड़ बना ली है। टेस्ट के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही भारत को पहली पारी में 178 रन की बढ़त मिल गई। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। खराब रोशनी के चलते दिन का खेल समय से पहले खत्म कर दिया गया। श्रीलंका से सोनल दिनुषा ने 100 रन की पारी खेली, वहीं निरोशन डिकवेला ने 80 रन बनाए। भारत की ओर से मानव सुथार ने 4 विकेट लिए, जबकि रविंद्र जडेजा को 3, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। भारतीय स्पिनर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट में अपने 350 विकेट पूरे कर लिए हैं। उन्होंने गोल टेस्ट में 3 विकेट लेकर यह सफर पूरा किया। इसके साथ ही अब जडेजा

0: टेस्ट में 4000 रन और 350 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं और ऐसा करने वाले कपिल देव के बाद दूसरे भारतीय हैं। देश के युवा बैडमिंटन स्टार आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले राउंड में वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड नंबर वन चीन के शी यू ची को हरा दिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रहे इस टूर्नामेंट में दुनिया में 22वें नंबर के खिलाड़ी आयुष ने मैन सिंगल्स का ये मुकाबला 21-14, 13-21, 21-19 से जीत लिया। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने भी जीत से शुरुआत की। सिंधु ने विमेन सिंगल्स के पहले राउंड में आयरलैंड की सोफिया नोबल को 29 मिनट में 21-7, 21-11 से हराया। दूसरे राउंड में सिंधु का मैच कनाडा की वेन यू झांग से होगा।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ है।
3: कौन से ग्रह व्यक्ति को क्रोधी बना देते हैं? कौन से ग्रहों की वजह से व्यक्ति क्रोध में नुकसान कर बैठता है? क्या है क्रोध आने के ज्योतिषीय कारण और क्या है क्रोध कम करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: कौन से ग्रह व्यक्ति को क्रोधी बना देते हैं? कौन से ग्रहों की वजह से व्यक्ति क्रोध में नुकसान कर बैठता है? क्या है क्रोध आने के ज्योतिषीय कारण और क्या है क्रोध कम करने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
9: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने रद्द की JSSC CGL परीक्षा, 2014 के बाद की भर्तियों की होगी CID जांच। महाराष्ट्र के जालना में कांवड़ यात्रा की रौनक, हर उम्र के शिव भक्त पवित्र यात्रा में हुए शामिल, हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में दिखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। पहाड़ से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मुंबई में भी जमकर बरस रहे हैं बदरा। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना,
9: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां बात कर रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर की घाटी में भोलेनाथ का जयकारा था, अब जम्मू की वादी में हर हर महादेव का जयघोष सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। सोमवार से शुरू हुई ये यात्रा 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक यूं ही चलेगी, जिसमें देखिए शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से शिवभक्त जो हैं जम्मू पहुंचने का जो उनका सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज आपको जम्मू से लेकर पुंछ तक इस यात्रा की भव्य तस्वीरें तमाम दिखाएंगे, बाबा चट्टानी के दर्शन करने के लिए निकले श्रद्धालुओं का जोश दिखाएंगे कितना हाई नजर आ रहा है। इसके साथ ही बाबा बूढ़ा अमरनाथ का भव्य दरबार भी दिखाने जा रहे हैं, शिव का ये धाम कितना पुराना है, कितना खास है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको इस पावन धाम की अद्भुत कहानी भी बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के साथ। देखिए कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद अब जम्मू में बाबा चट्टानी के दर्शन करने की होड़ लगी हुई है। सिर्फ 12 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु जो हैं पहुंच रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के बाद सोमवार की सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना कर दिया और इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए।

0: एक बार फिर हर हर महादेव का नारा है, एक बार फिर अमरनाथ का बुलावा है। लेकिन मंजिल इस बार अमरनाथ की गुफा नहीं बल्कि बूढ़ा अमरनाथ धाम है। कुछ दिन पहले इसी जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए जत्थे निकले थे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्त उमड़े थे, पर इस दफा जम्मू से कारवां पुंछ के लिए जा रहा है, क्योंकि पुंछ जिले के मंडी तहसील के राजपुरा में मौजूद है बाबा चट्टानी का धाम यानी बूढ़ा अमरनाथ मंदिर।
1: 2005 आयोजित की जा रही यात्रा केवल पर्वतों और घाटियों को पास करने वाली यात्रा नहीं है, ये हमारे पहाड़ी पथ से कहीं अधिक हम सबके अंतर्मन की यात्रा है। बाबा

0: भगवान माता जी की ये तीर्थ यात्रा स्वयं के भीतर स्थित चेतना को पहचानने की भी यात्रा है। यह पावन तीर्थ यात्रा भगवान शिव की ओर अग्रसर होने की भी यात्रा है, जो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थल की दिव्य ऊंचाइयों में विद्यमान है।
1: 17 अगस्त से ये यात्रा शुरू हुई है और 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक चलेगी, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू पहुंचने लगे हैं। भगवती नगर यानी यात्री निवास से सोमवार को जब पहला जत्था निकला तो शिव भक्तों का जोश देखने लायक था। पूजा पाठ के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को झंडा दिखाकर रवाना किया।
2: बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे थे, आज पहला जत्था बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का यहां से रवाना हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा यहां पर, जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया, इस पहले जत्थे को यहां से रवाना किया। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है उत्साहित होकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन था यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि कितना जो है वो उत्साह है यात्रियों के बीच। और ये बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जयघोष के साथ जो है वो यात्री यहाँ पर उत्साहित है और बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जत्था जो है वो रवाना हुआ है। और मैं इस तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि आप देखिएगा कि कितने उत्साहित हैं यात्री, और जय श्री राम के जयघोष के साथ जो है ये यात्रा रवाना हो रही है। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मैं गोकुल से कहूंगा कि वो आगे आएंगे और आपको दिखाना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रा को जो है वो फ्लैग ऑफ किया है। और देखिएगा दूर दूर तक ये बसेस जो है वो अब यहाँ से रवाना हुई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के जो है वो दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना हुई है। और ख़ास तौर पर इस यात्रा का मकसद है कि पुंछ जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उसे देश के जो विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं वो वहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचे, क्योंकि 10 दिन की ये यात्रा रहती है। और इस पहले जत्थे का हर एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी ये यात्रा एंटर करेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका भव्य स्वागत होगा। जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन यहाँ पर, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के साथ कई टुकड़ियाँ जो है इस यात्रा की सुरक्षा में तैनात हैं। और जम्मू पुंछ हाईवे को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो रखा गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये पावन यात्रा जो है वो 10 दिन के लिए यानी आज 17 तारीख से लेके 28 तारीख तक जो है वो यात्रा ये चलेगी। और इस यात्रा में देश भर से आने वाले श्रद्धालु बेहद खुश है और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
1: धार्मिक परंपरा में बाबा चट्टानी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे अमर कथा से जुड़े पवित्र मार्ग का पहला पड़ाव माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने की शुरुआत यहीं से की थी, जो बाद में अमरनाथ गुफा में पूरी हुई थी। इसीलिए ये मंदिर केवल एक धाम नहीं बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक प्रवाह का हिस्सा है।
2: राहुल जी कहाँ से आए?
3: जयपुर से।
2: जयपुर से आए, कब से आ रहे बाबा की यात्रा?
3: 30 साल है साहब।
2: तो कैसा लग रहा है इस बार की व्यवस्था, ये सब चीज?
3: अपन ये चाहते हैं कि पूरा देश आए और जो अपने महादेव जिनकी यहाँ पे स्थापना हुई थी, किसी कारण से यहाँ पे वो लुप्त हो गए, जिनकी पूजा होना बिल्कुल बंद हो गई थी, जो आज यहाँ के किया है लोगों ने, जनता ने अपने देश के लिए, और उसको जागृत किया है। और आज यहाँ लाखों की तादाद के अंदर बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
1: जिसे देखने और महसूस करने के लिए हर साल हजारों हजार की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इस साल पहले जत्थे में मध्य भारत, कर्नाटक, जयपुर और जोधपुर के भक्त शामिल हुए और उनका जोश जबरदस्त है। जो श्रद्धालु पुंछ की इस यात्रा में शामिल होते हैं, उनका मकसद सिर्फ मंदिर दर्शन नहीं होता बल्कि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के बीच ये यात्रा शिव अमरत्व और दिव्य रहस्य की एक सतत कथा है, जिसे समझना

0: एक अद्वितीय अनुभव है। तभी तो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए शिव भक्त मस्त मगन होकर पहले जम्मू और फिर यहाँ से पुंछ की ओर निकल पड़े हैं। जम्मू से 244 किलोमीटर का सफर तय करके यात्री पहले पुंछ पहुँचेंगे और फिर पुंछ से धाम की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है जिसे वो तय करेंगे।
1: पुंछ एक बॉर्डर का इलाका है, बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ क्षेत्र है और खास तौर पर पूरे देश भर से आने वाले यात्रियों का काफी उत्साहित रहते हैं पुंछ के लोग, उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार घुमाकर जो है वो दिखाएंगे। तो ये देखिएगा कि ये जोश और जो जज्बा है, ये जोश और जज्बा है तो ये जज्बा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हम एक बस में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और खासा उत्साह है और ये उत्साह साफ तौर पर दर्शाता है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है।
2: सेकंड बार आए हैं।
1: सेकंड बार तो पहले से कितना बदलाव लग रहा है इस बार का?
2: काफी बदलाव है।
1: तो क्या क्या मैसेज रहेगा पूरे देश भर के लिए आज दर्शनों के लिए जा रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के?
2: ये मैसेज रहेगा कि जो अन्य लोग नहीं आ पाए हैं वो भी आए और यात्रा का हिस्सा बने और बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करें।
1: ठीक है सर, कहाँ से आए?
3: हम मध्य भारत प्रांत से आए हैं, भोपाल के पास में बुधनी जिला है और मैं दूसरी बार आया हूँ। यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था, यहाँ के स्थानीय लोगों की व्यवस्था, संगठन की व्यवस्था बहुत ही उच्च क्वालिटी की व्यवस्था है।
0: जिस तरह बाबा बर्फानी का दरबार हिमालय के ऊंचे शिखर पर मौजूद प्राकृतिक गुफा में है, ठीक उसी तरह से बाबा चट्टानी पीर पंजाल श्रेणी में मौजूद बेहद खूबसूरत जगह पर मौजूद है। हाँ ये जरूर है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए ऊंची चढ़ाई नहीं है, लेकिन इस यात्रा में घाटी भी है और जलधारा भी, पहाड़ और पुलस्ता नदी मिलकर एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक शांति देते हैं। तभी तो जो एक बार बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए आता है वो बार बार आता है।
4: आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे पुंछ में एक जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा शुरू होने वाली है उसी कड़ी में यहाँ पे हमारे स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी की याद में यहाँ पे एक भव्य त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है जो बिल्कुल एक LOC पे हमारा नवग्रह मंदिर है वहां से स्टार्ट होती है और यहाँ पे यात्रा ग्राउंड जिसको कॉलेज ग्राउंड बोलते हैं यहाँ पे आती है। यहाँ पे विधिवत पूर्वक यहाँ पे त्रिशूल का यहाँ पे पूजन होता है और जो पूरे भारतवर्ष से यात्री आते हैं वो इसी त्रिशूल का पूजन करते हैं और उसके बाद वो बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। ये आज त्रिशूल यात्रा का महत्व ये है कि ये हमारे जो स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी थे जिनका हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने बहुत बड़ा इस हमारी यात्रा में योगदान दिया था। ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने यात्रा शुरू की थी और आज आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ बिना मतलब मिलत सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आए हुए और इस यात्रा में शामिल हुए।
5: ये जो त्रिशूल यात्रा है आपको पता है हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब यहाँ आती है उससे एक दिन पहले ये जो त्रिशूल यात्रा है ये नवग्रह मंदिर अजोट जो कि देरिया में है वहां से निकलती है और यात्रा ग्राउंड तक पहुंचती है। आपने देखा होगा भोले का जो त्रिशूल है ये एक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो हमारे पुंछ के वासी हैं खास करके बिना मजहब मिलत हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पहुंचता है और ये खास करके एक तरह से आयोजन होता है बाबा बूढ़ा अमरनाथ से पहले कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आ रही है जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए सारे पुंछ वासियों को जिस तरह से वो वेलकम करने के लिए हर बार यात्रियों को यहाँ पहुंचते हैं।
0: पहाड़ी नदी का जल है, भजन और भगवा ध्वज और इन सब के साथ शिव भक्तों की श्रद्धा, ये सब मिलकर बूढ़ा अमरनाथ धाम को एक जीवंत धार्मिक अनुभव बना देते हैं और खासकर सावन में अनगिनत श्रद्धालुओं और संतों की मौजूदगी से धाम शिवमय हो जाता है। इस साल भी बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए यात्रा शांतिपूर्ण हो इसके लिए जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे मार्ग पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, यात्रियों का जत्था सुरक्षा घेरे में धाम तक पहुंचाएगा और वापस आएगा। पूरे रास्ते आवास, भोजन और दूसरी तमाम सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की तादाद हर साल बढ़ रही है। जो लोग किसी वजह से अमरनाथ गुफा नहीं जा पाते वो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसकी वजह ये भी है कि ये यात्रा आसान है और दूसरी अहम बात ये कि इसकी अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा है जिससे लोगों की गहरी आस्था भी जुड़ी है। हर साल वार्षिक बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से एक दिन पहले त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी LOC पर मौजूद नवग्रह मंदिर में त्रिशूल यात्रा की शुरुआत हुई। पूजा

0: के बाद मंत्रोच्चार के साथ एक विशाल त्रिशूल को लिए शिव भक्त चल पड़े। फूलों और झंडों से सजे त्रिशूल को लेकर भक्त यात्रा में आगे बढ़ते चले गए। जयकारों से माहौल शिवमय होता गया। पुंछ के इलाकों और गलियों से गुजरती हुई त्रिशूल यात्रा कॉलेज ग्राउंड पहुंची, जहां यात्रा के लिए बेस कैंप बनाया गया है। ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है। अमरनाथ की तरह ही इस यात्रा में धार्मिक सद्भाव साफ नजर आता है। अगले 10 दिनों तक पुंछ का ये इलाका शिव की भक्ति से सराबोर रहेगा। घाटी में हर हर महादेव का जय घोष होगा। जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। हालांकि 90 के दशक में आतंकवाद और सीमा पार से लगातार होने वाली गोलाबारी के चलते ये महान यात्रा रुक गई थी, लेकिन पिछले 21 सालों से इस यात्रा को लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु पूरे जोश के साथ शामिल होते हैं। यात्रियों का पहला जत्था जब पुंछ में बेस कैंप पर पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। देखिए,

0: हम बोले कि जयघोष के साथ आज जो यात्रा का पहला जत्था यहाँ पुंछ में पहुंचा और पुंछ में ये महामूर्ति का एक यहाँ पे पूजा अर्चना की गई। ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जो पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ बम बोले के नारे से और यहाँ पुंछ में आज कई यूपी से कोई हरियाणा से कोई गुजरात से यहाँ यात्रु आए हुए
1: बूटा अमरनाथ की यात्रा की है, वो बहुत अच्छी है। रास्ते में भी हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिली और हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी हम आज पहली बार आए हैं और आगे भी हमारी इच्छा हो रही है यहाँ सबकी सुविधा अच्छी देख के।
0: यहाँ हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर यात्रा के लिए आए हैं। अब कुछ स्थानीय लोग हैं वहाँ पे जयपुर के रहने वाले, उनसे हम बात करने जा रहे हैं।
2: सर आपका नाम? सर मेरा नाम जटा शंकर अग्रवाल है, मैं जयपुर राजस्थान मानसरोवर से आया हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी 200 आदमी आए हैं।
3: हम ये कहना चाहते हैं कि
4: जगदानी बाबा
3: कुंज में आए हैं,
4: दो बरस पहले थी
3: हम चाहते हैं
4: कि जयपुर से हमारे 656 लोग आवाज आए हैं, यात्री आए हैं और पूरे राजस्थान से करीब 4,000-5,000 के लगभग संख्या में जो यात्री आए हैं। पहले की बजाय अब की बार हम निर्भय होकर यात्रा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का भय नहीं है।
0: हजारों की संख्या में ये लोग आए वहाँ से और इन लोगों का ये कहना है कि 370 और 35 का हटना उससे ये लगता है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मंजीत सिंह,
5: देखिए बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि आस्था, विश्वास और शक्ति का वो सफर है जिसकी अलग आध्यात्मिक अनुभूति है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्तों के लिए ये यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। जो लोग किसी वजह से पवित्र अमरनाथ गुफा में हिमलिंग के दर्शन नहीं कर पाते उनके लिए बाबा चट्टानी के दर्शन का अवसर होता है। आपको बता दें कि बाबा बूढ़ानाथ से जुड़ी आस्था की कहानी सतयुग में रावण के दादा यानी ऋषि पुलस्त से जुड़ी हुई है, लेकिन मान्यता यह है कि जम्मू कश्मीर की रानी यानी चंद्रिका ने भगवान शिव को यहां बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा था। क्या है कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

अद्भुत है भगवान शिव के दोनों धाम। कश्मीर में बाबा बर्फानी है तो यहाँ जम्मू में बाबा चट्टानी। अमरनाथ में बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग तो यहाँ पुंछ में सफेद चमचम शिवलिंग। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन चढ़ाई है तो बाबा चट्टानी तक पहुँचना आसान। अमरनाथ की लंबी चली यात्रा के बाद अब 10 दिनों तक बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन की होड़ है। जैसा पावन धाम वैसी पुरानी इसकी

0: तो उन्हें बोध हुआ कि पांचाल पहाड़ी में वो जगह मौजूद है जहां भगवान शिव ने पहली बार देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। पुलस्त इस जगह पर पहुंचे और छोटी सी गुफा में घोर तप शुरू किया। तब से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। पुलस्त ने कहा कि जहां आपके दर्शन हुए हैं उसे ऐसा धार्मिक महत्व प्रदान करें कि युगों युगों तक आपके भक्त यहां आते रहें। इसके बाद भगवान शिव अदृश्य हुए तो एक चट्टान की गुफा में भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जिसकी बनावट चट्टान जैसी थी। इसके बाद पुलस्त ऋषि ने यहां वर्षों तप किया। कहते हैं इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र का नाम पुलस्त नगरी पड़ गया जो अपभ्रंश होते होते पुंछ हो गया। इसी वजह से श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के साथ बहने वाली नदी का नाम पुलस्त गंगा पड़ा जिसे आज भी पाप नाशनी गंगा मानकर हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं और हर साल बड़ी तादाद में भोले के भक्त अपनी आराध्य का आशीर्वाद पाने यहाँ आते हैं।
1: पहली बार आए हैं, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है।
2: अरेंजमेंट कैसे लगे आपको?
1: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा।
3: बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का विषय है आज कि हम प्रतिवर्ष ये साहसिक यात्रा करते हैं। ये यात्रा अलग अलग प्रांत की प्रतिदिन निकलती है। आज पहला जत्था मध्य भारत प्रांत और हमारे दो तीन प्रांतों का इकट्ठा होकर निकल रहा है। ये 27 तारीख तक यात्रा लगातार चलेगी। अलग अलग प्रांतों के लोग इस यात्रा में प्रतिदिन सहभागी बनेंगे।
2: अरेंजमेंट कैसे लगे यहाँ? जो
3: बहुत शानदार, बहुत उत्तम अरेंजमेंट है।
0: चट्टान जैसे शिवलिंग की वजह से नाम पड़ा बाबा चट्टानी, लेकिन बाबा बूढ़ा अमरनाथ नाम पड़ने की कथा बड़ी ही दिलचस्प है। कहते हैं करीब 2000 साल पहले पुंछ जिले का गांव लोरन तब के जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी थी जिस पर उस समय रानी चंद्रिका का शासन था। रामकाज में निपुण रानी चंद्रिका अत्यंत दयालु एवं शिव भक्त थी जो हर साल सावन में अमरनाथ गुफा में हिमलिंग की पूजा करने के बाद ही व्रत तोड़ती थी। लेकिन एक साल मौसम खराब होने से अमरनाथ जाने के सभी मार्ग बंद हो गए। ये सोच कर कि किसी भूल से भोलेनाथ रुष्ट हैं, रानी ने अन्न जल त्याग दिया और बीमार हो गए। कहते हैं एक दोपहर रानी ने सपने में एक बूढ़े साधु को देखा जिन्होंने रानी से उसके महल के 10 मील दूरी पर मौजूद शिव का लुप्त स्थान पर पूजा करने को कहा। इसके ठीक बाद श्वेत कपड़ों में एक साधु ने रानी को दर्शन दिए और अपने साथ उस गुफा तक लेकर आए जिसमें 4 द्वार बने थे। मंदिर सामने आते ही बूढ़े साधु गायब हो गए और इसके बाद रानी ने उन्हें बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा जो प्रचलित हो गया।
4: सोजत जिला से प्रथम बार ऐसा हुआ है कि हम 95 की संख्या के अंदर हम यात्री यहाँ पहुँचे हैं और जितने भी राजस्थान के विभिन्न राज्य और भी राज्य हैं वहाँ से भी बहुत सारी संख्या के अंदर इतने उत्साह से लोग आए हैं यहाँ पे। जो उनके मन में जो उनके उत्साह है वो यहाँ उत्साह आज देखने को मिल रहा है कि विभिन्न राज्य के जो लोग हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे अरेंजमेंट्स सब उच्च स्तर के अरेंजमेंट्स है जिसके अंदर अभी प्रथम वर्ष ऐसा हुआ है कि पूरा इसमें सिस्टम डिजिटल कर दिया है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, अभी ऑनलाइन सिस्टम करने से अधिक सुलभता हो गई है। जो भी यात्री है अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आप जो भी संगठन के है वो आपको संपर्क कर लेंगे।
5: सबके अंदर बहुत अच्छी भावना है, श्रद्धालु सारे और बहुत भक्ति भाव से भरे हैं और अमरनाथ बाबा की यात्रा के लिए सब रवाना हुए हैं और सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है।
6: लोगों में बहुत उत्साह है। जैसे बर्फानी बाबा की यात्रा शुरू की थी तो 2005 से लेकर इस यात्रा को आरंभ किया गया है तो अभी एक विशाल वटवृक्ष के रूप में काफी संख्या में लोग यहाँ आना आरंभ हो गए हैं और आने वाले समय में जैसे बर्फानी बाबा में जाते हैं वैसे ही लोग इस यात्रा में जाना आरंभ कर लेंगे जिसका प्रतिरूप अभी आप देख ही रहे हैं। आपके सामने कम से कम 60-70 हजार लोग इस वर्ष जाएंगे इन 7 दिनों में। अलग अलग प्रांत से अलग अलग की सारणी बनाई हुई है, वो अलग अलग आ रहे हैं।
0: कहते हैं स्वयं भगवान शिव द्वारा दिखाया गया यह स्थान सैकड़ों वर्षों के बाद भी एक बार फिर अदृश्य हो गया था जिसे दक्षिण भारत के एक साधु स्वामी चंद्रचूड़ मुनि ने उजागर कर वर्षों तक यहां तप किया था। इस मंदिर के साथ ही पूर्व दिशा में स्वामी चंद्रचूड़ मुनि की समाधि भी बनाई गई है। सावन में कुल 12 दिनों तक बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा चलती है और श्रद्धालु दर्शन करते हैं, लेकिन इस दर्शन पूजन के साथ ही जुड़ी है पवित्र छड़ी यात्रा जो पुंछ के 10 नामी अखाड़े से निकलती है और बड़े ही धूमधाम से बूढ़ा अमरनाथ मंदिर तक जाती है। सीमा सुरक्षा बल, मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा छड़ी का स्वागत कर उसे आदर सहित मंदिर प्रांगण

में ले जाया जाता है। पुलिस द्वारा छड़ी को सलामी दी जाती है और फिर छड़ी को बूढ़े अमरनाथ शिवलिंग पर स्थापित किया जाता है, जो रक्षाबंधन के एक दिन बाद तक विराजमान रहती है। इस छड़ी यात्रा के साथ ही मंदिर में 3 दिवसीय यात्रा एवं मेला शुरू हो जाता है, जो रक्षाबंधन के एक दिन बाद तक जारी रहता है। दशनामी अखाड़े से निकलने वाली छड़ी यात्रा इस धाम को एक अलग आभा देती है और बाबा के भक्तों को एक अलग अनुभव। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: कौन से ग्रह व्यक्ति को क्रोधी बना देते हैं, कौन से ग्रहों की वजह से व्यक्ति क्रोध में नुकसान कर बैठता है, क्या है क्रोध आने के ज्योतिषीय कारण और क्या है क्रोध कम करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने रद्द की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2014 के बाद की भर्तियों की होगी सीआईडी जांच। महाराष्ट्र के जालना में कांवड़ यात्रा की रौनक, हर उम्र के शिव भक्त पवित्र यात्रा में हुए शामिल, हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में दिखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। बाढ़ से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मुंबई में भी जमकर बरसे बजरा। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी धमाकेदार आगाज।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था पहुंचा पुंछ, 2041 तीर्थयात्री शामिल हुए। हर हर महादेव के जयकारों की गूंज, कल अमरनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे श्रद्धालु। बेस कैंप पहुंचने पर भक्तों का भव्य स्वागत हुआ, बूढ़ा अमरनाथ के श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह। पुंछ में श्रद्धालु ने मां भारती की प्रतिमा को किया नमन, बूढ़ा तीर्थयात्रियों में खुशी। अमरनाथ मंदिर में बाबा चट्टानी के दर्शन करने को उत्साहित नजर आए श्रद्धालु, दर्शन का बेसब्री से इंतजार। जालना में निकली भव्य कांवड़ यात्रा, सैकड़ों शिव भक्त शामिल हुए आस्था भक्ति में सराबोर नजर आए श्रद्धालु। गोदावरी का जल लेकर पंचमुखी महादेव मंदिर पहुंचे भक्त, पंचमुखी महादेव का हुआ जलाभिषेक, बम बम बोले की गूंज। जयपुर के गलता धाम में अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से भक्तों पर पुष्प वर्षा, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। फूलों की बारिश से गूंजा गलता धाम, आसमान से बरसाए गए फूल। जौनपुर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, करशूल नाथ महादेव मंदिर में खास नजारा, हर तरफ गूंजे भोलेनाथ के जयकारे। नागपंचमी पर काशी में विदेशी पहलवानों का दम, स्पेन और नेदरलैंड्स के पहलवानों ने खींचा सबका ध्यान। विदेशी पहलवान सैंटियागो और हर्बर्ट बने आकर्षण का मुख्य केंद्र, अखाड़े में उतरे। ढोल लगाड़ों की थाप के बीच विदेशी पहलवानों का जोरदार शक्ति प्रदर्शन, अखाड़े का माहौल भी रहा जोशीला। स्थानीय लोगों ने भी दिखाया जबरदस्त उत्साह, परंपरागत खेलों का जमकर आनंद लिया, अखाड़े में खूब जमा रंग। विदेशी पहलवानों ने इसे बताया यादगार अनुभव, स्थानीय पहलवानों की जमकर हुई तारीफ। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, श्रावण सोमवार पर उमड़े भक्त, नागपंचमी पर खास रौनक। श्रावण सोमवार और नागपंचमी का अद्भुत संयोग, शिव दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु, शिव भक्तिमय नजर आया माहौल। भक्तों ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया, मंदिर में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे। अमरनाथ मंदिर की फूलों से भव्य सजावट की गई, दिखा अद्भुत नजारा, श्रद्धालुओं ने किए विशेष इंतजाम। अमरनाथ मंदिर में देखी खास रौनक, श्रद्धालुओं में देखा जबरदस्त उत्साह, आस्था के रंग में रंगी हुई नजर आई मुंबई। इंदौर के प्राचीन नाग मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, नाग देवता के दर्शन करने को पहुंचे भक्त। श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक, मंदिर में पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। प्राचीन नाग मंदिर की खास सजावट, फूल, बंगले का श्रृंगार, शेषनाग और वासुकी नाग की सजी प्रतिमाएं। विशेष आरती और अभिषेक का आयोजन हुआ, नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व, सर्पदूष से मुक्ति की मान्यता। भक्तों की सुख समृद्धि की कामना, ब्रिटिश काल से जुड़ी हुई है मंदिर की कहानी, करीब 200 साल पुराना मंदिर। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ, सुबह से दर्शन करने के लिए लंबी कतारें। भगवान महाकाल का अभिषेक करने के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त साक्षी बने। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती हुई, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गुंजायमान। सबसे दिव्य और अद्भुत थे वो पल जब महाकाल की भस्म आरती की गई, भस्म आरती से नहाए बाबा। उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और क्रिकेटर उमेश यादव। अमृतसर के शिवाला बाग भैया में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, दर्शन करने के लिए सुबह से कतारें। भक्तों ने किए भोलेनाथ के दिव्य दर्शन, दूर दूर से पहुंच रहे भक्त मंदिर में, हर हर महादेव की गूंज। सावन, सोमवार, नागपंचमी, संक्रांति, तीनों एक साथ पड़े पूजा और जलाभिषेक। धौलपुर में अनोखी पहल, 11,000 पौधों की अनोखी कांवड़ यात्रा, हरियाली का संदेश। 5100 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बैंड बाजों के साथ निकली कांवड़। पठानकोट बनेगा एडवेंचर डेस्टिनेशन, पैरासिलिंग का हुआ शुभारंभ, पर्यटकों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। रावी की झील में वाटर स्पोर्ट्स, पैरासिलिंग का मजा ले रहे हैं लोग। नीले पानी और हरे पहाड़ों के बीच पैरासिलिंग, मिनी गोवा जैसा नजारा। वाटर स्पोर्ट से पर्यटक को मिलेगा बढ़ावा, पर्यटन के साथ बढ़ेंगे रोजगार, स्थानीय लोगों और कारोबारियों के खिले चेहरे। शाहपुर कंडी बैराज झील पर खास तैयारियां, झील को टूरिज्म हब बनाने की कोशिश, पैरासिलिंग के दौरान रखी जाएगी निगरानी। हरियाणा के चरखी दादरी के 76 वर्षीय रामकिशन शर्मा का कमाल, 401 मेडल जीतकर रच दिया इतिहास। मेडल मशीन के नाम से मशहूर है रामकिशन, 65 साल में शुरू कर दी थी दौड़, 7 से 9 साल में एथलेटिक्स में बड़ा मुकाम हासिल किया। मेडल के साथ 336 सर्टिफिकेट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते 10 गोल्ड, राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का किसान अवतार। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल में बड़ा सम्मान, काठमांडू में नेपाली सेना की मानद रैंक दी गई। अलवर के 1,47,000 किसानों को बड़ी सौगात, किसानों के खाते में पहुंचे 14,72,00,000 हुए ट्रांसफर। वर्ल्ड टेस्ट में टीम इंडिया का दबदबा कायम, तीसरे दिन श्रीलंका 284 रन पर ढेर। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा कराया कीर्तिमान टेस्ट में, 4,000 रन और 350 विकेट भी पूरे। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में चमके देश के युवा बैडमिंटन स्टार आयुष शेट्टी। डमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु का जीत से हुआ शानदार आगाज, 29 मिनट में सोफिया नोबल को हराकर दूसरे राउंड में बनाई जाए। इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंड टेबल का आगाज, मुख्यमंत्री विजय शामिल हुए। मुख्यमंत्री विजय ने लॉन्च किया इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, मंच पर साथ में इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन एंड एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी भी रही मौजूद। मुख्यमंत्री विजय ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सच को और मुखर होकर बोलने दें का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नेता, नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और मनोरंजन क्षेत्र की हस्तियां होंगी शामिल। तमिलनाडु के भविष्य और सरकार के कामकाज की समीक्षा मुद्दों पर होगी चर्चा। तमिलनाडु की आर्थिक संभावनाओं और निवेश के माहौल के साथ साथ भ्रष्टाचार, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त और स्वास्थ्य जैसी राज्य की प्रमुख नीतिगत चुनौतियों पर भी विचार विमर्श। रोहतास में कजरी महोत्सव की धूम, बड़ी संख्या में महिलाओं ने सावन की गीत गाए। कजरी महोत्सव में कला और संस्कृति का अद्भुत संगम, महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में नृत्य किया। आईआईटी कानपुर के छात्रों ने निकाली कांवड़ यात्रा, सरसैया घाट से गंगा जल लेकर पैदल आनंदेश्वर धाम पहुंचे। देशभर में मशहूर मूर्थल के रेशम ढाबे में रोबोट वेटर की एंट्री, रोबोट परोस रहे हैं पराठे। रोबोट को खाना सर्व करते देखकर ग्राहक भी हैरान, एक बार चार्ज होने पर 2 घंटे तक सर्विस। ओरेज में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल 1.0 का शानदार समापन, खेल को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, स्वच्छ भारत अभियान और पौधारोपण अभियान में शामिल हुए। रामनाथपुरम में योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जल्द निपटारे के आदेश। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम हवाई अड्डे पर पहली उड़ान हुई शुरू, यात्रियों में खुशी की लहर। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, सभी घाटों में भरा पानी, जलस्तर बढ़ने से गंगा आरती पीछे शिफ्ट। सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है पानी, तटवर्ती इलाकों में बढ़ी चिंता। गंगा में नाव संचालन पर पूरी तरीके से रोक, पर्यटकों को नहीं मिल रहा नौका विहार। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जाजपुर पहुंचे, बोट पर रेस्क्यू टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री मांझी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, हालात की समीक्षा की। मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश, सड़कों पर जलजमाव, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बारिश की तस्वीरें निकलकर सामने आई। देहरादून में भारी बारिश के चलते जगह जगह वाटर लॉगिंग, आम जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को हो रही है परेशानी। चमोली के पीपल कोटी टनल में 2 लापता लोगों की तलाश लगातार जारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का चल रहा है संयुक्त सर्च ऑपरेशन। मेरठ में अंडरपास में जलजमाव से छात्राएं परेशान, वीडियो बनाकर डीएम से लगाई गुहार। कुल्लू में पार्वती नदी में फंसे दिल्ली के 4 पर्यटकों का हुआ सफल रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 24 जिलों में ऑरेंज और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। अयोध्या में लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी। प्रयागराज में भी लगातार बढ़ रहा है संगम का पानी, निचले इलाकों में जलजमाव। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, गोंडा और बहराइच के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य तेज। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी गई सहायता राशि, अधिकारी पल पल की कर रहे हैं निगरानी। रणवीर ने शुरू कर दी प्रलय की शूटिंग, फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन की भी अहम भूमिका। मालामाल वीकली 2 का ऐलान हो गया, फिल्म में परेश रावल, रितेश देशमुख, राजपाल यादव के साथ नजर आएंगे एल्विश यादव। इमरान हाशमी के आवारापन 2 का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त जलवा, फिल्म ने 3 दिनों में ही कमा डाले 82 करोड़। एवन स्टाइल में अक्षय कुमार ने सैफ अली खान को बर्थडे विश किया, लिखा जन्मदिन मुबारक हो सैफ। सनी देओल ने पान मसाला विज्ञापनों को लेकर साफ कर दिया इनकार, कहा मेरा जमीन नहीं मानता। जर्मनी के क्रैंकफर्ट में ब्राजील ने रच दिया इतिहास, रिदमिक जिमनास्टिक में ब्राजील ने एक ही दिन में 2 गोल जीते। ब्राजील की लियोआस का धमाल, 5 बॉल्स, फाइनल में शानदार जीत। ब्राजील की टीम ने पहला वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। गोल्डन डबल जीतकर ब्राजीलियन टीम के लिए रहा यादगार पल। यूक्रेन की ओनो फ्रिचुक बनी चैंपियन। जर्मनी की वार फोलोमीवा का 14वां वर्ल्ड टाइटल। शेडोंग में खुला चीन का पहला एआई होम रोबोट सेंटर, लोगों को मिलेगा रोबोट का लाइव अनुभव। सफाई और कपड़े धोने में मिलेगी मदद, एआई रोबोट को खाना बनाने का भी जिम्मा। एक्सोस्केलेटन रोबोट बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, सिर्फ 2.25 किलो का है वजन। चीन के झेंजियांग में रोबोट ने मचाया तहलका, यूनिट्री के सुपरमैन ने 2 मीटर जंप लगाई। सुपरमैन रोबोट का जबरदस्त प्रदर्शन, इंसानी रिकॉर्ड को दी बड़ी चुनौती, 12.66 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड। चीन में रोबोट प्रोडक्शन बढ़ा, जनवरी से जुलाई के बीच 28.5% बढ़ोतरी। थ्री प्रिंटिंग का इक्विपमेंट का उत्पादन भी बढ़ा, हाईटेक का सेक्टर में तेजी। बटरफ्लाई से प्रेरित चीन की नई टेक्नोलॉजी, तितली से प्रेरित हवा में सैंपलिंग तैयार करने में माहिर। रोबोट का नाम है फेस, फेस को बिजली की जरूरत नहीं होती, किसी पंप की भी जरूरत नहीं होती। सिर्फ 12 सेंट में डिस्पोजेबल यूनिट प्रदूषण की निगरानी और बीमारियों का पता लगाती है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: कौन से ग्रह व्यक्ति को क्रोधी बना देते हैं? कौन से ग्रहों की वजह से व्यक्ति क्रोध में नुकसान कर बैठता है? क्या है क्रोध आने के ज्योतिषीय कारण और क्या है क्रोध कम करने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: आइए बात करेंगे उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ बॉलीवुड को ही नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों को है। हम बात कर रहे हैं नमित मल्होत्रा की रामायण की। दो पार्ट में बन रही इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताया जा रहा है, यानी फिल्म का पैमाना जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है इसकी प्लानिंग भी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिवाली के आसपास रिलीज करने की इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी क्यों बनाई गई, क्योंकि दिवाली यानी छुट्टियां, परिवार और सिनेमाघरों तक पहुंचने वालों का बड़ा दर्शक वर्ग।
7: तुम्हारा नया राजा।

0: भारतीय सिनेमा के सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट में से एक रामायण, जिसने रिलीज से अरसे पहले ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, आम जन से लेकर खास तक, समाज के हर तबके, हर वर्ग तक रामायण पहुंच पाए, इसके लिए मेकर्स एक खास प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं।
1: जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की।
0: मेकर्स की प्लानिंग का एक ही अहम हिस्सा है फिल्म के रिलीज डेट। रामायण पार्ट 1 दीपावली पर रिलीज होनी है, ये तय है, लेकिन किस तारीख को रिलीज होगी ये अब तक पुख्ता तौर पर तय नहीं था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में रामायण की रिलीज डेट 30 अक्टूबर बताई जा रही थी, लेकिन कन्फर्म कुछ भी नहीं था।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार,
0: अब रामायण के मेकर्स ने काफी सोच समझकर रामायण की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है।
2: निर्णय मैं ले चुका हूं, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
3: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास।
0: 6 नवंबर यानी दिवाली से 2 दिन पहले रामायण पार्ट 1 वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। इससे मेकर्स को 2 हफ्ते का दमदार रिलीज पैसेज मिलने जा रहा है। इसे जानने के लिए इस तारीख की क्रोनोलॉजी समझनी होगी।
3: एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।
0: 6 नवंबर को शुक्रवार है और इसी दिन धनतेरस भी है। 7 नवंबर को शनिवार है यानी वीकेंड, छुट्टी का दिन होने से इसे भरपूर दर्शक भी मिलेंगे। 8 नवंबर को रविवार है और दीपावली भी है, जिसका फायदा फिल्म को फैमिली ऑडियंस के तौर पर मिल सकता है। 9 नवंबर को सोमवार है। 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, कई दफ्तरों में उस दिन छुट्टी होती है। और 11 नवंबर यानी बुधवार को भाई दूज का त्योहार है। 13 नवंबर यानी शुक्रवार से दूसरे हफ्ते से वीकेंड शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि रामायण को न सिर्फ बम्पर ओपनिंग मिल पाएगी बल्कि 2 दमदार वीकेंड भी, यानी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए अच्छा खासा वक्त मिलने जा रहा है।
3: सूट ना खा, वो मोहित हो गई है आप पे।
4: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूर्पणखा।
0: हालांकि ओवरसीज में रामायण की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। 5 नवंबर हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो रिलीज होगी, मतलब 6 नवंबर को इसका सामना रामायण से होगा। गॉडजिला एक पॉपुलर फ्रेंचाइज है, इसलिए रामायण को क्लैश झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत में रामायण को एक छत्र राज मिल सकेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुडनीज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
14: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने रद्द की GSSC CGL परीक्षा 2014 के बाद की भर्तियों की होगी CID जांच। वाराणसी पे छत पर शुरू हुई मां गंगा की आरती, बढ़ते जलस्तर के चलते लिया गया फैसला, 7 अर्चकों ने विधिवत की आरती। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में देखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। बाहर से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम मुंबई में भी जमकर बरसे बरदा। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी जोरदार आगाज़।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका
1: जी। नमस्कार।
0: तो चलिए, आज के शो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्रोध की समस्या की। आखिर क्रोध क्यों आता है और अगर ज्यादा क्रोध आता है तो इससे दूर रहने के उपाय क्या कुछ हैं, इसके बारे में जानेंगे आज पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले वक्त हो चला है ये जानने का कि आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रोज सवेरे शिवलिंग पर दूर्वा यानी दूब घास और जल अर्पित करिएगा। अगर नित्य प्रातः ऐसा करें तो आपको बुरी आदत से छुटकारा जल्दी मिलेगा।
0: तो चलिए अब जान लेते हैं 18 अगस्त 2026 यानी मंगलवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 5:50 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए अब जान लेते हैं कि ज्योतिष में क्रोध आने के कारण क्या क्या होते हैं और किन ग्रहों से क्रोध की स्थिति देखी जा सकती है।
1: हम आज बात कर रहे हैं स्वभाव की एक समस्या के बारे में जिसे कहते हैं क्रोध, गुस्सा। ज्योतिष में क्रोध के कारण क्या हैं और किन ग्रहों से जान सकते हैं गुस्से के बारे में, क्रोध के बारे में। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी है और चंद्रमा की स्थिति देख करके मन को आप जान सकते हैं। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर है तो मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, और अगर चंद्रमा को साथ मिल जाए अग्नि तत्व के ग्रह का, जैसे मंगल का या सूर्य का, तो व्यक्ति सामान्यतः क्रोधी होता है। मंगल अगर कुंडली में नीच राशि में बैठा हो या अग्नि तत्व की राशि मेष, सिंह या धनु में बैठा हो तो व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है। जिन लोगों का जन्म दोपहर का होता है सामान्यतः उनकी कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को भी काफी क्रोध आता है ऐसा देखा गया है। मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों को आम तौर पर ज्यादा क्रोध आता है ऐसा देखा गया है।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, छोटी यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और पंडित जी से जान लेते हैं कि हाथ की रेखाओं के द्वारा कैसे क्रोध के बारे में जान सकते हैं।
1: देखिए, कुंडली के ग्रहों के अलावा आपकी हथेलियों को देखकर, आपके हाथ की रेखाओं को देखकर भी क्रोध के बारे में जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? अगर हथेलियों का रंग काला हो या साफ ना हो तो व्यक्ति क्रोधी होता है। मंगल के पर्वत पर अगर क्रॉस हो या जाल हो तो भी व्यक्ति क्रोधी होता है। हाथ के बीचों बीच में या नीचे की तरफ अगर तिल हो तो भी ऐसे लोग क्रोधी होते हैं। अंगूठा अगर आपका छोटा हो या

0: पर काबू नहीं रहता।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि ऐसा कब होता है जब क्रोध की स्थिति बहुत ज्यादा विस्फोटक या खतरनाक हो जाती है।
0: देखिए, अलग अलग तरह का क्रोध होता है। कुछ क्रोध ऐसा होता है कि आदमी को आता है और आदमी उसको कंट्रोल कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोध की स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाती है। कब होता है ऐसा? मंगल अगर बुध की राशि में बैठा हो तो ऐसे लोगों का अपने मन पर और अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं रहता। मंगल अगर बुध की राशि में हो तो क्रोध हिंसा का रूप ले लेता है। मंगल के ऊपर अगर शनि या सूर्य का प्रभाव हो तो व्यक्ति क्रोध में मार पीट और लड़ाई करता है। मंगल अगर मजबूत हो और चंद्रमा अगर कमजोर हो तो व्यक्ति क्रोध में अपना नुकसान कर लेता है। 7:30 जब चल रही होती है तो ऐसा देखा गया है कि क्रोध की वजह से व्यक्ति हिंसक हो जाता है। और जब राहु का प्रभाव ज्यादा होता है तो व्यक्ति क्रोध में अपराध कर डालता है। मंगल और बुध का संबंध चंद्रमा का खराब होना और कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होना ये क्रोध को भड़का देते हैं और आदमी क्रोध में आ करके बहुत बड़ी गलतियां, अपराध या हिंसा कर बैठता है।
1: और अब वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
0: कर्क राशि, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में शांति बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी, आज का पहला प्रश्न आस्था ने लिखा है, देहरादून से लिखती हैं। 9 अक्टूबर 1998 का जन्म है, 8:12 प्रातः, देहरादून, उत्तराखंड। ये कह रही हैं कि मैंने फिजिक्स की पढ़ाई की है, कब तक नौकरी लगेगी मेरी, किस क्षेत्र में लगेगी और विवाह कब तक होगा। आस्था, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाएं, शिक्षा क्षेत्र में जाएं, तो उसमें बहुत अच्छा करियर बना सकती हैं और शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी आपको साल 2027 में मिलेगी। विवाह होने का समय साल 2028 का आरंभिक समय है, उस समय आपके विवाह की संभावनाएं कुंडली में बन रही हैं। आप एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आज का दूसरा सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी, अगला प्रश्न श्रीमती किरण श्रीवास्तव ने गोरखपुर से लिखा है। 8 अप्रैल 1970 का जन्म है, दोपहर के लगभग 12 बजे, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मैं मकान बनवाना चाहती हूं तो क्या जमीन लेकर मकान बनवाना ठीक होगा या बना बनाया फ्लैट खरीदना ज्यादा बेहतर होगा। किरण जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और राशि बनती है मेष, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। जमीन खरीद कर मकान बनवाने की संभावना आपकी कुंडली में ज्यादा है। साल 2027 में आप अपनी जमीन खरीद करके मकान बनवा पाएंगी और वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अपने बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं क्रोध की समस्या के बारे में। अगर क्रोध को कम करना है तो कौन से खान पान में किस तरह का सुधार करना चाहिए?
0: देखिए, आप अपने खान पान में अगर सुधार करें तो आपकी मानसिक स्थिति पर इसका बेहतर असर पड़ेगा और आपका क्रोध कम होगा। तो क्रोध कम करने के लिए खान पान में कैसा सुधार करें? प्याज लहसुन का प्रयोग अपने भोजन में कम से कम करें और अगर क्रोध ज्यादा आता हो तो कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन बिल्कुल ना खाएं। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिएगा। रस वाले फल खाना आपके लिए बेहतर होगा। और महीने में दो एकादशी पड़ती है, दोनों एकादशी का उपवास जरूर रखिए। अगर अपने खान पान में या जीवनचर्या में परिवर्तन करेंगे तो क्रोध को कंट्रोल कर पाना आसान होगा।
1: क्रोध कम करने या फिर क्रोध से बचने के लिए घर में किस तरह का सुधार करें, आप पंडित जी से ये भी जान लेते हैं।
0: देखिए, आप अपने घर में भी छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं जिससे आप क्रोध से बचें और आपका क्रोध कम हो जाए। किचन को हमेशा अपने साफ सुथरा रखिए, रसोई को हमेशा साफ रखें। घर में ऐसी व्यवस्था करें कि सूर्य का प्रकाश आए, थोड़ा बहुत ही आए लेकिन जरूर आए। घर में दोनों समय चंदन की सुगंध वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाइएगा। जो व्यक्ति क्रोधी है उसे आग्नेय कोण के कमरे में दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट के कमरे में नहीं रहना चाहिए। आप अपने घर में कुछ बदलाव करें, घर में पवित्रता बनाए रखें तो निश्चित रूप से आपका मन शांत होगा और आपका क्रोध कम होगा।
1: और चलिए, अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल जान लेने का।
0: तुला राशि, तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि।

दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: अब होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में पंडित जी से ये जान लेंगे कि क्रोध को अगर कम करना है तो इसके लिए क्या कुछ उपाय हैं।
0: आप अपने क्रोध को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो क्या उपाय और करें? सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए और उगते हुए सूर्य को प्रातः काल जल चढ़ाइए। स्नान करते समय जल में गुलाब जल मिलाइए और उस जल से स्नान करिए। अगर आप शनि प्रधान हैं तो सलाह लेकर एक ओपल पहनिए, और अगर बृहस्पति प्रधान हैं तो सलाह लेकर एक मोती धारण करें। चांदी की एक चेन पूर्णिमा तिथि पर या शुक्ल पक्ष के सोमवार में अपने गले में धारण करें, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ने से पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है वो जान लेते हैं।
0: मकर राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रिश्तों की समस्या हो सकती है, करियर में कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद

0: मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना कोई भी सवाल पहुंचा सकते हैं, पंडित जी उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पंडित जी तीसरा सवाल आज का किसका रहेगा?
0: जी अगला प्रश्न युवराज जी ने लुधियाना से लिखा है, 20 अक्टूबर 1974 का जन्म है, 4 बजे प्रातः लुधियाना पंजाब। ये कह रहे हैं कि भविष्य में मेरे करियर की स्थिति कैसी रहेगी और मेरी कुंडली में अशुभता क्या है, गड़बड़ी क्या है। युवराज आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए सिंह लग्न की कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल। मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में ठीक है, लेकिन चंद्रमा, सूर्य और शुक्र ये तीनों अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, जिस वजह से नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ दिक्कत होगी और थोड़ी बहुत समस्या वैवाहिक जीवन में भी रह सकती है। आप एक मूंगा बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को मूंगा धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है हमारे आपके चौथे और अंतिम सवाल का, पंडित जी चौथा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी

0: प्रश्न एक महिला ने नासिक महाराष्ट्र से लिखा है। 23 अप्रैल 2001 का जन्म है। 10:45 प्रातः नासिक महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, गवर्नमेंट जॉब मुझे कब तक मिलेगी और मेरा स्वास्थ्य अभी बेहतर नहीं रहता है तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा। देखिए आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और मेष राशि की, महादशा सूर्य की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। आपकी कुंडली में अमावस दोष है जिसकी वजह से मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, मन की समस्याएं कुंडली में ज्यादा दिखाई दे रही हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो साल 2028 में आपको सफलता मिलेगी, ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं कि लोगों की ये मान्यता है, लोग ये मानते हैं कि क्रोध अगर ज्यादा आए तो मोती पहन लेना चाहिए, इससे जुड़ी सच्चाई क्या है?
0: जी देखिए, मोती जो है वो चंद्रमा का रत्न है, आपके मन को कंट्रोल करता है, तो कुछ मामलों में मोती पहनने से क्रोध के मामले में सुधार हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है, हर मामले में नहीं। तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि हर मामले में जो क्रोधी आदमी है उसको मोती पहना देंगे तो उसको फायदा हो जाएगा। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से क्रोध आता है, ऐसे लोगों को मोती पहनाने से लाभ हो सकता है। हर क्रोधी आदमी को मोती पहनाने से लाभ नहीं होगा।
1: और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 18 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा।

0: दिन 18 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में परिवर्तन और धन लाभ के योग बन रहे हैं, अविवाहितों का विवाह हो सकता है। इस साल पैसे के निवेश में, धन के इन्वेस्टमेंट में सावधानी रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर हनुमान जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि सोमवार का व्रत रखने से किन किन मामलों में लाभ होता है। देखिए, अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो विवाह और स्वास्थ्य के मामले में लाभ होता है। इस दिन भर उपवास रख कर रात में शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और अगर आप चाहें तो सोमवार के उपवास के साथ इस दिन सफेद वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि 18 अगस्त 2026 यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी के सामने सुंदर कांड का पाठ करिएगा। आपके काम में और जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 18 अगस्त मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से जान लेंगे आज की गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करेंगे। आज की गुडलक राशि है धनु। आपको शिवलिंग पर नियमित रूप से लाल फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन का संघर्ष कम होगा।
1: और चलिए अब कार्यक्रम में जान लेते हैं कि आज के महा उपाय क्या कुछ हैं।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और कोई विशेष परीक्षा दे रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल प्लेन वाटर अर्पित करिएगा। सुबह और शाम कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा, और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करिएगा। साथ में मेहनत से अपनी तैयारी जारी रखिएगा, आपको परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी।
1: तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियों को पहुंचाने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों को जानने के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बात करेंगे मौसम की। देखिए, कई दिनों से उमस और चिपचिपे मौसम ने दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक के लोगों को परेशान कर रखा है। हाल ये है कि घर से बाहर निकलते ही पसीना और बेचैनी दोनों साथ में महसूस हो रहे हैं, लेकिन अब इस उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर निकल कर आई। उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से अब सूखी हवाओं ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और इन हवाओं के असर से मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों में बदलता हुआ नजर आ सकता है।

0: कहते हैं हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी मौसम की ताल पर थिरकती है। मानसून पूरे देश को जी भर कर भिगो रहा है, तो वही जैसे जैसे अगस्त गुजर रहा है बरसते बादल बारिश की भरपाई भी कर रहे हैं। खबर ये है कि बादलों की आवाजाही के बीच मौसम फिर से चाल बदलने वाला है। बारिश के बाद जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, अब उस उमस के विदाई की गुड न्यूज आने वाली है। हवा की बदली चाल के बीच उम्मीद तो यही है कि अगले दो दिन दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा के लोगों को उमस से कुछ राहत मिल सकती है। उमस से राहत का ये सीन यूं ही नहीं बना है। हाल फिलहाल हवाओं ने रुख बदला है और उत्तर पश्चिम से आ रही सूखी हवाओं ने नमी को कम कर दिया है। लिहाजा और जैसे जैसे नमी घट रही है, वैसे वैसे चिपचिपी गर्मी का असर भी कम हो रहा है। मौसम में इस बदलाव के पीछे मानसून ट्रफ भी एक वजह बताई जा रही है। मानसून ट्रफ अब हिमालय की तलहटी की तरफ खिसक गया है और इसी के साथ बारिश का पैटर्न भी बदल गया है। फिलहाल मानसून की मेहरबानी पूर्वी और मध्य भारत पर ज्यादा है, जबकि दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में आसमान अपेक्षाकृत साफ है। एक दिन पहले की सैटेलाइट तस्वीरें भी मौसम का बदला रुख बयां कर रही है। पूर्वी यूपी से बिहार और बंगाल की खाड़ी तक मानसूनी बादलों की आवाजाही है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में बादलों की मौजूदगी कम है। आज की बात करें तो दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा में बारिश के आसार कम है। हालांकि कुछ इलाकों में शाम के वक्त हल्की फुल्की और छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन बादलों का खेल अभी थमा रही है क्योंकि मानसून कब करवट ले ले कहा नहीं जा सकता। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 20 अगस्त के बीच बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके असर से मानसून ट्रफ दोबारा दक्षिण की ओर खिसक सकता है और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर फिर लौट सकता है। फिलहाल अभी के लिए खबर इतनी है कि जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, उस उमस के गुजरने का दौर शुरू हो चुका है। सूखी हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी वजह से मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। लेकिन मानसून ने अभी मैदान छोड़ा नहीं है, उसकी अगली करवट जल्द फिर से बारिश की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब आपको कराते हैं पश्चिम भारत के कश्मीर की सैर। जी हाँ, कश्मीर को तो धरती का जन्नत कहा जाता है जैसा आप जानते हैं, लेकिन अपने देश में कई ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जहां पहुंचकर आपको कश्मीर जैसा ही खूबसूरत एहसास होगा। आज आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे ही हिल स्टेशन पर जिसका नाम है चिखलदरा, जहां पर सावन के मौसम में कुदरत ने जैसे हर तरफ हरियाली की चादर बिछा दी हो। देखिए,
2: झरता झरना, ऊंचाई से गिरता पानी, आसमान में छाए बादल और घने कोहरे जैसे हालात के बीच दिन में ही अंधेरे जैसा माहौल। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के हिल स्टेशन चिखलदरा की हैं। सावन की झमाझम बारिश ने यहाँ मौसम का मिजाज इस कदर बदल दिया कि सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बादलों ने डेरा डाल लिया और माहौल बेहद खूबसूरत हो गया।
3: पीछे का नजारा जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो विदर्भ के अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा का जो है। इस वक्त बारिश के बाद इस जगह का माहौल इतना सुहाना और इतना सुंदर होता है कि पर्यटक जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हो कि चारों तरफ जो है ये कोहरा नहीं तो ये बादलों से जो है बारिश के बादलों से होने वाला जो है कोहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
2: देश के कोने कोने से आए सैलानी यहाँ मौसम का मजा ले रहे हैं। पहाड़ों से गिरते झरने की मधुर आवाज के साथ ही सुहावनी ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही हैं। मौसम में बदलाव के साथ साथ 15 अगस्त के मौके पर लंबे वीकेंड के चलते चिखलदरा में हजारों पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। तमाम लोग इस शानदार माहौल का लुत्फ उठाते नजर आए।
4: बहुत मस्त, इतना अच्छा वेदर है बारिश में। यहाँ हमेशा गर्मी रहती है, लेकिन चिखलदरा आके नहीं लगता कि यहाँ गर्मी रहती होगी। बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे मानो कश्मीर है। बहुत अच्छा है, और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ।
5: कोहरे तो बहुत दिखाए जा रहे हैं भाई लोग, अगर आपको आना है तो अभी आओ, क्योंकि बाद में मजा नहीं आने वाला। हम इधर इसीलिए आए ताकि हम मजा लूट पाए। हम अभी आए हैं इनके साथ ही, बहुत मजेदार है। अगर आप कश्मीर को नहीं जा पा रहे हो तो आप चिखलदरा एक बार जरूर विजिट करना।
2: अमरावती जिले का चिखलदरा समुद्र तल से करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा विदर्भ का खूबसूरत हिल स्टेशन है। आमतौर पर विदर्भ में काफी गर्मी पड़ती है, लेकिन सावन की बारिश ने इन दिनों यहाँ की सूरत ही बदल दी है और इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं।
6: सर, हम मध्य प्रदेश पांडुना जिला छिंदवाड़ा। सर,
7: कैसा मौसम है यहाँ का?
6: बहुत बढ़िया वेदर है सर यहाँ का, बहुत सुहाना मौसम है सर।
2: चिखलदरा में पहाड़ियां हैं, हरियाली है, झरना है, तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी मस्ती देखते ही बन रही है। साथ ही साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी यहां शानदार इंतजाम किए गए हैं।

0: यानी सैलानियों के लिए छुट्टियां बिताने का फुल बंदोबस्त, और यही कारण है कि यहां पर भारी तादाद में सैलानी उमड़ते हैं। इसके कारण यहां टूरिज्म के कारोबार में पंख लग गए हैं। पर्यटकों की भीड़ से स्थानीय कारोबारियों के काम में तेजी आ गई है।
1: यहाँ पर ठंडी के बचने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या खाते हैं लोग?
2: ज्यादा रबड़ी और कलाकंद चलता है।
1: रबड़ी और कलाकंद अच्छा बिक रहा है?
2: हाँ अच्छा।
0: पिछले वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी खास व्यवस्था की थी, ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही सैलानियों से भी नियमों का पालन और एहतियात बरतने की अपील की गई है।
3: बहुत ही बढ़िया मौसम हुआ है, लेकिन आते वक्त सबने यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। शराब पीकर या फिर बिना हेलमेट के कोई भी ड्राइव नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसी के साथ ही ऊपर आने के बाद सारे लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं, तो अपनी वजह से किसी और को परेशानी हो ऐसा बिहेवियर कोई भी नहीं रखेगा। ये हमारी अपील रहेगी। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमने ऑलरेडी हमारा चिकलदरा कंट्रोल का हेल्पलाइन नंबर पब्लिक किया है, और 112 नंबर जो है उसको भी वाइड पब्लिसिटी दी है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो।
0: चिकलदरा से धनंजय सांबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: पंजाब की धरती को गुरुओं की धरती कहा जाता है। यही वजह है कि पंजाब में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहां लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है। पंजाब में कई ऐसे प्राचीन श्री गुरुद्वारा साहिब भी हैं जहां लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं।
0: बाहर सजी दुकानों की रौनक और इन दुकानों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोई मत्था टेक कर लौट रहा है, तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने की खुशी में चढ़ावे की तैयारी कर रहा है। इन दुकानों पर खिलौनों की कई वैरायटीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर खींचते हैं खिलौने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज।
5: हाँ जी, मन्नत पूरी हो गई। अगले अगले नेक्स्ट ईयर शायद जाइए न्यूजीलैंड का नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, मन्नत है बाहर फॉरन।
0: असल में विदेश जाने की मन्नत लेकर यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर हवाई जहाज चढ़ाते हैं, और यही वजह है कि ये गुरुद्वारा साहिब श्रद्धालुओं के बीच हवाई जहाज वाला गुरुद्वारा के नाम से मशहूर है। जलंधर शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा श्री तलहन साहिब, मान्यता यह है कि पासपोर्ट या वीजा बनाने में कोई भी अड़चन आ रही हो तो खिलौने वाला हवाई जहाज चढ़ाकर अरदास करने से विदेश जाने की राह में आ रही तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं।
6: बहुत टाइम हो गया इतने मत्था टेकन आंदे, मतलब 4-5-6 साल हो चले यार, पर एक संडे आना आपका मत्था टेकन।
0: खास बात यह है कि इन खिलौनों को आसपास के बच्चों में ही बांट दिया जाता है।
7: ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੰਨਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ।
0: किसी के लिए विदेश जाने की उम्मीद है तो किसी के लिए मन्नत पूरी होने की खुशी। जब यही मन्नत के खिलौने बच्चों के हाथों में पहुंचते हैं तो फिर इस आस्था में खुशियों के रंग घुल जाते हैं। जलंधर से देवेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: खराब सड़क पर गाड़ी चलाते हुए गुस्सा तो हम सभी को आता है। कहीं गड्ढा बचाने के चक्कर में गाड़ी डगमगाती है तो कहीं पर ये गड्ढे हादसे की वजह बन जाते हैं, लेकिन गुस्सा करने के बाद हम अक्सर यही सोचकर चुप हो जाते हैं कि आखिर क्या किया जा सकता है। बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने इसी सोच को बदलने की कोशिश की है, देखिए।
8: सड़कों पर ये गड्ढे अखिल भारतीय समस्या बन चुके हैं। ये गड्ढे न केवल आपका सफर बर्बाद करते हैं, बल्कि गाड़ियों को खासा नुकसान भी पहुंचाते हैं, और फिर शुरू होती है शिकायतों की एक अनंत कथा जिसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने समस्या का एक गजब का AI सॉल्यूशन खोज निकाला है। बेंगलुरु के इंजीनियर गौरव सैन ने ऐसा AI सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए न केवल गड्ढों की पहचान संभव है, बल्कि इन गड्ढों की मरम्मत के जिम्मेदारों तक पहुँचना भी आसान हो गया है। दरअसल ये सिस्टम सड़क पर चलते हुए गड्ढों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करता है। कार में लगे डैश कैम, GPS और एक्सेलरेटर मीटर से सड़क की जानकारी जुटाई जाती है, जिसके बाद AI विजन मॉडल तस्वीरों और वीडियो को स्कैन करके अलग अलग आकार के गड्ढों की पहचान करता है। खास बात यह है कि सिस्टम उन गड्ढों को भी पहचान सकता है जिन्हें दूर से देखना मुश्किल हो, क्योंकि कई बार सड़क का गड्ढा स्पीड ब्रेकर जैसा दिखाई देता है। गौरव सैन ने कोडेक्स की मदद से यह ऐप तैयार किया जो इस पूरे डेटा को रिकॉर्ड करके OpenAI तक भेजता है। लेकिन कहानी सिर्फ गड्ढे की पहचान तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल होता है, गड्ढा मिला है तो इसे ठीक कौन करेगा। इसके लिए ऐप को करीब 2,900 सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ा गया। सिस्टम सड़क के किसी खास हिस्से की पहचान करके ये पता लगा सकता है कि उस सड़क का ठेका किस कंपनी या ठेकेदार के पास है। यानी अगर कोई सड़क वारंटी पीरियड में है तो ठेकेदार को बिना सरकार पर अतिरिक्त खर्च डाले सड़क की मरम्मत करनी पड़ सकती है, और ये पूरा रिकॉर्ड महज 4 सेकंड में तैयार हो सकता है, जिसमें गड्ढे की तस्वीर, उसकी सटीक लोकेशन, टेंडर नंबर और सड़क से जुड़े अधिकारी की जानकारी शामिल होती है। गौरव ने सिस्टम का टेस्ट ऑफिस जाते वक्त किया। एक सफर में AI ने उसकी राह में मौजूद 12 गड्ढों को पहचान लिया। गौरव सैन का ये प्रयोग अब बेंगलुरु से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। लोग गौरव के इस AI मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ यूजर उसे ऐसा ऐप बता रहे हैं जो समस्या के साथ आपको सही समाधान तक ले जाता है। रिपोर्ट न्यूज टुडे।
4: आइए बात करते हैं कि ऐसे वेटर की जो इंसानों के साथ मिलकर हरियाणा के सोनीपत के मूरथल में एक ढाबे में खाना परोस रहा है। आपको ये बात बिल्कुल बेतुकी सी लगेगी कि वेटर का काम ही है खाने को सर्व करना, इसमें क्या नया है। तो ये वेटर अपने आप में खास है क्योंकि ये इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है जो देसी ढाबे में हाईटेक वेटर के तौर पर सफेद मक्खन वाले पराठे भी परोस रहा है। मूरथल के मशहूर ढाबे में बैटरी से चलने वाले इस वेटर को आप भी देखिए।

0: दिल्ली NCR के लोगों के लिए पसंदीदा फूड डेस्टिनेशन और नाइट आउट पॉइंट मुरथल का एक पुराना ढाबा सुर्खियों में है। साल 1960 से ये ढाबा घर जैसे खाने का स्वाद परोसने का दावा करता है। बड़े आकार वाले रेशम द पराठा और रात भर धीमी आंच पर पकने वाली दाल मखनी के लिए मशहूर ये ढाबा इस बार सिर्फ अपने स्वाद के लिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए भी मशहूर हो रहा है। इस ढाबे में इंसानी वेटर के साथ अब रोबोट वेटर भी दिख रहे हैं, जो इंसानों की तरह ही ग्राहकों की टेबल तक उनका मन पसंद ऑर्डर लेकर जा रहे हैं, ताकि उनके साथ मौजूद वेटर उनको परोस सके। ग्राहकों की तरफ से खाने का ऑर्डर करने के बाद तैयार होते ही उसे रोबोट की फूड ट्रे में रखा जाता है, जिस पर रोबोट नेविगेशन सिस्टम की मदद से पहले से तय रास्ते पर चलते हुए सीधे ग्राहक की टेबल तक पहुंचता है। फिर रोबोट के हाथों में फिक्स की गई फूड ट्रे से खाना ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। इंसानी वेटरों की तरह काम कर रहे रोबोट्स को देखकर ग्राहक भी बेहद उत्साहित है। उनके लिए ये एक नए तरह का एक्सपीरियंस है। रोबोट के साथ मोबाइल से तस्वीर, सेल्फी और यहाँ तक वीडियो बनाने का वो कोई मौका नहीं चूकना चाहते। ग्राहकों के लिए एक खास तरह का अनुभव है। रोबोट से खाना सर्व करवाने के लिए उनसे किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, यानी मुरथल के इस पारंपरिक ढाबे में स्वाद वही है, लेकिन खाना परोसने का अंदाज बिल्कुल बदल गया है।
1: बहुत अच्छा था वो, बहुत ही अच्छा था वो, हमारे लिए फर्स्ट टाइम था और बहुत ही अच्छा था हमारे।
2: रोबोट से ही खाना मंगवाया?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
2: कैसा लगा
1: सर? बहुत ही अच्छा फील था वो।
2: पहले आपने कभी कहीं देखा
1: है? नहीं नहीं, ये नहीं देखा हमने पहले।
2: कहाँ से आए हो सर आप?
1: दिल्ली से।
0: अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सेवा देने वाले रोबोट वेटर को रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इस रोबोट को बेंगलुरु की एक कंपनी ने तैयार किया है।
3: ये आइडिया देखो, हमने मुरथल में सभी रेस्टोरेंट और ढाबे सभी खाना खिला रहे हैं, हमने सोचा कुछ यूनिक भी चीज लाई जाए। खाने के स्वाद के साथ साथ है ना, एक यूनिक चीज अगर पूरे मुरथल में दी जाए तो बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। तो ये हम बेंगलोर से कॉन्सेप्ट लाए। इनको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है सर, इसके लिए एक स्पेशल एक बंदा है जो इनको प्रॉपर रिमोट से इसको कंट्रोल करते हैं। पानी चिप लगी है और जो कंट्रोल हो रखा है पूरी निगरानी रखता है कि कोई गेस्ट या किसी के ऊपर ऐसे टच ना हो, तो उसको तुरंत कंट्रोल कर लिया जाता है।
0: हरियाणा के सोनीपत जिले में मौजूद मुरथल अपने शानदार ढाबों और आलू गोभी और पनीर से बने तंदूरी पराठों के लिए देश भर में मशहूर है। दिल्ली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने की वजह से यात्रा करने वाले लोगों के लिए खाने पीने के लिए पसंदीदा स्टॉप ओवर है, जहां अब रुकने वाले ग्राहकों को स्वाद के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का भी अनुभव मिल रहा है। कुमार के साथ वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने रद्द की जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2014 के बाद की भर्तियों की होगी सीआईडी जांच। वाराणसी पे छत पर शुरू हुई मां गंगा की आरती, बढ़ते जलस्तर के चलते लिया गया फैसला, सात अर्चकों ने विधिवत की आरती। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में दिखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। बाहर से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम मुंबई में भी जमकर बरसे बरदा। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी जोरदार आगाज़।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां बात कर रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर की घाटी में भोलेनाथ का जयकारा था, अब जम्मू की वादी में हर हर महादेव का जयघोष सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। सोमवार से शुरू हुई ये यात्रा 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक यूं ही चलेगी, जिसमें देखिए शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से शिवभक्त जो हैं जम्मू पहुंचने का जो उनका सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज आपको जम्मू से लेकर पुंछ तक इस यात्रा की भव्य तस्वीरें तमाम दिखाएंगे। बाबा चट्टानी के दर्शन करने के लिए निकले श्रद्धालुओं का जोश दिखाएंगे, कितना हाई नजर आ रहा है। इसके साथ ही बाबा बूढ़ा अमरनाथ का भव्य दरबार भी दिखाने जा रहे हैं। शिव का ये धाम कितना पुराना है, कितना खास है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको इस पावन धाम की अद्भुत कहानी भी बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के साथ। देखिए कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद अब जम्मू में बाबा चट्टानी के दर्शन करने की होड़ लगी हुई है। सिर्फ 12 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु जो हैं पहुंच रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के बाद सोमवार की सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना कर दिया और इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए।

0: एक बार फिर हर हर महादेव का नारा है, एक बार फिर अमरनाथ का बुलावा है। लेकिन मंजिल इस बार अमरनाथ की गुफा नहीं बल्कि बूढ़ा अमरनाथ धाम है। कुछ दिन पहले इसी जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए जत्थे निकले थे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्त उमड़े थे, पर इस दफा जम्मू से कारवां पुंछ के लिए जा रहा है, क्योंकि पुंछ जिले के मंडी तहसील के राजपुरा में मौजूद है बाबा चट्टानी का धाम, यानी बूढ़ा अमरनाथ मंदिर।
1: 2005 आयोजित की जा रही यात्रा केवल पर्वतों और घाटियों को पास करने वाली यात्रा नहीं है, ये हमारे बाहरी पथ से कहीं अधिक हम सबके अंतर्मन की यात्रा है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये तीर्थ यात्रा स्वयं के भीतर स्थित चेतना को पहचानने की भी यात्रा है। यह पावन तीर्थ यात्रा भगवान शिव की ओर अग्रसर होने की भी यात्रा है, जो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थल की दिव्य ऊंचाइयों में विद्यमान है।
0: 17 अगस्त से ये यात्रा शुरू हुई है और 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक चलेगी, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू पहुंचने लगे हैं। भगवती नगर यानी यात्री निवास से सोमवार को जब पहला जत्था निकला तो शिव भक्तों का जोश देखने लायक था। पूजा पाठ के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को झंडा दिखाकर रवाना किया।
2: बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे थे, आज पहला जत्था बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का यहां से रवाना हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा यहां पर जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया, इस पहले जत्थे को यहां से रवाना किया, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है उत्साहित होकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन था यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि कितना जो है वो उत्साह है यात्रियों के बीच, और ये बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जयघोष के साथ जो है वो यात्री यहाँ पर उत्साहित है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जत्था जो है वो रवाना हुआ है। और मैं इस तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि आप देखिएगा कि कितने उत्साहित हैं यात्री, और जय श्री राम के जयघोष के साथ जो है ये यात्रा रवाना हो रही है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। मैं गोकुल से कहूँगा कि वो आगे आएंगे और आपको दिखाना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रा को जो है वो फ्लैग ऑफ किया है, और देखिएगा दूर दूर तक ये बसेस जो है वो अब यहाँ से रवाना हुई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के जो है वो दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना हुई है, और ख़ास तौर पर इस यात्रा का मकसद है कि पुंछ जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसे देश के जो विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं वो वहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचे, क्योंकि 10 दिन की ये यात्रा रहती है। और इस पहले जत्थे का हर एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी ये यात्रा एंटर करेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका भव्य स्वागत होगा। जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन यहाँ पर, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के साथ कई टुकड़ियाँ जो है इस यात्रा की सुरक्षा में तैनात हैं, और जम्मू पुंछ हाईवे को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो रखा गया है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये पावन यात्रा जो है वो 10 दिन के लिए यानी आज 17 तारीख से लेके 28 तारीख तक जो है वो यात्रा ये चलेगी, और इस यात्रा में देश भर से आने वाले श्रद्धालु बेहद खुश है और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
0: धार्मिक परंपरा में बाबा चट्टानी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे अमर कथा से जुड़े पवित्र मार्ग का पहला पड़ाव माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने की शुरुआत यहीं से की थी, जो बाद में अमरनाथ गुफा में पूरी हुई थी। इसीलिए ये मंदिर केवल एक धाम नहीं बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक प्रवाह का हिस्सा है।
2: राहुल जी कहाँ से आए?
3: जयपुर से।
2: जयपुर से आए, कब से आ रहे बाबा की यात्रा?
3: 30 साल है साहब।
2: तो कैसा लग रहा है इस बार की व्यवस्था, ये सब चीज?
3: अपन ये चाहते हैं कि पूरा देश आए, और जो अपने महादेव जिनकी यहाँ पे स्थापना हुई थी किसी कारण से यहाँ पे वो लुप्त हो गए जिनकी पूजा होना बिल्कुल बंद हो गई थी, जो आज यहाँ के किया है लोगों ने, जनता ने अपने देश के लिए, और उसको जागृत किया है। और आज यहाँ लाखों की तादाद के अंदर बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
0: जिसे देखने और महसूस करने के लिए हर साल हजारों हजार की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इस साल पहले जत्थे में मध्य भारत, कर्नाटक, जयपुर और जोधपुर के भक्त शामिल हुए और उनका जोश जबरदस्त है। जो श्रद्धालु पुंछ की इस यात्रा में शामिल होते हैं, उनका मकसद सिर्फ मंदिर दर्शन नहीं होता, बल्कि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के बीच ये यात्रा शिव अमरत्व और दिव्य रहस्य की एक सतत कथा है, जिसे समझना एक अद्वितीय अनुभव है। तभी तो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए शिव भक्त मस्त मगन होकर पहले जम्मू और फिर यहाँ से पुंछ की ओर निकल पड़े हैं। जम्मू से 244 किलोमीटर का सफर तय करके यात्री पहले पुंछ पहुंचेंगे और फिर पुंछ से धाम की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जिसे वो तय करेंगे।
2: पुंछ एक बॉर्डर का इलाका है, बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ क्षेत्र है और खास तौर पर पूरे देश भर से आने वाले यात्रियों का काफी उत्साहित रहते हैं पुंछ के लोग, उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार घुमाकर जो है वो दिखाएंगे। तो ये देखिएगा कि ये जोश और जो जज्बा है, ये जोश और जज्बा है तो ये जज्बा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हम एक बस में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और खासा उत्साह है, और ये उत्साह साफ तौर पर दर्शाता है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है।
4: सेकंड बार आए हैं।
2: सेकंड बार तो पहले से कितना बदलाव लग रहा है इस बार का?
4: काफी बदलाव है।
2: तो क्या क्या मैसेज रहेगा पूरे देश भर के लिए, आज दर्शनों के लिए जा रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के?
4: यही मैसेज रहेगा कि जो अन्य लोग नहीं आ पाए हैं वो भी आए और इस यात्रा का हिस्सा बने और बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करें।
2: ठीक है सर, कहाँ से आए हैं?
5: हम मध्य भारत प्रांत से आए हैं, भोपाल के पास में बुधनी जिला है, और मैं दूसरी बार आया हूँ। यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था, यहाँ के स्थानीय लोगों की व्यवस्था, संगठन की व्यवस्था बहुत ही उच्च क्वालिटी की व्यवस्था है।
0: जिस तरह बाबा बर्फानी का दरबार हिमालय के ऊंचे शिखर पर मौजूद प्राकृतिक गुफा में है, ठीक उसी तरह से बाबा चट्टानी पीर पंजाल श्रेणी में मौजूद बेहद खूबसूरत जगह पर मौजूद है। हाँ, ये जरूर है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए ऊंची चढ़ाई नहीं है, लेकिन इस यात्रा में घाटी भी है और जलधारा भी, पहाड़ और पुलस्ता नदी मिलकर एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक शांति देते हैं। तभी तो जो एक बार बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए आता है वो बार बार आता है।
6: आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे पुंछ में एक जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा शुरू होने वाली है, उसी कड़ी में यहाँ पे हमारे स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी की याद में यहाँ पे एक भव्य त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है, जो बिल्कुल एक LOC पे हमारा नवग्रह मंदिर है वहां से स्टार्ट होती है और यहाँ पे यात्रा ग्राउंड जिसको कॉलेज ग्राउंड बोलते हैं यहाँ पे आती है। यहाँ पे विधिवत पूर्वक यहाँ पे त्रिशूल का यहाँ पे पूजन होता है और जो पूरे भारतवर्ष से यात्री आते हैं वो इसी त्रिशूल का पूजन करते हैं और उसके बाद वो बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। ये आज त्रिशूल यात्रा का महत्व ये है कि ये हमारे जो स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी थे, जिनका हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने बहुत बड़ा इस हमारी यात्रा में योगदान दिया था, ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने यात्रा शुरू की थी। और आज आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ बिना मजहब मिलत सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आए हुए और इस यात्रा में शामिल हुए।
7: ये जो त्रिशूल यात्रा है, आपको पता है हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब यहाँ आती है उससे एक दिन पहले ये जो त्रिशूल यात्रा है ये नवग्रह मंदिर अजोट जो कि देरिया में है वहाँ से निकलती है और यात्रा ग्राउंड तक पहुँचती है। आपने देखा होगा भोले का जो त्रिशूल है ये एक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो हमारे पुंछ के वासी हैं, खास करके बिना मजहब मिलत हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पहुँचता है और ये खास करके एक तरह से आयोजन होता है बाबा बूढ़ा अमरनाथ से पहले कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आ रही है, जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए सारे पुंछ वासियों को, जिस तरह से वो वेलकम करने के लिए हर बार यात्रियों को यहाँ पहुँचते हैं।
0: पहाड़ी नदी का जल है भजन और भगवा ध्वज और इन सब के साथ शिव भक्तों की श्रद्धा, ये सब मिलकर बूढ़ा अमरनाथ धाम को एक जीवंत धार्मिक अनुभव बना देते हैं और खासकर सावन में अनगिनत श्रद्धालुओं और संतों की मौजूदगी से धाम शिवमय हो जाता है। बोल बम, इस साल भी बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए यात्रा शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे मार्ग पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। यात्रियों का जत्था सुरक्षा घेरे में धाम तक पहुंचाएगा और वापस आएगा। पूरे रास्ते आवास, भोजन और दूसरी तमाम सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की तादाद हर साल बढ़ रही है। जो लोग किसी वजह से अमरनाथ गुफा नहीं जा पाते, वो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसकी वजह ये भी है कि ये यात्रा आसान है, और दूसरी अहम बात ये कि इसकी अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा है, जिससे लोगों की गहरी आस्था भी जुड़ी है। हर साल वार्षिक बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से एक दिन पहले त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी LOC पर मौजूद नवग्रह मंदिर में त्रिशूल यात्रा की शुरुआत हुई। पूजा पाठ के बाद मंत्रोच्चार के साथ एक विशाल त्रिशूल को लिए शिव भक्त चल पड़े। फूलों और झंडों से सजे त्रिशूल को लेकर भक्त यात्रा में आगे बढ़ते चले गए। जयकारों से माहौल शिवमय होता गया। पुंज के इलाकों और गलियों से गुजरती हुई त्रिशूल यात्रा कॉलेज ग्राउंड पहुंची, जहां यात्रा के लिए बेस कैंप बनाया गया है। ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है। अमरनाथ की तरह ही इस यात्रा में धार्मिक सद्भाव साफ नजर आता है। अगले 10 दिनों तक पुंज का ये इलाका शिव की भक्ति से सराबोर रहेगा। घाटी में हर हर महादेव का जय घोष होगा। जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। हालांकि 90 के दशक में आतंकवाद और सीमा पार से लगातार होने वाली गोलाबारी के चलते ये महान यात्रा रुक गई थी, लेकिन पिछले 21 सालों से इस यात्रा को लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु पूरे जोश के साथ शामिल होते हैं। यात्रियों का पहला जत्था जब पुंछ में बेस कैंप पर पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। देखिए,

0: तमाम बोले के जयघोष के साथ आज जो यात्रा का पहला जत्था यहाँ पुंछ में पहुंचा और पुंछ में ये महामूर्ति का एक यहाँ पे पूजा अर्चना की गई। ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जो पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ बम बम बोले के नारे से और यहाँ पुंछ में आज कई यूपी से कोई हरियाणा से कोई गुजरात से यहाँ यात्रु आए हुए
1: बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा की है वो बहुत अच्छी है। रास्ते में भी हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिली और हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी हम आज पहली बार आए हैं और आगे भी हमारी इच्छा हो रही है यहाँ सब की सुविधा अच्छी देख के।
0: यहाँ हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं। अब कुछ स्थानीय लोग हैं वहाँ पे जयपुर के रहने वाले उनसे हम बात करना चाहते हैं।
2: हाँ सर आपका नाम? सर मेरा नाम जटा शंकर अग्रवाल है। मैं जयपुर राजस्थान मानसूर से आया हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी 200 आदमी आए हैं।
3: हम ये कहना चाहते हैं कि हम कुंज में आए हैं तो पहले थी इधर हम चाहते किससे ज्यादा।
4: जयपुर से हमारे 656 लोग आए हैं, यात्री आए हैं और पूरे राजस्थान से करीब 4,000-5,000 के लगभग संख्या में जो यात्री आए हैं। पहले की बजाय अब की बार हम निर्भय होकर यात्रा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का भय नहीं है।
0: हजारों की संख्या में ये लोग आए वहाँ से और इन लोगों का ये कहना है कि 370 और 35 का हटना उससे ये लगता है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मंजीत सिंह,
5: देखिए बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि आस्था, विश्वास और शक्ति का वो सफर है जिसकी अलग आध्यात्मिक अनुभूति है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्तों के लिए ये यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। जो लोग किसी वजह से पवित्र अमरनाथ गुफा में हिमलिंग के दर्शन नहीं कर पाते उनके लिए बाबा चट्टानी के दर्शन का अवसर होता है। आपको बता दें कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ से जुड़ी आस्था की कहानी सतयुग में रावण के दादा यानी ऋषि पुलस्त से जुड़ी हुई है, लेकिन मान्यता यह है कि जम्मू कश्मीर की रानी यानी चंद्रिका ने भगवान शिव को यहां बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा था। क्या है कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: अद्भुत है भगवान शिव के दोनों धाम, कश्मीर में बाबा बर्फानी है तो यहाँ जम्मू में बाबा चट्टानी। अमरनाथ में बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग तो यहाँ पुंछ में सफेद चमचम शिवलिंग। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन चढ़ाई है तो बाबा चट्टानी तक पहुँचना आसान। अमरनाथ की लंबी चली यात्रा के बाद अब 10 दिनों तक बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन की होड़ है। जैसा पावन धाम वैसी पुरानी इसकी कहानी, जो शुरू हुई सतयुग से। कहते हैं सतयुग में एक दिन जब महर्षि पुलस्त ध्यान में बैठे थे तो उन्हें बोध हुआ कि पांचाल पहाड़ी में वो जगह मौजूद है जहां भगवान शिव ने पहली बार देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। पुलस्त इस जगह पर पहुंचे और छोटी सी गुफा में घोर तप शुरू किया। तब से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। पुलस्त ने कहा कि जहां आपके दर्शन हुए हैं उसे ऐसा धार्मिक महत्व प्रदान करें कि युगों युगों तक आपके भक्त यहां आते रहें। इसके बाद भगवान शिव अदृश्य हुए तो एक चट्टान की गुफा में भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जिसकी बनावट चट्टान जैसी थी। इसके बाद पुलस्त ऋषि ने यहां वर्षों तप किया। कहते हैं इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र का नाम पुलस्त नगरी पड़ गया जो अपभ्रंश होते होते पुंछ हो गया। इसी वजह से श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के साथ बहने वाली नदी का नाम पुलस्त गंगा पड़ा, जिसे आज भी पाप नाशनी गंगा मानकर हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं और हर साल बड़ी तादाद में भोले के भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद पाने यहां आते हैं।
1: पहली बार आए हैं, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है।
2: अरेंजमेंट कैसे लगे आपको?
1: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा।
3: बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का विषय है आज कि हम प्रतिवर्ष ये साहसिक यात्रा करते हैं। ये यात्रा अलग अलग प्रांत की प्रतिदिन निकलती है। आज पहला जत्था मध्य भारत प्रांत और हमारे दो तीन प्रांतों का इकट्ठा होकर निकल रहा है। ये 27 तारीख तक यात्रा लगातार चलेगी। अलग अलग प्रांतों के लोग इस यात्रा में प्रतिदिन सहभागी बनेंगे।
2: अरेंजमेंट कैसे लगे यहाँ?
3: बहुत शानदार, बहुत उत्तम अरेंजमेंट है।
0: चट्टान जैसे शिवलिंग की वजह से नाम पड़ा बाबा चट्टानी, लेकिन बाबा बूढ़ा अमरनाथ नाम पड़ने की कथा बड़ी ही दिलचस्प है। कहते हैं करीब 2000 साल पहले पुंछ जिले का गांव लोरन तब के जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी थी, जिस पर उस समय रानी चंद्रिका का शासन था। राम काज में निपुण रानी चंद्रिका अत्यंत दयालु एवं शिव भक्त थी, जो हर साल सावन में अमरनाथ गुफा में हिमलिंग की पूजा करने के बाद ही व्रत तोड़ती थी। लेकिन एक साल मौसम खराब होने से अमरनाथ जाने के सभी मार्ग बंद हो गए। ये सोच कर कि किसी भूल से भोलेनाथ रुष्ट हैं, रानी ने अन्न जल त्याग दिया और बीमार हो गए। कहते हैं एक दोपहर रानी ने सपने में एक बूढ़े साधु को देखा जिन्होंने रानी से उसके महल के 10 मील दूरी पर मौजूद शिव का लुप्त स्थान पर पूजा करने को कहा। इसके ठीक बाद श्वेत कपड़ों में एक साधु ने रानी को दर्शन दिए और अपने साथ उस गुफा तक लेकर आए जिसमें 4 द्वार बने थे। मंदिर सामने आते ही बूढ़े साधु गायब हो गए और इसके बाद रानी ने उन्हें बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा, जो प्रचलित हो गया।
4: थोजत जिला से प्रथम बार ऐसा हुआ है कि हम 95 की संख्या के अंदर हम यात्री यहाँ पहुँचे हैं और जितने भी राजस्थान के विभिन्न राज्य और भी राज्य हैं वहाँ से भी बहुत सारी संख्या के अंदर इतने उत्साह से लोग आए हैं यहाँ पे। जो उनके मन में जो उनके उत्साह है वो यहाँ उत्साह आज देखने को मिल रहा है कि विभिन्न राज्य के जो लोग हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे अरेंजमेंट्स सब उच्च स्तर के अरेंजमेंट्स है जिसके अंदर अभी प्रथम वर्ष ऐसा हुआ है कि पूरा इसमें सिस्टम डिजिटल कर दिया है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, अभी ऑनलाइन सिस्टम करने से अधिक सुलभता हो गई है। जो भी यात्री है अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आप जो भी संगठन के है वो आपको संपर्क कर लेंगे।
5: सबके अंदर बहुत अच्छी भावना है, श्रद्धालु सारे और बहुत भक्ति भाव से भरे हैं और अमरनाथ बाबा की यात्रा के लिए सब रवाना हुए हैं और सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है।
6: लोगों में बहुत उत्साह है। जैसे बर्फानी बाबा की यात्रा शुरू की थी तो 2005 से लेकर इस यात्रा को आरंभ किया गया है तो अभी एक विशाल वटवृक्ष के रूप में काफी संख्या में लोग यहाँ आना आरंभ हो गए हैं और आने वाले समय में जैसे बर्फानी बाबा में जाते हैं वैसे ही लोग इस यात्रा में जाना आरंभ कर लेंगे, जिसका प्रतिरूप अभी आप देख ही रहे हैं आपके सामने। कम से कम 60-70 हजार लोग इस वर्ष जाएंगे इन 7 दिनों में। अलग अलग प्रांत से अलग अलग की सारणी बनाई हुई है, वो अलग अलग आ रहे हैं।
0: कहते हैं स्वयं भगवान शिव द्वारा दिखाया गया ये स्थान सैकड़ों वर्षों के बाद भी एक बार फिर अग्रेश हो गया था, जिसे दक्षिण भारत के एक साधु स्वामी चंद्रचूड़ मुनि ने उजागर कर वर्षों तक यहां तप किया था। इस मंदिर के साथ ही पूर्व दिशा में स्वामी चंद्रचूड़ मुनि की समाधि भी बनाई गई है। सावन में कुल 12 दिनों तक बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा चलती है और श्रद्धालु दर्शन करते हैं, लेकिन इस दर्शन पूजन के साथ ही जुड़ी है पवित्र छड़ी यात्रा, जो पुंछ के दश नामी अखाड़े से निकलती है और बड़े ही धूमधाम से बूढ़ा अमरनाथ मंदिर तक जाती है। सीमा सुरक्षा बल, मंदिर ट्रस्ट

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: बात करेंगे मौसम की। देखिए कई दिनों से उमस और चिपचिपे मौसम ने दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक के लोगों को परेशान कर रखा है। हाल ये है कि घर से बाहर निकलते ही पसीना और बेचैनी दोनों साथ में महसूस हो रहे हैं, लेकिन अब इस उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर निकल कर आई। उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से अब सूखी हवाओं ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और इन हवाओं के असर से मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों में बदलता हुआ नजर आ सकता है।

0: कहते हैं हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी मौसम की ताल पर थिरकती है। मानसून पूरे देश को जी भर कर भिगो रहा है, तो वहीं जैसे जैसे अगस्त गुजर रहा है, बरसते बादल बारिश की भरपाई भी कर रहे हैं। खबर ये है कि बादलों की आवाजाही के बीच मौसम फिर से चाल बदलने वाला है। बारिश के बाद जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, अब उस उमस के विदाई की गुड न्यूज आने वाली है। हवा की बदली चाल के बीच उम्मीद तो यही है कि अगले दो दिन दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा के लोगों को उमस से कुछ राहत मिल सकती है। उमस से राहत का ये सीन यूं ही नहीं बना है। हाल फिलहाल हवाओं ने रुख बदला है और उत्तर पश्चिम से आ रही सूखी हवाओं ने नमी को कम कर दिया है। लिहाजा और जैसे जैसे नमी घट रही है, वैसे वैसे चिपचिपी गर्मी का असर भी कम हो रहा है। मौसम में इस बदलाव के पीछे मानसून ट्रफ भी एक वजह बताई जा रही है। मानसून ट्रफ अब हिमालय की तलहटी की तरफ खिसक गया है और इसी के साथ बारिश का पैटर्न भी बदल गया है। फिलहाल मानसून की मेहरबानी पूर्वी और मध्य भारत पर ज्यादा है, जबकि दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में आसमान अपेक्षाकृत साफ है। एक दिन पहले की सैटेलाइट तस्वीरें भी मौसम का बदला रुख बयां कर रही है। पूर्वी यूपी से बिहार और बंगाल की खाड़ी तक मानसूनी बादलों की आवाजाही है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में बादलों की मौजूदगी कम है। आज की बात करें तो दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा में बारिश के आसार कम है। हालांकि कुछ इलाकों में शाम के वक्त हल्की फुल्की और छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन बादलों का खेल अभी थमा रही है, क्योंकि मानसून कब करवट ले ले कहा नहीं जा सकता। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 20 अगस्त के बीच बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके असर से मानसून ट्रफ दोबारा दक्षिण की ओर खिसक सकता है और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर फिर लौट सकता है। फिलहाल अभी के लिए खबर इतनी है कि जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, उस उमस के गुजरने का दौर शुरू हो चुका है। सूखी हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी वजह से मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। लेकिन मानसून ने अभी मैदान छोड़ा नहीं है, उसकी अगली करवट जल्द फिर से बारिश की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाम

0: करोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने रद्द की जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2014 के बाद की भर्तियों की होगी सीआईडी जांच। वाराणसी पे छत पर शुरू हुई मां गंगा की आरती, बढ़ते जल स्तर के चलते लिया गया फैसला, सात अर्चकों ने विधिवत की आरती। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में दिखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। पहाड़ से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम मुंबई में भी जमकर बरसे बरदा। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी जोरदार आगाज।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
8: जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई बाबा बूढ़ानाथ अमरनाथ यात्रा, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
9: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अब ऑटो और ई रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्ग पुलिस ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत सड़कों पर चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा में QR कोड लगाए जाएंगे। इसके लिए ऑटो रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्रत्येक ऑटो और ई रिक्शा को एक QR कोड उपलब्ध कराया जाएगा। इस QR कोड के जरिए वाहन और उसके चालक से संबंधित आवश्यक जानकारी पुलिस के पास सुरक्षित रहेगी। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंचे और पूरे उत्साह, श्रद्धा और धार्मिक आस्था के साथ इस पवित्र यात्रा में शामिल हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के यात्री निवास से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना के जवानों की तैनाती की गई है। अब पंजाब के लोगों को पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए गोवा जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बन चुके पठानकोट के रावी दरिया पर बने डैम की चमरोड़ झील में अब ये सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। मिनी गोवा के नाम से मशहूर यहां के चमरोड़ में सैलानियों के लिए पैरासेलिंग की सुविधा शुरू की गई है। जयपुर के ऐतिहासिक गलता तीर्थ धाम में आस्था और भक्ति का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। गालव ऋषि की तपोस्थली गलता धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं का फूलों से खास अंदाज में स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से हुई इस पुष्प वर्षा के बीच श्रद्धालुओं ने जमकर जयकारे लगाए और पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया।
8: और अब बात गुरेज घाटी में खेल महोत्सव की। जम्मू कश्मीर के गुरेज में खेल इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने युवाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्थानीय लोगों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस ऐतिहासिक खेल महोत्सव का समापन पारंपरिक पोलो मैच के साथ हुआ। भारतीय सेना और स्थानीय सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में खेलों के साथ महिला भागीदारी, स्वच्छता अभियान और पौधारोपण जैसी सामुदायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

0: घाटी में घुड़सवारी, युवाओं की रेस, लड़कियों की एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ और ट्रॉफी उठाए खुशी से झूमते युवा, ये तस्वीरें कश्मीर घाटी में युवाओं का जोश और जज्बा बता रही हैं। ये बदलते कश्मीर की नई तस्वीर है। यहाँ के युवाओं में खेल के मैदान में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। युवाओं में जोश और जज्बे की ये तस्वीरें गुरेज घाटी से आई हैं, जहां इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। इसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का एक मंच मिला, जहां खेल के साथ साथ टीम वर्क, अनुशासन और आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। गुरेज में सेना की तरफ से खेल महोत्सव का ये आयोजन किया गया। इसमें आसपास के गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। खेल के मैदान में युवा खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया और पारंपरिक पोलो का मुकाबला इस खेल आयोजन का सबसे खास आकर्षण रहा, जहां घोड़ों की रफ्तार और खिलाड़ियों के शानदार तालमेल ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। गुरेज की पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक खेल भावना का ये संगम लोगों के लिए खास अनुभव रहा।
1: गुरेज में स्थानीय टीमों के बीच पोलो था। दरअसल गुरेज घाटी की अगर बात की जाए, यहाँ पर सदियों से पोलो खेला जा रहा है। ये अलग तरीके का पोलो है जो अंतर्राष्ट्रीय पोलो से अलग है, क्योंकि इसमें जो घोड़े इस्तेमाल होते हैं वो कम कद के होते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस भी अलग होती है। दरअसल लद्दाख क्षेत्र और गुरेज घाटी के साथ साथ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का पोलो खेला जाता है। भारतीय सेना को उम्मीद है कि यह रिवायती खेल यानी पोलो जो है उसको दोबारा सीमावर्ती इलाकों खासतौर से गुरेज घाटी में बहाल भी किया जाएगा और विकसित भी।
0: युवाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन ये आयोजन सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान और पौधारोपण जागरूकता की भी जानकारी दी गई।
1: भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज इलाके में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जो अब समाप्त हुआ है। इस विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद नियंत्रण रेखा पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए खेल की सुविधाएं न सिर्फ बढ़ाना, बल्कि साथ ही साथ उनके बीच में एक भावना खेल और मुकाबलों को लेकर पैदा करना।
2: गाँव की सफाई और प्लांटेशन का भी जो लक्ष्य रखा था कि कौन सा गांव ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, उसमें भी इस मार्ग नंबर वन पे आ गया है। तो हम इंडियन आर्मी की तरफ से और पूरे बगदौर ब्लॉक की तरफ से गांव इस मार्ग को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हर प्रकार की खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लड़कियों के साथ साथ इनकी लड़कियों ने भी काफी गेम्स में मैदान मार लिया है।
0: भारतीय सेना की ओर से आयोजित इस खेल महोत्सव का मकसद गुरेज के युवाओं को खेलों और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है, ताकि युवा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपनी प्रतिभा को निखारें और भविष्य में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें।
3: इससे क्या है कि यहाँ के लोग काफी खुश हुए और या खासकर इसमें यहाँ की बच्चियों को मौका मिला अपने आप को आगे लाने के लिए।
0: दरअसल खेल से जुड़े ऐसे आयोजन घाटी के युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा पहचानने, उसे निखारने और बड़े मंच तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। खेलों के जरिए युवाओं को सकारात्मक दिशा मिल रही है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है और भविष्य की तैयारी का मौका भी मिल रहा है। इससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।
2: इंडियन आर्मी से यही रिक्वेस्ट है कि जो 1.0 इस साल हुआ है, तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को अपना टैलेंट शोकेस करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सके।
0: जाहिर है गुरेज घाटी में चले इस खेल महोत्सव में खेल के मैदान से लेकर स्वच्छता अभियान और पौधारोपण तक युवाओं को समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भी जोड़ा गया। ऐसे आयोजनों से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानने और निखारने का मौका भी मिलता है। जम्मू कश्मीर के गुरेज से अशोपानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन खबरों को जो कि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। इनमें से कुछ खबरें ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगी और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: एक बॉल है जिसे सब तक पहुंचनी है, लेकिन एक एक कर जिसके हाथ में गेंद आएगी उसे अपने सामने वाले को पास करना है, लेकिन उछाल कर नहीं, जाकर उसके हाथों में सौंपना है, वो भी खास तरीके से। बच्चे जिस तरह से मेंढक की तरह कूद कूद कर अपना टास्क पूरा कर रहे हैं वो देखना दिलचस्प है। दाद तो देनी पड़ेगी, आसान नहीं है, पर देखिए कैसे जीत के लिए एक दूसरे का साथ दिया जा रहा है। संभवतः आटा है या फिर कोई पाउडर जैसी चीज मुंह में फंसाए मोटे कागज पर बिना हाथ लगाए उठाना है और उसे अपने साथी को पास करना है। आखिरी छोर तक पहुंचने के बाद वही प्रक्रिया दोहराते हुए वापस लौटना है। अब पाउडर जैसी चीज को बिना हाथ लगाए संभालना आसान तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। जिस तालमेल और संतुलन के साथ सबने अपने अपने हिस्से का काम किया वो देखकर लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। यूं ही नहीं कहते कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। अब इन्हें ही देखिए, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, ना ही एक दूसरे की भाषा बोलते समझते हैं, लेकिन दोस्ती पक्की वाली लग रही है। जिस तरह से डॉगी और बतख रेस लगा रहे हैं उससे तो लगता है ये दोनों का नियमित खेल है। जो भी हो, दोनों की ये दोस्ती वाली दौड़ लोगों को खूब पसंद आ रही है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी हो जाए तो स्कूल में मन लगा रहता है। अब इन बच्चों को ही देखिए कैसे एंजॉय कर रही हैं इस खेल को। वैसे ये जो कर रहे हैं वो देखने में बड़ा ही आसान सा स्टेप लग रहा है, पर जो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि अभ्यास तो इसके लिए भी चाहिए, वरना कदम गलत खांचे में भी पड़ सकता है और एक बार गलती हुई तो खेल से आउट। लेकिन ये बच्चियाँ होशियार हैं।
5: बात क्यों कर रहे?
0: सुना आपने, ये बस इन्हें ही बर्थडे में बुलाएंगे।
5: क्यों?
0: क्योंकि यही टीचर हैं जो इनको सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, इन्हें काम देती हैं। मतलब इस छोटी सी उम्र में भी इनको पता है कि अच्छे टीचर का मतलब क्या है। स्कूल पढ़ने ही तो आते हैं और यही वो टीचर हैं जो पढ़ाई के दौरान इन पर खास नजर रखती हैं। टीचर बार बार जताती हैं कि वो उससे प्यार नहीं करती।
5: मैं तो नहीं करती प्यार, जबरदस्ती प्यार करती हूँ,
0: बल्कि वो तो सभी बच्चों की तरह ही उसे ट्रीट करती है। इस पर बच्चा जिस तरह से रुआंसा होकर टीचर से अपनी बर्थडे में आने की रिक्वेस्ट करता है वो देखकर लोग उसकी मासूमियत पर खूब प्यार लुटा रही
5: हैं। मैं पूछ रही हूँ तो ढंग से बोलो, रो नहीं, मैं मारी हूँ कि रो रहे हो।
4: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र के FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, जो खाने पीने की खराब चीजों के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा में है। महाराष्ट्र FDA ने फिल्म स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस तीनों अभिनेताओं को विमल इलायची का विज्ञापन करने के लिए जारी किया गया है। FDA का आरोप है कि विमल इलायची विज्ञापन के जरिए राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक FDA ने 11 अगस्त को तीनों अभिनेताओं को नोटिस भेजकर विज्ञापन में उनकी भूमिका पर 15 दिन में जवाब मांगा है। FDA का कहना है कि विज्ञापन में विमल नाम, प्रोडक्ट और डायलॉग इस तरह इस्तेमाल किए गए हैं कि इससे विमल ब्रांड का प्रचार होता दिखता है। चूंकि विमल ब्रांड पान मसाला से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए FDA को शक है कि विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाले का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। ऐसे विज्ञापन को सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है, जिसमें किसी ऐसे प्रोडक्ट का सीधे विज्ञापन ना करके उसी ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट का विज्ञापन किया जाता है जिस पर रोक लगी है। महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटिन वाले गुटखा और पान मसाला पर 2012 से रोक है। ये रोक हर साल बढ़ाई जाती है। महाराष्ट्र में अभी ये रोक 13 जुलाई 2026 से एक साल के लिए लागू है। इसके तहत राज्य में पान मसाला बनाने, रखने, लाने, ले जाने और बेचने पर पाबंदी है। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संगठित गुटखा और तंबाकू निकोटिन के मामले में पुलिस के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई की जाए। एक पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था कि अगर किसी तरह का कोई प्रोडक्ट लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है तो सरकार को उसे तुरंत बैन कर देना चाहिए। जाहिर है ये मुद्दा आम लोगों की सेहत से जुड़ा है। ऐसे में फिल्मी सितारों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल जनता का हित देखकर करें। इस मामले पर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
6: करनी चाहिए, मतलब फिर लाइक लोग इन्फ्लुएंस होती हैं कहीं ना कहीं, लाइक ऐसे बस लोग बोल देते हैं कि मूवी ही है, बट लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, हर कोई इतना एजुकेटेड नहीं होता, तो लाइक वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखते हैं कुछ भी करते हुए तो वो फॉलो करते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए ऐसे, मॉरली गलत है वो चीज़, तो नहीं ही करना चाहिए।
7: आई थिंक उन्हें इस चीज़ की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए, क्योंकि मेनी पीपल स्पेशली यंगस्टर्स लुक अप टू देम, तो चाहे इवन दो उन्हें पता हो कि ये चीज़ ख़राब है, बट अगर वो उनको उनके लिए वो आइडल्स हैं या इफ दे आर लुकिंग अप टू देम, तो ऑफकोर्स वो चीज़ से इंस्पायर होंगे या उस चीज़ से मोटिवेट होंगे कि हमें ऐसा बनना है तो हमें भी ये सब करना पड़ेगा। तो आई थिंक उनकी भी यहाँ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि वो अकाउंटेबिलिटी लें और ऐसी चीज़ें प्रमोट ना करें।
8: मैं तो मानूंगा कि मतलब हर किसी की लाइफ में स्टूडेंट या बड़े भी जो एक्टर्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, मतलब लोग उन्हें कुछ तो भगवान मानते हैं, बहुत मतलब अलग अलग फैन बेसिस है, तो उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ हमें बहुत लोग देखते हैं, तो हमें कुछ अच्छी चीज़ प्रमोट करें जिससे वेलफेयर हो पब्लिक का और प्रोग्रेस करे पूरी कंट्री एज अ होल। तो या मैं तो अगेंस्ट हूँ पूरा, जो भी ऐसे उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए और देन उन्हें ना डिसीजन मेक करना चाहिए।
9: देखिए ये सेलिब्रिटी एक अलग चीज़ है, पिक्चरों में आते हैं, किस लिए आते हैं आप लोग, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, आगे आपके प्रपोजल भी मिलते हैं, बहुत बड़ा लेकिन नाम भी होता है सोसाइटी में, भाई फलाना हीरो की फलानी फिल्म अच्छी है। बाकी रही अगर ये कोई ब्रांड चल रहा है तम्बाकू का वगैरह का, ये किस इसके लिए, तो वो भी आप किस लिए होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि तम्बाकू है, तम्बाकू में क्या गवर्नमेंट का भी तो रेवेन्यू मिलता ही है ना, तो आपको भी आपको सजेशन क्या, वो तो गवर्नमेंट जानती है क्या ऐसा करना है क्या नहीं करना, क्या बैन करना है ये क्या नहीं करना, तो वो तो गवर्नमेंट के ऊपर वाली बात है, तो आप दैट नॉट सजेशन। तो जबकि पैसा आप कमाते हैं, गवर्नमेंट भी कमाती है, एक्साइज ड्यूटी आती है, GST आता है, तो बहुत सी उसका काफ़ी बेनिफिट प्रॉफिट होती है।
4: खराब सड़क पर गाड़ी चलाते हुए गुस्सा तो हम सभी को आ जाता है, कहीं गड्ढा बचाने के चक्कर में गाड़ी डगमगाती है तो कहीं ये गड्ढे हादसे की वजह बन जाते हैं, लेकिन गुस्सा करने के बाद हम अक्सर यही सोचकर चुप हो जाते हैं कि आखिर हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने इसी सोच को बदलने की कोशिश की और उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो कि सड़क के गड्ढों को खुद पहचान सकता है और जिम्मेदार या फिर लापरवाह तक आपको पहुंचा सकता है, यानी कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर जिम्मेदार व्यक्ति तक गड्ढों की जानकारी पहुंचाने का काम काफी आसान हो गया है।

0: सड़कों पर ये गड्ढे अखिल भारतीय समस्या बन चुके हैं। ये गड्ढे न केवल आपका सफर बर्बाद करते हैं बल्कि गाड़ियों को खासा नुकसान भी पहुंचाते हैं। और फिर शुरू होती है शिकायतों की कभी न खत्म होने वाली कथा, जिसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने समस्या का एक गजब का AI सॉल्यूशन खोज निकाला है। बेंगलुरु के इंजीनियर गौरव सेन ने ऐसा AI सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए न केवल गड्ढों की पहचान संभव है बल्कि इन गड्ढों की मरम्मत के जिम्मेदारों तक पहुंचना भी आसान हो गया है। दरअसल ये सिस्टम सड़क पर चलते हुए गड्ढों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करता है। कार में लगे डैश कैम, GPS और एक्सेलेरोमीटर से सड़क की जानकारी जुटाई जाती है, जिसके बाद AI विजन मॉडल तस्वीरों और वीडियो को स्कैन करके अलग अलग आकार के गड्ढों की पहचान करता है। खास बात यह कि सिस्टम उन गड्ढों को भी पहचान सकता है जिन्हें दूर से देखना मुश्किल हो, क्योंकि कई बार सड़क का गड्ढा स्पीड ब्रेकर जैसा दिखाई देता है। गौरव सेन ने कोडेक्स की मदद से ये ऐप तैयार किया है जो इस पूरे डेटा को रिकॉर्ड करके OpenAI तक भेजता है। लेकिन कहानी सिर्फ गड्ढे की पहचान तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल होता है, गड्ढा मिला है तो इसे ठीक कौन करेगा। इसके लिए ऐप को करीब 2900 सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स से जोड़ा गया। सिस्टम सड़क के किसी खास हिस्से की पहचान करके ये पता लगा सकता है कि उस सड़क का ठेका किस कंपनी या ठेकेदार के पास है। यानी अगर कोई सड़क वारंटी पीरियड में है तो ठेकेदार को बिना सरकार पर अतिरिक्त खर्च डाले सड़क की मरम्मत करनी पड़ सकती है। और ये पूरा रिकॉर्ड महज 4 सेकंड में तैयार हो सकता है, जिसमें गड्ढे की तस्वीर, उसकी सटीक लोकेशन, टेंडर नंबर और सड़क से जुड़े अधिकारी की जानकारी शामिल होती है। गौरव ने इस सिस्टम का टेस्ट ऑफिस जाते वक्त किया। एक सफर में AI ने उनकी राह में मौजूद 12 गड्ढों को पहचान लिया। गौरव सेन का ये प्रयोग अब बेंगलुरु से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। लोग गौरव के इस AI मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ यूजर उसे ऐसा ऐप बता रहे हैं जो समस्या के साथ आपको सही समाधान तक ले जाता है। सड़क के गड्ढों के लिए AI से खोजा गया ये सॉल्यूशन बड़े काम का हो सकता है, क्योंकि देश में हर साल सड़क दुर्घटना में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनकी बड़ी वजह सड़क के गड्ढे भी होते हैं। हाल ही में लोकसभा में सड़क परिवहन मंत्रालय से सड़क हादसों को लेकर सवाल पूछे गए थे। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने जो जवाब दिया है वो वाकई चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों के आंकड़ों के आधार पर बताया कि हर साल सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही ये जानकारी भी दी कि किस उम्र के लोग सड़क पर बने गड्ढों के कारण सबसे ज्यादा हादसों का शिकार हो रहे हैं। इन आंकड़ों में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले 25 से 35 साल के लोग होते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में गड्ढों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 53% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में जहां 3,564 लोगों की मौत सड़कों पर बने गड्ढे की वजह से हुई, वहीं साल 2021 में 3,625 लोगों की मौत का जिम्मेदार सड़क के गड्ढे बने। वहीं साल 2022 में 4,446 लोगों की मौत सड़क पर बने गड्ढे की वजह से हुई। इनमें से 54% से ज्यादा मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में हुई, जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बनकर उभरा है। मंत्रालय को सौंपी गई राज्य पुलिस रिपोर्ट से लिए गए डेटा से पता चला कि आंध्र प्रदेश, बिहार और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने 5 साल के समय में गड्ढों से जुड़ी कोई दुर्घटना या मौत की सूचना नहीं दी। ये आंकड़ा ये भी दिखाता है कि साल दर साल सड़क पर बने गड्ढों की वजह से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन उन आंकड़ों में कमी नहीं आ रही। उल्टा हर गुजरते साल के साथ ही आंकड़ा बढ़ ही रहा है, जो मौजूदा सरकारों, प्रशासन और स्थानीय विभागों के लापरवाह रवैया को भी दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आपने ChatGPT से सवाल पूछे होंगे, जवाब भी तलाशे होंगे, लेकिन क्या कभी अपनी खोई हुई चप्पलें भी ChatGPT से ढूंढवाई है? सुनकर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन भारत में ऐसा ही एक दिलचस्प मामला सामने आया है। एक शख्स मंदिर गया था, पूजा की और बाहर आया तो उसकी चप्पलें गायब थी। सामने चप्पल जूतों का ऐसा ढेर लगा था कि अपनी चप्पल पहचानना भी किसी मिशन से कम नहीं लग रहा था। लेकिन जनाब ने हार नहीं मानी, सीधे ChatGPT की मदद ली और फिर क्या हुआ देखिए।
2: अगर आप मंदिर जाएं और आपके फुटवेयर न मिले तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार AI ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि अब वहां से आपको अपने फुटवेयर ढूंढने में मदद जरूर मिलेगी। दरअसल शुभांग बोरकर वो शख्स है जिन्होंने AI की मदद से ऐसा कर भी दिखाया है। ये AI वाली ट्रिक शुभांग के खोए फुटवेयर ढूंढने में खूब मददगार साबित हुई है। शुभांग ने मिनटों में AI की मदद से अपने जूते ढूंढ निकाले। गोवा बेस्ड ऋषुभांग बोरकर पेशे से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं। उन्होंने दरअसल उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर से ये वीडियो शूट किया, जिसमें जहां नजर डालिए जूते चप्पल ही दिख रहे हैं। जाहिर है इन फुटवेयर में से अपने वाला पहचानना शुभांग के लिए इतना आसान टास्क नहीं था। वो एक एक करके फुटवेयर देखते तब जाकर उनको अपना फुटवेयर मिलता। लेकिन देखिए चैट जीपीटी का कमाल, जिसकी मदद से शुभांग ने फुटवेयर्स की भीड़ में अपने वाला क्लॉग्स ढूंढ ही निकाला। शुभांग ने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो का नाम यूज्ड चैट जीपीटी टू फाइंड माय लॉस्ट क्लॉग्स रखा। इसके लिए सबसे पहले मंदिर के बाहर जहां जूते चप्पल रखे थे वहां से रैक और फुटवेयर एरिया की तस्वीरें ली। इसके बाद शुभांग ने अपने फुटवेयर क्लॉग्स की तस्वीर चैट जीपीटी पर अपलोड की। शुभांग ने AI से वो तस्वीर देखकर उनकी जोड़ी पहचानने में मदद करने और फिर फुटवेयर के बीच उनके क्लॉग्स को ढूंढने के लिए कहा। हालांकि एक तस्वीर से बात साफ नहीं हुई तो शुभांग ने फुटवेयर एरिया के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। वो एक के बाद एक तस्वीरें चैट जीपीटी को भेजते रहे, जिनमें सैकड़ों जूते चप्पल दिखाई दे रहे थे। चैट जीपीटी ने तस्वीरों को देखकर उनमें मौजूद जोड़ियों को शुभांग की भेजी हुई क्लॉग्स की तस्वीर से मिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे अपनी खोई हुई चप्पल ढूंढने का ये मामला एक छोटे से रियल वर्ल्ड AI एक्सपेरिमेंट जैसा बन गया। कई तस्वीरें देखने और उनका विश्लेषण करने के बाद चैट जीपीटी ने एक ऐसी जोड़ी की तरफ इशारा किया जो शुभांग के क्लॉक से मिलती जुलती दिखाई दी। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर फुटवेयर खोजने की शुभांग की ये AI ट्रिक लोगों को पसंद भी आ रही है। यानी जिस क्लॉक्स को शुभांग खुद सैकड़ों जूते चप्पलों के बीच तलाश रहे थे उसे उनके साथी बने AI ने ढूंढ निकाला। यानी इस काम में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किसी बड़ी रिसर्च या तकनीकी काम में नहीं, बल्कि बेहद सामान्य सी परेशानी को सुलझाने में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और अब बात उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों को है। हम बात कर रहे हैं नमित मल्होत्रा की रामायण की। दो पार्ट में बन रही इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यानी कि फिल्म का पैमाना जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी है इसकी प्लानिंग भी। अब मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी कहानी, क्योंकि रामायण 6 नवम्बर को इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज होगी जबकि भारत में दिवाली पर दस्तक देगी।
3: तुम्हारा नया राजा।
2: भारतीय सिनेमा के सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट में से एक रामायण, जिसने रिलीज से अरसे पहले ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, आम जन से लेकर खास तक, समाज के हर तबके हर वर्ग तक रामायण पहुंच पाए, इसके लिए मेकर्स एक खास प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं।
4: जब जब सृष्टि पर संकट आया है भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की।
2: मेकर्स की प्लानिंग का एक ही अहम हिस्सा है फिल्म के रिलीज डेट। रामायण पार्ट 1 दीपावली पर रिलीज होनी है ये तय है, लेकिन किस तारीख को रिलीज होगी ये अब तक पुख्ता तौर पर तय नहीं था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में रामायण की रिलीज डेट 30 अक्टूबर बताई जा रही थी, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं था।
5: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार।
2: अब रामायण के मेकर्स ने काफी सोच समझ कर रामायण की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है।
5: निर्णय मैं ले चुका हूँ। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
6: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास।
2: 6 नवंबर यानी दिवाली से 2 दिन पहले रामायण पार्ट 1 वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। इससे मेकर्स को 2 हफ्ते का दमदार रिलीज पैसेज मिलने जा रहा है। इसे जानने के लिए इस तारीख की क्रोनोलॉजी समझनी होगी।
6: एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।
2: 6 नवंबर को शुक्रवार है और इसी दिन धनतेरस भी है। 7 नवंबर को शनिवार है यानी वीकेंड, छुट्टी का दिन होने से इसे भरपूर दर्शक भी मिलेंगे। 8 नवंबर को रविवार है और दीपावली भी है, जिसका फायदा फिल्म को फैमिली ऑडियंस के तौर पर मिल सकता है। 9 नवंबर को सोमवार है, 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी। कई दफ्तरों में उस दिन छुट्टी होती है और 11 नवंबर यानी बुधवार को भाई दूज का त्योहार है। 13 नवंबर यानी शुक्रवार से दूसरे हफ्ते से वीकेंड शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि रामायण को न सिर्फ बम्पर ओपनिंग मिल पाएगी बल्कि दो दमदार वीकेंड भी, यानी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए अच्छा खासा वक्त मिलने जा रहा है।
6: सूर्पनखा, वो मोहित हो गई है आप पे।
4: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूर्पनखा।
2: हालांकि ओवरसीज में रामायण की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। 5 नवंबर हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो रिलीज होगी, मतलब 6 नवंबर को इसका सामना रामायण से होगा। गॉडजिला एक पॉपुलर फ्रेंचाइज है, इसलिए रामायण को क्लैश झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत में रामायण को एक छत्र राज मिल सकेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
13: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने रद्द की जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2014 के बाद की भर्तियों की होगी सीआईडी जांच। वाराणसी पे छत पर शुरू हुई मां गंगा की आरती, बढ़ते जल स्तर के चलते लिया गया फैसला, 7 अर्चकों ने विधिवत की आरती। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में देखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। बाहर से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम मुंबई में भी जमकर बरसे बरदा। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी जोरदार आगाज़।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां बात कर रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर की घाटी में भोलेनाथ का जयकारा था, अब जम्मू की वादी में हर हर महादेव का जयघोष सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। सोमवार से शुरू हुई ये यात्रा 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक यूं ही चलेगी, जिसमें देखिए शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से शिवभक्त जो हैं जम्मू पहुंचने का जो उनका सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज आपको जम्मू से लेकर पुंछ तक इस यात्रा की भव्य तस्वीरें तमाम दिखाएंगे। बाबा चट्टानी के दर्शन करने के लिए निकले श्रद्धालुओं का जोश दिखाएंगे, कितना हाई नजर आ रहा है। इसके साथ ही बाबा बूढ़ा अमरनाथ का भव्य दरबार भी दिखाने जा रहे हैं। शिव का ये धाम कितना पुराना है, कितना खास है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको इस पावन धाम की अद्भुत कहानी भी बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के साथ। देखिए कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद अब जम्मू में बाबा चट्टानी के दर्शन करने की होड़ लगी हुई है। सिर्फ 12 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु जो हैं पहुंच रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के बाद सोमवार की सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना कर दिया और इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रिपोर्ट देखिए।

0: एक बार फिर हर हर महादेव का नारा है, एक बार फिर अमरनाथ का बुलावा है। लेकिन मंजिल इस बार अमरनाथ की गुफा नहीं बल्कि बूढ़ा अमरनाथ धाम है। कुछ दिन पहले इसी जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए जत्थे निकले थे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्त उमड़े थे, पर इस दफा जम्मू से कारवां पुंछ के लिए जा रहा है, क्योंकि पुंछ जिले के मंडी तहसील के राजपुरा में मौजूद है बाबा चट्टानी का धाम यानी बूढ़ा अमरनाथ मंदिर।
1: 2005 आयोजित की जा रही यात्रा केवल पर्वतों और घाटियों को पार करने वाली यात्रा नहीं है, ये हमारे बाहरी पथ से कहीं अधिक हम सबके अंतर्मन की यात्रा है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये तीर्थ यात्रा स्वयं के भीतर स्थित चेतना को पहचानने की भी यात्रा है। यह पावन तीर्थ यात्रा भगवान शिव की ओर अग्रसर होने की भी यात्रा है, जो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थल की दिव्य ऊंचाइयों में विद्यमान है।
0: 17 अगस्त से ये यात्रा शुरू हुई है और 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक चलेगी, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू पहुंचने लगे हैं। भगवती नगर यानी यात्री निवास से सोमवार को जब पहला जत्था निकला तो शिव भक्तों का जोश देखने लायक था। पूजा पाठ के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को झंडा दिखाकर रवाना किया।
2: बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे थे, आज पहला जत्था बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का यहां से रवाना हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा यहां पर, जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया, इस पहले जत्थे को यहां से रवाना किया। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है उत्साहित होकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन था यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि कितना जो है वो उत्साह है यात्रियों के बीच। और ये बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जयघोष के साथ जो है वो यात्री यहाँ पर उत्साहित है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जत्था जो है वो रवाना हुआ है। और मैं इस तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि आप देखिएगा कि कितने उत्साहित हैं यात्री, और जय श्री राम के जयघोष के साथ जो है ये यात्रा रवाना हो रही है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मैं गोकुल से कहूंगा कि वो आगे आएंगे और आपको दिखाना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रा को जो है वो फ्लैग ऑफ किया है, और देखिएगा दूर दूर तक ये बसेस जो है वो अब यहाँ से रवाना हुई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के जो है वो दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना हुई है। और ख़ास तौर पर इस यात्रा का मकसद है कि पुंछ जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उसे देश के जो विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं वो वहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचे, क्योंकि 10 दिन की ये यात्रा रहती है। और इस पहले जत्थे का हर एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी ये यात्रा एंटर करेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका भव्य स्वागत होगा। जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन यहाँ पर, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के साथ कई टुकड़ियाँ जो है इस यात्रा की सुरक्षा में तैनात हैं, और जम्मू पुंछ हाईवे को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो रखा गया है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं, और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये पावन यात्रा जो है वो 10 दिन के लिए यानी आज 17 तारीख से लेके 28 तारीख तक जो है वो यात्रा ये चलेगी। और इस यात्रा में देश भर से आने वाले श्रद्धालु बेहद खुश है और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
0: धार्मिक परंपरा में बाबा चट्टानी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे अमर कथा से जुड़े पवित्र मार्ग का पहला पड़ाव माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने की शुरुआत यहीं से की थी, जो बाद में अमरनाथ गुफा में पूरी हुई थी। इसीलिए ये मंदिर केवल एक धाम नहीं बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक प्रवाह का हिस्सा है।
2: राहुल जी कहाँ से आए?
3: जयपुर से।
2: जयपुर से आए, कब से आ रहे बाबा की यात्रा?
3: 33 साल है साहब।
2: तो कैसा लग रहा है इस बार की व्यवस्था, ये सब चीज?
3: अपन ये चाहते हैं कि पूरा देश आए, और जो अपने महादेव जिनकी यहाँ पे स्थापना हुई थी किसी कारण से, यहाँ पे वो लुप्त हो गए, जिनकी पूजा होना बिल्कुल बंद हो गई थी, जो आज यहाँ के किया है लोगों ने, जनता ने अपने देश के लिए, और उसको जागृत किया है। और आज यहाँ लाखों की तादाद के अंदर बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
0: जिसे देखने और महसूस करने के लिए हर साल हजारों हजार की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इस साल पहले जत्थे में मध्य भारत, कर्नाटक, जयपुर और जोधपुर के भक्त शामिल हुए और उनका जोश जबरदस्त है। जो श्रद्धालु पुंछ की इस यात्रा में शामिल होते हैं, उनका मकसद सिर्फ मंदिर दर्शन नहीं होता, बल्कि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के बीच ये यात्रा शिव अमरत्व और दिव्य रहस्य की एक सतत कथा है, जिसे समझना एक अद्वितीय अनुभव है। तभी तो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए शिव भक्त मस्त मगन होकर पहले जम्मू और फिर यहाँ से पुंछ की ओर निकल पड़े हैं। जम्मू से 244 किलोमीटर का सफर तय करके यात्री पहले पुंछ पहुंचेंगे और फिर पुंछ से धाम की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जिसे वो तय करेंगे।
2: पुंछ एक बॉर्डर का इलाका है, बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ क्षेत्र है और खास तौर पर पूरे देश भर से आने वाले यात्रियों का काफी उत्साहित रहते हैं पुंछ के लोग, उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार घुमाकर जो है वो दिखाएंगे। तो ये देखिएगा कि ये जोश और जो जज्बा है, ये जोश और जज्बा है तो ये जज्बा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हम एक बस में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और खासा उत्साह है, और ये उत्साह साफ तौर पर दर्शाता है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है।
4: सेकंड बार आए हैं।
2: सेकंड बार तो पहले से कितना बदलाव लग रहा है इस बार का?
4: काफी बदलाव है।
2: तो क्या क्या मैसेज रहेगा पूरे देश भर के लिए, आज दर्शनों के लिए जा रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के?
4: ये मैसेज रहेगा कि जो अन्य लोग नहीं आ पाए हैं, वो भी आए और इस यात्रा का हिस्सा बने और बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करें।
2: ठीक है सर, कहाँ से आए?
5: हम मध्य भारत प्रांत से आए हैं, भोपाल के पास में बुधनी जिला है, और मैं दूसरी बार आया हूँ। यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था, यहाँ के स्थानीय लोगों की व्यवस्था, संगठन की व्यवस्था बहुत ही उच्च क्वालिटी की व्यवस्था है।
0: जिस तरह बाबा बर्फानी का दरबार हिमालय के ऊंचे शिखर पर मौजूद प्राकृतिक गुफा में है, ठीक उसी तरह से बाबा चट्टानी पीर पंजाल श्रेणी में मौजूद बेहद खूबसूरत जगह पर मौजूद है। हाँ, ये जरूर है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए ऊंची चढ़ाई नहीं है, लेकिन इस यात्रा में घाटी भी है और जलधारा भी, पहाड़ और पुलस्ता नदी मिलकर एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक शांति देते हैं। तभी तो जो एक बार बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए आता है, वो बार बार आता है।
6: आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे पुंछ में एक जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा शुरू होने वाली है, उसी कड़ी में यहाँ पे हमारे स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी की याद में यहाँ पे एक भव्य त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है, जो बिल्कुल एक LOC पे हमारा नवग्रह मंदिर है वहां से स्टार्ट होती है और यहाँ पे यात्रा ग्राउंड, जिसको कॉलेज ग्राउंड बोलते हैं, यहाँ पे आती है। यहाँ पे विधिवत पूर्वक यहाँ पे त्रिशूल का यहाँ पे पूजन होता है और जो पूरे भारतवर्ष से यात्री आते हैं वो इसी त्रिशूल का पूजन करते हैं और उसके बाद वो बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। ये आज त्रिशूल यात्रा का महत्व ये है कि ये हमारे जो स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी थे, जिनका हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने बहुत बड़ा इस हमारी यात्रा में योगदान दिया था। ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने यात्रा शुरू की थी और आज आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ बिना मजहब मिलत सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आए हुए और इस यात्रा में शामिल हुए।
7: ये जो त्रिशूल यात्रा है, आपको पता है हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब यहाँ आती है उससे एक दिन पहले ये जो त्रिशूल यात्रा है, ये नवग्रह मंदिर अजोट जो कि देरिया में है, वहाँ से निकलती है और यात्रा ग्राउंड तक पहुँचती है। आपने देखा होगा भोले का जो त्रिशूल है, ये एक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो हमारे पुंछ के वासी हैं, खास करके बिना मजहब मिलत हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पहुँचता है और ये खास करके एक तरह से आयोजन होता है बाबा बूढ़ा अमरनाथ से पहले कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आ रही है, जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए सारे पुंछ वासियों को, जिस तरह से वो वेलकम करने के लिए हर बार यात्रियों को यहाँ पहुँचते हैं।
0: पहाड़ी नदी का जल है भजन और भगवा ध्वज और इन सब के साथ शिव भक्तों की श्रद्धा, ये सब मिलकर बूढ़ा अमरनाथ धाम को एक जीवंत धार्मिक अनुभव बना देते हैं और खासकर सावन में अनगिनत श्रद्धालुओं और संतों की मौजूदगी से धाम शिवमय हो जाता है।
8: बोलो
0: इस साल भी बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए यात्रा शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे मार्ग पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। यात्रियों का जत्था सुरक्षा घेरे में धाम तक पहुंचाएगा और वापस आएगा। पूरे रास्ते आवास, भोजन और दूसरी तमाम सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की तादाद हर साल बढ़ रही है। जो लोग किसी वजह से अमरनाथ गुफा नहीं जा पाते, वो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसकी वजह ये भी है कि ये यात्रा आसान है, और दूसरी अहम बात ये कि इसकी अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा है, जिससे लोगों की गहरी आस्था भी जुड़ी है। हर साल वार्षिक बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से एक दिन पहले त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी LOC पर मौजूद नवग्रह मंदिर में त्रिशूल यात्रा की शुरुआत हुई। पूजा पाठ के बाद मंत्रोच्चार के साथ एक विशाल त्रिशूल को लिए शिव भक्त चल पड़े। फूलों और झंडों से सजे त्रिशूल को लेकर भक्त यात्रा में आगे बढ़ते चले गए। जयकारों से माहौल शिवमय होता गया। पुंछ के इलाकों और गलियों से गुजरती हुई त्रिशूल यात्रा कॉलेज ग्राउंड पहुंची, जहां यात्रा के लिए बेस कैंप बनाया गया है। ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है। अमरनाथ की तरह ही इस यात्रा में धार्मिक सद्भाव साफ नजर आता है। अगले 10 दिनों तक पुंछ का ये इलाका शिव की भक्ति से सराबोर रहेगा। घाटी में हर हर महादेव का जय घोष होगा। जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। हालांकि 90 के दशक में आतंकवाद और सीमा पार से लगातार होने वाली गोलाबारी के चलते ये महान यात्रा रुक गई थी, लेकिन पिछले 21 सालों से इस यात्रा को लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु पूरे जोश के साथ शामिल होते हैं। यात्रियों का पहला जत्था जब पुंछ में बेस कैंप पर पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। देखिए,

0: हम बोले कि जयघोष के साथ आज जो यात्रा का पहला जत्था यहाँ पुंछ में पहुंचा और पुंछ में ये महामूर्ति का एक यहाँ पे पूजा अर्चना की गई। ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जो पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ बम बोले के नारे से और यहाँ पुंछ में आज कई यूपी से कोई हरियाणा से कोई गुजरात से यहाँ यात्रु आए हुए
1: बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा की है, वो बहुत अच्छी है। रास्ते में भी हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिली और हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी हम आज पहली बार आए हैं और आगे भी हमारी इच्छा हो रही है यहाँ सबकी सुविधा अच्छी देख के।
0: यहाँ हजारों की तादाद में लोग यहाँ पूरा अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं। हम कुछ स्थानीय लोग हैं वहाँ पे जयपुर के रहने वाले, उनसे हम बात करना चाहते हैं। सर आपका नाम?
2: सर मेरा नाम जटा शंकर अग्रवाल है, मैं जयपुर राजस्थान मानसरोवर से आया हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी 200 आदमी आए हैं।
3: हम ये कहना चाहते हैं कि जगदानंद बाबा के हम कुंज में आए हैं, जो व्यवस्था पहले थी अब किधर रही है, तो हम चाहते हैं किससे ज्यादा वोट लाना चाहते।
4: जयपुर से हमारे 656 लोग आए हैं, यात्री आए हैं और पूरे राजस्थान से करीब 4,000-5,000 के लगभग संख्या में जो यात्री आए हैं। पहले की बजाय अब की बार हम निर्भय होकर यात्रा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का भय नहीं है।
0: हजारों की संख्या में ये लोग आए वहाँ से और इन लोगों का ये कहना है कि 370 और 35 का हटना, उससे ये लगता है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मंजीत सिंह,
5: देखिए बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि आस्था, विश्वास और शक्ति का वो सफर है जिसकी अलग आध्यात्मिक अनुभूति है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्तों के लिए ये यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। जो लोग किसी वजह से पवित्र अमरनाथ गुफा में हिमलिंग के दर्शन नहीं कर पाते, उनके लिए बाबा चट्टानी के दर्शन का अवसर होता है। आपको बता दें कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ से जुड़ी आस्था की कहानी सतयुग में रावण के दादा यानी ऋषि पुलस्त से जुड़ी हुई है, लेकिन मान्यता यह है कि जम्मू कश्मीर की रानी यानी चंद्रिका ने भगवान शिव को यहां बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा था। क्या है कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: अद्भुत है भगवान शिव के दोनों धाम, कश्मीर में बाबा बर्फानी है तो यहाँ जम्मू में बाबा चट्टानी। अमरनाथ में बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग तो यहाँ पुंछ में सफेद चमचम शिवलिंग। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन चढ़ाई है तो बाबा चट्टानी तक पहुँचना आसान। अमरनाथ की लंबी चली यात्रा के बाद अब 10 दिनों तक बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन की होड़ है। जैसा पावन धाम वैसी पुरानी इसकी कहानी, जो शुरू हुई सतयुग से। कहते हैं सतयुग में एक दिन जब महर्षि पुलस्त्य ध्यान में बैठे थे तो उन्हें बोध हुआ कि पांचाल पहाड़ी में वो जगह मौजूद है जहां भगवान शिव ने पहली बार देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। पुलस्त्य इस जगह पर पहुंचे और छोटी सी गुफा में घोर तप शुरू किया। तब से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। पुलस्त्य ने कहा कि जहां आपके दर्शन हुए हैं उसे ऐसा धार्मिक महत्व प्रदान करें कि युगों युगों तक आपके भक्त यहां आते रहें। इसके बाद भगवान शिव अदृश्य हुए तो एक चट्टान की गुफा में भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जिसकी बनावट चट्टान जैसी थी। इसके बाद पुलस्त्य ऋषि ने यहां वर्षों तप किया। कहते हैं इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र का नाम पुलस्त्य नगरी पड़ गया जो अपभ्रंश होते होते पुंछ हो गया। इसी वजह से श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के साथ बहने वाली नदी का नाम पुलस्त्य गंगा पड़ा, जिसे आज भी पाप नाशनी गंगा मानकर हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं और हर साल बड़ी तादाद में भोले के भक्त अपनी आराध्य का आशीर्वाद पाने यहाँ आते हैं।
1: पहली बार आए हैं, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है।
2: अरेंजमेंट कैसे लगे आपको?
1: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा।
3: बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का विषय है आज कि हम प्रतिवर्ष ये साहसिक यात्रा करते हैं। ये यात्रा अलग अलग प्रांत की प्रतिदिन निकलती है। आज पहला जत्था मध्य भारत प्रांत और हमारे दो तीन प्रांतों का इकट्ठा होकर निकल रहा है। ये 27 तारीख तक यात्रा लगातार चलेगी। अलग अलग प्रांतों के लोग इस यात्रा में प्रतिदिन सहभागी बनेंगे।
2: अरेंजमेंट कैसे लगे यहाँ?
3: बहुत शानदार, बहुत उत्तम अरेंजमेंट है।
0: चट्टान जैसे शिवलिंग की वजह से नाम पड़ा बाबा चट्टानी, लेकिन बाबा बूढ़ा अमरनाथ नाम पड़ने की कथा बड़ी ही दिलचस्प है। कहते हैं करीब 2000 साल पहले पुंछ जिले का गांव लोरन तब के जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी थी, जिस पर उस समय रानी चंद्रिका का शासन था। रामकाज में निपुण रानी चंद्रिका अत्यंत दयालु एवं शिव भक्त थी, जो हर साल सावन में अमरनाथ गुफा में हिमलिंग की पूजा करने के बाद व्रत तोड़ती थी। लेकिन एक साल मौसम खराब होने से अमरनाथ जाने के सभी मार्ग बंद हो गए। ये सोच कर कि किसी भूल से भोलेनाथ रुष्ट हैं, रानी ने अन्न जल त्याग दिया और बीमार हो गए। कहते हैं एक दोपहर रानी ने सपने में एक बूढ़े साधु को देखा जिन्होंने रानी से उसके महल के 10 मील दूरी पर मौजूद शिव का लुप्त स्थान पर पूजा करने को कहा। इसके ठीक बाद श्वेत कपड़ों में एक साधु ने रानी को दर्शन दिए और अपने साथ उस गुफा तक लेकर आए जिसमें 4 द्वार बने थे। मंदिर सामने आते ही बूढ़े साधु गायब हो गए और इसके बाद रानी ने उन्हें बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा, जो प्रचलित हो गया।
4: थोजत जिला से प्रथम बार ऐसा हुआ है कि हम 95 की संख्या के अंदर हम यात्री यहां पहुंचे हैं और जितने भी राजस्थान के विभिन्न राज्य और भी राज्य है वहां से भी बहुत सारी संख्या के अंदर इतने उत्साह से लोग आए हैं यहां पे। जो उनके मन में जो उनके उत्साह है वो यहां उत्साह आज देखने को मिल रहा है कि विभिन्न राज्य के जो लोग हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे अरेंजमेंट्स सब उच्च स्तर के अरेंजमेंट्स है जिसके अंदर अभी प्रथम वर्ष ऐसा हुआ है कि पूरा इसमें सिस्टम डिजिटल कर दिया है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, अभी ऑनलाइन सिस्टम करने से अधिक सुलभता हो गई है। जो भी यात्री है अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आप जो भी संगठन के है वो आपको संपर्क कर लेंगे।
5: सबके अंदर बहुत अच्छी भावना है, श्रद्धालु सारे और बहुत भक्ति भाव से भरे हैं और अमरनाथ बाबा की यात्रा के लिए सब रवाना हुए हैं और सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है।
6: लोगों में बहुत उत्साह है। जैसे बर्फानी बाबा की यात्रा शुरू की थी तो 2005 से लेकर इस यात्रा को आरंभ किया गया है तो अभी एक विशाल वट वृक्ष के रूप में काफी संख्या में लोग यहाँ आना आरंभ हो गए हैं और आने वाले समय में जैसे बर्फानी बाबा में जाते हैं वैसे ही लोग इस यात्रा में जाना आरंभ कर लेंगे, जिसका प्रतिरूप अभी आप देख ही रहे हैं आपके सामने। कम से कम 60-70 हजार लोग इस वर्ष जाएंगे इन 7 दिनों में। अलग अलग प्रांत से अलग अलग की सारणी बनाई हुई है, वो अलग अलग आ रहे हैं।
0: कहते हैं स्वयं भगवान शिव द्वारा दिखाया गया ये स्थान सैकड़ों वर्षों के बाद भी एक बार फिर अदृश्य हो गया था, जिसे दक्षिण भारत के एक साधु स्वामी चंद्रचूड़ मुनि ने उजागर कर वर्षों तक यहां तप किया था। इस मंदिर के साथ ही पूर्व दिशा में स्वामी चंद्रचूड़ मुनि की समाधि भी बनाई गई है। सावन में कुल 12 दिनों तक बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा चलती है और श्रद्धालु दर्शन करते हैं, लेकिन इस दर्शन पूजन के साथ ही जुड़ी है पवित्र छड़ी यात्रा, जो पुंछ के दश नामी अखाड़े से निकलती है और बड़े ही धूमधाम से बूढ़ा अमरनाथ मंदिर तक जाती है। सीमा सुरक्षा बल, मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा छड़ी का स्वागत कर उसे आदर सहित मंदिर प्रांगण में ले जाया जाता है। पुलिस द्वारा छड़ी को सलामी दी जाती है और फिर छड़ी को बूढ़े अमरनाथ शिवलिंग पर स्थापित किया जाता है, जो रक्षाबंधन के एक दिन बाद तक विराजमान रहती है। इस छड़ी यात्रा के साथ ही मंदिर में 3 दिवस

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात करेंगे मौसम की। देखिए, कई दिनों से उमस और चिपचिपे मौसम ने दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक के लोगों को परेशान कर रखा है। हाल ये है कि घर से बाहर निकलते ही पसीना और बेचैनी दोनों साथ में महसूस हो रहे हैं, लेकिन अब इस उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर निकल कर आई। उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से अब सूखी हवाओं ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और इन हवाओं के असर से मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों में बदलता हुआ नजर आ सकता है।

0: कहते हैं हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी मौसम की ताल पर थिरकती है। मानसून पूरे देश को जी भर कर भिगो रहा है, तो वहीं जैसे जैसे अगस्त गुजर रहा है, बरसते बादल बारिश की भरपाई भी कर रहे हैं। खबर ये है कि बादलों की आवाजाही के बीच मौसम फिर से चाल बदलने वाला है। बारिश के बाद जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, अब उस उमस के विदाई की गुड न्यूज आने वाली है। हवा की बदली चाल के बीच उम्मीद तो यही है कि अगले दो दिन दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा के लोगों को उमस से कुछ राहत मिल सकती है। उमस से राहत का ये सीन यूं ही नहीं बना है। हाल फिलहाल हवाओं ने रुख बदला है और उत्तर पश्चिम से आ रही सूखी हवाओं ने नमी को कम कर दिया है। लिहाजा और जैसे जैसे नमी घट रही है, वैसे वैसे चिपचिपी गर्मी का असर भी कम हो रहा है। मौसम में इस बदलाव के पीछे मॉनसून ट्रफ भी एक वजह बताई जा रही है। मॉनसून ट्रफ अब हिमालय की तलहटी की तरफ खिसक गया है और इसी के साथ बारिश का पैटर्न भी बदल गया है। फिलहाल मॉनसून की मेहरबानी पूर्वी और मध्य भारत पर ज्यादा है, जबकि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में आसमान अपेक्षाकृत साफ है। एक दिन पहले की सैटेलाइट तस्वीरें भी मौसम का बदला रुख बयां कर रही है। पूर्वी यूपी से बिहार और बंगाल की खाड़ी तक मानसूनी बादलों की आवाजाही है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में बादलों की मौजूदगी कम है। आज की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में बारिश के आसार कम है। हालांकि कुछ इलाकों में शाम के वक्त हल्की फुल्की और छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन बादलों का खेल अभी थमा रही है क्योंकि मानसून कब करवट ले ले कहा नहीं जा सकता। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 20 अगस्त के बीच बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके असर से मॉनसून ट्रफ दोबारा दक्षिण की ओर खिसक सकता है और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर फिर लौट सकता है। फिलहाल अभी के लिए खबर इतनी है कि जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, उस उमस के गुजरने का दौर शुरू हो चुका है। सूखी हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी वजह से मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। लेकिन मानसून ने अभी मैदान छोड़ा नहीं है, उसकी अगली करवट जल्द फिर से बारिश की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने रद्द की जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2014 के बाद की भर्तियों की होगी सीआईडी जांच। वाराणसी पे छत पर शुरू हुई मां गंगा की आरती, बढ़ते जल स्तर के चलते लिया गया फैसला, 7 अर्चकों ने विधिवत की आरती। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में दिखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। बाहर से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम मुंबई में भी जमकर बरसे बरदा। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी जोरदार आगाज।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई बाबा बूढ़ानाथ अमरनाथ यात्रा, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
7: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अब ऑटो और ई रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्ग पुलिस ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत सड़कों पर चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा में QR कोड लगाए जाएंगे। इसके लिए ऑटो रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्रत्येक ऑटो और ई रिक्शा को एक QR कोड उपलब्ध कराया जाएगा। इस QR कोड के जरिए वाहन और उसके चालक से संबंधित आवश्यक जानकारी पुलिस के पास सुरक्षित रहेगी। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंचे और पूरे उत्साह, श्रद्धा और धार्मिक आस्था के साथ इस पवित्र यात्रा में शामिल हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के यात्री निवास से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना के जवानों की तैनाती की गई है। अब पंजाब के लोगों को पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए गोवा जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बन चुके पठानकोट के रावी दरिया पर बने डैम की चमरोड़ झील में अब ये सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। मिनी गोवा के नाम से मशहूर यहां के चमरोड़ में सैलानियों के लिए पैरासेलिंग की सुविधा शुरू की गई है। जयपुर के ऐतिहासिक गलता तीर्थ धाम में आस्था और भक्ति का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। गालव ऋषि की तपोस्थली गलता धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं का फूलों से खास अंदाज में स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से हुई इस पुष्प वर्षा के बीच श्रद्धालुओं ने जमकर जयकारे लगाए और पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया।
3: और अब बात गुरेज घाटी में खेल महोत्सव की। जम्मू कश्मीर के गुरेज में खेल इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने युवाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्थानीय लोगों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस ऐतिहासिक खेल महोत्सव का समापन पारंपरिक पोलो मैच के साथ हुआ। भारतीय सेना और स्थानीय सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में खेलों के साथ महिला भागीदारी, स्वच्छता अभियान और पौधारोपण जैसी सामुदायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

0: घाटी में घुड़सवारी, युवाओं की रेस, लड़कियों की एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ और ट्रॉफी उठाए खुशी से झूमते युवा, ये तस्वीरें कश्मीर घाटी में युवाओं का जोश और जज्बा बता रही हैं। ये बदलते कश्मीर की नई तस्वीर है। यहाँ के युवाओं में खेल के मैदान में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। युवाओं में जोश और जज्बे की ये तस्वीरें गुरेज घाटी से आई हैं, जहां इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। इसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का एक मंच मिला, जहां खेल के साथ साथ टीम वर्क, अनुशासन और आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। गुरेज में सेना की तरफ से खेल महोत्सव का ये आयोजन किया गया। इसमें आसपास के गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। खेल के मैदान में युवा खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया और पारंपरिक पोलो का मुकाबला इस खेल आयोजन का सबसे खास आकर्षण रहा, जहां घोड़ों की रफ्तार और खिलाड़ियों के शानदार तालमेल ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। गुरेज की पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक खेल भावना का ये संगम लोगों के लिए खास अनुभव रहा।
1: गुरेज में स्थानीय टीमों के बीच पोलो था। दरअसल गुरेज घाटी की अगर बात की जाए, यहाँ पर सदियों से पोलो खेला जा रहा है। ये अलग तरीके का पोलो है जो अंतर्राष्ट्रीय पोलो से अलग है, क्योंकि इसमें जो घोड़े इस्तेमाल होते हैं वो कम कद के होते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस भी अलग होती है। दरअसल लद्दाख क्षेत्र और गुरेज घाटी के साथ साथ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का पोलो खेला जाता है। भारतीय सेना को उम्मीद है कि यह रिवायती खेल यानी पोलो जो है उसको दोबारा सीमावर्ती इलाकों खासतौर से गुरेज घाटी में बहाल भी किया जाएगा और विकसित भी।
0: युवाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन ये आयोजन सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान और पौधारोपण जागरूकता की भी जानकारी दी गई।
1: भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज इलाके में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जो अब समाप्त हुआ है। इस विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद नियंत्रण रेखा पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए खेल की सुविधाएं न सिर्फ बढ़ाना, बल्कि साथ ही साथ उनके बीच में एक भावना खेल और मुकाबलों को लेकर पैदा करना।
2: गाँव की सफाई और प्लांटेशन का भी जो लक्ष्य रखा था कि कौन सा गाँव ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, उसमें भी इस बार नंबर वन पे आ गया है। तो हम इंडियन आर्मी की तरफ से और पूरे बगदौर ब्लॉक की तरफ से गाँव इस मार्ग को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हर प्रकार की खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लड़कियों के साथ साथ इनकी लड़कियों ने भी काफी गेम्स में मैदान मार लिया है।
0: भारतीय सेना की ओर से आयोजित इस खेल महोत्सव का मकसद गुरेज के युवाओं को खेलों और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है, ताकि युवा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपनी प्रतिभा को निखारें और भविष्य में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें।
3: इससे क्या है कि यहाँ के लोग काफी खुश हुए और या खासकर इसमें यहाँ की बच्चियों को मौका मिला अपने आप को आगे लाने के लिए।
0: दरअसल खेल से जुड़े ऐसे आयोजन घाटी के युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा पहचानने, उसे निखारने और बड़े मंच तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। खेलों के जरिए युवाओं को सकारात्मक दिशा मिल रही है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है और भविष्य की तैयारी का मौका भी मिल रहा है। इससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।
2: इंडियन आर्मी से यही रिक्वेस्ट है कि जो 1.0 इस साल हुआ है, तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को अपना टैलेंट शोकेस करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सके।
0: जाहिर है गुरेज घाटी में चले इस खेल महोत्सव में खेल के मैदान से लेकर स्वच्छता अभियान और पौधारोपण तक युवाओं को समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भी जोड़ा गया। ऐसे आयोजनों से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानने और निखारने का मौका भी मिलता है। जम्मू कश्मीर के गुरेज से अशरपानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि बारल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन खबरों को जो कि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। इनमें से कुछ खबरें ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगी और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: बॉल है जिसे सब तक पहुंचनी है, लेकिन एक एक कर जिसके हाथ में गेंद आएगी उसे अपने सामने वाले को पास करना है, लेकिन उछाल कर नहीं, जाकर उसके हाथों में सौंपना है, वो भी खास तरीके से। बच्चे जिस तरह से मेंढक की तरह कूद कूद कर अपना टास्क पूरा कर रहे हैं वो देखना दिलचस्प है। दाद तो देनी पड़ेगी, आसान नहीं है, पर देखिए कैसे जीत के लिए एक दूसरे का साथ दिया जा रहा है। संभवतः आटा है या फिर कोई पाउडर जैसी चीज, मुंह में फंसाए मोटे कागज पर बिना हाथ लगाए उठाना है और उसे अपने साथी को पास करना है। आखिरी छोर तक पहुंचने के बाद वही प्रक्रिया दोहराते हुए वापस लौटना है। अब पाउडर जैसी चीज को बिना हाथ लगाए संभालना आसान तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। जिस तालमेल और संतुलन के साथ सबने अपने अपने हिस्से का काम किया वो देखकर लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। यूं ही नहीं कहते कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। अब इन्हें ही देखिए, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, ना ही एक दूसरे की भाषा बोलते समझते हैं, लेकिन दोस्ती पक्की वाली लग रही है। जिस तरह से डॉगी और बतख रेस लगा रहे हैं उससे तो लगता है ये दोनों का नियमित खेल है। जो भी हो, दोनों की ये दोस्ती वाली दौड़ लोगों को खूब पसंद आ रही है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी हो जाए तो स्कूल में मन लगा रहता है। अब इन बच्चियों को ही देखिए कैसे एंजॉय कर रही हैं इस खेल को। वैसे ये जो कर रहे हैं वो देखने में बड़ा ही आसान सा स्टेप लग रहा है, पर जो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि अभ्यास तो इसके लिए भी चाहिए, वरना कदम गलत खांचे में भी पड़ सकता है और एक बार गलती हुई तो खेल से आउट। लेकिन ये बच्चियाँ होशियार हैं।
5: बात क्यों कर रहे थे?
0: सुना आपने, ये बस इन्हें ही बर्थडे में बुलाएंगे।
5: क्यों?
0: क्योंकि यही टीचर हैं जो इनको सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, इन्हें काम देती हैं। मतलब इस छोटी सी उम्र में भी इनको पता है कि अच्छे टीचर का मतलब क्या है। स्कूल पढ़ने ही तो आते हैं और यही वो टीचर हैं जो पढ़ाई के दौरान इन पर खास नजर रखती हैं। टीचर बार बार जताती हैं कि वो उससे प्यार नहीं करती।
5: मैं तो नहीं करती प्यार, जबरदस्ती प्यार करती हूँ,
0: बल्कि वो तो सभी बच्चों की तरह ही उसे ट्रीट करती है। इस पर बच्चा जिस तरह से रुआंसा होकर टीचर से अपनी बर्थडे में आने की रिक्वेस्ट करता है वो देखकर लोग उसकी मासूमियत पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।
5: मैं पूछ रही हूँ तो ढंग से बोलो, रो नहीं, मैं मारी हूँ कि रो रहे हो।
6: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र के FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, जो खाने पीने की खराब चीजों के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा में है। महाराष्ट्र FDA ने फिल्म स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस तीनों अभिनेताओं को विमल इलायची का विज्ञापन करने के लिए जारी किया गया है। FDA का आरोप है कि विमल इलायची विज्ञापन के जरिए राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक FDA ने 11 अगस्त को तीनों अभिनेताओं को नोटिस भेजकर विज्ञापन में उनकी भूमिका पर 15 दिन में जवाब मांगा है। FDA का कहना है कि विज्ञापन में विमल नाम, प्रोडक्ट और डायलॉग इस तरह इस्तेमाल किए गए हैं कि इससे विमल ब्रांड का प्रचार होता दिखता है। चूंकि विमल ब्रांड पान मसाला से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए FDA को शक है कि विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाले का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। ऐसे विज्ञापन को सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है, जिसमें किसी ऐसे प्रोडक्ट का सीधे विज्ञापन ना करके उसी ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट का विज्ञापन किया जाता है जिस पर रोक लगी है। महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटिन वाले गुटखा और पान मसाला पर 2012 से रोक है। ये रोक हर साल बढ़ाई जाती है। महाराष्ट्र में अभी ये रोक 13 जुलाई 2026 से एक साल के लिए लागू है। इसके तहत राज्य में पान मसाला बनाने, रखने, लाने, ले जाने और बेचने पर पाबंदी है। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संगठित गुटखा और तंबाकू नेटवर्क के मामले में पुलिस के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई की जाए। एक पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था कि अगर किसी तरह का कोई प्रोडक्ट लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है तो सरकार को उसे तुरंत बैन कर देना चाहिए। जाहिर है ये मुद्दा आम लोगों की सेहत से जुड़ा है। ऐसे में फिल्मी सितारों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल जनता का हित देखकर करें। इस मामले पर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
7: नहीं करनी चाहिए, मतलब फिर लाइक लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कहीं ना कहीं, लाइक ऐसे बस लोग बोल देते हैं कि मूवी ही है, बट लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, हर कोई इतना एजुकेटेड नहीं होता, तो लाइक वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखते हैं कुछ भी करते हुए तो वो फॉलो करते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए, ऐसे मॉरली गलत है वो चीज़, तो नहीं ही करना चाहिए।
8: आई थिंक उन्हें इस चीज़ की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए, क्योंकि मेनी पीपल स्पेशली यंगस्टर्स लुक अप टू देम, तो चाहे इवन दो उन्हें पता हो कि ये चीज़ ख़राब है, बट अगर वो उनको उनके लिए वो आइडल्स हैं या इफ दे आर लुकिंग अप टू देम, तो ऑफकोर्स वो चीज़ से इंस्पायर होंगे या उस चीज़ से मोटिवेट होंगे कि हमें ऐसा बनना है तो हमें भी ये सब करना पड़ेगा। तो आई थिंक उनकी भी यहाँ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि वो अकाउंटेबिलिटी लें और ऐसी चीज़ें प्रमोट ना करें।
9: मैं तो मानूंगा कि मतलब हर किसी की लाइफ में स्टूडेंट या बड़े भी जो एक्टर्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, मतलब लोग उन्हें कुछ तो भगवान मानते हैं, बहुत मतलब अलग अलग फैन बेसिस है, तो उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ हमें बहुत लोग देखते हैं, तो हमें कुछ अच्छी चीज़ प्रमोट करें जिससे वेलफेयर हो पब्लिक का और प्रोग्रेस करे पूरी कंट्री एज अ होल। तो या मैं तो अगेंस्ट हूँ पूरा, जो भी ऐसे उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए और देन उन्हें अपना डिसीजन मेक करना चाहिए।
10: देखिए ये सेलिब्रिटी एक अलग चीज़ है, पिक्चरों में आते किस भी आते हैं आप लोग, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, आगे आपके प्रपोजल भी मिलते हैं, बहुत बड़ा लेकिन नाम भी होता है सोसाइटी में, भाई फलाना हीरो की फलानी फिल्म अच्छी है। बाकी रही अगर ये कोई ब्रांड चल रहा है तम्बाकू का वगैरह का, ये किस इसके लिए, तो वो भी आप किस भी होते, वो इसलिए होते हैं कि तम्बाकू है, तम्बाकू में क्या गवर्नमेंट का भी तो रेवन्यू मिलता ही है ना, तो आपको भी आपको सजेशन क्या, वो तो गवर्नमेंट जानती है कैसा करना है क्या नहीं करना, क्या बैन करना है ये क्या नहीं करना, तो वो तो गवर्नमेंट के ऊपर वाली बात है, तो आप दैट नॉट सजेशन। तो जबकि पैसा आप कमाते हैं, गवर्नमेंट भी कमाती है, एक्साइज ड्यूटी आती है, GST आता है, तो बहुत सी उसका काफ़ी बेनिफिट प्रॉफिट होती है।
4: खराब सड़क पर गाड़ी चलाते हुए गुस्सा तो हम सभी को आ जाता है, कहीं गड्ढा बचाने के चक्कर में गाड़ी डगमगाती है तो कहीं ये गड्ढे हादसे की वजह बन जाते हैं, लेकिन गुस्सा करने के बाद हम अक्सर यही सोचकर चुप हो जाते हैं कि आखिर हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने इसी सोच को बदलने की कोशिश की और उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो कि सड़क के गड्ढों को खुद पहचान सकता है और जिम्मेदार या फिर लापरवाह तक आपको पहुंचा सकता है, यानी कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर जिम्मेदार व्यक्ति तक गड्ढों की जानकारी पहुंचाने का काम काफी आसान हो गया है।

0: सड़कों पर ये गड्ढे अखिल भारतीय समस्या बन चुके हैं। ये गड्ढे न केवल आपका सफर बर्बाद करते हैं बल्कि गाड़ियों को खासा नुकसान भी पहुंचाते हैं। और फिर शुरू होती है शिकायतों की कभी न खत्म होने वाली कथा, जिसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने समस्या का एक गजब का AI सॉल्यूशन खोज निकाला है। बेंगलुरु के इंजीनियर गौरव सेन ने ऐसा AI सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए न केवल गड्ढों की पहचान संभव है बल्कि गड्ढों की मरम्मत के जिम्मेदारों तक पहुंचना भी आसान हो गया है। दरअसल ये सिस्टम सड़क पर चलते हुए गड्ढों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करता है। कार में लगे डैश कैम, GPS और एक्सेलेरोमीटर से सड़क की जानकारी जुटाई जाती है, जिसके बाद AI विजन मॉडल तस्वीरों और वीडियो को स्कैन करके अलग अलग आकार के गड्ढों की पहचान करता है। खास बात यह कि सिस्टम उन गड्ढों को भी पहचान सकता है जिन्हें दूर से देखना मुश्किल हो, क्योंकि कई बार सड़क का गड्ढा स्पीड ब्रेकर जैसा दिखाई देता है। गौरव सेन ने कोडेक्स की मदद से ये ऐप तैयार किया है जो इस पूरे डेटा को रिकॉर्ड करके OpenAI तक भेजता है। लेकिन कहानी सिर्फ गड्ढे की पहचान तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल होता है, गड्ढा मिला है तो इसे ठीक कौन करेगा? इसके लिए ऐप को करीब 2900 सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स से जोड़ा गया। सिस्टम सड़क के किसी खास हिस्से की पहचान करके ये पता लगा सकता है कि उस सड़क का ठेका किस कंपनी या ठेकेदार के पास है। यानी अगर कोई सड़क वारंटी पीरियड में है तो ठेकेदार को बिना सरकार पर अतिरिक्त खर्च डाले सड़क की मरम्मत करनी पड़ सकती है। और ये पूरा रिकॉर्ड महज 4 सेकंड में तैयार हो सकता है, जिसमें गड्ढे की तस्वीर, उसकी सटीक लोकेशन, टेंडर नंबर और सड़क से जुड़े अधिकारी की जानकारी शामिल होती है। गौरव ने इस सिस्टम का टेस्ट ऑफिस जाते वक्त किया। एक सफर में AI ने उनकी राह में मौजूद 12 गड्ढों को पहचान लिया। गौरव सेन का ये प्रयोग अब बेंगलुरु से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। लोग गौरव के इस AI मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ यूजर उसे ऐसा ऐप बता रहे हैं जो समस्या के साथ आपको सही समाधान तक ले जाता है। सड़क के गड्ढों के लिए AI से खोजा गया ये सॉल्यूशन बड़े काम का हो सकता है, क्योंकि देश में हर साल सड़क दुर्घटना में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनकी बड़ी वजह सड़क के गड्ढे भी होते हैं। हाल ही में लोकसभा में सड़क परिवहन मंत्रालय से सड़क हादसों को लेकर सवाल पूछे गए थे। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने जो जवाब दिया है वो वाकई चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों के आंकड़ों के आधार पर बताया कि हर साल सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही ये जानकारी भी दी कि किस उम्र के लोग सड़क पर बने गड्ढों के कारण सबसे ज्यादा हादसों का शिकार हो रहे हैं। इन आंकड़ों में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले 25 से 35 साल के लोग होते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में गड्ढों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 53% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में जहां 3,564 लोगों की मौत सड़कों पर बने गड्ढे की वजह से हुई, वहीं साल 2021 में 3,625 लोगों की मौत का जिम्मेदार सड़क के गड्ढे बने। वहीं साल 2022 में 4,446 लोगों की मौत सड़क पर बने गड्ढे की वजह से हुई। इनमें से 54% से ज्यादा मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में हुई, जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बनकर उभरा है। मंत्रालय को सौंपी गई राज्य पुलिस रिपोर्ट से लिए गए डेटा से पता चला कि आंध्र प्रदेश, बिहार और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने 5 साल के समय में गड्ढों से जुड़ी कोई दुर्घटना या मौत की सूचना नहीं दी। ये आंकड़ा ये भी दिखाता है कि साल दर साल सड़क पर बने गड्ढों की वजह से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन उन आंकड़ों में कमी नहीं आ रही। उल्टा हर गुजरते साल के साथ ही आंकड़ा बढ़ ही रहा है, जो मौजूदा सरकारों, प्रशासन और स्थानीय विभागों के लापरवाह रवैया को भी दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आपने ChatGPT से सवाल पूछे होंगे, जवाब भी तलाशे होंगे, लेकिन क्या कभी अपनी खोई हुई चप्पलें भी ChatGPT से ढूंढवाई है? सुनकर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन भारत में ऐसा ही एक दिलचस्प मामला सामने आया है। एक शख्स मंदिर गया था, पूजा की और बाहर आया तो उसकी चप्पलें गायब थी। सामने चप्पल जूतों का ऐसा ढेर लगा था कि अपनी चप्पल पहचानना भी किसी मिशन से कम नहीं लग रहा था। लेकिन जनाब ने हार नहीं मानी, सीधे ChatGPT की मदद ली और फिर क्या हुआ देखिए।
2: अगर आप मंदिर जाएं और आपके फुटवेयर न मिले तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार AI ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि अब वहां से आपको अपने फुटवेयर ढूंढने में मदद जरूर मिलेगी। दरअसल शुभांग बोरकर वो शख्स है जिन्होंने AI की मदद से ऐसा कर भी दिखाया है। ये AI वाली ट्रिक शुभांग के खोए फुटवेयर ढूंढने में खूब मददगार साबित हुई है। शुभांग ने मिनटों में AI की मदद से अपने जूते ढूंढ निकाले। गोवा बेस्ड शुभांग बोरकर पेशे से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं। उन्होंने दरअसल उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर से ये वीडियो शूट किया, जिसमें जहां नजर डालिए जूते चप्पल ही दिख रहे हैं। जाहिर है इन फुटवेयर में से अपने वाला पहचानना शुभांग के लिए इतना आसान टास्क नहीं था। वो एक एक करके फुटवेयर देखते, तब जाकर उनको अपना फुटवेयर मिलता। लेकिन देखिए चैट जीपीटी का कमाल, जिसकी मदद से शुभांग ने फुटवेयर्स की भीड़ में अपने वाला क्लॉग्स ढूंढ ही निकाला। शुभांग ने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो का नाम यूज्ड चैट जीपीटी टू फाइंड माय लॉस्ट क्लॉग्स रखा। इसके लिए सबसे पहले मंदिर के बाहर जहां जूते चप्पल रखे थे, वहां से रैक और फुटवेयर एरिया की तस्वीरें ली। इसके बाद शुभांग ने अपने फुटवेयर क्लॉग्स की तस्वीर चैट जीपीटी पर अपलोड की। शुभांग ने एआई से वो तस्वीर देखकर उनकी जोड़ी पहचानने में मदद करने और फिर फुटवेयर के बीच उनके क्लॉग्स को ढूंढने के लिए कहा। हालांकि एक तस्वीर से बात साफ नहीं हुई तो शुभांग ने फुटवेयर एरिया के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। वो एक के बाद एक तस्वीरें चैट जीपीटी को भेजते रहे, जिनमें सैकड़ों जूते चप्पल दिखाई दे रहे थे। चैट जीपीटी ने तस्वीरों को देखकर उनमें मौजूद जोड़ियों को शुभांग की भेजी हुई क्लॉग्स की तस्वीर से मिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे अपनी खोई हुई चप्पल ढूंढने का ये मामला एक छोटे से रियल वर्ल्ड एआई एक्सपेरिमेंट जैसा बन गया। कई तस्वीरें देखने और उनका विश्लेषण करने के बाद चैट जीपीटी ने एक ऐसी जोड़ी की तरफ इशारा किया जो शुभांग के क्लॉक से मिलती जुलती दिखाई दी। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर फुटवेयर खोजने की शुभांग की ये एआई ट्रिक लोगों को पसंद भी आ रही है। यानी जिस क्लॉक्स को शुभांग खुद सैकड़ों जूते चप्पलों के बीच तलाश रहे थे, उसे उनके साथी बने एआई ने ढूंढ निकाला। यानी इस काम में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किसी बड़ी रिसर्च या तकनीकी काम में नहीं, बल्कि एक बेहद सामान्य सी परेशानी को सुलझाने में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और अब बात उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों को है। हम बात कर रहे हैं नमित मल्होत्रा की रामायण की। दो पार्ट में बन रही इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यानी कि फिल्म का पैमाना जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी है इसकी प्लानिंग भी। अब मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी कहानी, क्योंकि रामायण 6 नवम्बर को इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज होगी, जबकि भारत में दिवाली पर दस्तक देगी।
3: नया राजा

0: भारतीय सिनेमा के सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट में से एक रामायण, जिसके रिलीज से अरसे पहले ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, आम जन से लेकर खास तक, समाज के हर तबके, हर वर्ग तक रामायण पहुंच पाए, इसके लिए मेकर्स एक खास प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं।
1: जब जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की।
0: मेकर्स की प्लानिंग का एक ही अहम हिस्सा है फिल्म के रिलीज डेट। रामायण पार्ट 1 दीपावली पर रिलीज होनी है, ये तय है, लेकिन किस तारीख को रिलीज होगी ये अब तक पुख्ता तौर पर तय नहीं था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में रामायण की रिलीज डेट 30 अक्टूबर बताई जा रही थी, लेकिन कन्फर्म कुछ भी नहीं था।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार।
0: अब रामायण के मेकर्स ने काफी सोच समझकर रामायण की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है।
2: निर्णय मैं ले चुका हूं, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
3: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास।
0: 6 नवंबर यानी दिवाली से 2 दिन पहले रामायण पार्ट 1 वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। इससे मेकर्स को 2 हफ्ते का दमदार रिलीज पैसेज मिलने जा रहा है। इसे जानने के लिए इस तारीख की क्रोनोलॉजी समझनी होगी।
3: एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।
0: 6 नवंबर को शुक्रवार है और इसी दिन धनतेरस भी है। 7 नवंबर को शनिवार है यानी वीकेंड, छुट्टी का दिन होने से इसे भरपूर दर्शक भी मिलेंगे। 8 नवंबर को रविवार है और दीपावली भी है, जिसका फायदा फिल्म को फैमिली ऑडियंस के तौर पर मिल सकता है। 9 नवंबर को सोमवार है। 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, कई दफ्तरों में उस दिन छुट्टी होती है। और 11 नवंबर यानी बुधवार को भाई दूज का त्योहार है। 13 नवंबर यानी शुक्रवार से दूसरे हफ्ते से वीकेंड शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि रामायण को न सिर्फ बम्पर ओपनिंग मिल पाएगी बल्कि 2 दमदार वीकेंड भी, यानी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए अच्छा खासा वक्त मिलने जा रहा है।
3: सूर्पनखा, वो मोहित हो गई है आप पे।
4: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूर्पनखा।
0: हालांकि ओवरसीज में रामायण की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। 5 नवंबर हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो रिलीज होगी, मतलब 6 नवंबर को इसका सामना रामायण से होगा। गॉडजिला एक पॉपुलर फ्रेंचाइज है, इसलिए रामायण को क्लैश झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत में रामायण को एक छत्र राज मिल सकेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने रद्द की जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2014 के बाद की भर्तियों की होगी सीआईडी जांच। वाराणसी पे छत पर शुरू हुई मां गंगा की आरती, बढ़ते जल स्तर के चलते लिया गया फैसला, 7 अर्चकों ने विधिवत की आरती। जयपुर के कलता तीर्थ धाम में दिखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है कलता धाम। बाहर से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम मुंबई में भी जमकर बरसे बरदा। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी जोरदार आगाज़।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां बात कर रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर की घाटी में भोलेनाथ का जयकारा था, अब जम्मू की वादी में हर हर महादेव का जयघोष सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। सोमवार से शुरू हुई ये यात्रा 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक यूं ही चलेगी, जिसमें देखिए शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से शिवभक्त जो हैं जम्मू पहुंचने का जो उनका सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज आपको जम्मू से लेकर पुंछ तक इस यात्रा की भव्य तस्वीरें तमाम दिखाएंगे। बाबा चट्टानी के दर्शन करने के लिए निकले श्रद्धालुओं का जोश दिखाएंगे, कितना हाई नजर आ रहा है। इसके साथ ही बाबा बूढ़ा अमरनाथ का भव्य दरबार भी दिखाने जा रहे हैं। शिव का ये धाम कितना पुराना है, कितना खास है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको इस पावन धाम की अद्भुत कहानी भी बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के साथ। देखिए कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद अब जम्मू में बाबा चट्टानी के दर्शन करने की होड़ लगी हुई है। सिर्फ 12 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु जो हैं पहुंच रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के बाद सोमवार की सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना कर दिया और इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए।

0: एक बार फिर हर हर महादेव का नारा है, एक बार फिर अमरनाथ का बुलावा है।
1: बम भोले, बम बम भोले।
0: लेकिन मंजिल इस बार अमरनाथ की गुफा नहीं बल्कि बूढ़ा अमरनाथ धाम है। कुछ दिन पहले इसी जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए जत्थे निकले थे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्त उमड़े थे, पर इस दफा जम्मू से कारवां पुंछ के लिए जा रहा है, क्योंकि पुंछ जिले के मंडी तहसील के राजपुरा में मौजूद है बाबा चट्टानी का धाम यानी बूढ़ा अमरनाथ मंदिर।
2: 2005 आयोजित की जा रही यात्रा केवल पर्वतों और घाटियों को पार करने वाली यात्रा नहीं है, ये हमारे बाहरी पथ से कहीं अधिक हम सबके अंतर्मन की यात्रा है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये तीर्थ यात्रा स्वयं के भीतर स्थित चेतना को पहचानने की भी यात्रा है। यह पावन तीर्थ यात्रा भगवान शिव की ओर अग्रसर होने की भी यात्रा है, जो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थल की दिव्य ऊंचाइयों में विद्यमान है।
0: 17 अगस्त से ये यात्रा शुरू हुई है और 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक चलेगी, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू पहुंचने लगे हैं। भगवती नगर यानी यात्री निवास से सोमवार को जब पहला जत्था निकला तो शिव भक्तों का जोश देखने लायक था। पूजा पाठ के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को झंडा दिखाकर रवाना किया।
3: बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे थे, आज पहला जत्था बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का यहां से रवाना हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा यहां पर, जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया, इस पहले जत्थे को यहां से रवाना किया। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है उत्साहित होकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन था यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि कितना जो है वो उत्साह है यात्रियों के बीच। और ये बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जयघोष के साथ जो है वो यात्री यहाँ पर उत्साहित है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जत्था जो है वो रवाना हुआ है। और मैं इस तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि आप देखिएगा कि कितने उत्साहित हैं यात्री, और जय श्री राम के जयघोष के साथ जो है ये यात्रा रवाना हो रही है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मैं गोकुल से कहूंगा कि वो आगे आएंगे और आपको दिखाना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रा को जो है वो फ्लैग ऑफ किया है, और देखिएगा दूर दूर तक ये बसेस जो है वो अब यहाँ से रवाना हुई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के जो है वो दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना हुई है। और ख़ास तौर पर इस यात्रा का मकसद है कि पुंछ जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उसे देश के जो विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं वो वहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचे, क्योंकि 10 दिन की ये यात्रा रहती है। और इस पहले जत्थे का हर एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी ये यात्रा एंटर करेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका भव्य स्वागत होगा। जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन यहाँ पर, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के साथ कई टुकड़ियाँ जो है इस यात्रा की सुरक्षा में तैनात हैं, और जम्मू पुंछ हाईवे को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो रखा गया है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं, और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये पावन यात्रा जो है वो 10 दिन के लिए यानी आज 17 तारीख से लेके 28 तारीख तक जो है वो यात्रा ये चलेगी। और इस यात्रा में देश भर से आने वाले श्रद्धालु बेहद खुश है और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
0: धार्मिक परंपरा में बाबा चट्टानी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे अमर कथा से जुड़े पवित्र मार्ग का पहला पड़ाव माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने की शुरुआत यहीं से की थी, जो बाद में अमरनाथ गुफा में पूरी हुई थी। इसीलिए ये मंदिर केवल एक धाम नहीं बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक प्रवाह का हिस्सा है।
3: राहुल जी कहाँ से आए?
4: जयपुर से।
3: जयपुर से आए, कब से आ रहे बाबा की यात्रा?
4: 30 साल है साहब।
3: तो कैसा लग रहा है इस बार की व्यवस्था, ये सब चीज?
4: अपन ये चाहते हैं कि पूरा देश आए, और जो अपने महादेव जिनकी यहाँ पे स्थापना हुई थी किसी कारण से यहाँ पे वो लुप्त हो गए, जिनकी पूजा होना बिल्कुल बंद हो गई थी, जो आज यहाँ के किया है लोगों ने, जनता ने अपने देश के लिए, और उसको जागृत किया है। और आज यहाँ लाखों की तादाद के अंदर बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
0: जिसे देखने और महसूस करने के लिए हर साल हजारों हजार की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इस साल पहले जत्थे में मध्य भारत, कर्नाटक, जयपुर और जोधपुर के भक्त शामिल हुए और उनका जोश जबरदस्त है। जो श्रद्धालु पुंछ की इस यात्रा में शामिल होते हैं, उनका मकसद सिर्फ मंदिर दर्शन नहीं होता, बल्कि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के बीच ये यात्रा शिव अमरत्व और दिव्य रहस्य की एक सतत कथा है, जिसे समझना एक अद्वितीय अनुभव है। तभी तो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए शिव भक्त मस्त मगन होकर पहले जम्मू और फिर यहाँ से पुंछ की ओर निकल पड़े हैं। जम्मू से 244 किलोमीटर का सफर तय करके यात्री पहले पुंछ पहुंचेंगे और फिर पुंछ से धाम की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जिसे वो तय करेंगे।
3: पुंछ एक बॉर्डर का इलाका है, बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ क्षेत्र है और खास तौर पर पूरे देश भर से आने वाले यात्रियों का काफी उत्साहित रहते हैं पुंछ के लोग, उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार घुमाकर जो है वो दिखाएंगे, तो ये देखिएगा कि ये जोश और जो जज्बा है, ये जोश और जज्बा है, तो ये जज्बा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हम एक बस में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और खासा उत्साह है, और ये उत्साह साफ तौर पर दर्शाता है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है।
5: सेकंड बार आए हैं।
3: सेकंड बार, तो पहले से कितना बदलाव लग रहा है इस बार का?
5: काफी बदलाव है।
3: तो क्या क्या मैसेज रहेगा पूरे देश भर के लिए, आज दर्शनों के लिए जा रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के?
5: ये मैसेज रहेगा कि जो अन्य लोग नहीं आ पाए हैं वो भी आए और इस यात्रा का हिस्सा बने और बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करें।
3: ठीक है सर, कहाँ से आए?
6: हम मध्य भारत प्रांत से आए हैं, भोपाल के पास में बुधनी जिला है, और मैं दूसरी बार आया हूँ। यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था, यहाँ के स्थानीय लोगों की व्यवस्था, संगठन की व्यवस्था बहुत ही उच्च क्वालिटी की व्यवस्था है।
0: जिस तरह बाबा बर्फानी का दरबार हिमालय के ऊंचे शिखर पर मौजूद प्राकृतिक गुफा में है, ठीक उसी तरह से बाबा चट्टानी पीर पंजाल श्रेणी में मौजूद बेहद खूबसूरत जगह पर मौजूद है। हाँ, ये जरूर है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए ऊंची चढ़ाई नहीं है, लेकिन इस यात्रा में घाटी भी है और जलधारा भी, पहाड़ और पुलस्ता नदी मिलकर एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक शांति देते हैं। तभी तो जो एक बार बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए आता है वो बार बार आता है।
7: आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे पुंछ में एक जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा शुरू होने वाली है, उसी कड़ी में यहाँ पे हमारे स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी की याद में यहाँ पे एक भव्य त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है, जो बिल्कुल एक LOC पे हमारा नवग्रह मंदिर है वहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे यात्रा ग्राउंड, जिसको कॉलेज ग्राउंड बोलते हैं, यहाँ पे आती है। यहाँ पे विधिवत पूर्वक यहाँ पे त्रिशूल का यहाँ पे पूजन होता है और जो पूरे भारतवर्ष से यात्री आते हैं वो इसी त्रिशूल का पूजन करते हैं और उसके बाद वो बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। ये आज त्रिशूल यात्रा का महत्व ये है कि ये हमारे जो स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी थे, जिनका हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने बहुत बड़ा इसे हमारी यात्रा में योगदान दिया था, ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने यात्रा शुरू की थी। और आज आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ बिना मजमो मिलत सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आए हुए और इस यात्रा में शामिल हुए।
8: ये जो त्रिशूल यात्रा है, आपको पता है हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब यहाँ आती है उससे एक दिन पहले ये जो त्रिशूल यात्रा है ये नवग्रह मंदिर अजोट जो कि देरिया में है वहाँ से निकलती है और यात्रा ग्राउंड तक पहुँचती है। आपने देखा होगा भोले का जो त्रिशूल है ये एक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो हमारे पुंछ के वासी हैं, खास करके बिना मजहब मिलत हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पहुँचता है और ये खास करके एक तरह से आयोजन होता है बाबा बूढ़ा अमरनाथ से पहले कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आ रही है, जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए सारे पुंछ वासियों को, जिस तरह से वो वेलकम करने के लिए हर बार यात्रियों को यहाँ पहुँचते हैं।
0: पहाड़ी नदी का जल है भजन और भगवा ध्वज और इन सब के साथ शिव भक्तों की श्रद्धा, ये सब मिलकर बूढ़ा अमरनाथ धाम को एक जीवंत धार्मिक अनुभव बना देते हैं और खासकर सावन में अनगिनत श्रद्धालुओं और संतों की मौजूदगी से धाम शिवमय हो जाता है।
1: बोले,
0: इस साल भी बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए यात्रा शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे मार्ग पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। यात्रियों का जत्था सुरक्षा घेरे में धाम तक पहुंचाएगा और वापस आएगा। पूरे रास्ते आवास, भोजन और दूसरी तमाम सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की तादाद हर साल बढ़ रही है। जो लोग किसी वजह से अमरनाथ गुफा नहीं जा पाते, वो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसकी वजह ये भी है कि ये यात्रा आसान है, और दूसरी अहम बात ये कि इसकी अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा है, जिससे लोगों की गहरी आस्था भी जुड़ी है। हर साल वार्षिक बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से एक दिन पहले त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी LOC पर मौजूद नवग्रह मंदिर में त्रिशूल यात्रा की शुरुआत हुई। पूजा पाठ के बाद मंत्रोच्चार के साथ एक विशाल त्रिशूल को लिए शिव भक्त चल पड़े। फूलों और झंडों से सजे त्रिशूल को लेकर भक्त यात्रा में आगे बढ़ते चले गए। जयकारों से माहौल शिवमय होता गया। पुंछ के इलाकों और गलियों से गुजरती हुई त्रिशूल यात्रा कॉलेज ग्राउंड पहुंची, जहां यात्रा के लिए बेस कैंप बनाया गया है। ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है। अमरनाथ की तरह ही इस यात्रा में धार्मिक सद्भाव साफ नजर आता है। अगले 10 दिनों तक पुंछ का ये इलाका शिव की भक्ति से सराबोर रहेगा। घाटी में हर हर महादेव का जय घोष होगा। जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। हालांकि 90 के दशक में आतंकवाद और सीमा पार से लगातार होने वाली गोलाबारी के चलते ये महान यात्रा रुक गई थी, लेकिन पिछले 21 सालों से इस यात्रा को लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु पूरे जोश के साथ शामिल होते हैं। यात्रियों का पहला जत्था जब पुंछ में बेस कैंप पर पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। देखिए,

0: हम बोले कि जयघोष के साथ आज जो यात्रा का पहला जत्था यहाँ पुंछ में पहुंचा और पुंछ में ये महामूर्ति का एक यहाँ पे पूजा अर्चना की गई। ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जो पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ बम बम बोले के नारे से और यहाँ पुंछ में आज कई यूपी से कोई हरियाणा से कोई गुजरात से यहाँ यात्रु आए हुए
1: बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा की है, वो बहुत अच्छी है। रास्ते में भी हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिली और हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी हम आज पहली बार आए हैं और आगे भी हमारी इच्छा हो रही है यहाँ सब की सुविधा अच्छी देख के।
0: यहाँ हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर भगत हुए पूरा अमरनाथ यात्रा के लिए आए हुए। अब कुछ स्थानीय लोग हैं वहाँ पे जयपुर के रहने वाले, उनसे हम बात करेंगे।
2: सर आपका नाम?
3: सर मेरा नाम जटा शंकर अग्रवाल है, मैं जयपुर राजस्थान मानसरोवर से आया हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी 200 आदमी आए हैं।
4: हम ये कहना चाहते हैं कि जगदानंद बाबा के हम कुंज में आए हैं, जो व्यवस्था पहले थी अब किधर रही है, तो हम चाहते हैं किससे ज्यादा
5: हो। जयपुर से हमारे 656 लोग आए हैं, यात्री आए हैं और पूरे राजस्थान से करीब 4,000-5,000 के लगभग संख्या में जो यात्री आए हैं। पहले की बजाय अब की बार हम निर्भय होकर यात्रा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का भय नहीं है।
0: हजारों की संख्या में ये लोग आए वहाँ से और इन लोगों का ये कहना है कि 370 और 35 का हटना, उससे ये लगता है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मंजीत सिंह,
6: देखिए बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि आस्था, विश्वास और शक्ति का वो सफर है जिसकी अलग आध्यात्मिक अनुभूति है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्तों के लिए ये यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। जो लोग किसी वजह से पवित्र अमरनाथ गुफा में हिमलिंग के दर्शन नहीं कर पाते, उनके लिए बाबा चट्टानी के दर्शन का अवसर होता है। आपको बता दें कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ से जुड़ी आस्था की कहानी सतयुग में रावण के दादा यानी ऋषि पुलस्त से जुड़ी हुई है, लेकिन मान्यता यह है कि जम्मू कश्मीर की रानी यानी चंद्रिका ने भगवान शिव को यहां बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा था। क्या है कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: अद्भुत है भगवान शिव के दोनों धाम। कश्मीर में बाबा बर्फानी है तो यहाँ जम्मू में बाबा चट्टानी। अमरनाथ में बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग तो यहाँ पुंछ में सफेद चमचम शिवलिंग। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन चढ़ाई है तो बाबा चट्टानी तक पहुँचना आसान। अमरनाथ की लंबी चली यात्रा के बाद अब 10 दिनों तक बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन की होड़ है। जैसा पावन धाम वैसी पुरानी इसकी कहानी, जो शुरू हुई सतयुग से। कहते हैं सतयुग में एक दिन जब महर्षि पुलस्त ध्यान में बैठे थे तो उन्हें बोध हुआ कि पांचाल पहाड़ी में वो जगह मौजूद है जहां भगवान शिव ने पहली बार देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। पुलस्त इस जगह पर पहुंचे और छोटी सी गुफा में घोर तप शुरू किया। तब से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। पुलस्त ने कहा कि जहां आपके दर्शन हुए हैं उसे ऐसा धार्मिक महत्व प्रदान करें कि युगों युगों तक आपके भक्त यहां आते रहें। इसके बाद भगवान शिव अदृश्य हुए तो एक चट्टान की गुफा में भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जिसकी बनावट चट्टान जैसी थी। इसके बाद पुलस्त ऋषि ने यह वर्षों तप किया। कहते हैं इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र का नाम पुलस्त नगरी पड़ गया जो अपभ्रंश होते होते पुंछ हो गया। इसी वजह से श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के साथ बहने वाली नदी का नाम पुलस्त गंगा पड़ा जिसे आज भी पाप नाशनी गंगा मानकर हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं और हर साल बड़ी तादाद में भोले के भक्त अपनी आराध्य का आशीर्वाद पाने यहां आते हैं।
1: पहली बार आए हैं, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है।
2: अरेंजमेंट कैसे लगे आपको?
1: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा।
3: बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का विषय है आज कि हम प्रतिवर्ष ये साहसिक यात्रा करते हैं। ये यात्रा अलग अलग प्रांत की प्रतिदिन निकलती है। आज पहला जत्था मध्य भारत प्रांत और हमारे दो तीन प्रांतों का इकट्ठा होकर निकल रहा है। ये 27 तारीख तक यात्रा लगातार चलेगी। अलग अलग प्रांतों के लोग इस यात्रा में प्रतिदिन सहभागी बनेंगे।
2: अरेंजमेंट कैसे लगे यहाँ?
3: बहुत शानदार, बहुत उत्तम अरेंजमेंट है।
0: चट्टान जैसे शिवलिंग की वजह से नाम पड़ा बाबा चट्टानी, लेकिन बाबा बूढ़ा अमरनाथ नाम पड़ने की कथा बड़ी ही दिलचस्प है। कहते हैं करीब 2000 साल पहले पुंछ जिले का गांव लोरन तब के जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी थी जिस पर उस समय रानी चंद्रिका का शासन था। रामकाज में निपुण रानी चंद्रिका अत्यंत दयालु एवं शिव भक्त थी जो हर साल सावन में अमरनाथ गुफा में हिमलिंग की पूजा करने के बाद ही व्रत तोड़ती थी। लेकिन एक साल मौसम खराब होने से अमरनाथ जाने के सभी मार्ग बंद हो गए। ये सोच कर कि किसी भूल से भोलेनाथ रुष्ट हैं, रानी ने अन्न जल त्याग दिया और बीमार हो गए। कहते हैं एक दोपहर रानी ने सपने में एक बूढ़े साधु को देखा जिन्होंने रानी से उसके महल के 10 मील दूरी पर मौजूद शिव का लुप्त स्थान पर पूजा करने को कहा। इसके ठीक बाद श्वेत कपड़ों में एक साधु ने रानी को दर्शन दिए और अपने साथ उस गुफा तक लेकर आए जिसमें 4 द्वार बने थे। मंदिर सामने आते ही बूढ़े साधु गायब हो गए और इसके बाद रानी ने उन्हें बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा जो प्रचलित हो गया।
4: सोजत जिला से प्रथम बार ऐसा हुआ है कि हम 95 की संख्या के अंदर हम यात्री यहाँ पहुँचे हैं और जितने भी राजस्थान के विभिन्न राज्य और भी राज्य हैं वहाँ से भी बहुत सारी संख्या के अंदर इतने उत्साह से लोग आए हैं यहाँ पे। जो उनके मन में जो उनके उत्साह है वो यहाँ उत्साह आज देखने को मिल रहा है कि विभिन्न राज्य के जो लोग हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे अरेंजमेंट्स सब उच्च स्तर के अरेंजमेंट्स है जिसके अंदर अभी प्रथम वर्ष ऐसा हुआ है कि पूरा इसमें सिस्टम डिजिटल कर दिया है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, अभी ऑनलाइन सिस्टम करने से अधिक सुलभता हो गई है। जो भी यात्री है अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आप जो भी संगठन के हैं वो आपको संपर्क कर लेंगे।
5: सबके अंदर बहुत अच्छी भावना है, श्रद्धालु सारे और बहुत भक्ति भाव से भरे हैं और अमरनाथ बाबा की यात्रा के लिए सब रवाना हुए हैं और सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है।
6: लोगों में बहुत उत्साह है। जैसे बर्फानी बाबा की यात्रा शुरू की थी तो 2005 से लेकर इस यात्रा को आरंभ किया गया है तो अभी एक विशाल वटवृक्ष के रूप में काफी संख्या में लोग यहाँ आना आरंभ हो गए हैं और आने वाले समय में जैसे बर्फानी बाबा में जाते हैं वैसे ही लोग इस यात्रा में जाना आरंभ कर लेंगे जिसका प्रतिरूप अभी आप देख ही रहे हैं आपके सामने। कम से कम 60-70 हजार लोग इस वर्ष जाएंगे इन 7 दिनों में। अलग अलग प्रांत से अलग अलग की सारणी बनाई हुई है, वो अलग अलग आ रहे हैं।
0: कहते हैं स्वयं भगवान शिव द्वारा दिखाया गया ये स्थान सैकड़ों वर्षों के बाद भी एक बार फिर अदृश्य हो गया था, जिसे दक्षिण भारत के एक साधु स्वामी चंद्रचूड़ मुनि ने उजागर कर वर्षों तक यहां तप किया था। इस मंदिर के साथ ही पूर्व दिशा में स्वामी चंद्रचूड़ मुनि की समाधि भी बनाई गई है। सावन में कुल 12 दिनों तक बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा चलती है और श्रद्धालु दर्शन करते हैं, लेकिन इस दर्शन पूजन के साथ ही जुड़ी है पवित्र छड़ी यात्रा, जो पुंछ के दश नामी अखाड़े से निकलती है और बड़े ही धूमधाम से बूढ़ा अमरनाथ मंदिर तक जाती है। सीमा सुरक्षा बल, मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा छड़ी का स्वागत कर उसे आदर सहित मंदिर प्रांगण में ले जाया जाता है। पुलिस द्वारा छड़ी को सलामी दी जाती है और फिर छड़ी को बूढ़े अमरनाथ शिवलिंग पर स्थापित किया जाता है, जो रक्षाबंधन के एक दिन बाद तक विराजमान रहती है। इस छड़ी यात्रा के साथ ही मंदिर में 3 दिवसीय यात्रा एवं मेला शुरू हो जाता है, जो रक्षाबंधन के एक दिन बाद तक जारी रहता है। दशनामी अखाड़े से निकलने वाली छड़ी यात्रा इस धाम को एक अलग आभा देती है और बाबा के भक्तों को एक अलग अनुभव। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात करेंगे मौसम की। देखिए, कई दिनों से उमस और चिपचिपे मौसम ने दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक के लोगों को परेशान कर रखा है। हाल ये है कि घर से बाहर निकलते ही पसीना और बेचैनी दोनों साथ में महसूस हो रहे हैं, लेकिन अब इस उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर निकल कर आई। उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से अब सूखी हवाओं ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और इन हवाओं के असर से मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों में बदलता हुआ नजर आ सकता है।

0: कहते हैं हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी मौसम की ताल पर थिरकती है। मानसून पूरे देश को जी भर कर भिगो रहा है, तो वहीं जैसे जैसे अगस्त गुजर रहा है, बरसते बादल बारिश की भरपाई भी कर रहे हैं। खबर ये है कि बादलों की आवाजाही के बीच मौसम फिर से चाल बदलने वाला है। बारिश के बाद जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, अब उस उमस के विदाई की गुड न्यूज आने वाली है। हवा की बदली चाल के बीच उम्मीद तो यही है कि अगले दो दिन दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा के लोगों को उमस से कुछ राहत मिल सकती है। उमस से राहत का ये सीन यूं ही नहीं बना है। हाल फिलहाल हवाओं ने रुख बदला है और उत्तर पश्चिम से आ रही सूखी हवाओं ने नमी को कम कर दिया है। लिहाजा और जैसे जैसे नमी घट रही है, वैसे वैसे चिपचिपी गर्मी का असर भी कम हो रहा है। मौसम में इस बदलाव के पीछे मानसून ट्रफ भी एक वजह बताई जा रही है। मानसून ट्रफ अब हिमालय की तलहटी की तरफ खिसक गया है और इसी के साथ बारिश का पैटर्न भी बदल गया है। फिलहाल मानसून की मेहरबानी पूर्वी और मध्य भारत पर ज्यादा है, जबकि दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में आसमान अपेक्षाकृत साफ है। एक दिन पहले की सैटेलाइट तस्वीरें भी मौसम का बदला रुख बयां कर रही है। पूर्वी यूपी से बिहार और बंगाल की खाड़ी तक मानसूनी बादलों की आवाजाही है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में बादलों की मौजूदगी कम है। आज की बात करें तो दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा में बारिश के आसार कम है। हालांकि कुछ इलाकों में शाम के वक्त हल्की फुल्की और छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन बादलों का खेल अभी थमा रही है, क्योंकि मानसून कब करवट ले ले कहा नहीं जा सकता। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 20 अगस्त के बीच बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके असर से मानसून ट्रफ दोबारा दक्षिण की ओर खिसक सकता है और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर फिर लौट सकता है। फिलहाल अभी के लिए खबर इतनी है कि जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, उस उमस के गुजरने का दौर शुरू हो चुका है। सूखी हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी वजह से मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। लेकिन मानसून ने अभी मैदान छोड़ा नहीं है, उसकी अगली करवट जल्द फिर से बारिश की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें दो।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने रद्द की GSSC CGL परीक्षा 2014 के बाद की भर्तियों की होगी CID जांच।

0: वाराणसी पे छत पर शुरू हुई मां गंगा की आरती, बढ़ते जल स्तर के चलते लिया गया फैसला, सात अर्चकों ने विधिवत की आरती। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में दिखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। बाहर से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम मुंबई में भी जमकर बरसे बरदा। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी जोरदार आगाज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
2: जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई बाबा बूढ़ानाथ अमरनाथ यात्रा, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अब ऑटो और ई रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्ग पुलिस ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत सड़कों पर चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा में QR कोड लगाए जाएंगे। इसके लिए ऑटो रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्रत्येक ऑटो और ई रिक्शा को एक QR कोड उपलब्ध कराया जाएगा। इस QR कोड के जरिए वाहन और उसके चालक से संबंधित आवश्यक जानकारी पुलिस के पास सुरक्षित रहेगी। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंचे और पूरे उत्साह, श्रद्धा और धार्मिक आस्था के साथ इस पवित्र यात्रा में शामिल हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के यात्री निवास से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना के जवानों की तैनाती की गई है। अब पंजाब के लोगों को पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए गोवा जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बन चुके पठानकोट के रावी दरिया पर बने डैम की चमरोड़ झील में अब ये सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। मिनी गोवा के नाम से मशहूर यहां के चमरोड़ में सैलानियों के लिए पैरासेलिंग की सुविधा शुरू की गई है। जयपुर के ऐतिहासिक गलता तीर्थ धाम में आस्था और भक्ति का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। गालव ऋषि की तपोस्थली गलता धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं का फूलों से खास अंदाज में स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से हुई इस पुष्प वर्षा के बीच श्रद्धालुओं ने जमकर जयकारे लगाए और पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया।
4: और अब बात गुरेज घाटी में खेल महोत्सव की। जम्मू कश्मीर के गुरेज में खेल इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने युवाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्थानीय लोगों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस ऐतिहासिक खेल महोत्सव का समापन पारंपरिक पोलो मैच के साथ हुआ। भारतीय सेना और स्थानीय सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में खेलों के साथ महिला भागीदारी, स्वच्छता अभियान और पौधारोपण जैसी सामुदायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

0: घाटी में घुड़सवारी, युवाओं की रेस, लड़कियों की एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ और ट्रॉफी उठाए खुशी से झूमते युवा, ये तस्वीरें कश्मीर घाटी में युवाओं का जोश और जज्बा बता रही हैं। ये बदलते कश्मीर की नई तस्वीर है। यहाँ के युवाओं में खेल के मैदान में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। युवाओं में जोश और जज्बे की ये तस्वीरें गुरेज घाटी से आई हैं, जहां इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। इसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का एक मंच मिला, जहां खेल के साथ साथ टीम वर्क, अनुशासन और आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। गुरेज में सेना की तरफ से खेल महोत्सव का ये आयोजन किया गया। इसमें आसपास के गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। खेल के मैदान में युवा खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया और पारंपरिक पोलो का मुकाबला इस खेल आयोजन का सबसे खास आकर्षण रहा, जहां घोड़ों की रफ्तार और खिलाड़ियों के शानदार तालमेल ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। गुरेज की पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक खेल भावना का ये संगम लोगों के लिए खास अनुभव रहा।
1: गुरेज में स्थानीय टीमों के बीच पोलो था। दरअसल गुरेज घाटी की अगर बात की जाए, यहाँ पर सदियों से पोलो खेला जा रहा है। ये अलग तरीके का पोलो है जो अंतर्राष्ट्रीय पोलो से अलग है, क्योंकि इसमें जो घोड़े इस्तेमाल होते हैं वो कम कद के होते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस भी अलग होती है। दरअसल लद्दाख क्षेत्र और गुरेज घाटी के साथ साथ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का पोलो खेला जाता है। भारतीय सेना को उम्मीद है कि यह रिवायती खेल यानी पोलो जो है उसको दोबारा सीमावर्ती इलाकों खासतौर से गुरेज घाटी में बहाल भी किया जाएगा और विकसित भी।
0: युवाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन ये आयोजन सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान और पौधारोपण जागरूकता की भी जानकारी दी गई।
1: भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज इलाके में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जो अब समाप्त हुआ है। इस विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद नियंत्रण रेखा पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए खेल की सुविधाएं न सिर्फ बढ़ाना, बल्कि साथ ही साथ उनके बीच में एक भावना खेल और मुकाबलों को लेकर पैदा करना।
2: गांवों की सफाई और प्लांटेशन का भी जो लक्ष्य रखा था कि कौन सा गांव ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, उसमें भी इस मार्ग नंबर वन पे आ गया है। तो हम इंडियन आर्मी की तरफ से और पूरे बगदौर ब्लॉक की तरफ से गांव इस मार्ग को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हर प्रकार की खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लड़कियों के साथ साथ इनकी लड़कियों ने भी काफी गेम्स में मैदान मार लिया है।
0: भारतीय सेना की ओर से आयोजित इस खेल महोत्सव का मकसद गुरेज के युवाओं को खेलों और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है, ताकि युवा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपनी प्रतिभा को निखारें और भविष्य में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें।
3: इससे क्या है कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हुए और या खासकर इसमें यहाँ की बच्चियों को मौका मिला अपने आप को आगे लाने के लिए।
0: दरअसल खेल से जुड़े ऐसे आयोजन घाटी के युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा पहचानने, उसे निखारने और बड़े मंच तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। खेलों के जरिए युवाओं को सकारात्मक दिशा मिल रही है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है और भविष्य की तैयारी का मौका भी मिल रहा है। इससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।
2: इंडियन आर्मी से यही रिक्वेस्ट है कि जो 1.0 इस साल हुआ है, तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को अपना टैलेंट शोकेस करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सके।
0: जाहिर है गुरेज घाटी में चले इस खेल महोत्सव में खेल के मैदान से लेकर स्वच्छता अभियान और पौधारोपण तक युवाओं को समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भी जोड़ा गया। ऐसे आयोजनों से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानने और निखारने का मौका भी मिलता है। जम्मू कश्मीर के गुरेज से अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन खबरों को जो कि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। इनमें से कुछ खबरें ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगी और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: बॉल है जिसे सब तक पहुंचनी है, लेकिन एक एक कर जिसके हाथ में गेंद आएगी उसे अपने सामने वाले को पास करना है, लेकिन उछाल कर नहीं, जाकर उसके हाथों में सौंपना है, वो भी खास तरीके से। बच्चे जिस तरह से मेंढक की तरह कूद कूद कर अपना टास्क पूरा कर रहे हैं वो देखना दिलचस्प है। दाद तो देनी पड़ेगी, आसान नहीं है, पर देखिए कैसे जीत के लिए एक दूसरे का साथ दिया जा रहा है। संभवतः आटा है या फिर कोई पाउडर जैसी चीज मुंह में फंसाए मोटे कागज पर बिना हाथ लगाए उठाना है और उसे अपने साथी को पास करना है। आखिरी छोर तक पहुंचने के बाद वही प्रक्रिया दोहराते हुए वापस लौटना है। अब पाउडर जैसी चीज को बिना हाथ लगाए संभालना आसान तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। जिस तालमेल और संतुलन के साथ सबने अपने अपने हिस्से का काम किया वो देखकर लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। यूं ही नहीं कहते कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। अब इन्हें ही देखिए, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, ना ही एक दूसरे की भाषा बोलते समझते हैं, लेकिन दोस्ती पक्की वाली लग रही है। जिस तरह से डॉगी और बतख रेस लगा रहे हैं उससे तो लगता है ये दोनों का नियमित खेल है। जो भी हो, दोनों की ये दोस्ती वाली दौड़ लोगों को खूब पसंद आ रही है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी हो जाए तो स्कूल में मन लगा रहता है। अब इन बच्चों को ही देखिए कैसे एंजॉय कर रही हैं इस खेल को। वैसे ये जो कर रहे हैं वो देखने में बड़ा ही आसान सा स्टेप लग रहा है, पर जो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि अभ्यास तो इसके लिए भी चाहिए, वरना कदम गलत खांचे में भी पड़ सकता है और एक बार गलती हुई तो खेल से आउट। लेकिन ये बच्चियाँ होशियार हैं।
5: बात क्यों कर रहे?
0: सुना आपने, ये बस इन्हें ही बर्थडे में बुलाएंगे।
5: क्यों?
0: क्योंकि यही टीचर हैं जो इनको सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, इन्हें काम देती हैं। मतलब इस छोटी सी उम्र में भी इनको पता है कि अच्छे टीचर का मतलब क्या है। स्कूल पढ़ने ही तो आते हैं और यही वो टीचर हैं जो पढ़ाई के दौरान इन पर खास नजर रखती हैं। टीचर बार बार जताती हैं कि वो उससे प्यार नहीं करती।
5: मैं तो नहीं करती प्यार, जबरदस्ती प्यार करती हूँ,
0: बल्कि वो तो सभी बच्चों की तरह ही उसे ट्रीट करती है। इस पर बच्चा जिस तरह से रुआंसा होकर टीचर से अपनी बर्थडे में आने की रिक्वेस्ट करता है वो देख कर लोग उसकी मासूमियत पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।
5: मैं पूछ रही हूँ तो ढंग से बोलो, रो नहीं, मैं मारी हूँ, फिर रो रहे हो।
6: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र के FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, जो खाने पीने की खराब चीजों के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा में है। महाराष्ट्र FDA ने फिल्म स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस तीनों अभिनेताओं को विमल इलायची का विज्ञापन करने के लिए जारी किया गया है। FDA का आरोप है कि विमल इलायची विज्ञापन के जरिए राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक FDA ने 11 अगस्त को तीनों अभिनेताओं को नोटिस भेजकर विज्ञापन में उनकी भूमिका पर 15 दिन में जवाब मांगा है। FDA का कहना है कि विज्ञापन में विमल नाम, प्रोडक्ट और डायलॉग इस तरह इस्तेमाल किए गए हैं कि इससे विमल ब्रांड का प्रचार होता दिखता है। चूंकि विमल ब्रांड पान मसाला से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए FDA को शक है कि विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाले का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। ऐसे विज्ञापन को सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है, जिसमें किसी ऐसे प्रोडक्ट का सीधे विज्ञापन ना करके उसी ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट का विज्ञापन किया जाता है जिस पर रोक लगी है। महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटिन वाले गुटखा और पान मसाला पर 2012 से रोक है। ये रोक हर साल बढ़ाई जाती है। महाराष्ट्र में अभी ये रोक 13 जुलाई 2026 से एक साल के लिए लागू है। इसके तहत राज्य में पान मसाला बनाने, रखने, लाने, ले जाने और बेचने पर पाबंदी है। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संगठित गुटखा और तंबाकू नेटवर्क के मामले में पुलिस के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई की जाए। एक पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था कि अगर किसी तरह का कोई प्रोडक्ट लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है तो सरकार को उसे तुरंत बैन कर देना चाहिए। जाहिर है ये मुद्दा आम लोगों की सेहत से जुड़ा है। ऐसे में फिल्मी सितारों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल जनता का हित देखकर करें। इस मामले पर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
7: ये नहीं करनी चाहिए, मतलब फिर लाइक लोग इन्फ्लुएंस होती हैं कहीं ना कहीं, लाइक ऐसे बस लोग बोल देते हैं कि मूवी ही है, बट लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, हर कोई इतना एजुकेटेड नहीं होता, तो लाइक वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखते हैं कुछ भी करते हुए तो वो फॉलो करते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए, ऐसे मॉरली गलत है वो चीज, तो नहीं ही करना चाहिए।
8: आई थिंक उन्हें इस चीज की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए, क्योंकि मेनी पीपल स्पेशली यंगस्टर्स लुक अप टू देम, तो चाहे इवन दो उन्हें पता हो कि ये चीज़ ख़राब है, बट अगर वो उनको उनके लिए वो आइडल्स हैं या इफ दे आर लुकिंग अप टू देम, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ से इंस्पायर होंगे या उस चीज़ से मोटिवेट होंगे कि हमें ऐसा बनना है तो हमें भी ये सब करना पड़ेगा। तो आई थिंक उनकी भी यहाँ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि वो अकाउंटेबिलिटी लें और ऐसी चीज़ें प्रमोट ना करें।
9: मैं तो मानूंगा कि मतलब हर किसी की लाइफ में स्टूडेंट या बड़े भी जो एक्टर्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, मतलब लोग उन्हें कुछ तो भगवान मानते हैं, बहुत मतलब अलग अलग फैन बेसिस है, तो उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ हमें बहुत लोग देखते हैं, तो हमें कुछ अच्छी चीज़ प्रमोट करें जिससे वेलफेयर हो पब्लिक का और प्रोग्रेस करे पूरी कंट्री एज अ होल। तो या मैं तो अगेंस्ट हूँ पूरा, जो भी ऐसे उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए और देन उन्हें अपना डिसीजन मेक करना चाहिए।
10: देखिए ये सेलिब्रिटी एक अलग चीज़ है, पिक्चरों में आते किस लिए आते हैं आप लोग, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, आगे आपके प्रपोजल भी मिलते हैं, बहुत बड़े नाम भी होता है सोसाइटी में, भाई फलाना हीरो की फलानी फिल्म अच्छी है। बाकी रही अगर ये कोई ब्रांड चल रहा है तम्बाकू का वगैरह का, ये किस इसके लिए, तो वो भी आप किस लिए होते, वो इसलिए होते हैं कि तम्बाकू है, तम्बाकू में क्या गवर्नमेंट का भी तो रेवेन्यू मिलता ही है ना, तो आपको भी आपको सजेशन क्या, वो तो गवर्नमेंट जानती है क्या ऐसा करना है क्या नहीं करना, क्या बैन करना है या क्या क्या नहीं करना है, तो वो तो गवर्नमेंट के ऊपर वाली बात है, तो आप दैट नॉट सजेशन। तो जबकि पैसा आप कमाते हैं, गवर्नमेंट भी कमाती है, एक्साइज ड्यूटी आती है, GST आता है, तो बहुत सी उसका काफ़ी बेनिफिट प्रॉफिट होती है।
4: खराब सड़क पर गाड़ी चलाते हुए गुस्सा तो हम सभी को आ जाता है, कहीं गड्ढा बचाने के चक्कर में गाड़ी डगमगाती है तो कहीं ये गड्ढे हादसे की वजह बन जाते हैं, लेकिन गुस्सा करने के बाद हम अक्सर यही सोचकर चुप हो जाते हैं कि आखिर हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने इसी सोच को बदलने की कोशिश की और उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो कि सड़क के गड्ढों को खुद पहचान सकता है और जिम्मेदार या फिर लापरवाह तक आपको पहुंचा सकता है, यानी कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर जिम्मेदार व्यक्ति तक गड्ढों की जानकारी पहुंचाने का काम काफी आसान हो गया है।

0: सड़कों पर ये गड्ढे अखिल भारतीय समस्या बन चुके हैं। ये गड्ढे न केवल आपका सफर बर्बाद करते हैं बल्कि गाड़ियों को खासा नुकसान भी पहुंचाते हैं। और फिर शुरू होती है शिकायतों की कभी न खत्म होने वाली कथा, जिसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने समस्या का एक गजब का AI सॉल्यूशन खोज निकाला है। बेंगलुरु के इंजीनियर गौरव सेन ने ऐसा AI सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए न केवल गड्ढों की पहचान संभव है बल्कि इन गड्ढों के मरम्मत के जिम्मेदारों तक पहुंचना भी आसान हो गया है। दरअसल ये सिस्टम सड़क पर चलते हुए गड्ढों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करता है। कार में लगे डैश कैम, GPS और एक्सेलेरोमीटर से सड़क की जानकारी जुटाई जाती है, जिसके बाद AI विजन मॉडल तस्वीरों और वीडियो को स्कैन करके अलग अलग आकार के गड्ढों की पहचान करता है। खास बात यह कि सिस्टम उन गड्ढों को भी पहचान सकता है जिन्हें दूर से देखना मुश्किल हो, क्योंकि कई बार सड़क का गड्ढा स्पीड ब्रेकर जैसा दिखाई देता है। गौरव सेन ने कोडेक्स की मदद से ये ऐप तैयार किया है जो इस पूरे डेटा को रिकॉर्ड करके OpenAI तक भेजता है। लेकिन कहानी सिर्फ गड्ढे की पहचान तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल होता है, गड्ढा मिला है तो इसे ठीक कौन करेगा। इसके लिए ऐप को करीब 2900 सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स से जोड़ा गया। सिस्टम सड़क के किसी खास हिस्से की पहचान करके ये पता लगा सकता है कि उस सड़क का ठेका किस कंपनी या ठेकेदार के पास है। यानी अगर कोई सड़क वारंटी पीरियड में है तो ठेकेदार को बिना सरकार पर अतिरिक्त खर्च डाले सड़क की मरम्मत करनी पड़ सकती है। और ये पूरा रिकॉर्ड महज 4 सेकंड में तैयार हो सकता है, जिसमें गड्ढे की तस्वीर, उसकी सटीक लोकेशन, टेंडर नंबर और सड़क से जुड़े अधिकारी की जानकारी शामिल होती है। गौरव ने इस सिस्टम का टेस्ट ऑफिस जाते वक्त किया। एक सफर में AI ने उनकी राह में मौजूद 12 गड्ढों को पहचान लिया। गौरव सेन का ये प्रयोग अब बेंगलुरु से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। लोग गौरव के इस AI मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ यूजर उसे ऐसा ऐप बता रहे हैं जो समस्या के साथ आपको सही समाधान तक ले जाता है। सड़क के गड्ढों के लिए AI से खोजा गया ये सॉल्यूशन बड़े काम का हो सकता है, क्योंकि देश में हर साल सड़क दुर्घटना में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनकी बड़ी वजह सड़क के गड्ढे भी होते हैं। हाल ही में लोकसभा में सड़क परिवहन मंत्रालय से सड़क हादसों को लेकर सवाल पूछे गए थे। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने जो जवाब दिया है वो वाकई चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों के आंकड़ों के आधार पर बताया कि हर साल सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही ये जानकारी भी दी कि किस उम्र के लोग सड़क पर बने गड्ढों के कारण सबसे ज्यादा हादसों का शिकार हो रहे हैं। इन आंकड़ों में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले 25 से 35 साल के लोग होते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में गड्ढों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 53% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में जहां 3,564 लोगों की मौत सड़कों पर बने गड्ढे की वजह से हुई, वहीं साल 2021 में 3,625 लोगों की मौत का जिम्मेदार सड़क के गड्ढे बने। वहीं साल 2022 में 4,446 लोगों की मौत सड़क पर बने गड्ढे की वजह से हुई। इनमें से 54% से ज्यादा मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में हुई, जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बनकर उभरा है। मंत्रालय को सौंपी गई राज्य पुलिस रिपोर्ट से लिए गए डेटा से पता चला कि आंध्र प्रदेश, बिहार और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने 5 साल के समय में गड्ढों से जुड़ी कोई दुर्घटना या मौत की सूचना नहीं दी। ये आंकड़ा ये भी दिखाता है कि साल दर साल सड़क पर बने गड्ढों की वजह से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन उन आंकड़ों में कमी नहीं आ रही। उल्टा हर गुजरते साल के साथ ही आंकड़ा बढ़ ही रहा है, जो मौजूदा सरकारों, प्रशासन और स्थानीय विभागों के लापरवाह रवैया को भी दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आपने ChatGPT से सवाल पूछे होंगे, जवाब भी तलाशे होंगे, लेकिन क्या कभी अपनी खोई हुई चप्पलें भी ChatGPT से ढूंढवाई है? सुनकर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन भारत में ऐसा ही एक दिलचस्प मामला सामने आया है। एक शख्स मंदिर गया था, पूजा की और बाहर आया तो उसकी चप्पलें गायब थी। सामने चप्पल जूतों का ऐसा ढेर लगा था कि अपनी चप्पल पहचानना भी किसी मिशन से कम नहीं लग रहा था। लेकिन जनाब ने हार नहीं मानी, सीधे ChatGPT की मदद ली और फिर क्या हुआ देखिए।
2: अगर आप मंदिर जाएं और आपके फुटवेयर न मिले तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार AI ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि अब वहां से आपको अपने फुटवेयर ढूंढने में मदद जरूर मिलेगी। दरअसल शुभांग बोरकर वो शख्स है जिन्होंने AI की मदद से ऐसा कर भी दिखाया है। ये AI वाली ट्रिक शुभांग के खोए फुटवेयर ढूंढने में खूब मददगार साबित हुई है। शुभांग ने मिनटों में AI की मदद से अपने जूते ढूंढ निकाले। गोवा बेस्ड ऋषुभांग बोरकर पेशे से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं। उन्होंने दरअसल उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर से ये वीडियो शूट किया, जिसमें जहां नजर डालिए जूते चप्पल ही दिख रहे हैं। जाहिर है इन फुटवेयर में से अपने वाला पहचानना शुभांग के लिए इतना आसान टास्क नहीं था। वो एक एक करके फुटवेयर देखते, तब जाकर उनको अपना फुटवेयर मिलता। लेकिन देखिए चैट जीपीटी का कमाल, जिसकी मदद से शुभांग ने फुटवेयर्स की भीड़ में अपने वाला क्लॉग्स ढूंढ ही निकाला। शुभांग ने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो का नाम यूज्ड चैट जीपीटी टू फाइंड माय लॉस्ट क्लॉग्स रखा। इसके लिए सबसे पहले मंदिर के बाहर जहां जूते चप्पल रखे थे, वहां से रैक और फुटवेयर एरिया की तस्वीरें ली। इसके बाद शुभांग ने अपने फुटवेयर क्लॉग्स की तस्वीर चैट जीपीटी पर अपलोड की। शुभांग ने एआई से वो तस्वीर देखकर उनकी जोड़ी पहचानने में मदद करने और फिर फुटवेयर के बीच उनके क्लॉग्स को ढूंढने के लिए कहा। हालांकि एक तस्वीर से बात साफ नहीं हुई, तो शुभांग ने फुटवेयर एरिया के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। वो एक के बाद एक तस्वीरें चैट जीपीटी को भेजते रहे, जिनमें सैकड़ों जूते चप्पल दिखाई दे रहे थे। चैट जीपीटी ने तस्वीरों को देखकर उनमें मौजूद जोड़ियों को शुभांग की भेजी हुई क्लॉग्स की तस्वीर से मिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे अपनी खोई हुई चप्पल ढूंढने का ये मामला एक छोटे से रियल वर्ल्ड एआई एक्सपेरिमेंट जैसा बन गया। कई तस्वीरें देखने और उनका विश्लेषण करने के बाद चैट जीपीटी ने एक ऐसी जोड़ी की तरफ इशारा किया जो शुभांग के क्लॉक से मिलती जुलती दिखाई दी। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर फुटवेयर खोजने की शुभांग की ये एआई ट्रिक लोगों को पसंद भी आ रही है। यानी जिस क्लॉक्स को शुभांग खुद सैकड़ों जूते चप्पलों के बीच तलाश रहे थे, उसे उनके साथी बने एआई ने ढूंढ निकाला। यानी इस काम में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किसी बड़ी रिसर्च या तकनीकी काम में नहीं, बल्कि बेहद सामान्य सी परेशानी को सुलझाने में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और अब बात उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों को है। हम बात कर रहे हैं नमित मल्होत्रा की रामायण की। दो पार्ट में बन रही इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यानी कि फिल्म का पैमाना जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी है इसकी प्लानिंग भी। अब मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी कहानी, क्योंकि रामायण 6 नवम्बर को इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज होगी, जबकि भारत में दिवाली पर दस्तक देगी।
3: तुम्हारा नया राजा।

0: भारतीय सिनेमा के सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट में से एक रामायण, जिसने रिलीज से अरसे पहले ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, आम जन से लेकर खास तक, समाज के हर तबके, हर वर्ग तक रामायण पहुंच पाए, इसके लिए मेकर्स एक खास प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं।
1: जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की।
0: मेकर्स की प्लानिंग का एक ही अहम हिस्सा है फिल्म के रिलीज डेट। रामायण पार्ट 1 दीपावली पर रिलीज होनी है, ये तय है, लेकिन किस तारीख को रिलीज होगी ये अब तक पुख्ता तौर पर तय नहीं था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में रामायण की रिलीज डेट 30 अक्टूबर बताई जा रही थी, लेकिन कन्फर्म कुछ भी नहीं था।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार।
0: अब रामायण के मेकर्स ने काफी सोच समझकर रामायण की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है।
2: निर्णय मैं ले चुका हूं, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
3: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास।
0: 6 नवंबर यानी दिवाली से 2 दिन पहले रामायण पार्ट 1 वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। इससे मेकर्स को 2 हफ्ते का दमदार रिलीज पैसेज मिलने जा रहा है। इसे जानने के लिए इस तारीख की क्रोनोलॉजी समझनी होगी।
3: एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।
0: 6 नवंबर को शुक्रवार है और इसी दिन धनतेरस भी है। 7 नवंबर को शनिवार है यानी वीकेंड, छुट्टी का दिन होने से इसे भरपूर दर्शक भी मिलेंगे। 8 नवंबर को रविवार है और दीपावली भी है, जिसका फायदा फिल्म को फैमिली ऑडियंस के तौर पर मिल सकता है। 9 नवंबर को सोमवार है। 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, कई दफ्तरों में उस दिन छुट्टी होती है। और 11 नवंबर यानी बुधवार को भाई दूज का त्योहार है। 13 नवंबर यानी शुक्रवार से दूसरे हफ्ते से वीकेंड शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि रामायण को न सिर्फ बम्पर ओपनिंग मिल पाएगी बल्कि 2 दमदार वीकेंड भी, यानी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए अच्छा खासा वक्त मिलने जा रहा है।
3: सूट नखा, वो मोहित हो गई है आप पे।
4: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूर्पणखा।
0: हालांकि ओवरसीज में रामायण की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। 5 नवंबर हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो रिलीज होगी, मतलब 6 नवंबर को इसका सामना रामायण से होगा। गॉडजिला एक पॉपुलर फ्रेंचाइज है, इसलिए रामायण को क्लैश झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत में रामायण को एक छत्र राज मिल सकेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने रद्द की जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2014 के बाद की भर्तियों की होगी सीआईडी जांच। वाराणसी पे छत पर शुरू हुई मां गंगा की आरती, बढ़ते जल स्तर के चलते लिया गया फैसला, सात अर्चकों ने विधिवत की आरती। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में देखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। बाहर से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम मुंबई में भी जमकर बरसे बरदा। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी जोरदार आगाज़।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां बात कर रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर की घाटी में भोलेनाथ का जयकारा था, अब जम्मू की वादी में हर हर महादेव का जयघोष सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। सोमवार से शुरू हुई ये यात्रा 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक यूं ही चलेगी, जिसमें देखिए शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से शिवभक्त जो हैं जम्मू पहुंचने का जो उनका सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज आपको जम्मू से लेकर पुंछ तक इस यात्रा की भव्य तस्वीरें तमाम दिखाएंगे। बाबा चट्टानी के दर्शन करने के लिए निकले श्रद्धालुओं का जोश दिखाएंगे, कितना हाई नजर आ रहा है। इसके साथ ही बाबा बूढ़ा अमरनाथ का भव्य दरबार भी दिखाने जा रहे हैं। शिव का ये धाम कितना पुराना है, कितना खास है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको इस पावन धाम की अद्भुत कहानी भी बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के साथ। देखिए कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद अब जम्मू में बाबा चट्टानी के दर्शन करने की होड़ लगी हुई है। सिर्फ 12 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु जो हैं पहुंच रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के बाद सोमवार की सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना कर दिया और इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रिपोर्ट देखिए।

0: एक बार फिर हर हर महादेव का नारा है, एक बार फिर अमरनाथ का बुलावा है। लेकिन मंजिल इस बार अमरनाथ की गुफा नहीं बल्कि बूढ़ा अमरनाथ धाम है। कुछ दिन पहले इसी जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए जत्थे निकले थे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्त उमड़े थे, पर इस दफा जम्मू से कारवां पुंछ के लिए जा रहा है, क्योंकि पुंछ जिले के मंडी तहसील के राजपुरा में मौजूद है बाबा चट्टानी का धाम यानी बूढ़ा अमरनाथ मंदिर।
1: 2005 आयोजित की जा रही यात्रा केवल पर्वतों और घाटियों को पास करने वाली यात्रा नहीं है, ये हमारे बाहरी पथ से कहीं अधिक हम सबके अंतर्मन की यात्रा है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये तीर्थ यात्रा स्वयं के भीतर से चेतना को पहचानने की भी यात्रा है। यह पावन तीर्थ यात्रा भगवान शिव की ओर अग्रसर होने की भी यात्रा है, जो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थल की दिव्य ऊंचाइयों में विद्यमान है।
0: 17 अगस्त से ये यात्रा शुरू हुई है और 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक चलेगी, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू पहुंचने लगे हैं। भगवती नगर यानी यात्री निवास से सोमवार को जब पहला जत्था निकला तो शिव भक्तों का जोश देखने लायक था। पूजा पाठ के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को झंडा दिखाकर रवाना किया।
2: बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे थे, आज पहला जत्था बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का यहां से रवाना हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा यहां पर जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया, इस पहले जत्थे को यहां से रवाना किया, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है उत्साहित होकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन था यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि कितना जो है वो उत्साह है यात्रियों के बीच, और ये बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जयघोष के साथ जो है वो यात्री यहाँ पर उत्साहित है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जत्था जो है वो रवाना हुआ है। और मैं इस तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि आप देखिएगा कि कितने उत्साहित हैं यात्री, और जय श्री राम के जयघोष के साथ जो है ये यात्रा रवाना हो रही है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मैं गोकुल से कहूंगा कि वो आगे आएंगे और आपको दिखाना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रा को जो है वो फ्लैग ऑफ किया है, और देखिएगा दूर दूर तक ये बसेस जो है वो अब यहाँ से रवाना हुई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के जो है वो दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना हुई है, और ख़ास तौर पर इस यात्रा का मकसद है कि पुंछ जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसे देश के जो विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं वो वहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचे, क्योंकि 10 दिन की ये यात्रा रहती है। और इस पहले जत्थे का हर एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी ये यात्रा एंटर करेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका भव्य स्वागत होगा। जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन यहाँ पर, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के साथ कई टुकड़ियाँ जो है इस यात्रा की सुरक्षा में तैनात हैं, और जम्मू पुंछ हाईवे को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो रखा गया है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये पावन यात्रा जो है वो 10 दिन के लिए यानी आज 17 तारीख से लेके 28 तारीख तक जो है वो यात्रा ये चलेगी, और इस यात्रा में देश भर से आने वाले श्रद्धालु बेहद खुश है और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
0: धार्मिक परंपरा में बाबा चट्टानी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे अमर कथा से जुड़े पवित्र मार्ग का पहला पड़ाव माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने की शुरुआत यहीं से की थी, जो बाद में अमरनाथ गुफा में पूरी हुई थी। इसीलिए ये मंदिर केवल एक धाम नहीं बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक प्रवाह का हिस्सा है।
2: राहुल जी कहाँ से आए?
3: जयपुर से।
2: जयपुर से आए, कब से आ रहे बाबा की यात्रा?
3: 30 साल है साहब।
2: तो कैसा लग रहा है इस बार की व्यवस्था, ये सब चीज?
3: अपन ये चाहते हैं कि पूरा देश आए, और जो अपने महादेव जिनकी यहाँ पे स्थापना हुई थी किसी कारण से यहाँ पे वो लुप्त हो गए, जिनकी पूजा होना बिल्कुल बंद हो गई थी, जो आज यहाँ के किया है लोगों ने, जनता ने अपने देश के लिए, और उसको जागृत किया है। और आज यहाँ लाखों की तादाद के अंदर बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
0: जिसे देखने और महसूस करने के लिए हर साल हजारों हजार की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इस साल पहले जत्थे में मध्य भारत, कर्नाटक, जयपुर और जोधपुर के भक्त शामिल हुए और उनका जोश जबरदस्त है। जो श्रद्धालु पुंछ की इस यात्रा में शामिल होते हैं, उनका मकसद सिर्फ मंदिर दर्शन नहीं होता, बल्कि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के बीच ये यात्रा शिव अमरत्व और दिव्य रहस्य की एक सतत कथा है, जिसे समझना एक अद्वितीय अनुभव है। तभी तो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए शिव भक्त मस्त मगन होकर पहले जम्मू और फिर यहाँ से पुंछ की ओर निकल पड़े हैं। जम्मू से 244 किलोमीटर का सफर तय करके यात्री पहले पुंछ पहुंचेंगे और फिर पुंछ से धाम की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जिसे वो तय करेंगे।
2: पुंछ एक बॉर्डर का इलाका है, बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ क्षेत्र है और खास तौर पर पूरे देश भर से आने वाले यात्रियों का काफी उत्साहित रहते हैं पुंछ के लोग, उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार घुमाकर जो है वो दिखाएंगे, तो ये देखिएगा कि ये जोश और जो जज्बा है, ये जोश और जज्बा है तो ये जज्बा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हम एक बस में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और खासा उत्साह है, और ये उत्साह साफ तौर पर दर्शाता है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है।
4: सेकंड बार आए हैं।
2: सेकंड बार तो पहले से कितना बदलाव लग रहा है इस बार का?
4: काफी बदलाव है।
2: तो क्या क्या मैसेज रहेगा पूरे देश भर के लिए, आज दर्शनों के लिए जा रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के?
4: ये मैसेज रहेगा कि जो अन्य लोग नहीं आ पाए हैं वो भी आए और इस यात्रा का हिस्सा बने और बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करें।
2: ठीक है सर, कहाँ से आए हैं?
5: हम मध्य भारत प्रांत से आए हैं, भोपाल के पास में बुधनी जिला है, और मैं दूसरी बार आया हूँ। यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था, यहाँ के स्थानीय लोगों की व्यवस्था, संगठन की व्यवस्था बहुत ही उच्च क्वालिटी की व्यवस्था है।
0: जिस तरह बाबा बर्फानी का दरबार हिमालय के ऊंचे शिखर पर मौजूद प्राकृतिक गुफा में है, ठीक उसी तरह से बाबा चट्टानी पीर पंजाल श्रेणी में मौजूद बेहद खूबसूरत जगह पर मौजूद है। हाँ, ये जरूर है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए ऊंची चढ़ाई नहीं है, लेकिन इस यात्रा में घाटी भी है और जलधारा भी, पहाड़ और पुलस्ता नदी मिलकर एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक शांति देते हैं। तभी तो जो एक बार बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए आता है वो बार बार आता है।
6: आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे पुंछ में एक जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा शुरू होने वाली है, उसी कड़ी में यहाँ पे हमारे स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी की याद में यहाँ पे एक भव्य त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है, जो बिल्कुल एक LOC पे हमारा नवग्रह मंदिर है वहां से स्टार्ट होती है और यहाँ पे यात्रा ग्राउंड जिसको काली ग्राउंड बोलते हैं यहाँ पे आती है। यहाँ पे विधिवत पूर्वक यहाँ पे त्रिशूल का यहाँ पे पूजन होता है और जो पूरे भारतवर्ष से यात्री आते हैं वो इसी त्रिशूल का पूजन करते हैं और उसके बाद वो बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। ये आज त्रिशूल यात्रा का महत्व ये है कि ये हमारे जो स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी थे, जिनका हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने बहुत बड़ा इस हमारी यात्रा में योगदान दिया था, ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने यात्रा शुरू की थी। और आज आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ बिना मतभेद मिलत सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आए हुए और इस यात्रा में शामिल हुए।
7: ये जो त्रिशूल यात्रा है, आपको पता है हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब यहाँ आती है उससे एक दिन पहले ये जो त्रिशूल यात्रा है ये नवग्रह मंदिर अजोट जो कि देरिया में है वहाँ से निकलती है और यात्रा ग्राउंड तक पहुँचती है। आपने देखा होगा भोले का जो त्रिशूल है ये एक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो हमारे पुंछ के वासी हैं, खास करके बिना मजहब मिलत हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पहुँचता है और ये खास करके एक तरह से आयोजन होता है बाबा बूढ़ा अमरनाथ से पहले कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आ रही है, जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए सारे पुंछ वासियों को, जिस तरह से वो वेलकम करने के लिए हर बार यात्रियों को यहाँ पहुँचते हैं।
0: पहाड़ी नदी का जल है भजन और भगवा ध्वज और इन सब के साथ शिव भक्तों की श्रद्धा, ये सब मिलकर बूढ़ा अमरनाथ धाम को एक जीवंत धार्मिक अनुभव बना देते हैं और खासकर सावन में अनगिनत श्रद्धालुओं और संतों की मौजूदगी से धाम शिवमय हो जाता है। इस साल भी बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए यात्रा शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे मार्ग पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। यात्रियों का जत्था सुरक्षा घेरे में धाम तक पहुंचाएगा और वापस आएगा। पूरे रास्ते आवास, भोजन और दूसरी तमाम सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की तादाद हर साल बढ़ रही है। जो लोग किसी वजह से अमरनाथ गुफा नहीं जा पाते, वो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसकी वजह ये भी है कि ये यात्रा आसान है, और दूसरी अहम बात ये कि इसकी अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा है, जिससे लोगों की गहरी आस्था भी जुड़ी है। हर साल वार्षिक बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से एक दिन पहले त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी LOC पर मौजूद नवग्रह मंदिर में त्रिशूल यात्रा की शुरुआत हुई। पूजा पाठ के बाद मंत्रोच्चार के साथ एक विशाल त्रिशूल को लिए शिव भक्त चल पड़े। फूलों और झंडों से सजे त्रिशूल को लेकर भक्त यात्रा में आगे बढ़ते चले गए। जयकारों से माहौल शिवमय होता गया। पुंछ के इलाकों और गलियों से गुजरती हुई त्रिशूल यात्रा कॉलेज ग्राउंड पहुंची, जहां यात्रा के लिए बेस कैंप बनाया गया है। ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है। अमरनाथ की तरह ही इस यात्रा में धार्मिक सद्भाव साफ नजर आता है। अगले 10 दिनों तक पुंछ का ये इलाका शिव की भक्ति से सराबोर रहेगा। घाटी में हर हर महादेव का जय घोष होगा। जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। हालांकि 90 के दशक में आतंकवाद और सीमा पार से लगातार होने वाली गोलाबारी के चलते ये महान यात्रा रुक गई थी, लेकिन पिछले 21 सालों से इस यात्रा को लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु पूरे जोश के साथ शामिल होते हैं। यात्रियों का पहला जत्था जब पुंछ में बेस कैंप पर पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। देखिए,

0: हम बोले कि जयघोष के साथ आज जो यात्रा का पहला जत्था यहाँ पुंछ में पहुंचा और पुंछ में ये महामूर्ति का एक यहाँ पे पूजा अर्चना की गई। ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जो पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ बम बम बोले के नारे से, और यहाँ पुंछ में आज कई यूपी से, कोई हरियाणा से, कोई गुजरात से यहाँ यात्रु आए हुए हैं।
1: बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा की है, वो बहुत अच्छी है। रास्ते में भी हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिली और हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी हम आज पहली बार आए हैं और आगे भी हमारी इच्छा हो रही है यहाँ सबकी सुविधा अच्छी देख के।
0: यहाँ हजारों की तादाद में लोग यहाँ बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए आए हुए हैं। हम कुछ स्थानीय लोग हैं वहाँ के, जयपुर के रहने वाले, उनसे हम बात करेंगे।
2: हाँ सर, आपका नाम?
3: सर मेरा नाम जटा शंकर अग्रवाल है, मैं जयपुर राजस्थान मानसरोवर से आया हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी 200 आदमी आए हैं।
4: हम ये कहना चाहते हैं कि जगदानंद बाबा के हम कुंज में आए हैं, जो व्यवस्था पहले थी किधर रही है, तो हम चाहते हैं किससे ज्यादा और
5: आगे चले। जयपुर से हमारे 656 लोग आए हैं, यात्री आए हैं और पूरे राजस्थान से करीब 4,000-5,000 के लगभग संख्या में जो यात्री आए हैं। पहले की बजाय अब की बार हम निर्भय होकर यात्रा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का भय नहीं है।
0: हजारों की संख्या में ये लोग आए वहाँ से और इन लोगों का ये कहना है कि 370 और 35 का हटना, उससे ये लगता है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मंजीत सिंह,
6: देखिए बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि आस्था, विश्वास और शक्ति का वो सफर है जिसकी अलग आध्यात्मिक अनुभूति है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्तों के लिए ये यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। जो लोग किसी वजह से पवित्र अमरनाथ गुफा में हिमलिंग के दर्शन नहीं कर पाते, उनके लिए बाबा चट्टानी के दर्शन का अवसर होता है। आपको बता दें कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ से जुड़ी आस्था की कहानी सतयुग में रावण के दादा यानी ऋषि पुलस्त से जुड़ी हुई है, लेकिन मान्यता यह है कि जम्मू कश्मीर की रानी यानी चंद्रिका ने भगवान शिव को यहां बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा था। क्या है कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: अद्भुत है भगवान शिव के दोनों धाम, कश्मीर में बाबा बर्फानी है तो यहाँ जम्मू में बाबा चट्टानी। अमरनाथ में बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग तो यहाँ पुंछ में सफेद चमचम शिवलिंग। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन चढ़ाई है तो बाबा चट्टानी तक पहुँचना आसान। अमरनाथ की लंबी चली यात्रा के बाद अब 10 दिनों तक बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन की होड़ है। जैसा पावन धाम वैसी पुरानी इसकी कहानी, जो शुरू हुई सतयुग से। कहते हैं सतयुग में एक दिन जब महर्षि पुलस्त्य ध्यान में बैठे थे तो उन्हें बोध हुआ कि पांचाल पहाड़ी में वो जगह मौजूद है जहां भगवान शिव ने पहली बार देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। पुलस्त्य इस जगह पर पहुंचे और छोटी सी गुफा में घोर तप शुरू किया। तब से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। पुलस्त्य ने कहा कि जहां आपके दर्शन हुए हैं उसे ऐसा धार्मिक महत्व प्रदान करें कि युगों युगों तक आपके भक्त यहां आते रहें। इसके बाद भगवान शिव अदृश्य हुए तो एक चट्टान की गुफा में भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जिसकी बनावट चट्टान जैसी थी। इसके बाद पुलस्त्य ऋषि ने यह वर्षों तप किया। कहते हैं इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र का नाम पुलस्त्य नगरी पड़ गया जो अपभ्रंश होते होते पुंछ हो गया। इसी वजह से श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के साथ बहने वाली नदी का नाम पुलस्त्य गंगा पड़ा, जिसे आज भी पाप नाशनी गंगा मानकर हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं और हर साल बड़ी तादाद में भोले के भक्त अपनी आराध्य का आशीर्वाद पाने यहां आते हैं।
1: पहली बार आए हैं, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है।
2: अरेंजमेंट कैसे लगे?
1: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा।
3: बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का विषय है आज कि हम प्रतिवर्ष ये साहसिक यात्रा करते हैं। ये यात्रा अलग अलग प्रांत की प्रतिदिन निकलती है। आज पहला जत्था मध्य भारत प्रांत और हमारे दो तीन प्रांतों का इकट्ठा होकर निकल रहा है। ये 27 तारीख तक यात्रा लगातार चलेगी। अलग अलग प्रांतों के लोग इस यात्रा में प्रतिदिन सहभागी बनेंगे।
2: अरेंजमेंट कैसे लगे यहाँ?
3: बहुत शानदार, बहुत उत्तम अरेंजमेंट है।
0: चट्टान जैसे शिवलिंग की वजह से नाम पड़ा बाबा चट्टानी, लेकिन बाबा बूढ़ा अमरनाथ नाम पड़ने की कथा बड़ी ही दिलचस्प है। कहते हैं करीब 2000 साल पहले पुंछ जिले का गांव लोरन तब के जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी थी, जिस पर उस समय रानी चंद्रिका का शासन था। रामकाज में निपुण रानी चंद्रिका अत्यंत दयालु एवं शिव भक्त थी, जो हर साल सावन में अमरनाथ गुफा में हिमलिंग की पूजा करने के बाद व्रत तोड़ती थी। लेकिन एक साल मौसम खराब होने से अमरनाथ जाने के सभी मार्ग बंद हो गए। ये सोच कर कि किसी भूल से भोलेनाथ रुष्ट हैं, रानी ने अन्न जल त्याग दिया और बीमार हो गए। कहते हैं एक दोपहर रानी ने सपने में एक बूढ़े साधु को देखा जिन्होंने रानी से उसके महल के 10 मील दूरी पर मौजूद शिव का लुप्त स्थान पर पूजा करने को कहा। इसके ठीक बाद श्वेत कपड़ों में एक साधु ने रानी को दर्शन दिए और अपने साथ उस गुफा तक लेकर आए जिसमें 4 द्वार बने थे। मंदिर सामने आते ही बूढ़े साधु गायब हो गए और इसके बाद रानी ने उन्हें बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा, जो प्रचलित हो गया।
4: थोजत जिला से प्रथम बार ऐसा हुआ है कि हम 95 की संख्या के अंदर हम यात्री यहाँ पहुँचे हैं और जितने भी राजस्थान के विभिन्न राज्य और भी राज्य हैं वहाँ से भी बहुत सारी संख्या के अंदर इतने उत्साह से लोग आए हैं यहाँ पे। जो उनके मन में जो उनके उत्साह है वो यहाँ उत्साह आज देखने को मिल रहा है कि विभिन्न राज्य के जो लोग हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे अरेंजमेंट्स सब उच्च स्तर के अरेंजमेंट्स है जिसके अंदर अभी प्रथम वर्ष ऐसा हुआ है कि पूरा इसमें सिस्टम डिजिटल कर दिया है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, अभी ऑनलाइन सिस्टम करने से अधिक सुलभता हो गई है। जो भी यात्री है अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आप जो भी संगठन के है वो आपको संपर्क कर लेंगे।
5: सबके अंदर बहुत अच्छी भावना है, श्रद्धालु सारे और बहुत भक्ति भाव से भरे हैं और अमरनाथ बाबा की यात्रा के लिए सब रवाना हुए हैं और सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है।
6: लोगों में बहुत उत्साह है। जैसे बर्फानी बाबा की यात्रा शुरू की थी तो 2005 से लेकर इस यात्रा को आरंभ किया गया है तो अभी एक विशाल वट वृक्ष के रूप में काफी संख्या में लोग यहाँ आना आरंभ हो गए हैं और आने वाले समय में जैसे बर्फानी बाबा में जाते हैं वैसे ही लोग इस यात्रा में जाना आरंभ कर लेंगे, जिसका प्रतिरूप अभी आप देख ही रहे हैं आपके सामने। कम से कम 60-70 हजार लोग इस वर्ष जाएंगे इन 7 दिनों में। अलग अलग प्रांत से अलग अलग की सारणी बनाई हुई है, वो अलग अलग आ रहे हैं।
0: कहते हैं स्वयं भगवान शिव द्वारा दिखाया गया ये स्थान सैकड़ों वर्षों के बाद भी एक बार फिर अदृश्य हो गया था, जिसे दक्षिण भारत के एक साधु स्वामी चंद्रचूड़ मुनि ने उजागर कर वर्षों तक यहां तप किया था। इस मंदिर के साथ ही पूर्व दिशा में स्वामी चंद्रचूड़ मुनि की समाधि भी बनाई गई है। सावन में कुल 12 दिनों तक बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा चलती है और श्रद्धालु दर्शन करते हैं, लेकिन इस दर्शन पूजन के साथ ही जुड़ी है पवित्र छड़ी यात्रा, जो पुंछ के दश नामी अखाड़े से निकलती है और बड़े ही धूमधाम से बूढ़ा अमरनाथ मंदिर तक जाती है। सीमा सुरक्षा बल, मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा छड़ी का स्वागत कर उसे आदर सहित मंदिर प्रांगण में ले जाया जाता है। पुलिस द्वारा छड़ी को सलामी दी जाती है और फिर छड़ी को बूढ़े अमरनाथ शिवलिंग पर स्थापित किया जाता है, जो रक्षाबंधन के एक दिन बाद तक विराजमान रहती है। इस छड़ी यात्रा के साथ ही मंदिर में 3 दिवसीय यात्रा एवं मेला शुरू हो जाता है, जो रक्षाबंधन के एक दिन बाद तक जारी रहता है। दशनामी अखाड़े से निकलने वाली छड़ी यात्रा इस धाम को एक अलग आभा देती है और बाबा के भक्तों को एक अलग अनुभव। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बात करेंगे मौसम की। देखिए, कई दिनों से उमस और चिपचिपे मौसम ने दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक के लोगों को परेशान कर रखा है। हाल ये है कि घर से बाहर निकलते ही पसीना और बेचैनी दोनों साथ में महसूस हो रहे हैं, लेकिन अब इस उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की

0: कहते हैं हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी मौसम की ताल पर थिरकती है। मानसून पूरे देश को जी भर कर भिगो रहा है, तो वही जैसे जैसे अगस्त गुजर रहा है, बरसते बादल बारिश की भरपाई भी कर रहे हैं। खबर ये है कि बादलों की आवाजाही के बीच मौसम फिर से चाल बदलने वाला है। बारिश के बाद जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, अब उस उमस के विदाई की गुड न्यूज आने वाली है। हवा की बदली चाल के बीच उम्मीद तो यही है कि अगले दो दिन दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा के लोगों को उमस से कुछ राहत मिल सकती है। उमस से राहत का ये सीन यूं ही नहीं बना है। हाल फिलहाल हवाओं ने रुख बदला है और उत्तर पश्चिम से आ रही सूखी हवाओं ने नमी को कम कर दिया है। लिहाजा और जैसे जैसे नमी घट रही है, वैसे वैसे चिपचिपी गर्मी का असर भी कम हो रहा है। मौसम में इस बदलाव के पीछे मानसून ट्रफ भी एक वजह बताई जा रही है। मानसून ट्रफ अब हिमालय की तलहटी की तरफ खिसक गया है और इसी के साथ बारिश का पैटर्न भी बदल गया है। फिलहाल मानसून की मेहरबानी पूर्वी और मध्य भारत पर ज्यादा है, जबकि दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में आसमान अपेक्षाकृत साफ है। एक दिन पहले की सैटेलाइट तस्वीरें भी मौसम का बदला रुख बयां कर रही है। पूर्वी यूपी से बिहार और बंगाल की खाड़ी तक मानसूनी बादलों की आवाजाही है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में बादलों की मौजूदगी कम है। आज की बात करें तो दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा में बारिश के आसार कम है। हालांकि कुछ इलाकों में शाम के वक्त हल्की फुल्की और छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन बादलों का खेल अभी थमा रही है, क्योंकि मानसून कब करवट ले ले कहा नहीं जा सकता। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 20 अगस्त के बीच बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके असर से मानसून ट्रफ दोबारा दक्षिण की ओर खिसक सकता है और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर फिर लौट सकता है। फिलहाल अभी के लिए खबर इतनी है कि जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, उस उमस के गुजरने का दौर शुरू हो चुका है। सूखी हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी वजह से मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। लेकिन मानसून ने अभी मैदान छोड़ा नहीं है, उसकी अगली करवट जल्द फिर से बारिश की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने रद्द की GSSC CGL परीक्षा 2014 के बाद की भर्तियों की होगी CID जांच। वाराणसी पे छत पर शुरू हुई मां गंगा की आरती, बढ़ते जल स्तर के चलते लिया गया फैसला, 7 अर्चकों ने विधिवत की आरती। जयपुर के गलता तीर्थ धाम

0: देखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा। गालव ऋषि की तपोस्थली है गलताधाम। बाहर से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम। देहरादून में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मौसम मुंबई में भी जमकर बरसे बरतरा। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार। चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल। राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी जोरदार आगाज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
2: जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई बाबा बूढ़ानाथ अमरनाथ यात्रा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अब ऑटो और ई रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्ग पुलिस ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत सड़कों पर चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा में QR कोड लगाए जाएंगे। इसके लिए ऑटो रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्रत्येक ऑटो और ई रिक्शा को एक QR कोड उपलब्ध कराया जाएगा। इस QR कोड के जरिए वाहन और उसके चालक से संबंधित आवश्यक जानकारी पुलिस के पास सुरक्षित रहेगी। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंचे और पूरे उत्साह, श्रद्धा और धार्मिक आस्था के साथ इस पवित्र यात्रा में शामिल हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के यात्री निवास से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना के जवानों की तैनाती की गई है। अब पंजाब के लोगों को पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए गोवा जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बन चुके पठानकोट के रावी दरिया पर बने डैम की चमरोड़ झील में अब ये सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। मिनी गोवा के नाम से मशहूर यहां के चमरोड़ में सैलानियों के लिए पैरासेलिंग की सुविधा शुरू की गई है। जयपुर के ऐतिहासिक गलता तीर्थ धाम में आस्था और भक्ति का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। गालव ऋषि की तपोस्थली गलता धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं का फूलों से खास अंदाज में स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से हुई इस पुष्प वर्षा के बीच श्रद्धालुओं ने जमकर जयकारे लगाए और पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया।
4: और अब बात गुरेज घाटी में खेल महोत्सव की। जम्मू कश्मीर के गुरेज में खेल इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने युवाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्थानीय लोगों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस ऐतिहासिक खेल महोत्सव का समापन पारंपरिक पोलो मैच के साथ हुआ। भारतीय सेना और स्थानीय सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में खेलों के साथ महिला भागीदारी, स्वच्छता अभियान और पौधारोपण जैसी सामुदायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

0: घाटी में घुड़सवारी, युवाओं की रेस, लड़कियों की एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ और ट्रॉफी उठाए खुशी से झूमते युवा, ये तस्वीरें कश्मीर घाटी में युवाओं का जोश और जज्बा बता रही हैं। ये बदलते कश्मीर की नई तस्वीर है। यहाँ के युवाओं में खेल के मैदान में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। युवाओं में जोश और जज्बे की ये तस्वीरें गुरेज घाटी से आई हैं, जहां इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। इसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का एक मंच मिला, जहां खेल के साथ साथ टीम वर्क, अनुशासन और आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। गुरेज में सेना की तरफ से खेल महोत्सव का ये आयोजन किया गया। इसमें आसपास के गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। खेल के मैदान में युवा खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया और पारंपरिक पोलो का मुकाबला इस खेल आयोजन का सबसे खास आकर्षण रहा, जहां घोड़ों की रफ्तार और खिलाड़ियों के शानदार तालमेल ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। गुरेज की पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक खेल भावना का ये संगम लोगों के लिए खास अनुभव रहा।
1: गुरेज में स्थानीय टीमों के बीच पोलो था। दरअसल गुरेज घाटी की अगर बात की जाए, यहाँ पर सदियों से पोलो खेला जा रहा है। ये अलग तरीके का पोलो है जो अंतर्राष्ट्रीय पोलो से अलग है, क्योंकि इसमें जो घोड़े इस्तेमाल होते हैं वो कम कद के होते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस भी अलग होती है। दरअसल लद्दाख क्षेत्र और गुरेज घाटी के साथ साथ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का पोलो खेला जाता है। भारतीय सेना को उम्मीद है कि यह रिवायती खेल यानी पोलो जो है उसको दोबारा सीमावर्ती इलाकों खासतौर से गुरेज घाटी में बहाल भी किया जाएगा और विकसित भी।
0: युवाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन ये आयोजन सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान और पौधारोपण जागरूकता की भी जानकारी दी गई।
1: भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज इलाके में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जो अब समाप्त हुआ है। इस विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद नियंत्रण रेखा पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए खेल की सुविधाएं न सिर्फ बढ़ाना, बल्कि साथ ही साथ उनके बीच में एक भावना खेल और मुकाबलों को लेकर पैदा करना।
2: गाँव की सफाई और प्लांटेशन का भी जो लक्ष्य रखा था कि कौन सा गाँव ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, उसमें भी इस मार्ग नंबर वन पे आ गया है। तो हम इंडियन आर्मी की तरफ से और पूरे बगदौर ब्लॉक की तरफ से गाँव इस मार्ग को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हर प्रकार की खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लड़कियों के साथ साथ इनकी लड़कियों ने भी काफी गेम्स में मैदान मार लिया है।
0: भारतीय सेना की ओर से आयोजित इस खेल महोत्सव का मकसद गुरेज के युवाओं को खेलों और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है, ताकि युवा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपनी प्रतिभा को निखारें और भविष्य में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें।
3: इससे क्या है कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हुए और या खासकर इसमें यहाँ की बच्चियों को मौका मिला अपने आप को आगे लाने के लिए।
0: दरअसल खेल से जुड़े ऐसे आयोजन घाटी के युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा पहचानने, उसे निखारने और बड़े मंच तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। खेलों के जरिए युवाओं को सकारात्मक दिशा मिल रही है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है और भविष्य की तैयारी का मौका भी मिल रहा है। इससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।
2: इंडियन आर्मी से यही रिक्वेस्ट है कि जो 1.0 इस साल हुआ है, तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को अपना टैलेंट शोकेस करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सके।
0: जाहिर है गुरेज घाटी में चले इस खेल महोत्सव में खेल के मैदान से लेकर स्वच्छता अभियान और पौधारोपण तक युवाओं को समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भी जोड़ा गया। ऐसे आयोजनों से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानने और निखारने का मौका भी मिलता है। जम्मू कश्मीर के गुरेज से अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन खबरों को जो कि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। इनमें से कुछ खबरें ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगी और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: बॉल है जिसे सब तक पहुंचनी है, लेकिन एक एक कर जिसके हाथ में गेंद आएगी उसे अपने सामने वाले को पास करना है, लेकिन उछाल कर नहीं जाकर उसके हाथों में सौंपना है, वो भी खास तरीके से। बच्चे जिस तरह से मेंढक की तरह कूद कूद कर अपना टास्क पूरा कर रहे हैं वो देखना दिलचस्प है। दाद तो देनी पड़ेगी, आसान नहीं है, पर देखिए कैसे जीत के लिए एक दूसरे का साथ दिया जा रहा है। संभवतः आटा है या फिर कोई पाउडर जैसी चीज मुंह में फंसाए मोटे कागज पर बिना हाथ लगाए उठाना है और उसे अपने साथी को पास करना है। आखिरी छोर तक पहुंचने के बाद वही प्रक्रिया दोहराते हुए वापस लौटना है। अब पाउडर जैसी चीज को बिना हाथ लगाए संभालना आसान तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। जिस तालमेल और संतुलन के साथ सबने अपने अपने हिस्से का काम किया वो देखकर लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। यूं ही नहीं कहते कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। अब इन्हें ही देखिए, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, ना ही एक दूसरे की भाषा बोलते समझते हैं, लेकिन दोस्ती पक्की वाली लग रही है। जिस तरह से डॉगी और बतख रेस लगा रहे हैं उससे तो लगता है ये दोनों का नियमित खेल है। जो भी हो, दोनों की ये दोस्ती वाली दौड़ लोगों को खूब पसंद आ रही है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी हो जाए तो स्कूल में मन लगा रहता है। अब इन बच्चों को ही देखिए कैसे एंजॉय कर रही हैं इस खेल को। वैसे ये जो कर रहे हैं वो देखने में बड़ा ही आसान सा स्टेप लग रहा है, पर जो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि अभ्यास तो इसके लिए भी चाहिए, वरना कदम गलत खांचे में भी पड़ सकता है और एक बार गलती हुई तो खेल से आउट। लेकिन ये बच्चियाँ होशियार हैं।
5: बात क्यों कर रहे?
0: सुना आपने, ये बस इन्हें ही बर्थडे में बुलाएंगे।
5: क्यों?
0: क्योंकि यही टीचर हैं जो इनको सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, इन्हें काम देती हैं। मतलब इस छोटी सी उम्र में भी इनको पता है कि अच्छे टीचर का मतलब क्या है। स्कूल पढ़ने ही तो आते हैं और यही वो टीचर हैं जो पढ़ाई के दौरान इन पर खास नजर रखती हैं। टीचर बार बार जताती हैं कि वो उससे प्यार नहीं करती।
5: मैं तो नहीं करती प्यार, जबरदस्ती प्यार करती हूँ,
0: बल्कि वो तो सभी बच्चों की तरह ही उसे ट्रीट करती हैं। इस पर बच्चा जिस तरह से रुआंसा होकर टीचर से अपनी बर्थडे में आने की रिक्वेस्ट करता है वो देखकर लोग उसकी मासूमियत पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।
5: मैं पूछ रही हूँ तो ढंग से बोलो, रो नहीं, मैं मारियो फिर रो रहे हो।
6: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र के FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, जो खाने पीने की खराब चीजों के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा में है। महाराष्ट्र FDA ने फिल्म स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस तीनों अभिनेताओं को विमल इलायची का विज्ञापन करने के लिए जारी किया गया है। FDA का आरोप है कि विमल इलायची विज्ञापन के जरिए राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक FDA ने 11 अगस्त को तीनों अभिनेताओं को नोटिस भेजकर विज्ञापन में उनकी भूमिका पर 15 दिन में जवाब मांगा है। FDA का कहना है कि विज्ञापन में विमल नाम, प्रोडक्ट और डायलॉग इस तरह इस्तेमाल किए गए हैं कि इससे विमल ब्रांड का प्रचार होता दिखता है। चूंकि विमल ब्रांड पान मसाला से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए FDA को शक है कि विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाले का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। ऐसे विज्ञापन को सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है, जिसमें किसी ऐसे प्रोडक्ट का सीधे विज्ञापन ना करके उसी ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट का विज्ञापन किया जाता है जिस पर रोक लगी है। महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटिन वाले गुटखा और पान मसाला पर 2012 से रोक है। ये रोक हर साल बढ़ाई जाती है। महाराष्ट्र में अभी ये रोक 13 जुलाई 2026 से एक साल के लिए लागू है। इसके तहत राज्य में पान मसाला बनाने, रखने, लाने, ले जाने और बेचने पर पाबंदी है। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संगठित गुटखा और तंबाकू नेटवर्क के मामले में पुलिस के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई की जाए। एक पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था कि अगर किसी तरह का कोई प्रोडक्ट लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है तो सरकार को उसे तुरंत बैन कर देना चाहिए। जाहिर है ये मुद्दा आम लोगों की सेहत से जुड़ा है। ऐसे में फिल्मी सितारों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल जनता का हित देखकर करें। इस मामले पर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
7: ये नहीं करनी चाहिए, मतलब फिर लाइक लोग इन्फ्लुएंस होती हैं कहीं ना कहीं, लाइक ऐसे बस लोग बोल देते हैं कि मूवी ही है, बट लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, हर कोई इतना एजुकेटेड नहीं होता, तो लाइक वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखते हैं कुछ भी करते हुए तो वो फॉलो करते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए, ऐसे मॉरली गलत है वो चीज, तो नहीं ही करना चाहिए।
8: आई थिंक उन्हें इस चीज की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए, क्योंकि मेनी पीपल स्पेशली यंगस्टर्स लुक अप टू देम, तो चाहे इवन दो उन्हें पता हो कि ये चीज़ ख़राब है, बट अगर वो उनको उनके लिए वो आइडल्स हैं या इफ दे आर लुकिंग अप टू देम, तो ऑफ कोर्स वो उस चीज़ से इंस्पायर होंगे या उस चीज़ से मोटिवेट होंगे कि हमें ऐसा बनना है तो हमें भी ये सब करना पड़ेगा। तो आई थिंक उनकी भी यहाँ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि वो अकाउंटेबिलिटी लें और ऐसी चीज़ें प्रमोट ना करें।
9: मैं तो मानूंगा कि मतलब हर किसी की लाइफ में स्टूडेंट या बड़े भी जो एक्टर्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, मतलब लोग उन्हें कुछ तो भगवान मानते हैं, बहुत मतलब अलग अलग फैन बेसिस है, तो उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ हमें बहुत लोग देखते हैं तो हमें कुछ अच्छी चीज़ प्रमोट करें जिससे वेलफेयर हो पब्लिक का और प्रोग्रेस करे पूरी कंट्री एज अ होल। तो या मैं तो अगेंस्ट हूँ पूरा, जो भी ऐसे उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए और देन उन्हें अपना डिसीजन मेक करना चाहिए।
10: देखिए ये सेलिब्रिटी एक अलग चीज़ है, पिक्चरों में आते किस लिए आते हैं आप लोग, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, आगे आपके प्रपोजल भी मिलते हैं, बहुत बड़े नाम भी होता है सोसाइटी में, भाई फलाना हीरो की फलानी फिल्म अच्छी है। बाकी रही अगर ये कोई ब्रांड चल रहा है तम्बाकू का वगैरह का, ये किस इसके लिए, तो वो भी आप किस लिए होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि तम्बाकू है, तम्बाकू में क्या गवर्नमेंट का भी तो रेवेन्यू मिलता ही है ना, तो आपको भी आपको सजेशन क्या, वो तो गवर्नमेंट जानती है कैसा करना है क्या नहीं करना, क्या बैन करना है ये क्या करनी करना है, तो वो तो गवर्नमेंट के ऊपर वाली बात है, तो आप दैट नॉट सजेशन। तो जबकि पैसा आप कमाते हैं, गवर्नमेंट भी कमाती है, एक्साइज ड्यूटी आती है, GST आता है, तो बहुत सी चीज़ का काफ़ी बेनिफिट प्रॉफिट होती है।
4: खराब सड़क पर गाड़ी चलाते हुए गुस्सा तो हम सभी को आ जाता है, कहीं गड्ढा बचाने के चक्कर में गाड़ी डगमगाती है तो कहीं ये गड्ढे हादसे की वजह बन जाते हैं, लेकिन गुस्सा करने के बाद हम अक्सर यही सोचकर चुप हो जाते हैं कि आखिर हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने इसी सोच को बदलने की कोशिश की और उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो कि सड़क के गड्ढों को खुद पहचान सकता है और जिम्मेदार या फिर लापरवाह तक आपको पहुंचा सकता है, यानी कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर जिम्मेदार व्यक्ति तक गड्ढों की जानकारी पहुंचाने का काम काफी आसान हो गया है।

0: सड़कों पर ये गड्ढे अखिल भारतीय समस्या बन चुके हैं। ये गड्ढे न केवल आपका सफर बर्बाद करते हैं बल्कि गाड़ियों को खासा नुकसान भी पहुंचाते हैं। और फिर शुरू होती है शिकायतों की कभी न खत्म होने वाली कथा, जिसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने समस्या का एक गजब का AI सॉल्यूशन खोज निकाला है। बेंगलुरु के इंजीनियर गौरव सेन ने ऐसा AI सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए न केवल गड्ढों की पहचान संभव है बल्कि इन गड्ढों की मरम्मत के जिम्मेदारों तक पहुंचना भी आसान हो गया है। दरअसल ये सिस्टम सड़क पर चलते हुए गड्ढों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करता है। कार में लगे डैश कैम, GPS और एक्सेलेरोमीटर से सड़क की जानकारी जुटाई जाती है, जिसके बाद AI विजन मॉडल तस्वीरों और वीडियो को स्कैन करके अलग अलग आकार के गड्ढों की पहचान करता है। खास बात यह कि सिस्टम उन गड्ढों को भी पहचान सकता है जिन्हें दूर से देखना मुश्किल हो, क्योंकि कई बार सड़क का गड्ढा स्पीड ब्रेकर जैसा दिखाई देता है। गौरव सेन ने कोडेक्स की मदद से ये ऐप तैयार किया है जो इस पूरे डेटा को रिकॉर्ड करके OpenAI तक भेजता है। लेकिन कहानी सिर्फ गड्ढे की पहचान तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल होता है, गड्ढा मिला है तो इसे ठीक कौन करेगा। इसके लिए ऐप को करीब 2900 सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स से जोड़ा गया। सिस्टम सड़क के किसी खास हिस्से की पहचान करके ये पता लगा सकता है कि उस सड़क का ठेका किस कंपनी या ठेकेदार के पास है। यानी अगर कोई सड़क वारंटी पीरियड में है तो ठेकेदार को बिना सरकार पर अतिरिक्त खर्च डाले सड़क की मरम्मत करनी पड़ सकती है। और ये पूरा रिकॉर्ड महज 4 सेकंड में तैयार हो सकता है, जिसमें गड्ढे की तस्वीर, उसकी सटीक लोकेशन, टेंडर नंबर और सड़क से जुड़े अधिकारी की जानकारी शामिल होती है। गौरव ने इस सिस्टम का टेस्ट ऑफिस जाते वक्त किया। एक सफर में AI ने उनकी राह में मौजूद 12 गड्ढों को पहचान लिया। गौरव सेन का ये प्रयोग अब बेंगलुरु से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। लोग गौरव के इस AI मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ यूजर उसे ऐसा ऐप बता रहे हैं जो समस्या के साथ आपको सही समाधान तक ले जाता है। सड़क के गड्ढों के लिए AI से खोजा गया ये सॉल्यूशन बड़े काम का हो सकता है, क्योंकि देश में हर साल सड़क दुर्घटना में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनकी बड़ी वजह सड़क के गड्ढे भी होते हैं। हाल ही में लोकसभा में सड़क परिवहन मंत्रालय से सड़क हादसों को लेकर सवाल पूछे गए थे। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने जो जवाब दिया है वो वाकई चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों के आंकड़ों के आधार पर बताया कि हर साल सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही ये जानकारी भी दी कि किस उम्र के लोग सड़क पर बने गड्ढों के कारण सबसे ज्यादा हादसों का शिकार हो रहे हैं। इन आंकड़ों में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले 25 से 35 साल के लोग होते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में गड्ढों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 53% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में जहां 3,564 लोगों की मौत सड़कों पर बने गड्ढे की वजह से हुई, वहीं साल 2021 में 3,625 लोगों की मौत का जिम्मेदार सड़क के गड्ढे बने। वहीं साल 2022 में 4,446 लोगों की मौत सड़क पर बने गड्ढे की वजह से हुई। इनमें से 54% से ज्यादा मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में हुई, जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बनकर उभरा है। मंत्रालय को सौंपी गई राज्य पुलिस रिपोर्ट से लिए गए डेटा से पता चला कि आंध्र प्रदेश, बिहार और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने 5 साल के समय में गड्ढों से जुड़ी कोई दुर्घटना या मौत की सूचना नहीं दी। ये आंकड़ा ये भी दिखाता है कि साल दर साल सड़क पर बने गड्ढों की वजह से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन उन आंकड़ों में कमी नहीं आ रही। उल्टा हर गुजरते साल के साथ ही आंकड़ा बढ़ ही रहा है, जो मौजूदा सरकारों, प्रशासन और स्थानीय विभागों के लापरवाह रवैया को भी दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आपने ChatGPT से सवाल पूछे होंगे, जवाब भी तलाशे होंगे, लेकिन क्या कभी अपनी खोई हुई चप्पलें भी ChatGPT से ढूंढवाई है? सुनकर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन भारत में ऐसा ही एक दिलचस्प मामला सामने आया है। एक शख्स मंदिर गया था, पूजा की और बाहर आया तो उसकी चप्पलें गायब थी। सामने चप्पल जूतों का ऐसा ढेर लगा था कि अपनी चप्पल पहचानना भी किसी मिशन से कम नहीं लग रहा था। लेकिन जनाब ने हार नहीं मानी, सीधे ChatGPT की मदद ली और फिर क्या हुआ देखिए।
2: अगर आप मंदिर जाएं और आपके फुटवेयर न मिले तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार AI ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि अब वहां से आपको अपने फुटवेयर ढूंढने में मदद जरूर मिलेगी। दरअसल शुभांग बोरकर वो शख्स है जिन्होंने AI की मदद से ऐसा कर भी दिखाया है। ये AI वाली ट्रिक शुभांग के खोए फुटवेयर ढूंढने में खूब मददगार साबित हुई है। शुभांग ने मिनटों में AI की मदद से अपने जूते ढूंढ निकाले। गोवा बेस्ड शुभांग बोरकर पेशे से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं। उन्होंने दरअसल उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर से ये वीडियो शूट किया, जिसमें जहां नजर डालिए जूते चप्पल ही दिख रहे हैं। जाहिर है इन फुटवेयर में से अपने वाला पहचानना शुभांग के लिए इतना आसान टास्क नहीं था। वो एक एक करके फुटवेयर देखते, तब जाकर उनको अपना फुटवेयर मिलता। लेकिन देखिए चैट जीपीटी का कमाल, जिसकी मदद से शुभांग ने फुटवेयर्स की भीड़ में अपने वाला क्लॉग्स ढूंढ ही निकाला। शुभांग ने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो का नाम यूज्ड चैट जीपीटी टू फाइंड माय लॉस्ट क्लॉग्स रखा। इसके लिए सबसे पहले मंदिर के बाहर जहां जूते चप्पल रखे थे, वहां से रैक और फुटवेयर एरिया की तस्वीरें ली। इसके बाद शुभांग ने अपने फुटवेयर क्लॉग्स की तस्वीर चैट जीपीटी पर अपलोड की। शुभांग ने एआई से वो तस्वीर देखकर उनकी जोड़ी पहचानने में मदद करने और फिर फुटवेयर के बीच उनके क्लॉग्स को ढूंढने के लिए कहा। हालांकि एक तस्वीर से बात साफ नहीं हुई तो शुभांग ने फुटवेयर एरिया के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। वो एक के बाद एक तस्वीरें चैट जीपीटी को भेजते रहे, जिनमें सैकड़ों जूते चप्पल दिखाई दे रहे थे। चैट जीपीटी ने तस्वीरों को देखकर उनमें मौजूद जोड़ियों को शुभांग की भेजी हुई क्लॉग्स की तस्वीर से मिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे अपनी खोई हुई चप्पल ढूंढने का ये मामला एक छोटे से रियल वर्ल्ड एआई एक्सपेरिमेंट जैसा बन गया। कई तस्वीरें देखने और उनका विश्लेषण करने के बाद चैट जीपीटी ने एक ऐसी जोड़ी की तरफ इशारा किया जो शुभांग के क्लॉक से मिलती जुलती दिखाई दी। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर फुटवेयर खोजने की शुभांग की ये एआई ट्रिक लोगों को पसंद भी आ रही है। यानी जिस क्लॉक्स को शुभांग खुद सैकड़ों जूते चप्पलों के बीच तलाश रहे थे, उसे उनके साथी बने एआई ने ढूंढ निकाला। यानी इस काम में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किसी बड़ी रिसर्च या तकनीकी काम में नहीं, बल्कि बेहद सामान्य सी परेशानी को सुलझाने में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: और अब बात उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों को है। हम बात कर रहे हैं नमित मल्होत्रा की रामायण की। दो पार्ट में बन रही इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यानी कि फिल्म का पैमाना जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी है इसकी प्लानिंग भी। अब मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी कहानी, क्योंकि रामायण 6 नवम्बर को इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज होगी जबकि भारत में दिवाली पर दस्तक देगी।
3: तुम्हारा नया

0: भारतीय सिनेमा के सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट में से एक रामायण, जिसने रिलीज से अरसे पहले ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, आम जन से लेकर खास तक, समाज के हर तबके, हर वर्ग तक रामायण पहुंच पाए, इसके लिए मेकर्स एक खास प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं।
1: जब जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की।
0: मेकर्स की प्लानिंग का एक ही अहम हिस्सा है फिल्म की रिलीज डेट। रामायण पार्ट 1 दीपावली पर रिलीज होनी है, ये तय है, लेकिन किस तारीख को रिलीज होगी ये अब तक पुख्ता तौर पर तय नहीं था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में रामायण की रिलीज डेट 30 अक्टूबर बताई जा रही थी, लेकिन कन्फर्म कुछ भी नहीं था।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार।
0: अब रामायण के मेकर्स ने काफी सोच समझकर रामायण की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है।
2: निर्णय मैं ले चुका हूं, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
3: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास।
0: 6 नवंबर यानी दिवाली से 2 दिन पहले रामायण पार्ट 1 वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। इससे मेकर्स को 2 हफ्ते का दमदार रिलीज पैसेज मिलने जा रहा है। इसे जानने के लिए इस तारीख की क्रोनोलॉजी समझनी होगी।
3: और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।
0: 6 नवंबर को शुक्रवार है और इसी दिन धनतेरस भी है। 7 नवंबर को शनिवार है यानी वीकेंड, छुट्टी का दिन होने से इसे भरपूर दर्शक भी मिलेंगे। 8 नवंबर को रविवार है और दीपावली भी है, जिसका फायदा फिल्म को फैमिली ऑडियंस के तौर पर मिल सकता है। 9 नवंबर को सोमवार है। 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, कई दफ्तरों में उस दिन छुट्टी होती है। और 11 नवंबर यानी बुधवार को भाई दूज का त्योहार है। 13 नवंबर यानी शुक्रवार से दूसरे हफ्ते से वीकेंड शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि रामायण को न सिर्फ बम्पर ओपनिंग मिल पाएगी बल्कि 2 दमदार वीकेंड भी, यानी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए अच्छा खासा वक्त मिलने जा रहा है।
3: वो मोहित हो गई है आप पे।
4: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूर्पणखा।
0: हालांकि ओवरसीज में रामायण की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। 5 नवंबर हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो रिलीज होगी, मतलब 6 नवंबर को इसका सामना रामायण से होगा। गॉडजिला एक पॉपुलर फ्रेंचाइज है, इसलिए रामायण को क्लैश झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत में रामायण को एक छत्र राज मिल सकेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी सोच।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने रद्द की जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2014 के बाद की भर्तियों की होगी सीआईडी जांच। वाराणसी पे छत पर शुरू हुई मां गंगा की आरती, बढ़ते जलस्तर के चलते लिया गया फैसला, सात अर्चकों ने विधिवत की आरती। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में देखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। बाहर से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम मुंबई में भी जमकर बरसे बरता। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी जोरदार आगाज़।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां बात कर रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर की घाटी में भोलेनाथ का जयकारा था, अब जम्मू की वादी में हर हर महादेव का जयघोष सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। सोमवार से शुरू हुई ये यात्रा 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक यूं ही चलेगी, जिसमें देखिए शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से शिवभक्त जो हैं जम्मू पहुंचने का जो उनका सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज आपको जम्मू से लेकर पुंछ तक इस यात्रा की भव्य तस्वीरें तमाम दिखाएंगे। बाबा चट्टानी के दर्शन करने के लिए निकले श्रद्धालुओं का जोश दिखाएंगे, कितना हाई नजर आ रहा है। इसके साथ ही बाबा बूढ़ा अमरनाथ का भव्य दरबार भी दिखाने जा रहे हैं। शिव का ये धाम कितना पुराना है, कितना खास है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको इस पावन धाम की अद्भुत कहानी भी बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के साथ। देखिए कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद अब जम्मू में बाबा चट्टानी के दर्शन करने की होड़ लगी हुई है। सिर्फ 12 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु जो हैं पहुंच रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के बाद सोमवार की सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना कर दिया और इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रिपोर्ट देखिए।

0: एक बार फिर हर हर महादेव का नारा है, एक बार फिर अमरनाथ का बुलावा है। लेकिन मंजिल इस बार अमरनाथ की गुफा नहीं बल्कि बूढ़ा अमरनाथ धाम है। कुछ दिन पहले इसी जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए जत्थे निकले थे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्त उमड़े थे, पर इस दफा जम्मू से कारवां पुंछ के लिए जा रहा है, क्योंकि पुंछ जिले के मंडी तहसील के राजपुरा में मौजूद है बाबा चट्टानी का धाम यानी बूढ़ा अमरनाथ मंदिर।
1: 2005 आयोजित की जा रही यात्रा केवल पर्वतों और घाटियों को पास करने वाली यात्रा नहीं है, ये हमारे पहाड़ी पथ से कहीं अधिक हम सबके अंतर्मन की यात्रा है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये तीर्थ यात्रा स्वयं के भीतर से चेतना को पहचानने की भी यात्रा है। यह पावन तीर्थ यात्रा भगवान शिव की ओर अग्रसर होने की भी यात्रा है, जो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थल की दिव्य ऊंचाइयों में विद्यमान है।
0: 17 अगस्त से ये यात्रा शुरू हुई है और 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक चलेगी, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू पहुंचने लगे हैं। भगवती नगर यानी यात्री निवास से सोमवार को जब पहला जत्था निकला तो शिव भक्तों का जोश देखने लायक था। पूजा पाठ के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को झंडा दिखाकर रवाना किया।
2: बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे थे, आज पहला जत्था बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का यहां से रवाना हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा यहां पर, जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया, इस पहले जत्थे को यहां से रवाना किया। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है उत्साहित होकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन था यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि कितना जो है वो उत्साह है यात्रियों के बीच। और ये बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जयघोष के साथ जो है वो यात्री यहाँ पर उत्साहित है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जत्था जो है वो रवाना हुआ है। और मैं इस तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि आप देखिएगा कि कितने उत्साहित हैं यात्री, और जय श्री राम के जयघोष के साथ जो है ये यात्रा रवाना हो रही है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मैं गोकुल से कहूंगा कि वो आगे आएंगे और आपको दिखाना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रा को जो है वो फ्लैग ऑफ किया है, और देखिएगा दूर दूर तक ये बसेस जो है वो अब यहाँ से रवाना हुई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के जो है वो दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना हुई है। और ख़ास तौर पर इस यात्रा का मकसद है कि पुंछ जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उसे देश के जो विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं वो वहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचे, क्योंकि 10 दिन की ये यात्रा रहती है। और इस पहले जत्थे का हर एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी ये यात्रा एंटर करेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका भव्य स्वागत होगा। जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन यहाँ पर, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के साथ कई टुकड़ियाँ जो है इस यात्रा की सुरक्षा में तैनात हैं, और जम्मू पुंछ हाईवे को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो रखा गया है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं, और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये पावन यात्रा जो है वो 10 दिन के लिए यानी आज 17 तारीख से लेके 28 तारीख तक जो है वो यात्रा ये चलेगी। और इस यात्रा में देश भर से आने वाले श्रद्धालु बेहद खुश है और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
0: धार्मिक परंपरा में बाबा चट्टानी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे अमर कथा से जुड़े पवित्र मार्ग का पहला पड़ाव माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने की शुरुआत यहीं से की थी, जो बाद में अमरनाथ गुफा में पूरी हुई थी। इसीलिए ये मंदिर केवल एक धाम नहीं बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक प्रवाह का हिस्सा है।
2: राहुल जी कहाँ से आए?
3: जयपुर से।
2: जयपुर से आए, कब से आ रहे बाबा की यात्रा?
3: 30 साल है साहब।
2: तो कैसा लग रहा है इस बार की व्यवस्था, ये सब चीज?
3: अपन ये चाहते हैं कि पूरा देश आए, और जो अपने महादेव जिनकी यहाँ पे स्थापना हुई थी किसी कारण से यहाँ पे वो लुप्त हो गए, जिनकी पूजा होना बिल्कुल बंद हो गई थी, जो आज यहाँ के किया है लोगों ने, जनता ने अपने देश के लिए, और उसको जागृत किया है, और आज यहाँ लाखों की तादाद के अंदर बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं। बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
0: जिसे देखने और महसूस करने के लिए हर साल हजारों हजार की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इस साल पहले जत्थे में मध्य भारत, कर्नाटक, जयपुर और जोधपुर के भक्त शामिल हुए और उनका जोश जबरदस्त है। जो श्रद्धालु पुंछ की इस यात्रा में शामिल होते हैं, उनका मकसद सिर्फ मंदिर दर्शन नहीं होता, बल्कि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के बीच ये यात्रा शिव अमरत्व और दिव्य रहस्य की एक सतत कथा है, जिसे समझना एक अद्वितीय अनुभव है। तभी तो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए शिव भक्त मस्त मगन होकर पहले जम्मू और फिर यहाँ से पुंछ की ओर निकल पड़े हैं। जम्मू से 244 किलोमीटर। जिस तरह बाबा बर्फानी का दरबार हिमालय के ऊंचे शिखर पर मौजूद प्राकृतिक गुफा में है, ठीक उसी तरह से बाबा चट्टानी पीर पंजाल श्रेणी में मौजूद बेहद खूबसूरत जगह पर मौजूद है। हाँ, ये जरूर है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए ऊंची चढ़ाई नहीं है, लेकिन इस यात्रा में घाटी भी है और जलधारा भी। पहाड़ और पुलस्ता नदी मिलकर एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक शांति देते हैं। तभी तो जो एक बार बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए आता है, वो बार बार आता है।
4: आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे पुंछ में एक जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा शुरू होने वाली है, उसी कड़ी में यहाँ पे हमारे स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी की याद में यहाँ पे एक भव्य त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है, जो बिल्कुल एक LOC पे हमारा नवग्रह मंदिर है वहां से स्टार्ट होती है और यहाँ पे यात्रा ग्राउंड, जिसको कॉलेज ग्राउंड बोलते हैं, यहाँ पे आती है। यहाँ पे विधिवत पूर्वक यहाँ पे त्रिशूल का यहाँ पे पूजन होता है और जो पूरे भारतवर्ष से यात्री आते हैं वो इसी त्रिशूल का पूजन करते हैं और उसके बाद वो बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। ये आज त्रिशूल यात्रा का महत्व ये है कि ये हमारे जो स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी थे, जिनका हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने बहुत बड़ा इस हमारी यात्रा में योगदान दिया था, ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने यात्रा शुरू की थी। और आज आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ बिना मजहब मिलत सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आए हुए और इस यात्रा में शामिल हुए।
5: ये जो त्रिशूल यात्रा है, आपको पता है हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब यहाँ आती है उससे एक दिन पहले ये जो त्रिशूल यात्रा है, ये नवग्रह मंदिर अजोट जो कि देरिया में है, वहाँ से निकलती है और यात्रा ग्राउंड तक पहुँचती है। आपने देखा होगा भोले का जो त्रिशूल है, ये एक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो हमारे पुंछ के वासी हैं, खास करके बिना मजहब मिलत हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पहुँचता है और ये खास करके एक तरह से आयोजन होता है बाबा बूढ़ा अमरनाथ से पहले कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आ रही है, जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए सारे पुंछ वासियों को, जिस तरह से वो वेलकम करने के लिए हर बार यात्रियों को यहाँ पहुँचते हैं।
0: पहाड़ी नदी का जल है भजन और भगवा ध्वज और इन सब के साथ शिव भक्तों की श्रद्धा, ये सब मिलकर बूढ़ा अमरनाथ धाम को एक जीवंत धार्मिक अनुभव बना देते हैं और खासकर सावन में अनगिनत श्रद्धालुओं और संतों की मौजूदगी से धाम शिवमय हो जाता है। इस साल भी बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए यात्रा शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे मार्ग पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, यात्रियों का जत्था सुरक्षा घेरे में धाम तक पहुंचाएगा और वापस आएगा। पूरे रास्ते आवास, भोजन और दूसरी तमाम सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की तादाद हर साल बढ़ रही है। जो लोग किसी वजह से अमरनाथ गुफा नहीं जा पाते, वो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसकी वजह ये भी है कि ये यात्रा आसान है और दूसरी अहम बात ये कि इसकी अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा है, जिससे लोगों की गहरी आस्था भी जुड़ी है। हर साल वार्षिक बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से एक दिन पहले त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी LOC पर मौजूद नवग्रह मंदिर में त्रिशूल यात्रा की शुरुआत हुई। पूजा पाठ के बाद मंत्रोच्चार के साथ एक विशाल त्रिशूल को लिए शिव भक्त चल पड़े। फूलों और झंडों से सजे त्रिशूल को लेकर भक्त यात्रा में आगे बढ़ते चले गए। जयकारों से माहौल शिवमय होता गया। पुंछ के इलाकों और गलियों से गुजरती हुई त्रिशूल यात्रा कॉलेज ग्राउंड पहुंची, जहां यात्रा के लिए बेस कैंप बनाया गया है। ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है। अमरनाथ की तरह ही इस यात्रा में धार्मिक सद्भाव साफ नजर आता है। अगले 10 दिनों तक पुंछ का ये इलाका शिव की भक्ति से सराबोर रहेगा। घाटी में हर हर महादेव का जय घोष होगा। जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। हालांकि 90 के दशक में आतंकवाद और सीमा पार से लगातार होने वाली गोलाबारी के चलते ये महान यात्रा रुक गई थी, लेकिन पिछले 21 सालों से इस यात्रा को लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु पूरे जोश के साथ शामिल होते हैं। यात्रियों का पहला जत्था जब पुंछ में बेस कैंप पर पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। देखिए,

0: हम बोले कि जयघोष के साथ आज जो यात्रा का पहला जत्था यहाँ पुंछ में पहुंचा और पुंछ में ये महामूर्ति का एक यहाँ पे पूजा अर्चना की गई। ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जो पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ बम बोले के नारे से और यहाँ पुंछ में आज कई यूपी से कोई हरियाणा से कोई गुजरात से यहाँ यात्रु आए हुए
1: बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा की है, वो बहुत अच्छी है। रास्ते में भी हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिली और हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी हम आज पहली बार आए हैं और आगे भी हमारी इच्छा हो रही है यहाँ सबकी सुविधा अच्छी देख के।
0: यहाँ हजारों की तादाद में लोग यहाँ पूरा अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं। अब कुछ स्थानीय लोग हैं वहाँ पे जयपुर के रहने वाले, उनसे हम बात
2: हाँ सर, आपका नाम?
3: सर मेरा नाम जटा शंकर अग्रवाल है, मैं जयपुर राजस्थान मानसरोवर से आया हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी 200 आदमी आए हैं।
4: हम ये कहना चाहते हैं कि जगदानंद बाबा के हम कुंज में आए हैं, जो व्यवस्था पहले थी अब किधर रही है, तो हम चाहते हैं किससे ज्यादा वोट मांगना चाहते।
5: जयपुर से हमारे 656 लोग आए हैं, यात्री आए हैं और पूरे राजस्थान से करीब 4,000-5,000 के लगभग संख्या में जो यात्री आए हैं। पहले की बजाय अब की बार हम निर्भय होकर यात्रा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का भय नहीं है।
0: हजारों की संख्या में ये लोग आए वहाँ से और इन लोगों का ये कहना है कि 370 और 35 का हटना, उससे ये लगता है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मंजीत सिंह,
6: देखिए बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि आस्था, विश्वास और शक्ति का वो सफर है जिसकी अलग आध्यात्मिक अनुभूति है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्तों के लिए ये यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। जो लोग किसी वजह से पवित्र अमरनाथ गुफा में हिमलिंग के दर्शन नहीं कर पाते, उनके लिए बाबा चट्टानी के दर्शन का अवसर होता है। आपको बता दें कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ से जुड़ी आस्था की कहानी सतयुग में रावण के दादा यानी ऋषि पुलस्त से जुड़ी हुई है, लेकिन मान्यता यह है कि जम्मू कश्मीर की रानी यानी चंद्रिका ने भगवान शिव को यहां बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा था। क्या है कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: अद्भुत है भगवान शिव के दोनों धाम, कश्मीर में बाबा बर्फानी है तो यहाँ जम्मू में बाबा चट्टानी। अमरनाथ में बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग तो यहाँ पुंछ में सफेद चमचम शिवलिंग। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन चढ़ाई है तो बाबा चट्टानी तक पहुँचना आसान। अमरनाथ की लंबी चली यात्रा के बाद अब 10 दिनों तक बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन की होड़ है। जैसा पावन धाम वैसी पुरानी इसकी कहानी, जो शुरू हुई सतयुग से। कहते हैं सतयुग में एक दिन जब महर्षि पुलस्त्य ध्यान में बैठे थे तो उन्हें बोध हुआ कि पांचाल पहाड़ी में वो जगह मौजूद है जहां भगवान शिव ने पहली बार देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। पुलस्त्य इस जगह पर पहुंचे और छोटी सी गुफा में घोर तप शुरू किया। तब से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। पुलस्त्य ने कहा कि जहां आपके दर्शन हुए हैं उसे ऐसा धार्मिक महत्व प्रदान करें कि युगों युगों तक आपके भक्त यहां आते रहें। इसके बाद भगवान शिव अदृश्य हुए तो एक चट्टान की गुफा में भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जिसकी बनावट चट्टान जैसी थी। इसके बाद पुलस्त्य ऋषि ने यह वर्षों तप किया। कहते हैं इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र का नाम पुलस्त्य नगरी पड़ गया जो अपभ्रंश होते होते पुंछ हो गया। इसी वजह से श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के साथ बहने वाली नदी का नाम पुलस्त्य गंगा पड़ा, जिसे आज भी पाप नाशनी गंगा मानकर हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं और हर साल बड़ी तादाद में भोले के भक्त अपनी आराध्य का आशीर्वाद पाने यहाँ आते हैं।
1: पहली बार आए हैं, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है।
2: अरेंजमेंट कैसे लगे?
1: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा।
3: बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का विषय है आज कि हम प्रतिवर्ष ये साहसिक यात्रा करते हैं। ये यात्रा अलग अलग प्रांत की प्रतिदिन निकलती है। आज पहला जत्था मध्य भारत प्रांत और हमारे दो तीन प्रांतों का इकट्ठा होकर निकल रहा है। ये 27 तारीख तक यात्रा लगातार चलेगी। अलग अलग प्रांतों के लोग इस यात्रा में प्रतिदिन सहभागी बनेंगे।
2: अरेंजमेंट कैसे लगे यहाँ? जो
3: बहुत शानदार, बहुत उत्तम अरेंजमेंट है।
0: चट्टान जैसे शिवलिंग की वजह से नाम पड़ा बाबा चट्टानी, लेकिन बाबा बूढ़ा अमरनाथ नाम पड़ने की कथा बड़ी ही दिलचस्प है। कहते हैं करीब 2000 साल पहले पुंछ जिले का गांव लोरन तब के जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी थी, जिस पर उस समय रानी चंद्रिका का शासन था। रामकाज में निपुण रानी चंद्रिका अत्यंत दयालु एवं शिव भक्त थी, जो हर साल सावन में अमरनाथ गुफा में हिमलिंग की पूजा करने के बाद व्रत तोड़ती थी। लेकिन एक साल मौसम खराब होने से अमरनाथ जाने के सभी मार्ग बंद हो गए। ये सोच कर कि किसी भूल से भोलेनाथ रुष्ट हैं, रानी ने अन्न जल त्याग दिया और बीमार हो गए। कहते हैं एक दोपहर रानी ने सपने में एक बूढ़े साधु को देखा जिन्होंने रानी से उसके महल के 10 मील दूरी पर मौजूद शिव का लुप्त स्थान पर पूजा करने को कहा। इसके ठीक बाद श्वेत कपड़ों में एक साधु ने रानी को दर्शन दिए और अपने साथ उस गुफा तक लेकर आए जिसमें 4 द्वार बने थे। मंदिर सामने आते ही बूढ़े साधु गायब हो गए और इसके बाद रानी ने उन्हें बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा, जो प्रचलित हो गया।
4: थोजत जिला से प्रथम बार ऐसा हुआ है कि हम 95 की संख्या के अंदर हम यात्री यहाँ पहुँचे हैं और जितने भी राजस्थान के विभिन्न राज्य और भी राज्य है वहाँ से भी बहुत सारी संख्या के अंदर इतने उत्साह से लोग आए हैं यहाँ पे। जो उनके मन में जो उनके उत्साह है वो यहाँ उत्साह आज देखने को मिल रहा है कि विभिन्न राज्य के जो लोग हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे अरेंजमेंट्स सब उच्च स्तर के अरेंजमेंट्स है जिसके अंदर अभी प्रथम वर्ष ऐसा हुआ है कि पूरा इसमें सिस्टम डिजिटल कर दिया है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, अभी ऑनलाइन सिस्टम करने से अधिक सुलभता हो गई है। जो भी यात्री है अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आप जो भी संगठन के है वो आपको संपर्क कर लेंगे।
5: सबके अंदर बहुत अच्छी भावना है, श्रद्धालु सारे और बहुत भक्ति भाव से भरे हैं और अमरनाथ बाबा की यात्रा के लिए सब रवाना हुए और सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है।
6: लोगों में बहुत उत्साह है। जैसे बर्फानी बाबा की यात्रा शुरू की थी तो 2005 से लेकर इस यात्रा को आरंभ किया गया है तो अभी एक विशाल वट वृक्ष के रूप में काफी संख्या में लोग यहाँ आना आरंभ हो गए हैं और आने वाले समय में जैसे बर्फानी बाबा में जाते हैं वैसे ही लोग इस यात्रा में जाना आरंभ कर लेंगे, जिसका प्रतिरूप अभी आप देख ही रहे हैं आपके सामने। कम से कम 60-70 हजार लोग इस वर्ष जाएंगे इन 7 दिनों में। अलग अलग प्रांत से अलग अलग की सारणी बनाई हुई है, वो अलग अलग आ रहे हैं।
0: कहते हैं स्वयं भगवान शिव द्वारा दिखाया गया ये स्थान सैकड़ों वर्षों के बाद भी एक बार फिर अग्रेश हो गया था, जिसे दक्षिण भारत के एक साधु स्वामी चंद्रचूड़ मुनि ने उजागर कर वर्षों तक यहां तप किया था। इस मंदिर के साथ ही पूर्व दिशा में स्वामी चंद्रचूड़ मुनि की समाधि भी बनाई गई है। सावन में कुल 12 दिनों तक बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा चलती है और श्रद्धालु दर्शन करते हैं, लेकिन इस दर्शन पूजन के साथ ही जुड़ी है पवित्र छड़ी यात्रा, जो पुंछ के दश नामी अखाड़े से निकलती है और बड़े ही धूमधाम से बूढ़ा अमरनाथ मंदिर तक जाती है। सीमा सुरक्षा बल, मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा छड़ी का स्वागत कर उसे आदर सहित मंदिर प्रांगण में ले जाया जाता है। पुलिस द्वारा छड़ी को सलामी दी जाती है और फिर छड़ी को बूढ़े अमरनाथ शिवलिंग पर स्थापित किया जाता है, जो रक्षाबंधन के एक दिन बाद तक विराजमान रहती है। इस छड़ी यात्रा के साथ ही मंदिर में 3 दिवसीय यात्रा एवं मेला शुरू हो जाता है, जो रक्षाबंधन के एक दिन बाद तक जारी रहता है। दशनामी अखाड़े से निकलने वाली छड़ी यात्रा इस धाम को एक अलग आभा देती है और बाबा के भक्तों को एक अलग अनुभव। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: बात करेंगे मौसम की। देखिए, कई दिनों से उमस और चिपचिपे मौसम ने दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक के लोगों को परेशान कर रखा है। हाल ये है कि घर से बाहर निकलते ही पसीना और बेचैनी दोनों साथ में महसूस हो रहे हैं, लेकिन अब इस उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर निकल कर आई। उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से अब सूखी हवाओं ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और इन हवाओं के असर से मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों में बदलता हुआ नजर आ सकता है।

कहते हैं हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी मौसम की ताल पर थिरकती है। मॉनसून पूरे देश को जी भर कर भिगो रहा है, तो वही जैसे जैसे अगस्त गुजर रहा है बरसते बादल बारिश की भरपाई भी कर रहे हैं। खबर ये है कि बादलों की आवाजाही के बीच मौसम फिर से चाल बदलने वाला है। बारिश के बाद जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, अब उस उमस के विदाई की गुड न्यूज आने वाली है। हवा की बदली चाल के बीच उम्मीद तो यही है कि अगले दो दिन दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा के लोगों को उमस से कुछ राहत मिल सकती है। उमस से राहत का ये सीन यूं ही नहीं बना है। हाल फिलहाल हवाओं ने रुख बदला है और उत्तर पश्चिम से आ रही सूखी हवाओं ने नमी को कम कर दिया है। लिहाजा और जैसे जैसे नमी घट रही है, वैसे वैसे चिपचिपी गर्मी का असर भी कम हो रहा है। मौसम में इस बदलाव के पीछे मॉनसून ट्रफ भी एक वजह बताई जा रही है। मॉनसून ट्रफ अब हिमालय की तलहटी की तरफ खिसक गया है और इसी के साथ बारिश का पैटर्न भी बदल गया है। फिलहाल मॉनसून की मेहरबानी पूर्वी और मध्य भारत पर ज्यादा है, जबकि दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में आसमान अपेक्षाकृत साफ है। एक दिन पहले की सैटेलाइट तस्वीरें भी मौसम का बदला रुख बयां कर रही है। पूर्वी यूपी से बिहार और बंगाल की खाड़ी तक मानसूनी बादलों की आवाजाही है, जबकि उत्तर

0: अब करवट ले ले कहा नहीं जा सकता। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 20 अगस्त के बीच बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके असर से मॉनसून ट्रफ दोबारा दक्षिण की ओर खिसक सकता है और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर फिर लौट सकता है। फिलहाल अभी के लिए खबर इतनी है कि जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, उस उमस के गुजरने का दौर शुरू हो चुका है। सूखी हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी वजह से मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। लेकिन मानसून ने अभी मैदान छोड़ा नहीं है, उसकी अगली करवट जल्द फिर से बारिश की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने रद्द की जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2014 के बाद की भर्तियों की होगी सीआईडी जांच। वाराणसी पे छत पर शुरू हुई मां गंगा की आरती, बढ़ते जल स्तर के चलते लिया गया फैसला, सात अर्चकों ने विधिवत की आरती। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में देखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। बाहर से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम मुंबई में भी जमकर बरसे बरदा। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी जोरदार आगाज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई बाबा बूढ़ानाथ अमरनाथ यात्रा, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
5: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अब ऑटो और ई रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्ग पुलिस ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत सड़कों पर चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा में QR कोड लगाए जाएंगे। इसके लिए ऑटो रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्रत्येक ऑटो और ई रिक्शा को एक QR कोड उपलब्ध कराया जाएगा। इस QR कोड के जरिए वाहन और उसके चालक से संबंधित आवश्यक जानकारी पुलिस के पास सुरक्षित रहेगी। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंचे और पूरे उत्साह, श्रद्धा और धार्मिक आस्था के साथ इस पवित्र यात्रा में शामिल हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के यात्री निवास से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना के जवानों की तैनाती की गई है। अब पंजाब के लोगों को पैरासेलिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए गोवा जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बन चुके पठानकोट के रावी दरिया पर बने डैम की चमरोड़ झील में अब ये सारी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। मिनी गोवा के

0: नाम से मशहूर यहाँ के चमरौड़ में सैलानियों के लिए पैरासेलिंग की सुविधा शुरू की गई है। जयपुर के ऐतिहासिक गलता तीर्थ धाम में आस्था और भक्ति का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। गालव ऋषि की तपोस्थली गलता धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं का फूलों से खास अंदाज में स्वागत किया गया। हेलीकॉप्टर से हुई इस पुष्प वर्षा के बीच श्रद्धालुओं ने जमकर जयकारे लगाए और पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूब गया।
1: और अब बात गुरेज घाटी में खेल महोत्सव की। जम्मू कश्मीर के गुरेज में खेल इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने युवाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्थानीय लोगों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस ऐतिहासिक खेल महोत्सव का समापन पारंपरिक पोलो मैच के साथ हुआ। भारतीय सेना और स्थानीय सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में खेलों के साथ महिला भागीदारी, स्वच्छता अभियान और पौधारोपण जैसी सामुदायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

0: घाटी में घुड़सवारी, युवाओं की रेस, लड़कियों की एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ और ट्रॉफी उठाए खुशी से झूमते युवा, ये तस्वीरें कश्मीर घाटी में युवाओं का जोश और जज्बा बता रही हैं। ये बदलते कश्मीर की नई तस्वीर है। यहाँ के युवाओं में खेल के मैदान में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। युवाओं में जोश और जज्बे की ये तस्वीरें गुरेज घाटी से आई हैं, जहां इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। इसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का एक मंच मिला, जहां खेल के साथ साथ टीम वर्क, अनुशासन और आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। गुरेज में सेना की तरफ से खेल महोत्सव का ये आयोजन किया गया। इसमें आसपास के गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। खेल के मैदान में युवा खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया और पारंपरिक पोलो का मुकाबला इस खेल आयोजन का सबसे खास आकर्षण रहा, जहां घोड़ों की रफ्तार और खिलाड़ियों के शानदार तालमेल ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। गुरेज की पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक खेल भावना का ये संगम लोगों के लिए खास अनुभव रहा।
1: गुरेज में स्थानीय टीमों के बीच पोलो था। दरअसल गुरेज घाटी की अगर बात की जाए, यहाँ पर सदियों से पोलो खेला जा रहा है। ये अलग तरीके का पोलो है जो अंतर्राष्ट्रीय पोलो से अलग है, क्योंकि इसमें जो घोड़े इस्तेमाल होते हैं वो कम कद के होते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस भी अलग होती है। दरअसल लद्दाख क्षेत्र और गुरेज घाटी के साथ साथ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का पोलो खेला जाता है। भारतीय सेना को उम्मीद है कि यह रिवायती खेल यानी पोलो जो है उसको दोबारा सीमावर्ती इलाकों खासतौर से गुरेज घाटी में बहाल भी किया जाएगा और विकसित भी।
0: युवाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन ये आयोजन सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वच्छ भारत अभियान और पौधारोपण जागरूकता की भी जानकारी दी गई।
1: भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज इलाके में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जो अब समाप्त हुआ है। इस विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद नियंत्रण रेखा पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए खेल की सुविधाएं न सिर्फ बढ़ाना, बल्कि साथ ही साथ उनके बीच में एक भावना खेल और मुकाबलों को लेकर पैदा करना।
2: गाँव की सफाई और प्लांटेशन का भी जो लक्ष्य रखा था कि कौन सा गाँव ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, उसमें भी इस मार्ग नंबर वन पे आ गया है। तो हम इंडियन आर्मी की तरफ से और पूरे बगदौर ब्लॉक की तरफ से गाँव इस मार्ग को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हर प्रकार की खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लड़कियों के साथ साथ इनकी लड़कियों ने भी काफी गेम्स में मैदान मार लिया है।
0: भारतीय सेना की ओर से आयोजित इस खेल महोत्सव का मकसद गुरेज के युवाओं को खेलों और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है, ताकि युवा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपनी प्रतिभा को निखारें और भविष्य में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें।
3: इससे क्या है कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हुए और या खासकर इसमें यहाँ की बच्चियों को मौका मिला अपने आप को आगे लाने के लिए।
0: दरअसल खेल से जुड़े ऐसे आयोजन घाटी के युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा पहचानने, उसे निखारने और बड़े मंच तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। खेलों के जरिए युवाओं को सकारात्मक दिशा मिल रही है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है और भविष्य की तैयारी का मौका भी मिल रहा है। इससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।
2: इंडियन आर्मी से यही रिक्वेस्ट है कि जो 1.0 इस साल हुआ है, तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को अपना टैलेंट शोकेस करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सके।
0: जाहिर है गुरेज घाटी में चले इस खेल महोत्सव में खेल के मैदान से लेकर स्वच्छता अभियान और पौधारोपण तक युवाओं को समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भी जोड़ा गया। ऐसे आयोजनों से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानने और निखारने का मौका भी मिलता है। जम्मू कश्मीर के गुरेज से अशोक पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन खबरों को जो कि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। इनमें से कुछ खबरें ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगी और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: एक बॉल है जिसे सब तक पहुंचनी है, लेकिन एक एक कर जिसके हाथ में गेंद आएगी उसे अपने सामने वाले को पास करना है, लेकिन उछाल कर नहीं जाकर उसके हाथों में सौंपना है, वो भी खास तरीके से। बच्चे जिस तरह से मेंढक की तरह कूद कूद कर अपना टास्क पूरा कर रहे हैं वो देखना दिलचस्प है। दाद तो देनी पड़ेगी, आसान नहीं है, पर देखिए कैसे जीत के लिए एक दूसरे का साथ दिया जा रहा है। संभवतः आटा है या फिर कोई पाउडर जैसी चीज मुंह में फंसाए मोटे कागज पर बिना हाथ लगाए उठाना है और उसे अपने साथी को पास करना है। आखिरी छोर तक पहुंचने के बाद वही प्रक्रिया दोहराते हुए वापस लौटना है। अब पाउडर जैसी चीज को बिना हाथ लगाए संभालना आसान तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। जिस तालमेल और संतुलन के साथ सबने अपने अपने हिस्से का काम किया वो देखकर लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। यूं ही नहीं कहते कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। अब इन्हें ही देखिए, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, ना ही एक दूसरे की भाषा बोलते समझते हैं, लेकिन दोस्ती पक्की वाली लग रही है। जिस तरह से डॉगी और बतख रेस लगा रहे हैं उससे तो लगता है ये दोनों का नियमित खेल है। जो भी हो, दोनों की ये दोस्ती वाली दौड़ लोगों को खूब पसंद आ रही है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी हो जाए तो स्कूल में मन लगा रहता है। अब इन बच्चों को ही देखिए कैसे एंजॉय कर रही हैं इस खेल को। वैसे ये जो कर रहे हैं वो देखने में बड़ा ही आसान सा स्टेप लग रहा है, पर जो कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि अभ्यास तो इसके लिए भी चाहिए, वरना कदम गलत खांचे में भी पड़ सकता है और एक बार गलती हुई तो खेल से आउट। लेकिन ये बच्चियाँ होशियार हैं।
5: बात क्यों कर रहे?
0: सुना आपने, ये बस इन्हें ही बर्थडे में बुलाएंगे।
5: क्यों?
0: क्योंकि यही टीचर हैं जो इनको सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, इन्हें काम देती हैं। मतलब इस छोटी सी उम्र में भी इनको पता है कि अच्छे टीचर का मतलब क्या है। स्कूल पढ़ने ही तो आते हैं और यही वो टीचर हैं जो पढ़ाई के दौरान इन पर खास नजर रखती हैं। टीचर बार बार जताती हैं कि वो उससे प्यार नहीं करती।
5: मैं तो नहीं करती प्यार, जबरदस्ती प्यार करती हूँ,
0: बल्कि वो तो सभी बच्चों की तरह ही उसे ट्रीट करती है। इस पर बच्चा जिस तरह से रुआंसा होकर टीचर से अपनी बर्थडे में आने की रिक्वेस्ट करता है वो देखकर लोग उसकी मासूमियत पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।
5: मैं पूछ रही हूँ तो ढंग से बोलो, रो नहीं, मैं मारी हूँ कि रो रहे हो।
4: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र के FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, जो खाने पीने की खराब चीजों के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा में है। महाराष्ट्र FDA ने फिल्म स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस तीनों अभिनेताओं को विमल इलायची का विज्ञापन करने के लिए जारी किया गया है। FDA का आरोप है कि विमल इलायची विज्ञापन के जरिए राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक FDA ने 11 अगस्त को तीनों अभिनेताओं को नोटिस भेजकर विज्ञापन में उनकी भूमिका पर 15 दिन में जवाब मांगा है। FDA का कहना है कि विज्ञापन में विमल नाम, प्रोडक्ट और डायलॉग इस तरह इस्तेमाल किए गए हैं कि इससे विमल ब्रांड का प्रचार होता दिखता है। चूंकि विमल ब्रांड पान मसाला से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए FDA को शक है कि विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाले का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। ऐसे विज्ञापन को सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है, जिसमें किसी ऐसे प्रोडक्ट का सीधे विज्ञापन ना करके उसी ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट का विज्ञापन किया जाता है जिस पर रोक लगी है। महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटिन वाले गुटखा और पान मसाला पर 2012 से रोक है। ये रोक हर साल बढ़ाई जाती है। महाराष्ट्र में अभी ये रोक 13 जुलाई 2026 से एक साल के लिए लागू है। इसके तहत राज्य में पान मसाला बनाने, रखने, लाने, ले जाने और बेचने पर पाबंदी है। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संगठित गुटखा और तंबाकू निकत्व के मामले में पुलिस के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई की जाए। एक पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था कि अगर किसी तरह का कोई प्रोडक्ट लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है तो सरकार को उसे तुरंत बैन कर देना चाहिए। जाहिर है ये मुद्दा आम लोगों की सेहत से जुड़ा है। ऐसे में फिल्मी सितारों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल जनता का हित देखकर करें। इस मामले पर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
6: ये नहीं करनी चाहिए, मतलब फिर लाइक लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कहीं ना कहीं, लाइक ऐसे बस लोग बोल देते हैं कि मूवी ही है, बट लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, हर कोई इतना एजुकेटेड नहीं होता, तो लाइक वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखते हैं कुछ भी करते हुए तो वो फॉलो करते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए, ऐसे मॉरली गलत है वो चीज, तो नहीं ही करना चाहिए।
7: आई थिंक उन्हें इस चीज की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए, क्योंकि मेनी पीपल स्पेशली यंगस्टर्स लुक अप टू देम, तो चाहे इवन दो उन्हें पता हो कि ये चीज़ ख़राब है, बट अगर वो उनको उनके लिए वो आइडल्स हैं या इफ दे आर लुकिंग अप टू देम, तो ऑफ कोर्स वो उस चीज़ से इंस्पायर होंगे या उस चीज़ से मोटिवेट होंगे कि हमें ऐसा बनना है तो हमें भी ये सब करना पड़ेगा। तो आई थिंक उनकी भी यहाँ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि वो अकाउंटेबिलिटी लें और ऐसी चीज़ें प्रमोट ना करें।
8: मैं तो मानूंगा कि मतलब हर किसी की लाइफ में स्टूडेंट या बड़े भी जो एक्टर्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, मतलब लोग उन्हें कुछ तो भगवान मानते हैं, बहुत मतलब अलग अलग फैन बेसिस है, तो उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ हमें बहुत लोग देखते हैं तो हमें कुछ अच्छी चीज़ प्रमोट करें जिससे वेलफेयर हो पब्लिक का और प्रोग्रेस करे पूरी कंट्री एज अ होल। तो या मैं तो अगेंस्ट हूँ पूरा, जो भी ऐसे उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए और देन उन्हें अपना डिसीजन मेक करना चाहिए।
9: देखिए ये सेलिब्रिटी एक अलग चीज़ है, पिक्चरों में आते किस लिए आते हैं आप लोग, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, आगे आपके प्रपोजल भी मिलते हैं, बहुत बड़े नाम भी होता है सोसाइटी में, भाई फलाना हीरो की फलानी फिल्म अच्छी है। बाकी रही अगर ये कोई ब्रांड चल रहा है तम्बाकू का वगैरह का, ये किस इसके लिए, तो वो भी आप किस लिए होते, वो इसलिए होते कि तम्बाकू है, तम्बाकू में क्या गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू मिलता ही है ना, तो आपको भी आपको सजेशन क्या, वो तो गवर्नमेंट जानती है क्या ऐसा करना है क्या नहीं करना, क्या बैन करना है क्या क्या नहीं करना, तो वो तो गवर्नमेंट के ऊपर वाली बात है, तो आप दैट नॉट सजेशन। तो जबकि पैसा आप कमाते हैं, गवर्नमेंट भी कमाती है, एक्साइज ड्यूटी आती है, GST आता है, तो बहुत सी उसका काफ़ी बेनिफिट प्रॉफिट होती है।
4: खराब सड़क पर गाड़ी चलाते हुए गुस्सा तो हम सभी को आ जाता है, कहीं गड्ढा बचाने के चक्कर में गाड़ी डगमगाती है तो कहीं ये गड्ढे हादसे की वजह बन जाते हैं, लेकिन गुस्सा करने के बाद हम अक्सर यही सोचकर चुप हो जाते हैं कि आखिर हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने इसी सोच को बदलने की कोशिश की और उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो कि सड़क के गड्ढों को खुद पहचान सकता है और जिम्मेदार या फिर लापरवाह तक आपको पहुंचा सकता है, यानी कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर जिम्मेदार व्यक्ति तक गड्ढों की जानकारी पहुंचाने का काम काफी आसान हो गया है।

0: सड़कों पर ये गड्ढे अखिल भारतीय समस्या बन चुके हैं। ये गड्ढे न केवल आपका सफर बर्बाद करते हैं बल्कि गाड़ियों को खासा नुकसान भी पहुंचाते हैं। और फिर शुरू होती है शिकायतों की कभी न खत्म होने वाली कथा, जिसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने समस्या का एक गजब का AI सॉल्यूशन खोज निकाला है। बेंगलुरु के इंजीनियर गौरव सेन ने ऐसा AI सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए न केवल गड्ढों की पहचान संभव है बल्कि गड्ढों की मरम्मत के जिम्मेदारों तक पहुंचना भी आसान हो गया है। दरअसल ये सिस्टम सड़क पर चलते हुए गड्ढों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करता है। कार में लगे डैश कैम, GPS और एक्सेलेरोमीटर से सड़क की जानकारी जुटाई जाती है, जिसके बाद AI विजन मॉडल तस्वीरों और वीडियो को स्कैन करके अलग अलग आकार के गड्ढों की पहचान करता है। खास बात यह कि सिस्टम उन गड्ढों को भी पहचान सकता है जिन्हें दूर से देखना मुश्किल हो, क्योंकि कई बार सड़क का गड्ढा स्पीड ब्रेकर जैसा दिखाई देता है। गौरव सेन ने कोडेक्स की मदद से ये ऐप तैयार किया है जो इस पूरे डेटा को रिकॉर्ड करके OpenAI तक भेजता है। लेकिन कहानी सिर्फ गड्ढे की पहचान तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल होता है, गड्ढा मिला है तो इसे ठीक कौन करेगा? इसके लिए ऐप को करीब 2900 सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स से जोड़ा गया। सिस्टम सड़क के किसी खास हिस्से की पहचान करके ये पता लगा सकता है कि उस सड़क का ठेका किस कंपनी या ठेकेदार के पास है। यानी अगर कोई सड़क वारंटी पीरियड में है तो ठेकेदार को बिना सरकार पर अतिरिक्त खर्च डाले सड़क की मरम्मत करनी पड़ सकती है। और ये पूरा रिकॉर्ड महज 4 सेकंड में तैयार हो सकता है, जिसमें गड्ढे की तस्वीर, उसकी सटीक लोकेशन, टेंडर नंबर और सड़क से जुड़े अधिकारी की जानकारी शामिल होती है। गौरव ने इस सिस्टम का टेस्ट ऑफिस जाते वक्त किया। एक सफर में AI ने उनकी राह में मौजूद 12 गड्ढों को पहचान लिया। गौरव सेन का ये प्रयोग अब बेंगलुरु से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। लोग गौरव के इस AI मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ यूजर उसे ऐसा ऐप बता रहे हैं जो समस्या के साथ आपको सही समाधान तक ले जाता है। सड़क के गड्ढों के लिए AI से खोजा गया ये सॉल्यूशन बड़े काम का हो सकता है, क्योंकि देश में हर साल सड़क दुर्घटना में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनकी बड़ी वजह सड़क के गड्ढे भी होते हैं। हाल ही में लोकसभा में सड़क परिवहन मंत्रालय से सड़क हादसों को लेकर सवाल पूछे गए थे। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने जो जवाब दिया है वो वाकई चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों के आंकड़ों के आधार पर बताया कि हर साल सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही ये जानकारी भी दी कि किस उम्र के लोग सड़क पर बने गड्ढों के कारण सबसे ज्यादा हादसों का शिकार हो रहे हैं। इन आंकड़ों में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले 25 से 35 साल के लोग होते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में गड्ढों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 53% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में जहां 3,564 लोगों की मौत सड़कों पर बने गड्ढे की वजह से हुई, वहीं साल 2021 में 3,625 लोगों की मौत का जिम्मेदार सड़क के गड्ढे बने। वहीं साल 2022 में 4,446 लोगों की मौत सड़क पर बने गड्ढे की वजह से हुई। इनमें से 54% से ज्यादा मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में हुई, जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बनकर उभरा है। मंत्रालय को सौंपी गई राज्य पुलिस रिपोर्ट से लिए गए डेटा से पता चला कि आंध्र प्रदेश, बिहार और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने 5 साल के समय में गड्ढों से जुड़ी कोई दुर्घटना या मौत की सूचना नहीं दी। ये आंकड़ा ये भी दिखाता है कि साल दर साल सड़क पर बने गड्ढों की वजह से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन उन आंकड़ों में कमी नहीं आ रही। उल्टा हर गुजरते साल के साथ ही आंकड़ा बढ़ ही रहा है, जो मौजूदा सरकारों, प्रशासन और स्थानीय विभागों के लापरवाह रवैया को भी दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आपने ChatGPT से सवाल पूछे होंगे, जवाब भी तलाशे होंगे, लेकिन क्या कभी अपनी खोई हुई चप्पलें भी ChatGPT से ढूंढवाई है? सुनकर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन भारत में ऐसा ही एक दिलचस्प मामला सामने आया है। एक शख्स मंदिर गया था, पूजा की और बाहर आया तो उसकी चप्पलें गायब थी। सामने चप्पल जूतों का ऐसा ढेर लगा था कि अपनी चप्पल पहचानना भी किसी मिशन से कम नहीं लग रहा था। लेकिन जनाब ने हार नहीं मानी, सीधे ChatGPT की मदद ली और फिर क्या हुआ देखिए।
2: अगर आप मंदिर जाएं और आपके फुटवेयर न मिले तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार AI ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि अब वहां से आपको अपने फुटवेयर ढूंढने में मदद जरूर मिलेगी। दरअसल शुभांग बोरकर वो शख्स है जिन्होंने AI की मदद से ऐसा कर भी दिखाया है। ये AI वाली ट्रिक शुभांग के खोए फुटवेयर ढूंढने में खूब मददगार साबित हुई है। शुभांग ने मिनटों में AI की मदद से अपने जूते ढूंढ निकाले। गोवा बेस्ड शुभांग बोरकर पेशे से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं। उन्होंने दरअसल उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर से ये वीडियो शूट किया, जिसमें जहां नजर डालिए जूते चप्पल ही दिख रहे हैं। जाहिर है इन फुटवेयर में से अपने वाला पहचानना शुभांग के लिए इतना आसान टास्क नहीं था। वो एक एक करके फुटवेयर देखते, तब जाकर उनको अपना फुटवेयर मिलता। लेकिन देखिए चैट जीपीटी का कमाल, जिसकी मदद से शुभांग ने फुटवेयर्स की भीड़ में अपने वाला क्लॉग्स ढूंढ ही निकाला। शुभांग ने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो का नाम यूज्ड चैट जीपीटी टू फाइंड माय लॉस्ट क्लॉग्स रखा। इसके लिए सबसे पहले मंदिर के बाहर जहां जूते चप्पल रखे थे, वहां से रैक और फुटवेयर एरिया की तस्वीरें ली। इसके बाद शुभांग ने अपने फुटवेयर क्लॉग्स की तस्वीर चैट जीपीटी पर अपलोड की। शुभांग ने एआई से वो तस्वीर देखकर उनकी जोड़ी पहचानने में मदद करने और फिर फुटवेयर के बीच उनके क्लॉग्स को ढूंढने के लिए कहा। हालांकि एक तस्वीर से बात साफ नहीं हुई, तो शुभांग ने फुटवेयर एरिया के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। वो एक के बाद एक तस्वीरें चैट जीपीटी को भेजते रहे, जिनमें सैकड़ों जूते चप्पल दिखाई दे रहे थे। चैट जीपीटी ने तस्वीरों को देखकर उनमें मौजूद जोड़ियों को शुभांग की भेजी हुई क्लॉग्स की तस्वीर से मिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे अपनी खोई हुई चप्पल ढूंढने का ये मामला एक छोटे से रियल वर्ल्ड एआई एक्सपेरिमेंट जैसा बन गया। कई तस्वीरें देखने और उनका विश्लेषण करने के बाद चैट जीपीटी ने एक ऐसी जोड़ी की तरफ इशारा किया जो शुभांग के क्लॉक से मिलती जुलती दिखाई दी। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर फुटवेयर खोजने की शुभांग की ये एआई ट्रिक लोगों को पसंद भी आ रही है। यानी जिस क्लॉक्स को शुभांग खुद सैकड़ों जूते चप्पलों के बीच तलाश रहे थे, उसे उनके साथी बने एआई ने ढूंढ निकाला। यानी इस काम में चैट जीपीटी का इस्तेमाल किसी बड़ी रिसर्च या तकनीकी काम में नहीं, बल्कि एक बेहद सामान्य सी परेशानी को सुलझाने में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डेज टुडे।
1: और अब बात उस फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों को है। हम बात कर रहे हैं नमित मल्होत्रा की रामायण की। दो पार्ट में बन रही इस फिल्म का बजट 4,000 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यानी कि फिल्म का पैमाना जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी है इसकी प्लानिंग भी। अब मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी कहानी, क्योंकि रामायण 6 नवम्बर को इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज होगी, जबकि भारत में दिवाली पर दस्तक देगी।
3: तुम्हारा नया राजा।

0: भारतीय सिनेमा के सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट में से एक रामायण, जिसके रिलीज से अरसे पहले ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, आम जन से लेकर खास तक, समाज के हर तबके, हर वर्ग तक रामायण पहुंच पाए, इसके लिए मेकर्स एक खास प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं।
1: जब जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की।
0: मेकर्स की प्लानिंग का एक ही अहम हिस्सा है फिल्म के रिलीज डेट। रामायण पार्ट 1 दीपावली पर रिलीज होनी है ये तय है, लेकिन किस तारीख को रिलीज होगी ये अब तक पुख्ता तौर पर तय नहीं था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में रामायण की रिलीज डेट 30 अक्टूबर बताई जा रही थी, लेकिन कन्फर्म कुछ भी नहीं था।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार।
0: अब रामायण के मेकर्स ने काफी सोच समझ कर रामायण की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है।
2: निर्णय मैं ले चुका हूं, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
3: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास।
0: 6 नवंबर यानी दिवाली से 2 दिन पहले रामायण पार्ट 1 वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। इससे मेकर्स को 2 हफ्ते का दमदार रिलीज पैसेज मिलने जा रहा है। इसे जानने के लिए इस तारीख की क्रोनोलॉजी समझनी होगी।
3: एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।
0: 6 नवंबर को शुक्रवार है और इसी दिन धनतेरस भी है। 7 नवंबर को शनिवार है यानी वीकेंड, छुट्टी का दिन होने से इसे भरपूर दर्शक भी मिलेंगे। 8 नवंबर को रविवार है और दीपावली भी है, जिसका फायदा फिल्म को फैमिली ऑडियंस के तौर पर मिल सकता है। 9 नवंबर को सोमवार है। 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, कई दफ्तरों में उस दिन छुट्टी होती है। और 11 नवंबर यानी बुधवार को भाई दूज का त्योहार है। 13 नवंबर यानी शुक्रवार से दूसरे हफ्ते से वीकेंड शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि रामायण को न सिर्फ बम्पर ओपनिंग मिल पाएगी बल्कि 2 दमदार वीकेंड भी, यानी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए अच्छा खासा वक्त मिलने जा रहा है।
3: सूट न खा, वो मोहित हो गई है आप पे।
4: राम से प्रतिशोध लिया जाएगा सूर्पणखा।
0: हालांकि ओवरसीज में रामायण की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। 5 नवंबर हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला माइनस जीरो रिलीज होगी, मतलब 6 नवंबर को इसका सामना रामायण से होगा। गॉडजिला एक पॉपुलर फ्रेंचाइज है, इसलिए रामायण को क्लैश झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत में रामायण को एक छत्र राज मिल सकेगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली गुड न्यूज, सरकार ने रद्द की जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2014 के बाद की भर्तियों की होगी सीआईडी जांच। वाराणसी पे छत पर शुरू हुई मां गंगा की आरती, बढ़ते जल स्तर के चलते लिया गया फैसला, 7 अर्चकों ने विधिवत की आरती। जयपुर के गलता तीर्थ धाम में दिखा आस्था और भक्ति का अनोखा नजारा, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, गालव ऋषि की तपोस्थली है गलता धाम। बाहर से मैदान तक मेहरबान हुआ मौसम, देहरादून में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, मौसम मुंबई में भी जमकर बरसे बरदा। इंडिया टुडे ग्रुप का एक और क्षेत्रीय विस्तार, चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में लॉन्च हुआ इंडिया टुडे का तमिल यूट्यूब चैनल, राउंड टेबल कॉन्क्लेव का भी जोरदार आगाज़।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां बात कर रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर की घाटी में भोलेनाथ का जयकारा था, अब जम्मू की वादी में हर हर महादेव का जयघोष सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि पुंछ में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। सोमवार से शुरू हुई ये यात्रा 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक यूं ही चलेगी, जिसमें देखिए शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से शिवभक्त जो हैं जम्मू पहुंचने का जो उनका सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज आपको जम्मू से लेकर पुंछ तक इस यात्रा की भव्य तस्वीरें तमाम दिखाएंगे। बाबा चट्टानी के दर्शन करने के लिए निकले श्रद्धालुओं का जोश दिखाएंगे, कितना हाई नजर आ रहा है। इसके साथ ही बाबा बूढ़ा अमरनाथ का भव्य दरबार भी दिखाने जा रहे हैं। शिव का ये धाम कितना पुराना है, कितना खास है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको इस पावन धाम की अद्भुत कहानी भी बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के साथ। देखिए कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद अब जम्मू में बाबा चट्टानी के दर्शन करने की होड़ लगी हुई है। सिर्फ 12 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु जो हैं पहुंच रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के बाद सोमवार की सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना कर दिया, और इस यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रिपोर्ट देखिए।

0: एक बार फिर हर हर महादेव का नारा है, एक बार फिर अमरनाथ का बुलावा है। लेकिन मंजिल इस बार अमरनाथ की गुफा नहीं बल्कि बूढ़ा अमरनाथ धाम है। कुछ दिन पहले इसी जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए जत्थे निकले थे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों शिव भक्त उमड़े थे, पर इस दफा जम्मू से कारवां पुंछ के लिए जा रहा है, क्योंकि पुंछ जिले के मंडी तहसील के राजपुरा में मौजूद है बाबा चट्टानी का धाम यानी बूढ़ा अमरनाथ मंदिर।
1: 2005 आयोजित की जा रही यात्रा केवल पर्वतों और घाटियों को पास करने वाली यात्रा नहीं है, ये हमारे बाहरी पथ से कहीं अधिक हम सबके अंतर्मन की यात्रा है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये तीर्थ यात्रा स्वयं के भीतर स्थित चेतना को पहचानने की भी यात्रा है। यह पावन तीर्थ यात्रा भगवान शिव की ओर अग्रसर होने की भी यात्रा है, जो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थल की दिव्य ऊंचाइयों में विद्यमान है।
0: 17 अगस्त से ये यात्रा शुरू हुई है और 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक चलेगी, जिसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू पहुंचने लगे हैं। भगवती नगर यानी यात्री निवास से सोमवार को जब पहला जत्था निकला तो शिव भक्तों का जोश देखने लायक था। पूजा पाठ के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को झंडा दिखाकर रवाना किया।
2: बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे थे, आज पहला जत्था बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का यहां से रवाना हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा यहां पर जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया, इस पहले जत्थे को यहां से रवाना किया, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है उत्साहित होकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन था यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि कितना जो है वो उत्साह है यात्रियों के बीच, और ये बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जयघोष के साथ जो है वो यात्री यहाँ पर उत्साहित है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जत्था जो है वो रवाना हुआ है। और मैं इस तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि आप देखिएगा कि कितने उत्साहित हैं यात्री, और जय श्री राम के जयघोष के साथ जो है ये यात्रा रवाना हो रही है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मैं गोकुल से कहूंगा कि वो आगे आएंगे और आपको दिखाना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रा को जो है वो फ्लैग ऑफ किया है, और देखिएगा दूर दूर तक ये बसेस जो है वो अब यहाँ से रवाना हुई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के जो है वो दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना हुई है, और ख़ास तौर पर इस यात्रा का मकसद है कि पुंछ जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसे देश के जो विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं वो वहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचे, क्योंकि 10 दिन की ये यात्रा रहती है। और इस पहले जत्थे का हर एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी ये यात्रा एंटर करेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका भव्य स्वागत होगा। जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन यहाँ पर, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के साथ कई टुकड़ियाँ जो है इस यात्रा की सुरक्षा में तैनात हैं, और जम्मू पुंछ हाईवे को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो रखा गया है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये पावन यात्रा जो है वो 10 दिन के लिए यानी आज 17 तारीख से लेके 28 तारीख तक जो है वो यात्रा ये चलेगी, और इस यात्रा में देश भर से आने वाले श्रद्धालु बेहद खुश है और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
0: धार्मिक परंपरा में बाबा चट्टानी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे अमर कथा से जुड़े पवित्र मार्ग का पहला पड़ाव माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने की शुरुआत यहीं से की थी, जो बाद में अमरनाथ गुफा में पूरी हुई थी। इसीलिए ये मंदिर केवल एक धाम नहीं बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक प्रवाह का हिस्सा है।
2: राहुल जी कहाँ से आए?
3: जयपुर से।
2: जयपुर से आए, कब से आ रहे बाबा की यात्रा?
3: 33 साल है साहब।
2: तो कैसा लग रहा है इस बार की व्यवस्था, ये सब चीज?
3: अपन ये चाहते हैं कि पूरा देश आए, और जो अपने महादेव जिनकी यहाँ पे स्थापना हुई थी किसी कारण से यहाँ पे वो लुप्त हो गए जिनकी पूजा होना बिल्कुल बंद हो गई थी, जो आज यहाँ के किया है लोगों ने, जनता ने अपने देश के लिए, और उसको जागृत किया है। और आज यहाँ लाखों की तादाद के अंदर बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
0: जिसे देखने और महसूस करने के लिए हर साल हजारों हजार की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इस साल पहले जत्थे में मध्य भारत, कर्नाटक, जयपुर और जोधपुर के भक्त शामिल हुए और उनका जोश जबरदस्त है। जो श्रद्धालु पुंछ की इस यात्रा में शामिल होते हैं, उनका मकसद सिर्फ मंदिर दर्शन नहीं होता, बल्कि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के बीच ये यात्रा शिव अमरत्व और दिव्य रहस्य की एक सतत कथा है, जिसे समझना एक अद्वितीय अनुभव है। तभी तो तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए शिव भक्त मस्त मगन होकर पहले जम्मू और फिर यहाँ से पुंछ की ओर निकल पड़े हैं। जम्मू से 244 किलोमीटर का सफर तय करके यात्री पहले पुंछ पहुंचेंगे और फिर पुंछ से धाम की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जिसे वो तय करेंगे।
2: पुंछ एक बॉर्डर का इलाका है, बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ क्षेत्र है और खास तौर पर पूरे देश भर से आने वाले यात्रियों का काफी उत्साहित रहते हैं पुंछ के लोग, उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार घुमाकर जो है वो दिखाएंगे। तो ये देखिएगा कि ये जोश और जो जज्बा है, ये जोश और जज्बा है तो ये जज्बा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हम एक बस में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और खासा उत्साह है, और ये उत्साह साफ तौर पर दर्शाता है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है।
4: सेकंड बार आए।
2: सेकंड बार तो पहले से कितना बदलाव लग रहा है इस बार का?
4: काफी बदलाव है।
2: तो क्या क्या मैसेज रहेगा पूरे देश भर के लिए, आज दर्शनों के लिए जा रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के?
4: ये मैसेज रहेगा कि जो अन्य लोग नहीं आ पाए हैं वो भी आए और इस यात्रा का हिस्सा बने और बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करें।
2: ठीक है सर, कहाँ से आए?
5: हम मध्य भारत प्रांत से आए हैं, भोपाल के पास में बुधनी जिला है, और मैं दूसरी बार आया हूँ। यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था, यहाँ के स्थानीय लोगों की व्यवस्था, संगठन की व्यवस्था बहुत ही उच्च क्वालिटी की व्यवस्था है।
0: जिस तरह बाबा बर्फानी का दरबार हिमालय के ऊंचे शिखर पर मौजूद प्राकृतिक गुफा में है, ठीक उसी तरह से बाबा चट्टानी पीर पंजाल श्रेणी में मौजूद बेहद खूबसूरत जगह पर मौजूद है। हाँ, ये जरूर है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए ऊंची चढ़ाई नहीं है, लेकिन इस यात्रा में घाटी भी है और जलधारा भी, पहाड़ और पुलस्ता नदी मिलकर एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक शांति देते हैं। तभी तो जो एक बार बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए आता है वो बार बार आता है।
6: आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे पुंछ में एक जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा शुरू होने वाली है, उसी कड़ी में यहाँ पे हमारे स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी की याद में यहाँ पे एक भव्य त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है, जो बिल्कुल एक LOC पे हमारा नवग्रह मंदिर है वहां से स्टार्ट होती है और यहाँ पे यात्रा ग्राउंड जिसको कॉलेज ग्राउंड बोलते हैं यहाँ पे आती है। यहाँ पे विधिवत पूर्वक यहाँ पे त्रिशूल का यहाँ पे पूजन होता है और जो पूरे भारतवर्ष से यात्री आते हैं वो इसी त्रिशूल का पूजन करते हैं और उसके बाद वो बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जाते हैं। ये आज त्रिशूल यात्रा का महत्व ये है कि ये हमारे जो स्वर्गीय यशपाल शर्मा जी थे, जिनका हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने बहुत बड़ा इस हमारी यात्रा में योगदान दिया था, ये उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने यात्रा शुरू की थी। और आज आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ बिना मजमो मिलत सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आए हुए और इस यात्रा में शामिल हुए।
7: ये जो त्रिशूल यात्रा है, आपको पता है हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब यहाँ आती है उससे एक दिन पहले ये जो त्रिशूल यात्रा है ये नवग्रह मंदिर अजोट जो कि देरिया में है वहां से निकलती है और यात्रा ग्राउंड तक पहुंचती है। आपने देखा होगा भोले का जो त्रिशूल है ये एक शक्ति का प्रतीक है, यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो हमारे पुंछ के वासी हैं, खास करके बिना मजमा मिलत हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पहुंचता है और ये खास करके एक तरह से आयोजन होता है बाबा बूढ़ा अमरनाथ से पहले कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आ रही है, जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए सारे पुंछ वासियों को, जिस तरह से वो वेलकम करने के लिए हर बार यात्रियों को यहाँ पहुंचते हैं।
0: पहाड़ी नदी का जल है भजन और भगवा ध्वज और इन सब के साथ शिव भक्तों की श्रद्धा, ये सब मिलकर बूढ़ा अमरनाथ धाम को एक जीवंत धार्मिक अनुभव बना देते हैं और खासकर सावन में अनगिनत श्रद्धालुओं और संतों की मौजूदगी से धाम शिवमय हो जाता है। इस साल भी बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए यात्रा शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे मार्ग पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। यात्रियों का जत्था सुरक्षा घेरे में धाम तक पहुंचाएगा और वापस आएगा। पूरे रास्ते आवास, भोजन और दूसरी तमाम सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की तादाद हर साल बढ़ रही है। जो लोग किसी वजह से अमरनाथ गुफा नहीं जा पाते, वो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसकी वजह ये भी है कि ये यात्रा आसान है, और दूसरी अहम बात ये कि इसकी अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा है, जिससे लोगों की गहरी आस्था भी जुड़ी है। हर साल वार्षिक बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से एक दिन पहले त्रिशूल यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी LOC पर मौजूद नवग्रह मंदिर में त्रिशूल यात्रा की शुरुआत हुई। पूजा पाठ के बाद मंत्रोच्चार के साथ एक विशाल त्रिशूल को लिए शिव भक्त चल पड़े। फूलों और झंडों से सजे त्रिशूल को लेकर भक्त यात्रा में आगे बढ़ते चले गए। जयकारों से माहौल शिवमय होता गया। पुंछ के इलाकों और गलियों से गुजरती हुई त्रिशूल यात्रा कॉलेज ग्राउंड पहुंची, जहां यात्रा के लिए बेस कैंप बनाया गया है। ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलता है। अमरनाथ की तरह ही इस यात्रा में धार्मिक सद्भाव साफ नजर आता है। अगले 10 दिनों तक पुंछ का ये इलाका शिव की भक्ति से सराबोर रहेगा। घाटी में हर हर महादेव का जय घोष होगा। जम्मू से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। हालांकि 90 के दशक में आतंकवाद और सीमा पार से लगातार होने वाली गोलाबारी के चलते यह महान यात्रा रुक गई थी, लेकिन पिछले 21 सालों से इस यात्रा को लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु पूरे जोश के साथ शामिल होते हैं। यात्रियों का पहला जत्था जब पुंछ में बेस कैंप पर पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। देखिए,

0: हम बोले कि जयघोष के साथ आज जो यात्रा का पहला जत्था यहाँ पुंछ में पहुंचा और पुंछ में ये महामूर्ति का एक यहाँ पे पूजा अर्चना की गई। ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जो पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ बम बम बोले के नारे से, और यहाँ पुंछ में आज कई यूपी से, कोई हरियाणा से, कोई गुजरात से यहाँ यात्रु आए हुए हैं।
1: बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा की है, वो बहुत अच्छी है। रास्ते में भी हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिली और हमें बहुत अच्छा लगा, और यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे भी हम आज पहली बार आए हैं और आगे भी हमारी इच्छा हो रही है यहाँ सबकी सुविधा अच्छी देख के।
0: यहाँ हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं। अब कुछ स्थानीय लोग हैं वहाँ पे जयपुर के रहने वाले, उनसे हम बात करेंगे।
2: सर आपका नाम?
3: सर मेरा नाम जटा शंकर अग्रवाल है, मैं जयपुर राजस्थान मानसरोवर से आया हूँ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी 200 आदमी आए हैं।
4: हम ये कहना चाहते हैं कि जगदानंद बाबा के हम कुंज में आए हैं, जो व्यवस्था पहले थी अब किधर रही है, तो हम चाहते हैं किससे ज्यादा और
5: आगे चले। जयपुर से हमारे 656 लोग आए हैं, यात्री आए हैं, और पूरे राजस्थान से करीब 4,000-5,000 के लगभग संख्या में जो यात्री आए हैं। पहले की बजाय अब की बार हम निर्भय होकर यात्रा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का भय नहीं है।
0: हजारों की संख्या में ये लोग आए वहाँ से, और इन लोगों का ये कहना है कि 370 और 35 का हटना, उससे ये लगता है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मंजीत सिंह,
6: देखिए बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और शक्ति का वो सफर है जिसकी अलग आध्यात्मिक अनुभूति है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए भक्तों के लिए ये यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। जो लोग किसी वजह से पवित्र अमरनाथ गुफा में हिमलिंग के दर्शन नहीं कर पाते, उनके लिए बाबा चट्टानी के दर्शन का अवसर होता है। आपको बता दें कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ से जुड़ी आस्था की कहानी सतयुग में रावण के दादा यानी ऋषि पुलस्त से जुड़ी हुई है, लेकिन मान्यता यह है कि जम्मू कश्मीर की रानी यानी चंद्रिका ने भगवान शिव को यहां बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा था। क्या है कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: अद्भुत है भगवान शिव के दोनों धाम। कश्मीर में बाबा बर्फानी है तो यहाँ जम्मू में बाबा चट्टानी। अमरनाथ में बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग तो यहाँ पुंछ में सफेद चमचम शिवलिंग। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन चढ़ाई है तो बाबा चट्टानी तक पहुँचना आसान। अमरनाथ की लंबी चली यात्रा के बाद अब 10 दिनों तक बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन की होड़ है। जैसा पावन धाम वैसी पुरानी इसकी कहानी जो शुरू हुई सतयुग से। कहते हैं सतयुग में एक दिन जब महर्षि पुलस्त ध्यान में बैठे थे तो उन्हें बोध हुआ कि पांचाल पहाड़ी में वो जगह मौजूद है जहां भगवान शिव ने पहली बार देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। पुलस्त इस जगह पर पहुंचे और छोटी सी गुफा में घोर तप शुरू किया। तब से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। पुलस्त ने कहा कि जहां आपके दर्शन हुए हैं उसे ऐसा धार्मिक महत्व प्रदान करें कि युगों युगों तक आपके भक्त यहां आते रहें। इसके बाद भगवान शिव अदृश्य हुए तो एक चट्टान की गुफा में भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ जिसकी बनावट चट्टान जैसी थी। इसके बाद पुलस्त ऋषि ने यह वर्षों तप किया। कहते हैं इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र का नाम पुलस्त नगरी पड़ गया जो अपभ्रंश होते होते पुंछ हो गया। इसी वजह से श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के साथ बहने वाली नदी का नाम पुलस्त गंगा पड़ा जिसे आज भी पाप नाशनी गंगा मानकर हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं और हर साल बड़ी तादाद में भोले के भक्त अपनी आराध्य का आशीर्वाद पाने यहाँ आते हैं।
1: पहली बार आए हैं यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
2: अरेंजमेंट कैसे लगे आपको?
1: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है।
3: बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का विषय है आज कि हम प्रतिवर्ष ये साहसिक यात्रा करते हैं। ये यात्रा अलग अलग प्रांत की प्रतिदिन निकलती है। आज पहला जत्था मध्य भारत प्रांत और हमारे दो तीन प्रांतों का इकट्ठा होकर निकल रहा है। ये 27 तारीख तक यात्रा लगातार चलेगी। अलग अलग प्रांतों के लोग इस यात्रा में प्रतिदिन सहभागी बनेंगे।
2: अरेंजमेंट कैसे लगे यहाँ?
3: बहुत शानदार, बहुत उत्तम अरेंजमेंट है।
0: चट्टान जैसे शिवलिंग की वजह से नाम पड़ा बाबा चट्टानी, लेकिन बाबा बूढ़ा अमरनाथ नाम पड़ने की कथा बड़ी ही दिलचस्प है। कहते हैं करीब 2000 साल पहले पुंछ जिले का गांव लोरन तब के जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी थी जिस पर उस समय रानी चंद्रिका का शासन था। रामकाज में निपुण रानी चंद्रिका अत्यंत दयालु एवं शिव भक्त थी जो हर साल सावन में अमरनाथ गुफा में हिमलिंग की पूजा करने के बाद ही व्रत तोड़ती थी। लेकिन एक साल मौसम खराब होने से अमरनाथ जाने के सभी मार्ग बंद हो गए। ये सोच कर कि किसी भूल से भोलेनाथ रुष्ट हैं, रानी ने अन्न जल त्याग दिया और बीमार हो गए। कहते हैं एक दोपहर रानी ने सपने में एक बूढ़े साधु को देखा जिन्होंने रानी से उसके महल के 10 मील दूरी पर मौजूद शिव का लुप्त स्थान पर पूजा करने को कहा। इसके ठीक बाद श्वेत कपड़ों में एक साधु ने रानी को दर्शन दिए और अपने साथ उस गुफा तक लेकर आए जिसमें 4 द्वार बने थे। मंदिर सामने आते ही बूढ़े साधु गायब हो गए और इसके बाद रानी ने उन्हें बूढ़ा अमरनाथ कहकर पुकारा जो प्रचलित हो गया।
4: सोजत जिला से प्रथम बार ऐसा हुआ है कि हम 95 की संख्या के अंदर हम यात्री यहाँ पहुँचे हैं और जितने भी राजस्थान के विभिन्न राज्य और भी राज्य हैं वहाँ से भी बहुत सारी संख्या के अंदर इतने उत्साह से लोग आए हैं यहाँ पे। जो उनके मन में जो उनके उत्साह है वो यहाँ उत्साह आज देखने को मिल रहा है कि विभिन्न राज्य के जो लोग हैं सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे अरेंजमेंट्स सब उच्च स्तर के अरेंजमेंट्स है जिसके अंदर अभी प्रथम वर्ष ऐसा हुआ है कि पूरा इसमें सिस्टम डिजिटल कर दिया है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, अभी ऑनलाइन सिस्टम करने से अधिक सुलभता हो गई है। जो भी यात्री है अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आप जो भी संगठन के है वो आपको संपर्क कर लेंगे।
5: सबके अंदर बहुत अच्छी भावना है, श्रद्धालु सारे और बहुत भक्ति भाव से भरे हैं और अमरनाथ बाबा की यात्रा के लिए सब रवाना हुए हैं और सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है।
6: लोगों में बहुत उत्साह है। जैसे बर्फानी बाबा की यात्रा शुरू की थी तो 2005 से लेकर इस यात्रा को आरंभ किया गया है तो अभी एक विशाल वटवृक्ष के रूप में काफी संख्या में लोग यहाँ आना आरंभ हो गए हैं और आने वाले समय में जैसे बर्फानी बाबा में जाते हैं वैसे ही लोग इस यात्रा में जाना आरंभ कर लेंगे जिसका प्रतिरूप अभी आप देख ही रहे हैं। आपके सामने कम से कम 60-70 हजार लोग इस वर्ष जाएंगे इन 7 दिनों में। अलग अलग प्रांत से अलग अलग की सारणी बनाई हुई है, वो अलग अलग आ रहे हैं।
0: कहते हैं स्वयं भगवान शिव द्वारा दिखाया गया ये स्थान सैकड़ों वर्षों के बाद भी एक बार फिर अदृश्य हो गया था, जिसे दक्षिण भारत के एक साधु स्वामी चंद्रचूड़ मुनि ने उजागर कर वर्षों तक यहां तप किया था। इस मंदिर के साथ ही पूर्व दिशा में स्वामी चंद्रचूड़ मुनि की समाधि भी बनाई गई है। सावन में कुल 12 दिनों तक बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा चलती है और श्रद्धालु दर्शन करते हैं, लेकिन इस दर्शन पूजन के साथ ही जुड़ी है पवित्र छड़ी यात्रा, जो पुंछ के दश नामी अखाड़े से निकलती है और बड़े ही धूमधाम से बूढ़ा अमरनाथ मंदिर तक जाती है। सीमा सुरक्षा बल, मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा छड़ी का स्वागत कर उसे आदर सहित मंदिर प्रांगण में ले जाया जाता है। पुलिस द्वारा छड़ी को सलामी दी जाती है और फिर छड़ी को बूढ़े अमरनाथ शिवलिंग पर स्थापित किया जाता है, जो रक्षाबंधन के एक दिन बाद तक विराजमान रहती है। इस छड़ी यात्रा के साथ ही मंदिर में 3 दिवसीय यात्रा एवं मेला शुरू हो जाता है, जो रक्षाबंधन के एक दिन बाद तक जारी रहता है। दशनामी अखाड़े से निकलने वाली छड़ी यात्रा इस धाम को एक अलग आभा देती है और बाबा के भक्तों को एक अलग अनुभव। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: बात करेंगे मौसम की। देखिए, कई दिनों से उमस और चिपचिपे मौसम ने दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब और हरियाणा तक के लोगों को परेशान कर रखा है। हाल ये है कि घर से बाहर निकलते ही पसीना और बेचैनी दोनों साथ में महसूस हो रहे हैं, लेकिन अब इस उमस से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर निकल कर आई। उत्तर पश्चिम भारत की तरफ से अब सूखी हवाओं ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, और इन हवाओं के असर से मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों में बदलता हुआ नजर आ सकता है।

कहते हैं हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी मौसम की ताल पर थिरकती है। मानसून पूरे देश को जी भर कर भिगो रहा है, तो वहीं जैसे जैसे अगस्त गुजर रहा है बरसते बादल बारिश की भरपाई भी कर रहे हैं। खबर ये है कि बादलों की आवाजाही के बीच मौसम फिर से चाल बदलने वाला है। बारिश के बाद जिस उमस ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, अब उस उमस के विदाई की गुड न्यूज आने वाली है। हवा की बदली चाल के बीच उम्मीद तो यही है कि अगले दो दिन दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा के लोगों को उमस से कुछ राहत मिल सकती है। उमस से राहत का ये सीन यूं ही नहीं बना है। हाल फिलहाल हवाओं ने रुख बदला है और उत्तर पश्चिम से आ रही सूखी हवाओं ने नमी को कम कर दिया है। लिहाजा और जैसे जैसे नमी घट रही है, वैसे वैसे चिपचिपी गर्मी का असर भी कम हो रहा है। मौसम में इस बदलाव के पीछे मॉनसून ट्रफ भी एक वजह बताई जा रही है। मॉनसून ट्रफ अब हिमालय की तलहटी की तरफ खिसक गया है और इसी के साथ बारिश का पैटर्न भी बदल गया है। फिलहाल मॉनसून की मेहरबानी पूर्वी और मध्य भारत पर ज्यादा है, जबकि दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में आसमान अपेक्षाकृत साफ है। एक दिन पहले की सैटेलाइट तस्वीरें भी मौसम का बदला रुख बयां कर रही है। पूर्वी यूपी से बिहार और बंगाल की खाड़ी तक मानसूनी बादलों की आवाजाही है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में बादलों की मौजूदगी कम है। आज की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में बारिश के आसार कम है। हालांकि कुछ इलाकों में शाम के वक्त हल्की फुल्की और छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन बादलों का खेल अभी थमा रही है क्योंकि मानसून कब करवट ले ले कहा नहीं जा सकता। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 20 अगस्त के बीच बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके असर से मॉनसून ट्रफ दोबारा दक्षिण की ओर खिसक सकता है और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर फिर लौट सकता है।